0: उनका सहमत लेके ये मस्जिद के बारे में कुछ करना है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं।
1: जातीय सुरक्षा एवं विमानबंदर निरापत्ता आगे देखते हैं। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, চীন বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি।
2: শুভেন্দু সরকার কা কহনা হ্যা কি ইয়ে মসজিদ দো রানওয়ে কে বিচ মে হ্যা। मस्जिद एयरपोर्ट के दूसरे रनवे से केवल 165 मीटर की दूरी पर स्थित है।
3: हम लोग इस वक्त खड़े हैं कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर, आप देख सकते हैं ये है बाउंड्री वॉल, और बिल्कुल इस बाउंड्री वॉल में एक गेट बना हुआ है। ये बांकरा इलाका है उत्तरी दक्षिण उत्तरी 24 परगना में, और ये जो गेट है इस गेट से आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी। अब तक बाहर एक कॉलिंग बेल लगा हुआ था, अब तक इतने सालों तक लोग वो कॉलिंग बेल बजाते थे और मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए सिर्फ आधार कार्ड दिखा के अंदर जाते थे। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो सकता था, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है।
2: मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि ये ऐतिहासिक मस्जिद 135 साल से भी ज्यादा पुरानी है। उन्होंने तर्क दिया कि जब इस स्थान को लेकर हवाई अड्डा प्रशासन और सरकार के बीच बातचीत चल रही थी तो नमाज पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी। उन्होंने बिना सूचना दिए प्रवेश पास रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन के फैसले पर नाराजगी जताई।
4: हमरा दुआ करबो तारा मस्जिद खुले दिक, आलोचना करुक, জোর করে মসজিদ নিলে নেবে, মানুষ বলবে মোদি সরকার মসজিদ ভেঙেছে, শুভেন্দু সরকার মসজিদ ভেঙেছেন, তিনি করছেন, এই কথা আমি বলতে পারবো না, এ খবর আমার কাছে নেই, কিন্তু তিনি মুখ্যমন্ত্রী, আলোচনার রাস্তা খোলা আছে। ইসলাম ধর্মের মধ্যে বহু বিষয় তাদের অজানা, বল প্রয়োগ করে মসজিদ নিলে মুসলমানের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক।
5: রিমুভ করকে আর রানওয়ে কা এক্সটেনশন হোগা, কিন্তু কলকাতা এয়ারপোর্ট মে কাফি প্রেসার হ্যায়, অভি কাফি ইন্ডাস্ট্রিজ আ রহে হ্যায়, দুসরা এয়ারপোর্ট জব তক নেই হোতা হ্যায়, প্রেসার লেনে কা লায়ক ইসকো বানায়া জায়েগা।
2: सिद्दीकुल्लाह चौधरी के विरोध पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है क्योंकि वो नई सरकार से बात कर रहे थे। शुभेंदु ने कहा कि अगर पिछली सरकार सत्ता में होती तो वो सीधे धमकियां देते और ठोंस जमाते। शुभेंदु सरकार का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए और एयरपोर्ट के विकास को देखते हुए इस मस्जिद को यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है।
6: एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था, लाखों लोग इस एयरपोर्ट से फ्लाई करते, नेपाल भूटान बांग्लादेश इवन चाइना के भी बहुत नजदीक का एयरपोर्ट है ये।
2: आपको बता दें कि कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी 136 साल पुरानी इस बांकरा मस्जिद में आधार कार्ड के साथ नमाजियों की एंट्री होती थी जो अब बैन कर दी गई है।
1: ঠিক আছে, নামাজ বন্ধ দেওয়া হয়েছে, এখন আগে আগে কি বলবো, আমাদের তো কোনো খবর দিই।
7: জব ভিজিবিলিটি জিরো হয়ে যাতে উস সময় পশ্চিম আমারা দমদম এয়ারপোর্ট মে ফ্লাইট ল্যান্ড নেই কর পাতে, এক্সপেনশন কে লিয়ে বহুত সারে প্রবলেম হ্যায়। ইয়ে কোই মন্দির মসজিদ কা লড়াই ঝগড়ে মে জানা নেই চলে, উসকা ভি সেফটি কা ব্যবস্থা হো রহা হ্যায়।
2: आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है, तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं और उन्होंने अभी तक जो फैसले किए हैं वो भी सब चर्चा का विषय बने हुए हैं। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा और अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गायों के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत।
1: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस।
2: और अब कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बांकरा मस्जिद में नमाज पर रोक को लेकर शुभेंदु अधिकारी का फैसला विवाद और चर्चा का विषय बन गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
8: और अब खबर उत्तर प्रदेश में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की, जहां अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में अयोध्या की तरह कार सेवा की घोषणा कर दी। 9 अगस्त को इस कार सेवा का ऐलान हुआ तो क्या अब अयोध्या की तरह ही मथुरा की बारी आने वाली है?
2: अयोध्या के बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा, 13 अखाड़ों ने शुरू की कार सेवा की तैयारी, सियासत भारी, चढ़ावा चोरी कांड पर गरजने वाले विपक्ष की काट मिल गई, अखिलेश के लिए सीएम योगी के चैलेंज का टाइम आ गया। 9 अगस्त को मथुरा में क्या क्या होने वाला है, अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष ने गरजना शुरू किया और अखिलेश ने चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाया तो सीएम योगी ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि वाला चैलेंज दे दिया।
9: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
10: हमारे घर के पास वो बहुत है, वो और हर दिन राधे राधे कहते हैं।
11: श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए तब हम सच मानेंगे।
12: राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाएगा।
2: अब सवाल ये है कि अयोध्या पर बीजेपी को घेरने वाले अखिलेश यादव क्या कृष्ण जन्मभूमि पर घेरेंगे, क्योंकि अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा का आह्वान हो चुका है और बाकायदा इसके लिए तारीख का ऐलान भी हो चुका है। 9 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा का ऐलान किया गया है।
13: सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहां बनना है उसको बना के रहेंगे। जो भी आस्था रखते हैं सभी वहां पहुंचेंगे और सबकी एक ही डिमांड है कि हमारा मंदिर का निर्माण तुरंत हो जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं।
2: ये महंत रविंद्र पुरी की घोषणा है, उस अखाड़ा परिषद की घोषणा है जो देश के 50 लाख से अधिक साधु संतों सन्यासियों और नागाओं की प्रतिनिधि संस्था है। 7 शैव उपासक संप्रदायों, 3 वैष्णव संप्रदायों और 3 उदासीन अखाड़ों के कुल 13 अखाड़ों की ओर से आह्वान है कि 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा होगी।
14: भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है और निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए।
2: हालांकि साधु संतों ने अभी रूपरेखा नहीं बताई है। इस कार सेवा के लिए जिन लाखों साधु संतों को मथुरा में बुलाया जा रहा है उसमें क्या किया जाएगा, क्योंकि मथुरा में फिलहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर विराजमान है और पास की विवादित शाही ईदगाह मस्जिद में किसी तरह के निर्माण पर अदालत से रोक है।
15: भाई 9 अगस्त को जो कार सेवा होनी है उसमें समस्त भारत के लोग, समस्त सनातन धर्म प्रेमी और समस्त भगवान श्री कृष्ण के भक्त लोग उसमें भाग लेंगे। जिस प्रकार भगवान श्री राम का मंदिर बना है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बना।
2: अखाड़ा परिषद की योजना के मुताबिक 9 अगस्त को बड़ी संख्या में साधु संत सन्यासी दिल्ली से मथुरा की ओर कूच करेंगे। मथुरा पहुंचने के बाद जन्म स्थान के करीब कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगाया जाएगा। इसके बाद मंदिर परिसर के बाहर भजन कीर्तन और चालीसा पाठ आदि किए जाएंगे। जैसा कि सीएम योगी अखिलेश यादव को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में जुड़ने की चुनौती दे चुके हैं, क्या ये वही आंदोलन है जिसका ऐलान अखाड़ा परिषद ने किया है जिसके लिए कार सेवा शुरू हो रही है?
16: भारतीय जनता पार्टी ने गांव गांव में चंदा किया था, अभी तो उसका हिसाब किताब नहीं हुआ है। तो जहां जहां मथुरा का जो ये लोग नाम ले रहे हैं, सीधी सी बात है कि उसको भी सरकारी कब्जे की आहट के तौर पे देखा जाना चाहिए।
2: हालांकि इस पूरी योजना को विश्व हिंदू परिषद ने अभी तक कोई समर्थन नहीं दिया है और अखाड़ा परिषद की ओर से किए गए इस आह्वान से वीएचपी ने दूरी बनाए रखी है। लेकिन ये सच है कि बीजेपी के लिए मथुरा 2027 की चुनावी राजनीति की एक बड़ी धुरी साबित हो सकती है।
17: भाजपा मथुरा में एक बार फिर हिंदू भावनाओं को भड़काकर सत्ता का खेल खेलना चाहती है, लेकिन राम मंदिर निर्माण गवाह है कि वहां पर मंदिर बना माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। भाजपा ने तो ट्रिपल तलाक पर कानून बनाया, लेकिन राम मंदिर का निर्माण कानून बनाकर नहीं किया।
2: हालांकि ब्रज का इलाका बीजेपी के लिए सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं बल्कि विकास के स्केल पर भी अहम है। खुद सीएम योगी 38 बार मथुरा वृंदावन के दौरे पर जा चुके हैं। योगी कैबिनेट में 12 मंत्री सिर्फ ब्रज क्षेत्र से आते हैं। 2022 में ब्रज क्षेत्र में बीजेपी को 53 तो अखिलेश को सिर्फ 12 सीटें मिली थी, जबकि 82 से 85% यादव वोट अखिलेश को ही मिले थे। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सुधरा और बीजेपी 53 सीटों से घटकर 42 विधानसभा इलाकों में ही बढ़त पा सकी, जबकि समाजवादी पार्टी 12 विधानसभा सीटों से आगे बढ़कर 23 विधानसभा इलाकों तक पहुंच गई। ऊपर से 2024 में इंडिया गठबंधन को करीब 87 से 89% तक यादव वोट मिले। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में हिंदुत्व की पेच पर सीएम योगी अपने चिर परिचित अंदाज में खेल रहे हैं। इस बीच मथुरा में साधु संतों की कार सेवा सीएम योगी के मिशन को पूरी धार देती हुई दिखाई देती है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
8: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भर दिया। नामांकन के समय जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जब तेज प्रताप के पार्टी के प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया।
2: पटना में डीएम ऑफिस के बाहर हंगामा बरपा है। जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीणा मानवी अपना नामांकन भरने पहुंची थी, मगर पुलिस ने उन्हें यही गिरफ्तार कर लिया।
18: मैं समझ रही थी मेरे साथ कुछ ऐसा होना है, कुछ ना बताइए। एक महिला से ये लोग डर गया, कब का कौन सा केस खोल के, मतलब बीजेपी के पास यही कार्य बच गया कि एक महिला तक को ये लोग नहीं छोड़ते। मुझे नहीं पता भैया।
2: गिरफ्तारी के बाद यहाँ हंगामा मच गया।
19: जो हंगामा हुआ उसमें लगातार जो वीना मानवी है वो कह रही थी कि उन्होंने अपने खिलाफ जो भी मुकदमे हैं उसकी जानकारी दी है, लेकिन उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो यहाँ बेहद अफरा तफरी का माहौल, और हालांकि प्रशांत किशोर अभी नामांकन कर रहे हैं जो जनराज के कैंडिडेट हैं, और वीना मानवी जिन्होंने थोड़ी देर पहले नामांकन किया उनकी गिरफ्तारी यहाँ हो गई।
2: वीणा मानवी की बेटी कहती है कि जो भरत तिवारी के साथ हुआ वही उनकी मां के साथ करना चाहती है पुलिस।
20: भरत तिवारी के साथ जो हुआ ना वो मेरी मां के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि 20 साल से वो समाज के लिए आवाज खड़ा कर रही है। वो निर्दलीय नहीं लड़ने देता कोई, तो जेजेडी पार्टी से खड़ी हुई, नॉमिनेशन 3-4 बार रोकने की कोशिश की।
2: जेजेडी के मुखिया तेज प्रताप भी कहते हैं कि साजिश के तहत उनकी प्रत्याशी की गिरफ्तारी हुई है।
21: सरकार की तरफ से साजिश किया गया है, हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर फंसाया गया है, और ऐसा कोई मामला नहीं है, और ये आदि आबादी की बात कर रही थी।
2: इस हंगामे के पहले बीजेपी के नीरज सिन्हा नामांकन करने इस तरह से पहुंचे, ढोल नगाड़े और रोड शो के साथ नीरज सिन्हा ने नामांकन भर दिया। प्रशांत किशोर भी इसी तरह के रोड शो के साथ नामांकन करने पहुंचे। ये तब की तस्वीर है जब पीके नामांकन कर रहे थे। नामांकन के बाद उन्होंने जीत का भरोसा जताया।
22: जनता मालिक है, जनता का घर है, जनता को तय करना है कि ये किसका घर होगा। ये जो बाकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में नेतृत्व बदलने का चुनाव है।
2: बांकीपुर का मुकाबला त्रिकोणीय है। बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होने हैं, 3 अगस्त को परिणाम आएंगे। देखना होगा कि बांकीपुर में बीजेपी अपना गढ़ बचाती है या पीके उसे फतह करते हैं। शशि भूषण सिंह, पटना, आज तक।
8: वर्ष 2024 में दिल्ली कोचिंग हादसे के मामले में सीबीआई ने दिल्ली की अदालत में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। इस मामले में दिल्ली नगर निगम के दो वरिष्ठ अफसरों को क्लीन चिट दे दी गई। जांच में पाया गया कि बेसमेंट में अवैध लाइब्रेरी की अनुमति देने में उनकी कोई लापरवाही नहीं थी।
0: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में दो साल पहले हुए इस हादसे के लिए भले ही पीड़ित परिवार एमसीडी के अफसरों को दोषी माने, लेकिन जांच रिपोर्ट ये नहीं मानती। राव आईएएस कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में बारिश का पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत ने भले ही देश को झकझोर दिया, लेकिन फिर भी एमसीडी के अफसर राहत पाने में कामयाब रहे। इस हादसे के दो साल बाद सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में बताया कि जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि किसी वरिष्ठ एमसीडी अधिकारी की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। क्लोजर रिपोर्ट में चाहे जो कुछ भी लिखा हो, लेकिन इस घटना के बाद न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था, अवैध बेसमेंट के इस्तेमाल को लेकर सरकारी एजेंसियों की लापरवाह भूमिका पर गंभीर सवाल उठे थे। पिछले ही महीने आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने 23 जून को इस मामले का एक रियलिटी चेक किया था। इस दौरान ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों की सुरक्षा को ताक पर रखकर अवैध रूप से चल रही लाइब्रेरी की जमीनी हकीकत जानने के लिए आज तक की टीम जब ग्राउंड पर पहुंची तो कोचिंग संचालक के तेवर देखने लायक थे।
3: हम रियलिटी चेक कर रहे हैं।
4: किसने कहा?
3: रियलिटी चेक कर रहे हैं।
4: किसने कहा चेक करने
3: का? रियलिटी चेक कर रहे हैं। इसमें
4: किसने कहा?
3: मैंने कहा।
4: आप कौन है?
3: मैं पत्रकार हूँ।
4: तो हमें पत्रकार की आवश्यकता नहीं है।
3: अच्छा
4: जी, नहीं हमें पत्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पत्रकार अपने पास रखिए, जिनको आवश्यकता है वो रखिए।
23: मैं ये पूछ रहा हूँ किससे परमिशन लेके आप अंदर आए?
3: रियलिटी
23: अभी रियलिटी चेक करने की परमिशन नहीं किसी ने? आपने पढ़ाई चल रही यहाँ पे?
3: पढ़ाई कर रहा
23: है। चलो हो गया रिपोर्टिंग हो गई। चलो
3: रिपोर्टिंग हो गई।
23: बहुत रिपोर्टिंग हो गई। चलो
3: सर
4: बाहर जाइए।
23: धक्का तो बहुत सम्मान के साथ।
0: आज तक की इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कोचिंग चलाने वालों को सुरक्षा मानक पूरा करने के लिए महीने भर का नोटिस दिया, लेकिन हकीकत अब भी क्या है आज आप देख लीजिए।
24: बेसमेंट से तो लाइब्रेरी बंद करा दी है, लेकिन ऊपर के मंजिलों में शिफ्ट कर दी है। एंट्री के लिए एक ये छोटा सा एंट्री मार्क दिया है, जो करीब 1 से 1.5 फीट की जो सीढ़ियां हैं वो है यहाँ पर, और यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। अगर मान लीजिए कोई अनहोनी यहाँ हो जाए तो जो बच्चे यहाँ ऊपर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों का क्या होगा? आप देखें यहाँ तस्वीरों में किस तरीके से ये छोटी छोटी सीढ़ियां हैं जो पहले मंजिल तक जाती हैं, और पहले मंजिल में जो है ये पूरा लाइब्रेरी जो है वो चल रहा है। आप यहाँ लाइब्रेरी से भाई साहब? ये लाइब्रेरी का आपके पास एनओसी है? फायर एनओसी है?
25: लाइब्रेरी का एनओसी?
24: फायर एनओसी है?
25: नहीं।
8: राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही पर उठते प्रश्नों का उत्तर देने की जगह संवेदनहीनता से हंसने लगते हैं। 18 गर्भवती महिलाओं की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने हाथ हिलाकर कहा कि मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम आपको बता दें, 2 महीने में 4 जगहों पर राजस्थान में 18 गर्भवती महिलाओं की मौत सरकारी अस्पताल में हो चुकी है।
26: दो दिन के बाद बाकी सब ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद
0: संवेदनहीनता, शर्मनाक, अपमानजनक, लापरवाह, मौत पर तमाशा, मौत पर चुभने वाली हंसी, ये सारे शब्द इस वक्त जिस शख्स के लिए कहे जा रहे हैं, इनका नाम गजेंद्र सिंह खींवसर है। राजस्थान के ये वो अयोग्य स्वास्थ्य मंत्री हैं जो राजस्थान में 2 महीने के भीतर 18 गर्भवती महिलाओं की सरकारी अस्पताल में मौत पर पूछे जाते सवालों पर हंसते ठहाके लगाते उठते हैं, कह देते हैं जवाब अब ब्रेक के बाद।
26: ब्रेक के बाद
0: जिनके परिवार अपने घर की गर्भवती बहू बेटी की मौत सरकारी अस्पताल में होने से टूट गए, उन परिवारों को मौत की असली वजह बताने की जगह मिलती है स्वास्थ्य मंत्री की चुभने वाली हंसी। पहले कोटा, फिर बीकानेर, फिर बांसवाड़ा, फिर भीलवाड़ा तक, मई से अब 9 जुलाई तक 18 गर्भवती महिला अचानक कैसे जान गंवा दे रही। कोटा में तो हाल ये कि जिन गर्भवती महिलाओं की किडनी सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान खराब हो गई, डायलिसिस वो 2 महीने से करा रही, उनके घर वाले बताते हैं टूटती जा रही है उनकी आस, जो करने लगी है सरकार से गुहार कि किडनी ट्रांसप्लांट कराए सरकार या जहर दे दे।
27: हर 2 दिन बाद तो उनकी डायलिसिस होती है, और डायलिसिस के दौरान भी पीड़ा से ही गुजरती है,
1: बीपी बढ़ जाता है, सर्दी लगती है, सर फटने लग जाता है, उल्टियां करती है, उस दिन खाना भी नहीं खाती है, डायलिसिस के नाम से डरने लग गई है, बोलते कि सच्चा तो हम मर जाएं जो बढ़िया है, बाकी हम डायलिसिस नहीं कराएंगे।
0: मई महीने से मौत के केस लगातार आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को हंस कर जाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि लगातार ये पल्ला झाड़ते आए हैं। जैसे पहले दावा कर दिया कि मौत की वजह गर्मी और डिहाइड्रेशन है, जबकि मौत अब भी हो रही है।
5: पहले हमने देखा शायद गर्मी से भी कुछ हो सकता है, डिहाइड्रेशन से भी हो सकता है, गर्मी भी चली गई, आपके मॉनसून आ गया, तो इसको हमें क्रैक करना पड़ेगा।
0: एक स्वास्थ्य मंत्री दो महीने में अगर मौत की वजह नहीं पता कर पा रहे तो क्या इनकी कोई जवाबदेही नहीं है?
5: एक डेथ यहाँ हो जाए, एक डेथ वहाँ हो जाए, वन हम कहते हैं कि भाई बहुत गंभीर हालत में आई तो सब गंभीर में थी, पर जी जो क्लस्टर में डेथ हो रही है ना, ये एक टाइप की मिस्ट्री बनी हुई है जिसकी हमें इसका निचोड़ के हमें इसका जो कारण क्या है वो हम सब एक्सपर्ट से सब करके हमें बाहर से भी इन्वेस्टिगेशन कोई एक्सपर्ट टीम से कराना पड़े, एम्स वाले आ चुके हैं, ये थोड़ा एक रहस्य है कि मतलब मिस्टीरियस है कि क्लस्टर में हो रही है।
0: इसके बाद मंत्री बैठक करने के बाद भी वजह नहीं खोज पाए तो कांग्रेस राज की मौतों के आंकड़े याद कराने लगे।
5: 2011 में जोधपुर में 18 डेथ हुई थी कि नहीं हुई थी? 18 डेथ हुई थी जोधपुर के अंदर 2011 के अंदर, हुई थी नहीं हुई थी ये आपको मालूम नहीं है?
6: ये 13 डेथ,
5: अरे 18 कैसे हो गई?
0: इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह हिमसर और पूरा स्वास्थ्य विभाग सीधे मरीजों की हालत को ही उनकी मौत के लिए जिम्मेदार बताने में जुट गया।
5: मेरा जो भी एक्सपीरियंस एज ए मिनिस्टर रहा है, नंबर वन सबसे ज्यादा आते हैं रेफरल केसेस, नंबर टू आते हैं सबसे बिगड़े हुए केसेस, जो जहां पे प्राइवेट वाले हाथ ऊंचे कर लेते हैं या पैसे ज्यादा मांगते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं।
0: सवाल है कि जहां सबसे ज्यादा रेफरल केस आते हैं जैसे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, वहां गर्भवती महिलाओं की मौतें नहीं हो रही, जबकि छोटी जगहों पर ये दर्दनाक मौत हो रही है। जहां मौत होती है वहां जाकर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था सिस्टम ठीक करने लगती है। बाकी दो दवा नकली मिली तो उस पर भी बचाव की दलील खोज ली गई है।
7: ऑक्सीटोसिन के अंदर जो कंपनी से रिपोर्ट आई थी उसमें ये था कि ऑक्सीटोसिन कंटेंट नहीं था, तो कोई चीज में कंटेंट नहीं होना कोई नुकसान देह नहीं, पानी किसी को लगाओगे तो कोई मरेगा नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ, कोई उसकी सब स्टैंडर्ड हो सकता है।
0: इतना सब कुछ बोलकर आगे दो दिन अस्पतालों के दौरे पर रहने का दावा करके स्वास्थ्य मंत्री उठे, हंसे और कह दिया कि बाकी सब कुछ ब्रेक के बाद।
5: ब्रेक के बाद
9: मंत्री जी जवाब सुनो।
5: ब्रेक के बाद
0: बाकी जनता का राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था में भगवान मालिक है, जहां 18 मौत के बाद मंत्री शर्मनाक तरीके से गंभीर मुद्दे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसते हो, जहां जवाब देने की जगह रैली की तरह हाथ हिलाकर चलते बनते हो। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
8: खबर उस हादसे की जिसने 27 लोगों की जिंदगी छीन ली। बैंकॉक में पब में भयानक आग लगी। आग लगने की जो तस्वीरें वायरल हुई वो बेहद खौफनाक है। धुएं के बीच लोग जान बचाने की कोशिश करते दिखे।
10: 27 मौत, 63 घायल, 22 गंभीर रूप से घायल। रात के 12 बजने वाले थे। बैंकॉक के इस पब में पार्टी अपने शबाब पर थी। अचानक अंधेरा हुआ और आग की चिंगारी दिखने लगी। बैंकॉक के पब में रविवार देर रात अचानक भड़की आग देखते ही देखते एंट्री गेट तक पहुंच गई। पब में पार्टी कर रहे लोगों ने जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरा पब धुएं से भर गया। अब ये तस्वीर देखिए, एक महिला बदहवासी में जान बचाने के लिए पब में इधर से उधर भाग रही है। ऐसी ही एक दूसरी तस्वीर में लोग भागते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धुआं इतना ज्यादा भर चुका है कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा और हर किसी का दम घुट रहा है। न किसी को बचने की कोई जगह दिख रही थी, न ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। जिसे जहां थोड़ी सी जगह दिख रही थी वो वहीं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्दी ही ये कोशिशें भी नाकाम होती चली गईं। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जान बचाएं तो कैसे। ज्यादातर लोग वॉशरूम की तरफ भागे, एक तो पानी की वजह से और दूसरी कोशिश वहाँ से बाहर निकलने की थी, लेकिन बाहर निकलने का वहाँ भी कोई रास्ता नहीं मिला। जो एग्जिट पॉइंट थे भी वो बंद थे और लोग वहाँ से निकल ही नहीं पाए। पुलिस को भी ज्यादातर लाशें वॉशरूम में और बाहर निकलने वाले रास्तों के पास मिली। फोरेंसिक टीमों ने घटना स्थल पर सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि बाकी टीमें इस बात की तहकीकात कर रही हैं कि पब के पास सारे जरूरी कागजात थे या नहीं। राहत दल ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया था, लेकिन तेजी से फैली आग और धुएं ने तब तक 27 लोगों की जान दे ली थी। जो बचे भी थे उनकी हालत काफी खराब थी और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
8: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

अमेरिकी हमलों से फिर दहला ईरान। बंदर अब्बास, बुशहरकिम और केशम द्वीप पर धमाकों की आवाज। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी बनाया निशाना। हॉर्मुज पर दो ऑयल टैंकरों पर मिसाइल अटैक, एक भारतीय नाविक की मौत, 8 घायल। यूएई ने ईरान पर लगाया आरोप, कहा क्रूज मिसाइल से किया गया हमला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आज से नाकेबंदी शुरू करेगा अमेरिका। ट्रंप ने जहाजों को सुरक्षा देने के बदले 20% टैक्स वसूलने का ऐलान किया। ईरान ने कहा किसी का दखल मंजूर नहीं। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में खींचतान जारी। आज दिल्ली में बड़ी बैठक की संभावना। भूपेश बघेल के फीडबैक पर हो सकती है चर्चा। और फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला आज डलस स्टेडियम में फ्रांस और स्पेन के बीच टक्कर। 20 साल बाद फुटबॉल आमने सामने होंगी दोनों टीमें।

आज तक आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं और सुबह के 6 बजे हम 6 खबरों के साथ हाजिर हैं। वो 6 खबरें कौन से आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे, अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के कई इलाकों में स्ट्राइक की है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है, यानी पश्चिम एशिया एक बार फिर जंग के मुहाने पर आ पहुंचा है। दूसरी बड़ी खबर, अमेरिकी हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। थोड़ी देर पहले बहरीन में सायरन बजा और इसी के साथ साथ खाड़ी के कई देश इस समय ईरान के निशाने पर हैं। तीसरी बड़ी खबर ये कि यूएई ने ईरान पर हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 ऑयल टैंकरों पर हमले का आरोप लगाया है। चौथी बड़ी खबर यह कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप ने 20% ट्रंप टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया है। पांचवी बड़ी खबर यह कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर दुनिया को 2 जवाब दिया है और इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है। छठी खबर यह है कि फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में आज स्पेन और फ्रांस के बीच टक्कर होने वाली है। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जारी जंग की। सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान के बंदर अब्बास, किश्तवीर, केशम, अबू मूसा, बुशेर, ये तमाम वो शहर हैं जहां पर हमले किए गए हैं। ईरानी समाचार एजेंसी के मुताबिक बंदर अब्बास के ईस्ट और साउथ के इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई। किश्तवीर पर 2 धमाके की खबर है। बुशेर के प्रोविंस इलाके में कई धमाके सुने गए हैं। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक हमले के बाद बंदर अब्बास में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया और बी सेंट्रल कमांड ने भी जो हमले किए हैं उसकी भी तस्वीरें जारी की हैं। लेकिन ईरान के कई शहरों में बीती रात फिर हमले हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमलों के आदेश दिए हैं। तो सीज फायर खत्म होने के बाद दोनों देशों के बीच एक बार स्थिति फिर तनावपूर्ण होती जा रही है और अब ईरान अमेरिका जंग को लेकर के एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने एक बार फिर कुवैत पर हमला किया है। ईरान के समाचारी टीवी ने, सरकारी टीवी ने ईरानी

हवाले से दावा किया है कि कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और उपकरणों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया गया। साथ में ये भी दावा किया गया है कि हॉर्मुज में अमेरिकी जहाजों पर क्रूज मिसाइल से हमले किए गए हैं। यानी ईरान भी चुप नहीं है, वो पलटवार कर रहा है और वो निशाना बना रहा है अमेरिकी सैन्य ठिकानों को जो कि खाड़ी के देशों में मौजूद है, फिर चाहे वो यूएई हो, बहरीन हो, कुवैत हो, जॉर्डन हो, इन तमाम इलाकों में यानी युद्ध का दायरा बढ़ रहा है। जैसे जैसे सीज फायर खत्म होने का दोनों देशों की ओर से ऐलान कर दिया, अब हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर के ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं, तो अमेरिका सैन्य बेस जिन खाड़ी के देशों में मौजूद हैं, ईरान भी पलटवार कर रहा है। तो हॉर्मुज में अमेरिकी जहाजों पर ईरान ने हमले किए हैं, निशाना बनाया है, और ऐसे में ट्रंप ने, ये ताजा वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए प्रेस टीवी के हवाले से जो ताजा वीडियो जारी किया गया है कि कैसे ईरान ने अपने मिसाइलों के जखीरे का मुंह मोड़ दिया है अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ओर जो कि खाड़ी के देशों में मौजूद हैं। तो हमले कहां कहां हुए हम आपको ये भी बता रहे हैं कि यूएई ने कहा है कि ईरान ने क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया है हॉर्मुज को निशाना बनाने के लिए, और उसी के साथ साथ कुवैत में सायरन बजे हैं। अब से थोड़ी देर पहले बहरीन में भी, और सबसे पहले आज तक पर हमें तस्वीरें दिखा रहे ईरान की ओर से जब मिसाइलें दागी गई हैं, कुवैत को निशाना बनाया गया है। तो एक तरफ जहां अमेरिका की कार्रवाई चल रही है ईरान पर, ईरान ने जवाबी हमला किया है कुवैत के ऊपर, और ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रेस टीवी की ओर से जारी की गई तस्वीरें, ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी के जरिए, सरकारी टीवी चैनल के जरिए तस्वीरें जारी की गई हैं कि कैसे ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। दरअसल इन तस्वीरों के जरिए ईरान ये भी पूरी दुनिया को बता रहा है कि आखिर कैसे उसके पास वो हथियारों का जखीरा मौजूद है। देखिए यहां से जमीन, इसको कहते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसका इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही क्या ये क्रूज मिसाइल भी हो सकती है जिसके जरिए कुवैत में लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता। तो आखिर अब तक पूरे घटनाक्रम में क्या हुआ है, अमेरिका बनाम ईरान पार्ट टू कैसे शुरू हुआ है। आधी रात को ईरान के कई इलाकों में धमाके सुने गए हैं, खासकर बंदर अब्बास बुशहर को निशाना बनाया गया है। अब ये वो इलाके हैं जहां पर ईरान का ऊर्जा संयंत्र है और खासकर स्ट्रेटेजिकली डिफेंस लाइन भी है केशम और जास्क आइलैंड पर, जहां ईरान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये इलाके हैं, और ईरान ने फिर कुवैत पर पलटवार किया है, जवाबी कार्रवाई की है। यह घटनाक्रम बीती रात में कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं जहां पर उसका बड़ा एक एयरबेस भी है, उस पर हमले किए गए हैं। अमेरिकी जहाजों को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया गया है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिन अमेरिकी जहाजों को अमेरिकी नेवी एस्कॉर्ट करती थी उसको चुनकर के आईआरजीसी ने निशाना बनाया है, और क्रूज मिसाइल से। तो आधी रात को जब ईरान में धमाके हुए, ईरान ने पलटवार किया, न सिर्फ कुवैत पर हमला किया बल्कि अब यूएई का यह आरोप है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर निशाना बनाया गया है। तो आप एक बार फिर बता देते हैं कि आखिर हम ईरान जो दहला है वो कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर ये हमले हुए। सबसे ज्यादा जो असर होता है वो इन दक्षिण के इलाकों में होता है क्योंकि यहीं से तटीय लाइन शुरू होती है, और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अबू मूसा, ये है किश आइलैंड, ये है बुशर, ये केशम द्वीप और बंदर अब्बास। आपको बता दें बंदर अब्बास से लेकर के चाबहार, इसके पास ये जो इलाके हैं कोनार्क, यहां सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया। इसी के साथ साथ अमेरिका ने पहली बार सरफेस ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है, तो इन्हीं इलाकों में जहां पर उसकी सबमरीन और शिप मेंटेनेंस पोर्ट है, खासकर अबू मूसा द्वीप के पास और उसी के साथ साथ बंदर अब्बास के पास, उसको निशाना बनाया गया है, उसकी नेवल ताकत को जो है निशाना बनाया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको हमें भी बता दें ईरान अमेरिका जंग को लेकर के, हॉर्मुज में दो तेल टैंकरों पर मिसाइल अटैक हुआ है। तो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स ने, यूएई ने ईरान पर हमले का आरोप लगाया है। हमले में एक भारतीय नाविक की भी मौत हुई है। अब ये देखिए युद्ध का दायरा कैसे मासूम लोगों को अपनी चपेट में लेता है। 8 घायल हुए हैं। यूएई ने बयान जारी किया है, ये कहा है कि ईरानी सेना ने क्रूज मिसाइलों से टैंकरों को निशाना बनाया है। यानी अब जाकर के जो परिस्थितियां हैं वो लगातार और बिगड़ रहे हैं। आपको यहां पर भी बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर संभवतः यह हमला किन इलाकों में हुआ है, कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास गुजरते हुए तमाम जहाज और ओमान के पास हॉर्मुज में दो तेल टैंकरों पर मिसाइल हमले हुए हैं, और अब यूएई का कहना है कि दरअसल ये क्रूज मिसाइलों का हमला है। और अगर ऐसा है
तो 28 फरवरी के बाद अमेरिका ईरान के बीच जो जंग शुरू हुई है उसमें ये एक नया एस्केलेशन होगा, क्योंकि इसके पहले किसी भी जहाज पर

मिसाइल से हमले नहीं हुए थे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास आपको एक बार बता देते हैं कि कहां पर ये संभवतः ये जो इलाका है उसी के साथ। लेकिन यूएई रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमला ओमान के इलाके में किया गया था। दोनों टैंकरों में जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है। और अगली खबर इसी से जुड़ी आपको ये भी बता देते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिका ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से 20% टैक्स लेने का ऐलान किया है। आपको याद हो इससे पहले ईरान ने कहा था कि यहां से जो जहाज गुजरेंगे वो ईरान को टैक्स देंगे। अब ट्रंप कह रहे हैं कि हम जिन जहाजों को रास्ता देंगे वो टैक्स देंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब अमेरिका संभालेगा। ट्रंप ने कहा कि वो अब गार्जियन ऑफ हॉर्मुज हैं, यानी अमेरिका अब गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज होगा, लेकिन इस काम के लिए एक खर्चा आएगा और उस खर्चा उठाना पड़ेगा। स्ट्रेट से गुजरने वाले हर कार्गो पर 20% टैक्स लिया जाएगा, यानी अगर किसी कार्गो पर 1 मिलियन का सामान है तो उसका 20% टैक्स जो है वो ट्रंप को यानी अमेरिका को देगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के जहाज और उसके ग्राहकों पर रोक जारी रहेगी, यानी आज से अमेरिका हॉर्मुज में नाकेबंदी लगाएगा, बिना किसी रुकावट के तमाम वाणिज्यिक जहाज गुजर सकेंगे। उनके मुताबिक नई व्यवस्था पर तुरंत काम शुरू किया जाएगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अब उनको टैक्स देना पड़ेगा। क्या क्या बता देते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब सबके लिए खुला है, खुला रहेगा, ईरान चाहे या ना चाहे। हम ईरानी ब्लॉकेड को फिर से लागू कर रहे हैं, ईरानी जहाज अब इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बाकी सभी देशों के कमर्शियल जहाजों कार्गो के लिए यह मार्ग खुला रहेगा। अब से अमेरिका को हॉर्मुज का गार्जियन कहा जाएगा, गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज, और सुरक्षा बनाए रखने की लागत की भरपाई के लिए सभी कार्गो पर 20% टोल वसूला जाएगा। हॉर्मुज में अब ट्रंप का टैक्स लग जाएगा। लेकिन इस पर ईरान ने भी चुप्पी तोड़ी है, ईरान ने भी पलटवार किया है, जवाब दिया है। ईरान की ओर से कहा गया हॉर्मुज पर ट्रंप का दावा गलत है। ईरान ने हॉर्मुज को लेकर के ट्रंप के दावे का मजाक भी उड़ा दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उन्होंने लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी हॉर्मुज कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराता है उसे इसके लिए टोल मिलना चाहिए। ईरान ने सबसे पहले कहा था कि उसे टोल चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ईरान हमेशा से इस समुद्री मार्ग का गार्जियन रहा है, आगे भी रहेगा। हालांकि 20% टोल बहुत ज्यादा है, हम इस मामले में निष्पक्ष रहेंगे। ये ईरान की ओर से ट्रंप का मजाक उड़ाया गया। क्या कहा गया है कि हम आपको ये भी बता देते हैं, अराक्षी की ओर से क्या क्या गया, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी हॉर्मुज से जहाजों को सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराता है उसे टोल मिलना चाहिए। ईरान की ओर से कहा गया था, ईरान हमेशा से इस मार्ग का गार्जियन रहा है और आगे भी इस मार्ग का वो गार्जियन रहेगा, लेकिन 20% टोल बहुत ज्यादा है, हम निष्पक्ष रहेंगे। तो ईरान ने न सिर्फ पलटवार किया है बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का मजाक भी उड़ाया। 20% टोल रहे, कह रहे हम तो निष्पक्ष रहेंगे, इस मामले में हमारा टोल कम रहेगा। और आपको याद हो इसके पहले जब ईरान ने कहा कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को टोल देना पड़ेगा, तब ट्रंप ने कहा था ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर इस बीच ये, पश्चिम एशिया की परिस्थितियों के बीच में यूएनएससी में विदेश मंत्री ने भारत की दावेदारी पेश कर दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अब 2028-29 के लिए अस्थायी सीट पर भारत की दावेदारी पेश कर दी है। विदेश मंत्री अजय शंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो भी जारी किया है। ग्लोबल साउथ की आवाज को महत्व मिले, अब ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, भारत का लक्ष्य विश्व निर्माण में योगदान देना है, यह विदेश मंत्री अजय शंकर ने कहा है। उन्होंने थोड़ी देर पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट भी जारी किया। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले संसाधनों पर रोक जरूरी है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत अब 2028-29 के लिए अस्थायी सीट पर दावेदारी कर रहा है, और इसी के साथ ही दुनिया के तमाम सारे वो देश हैं जो भारत की सदस्यता का समर्थन भी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राजदूतों, राजनयिकों, संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में जयशंकर ने भारत के अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान विदेश मंत्री ने भी कहा कि जब दुनिया आर्थिक विकास को बनाए रखने, समृद्धि का प्रयास कर रही है, तब भी कुछ पुरानी चुनौतियां हमारे सामने बनी हुई हैं, और इनमें सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद है। बहुत लंबे समय तक हमारे प्रयास आतंकवाद के केवल लक्षणों से निपटने तक सीमित रहे हैं, लेकिन जब तक हम आतंकवाद के वित्तीय संसाधन आधार को कमजोर करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक हमें केवल सीमित सफलता ही मिलेगी। और अब बात एक ऐसी खबर की जिससे पश्चिम बंगाल में एक नया विवाद शुरू हो गया है। जी हां, शुभेंदु राज में 136 साल पुरानी मस्जिद में नमाज रोक दी गई है। मस्जिद में लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बांकरा मस्जिद कहा जाता है, उसमें न सिर्फ नमाज बैन कर दी गई है बल्कि अब इस 136 साल पुरानी मस्जिद को वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

0: शुभेंदु राज, कोलकाता एयरपोर्ट की मस्जिद में रोक दी नमाज। 136 साल पुरानी मस्जिद को हटाने की तैयारी, विवाद हुआ भारी। एयरपोर्ट के दो रनवे के बीच मस्जिद, शुभेंदु सरकार को मंजूर नहीं। मस्जिद कमेटी की आपत्ति, बिना बताए नमाज रोकने पर नाराजगी। शुभेंदु अधिकारी का सीधा ऐलान, एक बार जो कमिटमेंट कर दी।
1: रोकने वाला आदमी नहीं हूँ, भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा।
0: बंगाल में हिंदुत्व मॉडल लागू हो चुका है, कभी बुलडोजर एक्शन तो कभी कानून तोड़ने वालों पर सख्त रिएक्शन, यही शुभेंदु अधिकारी की पहचान बन चुके हैं। और अब शुभेंदु अधिकारी अपने नए फैसले से सुर्खियों में हैं। जी हां, शुभेंदु सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोलकाता एयरपोर्ट की जमीन पर बनी 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बांकरा मस्जिद भी कहा जाता है, उसमें नमाज रोक दी है और नमाज पढ़ने के लिए आने वालों की एंट्री भी रोक दी है।
2: मैं तो इसको खिलाफ, बहुत साल से वहाँ नमाज पढ़ रहे, ये बीजेपी का सरकार आने के बाद इसको हटाने का बात हो रहा है। मुसलमान जो वहाँ समाज है उनका सहमत लेके ये मस्जिद के बारे में कुछ करना है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं।
1: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, চীন বাংলাদেশ সব কাছে, এটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি।
0: शुभेंदु सरकार का कहना है कि ये मस्जिद दो रनवे के बीच में है, मस्जिद एयरपोर्ट के दूसरे रनवे से केवल 165 मीटर की दूरी पर स्थित है।
3: हम लोग इस वक्त खड़े हैं कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर, आप देख सकते हैं ये है बाउंड्री वॉल, और बिल्कुल इस बाउंड्री वॉल में एक गेट बना हुआ है। ये बांकरा इलाका है, उत्तरी दक्षिण उत्तरी 24 परगना में, और ये जो गेट है, इस गेट से आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी। अब तक बाहर एक कॉलिंग बेल लगा हुआ था, अब तक इतने सालों तक लोग वो कॉलिंग बेल बजाते थे और मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए सिर्फ आधार कार्ड दिखा के अंदर जाते थे। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो सकता था, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है।
0: मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि ये ऐतिहासिक मस्जिद 135 साल से भी ज्यादा पुरानी है। उन्होंने तर्क दिया कि जब इस स्थान को लेकर हवाई अड्डा प्रशासन और सरकार के बीच बातचीत चल रही थी तो नमाज पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी। उन्होंने बिना सूचना दिए प्रवेश पास रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन के फैसले पर नाराजगी जताई।
4: हमरा दुआ करबो तारा मस्जिद खुले दिक, आलोचना करुक, জোর করে মসজিদ নিলে নেবে, মানুষ বলবে মোদি সরকার মসজিদ ভেঙেছে, শুভেন্দু সরকার মসজিদ ভেঙেছেন, তিনি করছেন, এই কথা আমি বলতে পারবো না, এ খবর আমার কাছে নেই, কিন্তু তিনি মুখ্যমন্ত্রী, আলোচনার রাস্তা খোলা আছে। ইসলাম ধর্মের মধ্যে বহু বিষয় তাদের অজানা, বল প্রয়োগ করে মসজিদ নিলে মুসলমানের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক।
5: রিমুভ করকে আর রানওয়ে কা এক্সটেনশন হোগা, কিন্তু কলকাতা এয়ারপোর্ট মে কাফি প্রেসার হে, অভি কাফি ইন্ডাস্ট্রিস্ট আ রহে হে, দুসরা এয়ারপোর্ট জব তক নেই হোতা হে, প্রেসার লেনে কা লায়ক ইসকো বানায়া জায়েগা।
0: सिद्दीकुल्लाह चौधरी के विरोध पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, क्योंकि वो नई सरकार से बात कर रहे थे। शुभेंदु ने कहा कि अगर पिछली सरकार सत्ता में होती तो वो सीधे धमकियां देते और ठोंस जमाते। शुभेंदु सरकार का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए और एयरपोर्ट के विकास को देखते हुए इस मस्जिद को यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है।
6: एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था, लाखों लोग इस एयरपोर्ट से फ्लाई करते, नेपाल भूटान बांग्लादेश इवन चाइना के भी बहुत नजदीक का एयरपोर्ट है ये।
0: आपको बता दें कि कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी 136 साल पुरानी इस बांकरा मस्जिद में आधार कार्ड के साथ नमाजियों की एंट्री होती थी, जो अब बैन कर दी गई है।
7: अच्छा ठीक है, नमाज बंद दवा हुई छे, এখন আগে আগে কি বল, আমাদের তো কোনো খবর দিন।
8: जब विजिबिलिटी जीरो हो जाता है, उस समय हमारा दमदम एयरपोर्ट में फ्लाइट लैंड नहीं कर पाते, एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है। ये कोई मंदिर मस्जिद का लड़ाई झगड़े में जाना नहीं चाहिए, उसका भी सेफ्टी का व्यवस्था हो रहा है।
0: आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है, तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं और उन्होंने अभी तक जो फैसले किए हैं वो भी सब चर्चा का विषय बने हुए हैं। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा और अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गायों के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत।
9: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस।
0: और अब कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बांकरा मस्जिद में नमाज पर रोक को लेकर शुभेंदु अधिकारी का फैसला विवाद और चर्चा का विषय बन गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
10: और अब बात यूपी में मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि की। अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में अयोध्या की तरह कार सेवा की घोषणा की है। 9 अगस्त को इस कार सेवा का ऐलान किया गया है, तो क्या अब अयोध्या की तरह मथुरा की बारी आने वाली है?
0: अयोध्या के बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा, 13 अखाड़ों ने शुरू की कार सेवा की तैयारी, सियासत भारी, चढ़ावा चोरी कांड पर गरजने वाले विपक्ष की काट मिल गई, अखिलेश के लिए सीएम योगी के चैलेंज का टाइम आ गया। 9 अगस्त को मथुरा में क्या क्या होने वाला है, अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष ने गरजना शुरू किया और अखिलेश ने चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाया, तो सीएम योगी ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि वाला चैलेंज दे दिया।
11: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए,
12: हमारे घर के पास वो बहुत है, वो और हर दिन राधे राधे कहते हैं।
13: श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे।
14: राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाए जाए।
0: अब सवाल ये है कि अयोध्या पर बीजेपी को घेरने वाले अखिलेश यादव क्या कृष्ण जन्मभूमि पर घेरेंगे, क्योंकि अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा का आह्वान हो चुका है और बाकायदा इसके लिए तारीख का ऐलान भी हो चुका है। 9 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा का ऐलान किया गया है।
15: सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें, और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहाँ बनना है उसको बना के रहेंगे, ये भी आस्था रखते हैं, सभी वहाँ पहुँचेंगे और सबकी एक ही डिमांड है कि हमारा मंदिर का निर्माण तुरंत हो जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं।
0: ये महंत रविंद्र पुरी की घोषणा है, उस अखाड़ा परिषद की घोषणा है जो देश के 50 लाख से अधिक साधु संतों सन्यासियों और नागाओं की प्रतिनिधि संस्था है। 7 शैव उपासक संप्रदायों, 3 वैष्णव संप्रदायों और 3 उदासीन अखाड़ों के कुल 13 अखाड़ों की ओर से आह्वान है कि 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा होगी।
16: भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, और निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए।
0: हालांकि साधु संतों ने अभी रूपरेखा नहीं बताई है। इस कार सेवा के लिए जिन लाखों साधु संतों को मथुरा में बुलाया जा रहा है उसमें क्या किया जाएगा, क्योंकि मथुरा में फिलहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर विराजमान है और पास की विवादित शाही ईदगाह मस्जिद में किसी तरह के निर्माण पर अदालत से रोक है।
17: भाई 9 अगस्त को जो कार सेवा होनी है उसमें समस्त भारत के लोग, समस्त सनातन धर्म प्रेमी और समस्त भगवान श्री कृष्ण के भक्त लोग उसमें भाग लेंगे। जिस प्रकार भगवान श्री राम का मंदिर बना है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बना।
0: अखाड़ा परिषद की योजना के मुताबिक 9 अगस्त को बड़ी संख्या में साधु संत सन्यासी दिल्ली से मथुरा की ओर कूच करेंगे। मथुरा पहुंचने के बाद जन्म स्थान के करीब कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगाया जाएगा। इसके बाद मंदिर परिसर के बाहर भजन कीर्तन और चालीसा पाठ आदि किए जाएंगे। जैसा कि सीएम योगी अखिलेश यादव को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में जुड़ने की चुनौती दे चुके हैं, क्या ये वही आंदोलन है जिसका ऐलान अखाड़ा परिषद ने किया है जिसके लिए कार सेवा शुरू हो रही है?
18: भारतीय जनता पार्टी ने गांव गांव में चंदा किया था, अभी तो उसका हिसाब किताब नहीं हुआ है। तो जहां जहां मथुरा का जो ये लोग नाम ले रहे हैं, सीधी सी बात है कि उसको भी सरकारी कब्जे की आहट के तौर पर देखा जाना चाहिए।
0: हालांकि इस पूरी योजना को विश्व हिंदू परिषद ने अभी तक कोई समर्थन नहीं दिया है और अखाड़ा परिषद की ओर से किए गए इस आह्वान से वीएचपी ने दूरी बनाए रखी है। लेकिन ये सच है कि बीजेपी के लिए मथुरा 2027 की चुनावी राजनीति की एक बड़ी धुरी साबित हो सकती है।
19: भाजपा मथुरा में एक बार फिर हिंदू भावनाओं को भड़काकर सत्ता का खेल खेलना चाहती है, लेकिन राम मंदिर निर्माण गवाह है कि वहां पर मंदिर बना माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। भाजपा ने तो ट्रिपल तलाक पर कानून बनाया लेकिन राम मंदिर का निर्माण कानून बनाकर नहीं किया।
0: हालांकि ब्रज का इलाका बीजेपी के लिए सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं बल्कि विकास के स्केल पर भी अहम है। खुद सीएम योगी 38 बार मथुरा वृंदावन के दौरे पर जा चुके हैं। योगी कैबिनेट में 12 मंत्री सिर्फ ब्रज क्षेत्र से आते हैं। 2022 में ब्रज क्षेत्र में बीजेपी को 53 तो अखिलेश को सिर्फ 12 सीटें मिली थी, जबकि 82 से 85% यादव वोट अखिलेश को ही मिले थे। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सुधरा और बीजेपी 53 सीटों से घटकर 42 विधानसभा इलाकों में ही बढ़त पा सकी, जबकि समाजवादी पार्टी 12 विधानसभा सीटों से आगे बढ़कर 23 विधानसभा इलाकों तक पहुंच गई। ऊपर से 2024 में इंडिया गठबंधन को करीब 87 से 89% तक यादव वोट मिले। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में हिंदुत्व की पेच पर सीएम योगी अपने चिर परिचित अंदाज में खेल रहे हैं। इस बीच मथुरा में साधु संतों की कार सेवा सीएम योगी के मिशन को पूरी धार देती हुई दिखाई देती है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
10: रुक रहे ब्रेक के लिए, खबरें जारी, आप देखते रहिए आज तक।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
21: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
22: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
23: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here.
24: France was +450 pre-tournament, but are now +135 to win the World Soccer Championship, and markets are giving them a 40% chance to win it all. They're a perfect 6-0 thus far and are 2 wins away from capturing the title.
23: This has been your official Odyssey Sports Match Day preview, brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
25: मंगल की कौन सी राशि का संबंध मस्तिष्क से और सरदर्द से होता है? मंगल की कौन सी राशि का संबंध अच्छे डॉक्टर से होता है? कौन सी है मंगल की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।

0: to 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: Jai Hind friends, Isaiyat, Sona, Masala ya Vistar. 1498 mein kya thi Vasco da Gama ki mancha? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक, तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।

अमेरिकी हमलों से फिर दहला ईरान। बंदर अब्बास, बुशहर किम और केशम द्वीप पर धमाकों की आवाज। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी बनाया निशाना। हॉर्मुज पर दो ऑयल टैंकरों पर मिसाइल अटैक, एक भारतीय नाविक की मौत, 8 घायल। यूएई ने ईरान पर लगाया आरोप, कहा क्रूज मिसाइल से किया गया हमला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आज से नाकेबंदी शुरू करेगा अमेरिका। ट्रंप ने जहाजों को सुरक्षा देने के बदले 20% टैक्स वसूलने का ऐलान किया। ईरान ने कहा किसी का दखल मंजूर नहीं। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में खींचतान जारी। आज दिल्ली में बड़ी बैठक की संभावना। भूपेश बघेल के फीडबैक पर हो सकती है चर्चा। और फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला आज डलस स्टेडियम में फ्रांस और स्पेन के बीच टक्कर। 20 साल बाद फुटबॉल आमने सामने होंगी दोनों टीमें। ईरान के दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास से तनाव बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक शहर में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किए गए हैं। पूरी बंदर अब्बास में विस्फोट हुआ है। विस्फोट के कारण नुकसान या हताहतों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही कई जहाजों को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान ने एक बार फिर कुवैत पर हमला किया है।

0: ईरान के सरकारी टीवी ने दावा किया है कि कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमले किए गए हैं। हॉर्मुज में अमेरिकी जहाजों को क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है। ईरान पर ताजा अमेरिकी हमलों से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर के बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि रात और कल हम देर ईरान पर जोरदार हमला करने वाले हैं। 17 जुलाई को पंजाब दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, रेल परियोजनाओं की सौगात देंगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे भारत एक्स 2026 का उद्घाटन। प्रदर्शन में लगेंगे हजारों स्टॉल, 20 से ज्यादा देशों के डेलीगेट, 7,000 से ज्यादा खरीदार शामिल होंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई गई, अब 27 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। राम मंदिर ट्रस्ट को भी नोटिस भेजा गया, इस मामले में 20 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया, 18 जुलाई तक ईमेल के जरिए आवेदन कर सकेंगे सभी कैंडिडेट। अयोध्या के मेयर गिरीश ने कहा कि जन्मभूमि क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण, मुआवजे या किसी भी जमीन की शिकायत का प्रशासन प्राथमिकता से समाधान करेगा, अन्याय नहीं होगा। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड पर कई अरब रुपए का घोटाले का आरोप लगाया, सीएम योगी को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की है। बद्रीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन हुआ, मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल की कोर्ट में पेशी की गई, 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, 16वें नंबर पर नरोत्तम मिश्रा का नाम है। दतिया में बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के नामांकन के बाद नरोत्तम मिश्रा संबोधन के दौरान भावुक हो गए, कहा गांव गांव जाऊंगा आशुतोष को जिताऊंगा। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद तारी हुसैन को दोषी करार दिया गया, आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में तो दिल्ली की अदालत ने दोषी करार दिया, 2020 दिल्ली दंगे में अंकित शर्मा की हत्या हुई थी। ताहिर हुसैन ने कहा कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे इंसाफ नहीं मिला। उद्धव ठाकरे ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा, दिल्ली में चल रहे कांग्रेस जनता पार्टी और सोनम वांगचुक के प्रदर्शन का समर्थन किया। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ का कहर देखने को मिला, भारत चीन सीमा के पास पारसी पार्लो इलाका जलमग्न हो गया, कुमे नदी का जलस्तर बढ़ गया, भूस्खलन से कई मार्ग बंद हो गए। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश से जल जमाव देखने को मिला, बेलटोला सर्वे इलाके में सड़कों पर पानी भरा, कई वाहन फंसे रहे। महाराष्ट्र के डोंबिवली अस्पताल में मारपीट का केस में शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे समेत 4 आरोपियों की जमानत पर आज सुनवाई होगी। आज पंजाब में कांग्रेस के संकट पर बड़ी बैठक के आसार हैं, राहुल गांधी खड़गे के सी वेणुगोपाल दिल्ली में बैठक की संभावना है। बैठक में पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल से मिले फीडबैक पर चर्चा हो सकती है। 2027 के राज्य चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में संकट को खत्म करने की तैयारी है। बिहार में बांकीपुर उपचुनाव में नितिन नवीन की आज से बैठक शुरू होगी, नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे बीजेपी अध्यक्ष। सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली, पुलिस जांच में अब तक कुछ भी नहीं मिला। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर के अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर हमला किया है। ईरान के बंदर अब्बास, किश्तवीप, केशम, अबू मूसा और बुशर पर हमला किया गया है। ईरानी समाचार एजेंसी के मुताबिक बंदर अब्बास के ईस्ट साउथ के इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। वहीं किश्तवीप पर 2 धमाकों की खबर है, साथ ही बुशर के जाम गवर्नमेंट में कई धमाकों की खबरें सुनाई दे रही हैं। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक हमले के बाद बंदर अब्बास में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया। तो वहीं ईरान अमेरिका जंग को लेकर के एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया है। ईरान ने एक बार फिर कुवैत पर हमला किया है। ईरान के सरकारी टीवी ने ईरानी सेना के हवाले से यह दावा किया है कि कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और उपकरणों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया गया है। साथ ही यह दावा किया गया है कि हॉर्मुज में अमेरिकी जहाजों पर क्रूज मिसाइलों से भी हमले किए गए हैं। ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं ईरानियन सरकारी टीवी के हवाले से, जब कुवैत पर हमले किए गए, खाड़ी के देशों पर हमले किए गए, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, इसकी तस्वीरें सामने। और ईरान ने इसके साथ ही वो जवाब भी दिया है कि हाल ही में इतने लंबे समय तक हमले झेलने के बाद क्या ईरान की मारक क्षमता कम हो गई है, क्या उसके मिसाइल प्रोग्राम पर कोई असर पड़ा है। तो प्रेस टीवी के हवाले से आ रही तस्वीरें कई सारे सवालों का जवाब दे रही हैं कि संभवतः ईरान ने इस ब्रेक के दौरान सीज फायर यानी जब तक युद्ध विराम था उसने खुद को रिकैलिब्रेट किया है और अब वो अमेरिकी हवाई हमलों का जवाब दे रहा है खाड़ी के देशों पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए। वहीं हॉर्मुज में दो तेल टैंकरों पर मिसाइल अटैक की भी खबर सामने आ रही है। यूएई ने ईरान पर हमले का आरोप लगाया है। यूएई का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल के टैंकरों को निशाना बनाया गया है जिस पर मिसाइलों से हमले किए गए हैं और इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई है, 8 लोग घायल हैं। यूएई ने बयान जारी किया है, उसने कहा है कि ईरानी सेना ने क्रूज मिसाइलों से हॉर्मुज स्ट्रेट में टैंकरों को निशाना बनाया है। यूएई रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये हमला ओमान के इलाके में किया गया। दोनों टैंकरों में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। तो यूएई ने बयान जारी किया है और पहली बार संभवतः अब तक ईरान अमेरिका के युद्ध के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में टैंकरों पर क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, उनको नुकसान पहुंचाया गया है। और अगर ऐसा है तो आप देखेंगे कि जल्दी ही एस्केलेशन और आगे बढ़ेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट लगातार अब जंग का केंद्र बना हुआ है। यूएई ने ईरान पर आरोप लगाया है हमले का और सबसे दर्दनाक खबर ये कि इस हमले में एक भारतीय नाविक की भी मौत हुई है, 8 इसमें घायल हुए हैं। और हॉर्मुज स्ट्रेट यानी निर्दोष नागरिक सेलर जो हैं, मैरीटाइम सेलर है, वो उसमें निशाना बन रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने ईरान के जिन इलाकों को निशाना बना, आपको भी दिखा देते हैं, सबसे ज्यादा दक्षिण जो तटीय इलाका है जो कि हॉर्मुज स्ट्रेट के बेहद करीब है, ऐसे में है बंदर अब्बास और उसी के साथ केशमदीप। ये वो इलाके जहां से वो पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान नियंत्रित करता है। लेकिन जैसे ही दक्षिण पश्चिम में आप जाते हैं, केशमदीप, किश्तदीप, अबू मूसा, ये तीन वो आइलैंड है जहां से वो आगे खाड़ी के दूसरे देशों पर भी नियंत्रण रख सकता है और वहां से वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। तो न सिर्फ स्ट्रेटेजिक लाइन, एनर्जी सप्लाई लाइन, बस कि इसके अलावा उन सारे आइलैंड को, तटीय शहरों को भी निशाना बनाया गया है जो अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने जब बीती रात ईरान पर हमला किया, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। आधी रात को ईरान के कई शहरों में धमाके सुनाई दिए हैं, किश्तदीप पर सुनाई दिए, बंदर अब्बास में सुनाई दिए, बुशहर में, आपको बता दें 3 दिन लगातार बुशहर में भी धमाके सुनने को मिले हैं। अमेरिका ने एक बार फिर इन हमलों को तीव्रता दी है। बीती रात ही भारतीय समयानुसार डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिए कि एक बार फिर हमला होगा और उसी के बाद ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा, पलटवार कर रहा है, और वो पलटवार कर रहा है खाड़ी के उन तमाम देशों को। तो ये वो शहर है जिनको निशाना बनाया गया था, यानी मिडिल ईस्ट में अब आग एक बार फिर युद्ध की धधक चुकी है और अब कोई नहीं जानता कि ये कहां रुकेगी। इसके पहले इस्लामाबाद टॉक्स हुए, बातचीत हुई, यहां तक कि मीडिएशन हमने देखा, दोहा में बातचीत हुई, स्विट्जरलैंड में बातचीत हुई, लेकिन एक बार फिर ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये प्रेस टीवी ने वो तस्वीरें जारी की हैं जब उसने कुवैत पर जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है उनसे हमले किए थे। यानी ईरान भी अपनी क्षमता ये दिखा रहा है कि वो अमेरिकी हमलों से नहीं डरेगा, लेकिन उधर अमेरिका भी रुकने को तैयार नहीं है, झुकने को, वो लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। तो एक तरफ अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन बड़ी खबर इस बीच ये भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से 20% टैक्स लेने का ऐलान कर दिया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लिखा था, आपको भी पढ़ा देते हैं, वो भी बता देते हैं। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर अब अमेरिका टैक्स लेगा। वो कह रहे हैं कि अब अमेरिका गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज है। देखिए, ये उन्होंने थोड़ा सोशल पर लिखा था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, खुला रहेगा, ईरान चाहे या नहीं, हम ईरानी ब्लॉकेड को फिर से लागू कर रहे हैं। यानी ईरान की बाड़ेबंदी फिर शुरू हो गई हॉर्मुज में। ईरानी जहाज अब इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, कोई जहाज ना ईरान जा पाएगा ना निकल पाएगा, लेकिन बाकी देशों के लिए ये मार्ग खुला है और अब ये अमेरिका को हॉर्मुज का गार्जियन कहा जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब इसकी सुरक्षा बनाए रखने की लागत की भरपाई के लिए सभी को 20% टोल टैक्स देना पड़ेगा। यानी अमेरिका कह रहा है कि टोल टैक्स, लेकिन ईरान ने भी जवाब दिया है। ईरान ने ट्रंप के दावे का मजाक उड़ाया, सिर्फ खारिज नहीं किया है। तो अब्बास अराग्ची क्या कह रहे हैं, आपको भी बता देते हैं। अब्बास अराग्ची ने कि ईरानी विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी हॉर्मुज से कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराता है उसे इसके लिए टोल मिलना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ईरान हमेशा से समुद्री मार्ग का गार्जियन रहा है। तो ईरान ने न सिर्फ अमेरिका का मजाक उड़ाया, ट्रंप का मजाक उड़ाया, बल्कि ये भी कहा कि दरअसल ईरान पर जो नियंत्रण है वो उसी के हो गया। क्या कहा अब्बास अराग्ची ने, ये उनका सोशल मीडिया पोस्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी हॉर्मुज से जहाजों को सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराता है उसे टोल मिलना चाहिए। आपको याद हो, अमेरिका पहले भी, ईरान ने पहले भी कहा था कि इस मार्ग से हम एक ग्रीन टैक्स लेंगे, उसी के साथ इस मार्ग का गार्जियन ईरान रहा है, आगे भी रहेगा, लेकिन 20% टोल बहुत ज्यादा है, ईरान इस मामले में निष्पक्ष रहेगा। देखिए, सीधे सीधे चुटकी ली है ट्रंप पर, ये उसका विश्वास भी दिखाता और ये भी बताता है कि वो अमेरिका के इस दावे को, हॉर्मुज पर नियंत्रण के दावे को वो बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता है। तो यानी हॉर्मुज जो कि जंग का केंद्र बना हुआ है उन इलाकों में जहां हमले हो रहे हैं, यानी इन्हीं इलाकों का इस्तेमाल दरअसल और अलग अलग जगहों का इस्तेमाल अमेरिका पर ईरान कर रहा हमलों के लिए, तो अब उसकी कमर तोड़ी जा रही है इन जगहों पर जहां पर ईरान के स्ट्रेटेजिक डिफेंस लाइन और उसकी ऑफेंसिव लाइन को वो नेस्तो नाबूद कर रहे हैं। दो तस्वीरों के जरिए, एक तरफ आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर हमले हुए हैं और दूसरी तरफ प्रेस टीवी ने वो तस्वीरें जारी की हैं जहां से वो अमेरिका पर हमले कर रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी, जवाबदेही पर उठते सवालों का जवाब देने की जगह संवेदनहीनता दिखाते हैं, हंसने लगते हैं। 18 गर्भवती महिलाओं की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने हाथ हिलाकर कह दिया, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बता दें, दो महीने में 4 जगहों पर राजस्थान में 18 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई है और ये सरकारी अस्पतालों में हुई है।
1: दो दिन के बाद बाकी सब ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद,
2: संवेदनहीनता, शर्मनाक, अपमानजनक, लापरवाह, मौत पर तमाशा, मौत पर चुभने वाली हंसी, ये सारे शब्द इस वक्त जिस शख्स के लिए कहे जा रहे हैं, इनका नाम गजेंद्र सिंह खींवसर है। राजस्थान के ये वो अयोग्य स्वास्थ्य मंत्री हैं जो राजस्थान में दो महीने के भीतर 18 गर्भवती महिलाओं की सरकारी अस्पताल में मौत पर पूछे जाते सवालों पर हंसते, ठहाके लगाते उठते हैं, कह देते हैं जवाब अब ब्रेक के बाद,
1: ब्रेक के बाद।
2: जिनके परिवार अपने घर की गर्भवती बहू बेटी की मौत सरकारी अस्पताल में होने से टूट गए, उन परिवारों को मौत की असली वजह बताने की जगह मिलती है स्वास्थ्य मंत्री की चुभने वाली हंसी। पहले कोटा, फिर बीकानेर, फिर बांसवाड़ा, फिर भीलवाड़ा तक, मई से अब 9 जुलाई तक 18 गर्भवती महिला अचानक कैसे जान गंवा दे रही। कोटा में तो हाल ये कि जिन गर्भवती महिलाओं की किडनी सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान खराब हो गई, डायलिसिस वो 2 महीने से करा रही, उनके घर वाले बताते हैं टूटती जा रही है उनकी आस, जो करने लगी है सरकार से गुहार कि किडनी ट्रांसप्लांट कराए सरकार या जहर दे दे।
3: हर 2 दिन बाद तो इनकी डायलिसिस होती है और डायलिसिस के दौरान भी पीड़ा से ही गुजरती है, बीपी बढ़ जाता है, सर्दी लगती है, सर फटने लग जाता है, उल्टियां करती है, उस दिन खाना भी नहीं खाती है, डायलिसिस के नाम से डरने लग गई है, बोलते कि सच्चा तो हम मर जाए जो बढ़िया, ताकि हम डायलिसिस नहीं कराएंगे।
2: मई महीने से मौत के केस लगातार आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को हंस कर जाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि लगातार ये पल्ला झाड़ते आए हैं। जैसे पहले दावा कर दिया कि मौत की वजह गर्मी और डिहाइड्रेशन है, जबकि मौत अब भी हो रही है।
4: पहले हमने देखा शायद गर्मी से भी कुछ हो सकता है, डिहाइड्रेशन से भी हो सकता है, गर्मी भी चली गई, आपके मानसून आ गया, तो इसको हमें क्रैक करना पड़ेगा।
2: एक स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने में अगर मौत की वजह नहीं पता कर पा रहे तो क्या इनकी कोई जवाबदेही नहीं है?
4: एक डेथ यहाँ हो जाए, एक डेथ वहाँ हो जाए, वन हम कहते हैं कि भाई बहुत गंभीर हालत में आई तो सब गंभीर में थी, पर ये जो क्लस्टर में डेथ हो रही है ना, ये एक टाइप की मिस्ट्री बनी हुई है जिसकी हमें इसका निचोड़ के, हमें इसका जो कारण क्या है वो हम सब एक्सपर्ट से सब करके, हमें बाहर से भी इन्वेस्टिगेशन कोई एक्सपर्ट टीम से कराना पड़े, एम्स वाले आ चुके हैं, ये थोड़ा एक रहस्य है कि मतलब मिस्टीरियस है कि क्लस्टर में हो रही है।
2: इसके बाद मंत्री बैठक करने के बाद भी वजह नहीं खोज पाए तो कांग्रेस राज की मौतों के आंकड़े याद कराने लगे।
4: 2011 में जोधपुर में 18 डेथ हुई थी कि नहीं हुई थी? 18 डेथ हुई थी जोधपुर के अंदर 2011 के अंदर, हुई थी नहीं हुई थी ये आपको मालूम नहीं है?
5: ये 13 डेथ
4: है। अरे 18 कैसे हो गई?
2: इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और पूरा स्वास्थ्य विभाग सीधे मरीजों की हालत को ही उनकी मौत के लिए जिम्मेदार बताने में जुट गया।
4: मेरा जो भी एक्सपीरियंस एज ए मिनिस्टर रहा है, नंबर 1 सबसे ज्यादा आते हैं रेफरल केसेस, नंबर 2 आते हैं सबसे बिगड़े हुए केसेस, जो जहां पे प्राइवेट वाले हाथ ऊंचे कर लेते हैं या पैसे ज्यादा मांगते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं।
2: सवाल है कि जहां सबसे ज्यादा रेफरल केस आते हैं जैसे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, वहां गर्भवती महिलाओं की मौतें नहीं हो रही, जबकि छोटी जगहों पर ये दर्दनाक मौत हो रही है। जहां मौत होती है वहां जाकर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था सिस्टम ठीक करने लगती, बाकी 2 दवा नकली मिली तो उस पर भी बचाव की दलील खोज ली गई है।
5: ऑक्सीटोसिन के अंदर जो कंपनी से रिपोर्ट आई थी उसमें ये था कि ऑक्सीटोसिन कंटेंट नहीं था, तो कोई चीज में कंटेंट नहीं होना कोई नुकसानदेह नहीं। पानी किसी को लगाओगे तो कोई मरेगा नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ, कोई उसकी सब स्टैंडर्ड हो सकता है।
2: इतना सब कुछ बोलकर आगे दो दिन अस्पतालों के दौरे पर रहने का दावा करके स्वास्थ्य मंत्री उठे, हंसे और कह दिया कि बाकी सब कुछ ब्रेक के बाद।
1: ब्रेक के बाद
6: मंत्री जी जवाब सुनो।
1: ब्रेक के बाद
2: बाकी जनता का राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था में भगवान मालिक है। जहां 18 मौत के बाद मंत्री शर्मनाक तरीके से गंभीर मुद्दे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसते हो, जहां जवाब देने की जगह रैली की तरह हाथ हिलाकर चलते बनते हो। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भर दिया। नामांकन के वक्त जबरदस्त हंगामा देखने को मिला जब तेज प्रताप की पार्टी के प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया।
7: पटना में डीएम ऑफिस के बाहर हंगामा बरपा है। जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीणा मानवी अपना नामांकन भरने पहुंची थी, मगर पुलिस ने उन्हें यहीं गिरफ्तार कर लिया।
8: मैं समझ रही थी मेरे साथ कुछ ऐसा होना है, कुछ ना बताइए, एक महिला से ये लोग डर गया। कब का कौन सा केस खोल के, मतलब बीजेपी के पास यही कार्य बच गया कि एक महिला तक को ये लोग नहीं छोड़ते, मुझे नहीं पता भैया।
7: गिरफ्तारी के बाद यहाँ हंगामा मच गया।
9: जो हंगामा हुआ उसमें लगातार जो वीणा मानवी है वो कह रही थी कि उन्होंने अपने खिलाफ जो भी मुकदमे हैं उसकी जानकारी दी है, लेकिन उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो यहाँ बेहद अफरा तफरी का माहौल, और हालांकि प्रशांत किशोर अभी नामांकन कर रहे हैं जो जनराज के कैंडिडेट हैं, और वीणा मानवी जिन्होंने थोड़ी देर पहले नामांकन किया उनकी गिरफ्तारी यहाँ हो गई।
7: वीणा मानवी की बेटी कहती है कि जो भरत तिवारी के साथ हुआ वही उनकी माँ के साथ करना चाहती है पुलिस।
10: तिवारी के साथ जो हुआ ना वो मेरी माँ के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि 20 साल से वो समाज के लिए आवाज खड़ा कर रही है। वो निर्दलीय नहीं सक्षम थी, नहीं लड़ने देता कोई, तो जेजेडी पार्टी से खड़ी हुई, नॉमिनेशन 3-4 बार रोकने की कोशिश की।
7: जेजेडी के मुखिया तेज प्रताप भी कहते हैं कि साजिश के तहत उनकी प्रत्याशी की गिरफ्तारी हुई है।
11: सरकार की तरफ से साजिश किया गया है, हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर फंसाया गया है, और ऐसा कोई मामला नहीं है, और ये आधी आबादी की बात कर रही थी।
7: इस हंगामे के पहले बीजेपी के नीरज सिन्हा नामांकन करने इस तरह से पहुंचे, ढोल नगाड़े और रोड शो के साथ नीरज सिन्हा ने नामांकन भर दिया। प्रशांत किशोर भी इसी तरह के रोड शो के साथ नामांकन करने पहुंचे। ये तब की तस्वीर है जब पीके नामांकन कर रहे थे। नामांकन के बाद उन्होंने जीत का भरोसा जताया।
12: जनता मालिक है, जनता का गढ़ है, जनता को तय करना है कि ये किसका गढ़ होगा। ये जो बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में नेतृत्व बदलने का चुनाव है।
7: बांकीपुर का मुकाबला त्रिकोणीय है। बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होने हैं, 3 अगस्त को परिणाम आएंगे। देखना होगा कि बांकीपुर में बीजेपी अपना गढ़ बचाती है या पीके उसे फतह करते हैं। शशि भूषण सिंह, पटना आज तक।
0: वक्त एक ब्रेक का है, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
14: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
15: Terms apply. Visit wellsfargo.com/depositdisclosures for fees and details. TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
16: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen. And you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
17: मंगल की कौन सी राशि का संबंध मस्तिष्क से और सरदर्द से होता है? मंगल की कौन सी राशि का संबंध अच्छे डॉक्टर से होता है? कौन सी है मंगल की राशियां और क्या है उनका प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
14: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
18: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
19: Presented by
13: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

अमेरिकी हमलों से फिर दहला ईरान। बंदर अब्बास, बुशहरकिम और केशम द्वीप पर धमाकों की आवाज। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी बनाया निशाना। हॉर्मुज पर दो ऑयल टैंकरों पर मिसाइल अटैक, एक भारतीय नाविक की मौत, 8 घायल। यूएई ने ईरान पर लगाया आरोप, कहा क्रूज मिसाइल से किया गया हमला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आज से नाकेबंदी शुरू करेगा अमेरिका। ट्रंप ने जहाजों को सुरक्षा देने के बदले 20% टैक्स वसूलने का ऐलान किया। ईरान ने कहा किसी का दखल मंजूर नहीं। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में खींचतान जारी। आज दिल्ली में बड़ी बैठक की संभावना। भूपेश बघेल के फीडबैक पर हो सकती है चर्चा। और फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला आज डलस स्टेडियम में फ्रांस और स्पेन के बीच टक्कर। 20 साल बाद फुटबॉल आमने सामने होंगी दोनों टीमें।

आपका आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे मंगल की राशियों के बारे में। कौन सी हैं मंगल की राशियां, इनकी विशेषता क्या है, इनका प्रभाव क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, दोपहर 3:12 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं 6:48 तक। राहु काल का समय 3:04:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं मंगल की राशियों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि मंगल की राशियां कौन सी हैं और इनकी विशेषता क्या है। देखिए, मंगल शुद्ध रूप से अग्नि तत्व का ग्रह नहीं है। मंगल का कुछ हिस्सा जल तत्व का भी है, 80% अग्नि और लगभग 20% मंगल के अंदर जल भी पाया जाता है। मंगल की दो राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मेष राशि के साथ मंगल अग्नि तत्व का होता है, क्योंकि मेष राशि अग्नि की राशि है। वहीं वृश्चिक राशि चूंकि जल की राशि है, इसलिए वहां पर मंगल जल तत्व है। वैसे तो मेष और वृश्चिक दोनों मंगल की राशियां हैं, लेकिन मेष राशि मंगल को ज्यादा प्रिय है, मंगल के ज्यादा निकट है। और दोनों राशियां मंगल की होने के बावजूद मेष और वृश्चिक के गुण, इनका स्वभाव और इनका जीवन बिल्कुल अलग अलग होता है। मंगल की राशियों पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, लेकिन निर्णयों में आज

करिएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना मिल सकती है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब हम बात करते हैं मंगल की पहली राशि के बारे में जिसका नाम है मेष राशि। क्या विशेषताएं हैं इसकी? मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और 12 राशियों में सबसे पहले जो राशि आती है वो है मेष राशि। मेष राशि सूर्य की सर्वाधिक प्रिय राशि है। सूर्य मेष राशि में बड़े ताकतवर हो जाते हैं। मेष राशि में ऊर्जा, साहस, नयापन और चंचलता पाई जाती है। मेष राशि जो है ये आपके ब्रेन से, आपकी खोपड़ी से सीधा संबंध रखती है। माइग्रेन होना, सर में चोट लगना, बुद्धि का भ्रमित होना, ब्रेन का काम ना करना, ये सब मेष राशि के अंदर आता है। मेष राशि बड़ी ऊर्जावान राशि है और मेष वाले जल्दी मेहनत करने से थकते नहीं हैं। और जीवन में नया करना, जीवन में कुछ नया सोचना, ये मेष वालों का गुण है। इस राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है अस्थिर दिमाग। मेष का दिमाग बहुत चंचल होता है। आप देखेंगे कि ज्यादातर मेष राशि के जो बच्चे होते हैं उनका पढ़ाई में दिमाग जल्दी स्थिर नहीं होता है। अगर आपकी राशि मेष है या लग्न मेष है तो सलाह लेकर आपको एक मोती पहननी चाहिए और नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाएं। सूर्य देव की उपासना करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मंगल की राशियों पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, अभी काम में किसी तरह की जल्दबाजी ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें,

काम से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

जाएगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

रुकावट दूर होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न बसंत ने हमें लिखा है और बसंत जी हमें कोलकाता पश्चिम बंगाल से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 अप्रैल 1970, जन्म का समय सुबह के 6 बजे, जन्म का स्थान है हावड़ा कोलकाता पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मेरी नौकरी अभी अभी छूटी है और मेरे पास एक दूसरी नौकरी का ऑफर है, लेकिन उसके लिए मुझे कोलकाता से दूर जाना पड़ेगा, तो क्या इस समय स्थान बदलना और नौकरी ले लेना सही रहेगा, और अगर मैं बाहर जाता हूं तो कोलकाता वापस कब तक आ सकूंगा। बसंत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ये जो समय चल रहा है ये आपकी नौकरी और स्थान में परिवर्तन का समय है। अगर आप नौकरी बदलते हैं, जगह बदलते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, उसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको अभी 2-2.5 साल अपने नेटिव प्लेस से कोलकाता से बाहर रहना पड़ेगा। 2028 के मई के बाद आप वापस कोलकाता आ सकेंगे ऐसी संभावना बन रही है, लेकिन नौकरी आपको ले लेनी चाहिए, चेंज ऑफ प्लेस कर लेना चाहिए। अपने बेहतर स्वास्थ्य और अपने बेहतर जीवन के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं मंगल की दूसरी राशि के बारे में। मंगल की दूसरी राशि है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल ही हैं और वृश्चिक राशि चंद्रमा के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं होती। चंद्रमा इस राशि में बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं उनके अंदर कला का, लेखन का, शिक्षा का और राजनीति का गुण पाया जाता है। वृश्चिक राशि के लोग बड़े अच्छे डॉक्टर, बड़े अच्छे एजुकेटर या टीचर और बहुत अच्छे पत्रकार भी होते हैं। वृश्चिक राशि वालों को ऐसा देखा गया है कि अक्सर माता का सुख अच्छा नहीं मिलता, माता का सुख इनके जीवन में कम होता है, लेकिन वृश्चिक राशि वालों को अच्छा जीवन साथी मिलता है ऐसा देखा गया है। आपके शरीर में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं, उसका स्वामी वृश्चिक है और वृश्चिक राशि बड़ी पॉइजनस, बड़ी जहरीली राशि भी है। अगर कुंडली में वृश्चिक राशि में पाप ग्रह बैठे
तो नशा करने की आदत या गलत रास्ते पे चलने की आदत हो सकती है। वृश्चिक वालों की सबसे बड़ी समस्या है प्रतिशोधात्मक प्रवृत्ति। इनके अंदर बदला लेने की आदत होती है। अगर कोई बात इनके दिमाग में बैठ गई है तो जब तक उसका बदला नहीं ले लेंगे तब तक ये चैन से नहीं बैठेंगे। इनको सलाह लेकर एक मूंगा या एक माणिक्य पहनना चाहिए। मूंगा या माणिक्य पहनना अच्छा होता है। और वृश्चिक वाले जितना शिव जी की उपासना करें उतना ही ज्यादा इनका कल्याण होगा। मंगल की राशियों पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

रखें, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

प्राप्त होंगी। परिवार में समस्याओं से बचें। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। देखिए, अगर आपकी राशि मेष है तो आपको हड्डियों में दिक्कत हो सकती है, मन के कॉन्सेंट्रेशन की समस्या हो सकती है, बार बार चोट चपेट दुर्घटना की संभावनाएं बन सकती हैं और इस समय आपके करियर में उतार चढ़ाव आ सकता है। तो अगर आपकी राशि मेष है और आपके जीवन में समस्या आ रही है तो क्या उपाय करेंगे ताकि समस्या दूर हो जाए? अगर आपकी राशि मेष है और आपके जीवन में समस्या आ रही है तो ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक हनुमान जी की उपासना आपको करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा और संकट मोचन हनुमानाष्टक का आपको पाठ करना चाहिए और जब भी मौका मिले सप्ताह में एक दिन दो दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करना चाहिए। और मेष राशि वाले समस्या से बचे रहें इसके लिए उनको नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए और मेष राशि वालों को अपने खान पान में पूरी सात्विकता बनाए रखना चाहिए। खान पान को सात्विक बनाए रखें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। अब अगर आपकी राशि वृश्चिक है, आप मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, करियर में उतार चढ़ाव है या वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ रहा है इस समय, अगर आपके जीवन में समस्या आ रही है तो क्या उपाय करेंगे? देखिए, जितने भी दिन आपके जीवन में समस्या है, जितने भी दिन आपके जीवन में मुश्किल है, अधिक से अधिक शिव जी की उपासना आपको करनी चाहिए। एक नियम बना लें, रोज सुबह एक लोटा जल अपने घर से भरकर ले जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाएं और इसके बाद सुबह के समय जितना ज्यादा कर सकें नमः शिवाय का जप करें। एक चांदी का बेलपत्र बनवा लें, इसको शिवलिंग पर अर्पित करें और अर्पित करने के बाद इसको हमेशा अपने पास रखेंगे तो इनके लिए काफी बेहतर होगा। देखिए, वृश्चिक और मेष राशि दोनों मंगल की राशियां हैं, लेकिन मेष राशि मंगल की पॉजिटिव राशि है और वृश्चिक राशि मंगल की निगेटिव राशि है। वृश्चिक राशि अगर गड़बड़ होगी तो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिक्कतें होंगी, आपको नशे की आदत पड़ सकती है या आप जहर के पॉइजन के शिकार हो सकते हैं या उल्टी सीधी चीजों को खाने की टेंडेंसी हो सकती है। कुंडली में वृश्चिक राशि जहां भी स्थित है उसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपके जीवन का रहस्य क्या है और कौन सी चीज गोपनीय रूप से आपके जीवन में बनी रहेगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज के दिन की विशेषता क्या है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
मकर राशि, करियर में बदलाव हो सकता है इस समय। यात्रा की स्थिति बन रही है, परिवार के कामों में आज व्यस्तता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो रंग आज के लिए होगा फिरोजी।

ना करें, दौड़ भाग आपकी बढ़ेगी, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सामान्य स्थितियों में बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, बजरंग बाण हनुमान जी की एक बहुत अलग और विशेष स्तुति है। इसमें हनुमान जी को भगवान राम की शपथ दी गई है काम करने के लिए और अपने जीवन की बाधा को दूर करवाने के लिए। जब तक जीने मरने का प्रश्न पैदा ना हो, जब तक मामला बहुत ज्यादा जटिल ना हो, तब तक बजरंग बाण का पाठ मत करिएगा। सामान्य पूजा में हनुमान चालीसा पढ़ें, संकट मोचन पढ़ें, लेकिन रेगुलर पूजा में बजरंग बाण का पाठ ना करें। जीवन में मुश्किलें बहुत ज्यादा आ जाएं, तब आप ऐसी स्थिति में बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। नंबर 3, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 4, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, पारिवारिक समस्याओं पर ध्यान दें। नंबर 9, शिक्षा में सफलता मिलेगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें, आपके कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। अब वक्त हो गया है सक्सेस मंत्र का, तो आइए जानते हैं कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको हर काम में सफलता मिले। अगर आज कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए या चिकित्सा के लिए जाना है तो सिंदूर का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे।
अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो नारंगी रंग का रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा।

वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा। कन्या राशि वालों के लिए करियर में लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। और आज सावधान रहना होगा, मीन राशि वालों को सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना विशेष है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज अमावस्या की तिथि है। आज अपने पितरों का, पूर्वजों का स्मरण करें और आज अपने पूर्वजों के लिए सफेद वस्तुओं का दान करें, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

ईरान के दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास से तनाव बढ़ने की खबरें सामने आई हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक शहर में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किया गया। पूरी बंदर अब्बास में विस्फोट हुआ है। विस्फोट के कारण नुकसान या हताहतों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही कई जहाजों को भी निशाना बनाया गया। हॉर्मुज में यूएई के तेल टैंकरों पर ईरान ने हमला किया। एक भारतीय नाविक की मौत हुई है, 8 अन्य घायल हुए हैं। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने एक बार फिर कुवैत पर हमला किया है। वीडियो सामने आया। ईरान की सरकारी टीवी ने दावा किया है कि कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। हॉर्मुज में अमेरिकी जहाजों को क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। ईरान पर ताजा अमेरिकी हमलों के पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर के बड़ी धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा कि हम ईरान पर जोरदार हमला करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर अब 20% टैक्स लगेगा। ट्रंप ने जहाजों पर टैक्स लगाने को लेकर के कहा कि अमेरिका इस रणनीतिक समुद्री मार्ग की सुरक्षा करेगा, इसलिए सुरक्षा होने पर वाला खर्च आने वाला जहाजों से ही वसूला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट की भूमिका निभाएगा। यह टैक्स सभी कार्गो जहाजों पर लागू होगा जो ईरान के जहाजों को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देंगे। अमेरिका ने कहा कि आज से ईरानी पोर्ट्स की नाकेबंदी शुरू की जाएगी। यूएस नेवी ने इस बारे में जानकारी दी है। अमेरिका द्वारा सभी न्यूट्रल जहाजों को भी चेतावनी दी गई है कि नाकेबंदी लागू होने से पहले वो इस इलाके से बाहर निकल जाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दुनिया से हमारी सेना सबसे मजबूत है। आपने वेनेजुएला और ईरान के मामले में देख लिया है, हमें कोई दबा नहीं पाया बल्कि हम उन पर दबाव डाल रहे हैं। आईआरजीसी ने कहा है कि हॉर्मुज में दखल देकर अमेरिका ने दुनिया भर में तेल गैस सप्लाई को खतरे में डाल दिया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची ने कहा कि ईरान हमेशा से हॉर्मुज का संरक्षक रहा है और आगे भी रहेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में अराग्ची ने 20% शुल्क को ज्यादा बताते हुए कहा कि ईरान इस मामले में निष्पक्ष और उचित रुख अपनाएगा। हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस शिपिंग मार्गों में से एक है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब दौरा होगा। रेल परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे 110 साल पुराना जालंधर कैंट स्टेशन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसका आधुनिकीकरण किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी 17 जुलाई को मध्य प्रदेश के बालाघाट रेलवे स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। महाकौशल इलाके को मिलेगी बड़ी सौगात। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से शुरू होगा सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट। आज से 17 जुलाई तक चलेगा भारत टेक्स 2026 का यह कार्यक्रम। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे भारत टेक्स 2026 का उद्घाटन। प्रदर्शनी में हजारों स्टॉल लगेंगे। 20 से ज्यादा देशों के डेलीगेशन आएंगे। 7,000 से ज्यादा खरीदार भी इसमें शामिल होंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। 27 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सबकी दोबारा पेशी होगी। चढ़ावा चोरी मामले में एससी का केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस। एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई। अदालत ने सीसीटीवी सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए। राम मंदिर ट्रस्ट को भी कोर्ट ने नोटिस भेजा। इस मामले में 20 जुलाई को अगली सुनवाई होने वाली है। ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। 18 जुलाई तक ईमेल के जरिए सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड पर कई अरब रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। सीएम योगी को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की है। अयोध्या के मेहर गिरीश ने कहा है कि जन्मभूमि क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण मुआवजे या किसी भी शिकायत का प्रशासन अप्राथमिकता से समाधान करेगा। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। बद्रीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन हुआ। मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल की कोर्ट में पेशी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेजा गया। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी को लेकर के अब गणेश गोदियाल और हेमंत द्विवेदी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीकेटी अध्यक्ष हेमंत का इस्तीफा मांगा है। सीएम धामिका, बद्रीनाथ धाम में दान चोरी मामले पर कड़ा प्रहार। बोले दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। नरोत्तम मिश्रा का नाम 16वें नंबर पर है। दतिया में बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के नामांकन के बाद नरोत्तम मिश्रा संबोधन के दौरान भावुक हो गए। कहा, गांव गांव जाऊंगा, आशुतोष को जिताऊंगा। पटना के बांकीपुर सीट में पर्चा भरने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि यह केवल उपचुनाव नहीं है बल्कि यह बिहार में नेतृत्व बदलने का चुनाव है। भरत तिवारी एनकाउंटर केस की जांच तेज हो गई है। न्यायिक जांच आयोग कार्यालय के सामने 3 अहम गवाहों की गवाही भी दर्ज की गई। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की। अनुसूचित जातियों के कल्याण और शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों पर चर्चा की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने अपने निर्वाचन क्षेत्र पेरम्बूर गए। जन शिकायत ऐप की शुरुआत वहीं से की। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार दिए गए हैं। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी करार दिया गया है। 2020 दिल्ली दंगे में अंकित शर्मा की हत्या हुई थी।
ताहिर हुसैन समेत पांच को अदालत ने दोषी करार दिया, छह आरोपी बरी हो गए। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। फैसले के बाद ताहिर हुसैन ने कहा कि मैं बेगुनाह हूं और मुझे इंसाफ नहीं मिला। बीजेपी का आरोप है कि आपने ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिश की, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने 2020 के दंगे पर कहा कि हिंदुओं के खिलाफ एक सोची समझी साजिश थी, ताहिर को बचा रही थी केजरीवाल की पार्टी। उद्धव ठाकरे ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा, दिल्ली में चल रहे कांग्रेस जनता पार्टी और सोनम वांगचुक के प्रदर्शन का समर्थन किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने एजेंडे को अलग रखकर इनके आंदोलनों के साथ खड़ा होना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि हमारी भावी पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की भी अपील की। महाराष्ट्र सरकार की लाड़की बहन योजना से 92 लाख लाभार्थी बाहर हो गए, ई केवाईसी फेल और आय सीमा मुख्य वजह बनी। महाराष्ट्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि किसी भी योग्य महिला के साथ अन्याय नहीं होगा। 15 लाख ऐसे आवेदक मिले हैं जो इनकम टैक्स देते हैं। महाराष्ट्र के डोंबिवली अस्पताल में मारपीट केस में शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे समेत चार आरोपियों की जमानत पर आज अदालत में सुनवाई होगी। पंजाब में कांग्रेस के सामने चल रहे संकट पर आज दिल्ली में बड़ी बैठक के आसार हैं। राहुल गांधी, खड़गे, केसी वेणुगोपाल बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में बैठक होने की संभावना जताई गई है। बैठक में पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल से मिले फीडबैक पर चर्चा हो सकती है और 2027 के राज्य चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में संकट को खत्म करने की तैयारी है। बिहार के बाकीपुर उपचुनाव में नितिन नवीन की आज बैठक होगी, नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे बीजेपी अध्यक्ष। सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली, पुलिस जांच में कुछ भी नहीं मिला। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ का कहर देखने को मिला, भारत चीन सीमा के पास पास्तीपाल इलाका जलमग्न हुआ, कुमे नदी का जलस्तर बढ़ा, भूस्खलन से कई रास्ते बंद हो गए। अरुणाचल के सीमावर्ती कस्बे में बाढ़ से हालात गंभीर हैं, प्रशासन ने अलर्ट किया है, लोगों को नदी किनारे दूर रहने की सलाह दी गई है। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश से जलभराव हो गया, बेलटोला सर्वे के इलाके में सड़कों पर पानी भर गया, कई वाहन फंस गए। उत्तरकाशी स्थित हरकीदून घाटी में भारी बारिश से पुल बह गया, सड़क मार्ग बंद होने से जेसीबी मशीन के सहारे उफलता नाला पार कर रहे हैं ग्रामीण और पर्यटक। देहरादून के विकास नगर में उफंती नदी के ऊपर ग्रामीणों ने खतरनाक पुल बनाया, वायरल वीडियो से सिस्टम की पोल खुल गई। देहरादून में सड़क निर्माण के दौरान मलबा गिर गया, 2 श्रमिकों को सुरक्षित वहां से रेस्क्यू किया गया। सिलगुड़ी के पास भूस्खलन हुआ है, सड़कें बंद हो गई हैं, यातायात बाधित है, तस्वीरें सामने आई। सूरत में आज तक की पड़ताल में खुलासा हुआ कि खाड़ी के ऊपर स्लैब डालकर स्कूल की पार्किंग बनाई, निर्माण को लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। उदयपुर में भारी बारिश के बीच सड़क धंस गई, गड्ढे में कार फंस गई, नगर निगम की लापरवाही पर सवाल उठे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कार ने पहले स्कूटी सवार को टक्कर मारी, फिर अनियंत्रित होकर स्कूल बस में जा घुसी, एक आदमी की मौत हुई। राजस्थान के बाड़मेर में तेज रफ्तार डंपर आगे चल रही कार में जा घुसी, 5 युवक घायल हो गए हैं, 5 युवक की मौत हो गई है, 3 घायल हो गए हैं। बांदा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, चित्रकूट जा रहे 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। गुजरात के भरूच में एक कंपनी में भीषण आग लग गई, करीब 10 श्रमिकों ने भागकर जान बचाई। भोपाल में दिन दहाड़े दुकान के बाहर बैठे कपड़ा कारोबारी पर चाकू से हमला हुआ, अचानक पीछे से आए 2 बदमाशों ने कई बार चाकुओं से वार किया, पुलिस ने जांच शुरू की। गुजरात के अंबाजी मंदिर में दान चोरी का पुराना सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है, युवक 500 के नोटों का एक बंडल अपने पैर के नीचे दबाते हुए दिखाई दिया। अकोला में नाले की खुदाई के दौरान पुराना हैंड ग्रेनेड मिला, बम निरोधक दस्ते ने उसे अपने कब्जे में लिया। इंदौर में मामूली कहासुनी में कार और स्कूटी सवार में विवाद हो गया, सड़क खड़े शख्स को हटने के लिए कहा तो युवक ने कार पर चढ़कर शीशा फोड़ दिया। जामनगर में हाईवे पर महिला को कार ने जोरदार टक्कर मारी, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के बांदा में नाले में डूबने से 2 बहनों की दर्दनाक मौत हो गई, खेलते समय गड्ढे में डूब गई थी बच्चियां। लखनऊ में सीएनजी सिलेंडरों से भरे ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी, 2 किलोमीटर दूर तक घसीटा, ट्रैफिक पुलिस ने जान बचाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बुजुर्ग पेंशनधारक के बैंक खाते में अचानक 70 करोड़ रुपए क्रेडिट हो गए, कुछ ही देर बाद बैंक खाते का बैलेंस फिर 0 हो गया। उड़ीसा के बालासोर में कारोबारी शेख हमीद हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य शूटर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, मामले की जांच जारी है। दांता के सरकारी अस्पताल में महिला मरीज को एक्सपायर हो चुकी बोतल चढ़ाई गई, सरकारी अस्पताल ने अपनी गलती बाद में मानी।
जयपुर में ट्रांसफार्मर में आधे घंटे तक भीषण धमाके होते रहे, आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकले, दहशत में थे। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। पाकिस्तान बेस हैंडलर का संपर्की मोहम्मद अहमद गिरफ्तार किया गया। आईबी, एटीएस, एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की। महाराष्ट्र के जालना के नवोदय विद्यालय में रैगिंग का मामला सामने आया है। नौवीं छात्र के कपड़े उथलवाने, मारपीट के आरोप में 11वीं के 7 छात्र सस्पेंड किए गए। महाराष्ट्र में खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन हुआ है। मिलावटी दूध और गंदे खाद्य कारोबार पर सख्त कार्रवाई हुई है। गुजरात के नवसारी में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट साइट से लाखों रुपए के लोहे के सरिये और अन्य सामान की चोरी हुई है। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। जूनागढ़ के चिड़ियाघर में पर्यटकों के खतरनाक करतूत, बाघ के बाड़े में कपड़ा फेंका, उकसाने के लिए भारी शोर मचाया। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए उड़ीसा फायर सर्विस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पूरी रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए 12,000 पुलिसकर्मी, ड्रोन और एंटी ड्रोन उपकरणों की भी तैनाती की गई है। अहमदाबाद से सामने आई सांप्रतिक सौहार्द की तस्वीर। जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले मुस्लिम समुदाय ने मंदिर को भेंट किया सोने चांदी का बना रथ और 3 घोड़े। अहमदाबाद के जमालपुर इलाके स्थित जगन्नाथ मंदिर में 16 जुलाई को निकलेगी 149वीं भव्य दिव्य रथ यात्रा। रथ यात्रा में हर साल हजारों लोग शामिल होते हैं। उदयपुर में भी जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 16 जुलाई को नगर भ्रमण पर निकलेंगे भगवान जगन्नाथ। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में आज फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। रात 12:30 बजे डल्लस स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। प्रवर्तक भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी इतिहास रच दिया है। लॉर्ड टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर दर्ज की ऐतिहासिक जीत। लॉर्ड टेस्ट में भारत की बेटियों ने दिखाया शानदार खेल। इंग्लैंड को पहली पारी में 170 और दूसरी पारी में 186 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। लॉर्ड टेस्ट में भारत ने पहली पारी में 285 रन और दूसरी पारी में 141 रन बनाकर घोषित की थी पारी। इंग्लैंड को दिया था 457 रन बनाने का लक्ष्य। लॉर्ड्स टेस्ट में यास्तिक भाटिया ने शानदार शतक बनाया। लॉर्ड्स में शतक बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी यास्तिका भाटिया। लॉर्ड्स टेस्ट में क्रांति गौड़ ने 5 विकेट झटके। शानदार खेल के लिए यास्तिका भाटिया और क्रांति गौड़ के नाम ऑनर बोर्ड पर दर्ज किए गए। अभिनेता और नेता विजय की फिल्म जननायकन को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है। नए पोस्टर में रौबदार अंदाज में नजर आएंगे थालापति। मुंबई में चाय और बन मस्का उठाते लुत्फ उठाते दिखे क्रिस्टोफर नोलन, टॉम हॉलैंड, मैट डेमन, इन दोनों ने भी देशी नाश्ता किया। ओटीटी पर रिलीज होगी तीसरी बेगम, 18 जुलाई से स्ट्रीम होगी केसी बुकाडिया की फिल्म वास्तविक घटना पर आधारित है। धुरंधर फिल्म सिंगर जैस्मिन सैंडल्स ने एक कॉन्सर्ट के बीच अपने मंगेतर से कराया परिचय, सगाई की अंगूठी दिखाई और कहा कि ये मेरा मैन है।

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
3: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
4: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: In association with
7: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
8: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
6: विमल बोलो जुबां केसरी हिंद बड़े आराम से।
9: उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े चेहरे, जनता के सबसे बड़े सवाल और आज तक की सबसे बड़ी पंचायत, 15 जुलाई लखनऊ।
10: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक, तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।

0: कहने को तो बांकीपुर में उपचुनाव होना है, मगर यहाँ की सियासी सरगर्मियाँ जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने ताल ठोकी है। उनके सामने अब बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार और आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता हैं। मगर बीजेपी मान के चल रही है कि बांकीपुर में पीके की हार तय है।
1: अब उनके पार्टी से कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था ये बाय इलेक्शन में बांकीपुर से, अपने कच्छा पिन के उतर गए क्योंकि कोई उम्मीदवार ही नहीं आ रहा था। अब ये जाएंगे तो जवाब देंगे, जवाब तो लोग देख रहा है, झूठ की खेती बार बार नहीं चलता।
0: बीजेपी के इस भरोसे के पीछे वो आंकड़े हैं जिनमें 3 दशक से बांकीपुर पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। यहाँ बड़ी तादाद में कायस्थ मतदाता हैं और वही बीजेपी की ताकत है, इसीलिए बीजेपी के सहयोगी दल भी भरोसे से भरे हुए हैं।
2: अरे उनको इस बात की समझ हो गई है कि यहाँ रह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता एनडीए के साथ।
0: कुल 11 प्रत्याशियों ने अब तक नामांकन दाखिल किया है जिसमें लालू प्रसाद नाम के एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है, मगर कांग्रेस ने अब तक अपने किसी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। अलबत्ता कांग्रेस कह रही है कि बांकीपुर से इस बार बीजेपी हारेगी।
3: पहली बार वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है सम्राट जी के नेतृत्व में और उनकी परीक्षा हो रही है। एक तो पहले उन्होंने ऐसा प्रत्याशी बनाया जो जिसपे करप्शन के चार्जेस थे, जिसके पिताजी पे करप्शन के चार्जेस थे, फिर जिनको अभी बदला उन पे भी कई तरह की कंट्रोवर्सीज हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी।
0: बांकीपुर का रण दिलचस्प है। देखना होगा कि पहली बार चुनावी रण में उतरे पीके क्या बीजेपी के गढ़ को फतह कर पाएंगे। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

जंग के बीच इसराइल में बजा चुनावी बिगुल, 38 साल बाद तय वक्त पर डाले जाएंगे वोट। 53 साल में पहली बार कोई सरकार अपना पूरा कर रही है कार्यकाल। जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग के हालात बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इसराइल में चुनाव का ऐलान हो गया है। इसराइल में 27 अक्टूबर को मतदान होगा। ऐसे में सबकी नजर नेतन्याहू के फिर से सत्ता में लौटने पर होगी। चुनावी तारीख के ऐलान के साथ साथ चुनाव तय समय पर कराने का फैसला भी लिया गया है। वहीं उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरी तारीख 7 सितंबर होगी। आपको बता दें, इसराइल की राजनीति लंबे समय से अस्थिर रही है। अक्सर गठबंधन टूटने, बहुमत खोने और वक्त से पहले चुनाव कराने पड़े हैं, लेकिन इस बार कोई सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद चुनाव में उतर रही है। ऐसा 53 साल बाद हो रहा है। चैनल 12 न्यूज के सर्वे की माने तो नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी और गादी आइजनकोट की पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। दोनों दलों को 120 सदस्यीय संसद में 23-23 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। इससे साफ है कि मुकाबला आसान नहीं रहने वाला। आज तक ब्यूरो। आयतुल्ला खामनेई के जनाजे में दिखा नकाबपोश। नकाबपोश शख्स को लेकर दुनिया भर में हुई चर्चा। अब सस्पेंस से उठ चुका है पर्दा। रिपोर्ट्स की माने तो खामनेई के जनाजे में पहुंचा नकाबपोश शख्स कोई और नहीं, मुस्तफा का सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद जवाद था। 28 फरवरी को हुए अमेरिकी हमले में खामनेई समेत उसके परिवार के कई लोगों की मौत हो चुकी थी। इस हमले में जवाद खामनेई को भी कई गंभीर चोटें आईं। रिपोर्ट्स की माने तो उनके चेहरे पर गंभीर चोटें थी, जिसकी वजह से जवाद ने अपना पूरा चेहरा ढका हुआ था। मुस्तफा को लेकर भी अब अटकलों का बाजार गर्म है। खामनेई की श्रद्धांजलि सभा में मुस्तफा के सामने आने के आसार। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा खामनेई एयर स्ट्राइक में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फिलहाल वो छिपकर अपना इलाज करा रहे हैं। खामनेई को इमाम रजा की दरगाह परिसर में बने मकबरे में दफनाया गया। वहीं खामनेई को सुपुर्दे खाक करने के बाद मुस्तफा का बयान सामने आया है, जिसमें बदला लेने और अमेरिकी राष्ट्रपति को सीधी धमकी दी गई है। अब देखना होगा कि मिडिल ईस्ट में ये जारी जंग कब खत्म होगी। आज तक ब्यूरो।

0: छतरी ना खोल बरसात में,
1: आहा भीग जाने दे
0: मेरी छतरी के नीचे आचा।
1: क्यों भीगे रे सलमा खड़ी खड़ी?
0: सलमा या कमला?
1: सलमा भी थी, कलमा भी होगी, कमला भी होगी।
2: अरे आप कमला गाओगे,
1: मैं सलमा,
2: ये सलमा गाएंगे।
1: कोई तो आगे और पीछा होगा।
0: मैं कमला पसंद, ये सलमा पसंद। नेताओं ने मिलकर ये ट्रस्ट बनाया है जिसमें लैक ऑफ ट्रस्ट जो है आजकल सबसे ज्यादा है, तो का ही कर सकते हैं आप। और सब लोग पल्ला झाड़ रहे हैं। संघ ने इधर लेटर जारी कर दिया,

0: ईरान से जंग में पूरी ताकत से उतरा अमेरिका, लगातार तीसरे दिन एयर स्ट्राइक, बंदर अब्बास, बुशहर, किश और केशम द्वीप पर बरसाया गया बारूद, ईरानी ड्रोन के खौफ से खाड़ी देशों में गूंजे सर। वहीं हॉर्मुज में यूएई के दो ऑयल टैंकर्स पर मिसाइल अटैक, एक भारतीय नाविक की मौत, 8 घायल, क्रूज मिसाइल से किया गया हमला, आईआरजीसी ने ली हमले की जिम्मेदारी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आज से फिर अमेरिकी नाकेबंदी, जहाजों को सुरक्षा के बदले 20% टैक्स वसूलेंगे ट्रंप, ईरान को दखल नामंजूर, तेल की कीमतों में लगातार उछाल। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में खींचतान जारी, आज दिल्ली में आलाकमान के साथ बड़ी बैठक की संभावना, भूपेश बघेल के फीडबैक पर हो सकती है चर्चा। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबला आज डलास स्टेडियम में, फ्रांस और स्पेन के बीच टक्कर, 20 साल बाद फुटबॉल आमने सामने होंगी दोनों टीमें।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। सुबह के 8 बजे हैं, वक्त हो गया है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे कि ईरान पर अमेरिकी स्ट्राइक से जुड़ी एक बड़ी खबर, और वही तस्वीरें ईरान की भी दिखाएंगे कि कैसे वहां पर तबाही मची है। युद्ध के बीच से एक हाहाकारी तस्वीर भी तेल टैंकर पर हमले की दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि हॉर्मुज में टैक्स वसूली की टेंशन आखिर क्यों बढ़ गई है। भारत ने एक बार फिर से आतंकवाद पर अपना रुख साफ कर दिया है, इसकी पूरी खबर आपको देंगे। खबर पंजाब की सियासत से जुड़ी भी होगी, जहां पर कांग्रेस की आपसी लड़ाई अब दिल्ली में आलाकमान की चौखट तक आ पहुंची है। आपको ये भी बताएंगे कि देश में बाढ़ और मानसून के क्या हालात है, और खबरें फीफा वर्ल्ड कप की भी होगी, बताएंगे पहले सेमीफाइनल में किसका पलड़ा भारी है।

0: है, कुवैत पर भी हमले किए जा रहे हैं। हॉर्मुज में अमेरिकी जहाजों पर भी ईरान ने हमला किया है। तो अमेरिका ने ईरान पर कहां कहां पर हमला किया है वो आपको जगह बताते हैं। देखिए, केशम द्वीप, बुशहर, किश द्वीप, अबू मूसा द्वीप और बंदर अब्बास, ये वो जगह है जहां पर ईरान में हमला किया गया है। बुशहर और केशम द्वीप जहां पर पहले से ही कई हमले दागे जा रहे थे, वहीं केश द्वीप और अबू मूसा द्वीप, ये दो वो जगह है जहां पर अब फिर से एक बार हमले शुरू कर दिए गए हैं, मिसाइलें दागी जा रही है। तो ये वो तमाम इलाके हैं। और यही नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसे इलाके हैं ईरान के जहां पर मिसाइल अटैक किया जा रहा है। अशरफ वानी जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। अशरफ, जो बुशहर है, बंदर अब्बास, इसके अलावा वो कौन सी जगह है जहां पर अमेरिका लगातार हमले दाग रहा है और इसके पलटवार में ईरान का क्या कुछ कहना है?
1: पूजा, दरअसल ये लगातार तीसरा दिन है जब सीज फायर के बाद अमेरिका ने ये ताजा हमले जो है ईरान के खिलाफ शुरू किए हैं। और अमेरिका का कहना है कि उनका जो प्लान है वो यही है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगातार वेसल्स और जहाजों को निशाना बना रहा है ईरान, उनकी उस क्षमता को खत्म किया जाए। तो इसीलिए जो हम देख रहे हैं कि जो हमले हो रहे हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तटों और बंदरगाहों पर भी ही सीमित है और द्वीपों पर जहां से IRGC स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है। लेकिन जवाबी कार्रवाई अगर ईरान की देखें तो लगातार जारी है। पिछले तीन दिन के दौरान हमने देखा जब भी अमरीका की तरफ से ईरान पर हमले होते हैं, कुछ ही घंटों में जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से US बेसिस के साथ साथ वेसल्स पर जो के रूट से निकलती हैं ओमान तट से, उन पर जो है हमले हो रहे हैं ईरान के। और जैसे आपने अभी कहा कि IRGC की तरफ से दो UAE
0: यानी अशरफ आपको रोकना चाहेंगे, इससे जुड़ी एक खबर आपको बता दें, ईरान अमेरिका जंग को लेकर एक और बड़ी खबर, ईरान ने बहरीन पर भी हमला किया है और इस हमले के बाद बहरीन में सायरन की आवाज सुनी गई है। बहरीन के एयर डिफेंस सिस्टम में कई हमलों को रोका गया। बहरीन सरकार की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि पिछले कुछ घंटों में देश के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के कई हवाई हमलों को रोका भी है और नष्ट भी कर दिया गया है। बहरीन एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमले रोके हैं और नष्ट भी किया है। तो ईरान पर ताजा अमेरिकी हमलों से पहले ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि आज रात और कल हम ईरान पर जोरदार हमले करने वाले हैं। ईरान के साथ हुआ समझौता एक टेस्ट था, उन्होंने उसका पालन नहीं किया। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा है कि दुनिया में हमारी सेना सबसे मजबूत है, 47 सालों से ईरान लोगों को धमकाता आ रहा है लेकिन अब वो नहीं कर पाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान की पिकेक्स माउंटेन नाम की किलेबंद जगह को निशाना बनाएगा और ये जगह नतांज परमाणु सुविधा के पास है और यहाँ पर जमीन के नीचे दो मजबूत सुरंग परिसर है और इसको अब अमेरिका निशाना बनाएगा।
2: We're hitting them very heavy tonight, as you know. We're hitting them. We have tremendous amounts of ammunition. We have numbers that we haven't had in years. And we're hitting them very hard, and it'll continue, and we'll see what happens. But we're knocking out all of their offensive capability. And we're controlling the straits. We're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through.
0: तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप का एक बड़ा ऐलान हुआ है। अमेरिका ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से 20% टैक्स लेने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका संभालेगा। उन्होंने खुद को गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट बताते हुए कहा है कि इस काम का खर्च उठाने के लिए स्ट्रेट से गुजरने वाले हर कार्गो पर 20% टैक्स लिया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान के जहाजों और उसके ग्राहकों पर रोक जारी रहेगी लेकिन बाकी सभी देशों के जहाज बिना किसी रुकावट के हॉर्मुज से गुजर सकेंगे। उनके मुताबिक नई व्यवस्था पर तुरंत काम शुरू किया जाएगा। तो खुद को गार्जियन ऑफ हॉर्मुज बताते हुए ट्रंप ने कहा है और ट्रंप ने इसको लेकर क्या कुछ पोस्ट किया है, 20% टैक्स की बात भी अब इसको लेकर कही गई है। ट्रंप ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है और खुला भी रहेगा, ईरान चाहे या नहीं, हम ईरानी ब्लॉकेट को फिर से लागू कर रहे हैं। ईरानी जहाज अब इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और बाकी सभी देशों के लिए ये मार्ग खुला रहेगा। तो अब से अमेरिका को हॉर्मुज का गार्जियन कहा जाएगा और सुरक्षा बनाए रखने की लागत की भरपाई के लिए सभी बड़ी कार्गो पर 20% टोल लिया जाएगा। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, ईरान ने हॉर्मुज को

के दावे का मजाक उड़ाया। विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी हॉर्मुज से कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराता है उसे इसके लिए टोल मिलना चाहिए। उन्होंने आगे तंज कसते हुए ये भी कहा कि ईरान हमेशा से समुद्री मार्ग का गार्जियन रहा है और आगे भी रहेगा। हालांकि 20% टोल बहुत ज्यादा है, हम इस मामले में निष्पक्ष रहेंगे। 20% टोल को लेकर अब ईरान ने क्या कहा है वो समझिए आप। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी हॉर्मुज से जहाजों को सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराता है उसे टोल मिलना चाहिए। तंज कसते हुए कहा गया है ईरान हमेशा से इस मार्ग का गार्जियन रहा है और आगे भी रहेगा। हालांकि 20% टोल जो कि ट्रंप कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा है और हम निष्पक्ष रहेंगे। तो ये ईरान का रुख है 20% टोल को लेकर। अब आपको बता देते हैं कि इन दावों के मुताबिक अमेरिका आज से हॉर्मुज में ईरानी पोर्ट्स की नाकेबंदी शुरू करेगा। अमेरिकी नेवी ने बयान जारी कर कहा है कि ईरान के बंदरगाहों और तटीय इलाकों की नाकेबंदी आज रात यानी कि 14 जुलाई को 8 बजे से शुरू हो जाएगी। साथ ही अमेरिका ने सभी न्यूट्रल जहाजों को चेतावनी भी दी है कि नाकेबंदी लागू होने से पहले वो इस क्षेत्र से बाहर निकल जाएं। बंदरगाहों और तटीय इलाकों की नाकेबंदी अब अमेरिका करेगा।

0: मिडिल ईस्ट में जंग अब और तेज होने वाली है। ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान हुआ आग बबूला। ट्रंप ने अमेरिका को बताया होर्मुज का रखवाला। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले कार्गो जहाजों से अमेरिका ने 20% टोल टैक्स लेने का ऐलान कर दिया है। खुद को गार्डियन ऑफ द होर्मुज स्ट्रेट बताते हुए जहाजों को सुरक्षा की जिम्मेदारी देने की भी बात कही। ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी सेनाएं भी एक्शन में आ गई हैं। आज से ईरानी पोर्ट्स की नाकेबंदी करेंगी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बयान जारी कर कहा, सभी न्यूट्रल जहाजों को चेतावनी दी गई है कि नाकेबंदी लागू होने से पहले वे इस क्षेत्र से बाहर निकल जाएं। वहीं ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान भड़क चुका है और अमेरिकी दखल को स्वीकार नहीं करने की कसम खा ली है। IRGC ने बयान जारी कर अमेरिका को धमकी देते हुए कहा, होर्मुज पर हम अपना अधिकार और नियंत्रण को बनाए रखेंगे। साथ ही दुनिया को मैसेज देते हुए कहा, होर्मुज में दखल देकर अमेरिका ने दुनिया भर में तेल गैस सप्लाई को खतरे में डाला। लगातार हो रहे हमले और धमकियों से मिडिल ईस्ट में जंग अब थमती नहीं दिख रही है। आज तक ब्यूरो।
1: तो दूसरी ओर सऊदी अरब ने यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हमला किया है। एयरपोर्ट पर गोले बरसते दिखे सऊदी के हमले में वहां पर भारी तबाही हुई है और इस पूरे हमले को लेकर यमन ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी के हवाई अड्डे को निशाना बनाया है और एयरलाइंस को सऊदी हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी भी दी गई है। हुती विद्रोहियों ने कहा है कि सऊदी के गुनाह के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान चलाया गया, उसका जोरदार जवाब दिया गया है। सऊदी के एयरपोर्ट पर जवाबी हमले के बाद किया और सऊदी अरब के हमले को लेकर पुतिन ने पलटवार किया। ताज़ा वीडियो आप हमले का देख रहे हैं। सऊदी अरब ने यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो बड़ा हमला किया उसमें एयरपोर्ट पर गोले बरसते हुए दिखाई दे रहे। और अब बात कर लेते हैं UNSC की अस्थायी सीट की। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2028-29 अवधि के लिए अस्थायी सदस्य बनने के भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत की है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राजदूतों, राजनयिकों और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में जयशंकर ने भारत के अभियान का शुभारंभ किया और इस दौरान विदेश मंत्री ने कहा है कि जब दुनिया आर्थिक विकास को बनाए रखने और समृद्धि को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, तब भी कुछ पुरानी चुनौतियां हमारे सामने बनी हुई हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण चुनौती आतंकवाद है। बहुत लंबे समय तक हमारे प्रयास आतंकवाद के केवल लक्षणों से निपटने तक सीमित रहे हैं, लेकिन जब तक हम आतंकवाद के वित्तीय और संसाधन आधार को कमजोर करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक हमें केवल सीमित सफलता ही मिलेगी।
2: Even as the world strives to sustain growth and promote prosperity, some long-standing challenges continue to confront us. Significant among them is terrorism. For far too long, our efforts have concentrated on countering its symptoms. But that will only give us limited results unless we are focused on constricting its resource base. Our commitment is to concentrate on countering terror financing and encourage objective and evidence-based proposals for listing of terrorist groups.
1: और अब बात कर लेते हैं पंजाब कांग्रेस में मची खींचतान पर। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस के संकट पर आज बड़ी बैठक के आसार हैं। दिल्ली में राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल और खड़गे के बीच बैठक की संभावना है। इस मीटिंग में पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल से मिले फीडबैक पर चर्चा हो सकती है।

0: चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में खींचतान। पंजाब की लड़ाई अब दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है। संकट को लेकर आज आलाकमान बड़ी बैठक कर सकता है। पंजाब कांग्रेस की दीवारों में दरार अब किसी से छिपी नहीं है। सब कुछ कैमरे के सामने आ चुका है। अब पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल से मिले फीडबैक पर कांग्रेस आलाकमान को चर्चा कर फैसला करना बाकी है। पंजाब में असली विवाद की वजह पार्टी के अंदर चल रही खेमेबंदी है। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग है तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर रंधावा और उनके समर्थक। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को एक्सटेंशन मिलने के बाद पार्टी के अंदर खींचतान शुरू हो गई है। 1 जुलाई को पार्टी ने घोषणा की कि राजा वडिंग पंजाब यूनिट के अध्यक्ष बने रहेंगे और चन्नी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन होंगे, जिसके बाद सियासी जमीन में खटपट का बीज पड़ गया। वहीं आलाकमान के फैसले से पहले बघेल ने साफ कर दिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, पंजाब का मतदाता लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी श्री राहुल गांधी जी पर भरोसा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का पंजाब में एक ही चेहरा है, वो है श्री राहुल गांधी जी। पंजाब में जारी सियासी उठापटक पर अब आलाकमान को फैसला लेना होगा, लेकिन चुनाव से पहले खींचतान पर विरोधियों को एक और दांव मिल गया है। आज तक ब्यूरो।
1: तो देखिए, पूरे देश में इन दिनों राम मंदिर चढ़ावा चोरी सुर्खियों में है। इस बीच बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि राम मंदिर का घोटाला तो सिर्फ करोड़ों में है, जबकि वक्फ संपत्तियों का घोटाला अरबों खरबों में है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यदि वक्फ बोर्ड की सही दिशा में जांच हुई तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी से भी बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा। उन्होंने घोटाले का आरोप लगाते हुए सीएम योगी को पत्र लिखा है और जांच की मांग भी की है।
2: मगर वक्फ बोर्ड में करोड़ों नहीं अरबों और खरबों की चोरी सामने नजर आएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
1: अब बात कर लेते हैं 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में 6 साल बाद एक बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है और बाकी के 6 आरोपी बरी कर दिए गए हैं।
0: आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन को लगा बड़ा झटका। आईबी अफसर अंकित शर्मा के हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया। ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया। अंकित शर्मा की हत्या के मामले में 6 साल बाद दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नाजिम, काशिम, अनस, जावेद और ताहिर हुसैन को हत्या, अपहरण, दुश्मनी को बढ़ावा देने और दंगा करने का दोषी ठहराया। वहीं कोर्ट की सुनवाई के दौरान आरोपी ताहिर हुसैन कोर्ट में रोने लगा। फैसले के बाद ताहिर ने अपने आप को बेगुनाह बताया।
3: ताहिर जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए।
0: वहीं कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा। बीजेपी ने सीधे ताहिर हुसैन के बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की।
4: आज जो लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, सनातनी बनने का ढोंग कर रहे हैं, ये लोग जब सत्ता में थे तब इन्होंने अंकित शर्मा जैसे न जाने कितने बेगुनाह निरपराध हिंदू नौजवानों का हत्या करवाने का, मर्डर कराने का जो दिल्ली दंगों का पूरा प्लान था उसके ये भागीदार थे और बाद में अपराधियों को बचाने की भी सारी कोशिश केजरीवाल और उनके गैंग के द्वारा की गई थी।
0: 26 फरवरी 2020 को खजूरी खास नाले से अंकित शर्मा का शव मिला था। उनके पिता ने ताहिर हुसैन समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था, जिसको लेकर कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आज तक भी
1: चलिए अब आपको दिखाते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के कारण हालात कितने खराब हो चुके हैं।
0: अरुणाचल प्रदेश में मानसूनी आफत का कहर। बाढ़ की चपेट में भारत चीन बॉर्डर के कई इलाके, मूसलाधार बारिश के चलते खतरे के निशान के ऊपर बह रही है कुमेयर नदी। अरुणाचल प्रदेश में हो रही लगातार बारिश ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। कुमेयर नदी में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से पारसी पार्लो सर्कल और दामिन सब डिवीजन सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दामिन में हुरी दामिन को जोड़ने वाला पुल पूरी तरह बह गया है, जिससे सड़क संपर्क कट गया है। लगातार बारिश के कारण स्कूलों, दफ्तरों और घरों में पानी भर गया है। इलाके की कई कॉलोनियों और गांव की सड़कें पूरी तरह जलमग्न हैं। राज्य सरकार की माने तो बाढ़ में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। राज्य के 26 जिलों के 425 गांवों में बाढ़ से कुल 97,182 लोग प्रभावित हुए हैं, साथ ही कृषि और सार्वजनिक संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस और अन्य विभागों के साथ मिलकर नुकसान का जायजा ले रहा है और राहत कार्य चलाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश से युवराज मेहता के साथ आज तक ब्यूरो।
1: उधर चीन के हेबेई प्रांत के चेंगड़े में बाढ़ की वजह से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। वहां पर भारी तूफान के बाद भारी बारिश हुई तो सड़कों पर सैलाब का कहर टूटा। समंदर जैसे हालात हो गए हैं और सड़कों पर मौजूद गाड़ियां बहने लगी। स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। और अब बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। वहां भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। इस विभीषिका में अब तक 54 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। दक्षिणी पूर्वी बांग्लादेश के प्रभावित इलाकों में बाढ़ के गंभीर हालात बने हुए हैं। जानकारी के मुताबिक कॉक्स बाजार इलाके सबसे ज्यादा संकट में है। कई गांव डूब चुके हैं और नदी के किनारों पर बसे घर सैलाब में समा चुके हैं, तो करीब 10 लाख की आबादी बाढ़ के पानी में फंसी हुई है। अब बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। आज सेमीफाइनल मुकाबले में फ्रांस और स्पेन के बीच टक्कर है। डलास स्टेडियम में देर रात 12:30 बजे मैच खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप में 20 साल बाद दोनों टीमों का आमना सामना, उसका मुकाबला होगा। इससे पहले वर्ल्ड कप में दोनों की आखिरी टक्कर 2006 में हुई थी और इस बार सबकी नजर फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बापे पर है, जो कि शानदार फॉर्म में है। वो मौजूदा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 8 गोल कर गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे है। और दूसरी ओर स्पेन की उम्मीदें 19 साल के स्टार लामिन यमाल पर टिकी होंगी। चलिए अब वक्त हो गया है सुपर 8 में फटाफट खबरों का। जयपुर में ट्रांसफार्मर में आधे घंटे तक होते रहे भीषण धमाके, आवाज सुनकर घरों से बाहर निकले लोग, दमकल विभाग ने पाया काबू। गुजरात के भरूच में एक कंपनी में लगी भीषण आग, करीब 10 श्रमिकों ने भागकर बचाई अपनी जान। लखनऊ में सीएनजी सिलेंडर से भरे ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 2 किलोमीटर दूर तक घसीटा, ट्रैफिक पुलिस ने बचाई जान। कोटा में रेस्टोरेंट में फ्री में खाना नहीं मिलने पर विवाद, एएसआई ने रेस्टोरेंट पर फेंका पत्थर, एसपी ने किया सस्पेंड। जामनगर में हाईवे पर महिला को कार ने मारी जोरदार टक्कर, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कार ने पहली स्कूटी सवार को मारी टक्कर, फिर अनियंत्रित होकर स्कूल बस में जाकर घुसे एक की मौत। राजस्थान के बाड़मेर में तेज रफ्तार डंपर आगे चल रही कार में जाकर घुसा, 5 युवकों की मौत, 3 घायल। भोपाल में दिन दहाड़े दुकान के बाहर बैठे कपड़ा कारोबारी पर चाकू से हमला, अचानक पीछे से आए 2 बदमाशों को कई बार चाकू से किया वार। चलिए यहां पर वक्त हो गया सुपर 8 में एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: टू 15-year-old Harper,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
6: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
7: अच्छा, सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
6: अर्ज किया है, दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दे, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह,
8: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
9: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
10: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
11: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
12: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
15: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
16: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
17: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान है। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
18: मीडिया 50,000 युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
19: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
17: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
20: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
21: उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े चेहरे, जनता के सबसे बड़े सवाल और आज तक की सबसे बड़ी पंचायत, 15 जुलाई लखनऊ।
22: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइयत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम

ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक, तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया नोटबुक निकाल लीजिए, मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

ईरान से जंग में पूरी ताकत से उतरा अमेरिका, लगातार तीसरे दिन एयर स्ट्राइक। बंदर अब्बास, बुशेर, केश और केशम द्वीप पर बरसाया बारूद। ईरानी ड्रोन के खौफ से खाड़ी देशों में गूंजे सायरन। होर्मुज में यूएई के दो ऑयल टैंकर्स पर मिसाइल अटैक, एक भारतीय नाविक की मौत, 8 घायल। क्रूज मिसाइल से किया गया हमला, आईआरजीसी ने ली हमले की जिम्मेदारी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर आज से फिर अमेरिकी नाकेबंदी, जहाजों को सुरक्षा के बदले 20% टैक्स वसूलेंगे ट्रंप। ईरान को दखल नामंजूर, तेल की कीमतों में लगातार उछाल। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में खींचतान जारी, आज दिल्ली में आलाकमान के साथ बड़ी बैठक की संभावना, भूपेश बघेल के फीडबैक पर हो सकती है चर्चा। फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला आज डलास स्टेडियम में, फ्रांस और स्पेन के बीच टक्कर, 20 साल बाद फुटबॉल आमने सामने होंगी दोनों टीमें।

दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास से तनाव बढ़ने की खबरें आई सामने। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक शहर में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किए गए। पूर्वी बंदर अब्बास में विस्फोटों के कारण नुकसान या हताहतों को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही कई जहाजों को निशाना बनाया गया। होर्मुज में यूएई के तेल टैंकर्स पर ईरान का हमला, एक भारतीय नाविक की मौत, 8 अन्य घायल। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने भी किया पलटवार। ईरान ने एक बार फिर से कुवैत पर किया हमला। ईरान के सरकारी टीवी ने दावा किया है कि कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमले किए गए। होर्मुज में अमेरिकी जहाजों को क्रूज मिसाइलों से किया गया हमला। ईरान पर ताजा अमेरिकी हमलों से पहले ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ी धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा, हम ईरान पर जोरदार हमला करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान, होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स लगेगा। ट्रंप ने जहाजों पर टैक्स लगाने पर कहा, अमेरिका इस रणनीतिक समुद्री मार्ग की सुरक्षा करेगा, इसलिए सुरक्षा पर होने वाला खर्च जहाजों से वसूला जाएगा। ट्रंप ने कहा, अमेरिका अब गार्जियन ऑफ द होर्मुज स्ट्रेट की भूमिका निभाएगा। ये टैक्स सभी कार्गो जहाजों पर लागू होगा, पर ईरान के जहाजों को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। अमेरिका ने यह भी कहा है कि आज से ईरानी पोर्ट्स की नाकेबंदी शुरू करेंगे, यूएस नेवी ने दी जानकारी। वहीं ट्रंप ने सभी न्यूट्रल जहाजों को चेतावनी दी है कि नाकेबंदी लागू होने से पहले वो इस क्षेत्र से बाहर निकल जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दुनिया में हमारी सेना सबसे मजबूत, हमें कोई भी नहीं दबा पाया, बल्कि हम उन पर दबाव डाल रहे हैं। आईआरजीसी ने कहा, होर्मुज में दखल देकर अमेरिका ने दुनिया भर में तेल गैस सप्लाई को खतरे में डाला। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्जी ने कहा कि ईरान हमेशा से होर्मुज का संरक्षण रहा है और आगे भी रहेगा। पोस्ट में अराग्जी ने भी कहा कि 20% शुल्क को ज्यादा बताते हुए ईरान इस मामले में निष्पक्ष और उचित रुख अपनाएगा। होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस शिपिंग मार्गों से एक। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि सैन्य कार्रवाई अभी और जारी रह सकती है। सैन्य अभियान 2 से 3 हफ्ते तक चलने के संकेत का दावा। ट्रंप ने ईरान पर हमले जारी रखने की चेतावनी देते हुए पिकेक्स माउंटेन को संभावित निशाना बताया और कहा कि ईरान को बड़े हमले के लिए तैयार रहने की वार्निंग। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हो रहे जवाबी हमलों के बीच तेल की कीमतें 2% बढ़कर 4 हफ्ते में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष में अब तक 14 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं और जबकि घायल सैनिकों की संख्या 400 से ज्यादा। यूएई ने ओमान में मुम्बासा और अल बहिया नाम का एक टैंकर जिस पर हमला किया, उसकी कड़ी निंदा की है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया। हुतियों पर सैन्य कार्रवाई के लिए ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस का समर्थन किया। सऊदी क्राउन प्रिंस ने कार्रवाई से पहले ट्रंप से मांगा था समर्थन। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप ने कार्रवाई को दी थी मंजूरी। सना एयरपोर्ट पर सऊदी हमले के बाद बढ़ा तनाव। हमले के बाद हुतियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन दागे। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक सऊदी अरब को बड़े संघर्ष की आशंका। ईरान से लौट रहे विमान के दौरान सना एयरपोर्ट पर हुआ हमला। अमेरिकी अधिकारी का दावा, विमान में हथियार और मिसाइल के पुर्जे थे। हुतियों ने सऊदी एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हुतियों ने सऊदी हवाई क्षेत्र में उड़ाने न भरने की चेतावनी दी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2028-29 के अस्थायी सदस्य पद के लिए अपना अभियान शुरू किया। बोले, हमारा शांति विजन ही दुनिया को संकट से बचाएगा। कैंपेन की शुरुआत करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत दुनिया को अधिक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और न्याय संगत माहौल के निर्माण के लिए काम करेगा। 2028-29 कार्यकाल के लिए यूएनएससी के चुनाव जून 2027 में होंगे। वहीं एशिया प्रशांत समूह की एकमात्र सीट के लिए भारत और तजाकिस्तान के बीच मुकाबला। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर आई एक रिपोर्ट को भारत और अमेरिका दोनों ने फर्जी बताया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने किसी भी ट्रेड प्रस्ताव को ठुकराया नहीं। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने भी फेक न्यूज पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमारी बातचीत लगातार जारी, ट्रेड डील को जल्द पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। 17 जुलाई को पीएम मोदी का पंजाब दौरा, रेल परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे 110 साल पुराना जालंधर कैंट स्टेशन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया आधुनिकीकरण। पीएम मोदी 17 जुलाई को मध्य प्रदेश के बालाघाट रेलवे स्टेशन का करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। महाकौशल को मिलेगी बड़ी सौगात। दिल्ली में भी भारत मंडपम में शुरू होगा भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट। आज से 17 जुलाई तक चलेगा भारत टेक्स 2026 इवेंट। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे भारत टेक्स 2026 का उद्घाटन। प्रदर्शनी में लगेंगे हजारों स्टॉल, 20 से ज्यादा देशों के डेलीगेट, 7000 से ज्यादा खरीदार होंगे शामिल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ाई गई। अब 27 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। चढ़ावा चोरी मामले में एससी का केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस। एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट तलब। अदालत ने सीसीटीवी सुरक्षित रखने के लिए दिए निर्देश।
राम मंदिर ट्रस्ट को भी एक नोटिस। इस मामले में 20 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए विज्ञापन जारी, 18 जुलाई तक ईमेल के जरिए आवेदन कर सकेंगे कैंडिडेट। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड पर कई अरब रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। सीएम योगी को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की। तो वहीं अयोध्या के मेयर गिरीश ने कहा है कि जन्मभूमि क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण, मुआवजे या फिर किसी भी जमीन की शिकायत का प्रशासन प्राथमिकता से समाधान करेगा, अन्याय नहीं होगा। बद्रीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल की कोर्ट में पेशी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी को लेकर आमने सामने गणेश गोदियाल और हेमंत द्विवेदी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत का मांगा इस्तीफा। सीएम धामी का बद्रीनाथ धाम में दान चोरी मामले पर कड़ा प्रहार, बोले दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, 16वें नंबर पर नरोत्तम मिश्रा का नाम। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी, 2020 दिल्ली दंगे में अंकित शर्मा की हुई थी हत्या। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी करार, 6 आरोपी बरी। दिल्ली की कड़कड़ूमा कोर्ट ने सुनाया फैसला। ताहिर हुसैन ने कहा है कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे इंसाफ नहीं मिला। बीजेपी का आरोप, आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिश की, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने 2020 के दंगे पर कहा, यह हिंदुओं के खिलाफ एक सोची समझी साजिश थी, ताहिर को बचा रही थी केजरीवाल की पार्टी। उद्धव ठाकरे ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली में चल रहे कांग्रेस जनता पार्टी और सोनम वांगचुक के प्रदर्शन का किया समर्थन। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने एजेंडे को अलग रखकर इनके आंदोलनों के साथ खड़ा होना चाहिए। उद्धव ठाकरे बोले कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि हमारी भावी पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की। महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहन योजना से 92 लाख लाभार्थी बाहर, ईकेवाईसी फेल और आय सीमा बनी मुख्य वजह। महाराष्ट्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिति तटकरे बोली कि किसी भी योग्य महिला के साथ नहीं होगा अन्याय। 15 लाख ऐसे आवेदक मिले जो कि इनकम टैक्स देते हैं। महाराष्ट्र के डोंबिवली अस्पताल में मारपीट केस में शिवसेना पार्षद रमेश महात्रे समेत 4 आरोपियों की जमानत पर आज होगी सुनवाई। आज पंजाब में कांग्रेस के संकट पर बड़ी बैठक के आसार। राहुल गांधी, खड़गे, केसी वेणुगोपाल की दिल्ली में बैठक की संभावना। बैठक में पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल से मिले फीडबैक पर हो सकती है चर्चा। 2027 के राज्य चुनावों से पहले पंजाब कांग्रेस संकट। बिहार में बांकीपुर उपचुनाव, नितिन नवीन की आज बड़ी बैठक। नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे बीजेपी अध्यक्ष। सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली, पुलिस जांच में अब तक कुछ भी नहीं मिला। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ का कहर, भारत चीन सीमा के पास पारसी पार्लो इलाका जलमग्न। कुमे नदी का बढ़ा जलस्तर, भूस्खलन से कई मार्ग बंद। अरुणाचल के सीमावर्ती कस्बे में बाढ़ से हालात गंभीर हुए, प्रशासन अलर्ट, लोगों को नदी के किनारे से दूर रहने की सलाह। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश से जलभराव, बेलटोला सर्वे इलाके में सड़कों पर भरा पानी, फंसे कई वाहन। उत्तरकाशी में स्थित हरकिदुन घाटी में भारी बारिश की वजह से पुल बहा, सड़क मार्ग बंद होने की वजह से जेसीबी मशीन के सहारे उफनता नाला पार कर रहे ग्रामीण पर्यटक। देहरादून के विकास नगर में उफनती नदी के कारण उसके ऊपर से ग्रामीणों ने बनाया खतरनाक पुल, वायरल वीडियो से खुली सिस्टम की पोल। देहरादून में सड़क निर्माण के दौरान मलबा गिरा, 2 श्रमिकों को सुरक्षित किया गया रेस्क्यू। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के पास हुआ भूस्खलन, सड़कें बंद, यातायात बाधित। सूरत में आज तक की पड़ताल में हुआ खुलासा, खाड़ी के ऊपर स्लैब डालकर बनाई स्कूल की पार्किंग, निर्माण को लेकर उठ रहे हैं सवाल। उदयपुर में भारी बारिश के बीच सड़क धसी, गड्ढे में फंसी कार, नगर निगम की लापरवाही पर उठे सवाल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कार ने पहले स्कूटी सवार को मारी टक्कर, फिर अनियंत्रित होकर स्कूल बस में जा घुसी, 1 की मौत। राजस्थान के बाड़मेर में तेज रफ्तार डंपर आगे चल रही कार में जाकर घुसे, 5 युवकों की मौत हुई, 3 घायल। बांदा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, चित्रकूट जा रहे 2 श्रद्धालुओं की मौत। गुजरात के भरूच में कंपनी में लगी भीषण आग, करीब 10 श्रमिकों ने भागकर अपनी जान बचाई। भोपाल में दिनदहाड़े दुकान के बाहर बैठे कपड़ा कारोबारी पर चाकू से हमला, अचानक से पीछे से आए 2 बदमाशों ने कई बार चाकू से किया वार। गुजरात के अंबाजी मंदिर दान चोरी का पुराना सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ, युवक 500 के नोट का एक बंडल अपने पैर के नीचे दबाता नजर आया। कोला में नाले की खुदाई के दौरान मिला पुराना हैंड ग्रेनेड, बम निरोधक दस्ते ने कब्जे में लिया। इंदौर में मामूली कहासुनी में कार और स्कूटी सवार में विवाद हुआ, सड़क खड़े शख्स को हटने के लिए कहा गया तो युवक ने कार पर चढ़कर फोड़ा शीशा। जामनगर में हाईवे पर महिला को कार ने मारी जोरदार टक्कर, पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। यूपी के बांदा में नाले में डूबने के कारण 2 बहनों की दर्दनाक मौत, खेलते समय गड्ढे में डूबी बच्चियां।
लखनऊ में सीएनजी सिलेंडर से भरे ट्रक ने बाइक सवार को मारी भीषण टक्कर, 2 किलोमीटर दूर तक घसीटा, ट्रैफिक पुलिस ने बचाई जान। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बुजुर्ग पेंशन धारक के बैंक खाते में अचानक से आए 700 करोड़ रुपए क्रेडिट हुए, कुछ ही देर बाद खाते का बैलेंस फिर से हुआ शून्य। ओडिशा के बालासोर में कारोबारी शेख हमीद हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य शूटर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, मामले की जांच जारी। दांता के सरकारी अस्पताल में महिला मरीज को एक्सपायर हो चुकी बोतल चढ़ाई गई, सरकारी अस्पताल ने मानी अपनी गलती। जयपुर में ट्रांसफार्मर में आधे घंटे तक होते रहे भीषण धमाके, आवाज सुनकर घरों से बाहर निकले लोग, दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, दोपहर 3:12 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं 6:48 तक। राहु काल का समय 3:04:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, लेकिन निर्णयों में आज जल्दबाजी मत करिएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना मिल सकती है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कर्क राशि, अभी काम में किसी तरह की जल्दबाजी ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंग।

रहेगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

दूर होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

तो होंगी, परिवार में समस्याओं से बचें। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मकर राशि, करियर में बदलाव हो सकता है इस समय। यात्रा की स्थिति बन रही है, परिवार के कामों में आज व्यस्तता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो रंग आज के लिए होगा फिरोजी।

चिंता ना करें, दौड़ भाग आपकी बढ़ेगी, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: दो हजार बाईस में तो सरकार बना रहे थे आप, तब क्या था? अगर आप गंभीर हैं कि सरकार आपको बनानी है, अगर आप गंभीर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप गंभीर हैं तो इसको फाइनल करिए। बार बार बार आप बोल देते हो हम गठबंधन गठबंधन गठबंधन में क्या कर रहे हो आप? आप हमारे जैसे बोलते हुए आदमी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। अपने छोटे छोटे छोटे छोटे नेताओं को मेरे पीछे लगा देंगे, वो मेरे खिलाफ विश्वमन करते रहेंगे।
5: अब ये 2027 के यूपी चुनाव के सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की दबाव की रणनीति है या कुछ और, लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का समाजवादी पार्टी पर यह आक्रमण उत्तर प्रदेश की राजनीति में शोले तो भड़का गया है। इमरान मसूद खुलेआम अखिलेश यादव की राम मंदिर चढ़ावा चोरी की उस पॉलिटिक्स पर खास तौर पर हमलावर है जिसे अखिलेश अपना तुरूप का इक्का मान बैठे।
4: मुसलमान सिर्फ आपका वोट बैंक बंद कर रह जाए, कोई मुसलमान की बोलने वाला ना बचे। भाई मैं इतना क्या, मुझे बताइए मंदिर मस्जिदों के बुलडोजर चलने पर कोई बोलता है? मदरसे तोड़ दिए गए उसके ऊपर कोई बोलता है? पुरानी पुरानी कदीमी दरगाहों को खत्म कर दिया गया कोई बोला है? एक लफ्ज आपके मुंह से निकलता नहीं, और अगर हम बोलते हैं तो हमारे हमारे पीछे आप लगा दे तो हम बीजेपी से निपटे कि आपसे निपटे।
5: अखिलेश यादव पर इमरान मसूद की भाषा बिल्कुल वैसी है जैसा असदुद्दीन ओवैसी आरोप लगाते हैं। इमरान मसूद पर जवाबी पलटवार समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आया।
6: देखिए समाजवादी पार्टी में भी 37 सांसद हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी इस तरीके के कोई बयानबाजी गठबंधन को लेके नहीं करी, क्योंकि हम जानते हैं कि पार्टी चलाने के समय कुछ नियम होते हैं, गठबंधन के कुछ तरीके होते हैं। लेकिन लगातार जिस प्रकार से इमरान मसूद जी जो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीएसपी में गए, फिर समाजवादी पार्टी में गए, अब फिर कांग्रेस में है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे उनको जानबूझ को ये टास्क दिया गया है।
7: इमरान मसूद भी आजकल कुछ भी कहते रहते हैं। ये सभी जानते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि गठबंधन कैसे और किस रूप में होगा। ये हमेशा आते हैं, सोचते हैं इसी बहाने हमारी थोड़ी पॉपुलरिटी हो जाए। ये जो सस्ती राजनीति होती है, मुझे लगता है ऐसी नहीं करनी चाहिए।
5: अखिलेश यादव के खिलाफ इमरान मसूद के बयानों की सियासत को कांग्रेस कैंप से आ रहे कुछ और संकेतों से समझने की जरूरत है। जून में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनने के फौरन बाद राजेंद्र पाल गौतम ने भी सीट बंटवारे में बराबरी का दावा किया था। यूपी में पार्टी प्रभारी बनने से पहले राजेंद्र पाल गौतम और कांग्रेस के एक और दलित नेता सांसद तनुज पुनिया मई में अचानक मायावती का हालचाल जानने उनके घर पहुंच गए थे। ये और बात है कि मायावती उनसे मिली नहीं थी। इस बीच कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर ज्यादा उत्साह दिखाते नजर नहीं आते।
8: देखिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये पूरी तरीके से ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है और हम पूरी ताकत से अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि अलायंस किससे होगा और कितने पे होगा।
5: 2017 के यूपी चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी का दाव चलने वाले अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों फ्लॉप रहे थे। 2022 में यूपी में दोनों दलों की राह अलग थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने बीजेपी को यूपी में बहुत बड़ा झटका दिया था, लेकिन इसके बाद जब उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव हुए तब कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से सीट बंटवारे पर मन महसूस कर रहना पड़ा। आखिर में कांग्रेस ने उपचुनाव की एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा। जून में इंडिया गठबंधन की बैठक में एकता के बड़े बड़े दावे हुए थे, लेकिन अब बयानों के बाण छोड़े जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

ईरान से जंग में पूरी ताकत से उतरा अमेरिका, लगातार तीसरे दिन एयर स्ट्राइक, कुवैत, बहरीन में ईरानी ड्रोन का खौफ, हॉर्मुज में फिर शुरू हुई अमेरिकी नाकेबंदी, ट्रंप वसूलेंगे 20% टैक्स। हॉर्मुज में यूएई के दो ऑयल टैंकर्स पर मिसाइल अटैक, एक भारतीय नाविक की मौत, 8 घायल, क्रूज मिसाइल से हमला, समंदर में टकरा से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। बिहार के हाई प्रोफाइल बांकीपुर उपचुनाव बीजेपी के लिए बना नाक का सवाल, परंपरागत सीट पर जीत की रणनीति बनाने पहुंची पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, त्रिकोणीय मुकाबले के आसार। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में खींचतान जारी, आज दिल्ली में आलाकमान के साथ बड़ी बैठक की संभावना, भूपेश बघेल के फीडबैक पर हो सकती है चर्चा।

नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से भी। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तेज युद्ध हुआ, कल रात से सुबह तक का एक्शन अब से कुछ ही देर बाद आपको दिखाएंगे। यूपी में सामने आया राम मंदिर चढ़ावा चोरी से भी बड़ा घोटाला, क्या है ये मामला, ये खबर भी इस बुलेटिन में शामिल होगी। अरुणाचल प्रदेश में जल तांडव आपको दिखाएंगे, बारिश और बाढ़ से कैसे मच गया है हाहाकार। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं जंग की खबर के साथ, जहां पर अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला किया है। और ताजा हमले में ईरान के बंदर अब्बास, केशम द्वीप, अबू मूसा द्वीप और बुशहर को निशाना बनाया गया। वहीं ईरानी सेना ने अमेरिकी युद्धपोत पर क्रूज मिसाइल दागने का दावा किया, लेकिन इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात का कहना है कि ईरानी क्रूज मिसाइल्स ने 2 अमीराती तेल टैंकर्स को निशाना बनाया है। इस हमले में एक भारतीय क्रू सदस्य की मौत हो गई है, 8 लोग घायल हैं, जिसमें 6 भारतीय हैं और 2 यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं। तो यूएई के 2 टेल टैंकर्स को पर ईरान

0: अपनी क्षमता को कमजोर किया जा सके। तनाव का सबसे बड़ा असर दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्ग हॉर्मुज जलडमरू मध्य में देखने को मिला। संयुक्त अरब अमीरात का कहना है कि ईरानी क्रूज मिसाइलों ने दो अमीराती तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। इस हमले में एक भारतीय क्रूज सदस्य की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं। दोनों टैंकरों में आग लग गई थी जिस पर बाद में काबू पा लिया गया। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ती सैन्य कार्रवाई ने एक बार फिर पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में बढ़ता तनाव सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा का नहीं बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो ये संघर्ष फिर से किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, अमेरिका साफ तौर पर यह कह रहा है कि आज और कल युद्ध और भीषण हो सकता है, क्या कुछ नई जगहों को निशाना बनाया जाएगा या फिर जो ये तटीय इलाके हम लगातार दिखा रहे हैं इन्हीं पर नजर रहेगी अमेरिका की?
2: देखिए, अगर आप पिछले 3-4 दिनों का घटनाक्रम देखें जिसके अंदर अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे के हितों के ऊपर वार कर रहे हैं और खासतौर पर अगर आप अमेरिकी कार्रवाई का पैटर्न देखें तो दक्षिणी जो तटरेखा है ईरान की, खासतौर पर 1800 किलोमीटर पूरी रेखा है ईरान की और उसके अंदर जो दक्षिणी हिस्सा है उसको सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, यानी बंदर अब्बास, चाबहार, सिरे, कशेम, ये सारे जो इलाके हैं, बंदर लागे, ये सारे इलाके टारगेट के ऊपर हैं। और ये इसलिए है क्योंकि अमेरिका की दलील है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको लेकर सबसे ज्यादा रस्साकशी चल रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मुक्त करवाना है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की जो दादागिरी है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं अगर ईरान की तरफ से देखें तो ईरान न केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने की बात कर रहा है बल्कि उसने जो वार किए हैं उसके अंदर अमेरिका के जो तमाम हित हैं, अमेरिका के जो तमाम ठिकाने हैं जीसीसी के इलाके में, चाहे बहरीन में हो, कुवैत में हो, कतर में हो, इन तमाम देशों के अंदर अमेरिकी हितों को निशाना बनाया जा रहा है। यानी एक बार फिर हम वापस उसी लड़ाई की स्थिति के ऊपर लौट चुके हैं और इस स्थिति के बीच में इस बात की आशंका से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो दायरा है वो और व्यापक हो सकता है। यानी अभी जो तटरेखा के इलाके निशाने बनाए जा रहे हैं उससे ज्यादा भी डेप्थ के अंदर अमेरिका जा सकता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी देखा है कि न केवल तटरेखा में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, मिलिट्री हब्स है या जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है, उसके अलावा जो रेल लाइन थी यानी जहां से आपूर्ति हो सकती है इन तटीय इलाकों के अंदर, उनको भी अमेरिका ने टारगेट किया। तो इसके सहारे ये इंडिकेशन मिलता है कि अमेरिका इस चीज को, विकल्प को छोड़कर नहीं चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये स्थिति किस जगह जाकर रुकेगी या किस जगह जाकर थमेगी, क्योंकि अब वो जो तथाकथित समझौता हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच में, आज उसकी जो वैल्यू है, आज उसकी जो हैसियत है तो उतनी भी नहीं जिस कागज के ऊपर उसको उतारा गया था। नया
1: ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से 20% टैक्स वसूलने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका संभालेगा। उन्होंने खुद को गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट बताते हुए कहा कि इस काम का खर्च उठाने के लिए स्ट्रेट से गुजरने वाले हर कार्गो पर 20% टैक्स लिया जाएगा।

0: दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन हॉर्मुज जलडमरू मध्य। हॉर्मुज अब सिर्फ तेल सप्लाई का रास्ता नहीं बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच ताकत की नई जंग का मैदान बन चुका है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कह रहे हैं अब अमेरिका हॉर्मुज का गार्जियन बनेगा, इसकी सुरक्षा करेगा और इसके बदले में दुनिया से कीमत वसूलेगा, तो दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का सीधा जवाब है, हॉर्मुज का गार्जियन हमेशा ईरान था, है और रहेगा। यानी अब लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की ही नहीं है, हॉर्मुज पर नियंत्रण की भी है।
1: We've cut down their capability very substantially, but they, you know, they're going to fight for a while. Our military has done a fantastic job. And, you know, the bottom line, though, and I say it to everybody, and I say it as much as you want to listen, Iran will not have a nuclear weapon. If we didn't bomb them with the B-2 bombers, that plane right there, if we didn't bomb them, they would have had a nuclear weapon.

0: happened long ago. Within 1 month from the day we bombed them, they would have had, if we didn't do it, they would have had a nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, Israel would no longer be with us, and the Middle East probably would no longer be with us.
1: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस समुद्री रास्ते का गार्जियन बनेगा और इसकी सुरक्षा के बदले दूसरे देशों से भुगतान भी लिया जाएगा। उनका कहना है कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा पर अरबों डॉलर खर्च नहीं कर सकता, इसलिए इसका मुआवजा मिलना चाहिए। ट्रंप के बयान के साथ ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी नौसेना ईरानी बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले जहाजों की निगरानी करेगी। इसके साथ ही लगातार तीसरी रात अमेरिका ने ईरान में सैन्य ठिकानों, एयर डिफेंस सिस्टम और तटीय रडार पर हमले किए।
0: We're hitting them very heavy tonight, as you know. We're hitting them. We have tremendous amounts of ammunition. We have numbers that we haven't had in years. And we're hitting them very hard, and it'll continue, and we'll see what happens. But we're knocking out all of their offensive capability, and we're controlling the straits. We're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through it.
1: इस बीच हॉर्मुज में तनाव और बढ़ गया जब संयुक्त अरब अमीरात ने आरोप लगाया कि ईरानी क्रूज मिसाइलों ने दो अमीराती तेल टैंकरों को निशाना बनाया। इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हुए। हॉर्मुज पर बढ़ते टकराव का असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। युद्ध की आशंका के बीच कच्चे तेल की कीमतों में 9% से भी ज्यादा का उछाल आया क्योंकि दुनिया के करीब 20% तेल और बड़ी मात्रा में एलएनजी की सप्लाई इसी समुद्री रास्ते से होती है। आज हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बन चुका है। एक तरफ अमेरिका खुद को इसका नया गार्जियन घोषित कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान अपने दशकों पुराने प्रभाव को चुनौती नहीं देने की चेतावनी दे रहा है। सवाल यही है कि क्या हॉर्मुज पर वर्चस्व की ये लड़ाई सिर्फ खाड़ी तक सीमित रहेगी या फिर पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज तक ब्यूरो
2: प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक कैश काउ की तरह तो बन ही गया है, उससे पैसे अमेरिका उगाने की तैयारी में है जिस तरह से टैक्स लगाया जा रहा है, लेकिन इस बीच बड़ा चैलेंज ईरान के लिए यह भी है कि जो नया गार्जियन वो अपने आप को घोषित कर रहा है उससे कैसे पार पाया जाए, कैसे इसे चैलेंज किया जाए ईरान की तरफ से।
3: देखिए नेहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे बड़बोले बयान देते रहते हैं। उनके कई ऐसे बयान हैं जो केवल सोशल मीडिया सनसनी बन के रह जाते हैं, जमीन पर नहीं उतरे, क्योंकि यही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप भी कह चुके हैं, बाकायदा नक्शे में इसको लिख कर दिखा चुके हैं, ऐसी बहुत सारी बातें कह चुके हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि अमेरिका की सरकार और ट्रंप प्रशासन कानूनी तौर पर या अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर क्या कर रहा है। और कल ही जो 137वीं बैठक इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि यूएन की बॉडी है, उसमें अमेरिका जिसमें शामिल है, उसने इस बात का समर्थन किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहना चाहिए, उसमें किसी तरीके की टोल वसूली नहीं होनी चाहिए। देखिए यहां पर अमेरिका के ऊपर दबाव सबसे ज्यादा इस चीज को लेकर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 28 फरवरी 2026 के बाद से बाधित है, टैंकरों की और जहाजों की आवाजाही नहीं हो पा रही है, और इसी चीज का दबाव है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला हुआ है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सब लोग आवाजाही कर सकते हैं। ये भी मान चुके हैं कि इस तरीके के अगर हालात होंगे तो जहाजों की आवाजाही मुश्किल हो सकती है, वहां पर खुला होना चाहिए यातायात। लेकिन अब अमेरिका के ऊपर इस दबाव के चलते वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं नेहा कि अब अमेरिका इसका नियंत्रण करेगा, अमेरिका ये सुनिश्चित करेगा कि जहाजों की आवाजाही वहां से हो सके। लेकिन जब तक खतरा नहीं टलता है, जब तक कि ये आशंका खत्म नहीं होती है कि ईरान की तरफ से कोई ड्रोन या मिसाइल दागी जा सकती है, तब तक आम जो जहाज हैं, वो टैंकर हैं, चाहे वो $2 मिलियन की ईरान की तरफ से लगाई गई फीस हो या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान के अंदर 20% चार्ज की बात की गई हो, जहाज आएंगे ही नहीं। और यही वजह है कि फारस की खाड़ी के अंदर अब भी हजारों नाविक जो है वो फंसे हुए हैं, कई जहाज फंसे हुए हैं, और जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो जाता है कि उन जहाजों की आवाजाही सुनिश्चित हो सकती है, उन पर किसी तरीके का खतरा नहीं है, जहाज वहां पर अटके रहेंगे, और ये सबसे बड़ा संकट है जिसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। उधर यमन में भी इस लड़ाई का असर देखा जा सकता है। सऊदी अरब ने यमन के सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई हवाई हमले किए हैं। सऊदी हमला उस समय हुआ जब ईरान का एक नागरिक विमान सना एयरपोर्ट पर उतरने वाला था। इस बीच यमन के हुती विद्रोहियों का यह दावा है कि उन्होंने सऊदी अरब के एक एयरपोर्ट को निशाना बनाया और सभी एयरलाइंस को सऊदी हवाई क्षेत्र से बचने की चेतावनी दी।
4: I'm going to go to the hospital.
2: और अब बात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट पर भारत की दावेदारी की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की दावेदारी के आधिकारिक अभियान की शुरुआत की है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राजदूतों, राजनयिकों और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में जयशंकर ने भारत के अभियान का शुभारंभ किया है।
4: Even as the world strives to sustain growth and promote prosperity, some long-standing challenges continue to confront us. Significant among them is terrorism. For far too long, our efforts have concentrated on countering its symptoms. But that will only give us limited results unless we are focused on constricting its resource base. Our commitment is to concentrate on countering terror financing and encourage objective and evidence-based proposals for listing of terrorist groups.
2: और अब बात देश की सियासत की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अभी चल ही रहा है कि बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के एक दावे से नई सनसनी फैल गई है। रिजवी ने दावा किया कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी में से भी बड़ा घोटाला वक्फ संपत्तियों का है। ये घोटाला अरबों रुपए में है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड में बड़े घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने घोटाले का आरोप लगाते हुए सीएम योगी को पत्र लिखा और जांच की मांग की।
5: पूछ ले रही है अरबों और खरबों की चोरी सामने नजर आएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वक्फ बोर्ड में करोड़ों नहीं अरबों और खरबों की चोरी सामने नजर आएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
2: आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। आशीष, किस घोटाले का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, किस तरीके से अब चिट्ठी में इसका मेंशन किया गया है, क्या डिटेल्स लिखे गए?
6: देखिए, यहां सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर से बड़े घोटाले की बात की गई है और वो भी जो सिया बोर्ड है और सुन्नी बोर्ड है, यानी कि जो वक्फ बोर्ड है, दो बोर्ड है उत्तर प्रदेश में, उन बोर्डों में जो मेंबर रहे हैं उनके ऊपर सीरियस एलिगेशन लगाए गए और साफ कहा गया है कि उन लोगों ने अपने कार्यकाल में पूरी तरीके से जमीनें खरीदी, होटल बनाए और इसको लेकर घोटाले का जिक्र किया। यही नहीं, उन्होंने आजम खां तक का नाम लिया है। उस चिट्ठी को चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से जांच की बात कही है, क्योंकि आजम खां उस समय मंत्री थे और कई लोगों को ये जो शामिल किए गए वक्फ बोर्ड में, फिर चाहे रिजवी के नाम हो या अन्य ऐसे नाम भी दिए हैं कि जिन लोग जो मेंबर रहे हैं उन लोगों ने अपनी जमीनों को खरीदा, फरोख्त किया और उसके बाद उनको अपनी होटल, जमीन, घर सब चीजें बनाई। तो इसकी अगर जांच होती है तो ये सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा, कई करोड़ों अरबों का घोटाला है। और इसी को लेकर ये कहा गया है इस पत्र में, शहाबुद्दीन जो पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है मोमिन के, वहां उन्होंने ये लिखा है पत्र और ये कहा है कि जिस तरीके से सुन्नी और सिया दोनों बोर्ड, ना कि सिर्फ एक बोर्ड, उसमें फारूकी जो है वो अध्यक्ष है सुन्नी बोर्ड के, उन पर भी आरोप लगे हैं। यही नहीं, सिया बोर्ड पर भी आरोप लगे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी कार्यकाल के समय इन लोगों को रेवड़ी की तरह ये चीजें बांटी गई और रेवड़ी की तरह जब जमीनें बांटी गई तो उसमें मनमाने तरीके से कब्जा किया, मनमाने तरीके से होटल बनाए, अपनी प्रॉपर्टी बनाई और यही वजह है कि जो लोग हैं उनको उनका हक नहीं मिल पाया, जो एक्चुअल लोग हैं। और इस वजह से अगर ये जांच हो रही है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को जो पत्र लिखा है कि अगर सिया और सुन्नी दोनों बोर्ड की जांच होगी तो राम मंदिर से बड़ा घोटाला निकलेगा नया। और सबसे बड़ी बात है उन्होंने नाम तक खोले हैं इसमें कि जो जो मेंबर रहे हैं, क्योंकि कोई भी सिया या सुन्नी बोर्ड बनता है तो उसमें 10 या 11 लोगों के मेंबरशिप होती है, जो मेंबर होते हैं, और उन मेंबरों का नाम भी दिया है कि इन सबकी जांच हो। तो कहीं ना कहीं सब जांच के अब दायरे में है और ये बड़ा आरोप है पूरे दोनों बोर्डों के ऊपर, चाहे वो सिया बोर्ड हो या सुन्नी बोर्ड हो, जो कि वक्फ की प्रॉपर्टियों को संचालन करते हैं। वक्फ की पूरे प्रदेश में जितना वक्फ का बोर्ड है वो सारी प्रॉपर्टियों को मैनेज करता है, लेकिन आरोप अगर उन्हीं पर लग गया है, फिर चाहे वो चेयरमैन पूर्व के रहे हो, फिर चाहे वहां के मेंबर रहे हो, फिर चाहे वहां के अध्यक्ष रहे हो।
2: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका आशीष। तो चढ़ावा चोरी, वक्फ घोटाला, इनके बीच गुजरात की सबसे बड़ी शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर के भंडार रूम से चोरी का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस फुटेज में एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी नोटों का बंडल अपने पैरों के नीचे छिपाता हुआ दिख रहा है। 15 अप्रैल का ये वीडियो है। इसके बाद 5 मई वही कर्मचारी नोटों का बंडल चुराते हुए पकड़ा गया था। हालांकि उस दिन सीसीटीवी बंद था। चढ़ावा चोरी में अंबाजी मंदिर प्रशासन ने कुल 3 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है।
7: मई महीने में जो घटना घटी थी उसके बाद तुरंत हमने एक एसओपी भी मंदिर ट्रस्ट ने बनाई है और भंडार काउंट करने के लिए जो आते जाते जो कर्मचारी है उनका सघन सिक्योरिटी चेकिंग एसआरपी के जवानों द्वारा किया जाता है और पूरा जो भंडार गणतरी का जो है उसका लाइव टेलीकास्ट एलईडी स्क्रीन पे मंदिर पे भी होता है, तो बाहर के लोग भी बड़ी एलईडी पे देख सकते हैं। तो अब उसका एसओपी भी बनाई गई है काउंट करने की, तो इस तरह से काउंट करते हैं और भविष्य में कोई ऐसी घटना न घटे ऐसे भी मंदिर ट्रस्ट ने बहुत वो लिया है। एंड जो आदमी दोषी पाए गए थे जो निकले थे तो पैसा तो तुरंत ही उसके पास से रिकवर किया गया था ऑन दी, वो लेके बाहर भी नहीं गए थे, मगर वो उन आरोपियों जो दोषी थे उनके पर कड़ी कार्रवाई पुलिस ने भी की है। 3 लोगों को उसको अटकायत में लिया था, रिमांड भी लिया था और अभी कानूनी कार्रवाई चल रही है।
2: और अब बात साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों की करेंगे। इस दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में एक दिन पहले फैसला आया है। इस केस में कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। अब अदालत के इस फैसले पर सियासत तेज है। कोर्ट के फैसले के बाद ताहिर हुसैन ने खुद को बेगुनाह बताया, इंसाफ न मिलने की बात कही। वहीं बीजेपी अब इस फैसले के बाद केजरीवाल पर हमला बोल रही है। अंकित की हत्या 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगे के दौरान हुई। अंकित के पिता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। दंगों के दौरान जब उनका बेटा लापता हो गया तब उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद अंकित का शव एक नाले से बरामद हुआ था।
8: जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए।
2: और इसी दंगा मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने के बाद मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला किया। कपिल मिश्रा ने कहा कि फैसले से ये साफ है कि दिल्ली दंगे सुनियोजित तरीके से किए गए, ये एक साजिश थे जिसमें आम आदमी पार्टी के लोग शामिल थे।
9: देखिए 2020 में जो दंगे हुए आज ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोगों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू जो वहाँ पर रहने वाला हिंदू समाज है उनको मारने की साजिश थी और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए, नौजवान बेगुनाह अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर जिनको कई बार चाकुओं से गोदा गया और बाद में उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया। नाले से वो लाश निकलते हुए हम सब ने देखी है, पूरे देश ने देखी है। लेकिन आज ये बात भी साबित हुई है कि आज जो लोग सुंदरकांड पढ़ने का सनातनी बनने का ढोंग रच रहे हैं, जब वो लोग खुद सरकार में थे केजरीवाल जैसे लोग, तब वो ऐसी साजिश करने वाले, हिंदुओं को मारने की साजिश करने वाले, अपनी छत पर बम और पत्थर रखने वाले लोगों को बचाने का पाप कर रहे थे, दिल्ली की सड़कों को बंद करने वालों का समर्थन कर रहे थे सिसोदिया और केजरीवाल जैसे लोग। इस हत्या का ये जो हाथ जो खून से केजरीवाल के भी हाथ रंगे हैं और आम आदमी पार्टी के लोगों के भी हाथ रंगे हैं, आज ये बात साबित हो गई है जो हम पिछले 6 साल से कह रहे हैं कि दिल्ली दंगे एक सुनियोजित साजिश थे, सोच समझ कर घेर कर हिंदू समाज को मारने का प्लान बनाया गया था।
2: और इस बीच बीजेपी के हमले के बाद आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा कि सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।
10: तो कोर्ट का फैसला है उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा क्या नहीं रहा, ये सबको मालूम।
2: और अब बात पंजाब कांग्रेस से मचे खींचतान पर करेंगे, क्योंकि पहले पंजाब कांग्रेस के संकट पर बड़ी बैठक के आज आसार है। दिल्ली में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और खड़गे के बीच बैठक की संभावना। इस मीटिंग में पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल से मिले फीडबैक पर चर्चा की जा सकती है।

0: चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में खींचतान। पंजाब की लड़ाई अब दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है। संकट को लेकर आज आलाकमान बड़ी बैठक कर सकता है। पंजाब कांग्रेस की दीवारों में दरार अब किसी से छिपी नहीं है। सब कुछ कैमरे के सामने आ चुका है। अब पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल से मिले फीडबैक पर कांग्रेस आलाकमान को चर्चा कर फैसला करना बाकी है। पंजाब में असली विवाद की वजह पार्टी के अंदर चल रही खेमेबंदी है। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग है तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर रंधावा और उनके समर्थक। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को एक्सटेंशन मिलने के बाद पार्टी के अंदर खींचतान शुरू हो गई है। 1 जुलाई को पार्टी ने घोषणा की कि राजा वडिंग पंजाब यूनिट के अध्यक्ष बने रहेंगे और चन्नी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन होंगे, जिसके बाद सियासी जमीन में खटपट का बीज पड़ गया। वहीं आलाकमान के फैसले से पहले बघेल ने साफ कर दिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, पंजाब का मतदाता लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी श्री राहुल गांधी जी पर भरोसा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का पंजाब में एक ही चेहरा है, वो हैं श्री राहुल गांधी जी। पंजाब में जारी सियासी उठापटक पर अब आलाकमान को फैसला लेना होगा, लेकिन चुनाव से पहले खींचतान पर विरोधियों को एक और दांव मिल गया है। आज तक ब्यूरो।
1: अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमन, आज पंजाब कांग्रेस की ये बैठक होगी और अगर होनी है तो कितने बजे इसके होने के आसार?
2: देखिए, 11 बजे बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर ये बैठक होगी, क्योंकि राहुल गांधी विदेश से लौटे हैं। तो उसके बाद जो फीडबैक 6 दिन AICC पंजाब इंचार्ज भूपेश बघेल ने चंडीगढ़ में की थी, जिसमें वो पूर्व विधायक मंत्रियों और सीनियर लीडर से मिले थे, क्या पार्टी के अंदर डिसकंटेंटमेंट है, क्यों डिससेटिस्फेक्शन है और क्या किया जाए, पार्टी के स्ट्रक्चर, पार्टी के चुनाव लड़ने के तरीके और किसको लीडरशिप दी जाए, इसको लेकर फीडबैक दी गई थी। और एक रिफ्ट था, दरार थी, उसको लेकर फीडबैक तैयार कर एक रिपोर्ट राहुल गांधी के कार्यालय दी गई है, ऐसी जानकारी है। और आज उसी पर 11 बजे बैठक होगी, मंथन होगा। हालांकि दूसरे राज्य कर्नाटक पर भी कैबिनेट एक्सपेंशन पर चर्चा है, लेकिन पंजाब फोकस में है क्योंकि 2027 के चुनाव है और खासकर जो इक्वेशन पंजाब कांग्रेस बनाने की कोशिश करती है, हाईकमान बनाने की कोशिश करती है कि दलित, जट, सिख और एक हिंदू कॉम्बिनेशन बनाया जाए, लेकिन आपसी खींचोतान और आपसी खाना जंगी के अंदर कांग्रेस उलझ कर रह जाती है। उसी को लेकर फीडबैक और आगे, क्योंकि कंप्रोमाइज लीडर बताया जा रहा है पंजाब के अंदर राजा वडिंग को इनडायरेक्ट तरीके से, और उसमें सुखजिंदर रंधावा हो, चरणजीत चन्नी हो, तो सब खफा है। और ये 4.5 साल के बाद आकर आप देखिए कि ऐसी पोजीशन है कि पार्टी चाहती है कि किसी और को पार्टी का अध्यक्ष लगाया जाए और एक इनडायरेक्ट तरीके से इंडिकेशन दी जाए कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, जिस पर भूपेश बघेल ने साफ यहां पर भी और दिल्ली में भी और पोस्ट के जरिए भी सोशल मीडिया पर यह साफ कर दिया कि कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, अध्यक्ष बदलना या इस पड़ाव पर आकर बदलाव करना, और पार्टी राजा वडिंग के साथ कंटिन्यू करेगी। 2024 में लोकसभा चुनाव उन्होंने जितवाए थे, 7-8 सीटें वो जीतकर लाए थे, तो अब आकर बदलाव करना कहीं ना कहीं पार्टी को भारी पड़ सकता है। और आप देखिए, नया 2015 हो, तब राजा कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रताप बाजवा के बीच खाना जंगी थी, कैप्टन वर्सेस बाजवा था। 2022 में सिद्धू और चन्नी वर्सेस कैप्टन था, तो अब आकर इसको राजा वडिंग वर्सेस चन्नी पंजाब कांग्रेस या दिल्ली हाईकमान बनाना नहीं चाहती। इसी को लेकर फीडबैक या कमेटीज, जो स्ट्रक्चर लिस्ट जारी की गई थी, उस पर दोबारा से मंथन किया जाए।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात आज के 2 अहम खेल मुकाबलों की, आज फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल शुरू हो रहा है। दूसरी तरफ भारत इंग्लैंड के बीच वनडे बर्मिंगम में सीरीज का आगाज हो रहा है। T20 सीरीज में करारी हार के बाद सबकी निगाहें वनडे पर है। क्या बदले हुए फॉर्मेट में टीम की किस्मत बदलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और भारत इंग्लैंड का ये पहला वनडे बर्मिंगम में शाम 3:30 बजे से होगा। फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी आज ही होना है। बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: ईरान से जंग में पूरी ताकत से उतरा अमेरिका, लगातार तीसरे दिन एयर स्ट्राइक। कुवैत बहरीन में ईरानी ड्रोन का खौफ, हॉर्मुज में फिर शुरू हुई अमेरिकी नाकेबंदी। ट्रंप वसूलेंगे 20% टैक्स। हॉर्मुज में यूएई के दो ऑयल टैंकर्स पर मिसाइल अटैक, एक भारतीय नाविक की मौत, 8 घायल। क्रूज मिसाइल से हमला, समंदर में टकराव से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। बिहार के हाई प्रोफाइल बांकीपुर उपचुनाव बीजेपी के लिए बना नाक का सवाल। परंपरागत सीट पर जीत की रणनीति बनाने पहुंचे पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन। त्रिकोणीय मुकाबले के आसार। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में खींचतान जारी। आज दिल्ली में आलाकमान के साथ बड़ी बैठक की संभावना। भूपेश बघेल के फीडबैक पर हो सकती है चर्चा। आज खेलों का सबसे बड़ा दिन, फीफा वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल, फ्रांस और स्पेन की टक्कर। रोहित विराट और बुमराह के साथ इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर
0: नासिक में टूरिस्ट स्पॉट पर परिवार पर जानलेवा हमला। भावली वाटरफॉल घूमने गए परिवार पर हमला, युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर हमला। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कार ने पहले स्कूटी सवार को मारी टक्कर, फिर अनियंत्रित होकर स्कूल बस में जा घुसी, एक की मौत।

0: राजस्थान के बाड़मेर में तेज रफ्तार डंपर आगे चल रही कार में जा घुसा, 5 युवकों की मौत, 3 घायल। बांदा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, चित्रकूट जा रहे 2 श्रद्धालुओं की मौत। भोपाल में दिनदहाड़े दुकान के बाहर बैठे कपड़ा कारोबारी पर चाकू से हमला, पीछे से आए 2 बदमाशों ने चाकू से किया वार। गुजरात के अंबाजी मंदिर दान चोरी का पुराना सीसीटीवी वीडियो वायरल, युवक 500 के नोटों का एक बंडल अपने पैर के नीचे दबाता नजर आया। अकोला में नाले की खुदाई के दौरान मिला पुराना हैंड ग्रेनेड, बम रोधक दस्ते ने कब्जे में लिया। इंदौर मामली कार से निमी कार और स्कूटी सवार में विवाद, सड़क खड़े शख्स को हटने के लिए कहा तो युवक ने कार पर चढ़कर फोड़ा शीशा। जामनगर में हाईवे पर महिला को कार ने मारी जोरदार टक्कर, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के बांदा में नाले में डूबने से 2 बहनों की दर्दनाक मौत, खेलते समय गड्ढे में डूबी बच्चियां। ईरान के दक्षिणी बंदरगाह बंदर अब्बास में तनाव बढ़ने की खबरें, तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक शहर में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय। पूरी बंदर अब्बास में विस्फोट के कारण नुकसान या हताहत को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, साथ ही कई जहाजों को निशाना बनाया गया। हॉर्मुज में यूएई के तेल टैंकर्स पर ईरान का हमला, 1 भारतीय नाविक की मौत, 8 अन्य घायल। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने किया पलटवार, ईरान ने एक बार फिर कुवैत पर किया हमला। ईरान की सरकारी टीवी ने दावा किया कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमले किए गए, हॉर्मुज में अमेरिकी जहाजों को क्रूज मिसाइल से किया गया हमला। ईरान पर ताजा अमेरिकी हमलों से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ी धमकी दी, ट्रंप ने कहा हम ईरान पर जोरदार हमला करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स। ट्रंप के जहाजों पर टैक्स लगाने के लिए कहा अमेरिका इस रणनीतिक समुद्री मार्ग की सुरक्षा करेगा, इससे सुरक्षा पर होने वाला खर्च जहाजों से वसूला जाएगा। ट्रंप ने कहा अमेरिका गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट की भूमिका निभाएगा, यह टैक्स सभी कार्गो जहाज पर लागू होगा, ईरान के जहाजों को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। अमेरिका ने कहा आज से ईरानी पोर्ट्स की नाकेबंदी शुरू करेंगे, यूएस नेवी ने दी जानकारी। ट्रंप ने सभी न्यूट्रल जहाजों को चेतावनी दी गई है कि नाकेबंदी लागू होने से पहले वो इस क्षेत्र से बाहर निकल जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा दुनिया में हमारी सेना सबसे मजबूत, हमें कोई नहीं दबा पाया, हम उन पर दबाव डाल रहे हैं। आईजीसी ने कहा हॉर्मुज में दखल देकर अमेरिका ने दुनिया भर में तेल गैस सप्लाई को खतरे में डाला। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा ईरान हमेशा से हॉर्मुज का संरक्षक रहा है और आगे भी रहेगा। पोस्ट में अराक्ची ने 20% शुल्क को ज्यादा बताते हुए कहा ईरान इस मामले में निष्पक्ष और उचित रुख अपनाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि सैन्य कार्रवाई अभी जारी रह सकती है, सैन्य अभियान 2-3 सप्ताह तक चल सकता है। ट्रंप ने ईरान पर हमले जारी रखने की चेतावनी देते हुए पिक एक्स माउंटेन को संभावित निशाना बताया। अमेरिका ईरान के बीच लगातार हो रहे जवाबी हमलों के बीच तेल की कीमतें 2% बढ़कर 4 हफ्ते में सबसे उच्चतम स्तर पर। अमेरिका ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष में अब 14 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि घायल सैनिकों की संख्या 400 से ज्यादा है। यूएई ने ओमान में मोम्बासा और अल बहिया नाम के टैंकर्स पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हूतियों पर सैन्य कार्रवाई के लिए ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस का समर्थन किया, सऊदी क्राउन प्रिंस की कार्रवाई से पहले ट्रंप ने मांगा था समर्थन। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप की कार्रवाई को दी मंजूरी, सना एयरपोर्ट पर सऊदी हमले के बाद बढ़ा तनाव। हमले के बाद हूतियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन दागे, अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक सऊदी अरब को बड़े संघर्ष की आशंका। ईरान से लौट रहे विमान के दौरान सना एयरपोर्ट पर हुआ हमला, अमेरिकी अधिकारी का दावा विमान में हथियार और मिसाइल के पुर्जे थे। हूतियों ने सऊदी एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, हूतियों ने सऊदी हवाई क्षेत्र में उड़ान न भरने की चेतावनी दी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 के स्थायी सदस्य पद के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया है। कैंपेन की शुरुआत करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत दुनिया को अधिक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और न्याय संगत माहौल के निर्माण के लिए काम करेगा। 2028-29 कार्यकाल के यूएनएससी ने चुनाव जून 2027 में होंगे। एशिया प्रांत समूह की एकमात्र सीट के लिए भारत और तजाकिस्तान के बीच है मुकाबला। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर आई एक रिपोर्ट को भारत और अमेरिका दोनों ने फर्जी बताया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत ने किसी भी ट्रेड प्रस्ताव को ठुकराया नहीं है। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौड़ ने फेक न्यूज पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमारे बीच बातचीत लगातार जारी है। 17 जुलाई को होगा प्रधानमंत्री का पंजाब दौरा, रेल परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे 110 साल पुराना जलंधर कैंट स्टेशन, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जाएगा आधुनिकीकरण। पीएम मोदी 17 जुलाई को मध्य प्रदेश के बालाघाट रेलवे स्टेशन करेंगे वर्चुअल लोकार्पण, महाकौशल को मिलेगी बड़ी सौगात। दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट, 17 जुलाई तक चलेगा भारत टेक्स 2026 का इवेंट। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे भारत टेक्स 2026 का उद्घाटन। प्रदर्शनी में लगेंगे 20,000 स्टॉल, 20 से ज्यादा देशों के डेलीगेट शामिल होंगे। राम मंदिर शराब चोरी मामले में 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई गई, 27 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। शराब चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट तलब। राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस, इस मामले में 20 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए विज्ञापन जारी, 18 जुलाई तक ईमेल के जरिए आवेदन कर सकेंगे कैंडिडेट। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड पर कई अरब रुपए के घोटाले का लगाया आरोप, सीएम योगी को पत्र लिखकर न्याय की मांग की। अयोध्या के मेयर गिरीश ने कहा राम जन्मभूमि क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण, मुआवजे या किसी भी जमीन की शिकायत का प्रशासन प्राथमिकता से समाधान करेगा। बद्रीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल की कोर्ट में पेशी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत। बद्रीनाथ धाम चढ़ावा चोरी को लेकर आमने सामने आए गणेश गोदियाल और हेमंत द्विवेदी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत का मांगा इस्तीफा। सीएम धामी का बद्रीनाथ धाम में दान चोरी मामले पर कड़ा प्रहार, बोले दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। मध्यप्रदेश के दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, 16वें नंबर पर नरोत्तम मिश्रा का नाम। आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार, आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी, 2020 दिल्ली दंगे में अंकित शर्मा की हुई थी हत्या। आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी करार, 6 आरोपी बरी, दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाया फैसला। ताहिर हुसैन ने कहा मैं बेगुनाह हूं, मुझे इंसाफ नहीं मिला है। बीजेपी का आरोप आपने ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिश की, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने 2020 के दंगे पर कहा यह हिंदुओं के खिलाफ एक सोची समझी साजिश थी। महाराष्ट्र के डोंबिवली अस्पताल में मारपीट का मामला, शिवसेना पार्षद रमेश मात्रे समेत 4 आरोपियों पर जमानत की आज होगी सुनवाई। आज पंजाब में कांग्रेस के संकट पर बड़ी बैठक के आसार, राहुल गांधी, खड़गे, केसी वेणुगोपाल की दिल्ली में बैठक संभव। बैठक में पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल से मिले फीडबैक पर चर्चा हो सकती है। 2027 के राज्य चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में संकट। बिहार में बाकीपुर उपचुनाव, नितिन नवीन की आज बैठक, नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे बीजेपी अध्यक्ष। सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बॉम्ब चढ़ाने की मिली धमकी, पुलिस जांच में अब तक कुछ नहीं हासिल हुआ। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ का कहर, भारत चीन सीमा के पास पारसी पार्लो इलाके में जलमग्न हुए कई घर, कुमे नदी का बढ़ा जलस्तर। अरुणाचल के सीमावर्ती कस्बे में बाढ़ से हालात गंभीर, प्रशासन अलर्ट मोड पर, लोगों को नदी के किनारे दूर रहने की सलाह। असम की गुवाहाटी में भारी बारिश से जलभराव, बेलटोला सर्वे इलाके में सड़क पर भरा पानी, फंसे कई वाहन। उत्तरकाशी में स्थित हरकीदून घाटी में बारिश से बहा पुल, सड़क मार्ग बाधित होने से जेसीबी मशीन के सहारे उफनता नाला पार कर रहे हैं ग्रामीण पर्यटक। देहरादून के विकास नगर में उफनती नदी के ऊपर ग्रामीणों ने बनाया खतरनाक पुल, वायरल हुआ वीडियो। देहरादून में सड़क निर्माण के दौरान मलबा गिरा, 2 श्रमिकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के पास भूस्खलन, सड़कें बंद, यातायात बाधित। सूरत में आज तक की पड़ताल का खुलासा, खाड़ी के ऊपर स्लैब डालकर बनाई स्कूल की पार्किंग। उदयपुर में भारी बारिश के बीच सड़क धंसी, गड्ढे में फंसी कार, नगर निगम की लापरवाही पर उठे सवाल। लखनऊ में सीएनजी सिलेंडर से भरे ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 2 किलोमीटर दूर तक घसीटा, ट्रैफिक पुलिस ने बचाई जान। मुजफ्फरपुर में एक बुजुर्ग पेंशनधारक के बैंक खाते में अचानक आए 700 करोड़ रुपए क्रेडिट हुए, कुछ ही देर बाद खाते का बैलेंस फिर शून्य हुआ। ओडिशा के बालासोर में कारोबारी शेख हमीद हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य शूटर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दांता के अस्पताल में महिला मरीज को एक्सपायर हो चुकी बोतल चढ़ाई गई, सरकारी अस्पताल ने मानी अपनी गलती। जयपुर में ट्रांसफॉर्मर में आधे घंटे तक होते रहे भीषण धमाके, आवाज सुनकर घर से बाहर भागे लोग। पाकिस्तान बेस हैंडलर का संपर्की मोहम्मद अहद गिरफ्तार, आईबी, एटीएस, एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की कार्रवाई। महाराष्ट्र जालना में नवोदय विद्यालय में रैगिंग का मामला, 9वीं के छात्र कपड़े धुलवाने और मारपीट के आरोप में 11वीं के 7 छात्र सस्पेंड। महाराष्ट्र में खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन, मिलावटी दूध और गंदे खाद्य कारोबार पर सख्त कार्रवाई। गुजरात के नवसारी में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट साइट से लाखों रुपए के लोहे के सरिये और अन्य सामान चोरी, 7 गिरफ्तार। जूनागढ़ के चिड़ियाघर में पर्यटकों की खतरनाक करतूत, बाघ के बाड़े में फेंका कपड़ा। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए ओडिशा फायर सर्विस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पूरी रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए 12,000 पुलिसकर्मी। अहमदाबाद से सामने आई सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर, जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले मुस्लिम समुदाय ने मंदिर को भेंट किया सोने चांदी से बना रथ। अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में स्थित जगन्नाथ मंदिर में 16 जुलाई को निकलेगी 149वीं भव्य दिव्य रथ यात्रा। उदयपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप, 16 जुलाई को नगर भ्रमण पर निकलेंगे भगवान जगन्नाथ। फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले सेमीफाइनल मुकाबले में आज फ्रांस और स्पेन के बीच मुकाबला, रात 12:30 बजे डाला स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। और अब बात अरुणाचल प्रदेश में आई बाढ़ की। लगातार हो रही बारिश के चलते अरुणाचल प्रदेश के कई इलाके इस वक्त जलमग्न हैं। कमेयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इलाके में कई कॉलोनियों और गांव की सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हैं। भूस्खलन और कटाव से सड़कों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है।
1: डूबे हुए घर द्वार, डूबे हुए बाग बगीचे, डूबी हुई सड़कें, चारों तरफ पानी ही पानी, लगातार बारिश। ये तस्वीरें किसी झील या नदी की नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश के पारसी पारलो कस्बे की हैं, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पानी की लहरें समंदर की तरह हिलोरे मार रही हैं। ये गोदाम लहरों की मार से नष्ट हो चुका है। अब ये तस्वीरें देखिए, किस तरह मलबे को पानी बहाए ले जा रहा है। लगातार कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी है। लोगों के आशियाने, सरकारी दफ्तर, स्कूल, बंगले, सब जगह बाढ़ का पानी भर चुका है। कई घर आधे से ज्यादा पानी में डूबे हुए हैं, तो कहीं बाग बगीचे पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। जो सड़कें कभी लोगों की आवाजाही का जरिया थी, आज वे भी पानी के नीचे गायब हो चुकी हैं। दूर दूर तक सिर्फ पानी का अथाह फैलाव नजर आता है। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित हो गई है। हालात इसलिए और गंभीर हैं क्योंकि कुमेह नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का पानी किनारों को तोड़ते हुए पूरे कस्बे में फैल गया है, जिससे बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार बारिश से सिर्फ बाढ़ ही नहीं आई है बल्कि कई जगह भूस्खलन और मिट्टी की कटाव की घटनाएं भी सामने आई हैं। इसकी वजह से सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा। कई घाटी पुल तेज बहाव में बह गए, जिससे पारसी पारलो का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया। भारत चीन सीमा के करीब बसे इस दूर दराज इलाके तक पहुंचना अब बेहद मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं। सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन लगातार जारी बारिश और बढ़ते जलस्तर ने लोगों की चिंता और मुश्किलें दोनों बढ़ा दी हैं। जब तक बारिश नहीं थमती और नदी का जलस्तर कम नहीं होता, तब तक इस सीमा क्षेत्र में हालात सामान्य होने की उम्मीद बेहद कम नजर आती है। युवराज मेहता, पारसी पार्लो, अरुणाचल प्रदेश, आज तक।
0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का उछला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 Products, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये देखो एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
3: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
4: वाह वाह वाह वाह।
3: सेबी और एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
5: समझ कर, इन्वेस्ट कर।
6: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
7: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
10: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
11: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
12: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
13: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
14: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
15: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी हिंद बड़े आराम से।
2: उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े चेहरे, जनता के सबसे बड़े सवाल और आज तक की सबसे बड़ी पंचायत, 15 जुलाई लखनऊ।
3: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक, तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
3: सॉरी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: कहने को तो बांकीपुर में उपचुनाव होना है, मगर यहाँ की सियासी सरगर्मियाँ जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने ताल ठोकी है। उनके सामने अब बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार और आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता हैं। मगर बीजेपी मान के चल रही है कि बांकीपुर में टीके की हार तय है।
1: अब उनके पार्टी से कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था ये बाय इलेक्शन में बांकीपुर से, अपने कच्छा पिन के उतर गए क्योंकि कोई उम्मीदवार ही नहीं आ रहा था। अब ये जाएंगे तो जवाब देंगे, जवाब तो लोग देख रहा है, झूठ की खेती बार बार नहीं चलता।
0: बीजेपी के इस भरोसे के पीछे वो आंकड़े हैं जिनमें 3 दशक से बांकीपुर पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। यहाँ बड़ी तादाद में कायस्थ मतदाता हैं और वही बीजेपी की ताकत है, इसीलिए बीजेपी के सहयोगी दल भी भरोसे से भरे हुए हैं।
2: अरे उनको इस बात की समझ हो गई है कि यहाँ रह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता एनडीए के साथ।
0: कुल 11 प्रत्याशियों ने अब तक नामांकन दाखिल किया है, जिसमें लालू प्रसाद नाम के एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है, मगर कांग्रेस ने अब तक अपने किसी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। अलबत्ता कांग्रेस कह रही है कि बांकीपुर से इस बार बीजेपी हारेगी।
3: पहली बार वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है सम्राट जी के नेतृत्व में, और उनकी परीक्षा हो रही है। एक तो पहले उन्होंने ऐसा प्रत्याशी बनाया जो जिसपे करप्शन के चार्जेस थे, जिसके पिताजी पर करप्शन के चार्जेस थे, फिर जिनको अभी बदला उन पे भी कई तरह की कंट्रोवर्सीज हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी।
0: बांकीपुर का रण दिलचस्प है। देखना होगा कि पहली बार चुनावी रण में उतरे पीके क्या बीजेपी के गढ़ को फतह कर पाएंगे। आज तक ब्यूरो।

0: जंग के बीच इसराइल में बजा चुनावी बिगुल। 38 साल बाद तय वक्त पर डाले जाएंगे वोट। 53 साल में पहली बार कोई सरकार अपना पूरा कर रही है कार्यकाल। जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग के हालात बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इसराइल में चुनाव का ऐलान हो गया है। इसराइल में 27 अक्टूबर को मतदान होगा। ऐसे में सबकी नजर नेतन्याहू के फिर से सत्ता में लौटने पर होगी। चुनावी तारीख के ऐलान के साथ साथ चुनाव तय समय पर कराने का फैसला भी लिया गया है। वहीं उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरी तारीख 7 सितंबर होगी। आपको बता दें, इसराइल की राजनीति लंबे समय से अस्थिर रही है। अक्सर गठबंधन टूटने, बहुमत खोने और वक्त से पहले चुनाव कराने पड़े हैं, लेकिन इस बार कोई सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद चुनाव में उतर रही है। ऐसा 53 साल बाद हो रहा है। चैनल 12 न्यूज के सर्वे की माने तो नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी और गादी आइजनकोट की पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। दोनों दलों को 120 सदस्यीय संसद में 23-23 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। इससे साफ है कि मुकाबला आसान नहीं रहने वाला। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
5: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
6: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: ईरान से जंग में पूरी ताकत से उतरा अमेरिका, लगातार तीसरे दिन एयर स्ट्राइक। कुवैत बहरीन में ईरानी ड्रोन का खौफ। ट्रंप बोले 2-3 हफ्ते चलेगी जंग और मूस में लेंगे 20% टैक्स। हॉर्मुज में यूएई के 2 ऑयल टैंकरों पर मिसाइल अटैक, 1 भारतीय नाविक की मौत, 8 घायल। क्रूज मिसाइल से हमला, समंदर में टकराव से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। यूपी में बीजेपी ने शुरू की 2027 चुनाव की तैयारी। एसआईआर में आए बदलाव के हिसाब से बनेगी रणनीति, नए तरीके से बूथ और मंडलों का पुनर्गठन। 19 से 22 जुलाई तक होगा बूथ सम्मेलन। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में खींचतान जारी, आज दिल्ली में आला कमान के साथ बड़ी बैठक की संभावना। भूपेश बघेल के फीडबैक पर हो सकती है चर्चा। आज खेलों का सबसे बड़ा दिन, फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में फ्रांस और स्पेन की टक्कर। रोहित, विराट और बुमराह के साथ इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में उतरेगी टीम इंडिया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। आज सुबह में आपका स्वागत है। सुबह 10 बजे के बुलेटिन में बात चार बड़ी सियासी खबरों की। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी अब एसआईआर के आंकड़ों के आधार पर नई रणनीति की तैयारी कर रही है। आपको बताएंगे कि आखिर यूपी में जीत के लिए बीजेपी का क्या नया प्लान है। साथ ही बताएंगे कि पंजाब कांग्रेस में कौन सा घमासान छिड़ा हुआ है, जिसे लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक होनी है। इसके साथ बात करेंगे दिल्ली दंगों में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने के बाद शुरू हुई सियासत की। बुलेटिन में बिहार की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव की भी चर्चा करेंगे, जिसे लेकर आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी नए स्तर से बूथ और मंडलों का गठन करेगी। नए बूथ और मंडल एसआईआर के बाद मतदाताओं के बदले आंकड़ों के हिसाब से बनाए जाएंगे। जिन इलाकों में बूथ की संख्या 80 से ज्यादा होगी, वहां नए मंडलों का गठन किया जाएगा। इसके साथ बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को बूथ स्तर तक प्रभावी ढंग से संचालित करने की रणनीति भी बनाई है, ताकि चुनाव में बूथ स्तर पर पार्टी को और ज्यादा मजबूती दी जा सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए आशीष श्रीवास्तव का रुख करते हैं। आशीष, नई रणनीति है या कुछ बदलाव किए गए हैं, और कैसे बीजेपी मानती है कि इस प्लान से उसको ज्यादा ताकत मिल सकती है?
1: देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में हुई और यहाँ पर कई वापो हुआ, उसमें अब बीजेपी ने जो प्रदेश अध्यक्ष है पंकज चौधरी, उन्होंने बैठक की और सभी बूथ स्तर पर उन बदलावों के संकेत दिए, और ये भी कहा कि जहां पर एसआईआर के हिसाब से जो आंकड़ों में बदलाव आया है उसमें बूथ चेंज किया जाएगा। यानी कि ये भी कहा गया है कि अगर 80 से ऊपर अगर वहां पर क्षेत्र में बूथ होते हैं तो नए बूथों का भी निर्माण किया जाएगा। यानी कि जो बीजेपी है उसकी स्ट्रेटजी है कि कहीं ना कहीं जो बूथ है अगर उनका वोट बैंक कम हुआ है तो वहां पर नए बूथ को निर्माण करना, साथ ही साथ जहां पर वोट बैंक शिफ्ट हुआ है वहां पर भी कई नए बूथ बनाए जाएंगे। यानी कि बूथ लेवल पर

0: अमरिंदर सिंह राजा वडिंग है तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर रंधावा और उनके समर्थक। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को एक्सटेंशन मिलने के बाद पार्टी के अंदर खींचतान शुरू हो गई है। 1 जुलाई को पार्टी ने घोषणा की कि राजा वडिंग पंजाब यूनिट के अध्यक्ष बने रहेंगे और चन्नी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन होंगे, जिसके बाद सियासी जमीन में खटपट का बीज पड़ गया। वहीं आलाकमान के फैसले से पहले बघेल ने साफ कर दिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, पंजाब का मतदाता लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी श्री राहुल गांधी जी पर भरोसा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का पंजाब में एक ही चेहरा है, वो है श्री राहुल गांधी जी। पंजाब में जारी सियासी उठापटक पर अब आलाकमान को फैसला लेना होगा, लेकिन चुनाव से पहले खींचतान पर विरोधियों को एक और दांव मिल गया है। आज तक ब्यूरो।
1: इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अमन भारद्वाज का, जो जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। अमन, मुलाकात तो करके गए थे भूपेश बघेल चन्नी गुट से, लेकिन आपके सूत्र क्या बताते हैं, इस फीडबैक में क्या बताया जा सकता है आलाकमान को?
2: देखिए, फीडबैक में ये सबसे बड़ी बात है कि कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं चलेगा, और ये इनडायरेक्ट इंडिकेशन है राजा वडिंग की ओर, जो अब प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और ये इस समर्थन में, क्योंकि 40 ऐसे प्रोमिनेंट लीडर थे जो चरणजीत चन्नी के साथ, उस फैक्शन के साथ राणा गुरजीत के घर इकट्ठा हुए थे, और जिन्होंने भूपेश बघेल के साथ, क्योंकि चन्नी गुट की मीटिंग सबसे आखिरी दिन हुई, तो उस दिन ये मीटिंग में पूर्व मंत्री पूर्व विधायक मौजूद थे, और इनकी सबसे बड़ी डिससेटिस्फेक्शन थी कि कॉम्प्रोमाइज लीडर ना हो और ऐसा हो जो आगे लीड कर सके। और एक एग्जांपल सिद्धू मूसेवाले का भी दिया गया, क्योंकि उनके पिता बलकौर सिंह वहां मौजूद थे। सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि ये यहां मौजूद है सिद्धू मूसेवाले के पिता, बताइए इनको क्या इंसाफ मिला, क्या पार्टी ने लड़ाई लड़ी, कैसे कांग्रेस में इनके होने का इनको फायदा मिला या लड़ाई लड़ने में मदद मिली हो। तो इस तरीके के एग्जाम्पल एक कॉम्प्रोमाइज लीडर के इनडायरेक्टली राजा वडिंग की ओर इशारा कर दिए गए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस कैलकुलेशन लगाती है दलित, जट, सिख और हिंदू फेस को लेकर, लेकिन आपस में, क्योंकि इन लिस्ट में सभी को सब कुछ मिला लेकिन फिर भी डिससेटिस्फेक्शन है, तो ये सबसे ज्यादा खटकता है कांग्रेस को कि एंड टाइम पर आकर क्यों खाना जंगी होती है, या सब कुछ देकर भी क्यों डिससेटिस्फेक्शन रहती है, क्योंकि बड़े लीडर्स या सीनियर लीडर्स ये मानकर चलते हैं जिनको पहले ओहदे मिले, चाहे उसमें
1: जी अमन, बिल्कुल हर चुनाव से पहले कांग्रेस में इसी तरीके से अंदरूनी कलह बाहर आ जाती है। अब बात बिहार की करते हैं, उसकी राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर की। बिहार की बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की ताबड़तोड़ तैयारियां जारी हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन चुनावी तैयारियों पर बैठक भी करेंगे। बांकीपुर में उपचुनाव नितिन नवीन के सीट खाली करने की वजह से हो रहा है। राज्यसभा जाने के बाद नितिन नवीन ने सीट खाली की थी। बांकीपुर उपचुनाव जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी से दिलचस्प हो गया है। और अब बड़ी खबर दिल्ली से। साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में एक दिन पहले फैसला आया। इस केस में कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। अब अदालत के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कोर्ट के फैसले के बाद ताहिर हुसैन ने खुद को बेगुनाह बताया और इंसाफ न मिलने की बात कही। वहीं बीजेपी अब इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल रही है। अंकित की हत्या 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगे के दौरान हुई थी। अंकित के पिता की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई थी। दंगों के दौरान जब उनका बेटा लापता हो गया था, तब उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद अंकित का शव बाद में एक नाले से बरामद हुआ था।
3: अरे जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए।
1: 2020 के दिल्ली दंगा मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने के बाद दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोल दिया है। कपिल मिश्रा ने कहा है कि फैसले से साफ है कि दिल्ली दंगे सुनियोजित साजिश थे, जिसमें आम आदमी पार्टी के लोग शामिल थे।
4: देखिए, 2020 में जो दंगे हुए, आज ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन और ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोगों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का

0: प्लान था, और उसके बाद घेर के हिंदू जो वहाँ पे रहने वाला हिंदू समाज है उनको मारने की साजिश थी। और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए, नौजवान बेगुनाह अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर जिनको कई बार चाकुओं से गोदा गया और बाद में उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया।
1: उधर बीजेपी के हमले के बीच आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान ने कहा है कि सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट में अपील करने जाएंगे। वो इसी फैसले की बात कर रहे हैं जिसमें ताहिर हुसैन जो कि पूर्व पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, उनको दोषी करार दिया गया है।
2: कोर्ट का फैसला है उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का सेशन से आया है तो उसमें हाईकोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा क्या नहीं रहा, ये सबको मालूम।
1: दिल्ली दंगा मामले में कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी ताहिर हुसैन का बचाव किया, साथ ही दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा पर हमला बोल दिया।
3: कपिल नहीं है ना, कपिल होता तो शायद ना होती, तो इन नाम को तो सजा होनी ही है। इनके लिए एविडेंस सारे इकट्ठे हो गए, जबकि वो ताहिर पुलिस वालों के साथ घूम रहा था दंगा कंट्रोल कराने के लिए, और कपिल कहाँ घूम रहा था दंगा कराने के लिए, कपिल बाहर है और ताहिर अंदर है, बस यही तो फर्क हो रहा है।
1: और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा का। पीयूष, ये सियासत फिर से गर्मा गई है, एक तरफ ताहिर हुसैन के दोषी ठहराए जाने का मुद्दा उठाया जा रहा है तो दूसरी तरफ कपिल मिश्रा के भी विवादित बयान एक बार फिर से उछाले जा रहे हैं।
4: जी बिल्कुल, राजनीति तो होगी ही अंजलि इसमें, लेकिन ये बात भी नहीं नजरअंदाज की जा सकती है कि दंगा बहुत विध्वंस दंगा था और हमने खुद उस जगह से रिपोर्ट किया है। जब अंकित शर्मा का शव उस नाले से निकाला जा रहा था उस वक्त हम वहां खुद मौजूद थे, हमने देखा कि कैसे ताहिर हुसैन की फैक्ट्री पर छत पर कई अलग अलग तरह के सामानों को इकट्ठा किया गया था, तो ये सुनियोजित दंगा था। अब इसमें ताहिर हुसैन को कन्विक्ट किया गया है, अब देखना यह होगा कि उनको किस तरह की सजा जो है वो मिलती है। बीजेपी आम आदमी पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कपिल मिश्रा के आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह वो दिल से बहुत दुखी हैं, उनका ये मानना है कि वो सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जाएंगे। जरूर सियासत तो होगी लेकिन इसमें सच्चाई भी सामने है, इसमें तथ्य भी सामने है, और इन्हीं तथ्यों के बेस पर जो है ताहिर हुसैन के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं फैसला आया है, उनको कन्विक्ट किया गया है, उनके साथ साथ कई और लोगों को भी कन्विक्ट किया गया। इसी के साथ साथ जो अंकित शर्मा का परिवार है वो आज भी डर के साए में जी रहा है। हमारी जो बात हुई अंकित शर्मा के परिवार से, उनका ये मानना है कि वो उस दंगे के उस घटना के 3 से 4 महीने के बाद ही दिल्ली छोड़कर उत्तर प्रदेश में एक जगह पर शिफ्ट हो गए हैं, आज भी वो डर के साए में जीते हैं। और आज जब फैसला निकल के सामने आया तो उनकी वो यादें जो किसी को याद नहीं आनी चाहिए वो यादें ताजा हो गई और फिर से मन भराया, तो कहीं ना कहीं सियासत हो रही है लेकिन तथ्यों के बुनियाद पर जो है।
1: जी पीयूष, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। उधर दिल्ली दंगों के दौरान विशेष पुलिस आयुक्त के रूप में जांच का नेतृत्व करने वाले दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने कहा कि दिल्ली दंगों के दौरान हमारी पहली जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखने की थी, जांच के दौरान विश्वसनीय साक्ष्य जुटाने और दोषियों को कानून के कटघरे में लाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया, अब अदालत के फैसले पर उन्होंने संतोष जताया है। और अब खबर बंगाल से। कोलकाता एयरपोर्ट कैंपस में मौजूद गौरीपुर मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। जमीयत उलेमा हिंद पश्चिम बंगाल के प्रमुख सदीकुल्ला चौधरी ने कहा है कि बीते 130 सालों से इस मस्जिद में नमाज हो रही है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिना कोई नोटिस के गेट बंद कर दिया, दोनों के लोगों के साथ जबरदस्ती की गई है, उन्होंने कहा है कि यह अन्याय है।
5: ১৩০ বছর মসজিদে নামাজ হচ্ছে, এটা অন্যায়, এটা বল প্রয়োগ হয়েছে। আমরা ভারতের নাগরিক, এয়ারপোর্টের সুবিধা অসুবিধা আমরা জানি, মুসলমান নিজের হাতে মসজিদ তুলে দিতে পারে না।
1: উদর সদিকুল্লাহ চৌধুরী কে বয়ান পর ভড়কি বিজেপি হ্যায়, और विधायक ने कहा है कि अगर भड़काऊ बयान देकर लोगों को उकसाने का प्रयास हुआ तो कानूनी कार्रवाई होगी।
6: सिद्दीकुल्ला चौधरी जो है आप लोग जानते हैं, ये टीएमसी गवर्नमेंट में मिनिस्टर रह चुके हैं और एक धर्मीय नेता भी है। सिद्दीकुल्ला चौधरी भी ओपनली तो बोल रहा है कि नहीं, मैं कब को शांत होने के लिए बोला हूँ, लेकिन मेरे पास खबर है, मैं पुलिस को भी बताया हूँ कि गांव के जो बासिंदा है उन लोगों को उसका रहा है कि आप लोग इसका प्रोटेस्ट कीजिए रास्ते में। सबसे बड़ी बात तो मस्जिद का जमीन ही मस्जिद का नहीं, तो दैट लैंड बिलोंग्स टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब ये प्योर एनक्रोचमेंट है। आप इसके लिए विकास और सुरक्षा दोनों के बीच कोई भी ना आए। आप लोगों को पता है बंगाल में आज से गुंडा दमन कानून भी चालू हो गया है, इसलिए कानून को कोई हाथ में मत लीजिए। किसी के भड़काव में आके अपना जीवन अपना परिवार को तकलीफ मत।
1: दरअसल कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट परिसर में स्थित 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने और बाहरी लोगों की एंट्री पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी गई है। एयरपोर्ट के रनवे से महज 165 मीटर की दूरी पर स्थित इस मस्जिद को सुरक्षा कारणों और रनवे के विस्तार के लिए दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
7: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, চীন বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি, ওরা তো বলেছিল যে বিজেপি এলে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেবে, নামাজ পড়তে পারবে না, তা বকরি ঈদও করেছেন, পশু হত্যা আইন মেনে করেছেন, অসুবিধা নেই।
1: और जहां ये पूरा विवाद शुरू हुआ है यानी कि कोलकाता एयरपोर्ट, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं हमारे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू।
8: हम लोग इस वक्त खड़े हैं कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर, आप देख सकते हैं ये है बाउंड्री वॉल और बिल्कुल इस बाउंड्री वॉल में एक गेट बना हुआ है। ये बांकरा इलाका है उत्तरी दक्षिण उत्तरी 24 परगना में और ये जो गेट है इस गेट से आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी अब तक, क्योंकि इसी गेट से कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर स्थित जो मस्जिद है उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते थे और ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है क्योंकि अब एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ये कहा गया है कि इस मस्जिद को यहां से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चूंकि पिछले कई दशकों से जो ये 136 साल पुराना मस्जिद एयरपोर्ट के अंदर है वो एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे से महज कुछ मीटर दूर है, 160 मीटर दूर है और जिसके वजह से एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी चुनौती बन चुकी है एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए। पिछले कई दशकों से इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, नमाज अदा करने के लिए लोगों को इस गेट के अंदर से जाने दिया जाता था और सिर्फ आधार कार्ड देख के लोगों को अंदर जाने दिया जाता था। अब नए सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार इस पर फिर से नजर डाल रही है। जो लोकल एमएलए हैं सौरभ सिकदार बीजेपी के, उन्होंने ये कह दिया है कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है, थ्रेट है, सिर्फ एक आधार कार्ड के बेसिस पे लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है जो एक कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ऐसे जगह पे ये एयरपोर्ट है कोलकाता में, कोलकाता पश्चिम बंगाल के बॉर्डर है, बांग्लादेश भूटान है और इंडिया चाइना बॉर्डर भी ज्यादा दूर नहीं। स्ट्रेटेजिकली ये एयरपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इस एयरपोर्ट के अंदर जिस तरह से मस्जिद बनी हुई है और बाहर से लोगों को एंट्री मिलती थी इतने सालों तक, उसको कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई है। अब कोई भी इस एयरपोर्ट में इस मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता यहां पे अभी, और जो जितने भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे मस्जिद कमेटी हो, जो उत्तरी 24 परगना जिले के आधिकारिक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल्स है, उनमें सेवरल राउंड ऑफ मीटिंग हो चुकी है और सरकार ने यह साफ कह दिया है कि यहां पे इस तरह से मस्जिद में नमाज अदा नहीं हो सकता और इसको रेलोकेशन की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। कैमरा पर्सन शुभजीत के साथ इंद्रजीत, आज तक, कोलकाता।
1: पूरे देश में इन दिनों राम मंदिर चढ़ावा चोरी सुर्खियों में है। इस बीच बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कि ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि राम मंदिर का घोटाला तो सिर्फ करोड़ों में है जबकि वक्फ संपत्तियों का घोटाला अरबों खरबों में है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड में बड़े घोटाले का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि यदि वक्फ बोर्ड की सही दिशा में जांच हुई तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी से भी बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा। उन्होंने घोटाले का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और जांच की मांग की है।
7: मगर वक्फ बोर्ड में करोड़ों नहीं अरबों और खरबों की चोरी सामने नजर आएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
1: और अब रुक करते हैं नासिक का, जहां इगतपुरी कस्बे में भवली डैम और वाटरफॉल घूमने गए परिवार की महिला सदस्य के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध करने पर कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने न सिर्फ परिवार के साथ मारपीट की बल्कि लगभग 15 किलोमीटर तक उनका पीछा भी किया और उनकी कार को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारी सहयोगी विद्या का। विद्या, क्या अभी तक इस मामले में जो लोग नजर आ रहे हैं वीडियो में उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाई है?
9: जी बिल्कुल, अभी तक जो अंबड़ पुलिस स्टेशन है और साथ ही नासिक रूरल, क्योंकि ये इलाका जहां पे हुआ था ये इंसिडेंट वो नासिक रूरल में आता है, तो नासिक रूरल और अंबड़ पुलिस स्टेशन जो सिटी नासिक सिटी में है, इन ये दोनों मिल के इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जाहिर सी बात है उस वीडियो में एक नंबर प्लेट भी दिख रहा है, तो आरोपियों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो तुरंत दो लोगों को उठा लिया गया था, उनसे पूछताछ चल रही है। कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, उनसे डिटेंशन में पूछताछ कर रही है, लेकिन वो आरोपी नहीं ऐसा बताया जा रहा कि वो जान पहचान वालों के लोग हैं। लेकिन जो आरोपी हैं उनमें से दो लोगों की शिनाख्त हो गई है, उनको हिरासत में रखा गया है। साथ ही दूसरे और लोगों की तकरीबन बताया जा रहा है 7-8 लोग हैं इन्वॉल्व इस पूरे मामले में और उन सब की खोजबीन चल रही है। बाकी सारे जो लोग हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये हुआ, जहां पर ये फॉल के पास ये मामला शुरू हुआ था और तकरीबन 10-15 किलोमीटर तक उन लोगों को चेज करना, जिस तरीके से उनकी गाड़ी को तोड़ देना, पूरे विंडो पेंस पे पूरे आयरन रॉड्स फेंकना, ये एक आम बात नहीं है। मुंबई पुलिस ऐसे मानसून के समय में काफी सारे लोग बाहर घूमने फॉल्स की तरफ जाते हैं, ऐसा इंसिडेंट जनरली देखा नहीं जाता है। तो जाहिर सी बात है नासिक पुलिस भी सकते में है कि आखिर इस तरह से कैसे कोई कर सकता है, और इसकी वजह से काफी ज्यादा एक्शन में वो दिख रही है।
1: जी शुक्रिया विद्या, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है और उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। अब चलते हैं दिल्ली, जहां पीतमपुरा शालीमार बाग रोड पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि बीच सड़क पर सरकारी जमीन पर बनी एक मजार पर बुलडोजर चला है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। तो दिल्ली की एक सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार पर बुलडोजर एक्शन हुआ है।

0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
4: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। यू सी, इवन दो शी इज बाइंग अ न्यू पेयर ऑफ जींस, शी नोज दैट इट फिट्स विद इन हर मंथली बजट, बिकॉज़ वेल्स फार्गो विल सेंड एन अलर्ट इफ हर बैलेंस ड्रॉप्स बिलो हर सेट अमाउंट। यप, Nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
6: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pearce shared why she loves award show season.
7: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
6: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays, 7 a.m. to 1 p.m. Central, right here on TuneIn.
8: Papa. सॉरी अरे गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
9: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
8: छक्का?
9: सब कैशलेस हो गया है।
8: हाँ, ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ। तू
10: चार्ज हुआ यार।
11: बैट किसका है?
12: टाटा AIG है तो भरोसा है।
13: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
0: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
14: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
0: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना? अर्ज किया है पहले, गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
15: वाँ वाँ वाँ वाँ।
0: सेबी और NSE का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड एप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
16: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
17: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
18: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
19: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
20: सोच बदलो और बैंक भी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
8: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी जॉइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

से जंग में पूरी ताकत से उतरा अमेरिका, लगातार तीसरे दिन एयर स्ट्राइक, कुवैत बहरीन में ईरानी ड्रोन का खौफ। ट्रंप बोले 2-3 हफ्ते चलेगी जंग, हॉर्मुज में लेंगे 20% टैक्स। हॉर्मुज में यूएई के 2 ऑयल टैंकरों पर मिसाइल अटैक, एक भारतीय नाविक की मौत, 8 घायल, क्रूज मिसाइल से हमला, समंदर में टकराव से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल।

0: हिसाब से बनेगी रणनीति, नए तरीके से बूथ और मंडलों का पुनर्गठन। 19 से 22 जुलाई तक होगा बूथ सम्मेलन। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में खींचतान जारी। आज दिल्ली में आला कमान के साथ बड़ी बैठक की संभावना। भूपेश बघेल के फीडबैक पर हो सकती है चर्चा। आज खेलों का सबसे बड़ा दिन, फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में फ्रांस और स्पेन की टक्कर। रोहित, विराट और बुमराह के साथ इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में उतरेगी टीम इंडिया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

स्वागत है आज सुबह में अमेरिकी एयर स्ट्राइक और हॉर्मूज पर बिग फाइट, इस पर चर्चा करेंगे। इसकी आशंका क्योंकि अब बढ़ती जा रही है। तीसरे चरण के हमले में अमेरिका रोजाना ईरान की धरती पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, उसके ठिकानों को तबाह कर रहा है। तो उधर ईरान भी अमेरिका के मददगार देशों में अमेरिकी बेस पर निशाना साध रहा है। अभी एक दिन पहले ही ईरान ने यूएई के दो बड़े टैंकर पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। इस हमले को लेकर तनाव और बढ़ गया। तो इस बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं हॉर्मूज में बढ़े तनाव की। ईरान की आईआरजीसी ने दो तेल टैंकरों पर हमला किया। इसे लेकर आईआरजीसी ने ताजा बयान में कहा है कि नियमों का पालन नहीं करने पर यह अटैक किया गया। दोनों टैंकर यूएई के थे। इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हुई है, जबकि 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और घायलों में 6 भारतीय हैं, जबकि 2 यूक्रेनी नागरिक हैं। यूएई ने ईरान के इस हमले को लेकर गहरी नाराजगी जताई है और कहा है कि ईरानी सेना ने मुंबासा और बहिया नाम के टैंकरों पर क्रूज मिसाइल से निशाना दागा है। और यूएई ने ईरान के हमले को लेकर कहा है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने का पूरा अधिकार है। साथ ही यूएई ने यह भी कहा है कि किसी भी खतरे से निपटने की पूरी तैयारी है। उधर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने दो टैंकरों पर ईरान के हमले की कड़ी निंदा की है। आईएमओ ने कहा है कि कन्वेंशन समेत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने के लिए कोई टोल या शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए, यानी कि हॉर्मूज से आवाजाही सभी के लिए फ्री होनी चाहिए। तो अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला किया है। ताजा हमले में ईरान के बंदर अब्बास, किश द्वीप, केशम द्वीप, अबू मूसा द्वीप और बुशेहर को निशाना बनाया गया है। ईरानी समाचार एजेंसियों के मुताबिक बंदर अब्बास के ईस्ट और साउथ के इलाकों में कई धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। वहीं किश द्वीप पर 2 धमाकों की खबर है। साथ ही बुशेहर के जाम गवर्नेट में कई धमाकों की खबरें सामने आ रही है। ईरान के समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक हमले के बाद बंदर अब्बास में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया है। उधर ईरान ने बहरीन पर भी हमला किया है। बड़ी खबर आ रही है, बहरीन के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमलों को रोक लिया है। बहरीन सरकार की तरफ से बयान जारी किया गया है कि पिछले कुछ घंटों में देश की एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के कई हवाई हमलों को रोका और उन्हें नष्ट कर दिया।

0: अमेरिका और ईरान में घमासान तेज है। अब हॉर्मूज को लेकर नए सिरे से छिड़ी जंग में ईरान ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज को लेकर ईरान को सीधी धमकी दी है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल नहीं होगा, अगर ईरान नहीं माना तो ईरान पर विनाशकारी हमला करेंगे। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के खिलाफ एटम बॉम्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं?
1: चौबीस घंटे में ईरान के 140 ठिकानों पर हमला। हॉर्मुज पर ईरानी हमले का अमेरिकी बदला। अमेरिका ईरान जंग में सऊदी अरब की एंट्री। पुतिन ने तेहरान भेजा एयरबोर्न कमांड विमान। क्या ईरान के साथ आएगा रूस और चीन? क्या बस एक कदम दूर है तीसरा विश्व युद्ध? हॉर्मुज की जंग, क्या ट्रंप गिरा देंगे एटम बम? बीते 15 दिनों में यह तीसरी बार है जब ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज को लेकर वार पलटवार शुरू है। बीते 15 दिनों में अमेरिकी सेना की तरफ से ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर बमबारी की गई। वहीं बीते 24 घंटे में 140 ईरानी ठिकानों पर अमेरिकी सेना ने एयर स्ट्राइक की। दावे के मुताबिक ईरान के केशम, सिरिक, बंदर अब्बास, जस्क, बुशहर, खोडाम, बंदर मैशहर, बेहबहान, अंदी मिश्क, देशफुज, अहवाज, अबादान और खुर्रम शहर में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी सेना का दावा है कि ये हॉर्मुज पर ईरानी हमले का बदला है और जब तक ईरान की तरफ से हॉर्मुज में हमले जारी रहेंगे तब तक ईरान के ठिकानों पर बम वर्षा जारी रहेगी। मतलब यही है कि हॉर्मुज अब अमेरिका और ईरान के बीच जंग का एपिसेंटर बन चुका है। ईरान हॉर्मुज से अपना नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहता और अमेरिका हॉर्मुज पर ईरानी नियंत्रण की कमर तोड़ना चाहता है। ईरान पर हमले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि हॉर्मुज पर अब अमेरिका का नियंत्रण होगा। हॉर्मुज खुला है और ईरान के साथ या उसके बिना खुला ही रहेगा। हम ईरानी नाकेबंदी को फिर से लागू कर रहे हैं। इसे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सिर्फ ईरान के जहाजों या ग्राहकों को ही आने जाने से रोकती है। बाकी सभी देश इस हॉर्मुज का खुले तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। अब से अमेरिका को गार्जियन ऑफ हॉर्मुज माना जाएगा। साथ ही निष्पक्षता के नाते दुनिया के इस बेहद संवेदनशील इलाके में सुरक्षा और हिफाजत का काम करने के लिए जरूरी सभी खर्चों की भरपाई के तौर पर यहां से भेजे जाने वाले सभी कार्गो पर 20% की दर से शुल्क लिया जाएगा। ये प्रक्रिया और सिस्टम तुरंत से शुरू हो जाएंगे। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ने हॉर्मुज पर अपने टोल टैक्स का ऐलान किया। उधर IRGC ने ट्रंप को धमकी देते हुए यही कहा है कि हॉर्मुज को लेकर ट्रंप का सपना कभी पूरा नहीं होगा। ईरान की सेना ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों के बाहर और उसके बलों की इजाजत के बिना वाणिज्यिक या तेल टैंकर यातायात में किसी भी अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप का बलपूर्वक जवाब देंगे। अमेरिकी सेना को रसद संबंधी मदद प्रदान करने वाले किसी भी क्षेत्रीय देश को ईरान की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ युद्ध में भाग लेने वाला माना जाएगा। हम किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को हॉर्मुज के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे। हॉर्मुज को जहाजों के लिए तभी फिर से खोला जाएगा जब वहां अमेरिकी सैन्य गतिविधि समाप्त हो जाएगी। मतलब यही है कि जंग में आगे क्या होगा ये हॉर्मुज से तय होना है। हॉर्मुज को लेकर ही अमेरिकी सेना ने ईरान के 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। तो ईरान ने पलटवार करते हुए मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्कों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की। ईरानी सेना का दावा है कि बहरीन के जुफैर में स्थित ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए और ओमान में 2 रडार नष्ट कर दिए गए। IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर फ्यूल टैंक और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया। साथ ही अहमद अल जबेर एयरबेस पर एक रणनीतिक FPS रडार प्रणाली को भी नष्ट कर दिया है। भले ही ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों को अपनी ताकत के तौर पर पेश कर रहा है लेकिन हॉर्मुज को लेकर छिड़ी नई जंग में पहली बार दुनिया 2 खेमों में बंटती हुई नजर आ रही है। ये पहली बार है जब ईरान पर हमलों को लेकर जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे मुल्क अमेरिकी पाले में खड़े नजर आ रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने हुर्मुज पर ईरानी हमले की निंदा की है। और तो और, अमेरिकी हमले के बाद मिडिल ईस्ट के देशों पर ईरान के हमलों का भी विरोध किया है। वहीं ब्रिटेन ने IRGC को आतंकी संगठन घोषित किया है। बड़ी बात यह है कि फ्रांस ने भी साफ कर दिया है कि ईरान को प्रतिबंधों से छूट तभी मिलेगी जब वो अपना परमाणु प्रोग्राम छोड़ने को तैयार होगा। यही नहीं, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध में पहली बार सऊदी अरब की एयरफोर्स ने यमन के सना एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की है। इसी एयरपोर्ट पर ईरान ने अपने लड़ाकू विमानों को उतारने की कोशिश की थी, यानी युद्ध में सऊदी अरब की सीधी एंट्री हो गई। दूसरी तरफ ईरान के समर्थन में रूस ने अपने एयरबोर्न कमांड विमान को तेहरान भेजा है। ये रूस का डूम्सडे प्लेन यानी प्रलय के दिन इस्तेमाल होने वाला विमान कहा जाता है, क्योंकि इसमें सुरक्षित और एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और स्पेशल डेटा लिंक लगे हैं। इस विमान की सबसे बड़ी ताकत है कि युद्ध की घड़ी में ये उड़ता हुआ वॉर रूम है। ये विमान ऐसे वक्त में तेहरान पहुंचा है जब अमेरिकी सेना की तरफ से ईरान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि रूस ने अपना डूम्सडे प्लेन भेजकर अमेरिका को संदेश दिया है कि अब ईरान अकेला नहीं है, बल्कि रूस उसके साथ खड़ा है और सैन्य मदद के लिए तैयार है। तो क्या परमाणु हमले के डर से ईरान ने पुतिन से मदद मांगी है, क्योंकि ईरान को लगता है कि हुर्मुज की जंग परमाणु युद्ध तक पहुंच सकती है।
2: They did everything and they could not make any achievements. So they used fighter jets, they used missiles, they used actually ground operation and they tried to steal the enriched uranium from Iran. In all of them, they failed.
3: Yes.
2: So if they wanted to make any achievements, they would have done it during those 40 days. And they don't have any other options. There remains only one option, which is the nuclear bomb, that even if it is used, it would not stop Iranian people.
1: तेहरान के डिप्टी मेयर का दावा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना की हर रणनीति फेल रही है। अब ट्रंप के पास सिर्फ और सिर्फ एटमी हमले का विकल्प बचा हुआ है। लेकिन अमेरिका एटमी हमला करता है तो भी ईरान ना तो झुकेगा और न ही रुकेगा।
2: So these people are totally committed to defend their country, and even if a nuclear bomb, even to the extent of the Japan the attacks, Hiroshima and Nagasaki. Even if at those levels, Iranians would not fear that and would not stop defending their country. And even if that happens, it would not be considered a defeat for the Iranians. It actually emboldens them more and encourages them more to protect their country and fight for their country. And that is the difference between Iran and many other countries.
1: Iran ke barudi tevar ekdam saaf hain. ना तो अमेरिका के आगे झुकेगा और न ही अमेरिकी हमलों के बाद हथियार डालेगा। अमेरिका के ताजा हमलों के बाद ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि वो आर पार की जंग के लिए तैयार है। जब तक दूसरा पक्ष अपने दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा, हम भी अपने दायित्वों का पालन करेंगे। जहां भी दूसरे पक्ष ने अपने दायित्वों का उल्लंघन किया, हमने भी अपने दायित्वों का पालन नहीं किया। जब तक अमेरिका की तरफ से उल्लंघन जारी रहेगा, ईरान अपने दायित्वों को पूरा करने से इनकार करता रहेगा। ईरान हुर्मुज के लिए ओमान के साथ एक संयुक्त तंत्र की तलाश कर रहा था, लेकिन मस्कट या अमेरिकी दबाव ने इस प्रयास में बाधा डाली। ईरान ने किसी भी क्षेत्रीय देश पर हमला नहीं किया है और न ही करेगा, और ये हमले केवल अमेरिकी ठिकानों, सुविधाओं और उन स्थानों की ओर लक्षित थे जिनका उपयोग ईरान पर हमलों में किया जाता था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान की नाकेबंदी फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। ये वही नाकेबंदी है जिसे 17 जून को हुए शांति समझौते के बाद हटा लिया गया था। अब एक बार फिर ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी का ऐलान ट्रंप ने कर दिया है। हुर्मुज पर अमेरिकी टैक्स और ईरान की नाकेबंदी, ट्रंप के इन दो कदमों से युद्ध की आग आने वाले कुछ घंटों में पूरे मिडिल ईस्ट तक फैल सकती है, क्योंकि ईरान ने धमकी दी है कि वो मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद तेल के कुओं और गैस के भंडार पर हमला कर सकता है। यानी ट्रंप हुर्मुज पर ईरान को दबाएंगे तो ईरान मिडिल ईस्ट पर हमले करके अमेरिका पर अपना दबाव बढ़ाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: और बड़ी खबर आ रही है कि ईरान पर ताजा अमेरिकी हमलों से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ी धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा, आज रात और कल हम ईरान पर जोरदार हमला करने वाले हैं। ईरान के साथ हुआ समझौता एक टेस्ट था, उन्होंने इसका पालन नहीं किया। साथ ही ट्रंप ने कहा, दुनिया में हमारी सेना सबसे मजबूत है, 47 सालों से ईरान लोगों को धमकाता आ रहा है, लेकिन अब वो नहीं ऐसा कर पाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान की पिकैक्स माउंटेन नाम की किलेबंद जगह को निशाना बनाएगा। ये जगह नतांस परमाणु सुविधा के पास है और यहां जमीन के नीचे दो मजबूत सुरंग परिसर हैं।
3: We're hitting them very heavy tonight, as you know. We're hitting them. We have tremendous amounts of ammunition. We have numbers that we haven't had in years. And we're hitting them very hard, and it'll continue, and we'll see what happens. But we're knocking out all of their offensive capability, and we're controlling the straits. We're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through.
0: अमेरिकी धमकियों के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने ट्रंप को सीधे धमकी दी है। मुश्तबा ने आयतुल्ला अली खामनेई के सुपुर्द खाक होने के बाद कसम खाई है कि वो अपने पिता की हत्या का बदला लेकर रहेंगे। आपको बता दें कि खामनेई के जनाजे में एक नकाबपोश शख्स ने भी दुनिया में सस्पेंस गहरा दिया है। माना जा रहा था कि वो मुश्तबा खामनेई है, लेकिन अब इस गहरे राज से भी पर्दा उठ गया है। तो आइए देखते हैं आखिर वो नकाबपोश कौन था।

0: ट्रंप की ईरान को धमकी, मुश्तबा ने बदले की कसम खा ली। हुर्मुज पर छिड़ी तगड़ी जंग, अब खामिनई का खानदान क्या करेगा? खामिनई के जनाजे में आया नकाबपोश कौन? सस्पेंस से उठा पर्दा। अमेरिकी सेनेटर की अचानक मौत से ईरान क्यों खुश हुआ? क्या खामिनई की शोक सभा में आए मुश्तबा ट्रंप को मैसेज दिया? आयतुल्ला खामिनई की अंतिम यात्रा के दौरान और मशहद में उनके दफन होने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब तेज हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब दुनिया के सबसे अहम तेल व्यापार मार्ग स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर भी दिखाई देने लगा है। जहाजों की ट्रैकिंग से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की संख्या पिछले 5 हफ्तों में सबसे कम रही। सुरक्षा चिंताओं के बीच कई तेल टैंकरों ने रास्ते से गुजरते समय अपना ट्रांसपॉन्डर भी बंद कर दिया ताकि उन्हें ट्रैक न किया जा सके, क्योंकि अब जंग सीधे सीधे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को लेकर है। ईरान इस पर अपना कब्जा चाहता है और अमेरिका किसी भी कीमत पर कब्जा होने नहीं देना चाहता। अब एक तरफ से जंग छिड़ी है, ईरान ने एक 13 लोगों की किल लिस्ट भी जारी की है, लेकिन अमेरिका ने भी ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनई के ऊपर तकरीबन 92 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है। CIA और मोसाद यानी अमेरिका और इसराइल की खुफिया एजेंसियां मुश्तबा के पीछे पड़ी हुई हैं। इसीलिए 6 दिन तक चली आयतुल्ला अली खामिनई की अंतिम यात्रा में मुश्तबा नजर नहीं आए, लेकिन आयतुल्ला खामिनई की शोक सभा में मुश्तबा खामिनई ने अपना पहला संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामी गणराज्य के लोग पूर्व सुप्रीम लीडर और उनके पिता अली खामिनई की हत्या का बदला लेने की मांग कर रहे हैं। अपने सोशल मीडिया पर जारी किए गए संदेश में उन्होंने पिता अली खामिनई और युद्ध में मारे गए शहीदों के खून का बदला लेने का संकल्प लिया। मुश्तबा खामिनई ने कहा कि ईरान का बदला अनिवार्य रूप से लिया जाना चाहिए, ये मामला उनके या अन्य अधिकारियों के व्यक्तिगत अस्तित्व पर निर्भर नहीं करता, चाहे हम मौजूद हों या ना हों, ये होकर रहेगा। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने ये कह चुके हैं कि ईरान उनकी हत्या की प्लानिंग कर रहा है और वो ईरान की किल लिस्ट में सबसे ऊपर हैं।
1: But if I go, you go, right?
2: But was there a specific
1: threat today? So perhaps someday you want to change professions.
0: आयतुल्ला खामिनई की प्रार्थना सभा में मुश्तबा का धमकी वाला संदेश आया तो आयतुल्ला खामिनई के जनाजे के दौरान चेहरे पर नकाब पहने एक शख्स ने सबका ध्यान खींचा। तब पूरी दुनिया ने इस पर चर्चा की थी। कुछ लोगों का मानना था कि ये नकाबपोश कोई और नहीं खुद मुश्तबा खामिनई थे, लेकिन उनकी पहचान अब सामने आ गई है, ये जवाद खामिनई थे। एक ईरानी मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट में बताया गया है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि पूर्व सुप्रीम लीडर का सबसे बड़ा पोता है। इनका नाम मोहम्मद जवाद खामिनई है। वो खामिनई के सबसे बड़े बेटे मुस्तफा खामिनई के बेटे हैं। अब सवाल उठ रहे थे कि जवाद ने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया है कि 28 फरवरी को खामिनई के आवास पर हुए हमले के समय जवाद भी वहां मौजूद थे। उस समय उनका मुंह गंभीर रूप से झुलस गया था, उनके चेहरे पर गंभीर चोटें आई थी। इसी बीच दुनिया भर में मुश्तबा के सबके सामने आने की खबरें भी आने लगी हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वो अली खामिनई की शोक सभा में सबके सामने आ सकते हैं। ये मेमोरियल तेहरान में 23 जुलाई की शाम 5 बजे से 7 बजे तक होगा। इसे शहीद मुजाहिद इमाम को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुश्तबा के सिर पर अमेरिकी इनाम के चलते वो 6 दिनों तक चली आयतुल्ला अली खामिनई की अंतिम यात्रा में कहीं भी नजर नहीं आए। कहा गया कि मुश्तबा किसी सीक्रेट बंकर में अंडरग्राउंड हैं। आपको ये भी बता दें कि आयतुल्ला खामिनई की मौत के लगभग 10 दिन बाद 8 मार्च को मुश्तबा खामिनई को नया सुप्रीम लीडर चुना गया था। 12 मार्च को मुश्तबा ने अपना पहला लिखित संदेश जारी किया था। उनके संदेश को एक टीवी एंकर ने पढ़ा था जिसमें मुश्तबा ने बदला लेने की बात कही थी। इसके बाद से मुश्तबा खामिनई दर्जनों संदेश जारी कर चुके हैं। हालांकि उनके सभी संदेश लिखे हुए रहते हैं जिन्हें सरकारी टीवी पर पढ़ा जाता है। हाल ही में 18 जून को उनका एक अहम बयान सामने आया था जिसमें मुश्तबा ने कहा था कि युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत को उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी है, भले ही उनकी राय अलग थी। अब मुश्तबा दुनिया के सामने आएंगे या नहीं, ये तो अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इस बीच एक अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत से पूरा ईरान खुश है। 11 जुलाई को सेनेटर लिंडसे ग्राहम की अचानक मौत हो गई थी। अब ईरानी मीडिया ये इशारा कर रही है कि उनकी मौत के पीछे ईरान का हाथ है। ईरानी अखबार हमशहरी ने सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद अपने पहले पन्ने पर राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका इसराइल के बड़े अधिकारियों की तस्वीरें छाप कर लिखा है, अचानक मौत के लिए तैयार हो जाएं। ये सीधी धमकी है। वहीं एक और ईरानी अखबार वतन एमरोज ने पहले पन्ने पर अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की तस्वीर के साथ लिखा है, मौत के सौदागर की मौत। अखबार ने ग्राहम को ईरान के खिलाफ अमेरिकी नीतियों का मुख्य समर्थक बताया और कहा कि उनकी मौत अचानक हुई बीमारी के कारण हुई। दूसरी तरफ वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया है कि लिंडसे ग्राहम की मौत एओर्टिक डिसेक्शन से हुई। ये हृदय की धमनियों की बीमारी है जिसमें अंदरूनी परत फट जाती है और खून फटे हुए हिस्से में घुस जाता है। अमेरिका में उनकी मौत की जांच हो रही है और जांच होने के बाद ही डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। लिंडसे ग्राहम की मौत यूक्रेन से अमेरिका लौटते ही हो गई थी, लेकिन अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियां 56 साल के मुश्तबा खामिनई को लगातार टारगेट कर रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब मुश्तबा के दिमाग से अमेरिका और इजरायल का खौफ निकल चुका है और अब वो ईरान को नया मैसेज दे सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
5: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
6: Happy birthday, America. It's time to celebrate and play your favorite Las Vegas casino games by American-owned SpinQuest.com. What's better than fireworks and American pie? Hitting a blackjack in the palm of your hand and you won't lose your fingers. Over 1,000 games including slots and live dealers. And $30 coin packs are on sale for $10. SpinQuest.com. Buy American players for American players.
7: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
8: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
10: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now. Time after time.
3: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach.

0: ईरान में जंग में पूरी ताकत से उतरा अमेरिका, लगातार तीसरे दिन स्ट्राइक। कुवैत बहरीन में ईरानी ड्रोन का खौफ, ट्रंप बोले 2-3 हफ्ते तक चलेगी जंग।
1: हॉर्मुज में यूएई के 2 ऑयल टैंकर पर मिसाइल अटैक, एक भारतीय नाविक की मौत, 8 घायल। क्रूज मिसाइल से हमला, समंदर में टकराव से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल।

0: पास सड़क तड़प कर गई, घायल शख्स की जान। लहूलुहान होने के बाद भी खड़ी देखती रही पुलिस, वर्दी वालों की संवेदनशीलता पर उठे सवाल।
1: चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में खींचतान जारी, आज दिल्ली में आला कमान के साथ बड़ी बैठक की संभावना, भूपेश बघेल की फीडबैक पर हो सकती है चर्चा।
0: आज खेलों का सबसे बड़ा दिन, फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में फ्रांस और स्पेन आमने सामने, रोहित विराट और बुमराह के साथ इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में उतरेगी टीम इंडिया।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, शतक आज तक के साथ।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: गाजियाबाद में मदद की गुहार के बीच में युवक की मौत, पिंक बूथ में उसके कारण प्रणाली पर गंभीर सवाल उठे। सूत्रों के मुताबिक एक ऑटो चालक से विवाद के बाद भाग रहा था युवक। युवक द्वारा मदद के लिए दरवाजे खटखटाने के दौरान शीशे से हाथ कटा, जिसके बाद अत्यधिक खून बहने के चलते उसकी मौत हो गई। परिजनों ने लगाया 40 मिनट तक मदद न मिलने का भी आरोप। दिल्ली में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, पीथमपुरा शालीमार बाग मार्ग पर बड़ी कार्रवाई, सरकारी जमीन पर बने हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। अवैध रूप से बनी हुई मजार पर बुलडोजर की कार्रवाई, निर्माण पर दिल्ली सरकार की सख्त कार्रवाई, पीथमपुरा शालीमार बाग मार्ग का चौड़ीकरण चल रहा है। दिल्ली के सेशन जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, जज सिंघल को निलंबित किया गया। बीकानेर में गैंगस्टर रोहित गोदारा का पैतृक घर अज्ञात लोगों ने गिराया और देर रात बुलडोजर एक्शन, पुलिस ने प्रशासनिक कार्रवाई से किया इनकार। फरार गैंगस्टर रोहित गोदारा के पिता और परिजन नहीं थे घर पर। सतना में नवजात को एक्सपायर्ड दवा चढ़ाने का आरोप है, पर्ची में मेल की जगह फीमेल लिखा गया, मौत के बाद आक्रोशित परिवार वालों ने हाईवे जाम कर दिया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गैलेक्सी वेगा सोसाइटी में एक टावर की लिफ्ट अटक गई, चार बच्चियों ने घबराकर वहां हनुमान चालीसा पढ़ी की बात। बिहार के बेगूसराय में पुलिस के दबंग गई भूमि विवाद की कार्रवाई के दौरान एक महिला के साथ दुर्व्यवहार, वीडियो वायरल।
0: राम मंदिर दान गबन मामले में एसआईटी जल्द सौंपेगी अंतिम रिपोर्ट, दान गबन मामले में जिम्मेदारी तय करेगी एसआईटी, व्यवस्था में सुधार की सिफारिश कर सकती है एसआईटी, वित्तीय रिकॉर्ड और बैंक लेनदेन की जांच कर रही है एसआईटी, सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत की जांच जारी, गवाहों और आरोपियों के बयान भी जांच का हिस्सा, दान प्रबंधन की हर प्रक्रिया की जांच कर रही है एसआईटी, निगरानी और प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय करेगी एसआईटी, दान प्रबंधन में एसओपी के पालन की जांच कर रही है एसआईटी, आंतरिक निगरानी में चूक की जांच हो रही है। अयोध्या के मेयर गिरीश ने कहा जन्मभूमि क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण, मुआवजे या किसी भी जमीन की शिकायत का प्रशासन प्राथमिकता से समाधान करेगा। बद्रीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल की कोर्ट में पेशी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी को लेकर आमने सामने गणेश गोदियाल और हेमंत द्विवेदी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत का मांगा इस्तीफा। सीएम धामी का बद्रीनाथ धाम में दान चोरी मामले पर कड़ा प्रहार, कहा दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मध्यप्रदेश के दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, 16वें नंबर पर नरोत्तम मिश्रा का नाम।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2028-29 के अस्थायी सदस्य के पद के लिए अपना अभियान किया शुरू, कहा हमारा शांति का विजन ही दुनिया को संकट से बचाएगा। कैंपेन की शुरुआत करते विदेश मंत्री जयशंकर ने स्पष्ट दिया संकेत, भारत दुनिया को अधिक सुरक्षित, शांतिपूर्ण, न्याय संगत माहौल के निर्माण के लिए काम करेगा। 2028-29 कार्यकाल के लिए यूएनएसए के चुनाव जून 2027 में होंगे। एशिया प्रशांत समूह की एकमात्र सीट के लिए भारत और ताजिकिस्तान के बीच में मुकाबला। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर आई एक रिपोर्ट, भारत और अमेरिका दोनों ने फर्जी से बताया, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने किसी भी ट्रेड प्रस्ताव को ठुकराया नहीं है। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने भी फेक न्यूज पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमारी बातचीत लगातार जारी, ट्रेड डील को जल्द ही पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का मुकाबला आज से बर्मिंघम के एजबेस्टन खेला जाएगा, दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मैच। इस मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वनडे टीम में वापसी होगी, जसप्रीत बुमराह भी 968 दिनों के बाद वनडे में वापसी कर रहा है। भारत की गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह संभालेंगे, मोहम्मद सिराज टीम में नए हैं, ऑलराउंडर की भूमिका के लिए शिवम दुबे वॉशिंगटन सुंदर के बीच मुकाबला। भारतीय टीम का वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड रहा है, मेन इन ब्लू के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ पिछले 5 वनडे मुकाबले जीते गए। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मैच से पहले कहा कि विराट कोहली 2027 वनडे वर्ल्ड कप की योजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है और रूको को बताया टीम के लिए बहुत अहम।
0: नेपाल और उत्तरी बिहार में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मुजफ्फरपुर में बागमती नदी उफान पर, पीपा पुल डूबने से हजारों लोगों का जीवन प्रभावित। निचले इलाकों में घुसा बागमती नदी का पानी, लोगों ने सुरक्षित जगहों पर पलायन करना शुरू किया। संभावित बाढ़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर। नेपाल की तराई और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण पश्चिम चंपारण में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा। बगहा में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, लेकिन प्रशासन ने गंडक नदी के तटवर्ती और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की। अरुणाचल प्रदेश में नदी में पानी छोड़े जाने के बाद असम के धेमाजी और लखीमपुर जिलों में बाढ़ जैसे हालात। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ का कहर, भारत चीन सीमा के पास पारसी पार्लो इलाका जलमग्न, कुमे नदी का बढ़ा जलस्तर। अरुणाचल के सीमावर्ती कस्बे में बाढ़ से हालात गंभीर, प्रशासन अलर्ट पर, लोगों को नदी के किनारे दूर रहने की सलाह। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण जलभराव, बेलटोला सर्वे इलाके में सड़कों पर भरा पानी, फंसे कई वाहन। उत्तरकाशी में स्थित हरित की दून घाटी में भारी बारिश से बहा पुल, सड़क मार्ग बंद होने से जेसीबी मशीन के सहारे उफनता नाला पार कर रहे हैं ग्रामीण। देहरादून के विकास नगर में फंती नदी के ऊपर ग्रामीणों ने बनाया खतरनाक पुल, वायरल वीडियो से खुली सिस्टम की पोल।
1: देहरादून में सड़क निर्माण के दौरान मलबा गिरा, दो श्रमिकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास में भूस्खलन, सड़कें बंद, यातायात प्रभावित।

0: गंभीर सवाल। नासिक में टूरिस्ट स्पॉट पर परिवार पर जानलेवा हमला, भावली वॉटरफॉल घूमने के लिए परिवार वालों पर हमला, युवती के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर हमला। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कार ने पहले स्कूटी को टक्कर मारी, फिर अनियंत्रित होकर स्कूल बस से जा टकराई, एक की मौत। राजस्थान के बाड़मेर में तेज रफ्तार डंप पर आगे चल रही कार में जा घुसा, 5 लोगों की मौत, 3 घायल। बांदा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, चित्रकूट जा रहे 2 श्रद्धालुओं की मौत। भोपाल में दिन दहाड़े दुकान पर बैठे कपड़ा कारोबारी पर चाकू से हमला, अचानक पीछे से आए 2 बदमाशों ने कई बार चाकुओं से वार किया।
1: गुजरात के अंबाजी मंदिर में दान चोरी का पुराना सीसीटीवी वीडियो वायरल, 500 के नोटों के एक बंडल को अपने पैर के नीचे दबाता नजर आया कर्मचारी। अकोला में नाले की खुदाई के दौरान मिला पुराना हैंड ग्रेनेड, बम निरोधक दस्ते ने कब्जे में लिया। इंदौर में मामली कहासुनी में कार स्कूटी सवार का विवाद, सड़क खड़े शख्स को हटने के लिए कहा, युवक ने कार पर चढ़कर फोड़ा शीशा। जामनगर में हाईवे पर महिला को कार ने मारी जोरदार टक्कर, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के बांदा में नाले में डूबने से 2 बहनों की दर्दनाक मौत, खेलते समय गड्ढे में डूबी बच्चियां। 7 साल बाद फिर बड़े पर्दे पर गोविंदा की एंट्री, फिल्म रूपा और दुनियादारी में नजर आएंगे। ऑपरेशन सफेद सागर का टीजर लॉन्च, कारगिल युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स के मुश्किल ऑपरेशन को दिखाएगी सीरीज। वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय का ट्रेलर लॉन्च, अभिमन्यू सिंह, अर्चना पूरन सिंह, नवीन कस्तूरिया होंगे अहम भूमिका में। इम्तियाज अली की बेटी ईदा ने बॉयफ्रेंड संग की सगाई, ईदा ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की। परिवार के साथ लंदन वेकेशन पर दिखी प्रियंका चोपड़ा, बेटी मालती ने निकाले मां के बालों की क्लिप।
0: ईरान के दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में तनाव की खबरें सामने आए, तस्नीम न्यूज ने जानकारी दी है कि शहर में डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। पूर्वी बंदर अब्बास में विस्फोटों के चलते नुकसान या हताहतों को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, कई जहाजों को निशाना बनाया गया। हॉर्मुज में यूएई के तेल टैंकर पर ईरान का हमला, एक भारतीय नाविक की इसमें मौत, 8 अन्य घायल। अमेरिकी हमले के बाद से ईरान ने भी पलटवार किया, ईरान ने एक बार फिर से कुवैत पर हमला किया। ईरान के सरकारी टीवी का दावा है कि कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया गया, हॉर्मुज में अमेरिकी जहाजों को क्रूज मिसाइलों से टारगेट किया। ईरान पर ताजा अमेरिकी हमलों से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ी धमकी दी थी, ट्रंप ने कहा कि हम ईरान पर जोरदार हमला करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान, हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स लगेगा। ट्रंप ने जहाजों पर टैक्स लगाने को कहा, अमेरिका इस रणनीतिक समुद्री मार्ग की सुरक्षा करेगा, इसलिए सुरक्षा पर होने वाले खर्च जहाजों से वसूला जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब गार्डियन ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भूमिका निभाएगा और यह टैक्स सभी कार्गो जहाजों पर लागू होगा, पर ईरान के जहाजों को इस्तेमाल करने की अनुमति होगी ही नहीं। अमेरिका ने कहा कि आज से ईरानी पोर्ट्स की नाकेबंदी शुरू करेंगे, यूएस ने भी जानकारी दी।
1: ट्रंप ने सभी न्यूट्रल जहाजों को चेतावनी दी है कि नाकेबंदी लागू होने से पहले उस क्षेत्र से बाहर निकल जाएं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, दुनिया में हमारी सेना सबसे मजबूत, हमें कोई नहीं दबा पाएगा, बल्कि हम उन पर दबाव डाल रहे हैं। आईजीसी ने कहा, हॉर्मुज में दखल देकर अमेरिका ने दुनिया भर में तेल गैस सप्लाई को खतरे में डाला है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा, ईरान हमेशा से हॉर्मुज का संरक्षण रहा है और आगे भी रहेगा। पोस्ट में अराक्ची ने 220% शुल्क को ज्यादा बताते हुए कहा, ईरान इस मामले में निष्पक्ष और उचित रुख अपनाएगा, हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस शिपिंग मार्गों में से एक है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि सैन्य कार्रवाई अभी और जारी रह सकती है, सैन्य अभियान 2-3 सप्ताह तक चलने का दावा किया। ट्रंप ने ईरान पर हमले जारी रखने की चेतावनी देते हुए पिक एक्स माउंटेन को संभावित निशाना बताया। अमेरिका ईरान के बीच लगातार हो रहे जवाबी हमलों के बीच तेल की कीमतों में 2% बढ़कर 4 हफ्ते में सबसे उच्चतम स्तर पर। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच सैन्य संघर्ष अब तक 14 अमेरिकी सैनिकों की जान ले चुका है, जबकि घायल सैनिकों की संख्या 400 के पार है। यूएई ने ओमान में मुम्बासा और अल बैया नाम के टैंकर पर हुए हमले की कड़ी निंदा की, अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया।
0: उत्तरी पर सैन्य कार्रवाई के लिए ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस का किया समर्थन, क्राउन प्रिंस ने कार्रवाई से पहले ट्रंप से समर्थन मांगा था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप ने कार्रवाई को दी थी मंजूरी, सना एयरपोर्ट पर सऊदी हमले के बाद तनाव बढ़ा। हमले के बाद हुतियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन भी दागे, अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक सऊदी अरब को बड़े संघर्ष की आशंका है। ईरान से लौट रहे विमान के दौरान सना एयरपोर्ट पर बड़ा हमला, अमेरिकी अधिकारियों का दावा विमान में हथियार और मिसाइल के पुर्जे रखे थे। हुतियों ने सऊदी एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, हुतियों ने सऊदी हवाई क्षेत्र में उड़ान न भरने की चेतावनी भी दी।

0: गाजियाबाद में पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया। यहां पर पुलिस के सामने एक युवक ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। मदद की वो गुहार लगाता लेकिन उसे कोई अस्पताल पहुंचाने के लिए नहीं पहुंचा। पुलिस वाले भी तमाशबीन बने रहे। मामला गाजियाबाद के मधुबन पाबुथाम थाना इलाके का। एक पिंग बूथ के बाहर एक युवक ने दम तोड़ा है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि 22 वर्षीय राजकुमार और एक ऑटो चालक के बीच किराए को लेकर विवाद हो गया जो काफी बढ़ गया। मदद मांगने के लिए राजकुमार पिंग बूथ की ओर भागा। पुलिस वाले अंदर मौजूद थे लेकिन दरवाजा बंद था। कांच का दरवाजा खटखटाते वक्त टूट गया। कांच से राजकुमार का हाथ कट गया और खून बहने लगा। आरोपी है कि करीब 40 मिनट तक युवक ऐसे ही पिंग बूथ के पास तड़पता रहा, मदद मांगता रहा। पुलिस वाले देखते रहे लेकिन उसे वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। 40 मिनट बीत गए, एम्बुलेंस तब आई, उसे अस्पताल ले गए लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि युवक नशे में था जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी, लेकिन जो कुछ हुआ वो बेहद शर्मनाक था।
1: अब पुलिस वालों को देखिए, वर्दी इनको क्यों पहनाए गए हैं? ताकि आम आदमी की रक्षा करें, उनकी मदद करें, लेकिन मदद करने के बजाय ये सिर्फ तमाशबीन बने रहे। आज के पुलिसकर्मी क्या सिर्फ रील बनाने के लिए रह गए हैं? आज के पुलिसकर्मियों की फिर जरूरत क्या है इस पिंक बूथ की अगर ये किसी की मदद नहीं कर सकते? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये शर्मसार करता है पूरे के पूरे सिस्टम को। पुलिस बूथ है, वो शख्स भले ही नशे में था लेकिन आपकी प्राथमिकता उसको बचाने की होनी चाहिए थी। वो आपके पास आया, उसने दरवाजा खटखटाया, आपने इतनी जहमत नहीं उठाई कि उस दरवाजे को खोल लो।
0: हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, पुलिस की संवेदनहीनता सामने आई है, कैमरे में कैद हुई है। कई बार ये कहा जाता है कि पुलिस वाले वक्त पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन यहां तो उनकी आंखों के सामने बीत रहा था, वक्त गुजरता जा रहा था, युवक ने दम तोड़ दिया।
2: बिल्कुल, और पुलिस को जानती किस चीज की चिंता थी? अपनी सुरक्षा की। युवक जब पहुंचा तो जो उसने जब पुलिस का कहना है कि वो नशे में था, लेकिन दोपहर के 3:30 बज रहे थे। थोड़ी दूरी पे पुलिस चौकी है, पुलिस थाना भी है, 100 नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और पुलिस पर जब वो आया था मदद मांगने, ठीक है, आपने अपने आप को अंदर बंद कर लिया, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? अगर आपको अपना खतरे लगा कि हो सकता है कि युवक अटैक कर दे, आपने सोचा ऐसा, तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? कितनी देर बाद आपने मदद की मांग की? क्या 100 नंबर की कॉल जो अंदर पुलिसकर्मी, अगर आपको खतरा लग रहा है कि एक युवक आके के दरवाजा पीट रहा है, इस बुरी तरीके से पीट रहा है कि उसके हाथ कट जा रहे हैं, वो
1: नहीं, लेकिन हिमांशु, पुलिस का काम डरना है? पुलिस तो इन्हीं के लिए तैयार है ना, पुलिस की तो ट्रेनिंग ही इस तरह की सिचुएशन से निपटने की है। और ऐसी परिस्थिति में पुलिस डर रही है, छुप रही है। सवाल ये कि अब कार्रवाई होगी, हो सकता है सस्पेंड कर दें, लेकिन क्या वो सस्पेंशन की कार्रवाई भी काफी होगी? अभी तो वो भी नहीं हुई है।
2: देखिए ना, जिस तरीके से पुलिस का पहला कि पुलिस को अपनी सुरक्षा की चिंता थी, जो लोग पिंक बूथ में मौजूद थी, ठीक है, वो महिला पुलिसकर्मियों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो बनाया गया है, लेकिन जिस कंडीशन में वो थे, जिस तरीके से वो आए थे, कि मान लीजिए आपको अपनी सुरक्षा का खतरा में एक बार मान भी ले कि वो आदमी अटैक कर सकता था, ऐसा पुलिसकर्मियों को लगा, तो उसके बाद अगला स्टेप क्या लिया गया और कितनी देर में मदद वहां पर पहुंची? आप सोचिए, जो वीडियो वायरल है और जहां तक और जितना खून उसके हाथ से बहा हुआ है, वो दो तरीके की संवेदनहीनता यहां पे दिख रही है। एक तो पुलिस की तरफ की गई कार्रवाई, और दूसरा आप देखिए कि जो लोग बाहर थे, क्या कोई जो लोग बाहर खड़े होकर मोबाइल पे वीडियो बना रहे थे, उसमें से कोई पुलिस को अपनी ओर से 112 नंबर पे कॉल कर देता? किसी ने मेडिकल के लिए, मदद के लिए एम्बुलेंस को कॉल कर दी होती? वो आदमी वहीं पर तड़प रहा है, इधर पलट रहा, उधर पलट रहा, और खून आप देखिए कितनी दूर तक और कितनी देर तक वो खून बहा होगा कि पूरे इलाके में जहां पर वो पड़ा हुआ है, वो आसपास आपको खून ही खून नजर आएगा। तो ऐसे में सवाल उठते हैं, सबसे पहले तो जो पिंक बूथ भले ही बनाया गया, लेकिन क्या वहां पर किस तरीके की ट्रेनिंग की गई है, किस तरीके के सिचुएशन से, इमरजेंसी से, अगर कोई महिला ही वहां पर
1: ट्रेनिंग दी भी गई है, ये बड़ा सवाल है। मनुष्य, ऐसे लगता नहीं कोई इनको नेहा ट्रेनिंग दी गई है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राजस्थान के बीकानेर की, जहां पर गैंगस्टर रोहित गोदारा के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बीकानेर के लूणकरणसर में रोहित गोदारा के घर पर बुलडोजर चला है। हालांकि ये नहीं पता चला कि आखिर गैंगस्टर के घर वाले, ये जो है उस समय तो बताया जा रहा है कि नहीं थे, लेकिन बुलडोजर किसने चलाया बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रशासन तो किसी भी तरह के एक्शन से इनकार कर रहा है। पुलिस कह रही है, स्थानीय प्रशासन कह रहा है कि हमने तो कोई एक्शन ही नहीं लिया है, तो ये बुलडोजर कौन लाए, ये बुलडोजर किसने चला दिया, और इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन होगी। रोहित गोदारा इस समय फरार है, बहुत बड़ा गैंगस्टर है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि उसके घर को ही एक बुलडोजर आकर तोड़ देता है। ये तस्वीर है उसके घर की, रोहित गोदारा, उस पर बहुत तरह के आरोप हैं, चार्जेस हैं, फरार भी चल रहा है, लेकिन उसके घर पर एक एक्शन होता है, बुलडोजर चलता है।
0: शरद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, बुलडोजर चलाया किसने जब प्रशासन इनकार कर रहा है तो?
3: देखिए, असलियत तो ये है कि प्रशासन नहीं चलाया है, लेकिन प्रशासन के सूत्रों का कहना है कि रोहित गोदारा जिस तरह से गैर कानूनी काम कर रहा है, वो उस लिहाज से उन्होंने इस तरह से जवाब देना उचित समझा है। हालांकि इसे अज्ञात कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले रोहित गोदारा के माँ और बाप दोनों को अलग अलग जेलों में बंद कर दिया गया था गिरफ्तार करके, क्योंकि ये इमारत वैध थी और सही जमीन पर बनी हुई थी, कोई कागजात पुलिस के पास थे नहीं। मगर रोहित गोदारा को तोड़ना है, रोहित गोदारा जिस तरह से अपने गैंग को आगे बढ़ा रहा है, उस लिहाज से कार्रवाई की है प्रशासन ने, उसको एक संदेश देने के लिए कि तुम जिस तरह से हरकतें कर रहे हो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन पुलिस और प्रशासन इसे अपनी कार्रवाई इसलिए नहीं मान रहा है कि वहां पर इस मकान के खिलाफ कोई दस्तावेज नहीं थे जिसे तोड़ा गया है, लेकिन एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है गैंगस्टर्स को कि अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर सकता है, तुम्हारे घर वालों पर कार्रवाई कर सकता है, तुम्हारे घर के ऊपर कार्रवाई कर सकता है अगर तुम इस तरह के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे तो। एक संदेश देने की कोशिश की गई है रोहित गोदारा को। वहां पर घर पे कोई था नहीं क्योंकि रोहित गोदारा तो बहुत पहले से फरार है विदेश में, और उसके माँ बाप को भी पिछले साल उसी को तोड़ने के लिए गिरफ्तार भी कर लिया गया था।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आयोजित मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम के आयोजकों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक खुला खत लिखा है। इस खत में उन्होंने कांग्रेस नेताओं की तरफ से लगाए गए उन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया जिसमें कार्यक्रम में शामिल लोगों को पेड क्राउड यानी पैसे देकर जुटाई गई भीड़ बताया। आयोजकों ने दोनों नेताओं से ये आरोप वापस लेने के साथ ही सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा पूरा कर भारत लौट आए हैं, लेकिन उस दौरे को लेकर जहां उसकी तस्वीरों की चर्चा हो रही है तो वहीं उस मामले को लेकर राजनीतिक विवाद भी खड़े हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक मेलबर्न दौरे और वहां पर हुए कम्युनिटी इवेंट को लेकर एक राजनीतिक विवाद छिड़ा क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ सवाल उठाए गए जिसका जवाब अब जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद भारतीय समुदाय है उसकी तरफ से दिया गया है। एक खुला खत लिखा गया है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के नाम और तर्क दिया गया है कि ये आयोजन किसी तरीके से राजनीतिक रंगत वाला नहीं था। अमित जी, मेरा पहला सवाल इसी चीज को लेकर है कि ये खुला खत लिखने की जरूरत क्यों पड़ी आपको?
5: फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम लोगों ने इसके बारे में सुना कि इट इज बीन पेड इवेंट, तो एक मतलब एक तरह से हम लोगों को बुरा लगा क्योंकि इट इज नॉट अ पेड इवेंट। पीपल जहां मतलब पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया दे वांटेड टू यहां पे आके दे वांटेड टू सेलिब्रेट इंडिया and Australia relationship. People here coming here because to celebrate and we are given more importance yahan pe ki they think that Indians are now just like England ya US us barabar ke hisse ke hum log ko dekh rahe and they don't and considering that itna hum log ye we are considering that level agar किसी हमको बोलते हैं कि दिस इज अ पेड इवेंट इट इज अ काइंड ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट। सभी को डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि बहुत लोगों ने कितना एक हफ्ते तक उन लोगों ने काम सब छोड़ के यहाँ पे आए हैं इस इवेंट अटेंड करने के लिए, खुद के पैसे से आए हैं, दे हैव स्टेड इन देयर ओन अकोमोडेशन, दे हैव पेड देयर ओन ट्रैवल एक्सपेंसेस एंड एवरीवन हु केम ओवर देयर दे ओनली सेड वन थिंग the growing relationship between India and Australia and Modi ji is one of the part of it. Agar dusre bhi koi aate to I don't think so they'll be itna usaha matlab they would have got the similar crowd as well during that time.
1: और अब बड़ी खबर आपको देते हैं। पहलगाम आतंकी हमले में बड़ा एक्शन हुआ है। लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। उसके गैर मौजूदगी में मुकदमे का ट्रायल शुरू और एनआईए ने उसके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट तैयार भी कर ली है। उसे आरोपी बनाया है पहलगाम हमले में, उसे मास्टरमाइंड बताया गया। हाफिज सईद को उसे भगाड़ा घोषित करवाने की प्रक्रिया भी अब शुरू होगी। तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हो गई है। हाफिज सईद को इसमें हमले का मास्टरमाइंड बताया गया है। पहलगाम में आतंकी हमला आपको याद होगा जिसमें धन पूछ पूछ कर कत्लेआम किया गया, लोगों को गोलियों से भून दिया गया था, उसके बाद हमलावर फरार हुए, फिर ऑपरेशन महादेव और तमाम चीजें हुई। लेकिन इस मामले में ट्रायल भी हुआ। एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए हाफिज सईद को जो इस समय सेफ है पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना इसे सिर माथे पर बिठाए रखती है क्योंकि ये भारत विरोधी काम पाकिस्तान में बैठकर करवाता है।
0: वक्त एक ब्रेक का उछला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
6: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
4: AU
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: पापा
7: सॉरी यार गलती हो गई है ये चोट खर्चा वर्चा।
8: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
7: छक्का
8: सब कैशलेस हो गया
7: है।
9: ला भाई मेरा बैट।
10: वो अभी तो ठीक हुआ तू
9: चार्ज हुआ यार।
11: बैट किसका है?
12: टाटा AIG है तो भरोसा है।
13: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
3: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम.
4: AU
5: सोच बदलो और बैंक भी.
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी हिंद बड़े आराम से।
2: उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े चेहरे, जनता के सबसे बड़े सवाल और आज तक की सबसे बड़ी पंचायत, 15 जुलाई, लखनऊ।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: ईरान से जंग में पूरी ताकत से उतरा अमेरिका, लगातार तीसरे दिन एयर स्ट्राइक। कुवैत, बहरीन में ईरानी ड्रोन का खौफ। ट्रंप बोले 2-3 हफ्ते चलेगी जंग, हॉर्मुज में लगे 20% टैक्स।
1: पहलगाम आतंकी हमले में बड़ा एक्शन, लश्कर सरगना हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। आतंकी की गैर मौजूदगी में शुरू हुआ ट्रायल, एनआईए की चार्जशीट में मास्टरमाइंड।
0: गाजियाबाद पिंक बूथ के पास तड़प तड़प कर गई घायल शख्स की जान, लहूलुहान होने के बाद भी खड़ी देखती रही पुलिस। वर्दी वालों की संवेदनशीलता पर उठे सवाल।
1: चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में खींचतान जारी, आज दिल्ली मालागमन के साथ बड़ी बैठक की संभावना। भूपेश बघेल के फीडबैक पर हो सकती है चर्चा।
0: लॉरेंस गैंग के खिलाफ एफबीआई के एक्शन के बाद बीकानेर में तोड़ा गया गैंगस्टर रोहित गुदारा का घर, पुलिस ने कार्रवाई से किया इनकार। पड़ोसियों से जानकारी के बाद गहराया सस्पेंस।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर मात्र।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच कर रही 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम जल्द अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगी। सूत्रों का कहना है कि अंतरिम रिपोर्ट में न केवल चोरी में सीधे तौर पर शामिलों की पहचान की जाएगी, बल्कि यह भी बताया जाएगा कि आखिर गबन का पता क्यों नहीं चल सका और वो जारी क्यों रहा। जांच में यह भी बताया जाएगा क्या अधिकारियों, कर्मचारियों और दान इकट्ठा करने वाले लोगों की गिनती और निगरानी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने तय सुरक्षा उपायों को लागू करने में कोताही बरती या चेतावनी को नजरअंदाज किया। एसआईटी आकलन कर रही है क्या एसओपी का पालन किया गया था और क्या सुपरविजन, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सेस कंट्रोल, रिकॉर्ड मेंटेनेंस और इंटरनल चेक्स में गड़बड़ियां की गई थी। रिपोर्ट में गड़बड़ी की वजहों का विस्तृत आकलन किया जाएगा, प्रक्रिया में पालन में चूक का खुलासा भी इसमें किया जाएगा। ये अंतिम रिपोर्ट एसआईटी द्वारा दाखिल की जाएगी।
1: तो चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की जो फाइनल रिपोर्ट है जिसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं, इस बीच में कई सारी खबरें सूत्रों के हवाले से लगातार जरूर आई हैं, लेकिन अब फाइनल रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा कि इस फाइनल रिपोर्ट में एसआईटी क्या मानती है। क्या ये जो छोटे छोटे गिरफ्तार हुए हैं, छोटे छोटे कर्मचारी, क्या यही सम्मिलित थे, क्या यही चोरी के लिए जिम्मेदार थे और क्या ट्रस्ट का कोई भी सदस्य इसमें जिम्मेदार था या नहीं, उनकी भूमिका और ज्यादा क्लैरिटी से सामने आएगी। एसआईटी के रिपोर्ट का इंतजार है और राजनीतिक दल खासकर वो जो ऑपोजिशन में, उनकी निगाहें भी एसआईटी के रिपोर्ट पर रहने वाली हैं।
0: समर श्रीवास्तव जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, कब तक आएगी फाइनल रिपोर्ट समर?
3: देखिए यार, जल्दी ही ये रिपोर्ट सामने आ सकती है। फिलहाल अगर तारीख की बात करें तो कल वो तारीख खत्म हो रही है, 15 दिन का समय एसआईटी की तरफ से लिया गया था, वो काफी कल हो रहा है। तो माना जा रहा है कि एसआईटी उस फाइनल रिपोर्ट को कल ही सरकार को पेश कर सकती है। सबसे अहम बात है कि जो नाम है अरुण मिश्रा का नाम जो शुरुआती रिपोर्ट में सामने आया था, क्या वो नाम कल की रिपोर्ट में होगा?
4: उससे बड़ी बात है कि चंपत राय का भी नाम होगा। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो कल की रिपोर्ट या कल या परसों जब भी वो रिपोर्ट आती है उसमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो सूत्र एसआईटी के बता रहे हैं, जो फाइनेंशियल ट्रेल है उसको कहीं ना कहीं स्टैब्लिश किया है, इसी वजह से अयोध्या पुलिस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी सहायता ली, तो उस फाइनेंशियल ट्रेल को भी उस रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा और एसआईटी जो गणना हुई है या गणना होगी फ्यूचर में उसको लेकर भी सजेशंस दे सकती है। तो ये भी तरीके कई जो है जो एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में सामने आ सकते हैं, जैसे कि एआई का प्रयोग हो गया या कम लोगों को करके एक शिफ्ट करना एक तरीके से, ये सारी प्रणालियां कल की रिपोर्ट में, कल या परसों की रिपोर्ट जो आ सकती है उसमें शामिल हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है जो जानकारी मिल रही है कि क्या अनिल मिश्रा का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट में दिखाएगी। साक्ष्य एसआईटी के पास पहुंच गए हैं। इस बीच में पूर्व कार सेवक रहे संतोष दुबे ने एक मोटी फाइल जो है वो सीओ ऑफिस में कल अयोध्या में दी है, जो सीधे एसआईटी को गई है। एसआईटी ने जूम कॉल पर संतोष दुबे से भी पूछताछ परसों की है, जिसमें कुछ ऐसे सबूत संतोष दुबे ने दिए हैं जिसमें लैंड स्कैम का भी जिक्र है और संतोष दुबे कहना है कि इसके बाद बड़े बड़े पत्ते जो है
1: समर्थ आप नजर बनाए रखें इस रिपोर्ट पर, सबकी निगाहें। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। पूरे देश में इन दिनों राम मंदिर मंदिर चढ़ावा चोरी सुर्खियों में है। इस बीच बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि राम मंदिर का घोटाला तो सिर्फ करोड़ों में है बल्कि वक्फ संपत्तियों का घोटाला तो अरबों खरबों में है।
0: ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेली ने सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड में बड़े घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि वक्फ बोर्ड की सही दिशा में जांच हुई तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी से भी बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा। उन्होंने घोटाले का आरोप लगाते हुए सीएम योगी को पत्र लिखा है और जांच की मांग की है।
5: मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सही तरीके से दोनों वक्फ बोर्डों का जांच पड़ताल करा दें तो आप समझिए और पूरी दुनिया देखेगी कि राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड का निकल करके सामने आएगा। वो लाखों का नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों का जो घोटाला है वो अरबों का घोटाला सामने निकल करके आएगा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वक्फ बोर्ड के मेंबरान ने और संबंधित अधिकारियों ने मिल करके हमारे बुजुर्गों की वक्फ की हुई जमीन को खुर्द बुर्द किया बेचा और भू माफियाओं के हाथ में सौदा कर दिया। मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी करें और अगर ऐसा कर देते हैं तो लोग राम मंदिर के चंदे की चोरी भूल जाएंगे और ये अरबों और खरबों की का करप्शन लोगों के सामने आएगा।
1: तो वक्त में घोटाले का आरोप लगते ही अब हिंदू मुसलमान वाली राजनीति की शुरुआत हो गई।
6: वक्फ के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पहले हुआ करता था। वक्फ की जमीनों को औने पौने दामों पर कब्ज हो जाते थे, किराए पे देते थे और उसके धन का दोहन होता था। वक्फ जिस भावना से किया जाता उस भावना का तिरस्कार होता था। लेकिन आज सरकार के प्रयासों के बाद हम वक्फ की संपत्तियों को रेगुलराइज करने का काम कर रहे हैं और वक्फ के संदर्भ में अगर किसी प्रकार की शिकायत आ रही है तो उस शिकायत का समाधान करने का भी काम कर रहे हैं। इस तरह की अनियमितताओं को रोका जाना बेहद आवश्यक है।
7: दिल्ली के मौलवी हैं वो कह रहे हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड में जिस तरीके की धांधली हुई है उसके सामने राम मंदिर का जो डोनेशन स्कैम हुआ है वो कुछ भी नहीं है।
8: देखिए अब इस पूरे मुद्दे पे बहुत से लोग चाहते हैं इस मुद्दे को डाइवर्ट करना। कभी बाबा रामदेव बोल देते हैं, कभी कोई मौलाना और कोई बात बोल देता है, लेकिन समाजवादी पार्टी समझती है कि करोड़ों करोड़ों हिंदू धर्म के मानने वालों की आस्था का सवाल है और उस पूरे प्रकरण में अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है तो वहां पे जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और कहीं दूसरे स्थानों पे या दूसरे धर्म स्थल पे कहीं अगर कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से वहां सुधार होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन बयानबाजी नहीं, अगर कोई सबूत किसी के पास है एविडेंस है तो सामने लाना चाहिए।
9: नई नई बातें लेकर आती है, कभी कहते हैं कि वक्फ की जांच कराएंगे, ये सब करेंगे। वक्फ कानून लेकर आए तो बोले हम वक्फ को बचाने के लिए लाए हैं। जो इनके मिनिस्टर्स कहते थे कि हम वक्फ की जो उसमें गड़बड़ी है उसको बचाने के लिए लेकर आए, 9 साल साहब की सरकार है, क्या किया, क्या हुआ? वो वसीम रिजवी था, क्या हुआ उसके साथ, कितनी जांच करा ली आपने?
10: वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से और राम मंदिर की चोरी के ताल्लुक से जो मिसाल पेश की जा रही है ये किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है, इसलिए कि राम मंदिर हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था का उससे ताल्लुक है। इसलिए हमारा उस ताल्लुक से कोई बात करना या किसी भी चीज पर गुफ्तगु करना किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। वक्फ बोर्ड में जो मामलात हैं अगर उसमें खुर्द-बुर्द ना हुई होती तो यकीनी तौर पर हुकूमत उस पर कानून क्यों बनाती। अब उस पर कानून बन चुका है, ऑलरेडी उसकी तमाम शिकायतें वहां पर पहुंची हुई हैं। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि पिछले कुछ अरसे से और पिछले कुछ वक्त से वक्फ बोर्ड को आड़ बनाकर राम मंदिर की चोरी को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है और हैरत की बात तो यह है कि हमारे कुछ नाम निहाद उलमा इस ताल्लुक से अपने नजरियात का इजहार कर रहे हैं जबकि उनका कोई भी हक इस बात पर नहीं है कि वो राम मंदिर का ताल्लुक वक्फ बोर्ड से जोड़ें या वक्फ बोर्ड का ताल्लुक राम मंदिर से जोड़ें। दोनों चीजें अलग हैं और यकीनी तौर पर किसी भी एक चोरी को दूसरी चोरी से जस्टिफाई करना किसी भी सूरत में ईमानदारी नहीं हो सकती।
0: समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर, पहले तो बताइए कि इस चिट्ठी के डिटेल्स क्या है और जो ये वक्फ बोर्ड में घोटाले की बात सामने आ रही है क्या सिर्फ ये जमीन तक सीमित है या इसके कई और आयाम है?
4: नहीं देखिए ये प्रकरण ऐसा है जो पहले भी कई दफा प्रदेश में उठा है और अब जिस तरह से मौलाना शहाबुद्दीन ने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, इस चिट्ठी में साफ लिखा है कि शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बड़े स्तर पर बल्कि अरबों तक का जो है घोटाला हुआ है। ये एक बहुत बड़ा दावा मौलाना बरेली के जो है वो कर रहे हैं और उन्होंने ये तक कहा है मुख्यमंत्री से कि एक जांच कमेटी बनाए, चाहे एसआईटी बनाए और इसकी जांच कराए। मौलाना ये कहते भी सुनाई देते हैं कि जो अयोध्या का बड़ा स्कैम हुआ है, चंदा चोरी हुई है, वो शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के स्कैम के सामने कुछ भी नहीं है। तो एक बहुत बड़ा बयान आ रहा है जो मौलाना शहाबुद्दीन की तरफ से और सीधे उनकी चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहुंचती है। तो अब देखना तो ये होगा कि एक तरफ तो एसआईटी अयोध्या मामले की जांच कर रही है, क्या मुख्यमंत्री या यूपी सरकार की तरफ से एक और जांच कमेटी या एसआईटी बनेगी जो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को संपत्तियों पर काम करेगी। आरोप मौलाना की तरफ से यह भी लगाया गया है कि जो वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी हैं उन्होंने वहां की जमीनों का बंदरबांट आपस में या अपने पारिवारिक लोगों ने कर लिया है।
1: अब देखना योगी सरकार क्या निर्णय लेती है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे कोलकाता की। कोलकाता एयरपोर्ट कैंपस में मौजूद गौरीपुर मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। जमीयत उलेमा हिंद पश्चिम बंगाल के प्रमुख सदीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि बीते 130 सालों से इस मस्जिद में तो नमाज हो रही है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिना कोई नोटिस के गेट बंद कर दिए।
0: लोगों के साथ जबरदस्ती की गई, ये अन्याय है, उन्होंने कहा। नमाज पर रोक लगाने पर अब मुस्लिम संगठन भड़क गया है। उन्होंने कहा कि फैसले को जमीयत उलेमा हिंद ने अन्याय बताया।
11: ১৩০ বছর মসজিদে নামাজ হচ্ছে, এটা অন্যায়, এটা বল প্রয়োগ হয়েছে। আমরা ভারতের নাগরিক, এয়ারপোর্টের সুবিধা অসুবিধা আমরা জানি, মুসলমান নিজের হাতে মসজিদ তুলে দিতে পারে না।
0: उधर सदीकुल्ला चौधरी के बयान पर बीजेपी भड़क गई है। विधायक ने कहा कि अगर भड़काऊ बयान देकर लोगों को उकसाने का प्रयास किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
12: सिद्दीकुल्ला चौधरी जो है, आप लोग जानते हैं, ये टीएमसी गवर्नमेंट में मिनिस्टर रह चुके हैं और एक धर्मीय नेता भी है। सिद्दीकुल्ला चौधरी भी ओपनली तो बोल रहा है कि नहीं, मैं सबको शांत होने के लिए बोला हूँ, लेकिन मेरे पास खबर है, मैं पुलिस को भी बताया हूँ कि गांव के जो बाशिंदा है उन लोगों को उसका रहा है कि आप लोग इसका प्रोटेस्ट कीजिए रास्ते में। सबसे बड़ी बात है मस्जिद का, जमीन मस्जिद का नहीं, तो दैट लैंड बिलोंग्स टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब ये प्योर एंक्रोचमेंट है। आप इसके लिए विकास और सुरक्षा दोनों के बीच कोई भी ना आए। आप लोगों को पता है बंगाल में आज से गुंडा दमन कानून भी चालू हो गया है, इसलिए कानून को कोई हाथ में मत लीजिए। किसी के भड़काव में आके अपना जीवन अपना परिवार को तकलीफ मत।
1: दिल्ली इन सब मामले में फैसला है और इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है बीजेपी, सुनाते हैं।
13: हुसैन, ताहिर हुसैन इंस्टिगेटेड द मॉब व्हेन अंकित केम फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस मॉब। जब अंकित शर्मा अपने कर्तव्य का पालन करके भीड़ के सामने आता है तो ताहिर हुसैन वो गुंडा है जो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ था, जिसने भड़काऊ बयान दिए और जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। और आगे कोर्ट कहता है, When the accused persons were acting in pursuance to a conspiracy and common object to kill Hindus, it covered killing of Ankit as well for the reasons that Ankit was killed because he was a Hindu. अब सवाल यह आता है कि सरकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, उनके पार्षद ताहिर हुसैन दंगा करवाते हैं, एक आईबी ऑफिसर की हत्या करवाते हैं और बड़ी प्रखरता से हमने इस पे प्रेस वार्ता भी करी और यह मुद्दा जनता का मुद्दा था, कोई मिट्टी का तेल लेके चल रहा था तो वो अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी जी थी, जिनके ऊपर मैं अभी आऊंगा। और मुझे याद है जब संसद के पटल पर मार्च 2020 में यह मुद्दा आया तो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी आरोपी है ये बख्शा नहीं जाएंगे, एक एक को पकड़ेंगे और इनको सजा होगी। और आज जब ये फैसला आया है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये न्याय की जीत है, ये जनता की जीत है, ये कानून की जीत है, ये संविधान की जीत है। ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी आप ये प्रेस वार्ता देख रहे हैं, कहीं छुपिएगा मत, जैसे आप जब ताहिर हुसैन पकड़ा गया था छुप गए थे, एक शब्द आपके मुख से नहीं निकला था, पार्टी से आपने निष्कासित नहीं किया था, उसको राजनीतिक संरक्षण दिया था। आज ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्या आप बाहर निकल के आज देश की जनता और दिल्ली की जनता से माफी मांगेंगे?
0: वहीं 6 साल पहले हुए दिल्ली दंगों का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है। दिल्ली की एक अदालत ने केस में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी पाया और इसके बाद सियासी ठीकरा फोड़ने की कवायद शुरू हो गई।
1: बीजेपी अब इस फैसले के बाद से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल रहे हैं, जब आम आदमी पार्टी का इधर दूसरी तरफ कहना है कि पार्टी पहले ही ताहिर हुसैन से तो रिश्ते तोड़ चुकी है।
14: ये वाकया 6 साल पहले का है, जब पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस गई। इस हिंसा ने दिल्ली के दिलो दिमाग पर गहरे जख्म किए। करीब 53 बेकसूरों की मौत ने इस हिंसा को बेहद भयावह बना दिया। 6 साल बाद अब इस मामले में हिसाब हुआ है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट का इंसाफ सामने आया है। अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन दोषी पाया गया। ताहिर हुसैन के अलावा 4 और आरोपियों को कोर्ट ने दोषी पाया। आपको बता दें कि 26 फरवरी 2020 को खजूरी खास नाले से अंकित शर्मा का शव मिला था। उनके पिता ने ताहिर हुसैन समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। तमाम गवाहों की पेशी सबूतों और सुनवाई के बाद अदालत का फैसला अब दिल्ली के सामने है। जहां तक ताहिर हुसैन का सवाल है तो खबर है कि कोर्ट की सुनवाई के दौरान वो फूट फूट कर रोने लगा। ताहिर की माने तो वो बेकसूर है, उसे फंसाया गया है।
15: ताहिर जी आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर बताइए।
14: ताहिर हुसैन के अपने तर्क हैं, उसके पास ऊपरी अदालत में जाने का पूरा हक है, लेकिन फिलहाल ताहिर हुसैन को लेकर दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर 6 साल पुरानी हिंसा को लेकर दंगल शुरू हो गया है।
16: देखिए 2020 में जो दंगे हुए, आज ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोगों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू जो वहाँ पे रहने वाला हिंदू समाज है उनको मारने की साजिश थी, और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए, नौजवान बेगुनाह अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर जिनको कई बार चाकुओं से गोदा गया और बाद में उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया।
17: कोर्ट का फैसला है उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा क्या नहीं रहा, ये सकते हैं।
14: तो ताहिर हुसैन दिल्ली की राजनीति का फिर से एक अहम किरदार हो गया है। हिंसा में नाम आने के बाद ताहिर हुसैन से केजरीवाल ने किनारा कर लिया था, आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने गले लगा लिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि ताहिर हुसैन का सरपरस्त कौन था? आज तक ब्यूरो।
1: तो दिल्ली में हिंसा हुई थी और इस मामले में अदालत से फैसला है, और उस समय पार्षद ताहिर हुसैन और बेहद गंभीर आरोप लगे थे, और उसके बाद से ताहिर हुसैन को गिरफ्तार भी किया। आपको बताते हैं कि दिल्ली में जब हाल में विधानसभा के चुनाव हुए, उन विधानसभा के चुनाव में ताहिर हुसैन बकायदा कैंडिडेट था, मुजफ्फराबाद से AIMIM ने प्रत्याशी बनाया था, खुद असदुद्दीन ओवैसी उनके प्रचार के लिए मुजफ्फराबाद के गलियों गलियों में घूम रहे थे, और इस मामले में अदालत ने बड़ा फैसला, सेशन कोर्ट की तरफ से फैसला आया है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हम आगे जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट तक का भी उनके पास जो है रुख अपना सकते हैं, ऑप्शन है, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला अदालत की तरफ से आया है। ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया है। अब तक वो सिर्फ आरोपी था, दोषी करार दिया गया है और आईबी के ऑफिसर अंकित शर्मा को मारा गया था। इस मामले में कुछ और भी हैं जो दोषी करार दिए गए हैं।
0: और अब बात पंजाब कांग्रेस की, जिसमें मतभेद सुलझ नहीं रहे। भूपेश बघेल 5 दिन पंजाब में बिताकर वापस लौट आए, लेकिन मतभेद जस का तस रहा। अब राहुल गांधी ने विदेश से लौटते पंजाब पर बैठक बुला ली है दिल्ली में।
18: जो पार्टी के हाई कमान का फैसला है उस पे किसी का एतराज नहीं है।
19: तो जो राहुल गांधी हमारे मालिक हैं, हमारे लीडर हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। मेरे को तो अभी तक भी नहीं पता लगा कि वो नाराज क्यों हैं।
20: पंजाब में जैसे ही कांग्रेस ने चुनावी तैयारी की तरफ पहला कदम उठाया, मतभेद की ज्वालामुखी फूट पड़ी। चन्नी बनाम वडिंग की लड़ाई इतनी खुलकर सामने आ गई कि प्रभारी भूपेश बघेल को पंजाब आना पड़ गया। बघेल आए, 5 दिन पंजाब में बिताकर वापस दिल्ली भी लौट गए, लेकिन मतभेद की गुत्थी सुलझ नहीं पाई। अब आलम यह है कि बघेल की रिपोर्ट पर दिल्ली में माथापच्ची हो रही है। राहुल गांधी, खड़गे और केसी वेणुगोपाल बैठक कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में मतभेद दूर करने के दिल्ली में उपाय तलाशे जा रहे हैं।
21: 3 हफ्तों के विदेश दौरे से लौटे राहुल गांधी के सामने पंजाब कांग्रेस में हो रही गुटबाजी मुंह बाएं खड़ी है। दरअसल पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल ये साफ कर चुके हैं कि राज्य के अध्यक्ष राजा वड़िंग नहीं हटाए जाएंगे। इसके विपरीत चन्नी समर्थक गुट का साफ कहना है कि उनको इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। ऐसे में बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल तीनों आज इस मुद्दे पर एक अहम बैठक कर सकते हैं और इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे।
20: सवाल है कि आखिर पंजाब से लौटकर बघेल ने आला कमान को क्या ब्रीफिंग दी है। अपनी रिपोर्ट में बघेल ने आला कमान से क्या क्या कहा है। दरअसल बघेल को पंजाब इसलिए जाना पड़ा क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पद पर 2 गुटों में तनातनी चल रही है। कांग्रेस नेतृत्व ने अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष बरकरार रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खुद प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। पार्टी ने चन्नी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया, लेकिन उनकी नजर प्रदेश अध्यक्ष पद पर है। पंजाब में टकराव की यह कहानी नई नहीं है, न ही आलाकमान का नींद से देर से जागना नया है। जहां तक चन्नी का सवाल है तो वो अपने तेवर दिखाने में कतई पीछे नहीं है। जब तक बघेल पंजाब में रहे, चन्नी गुट आक्रामकता दिखाता रहा। वडिंग की मौजूदगी वाली बैठक से चन्नी गुट ने दूरी बनाए रखी और बघेल से अलग से बैठक कर अपना मंसूबा भी अच्छे से बता दिया। हालांकि वडिंग लगातार कहते रहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
22: वडिंग साहब और चन्नी साहब एक पेज पे आएंगे,
23: 100% एक पेज पे आएंगे। दोनों राहुल गांधी के सिपाही हैं। उन्होंने कहा है ना कल कि मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ, आदेश मानता हूँ। अगर राहुल गांधी के हम दोनों सिपाही हैं तो जो राहुल गांधी हमारे मालिक हैं, हमारे लीडर हैं, जो कहेंगे वो करेंगे।
22: हालांकि बघेल साहब ने कैटेगोरिकली कहा, बार बार कहा ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, प्रेसिडेंट वही रहेंगे, वडिंग साहब रहेंगे, हाईकमान का डिसीजन चेंज नहीं होगा, लेकिन वो लोग जो हैं वो अड़े हुए हैं।
23: यार कमाल होगी, अब कोई बात नहीं, अगर वो अड़े हैं तो वो भी अपने लोग हैं, वो बातचीत करेंगे। हो सकता है कुछ और बातचीत करनी हो उनको, तो मेरे को लगता है भूपेश बघेल जी वही करते हैं। बिकॉज
20: भूपेश बघेल आला कमान का दूत बनकर पंजाब गए, मतभेद की दरार भरने की भरसक कोशिश भी की, लेकिन गेंद एक बार फिर हाईकमान के पाले में है। आलाकमान के फैसले से पहले बघेल ने साफ कर दिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, पंजाब का मतदाता लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में श्री राहुल गांधी जी पर भरोसा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का पंजाब में एक ही चेहरा है, वो है श्री राहुल गांधी जी। लेकिन क्या इतना भर कह देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? दिल्ली में राहुल गौतम के साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक।
0: राहुल गौतम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। राहुल, क्या एक बैठक दिल्ली में बुलाने से पंजाब कांग्रेस का इतना बड़ा मसला सुलझ जाएगा?
21: देखिये बैठकें तो पहले भी हुई थी इस पूरे मसले को लेकर, तकरीबन 8 बैठकें हुई थी, लेकिन नतीजा रहा सिफर, क्योंकि फैसला लिया गया कि जो राजा वरिंग है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे, जिसके बाद पूरी बगावत हुई और पार्टी की किरकिरी हुई। देखिए आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा कुछ सीखा नहीं है अपने इतिहास से, क्योंकि आपको ध्यान होगा ऐसा ही एक फ्रंट नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ भी खोला था, जिस प्रकार से अब हमको गुटबाजी अपने चरम पर पंजाब के अंदर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आज की जो बैठक है आलाकमान की वो बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। इसमें राहुल गांधी खुद मौजूद होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, केसी वेणुगोपाल होंगे, वो रिपोर्ट होगी, वो फीडबैक होगा जो कि भूपेश बघेल ने आलाकमान को सौंपा है, और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। अब सबसे मुश्किल बात यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट करेगी कि उससे गलती हुई पंजाब के अंदर जब उन्होंने फैसला किया कि राजा वरिंग को आप कंटिन्यू करेंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी अपनी भूल को, तथाकथित भूल को सुधार करेगी, उसको रिव्यू करेगी फैसले को, क्योंकि काफी सारे लोग आप कह सकते हैं कि वो नाराज बताए जा रहे हैं। उसमें नहीं सिर्फ चन्नी है बल्कि रंधावा, सुखजिंदर रंधावा है, वो भी नाराज बताए जा रहे हैं। इसके अलावा ओपी सोनी, विजेंदर सिंगला, बहुत सारे नेता है पंजाब कांग्रेस के जो कि नाराज बताए जा रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमें कुछ भी मंजूर नहीं है।
1: बिल्कुल, इससे चैलेंजेस बहुत होंगे, बैलेंस फैसला लेना होगा, क्योंकि इस किसी एक पक्ष के में फैसला दिया तो दूसरा पक्ष नाराज हो सकता है और ये और मुश्किलें पैदा करेगा। एक और 11 में अब रुकने, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
2: durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
5: So sorry!

0: ईरान से जंग में पूरी ताकत से उतरा अमेरिका, लगातार तीसरे दिन एयर स्ट्राइक, कुवैत बहरीन में ईरानी ड्रोन का खौफ, ट्रंप बोले 2-3 हफ्ते चलेगी जंग, होर्मुज में लेंगे 20% टैक्स। पहलगाम आतंकी हमले में बड़ा एक्शन, लश्कर सरगना हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, आतंकी की गैर मौजूदगी में शुरू हुआ ट्रायल, एनआईए की चार्जशीट में है मास्टरमाइंड। गाजियाबाद में पिंक बूथ के पास तड़प तड़प कर गई घायल शख्स की जान, लहूलुहान होने के बाद भी खड़ी देखती रही पुलिस, वर्दी वालों की संवेदनशीलता पर सवाल। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में खींचतान जारी, आज दिल्ली में आला कमान के साथ बड़ी बैठक की संभावना, भूपेश बघेल की फीडबैक पर हो सकती है चर्चा। लॉरेंस गैंग के खिलाफ एफबीआई के एक्शन के बाद बीकानेर में तोड़ा गया गैंगस्टर रोहित गोदारा का घर, पुलिस ने कार्रवाई से किया इनकार, पड़ोसियों से जानकारी के बाद सस्पेंस गहराया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं राजीव ढोंडी। आज शुरुआत करते हैं बुलेटिन की 12 बजे 12 रिपोर्टर में। सबसे पहले रिपोर्ट आपको देश की राजधानी दिल्ली से देंगे। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कल कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले के बाद से दिल्ली में सियासी घमासान छिड़ गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने सवाल खड़ा किया है, मर्डर में दोषी पाए गए आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद सिर्फ एक्टर है, डायरेक्टर कोई और है।
2: 2020 में जिस तरह से दिल्ली दंगा हुआ था उसमें आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। अब इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को सेशंस कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है और इसके बाद से कहीं ना कहीं दिल्ली में सियासत चरम सीमा पर है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी इस पूरे फैसले से नाखुश है, जहां अमानतुल्लाह खान ने कहा कि वो काफी दुखी है और इस पूरे मामले को लेकर उच्च अदालत में जाएंगे, वहीं दूसरी ओर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री जैसे कि मंजर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, इन्होंने ये साफ साफ कहा कि जिस तरह से दंगे दिल्ली में हुए थे वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मिली भगत से हुए थे। इन्होंने दिल्ली को दंगों में झोंका, इसके बाद कई लोगों की जाने चली गई और हिंदुओं के खिलाफ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, इस तरह की बातें जो है वो आम आदमी पार्टी बीजेपी की तरफ से कही जा रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। अब देखना यह होगा कि किस तरह से जो ताहिर हुसैन है वो उच्च अदालत में जाते हैं और जब वो उच्च अदालत में अपने इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे उस वक्त अदालत क्या फैसला सुनाती है।
0: बीजेपी ने दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन को दोषी ठहराने के बाद फैसले के बाद आम आदमी पार्टी पर किस तरह से हमला बोला है वो भी आपको दिखाते हैं।
3: अरविंद केजरीवाल का खासम खास और नफरत करने वाला कानून से और हिंदुओं से, जब अंकित शर्मा अपने कर्तव्य का पालन करके भीड़ के सामने आता है तो ताहिर हुसैन वो गुंडा है जो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ था, जिसने भड़काऊ बयान दिए और जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया।
4: ताहिर हुसैन इस हत्या में शामिल है, ये कल न्यायालय ने साबित किया है, दोषी करार दिया है ताहिर हुसैन को। हमारा ये मानना है कि इस मामले में ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मर्डर है और ताहिर हुसैन के द्वारा और उसके साथियों के द्वारा और उनके मास्टरमाइंड्स के द्वारा दिल्ली में एक भयानक साजिश रची गई थी। हम ये भी मानते हैं कि ताहिर हुसैन केवल एक्टर है, इस पूरे घटनाक्रम का डायरेक्टर कोई और लोग हैं, मास्टरमाइंड कोई और लोग हैं। ताहिर हुसैन के हाथों में खंजर दिया गया लेकिन देने वाले, चलवाने वाले, इसका नैरेटिव बनाने वाले लोग अभी भी बचे हुए हैं। उमर खालिद जैसे लोग जिनको बचाने के लिए आज भी नैरेटिव बनाया जा रहा है, ताहिर हुसैन लगातार उनके संपर्क में था।
0: गाजियाबाद में पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया है, पुलिस के सामने एक युवक तड़पता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा लेकिन उसे अस्पताल पहुंचाने की बजाय पुलिस वाले खड़े देखते रहे। मामला गाजियाबाद के मधुबन पाबुथाम थाना इलाके का है। एक पिंक बूथ के बाहर एक युवक वहां तड़पता रहा, उसने दम तोड़ दिया, मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि 22 वर्षीय राजकुमार और एक ऑटो चालक के बीच में किराए को लेकर एक विवाद हुआ। विवाद काफी बढ़ा। मदद मांगने के लिए ये राजकुमार पिंक बूथ की तरफ भागा। पुलिस वाले अंदर मौजूद थे लेकिन दरवाजा बंद था। कांच का दरवाजा खटखटाते वक्त टूट गया। कांच से राजकुमार का हाथ भी कट गया और खून बहने लगा। आरोप यह है कि लगभग 40 मिनट तक युवक ऐसे ही पिंक बूथ के बाहर खून से लथपथ तड़पता रहा, मदद मांगता रहा। पुलिस वाले देखते रहे लेकिन वक्त पर अस्पताल ही नहीं पहुंचा।
5: गाजियाबाद के बापू धाम इलाके में पुलिस पिंक बूथ के सामने एक युवक ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस के मुताबिक राजकुमार नाम का एक शख्स 12 जुलाई को ऑटो में बैठता है। पुलिस के मुताबिक ऑटो चालक और राजकुमार दोनों नशे में थे। दोनों में पैसे को लेकर विवाद था। दोनों पुलिस पिंक बूथ पर पहुंचते हैं जहां राजकुमार पिंक बूथ पर अपना हाथ मारता है, उसका हाथ कट जाता है, उसके बाद वो जमीन पर गिर जाता है। आज तक के पास जो तस्वीरें आई हैं उसमें राजकुमार पिंक बूथ के सामने सड़क पर तड़प रहा है, खून चारों तरफ बिखरा हुआ है। लोग जमा होकर राजकुमार को देख रहे हैं लेकिन किसी ने भी उठाने की कोशिश नहीं की। 40 मिनट तक राजकुमार यूं ही सड़क पर तड़पता रहा और तड़प तड़प कर उसने दम तोड़ दिया। गाजियाबाद पुलिस का इस मामले में शर्मनाक बयान आया है कि ऑटो चालक और राजकुमार दोनों नशे में थे। लेकिन गाजियाबाद पुलिस को यह जवाब देना होगा कि जब दोनों मदद के लिए पुलिस के पास गए तो पुलिस आखिर क्या कर रही थी।
0: नासिक के इगतपुरी कस्बे में भवली डैम और वाटरफॉल घूमने के लिए गए परिवार की महिला सदस्य के साथ छेड़छाड़ हुई। उस छेड़छाड़ का विरोध करने पर कुछ लोगों ने वहां पर हमला कर दिया। आरोपियों ने न सिर्फ परिवार के साथ मारपीट की बल्कि लगभग 15 किलोमीटर तक उनका पीछा भी किया, उनकी कार को नुकसान भी पहुंचाया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर यह हमला हुआ है। अब आप ये तस्वीर देखिए कैसे छेड़छाड़ कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि पुलिस कहाँ है, पुलिस की क्या जिम्मेदारी है? सड़कों पर छेड़छाड़ हो रही है, दिन दहाड़े हो रहे हैं, ना तो स्थानीय लोग ना आसपास के लोग इसे देख रहे हैं ना मदद कर रहे हैं। और ये मोटरसाइकिल पर दौड़ते हुए हाथों में आप देखेंगे कि ये कुछ लोहे की रॉड सी नजर आ रही है और उससे गाड़ी शीशा तोड़ देते हैं।

0: कर्नाटका के चिकबल्लापुर की एक अदालत में अंधविश्वास और कानूनी व्यवस्था को चुनौती देने वाला एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक 65 साल की महिला को कोर्ट के जज की कुर्सी पर काहित रूप से काला जादू करने का आरोप लगाया गया है। आरोप यही है कि महिला ने चल रही सिविल केस का फैसला अपने पक्ष में करवाने के लिए जज के डायस पर पूजा किए हुए सफेद सरसों के दाने छिड़के। ये पूरी घटना कोर्ट में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। कोर्ट के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की शिकायत पर पुलिस ने कर्नाटका प्रिवेंशन एंड इराडिकेशन ऑफ ह्यूमन इविल प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है।
1: अब बात पंजाब कांग्रेस में मचे खींचतान की। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस के अंदर संकट दिखाई दे रहा है और इस पर बड़ी बैठक के आसार हैं। दिल्ली में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में बैठक की संभावना है। इस मीटिंग में पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल से मिले हुए फीडबैक पर चर्चा हो सकती है।
2: पंजाब कांग्रेस में हो रही गुटबाजी को लेकर दिल्ली के अंदर आलाकमान की आज बड़ी बैठक होगी। दरअसल पंजाब कांग्रेस में हो रही किरकिरी के पीछे दो मुख्य किरदार हैं। एक है पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग और दूसरे हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, और दोनों ही फिलहाल आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अब ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इस पूरे मामले में इंटरवीन करेंगे। भूपेश बघेल जो कि राज्य के प्रभारी हैं, उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट पर संज्ञान लेंगे और उसके बाद ये फैसला करेंगे कि क्या राजा वड़िंग को पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर कंटिन्यू किया जाए या फिर चरणजीत सिंह चन्नी समर्थित गुट की जो नाराजगी है उसको दूर करने के लिए कोई बीच का रास्ता अपनाया जाए।
1: 12 बजे 12 रिपोर्टर में बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की ताबड़तोड़ तैयारियां चल रही हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन चुनावी तैयारियों पर बैठक करेंगे। बांकीपुर में उपचुनाव नितिन नवीन के सीट खाली करने की वजह से ही हो रहा है। राज्यसभा जाने के बाद नितिन नवीन ने सीट खाली की थी। बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी से यह चुनाव दिलचस्प हो गया।
3: पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया 13 जुलाई को खत्म हो गई थी, लेकिन आज नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होनी है और इसके साथ ये तय हो जाएगा कि मैदान में कौन कौन उम्मीदवार रहेंगे। लेकिन बीजेपी के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल शाम ही पटना पहुंच गए थे और लगातार अपने सरकारी आवास पर नितिन नवीन रात से बैठकों में व्यस्त हैं। आज भी बांकीपुर विधानसभा सीट के पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ नितिन नवीन रणनीति बना रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी जीत दर्ज की जाए।
1: अब बात देश की सियासत की। चढ़ावा चोरी का मामला भी शांत ही चल रहा है कि बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का एक दावा, उससे खलबली मच गई है। रिजवी ने दावा किया कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी से भी बड़ा घोटाला वक्फ संपत्तियों का है। घोटाला अरबों खरबों में हो सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हैं। उन्होंने घोटाले का आरोप लगाते हुए सीएम योगी को पत्र लिखा, जांच की मांग भी की है।
4: मुस्लिम क्लीग शहाबुद्दीन रिजवी बरेली से बड़ा दावा किया और कहा है कि अगर वक्फ बोर्ड यानी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड दोनों की जांच हो जाए तो राम मंदिर से बड़ा घोटाला निकल कर आएगा। आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी में आजम खान जो मंत्री थे वो और उनके साथ साथ फारूकी जो चेयरमैन थे सुन्नी वक्फ बोर्ड के, उन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यही कहा है कि रेवड़ी की तरह ये जमीनों को आपस में बांटा गया जिससे कि मजलूमों को वो चीजें नहीं मिल पाए, और इस घोटाले के लिए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है। साफ तौर से ये एक बड़ी जांच की बात कही जिसमें शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड आते हैं और हजारों करोड़ों रुपए की चोरी की बात कही जा रही है। अब इस मामले पर जांच की बात कहने के बाद कई संगीन आरोप भी समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान भी

0: लगे हैं।
1: ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रिज़वी ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं।
2: वक्फ में करोड़ों नहीं अरबों और खरबों की चोरी सामने नजर आएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वक्फ बोर्ड में करोड़ों नहीं अरबों और खरबों की चोरी सामने नजर आएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
1: 12:12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट अब कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर है। यूपी में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सहूलियत को लेकर कांवड़ यात्रा मार्ग पर जुड़े हुए हर एक जिले में लगातार बैठकें चल रही, तैयारियों का सिलसिला चल रहा है। पूरी खबर बता रहे हैं आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव।
3: कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। पुलिस आलाकमान को अभी से मैसेज दे दिया गया है कि तैयारियां पुख्ता रखें, कहीं भी चूक की गुंजाइश तक ना रहे। इसे लेकर पुलिस जो है डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ते और आम ड्रेस में भी पुलिसकर्मी तैनात करने वाली है। खासकर जो कांवड़ यात्रा का रूट रहने वाला है वो सबसे संवेदनशील होगा। उन जगहों पर नॉनवेज ना बिके, ऐसे निर्देश भी पिछले साल की तरह प्रशासन और सरकार की तरफ से आ सकते हैं। इतना ही नहीं, डीजे की लंबाई क्या होगी, उसका डेसिबल क्या होगा, उसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कांवड़ियों को सुविधाएं मिल सके, जगह जगह चिकित्सा सेवा रहे, उसे लेकर भी स्वास्थ्य विभाग जगह जगह कैंप्स लगाने वाला है। तो वहीं यात्रा के रूट पर जगह जगह भंडारे चलेंगे और सरकार प्रशासन की तरफ से गर्मी है इस वजह से प्याऊ की व्यवस्था भी की जा सकती है। कांवड़ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल पुख्ता इंतजाम पर खुद नजर रखते हैं और बैठके लेते हैं। जल्दी ही लखनऊ में कांवड़ यात्रा को लेकर दिशा निर्देश जारी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक बड़ी बैठक लेते नजर आएंगे।
1: चढ़ावा, चोरी, वफ घोटाला, इन सब के बीच में गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर के भंडारों में चोरी का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस फुटेज में एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी नोटों का बंडल अपने पैरों के नीचे छिपाता हुआ दिख रहा है। ये वीडियो 15 अप्रैल का है। इसके बाद
3: दिशा निर्देश जारी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक बड़ी बैठक लेते नजर आएंगे।
1: चढ़ावा, चोरी, वफ घोटाला, इन सब के बीच में गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर के भंडारों में चोरी का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस फुटेज में एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी नोटों का बंडल अपने पैरों के नीचे छिपाता हुआ दिख रहा है। ये वीडियो 15 अप्रैल का है। इसके बाद 5 मई को वही कर्मचारी नोटों का बंडल चुराते हुए पकड़ा गया था। हालांकि उस दिन सीसीटीवी बंद था। चढ़ावा चोरी में अंबाजी मंदिर प्रशासन ने कुल 3 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करवाया और सभी को नौकरी से निकाल दिया गया।
4: राम मंदिर में चंदा चढ़ावा चोरी का जो विवाद है वो अभी शांत नहीं हुआ। वैसे में गुजरात के पवित्र शक्तिपीठ और यात्राधाम अंबाजी मंदिर का भी एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। हालांकि जब मंदिर प्रशासन से बात की गई तब कहा गया कि ये वीडियो जो है अप्रैल महीने का है, पुराना वीडियो है। उसके बाद प्रशासन ने तुरंत उस पर एक्शन लिया था और 5 मई को जो है पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी और मंदिर के 3 कर्मचारी जिसमें चिराग ठाकुर जो है वो 500 की नोटों का बंडल जो है वो अपनी जेब में रखता हुआ पाया गया था, उसके ऊपर ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी। चिराग ठाकुर और निकुंज पटेल के साथ कुल मिलाकर 3 कर्मचारियों के खिलाफ मंदिर प्रशासन ने FIR भी दर्ज करवाई थी और उन तीनों की गिरफ्तारी भी हुई थी। साथ ही तीनों कर्मचारियों को नौकरी से बेदखल कर दिया गया था। उसके बाद प्रशासन ने दावा किया है कि हमने जो सीसीटीवी नेटवर्क है उसको पूरा पुख्ता किया और एक नई SOP बनाई है जिसमें 20 कैमरों की निगरानी के तहत ये पूरा जो चढ़ावा है उसकी गिनती की जाएगी और उसके उसमें कोई भी बंदा जो है वो उसकी चोरी न कर पाए, इसलिए 6 महीने का सीसीटीवी फुटेज भी जो है रखा जाएगा ताकि फिर से ऐसी कोई घटना न बने। पर फिलहाल इस वीडियो ने सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद फिर से एक बार चर्चा जगाई है कि हमारे मंदिरों में जो दान आता है या चढ़ावा आता है उसकी जो है वो कितना सुरक्षित है और ये कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन से क्या मामला सुलट जाता है।
1: 12:12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट मुंबई से है। वियतनाम के फुकोक द्वीप के पास में स्पीड बोट हादसे में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों का पार्थिव शरीर सोमवार देर रात विशेष विमान से मुंबई लाया गया। हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस के विशेष विमान में से ये शव लाए गए। मृतकों में 10 तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश, 2 केरल के निवासी थे। पार्थिव शरीरों को उनके गृह राज्यों के लिए भेजा जा रहा है।
0: वियतनाम में जो बोट ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद वियतनाम सरकार ने एक एरोप्लेन भेजकर जो बॉडीज हैं, क्योंकि पैसेंजर्स तो पहले ही आ गए थे लेकिन जो बॉडीज हैं उनको यहाँ देश में भेजने के लिए उन्होंने मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यहाँ भेजा था। साथ ही कई सारे जो एम्बुलेंसेज हैं, हर्सेस हैं, उनको यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ा चल रहा था जिसकी वजह से जो हर्सेस हैं उनको ले जाया गया ताकि वियतनाम की एरोप्लेन से उनको उतार कर उन बॉडीज को यहाँ डोमेस्टिक जो डिपार्चर्स हैं वहाँ पर रखा जाए। और डोमेस्टिक की अब देख लीजिए तकरीबन सवेरे 6 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में कई सारी जो फ्लाइट्स हैं, या चाहे वो तिरुवनंतपुरम हो या फिर कोयम्बटूर हो, चेन्नई हो, आंध्रा में हो, तो ये तमाम जगहों पे ये जो 15 बॉडीज हैं, बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 बॉडीज जो हैं वो चेन्नई भेजी जानी है और वहीं बाकी बॉडीज आंध्रा और जो तिरुवनंतपुरम है केरला वहाँ भेजी जानी है।
1: अगली खबर भी मुंबई से है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के मामले में अब वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं।
5: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में अब तीसरे सबसे लंबा कार्यकाल रखने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एज अ मुख्यमंत्री अपने ऑफिस में 6 साल 237 दिन पूरे कर लिए हैं और इसी के साथ उन्होंने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का जो रिकॉर्ड है उसे तोड़ा है। एनसीपी चीफ शरद पवार जो है वो 6 साल 221 दिनों तक मुख्यमंत्री थे, तो अब तीसरे लॉन्गेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री हो चुके हैं। और उनसे पहले जो अभी दो लोग मुख्यमंत्री का कार्यकाल ज़्यादा रखते हैं उसमें वसंत राव नाइक है, जो आप कह सकते हैं कि 11 साल और 70 दिनों तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। विलासराव देशमुख दूसरे नंबर पर आते हैं जो कि 7 साल और 129 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे हैं। तो
1: अब खबर युद्ध की। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर हमला किया है। ताजा हमले में ईरान के बंदर अब्बास, किश द्वीप, किशम द्वीप, मूसा द्वीप और बुशेहर को निशाना बनाया गया है। वहीं ईरानी सेना ने अमेरिकी युद्धपोत पर क्रूज मिसाइल दागने का दावा किया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात का भी कहना है कि ईरानी क्रूज मिसाइलों ने 2 अमीराती तेल टैंकर को निशाना बनाया गया है और इस हमले में एक भारतीय क्रूज सदस्य की मौत हुई है जबकि इसमें 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं।
6: स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में 2 और इमाराती जहाजों को ईरान ने निशाना बनाया है। IRGC की तरफ से ये कहा गया है कि ये दोनों जहाज जो कि UAE के थे उस रास्ते से गुजर रहे थे जिस रास्ते से ईरान यानी IRGC ने जहाजों की आवाजाही पर मनाही की है, क्योंकि कल ही स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ईरान ने आवाजाही के लिए बंद किया था। लेकिन दूसरी तरफ से अमरीका का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज दुनिया भर के जहाजों के लिए खुली है। UAE के 2 जहाजों पर जिन पर ईरान ने हमला किया है उनमें एक ने आग पकड़ी है जबकि दूसरे का इंजन भी तबाह हुआ है। इन 2 जहाजों में भारत के सेलर्स भी थे जिनमें से 1 भारतीय नाविक की मौत हुई है जबकि 6 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन के भी 2 जो क्रू मेंबर हैं वो इस ईरानी हमले में घायल हुए हैं। घायलों में से 4 भारतीय नाविकों की तबीयत जो है वो काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। इस बीच UAE ने भी ईरान को खबरदार किया है कि वो अब अपने इन जहाज़ों पर हुए हमले की जवाबी कार्रवाई के लिए कोई भी कदम उठा सकता है।
1: इस बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से 20% टैक्स लेने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका संभालेगा। उन्होंने खुद को गार्जियन ऑफ द होर्मुज स्ट्रेट बताते हुए कहा कि इस काम का खर्च उठाने के लिए स्ट्रेट से गुजरने वाले हर कार्गो पर 20% टैक्स लिया जाएगा।
7: दुनिया की 20% से ज्यादा की ऊर्जा आपूर्ति और हर दिन 2 करोड़ बैरल से ज्यादा का तेल निर्यात सुनिश्चित करने वाला रास्ता यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बीते 3 महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग का बंधक बना हुआ है। ये रास्ता लगातार बाधित है। अमेरिका इस रास्ते को खुलवाने की बात तो करता है, ईरान की तरफ से किसी तरीके की टोल वसूली का विरोध भी करता है, लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान ने इस रास्ते के लिए नया संकट खड़ा कर दिया है। क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका अब इस रास्ते को खुलवाने और जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए टोल वसूलेगा और वो भी 20% का। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी 27 फरवरी 2026 की स्थिति में लौट पाएगा जब यहां पर न तो जंग की आग थी और न ही किसी तरीके की टोल वसूली।
1: 12:12 रिपोर्ट में अब खेल की खबरें। आज फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल शुरू हो रहा है और रात 12:30 बजे फ्रांस और स्पेन के बीच में मैच खेला जाएगा और सारी नजरें फ्रांस के एम्बापे पर हैं और लामिन स्पेन यामाल पर सबकी निगाह है।
8: बात अगर फुटबॉल की करें तो फीफा वर्ल्ड कप अब अपने रोमांचक यानी कि आखिरी दौर में पहुंच चुका है जहां सेमीफाइनल मुकाबले अब खेले जाएंगे। स्पेन और फ्रांस के बीच ये पहला मुकाबला खेला जाएगा जहां फ्रांस के साथ एम्बापे की ताकत है तो वहीं दूसरी तरफ यमाल और रोटरी स्पेन को मजबूती दिलाते हैं। डिफेंस के मामले में स्पेन फ्रांस से मजबूत है। अब देखना होगा कि तीसरी बार फ्रांस यहां फाइनल में पहुंचती है या फिर दूसरी बार ट्रॉफी के नजदीक यहां स्पेन अपना नाम लिखता है।
1: खेल के मैदान में आज एक और अहम मुकाबला होने वाला है जिस पर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की निगाह है। आज बर्मिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच में 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है और टी20 सीरीज में 0-4 की करारी शिकस्त के बाद अब बड़ा सवाल है क्या टीम इंडिया ओडीआई में बदला ले पाएगी।
8: इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज की शुरुआत आज से बर्मिंघम में हो रही है। भारतीय टीम के साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली जुड़ चुके हैं। जसप्रीत बुमराह भी बॉलिंग एडिशन की कमान संभालेंगे लेकिन भारतीय टीम की कोशिश होगी और टीम मैनेजमेंट की कोशिश होगी एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन खिलाना जो कि भारतीय टीम को जीत दिला सके। टी20 में मिली हार का बदला भारतीय टीम इंग्लैंड में लेना चाहेगी ओडीआई सीरीज को जीतकर। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहां भारतीय टीम जीत से शुरुआत करती है या फिर जो इंग्लिश टीम है वो दबदबा कायम रखती है। उम्मीद यही है कि भारतीय टीम जीत से शुरुआत करे और टी20 में मिली हार का बदला ले।
1: 12:12 रिपोर्ट हमें रुकने छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: Chogan Perfumes, the French edition for him.
12: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
13: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
14: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
15: And her.
16: Dick. इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
17: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है।
16: अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह
18: सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर।
19: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: लखनऊ में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में मीटिंग। बैठक में धर्मपाल सिंह समेत कई प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे, आगामी कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा। बूथ सशक्तिकरण को लेकर भी मंथन, सांगठनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा। वक्फ विवाद पर सियासी बयानबाजी तेज, वक्फ विवाद पर बीजेपी एसपी और एआईएमआईएम की प्रतिक्रिया, बरेली के मौलाना के आरोपों पर सियासत बढ़ी। एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन ने बयानबाजी से बचने की दी सलाह, फखरुल हसन बोले कि सबूत हो तो सामने आए, किसी भी धार्मिक स्थल में गड़बड़ी की जांच हो। संभल जामा मस्जिद केस में मस्जिद प्रबंधन समिति को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। राम मंदिर दान गबन मामले में एसआईटी जल्द सौंपेगी अपनी रिपोर्ट, दान गबन मामले की जिम्मेदारी तय करेगी एसआईटी। दान प्रबंधन व्यवस्था में सुधार की सिफारिश भी कर सकती है एसआईटी, वित्तीय रिकॉर्ड और बैंक लेन देन की जांच भी कर रही है एसआईटी। अयोध्या के मेयर गिरीश ने कहा कि राम जन्मभूमि क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण, मुआवजे या किसी भी जमीन की शिकायत पर प्रशासन प्राथमिकता से समाधान करेगा, अन्याय भी नहीं होगा। चढ़ावा चोरी की जांच और रिपोर्ट की चर्चा के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल, एडवोकेट अनूप अवस्थी ने राम जन्मभूमि न्यास को प्राधिकार बनाकर आरटीआई के दायरे में लेने की मांग की है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बीजेपी ने कसी कमर, बीजेपी ने तैयार किया 8 संगठनात्मक कार्यक्रमों का रोड मैप, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में तय हुई रणनीति। यूपी में बीजेपी 19 से 22 जुलाई तक हर विधानसभा में बूथ सम्मेलन आयोजित करेगी, बूथ मैपिंग और पुराने कार्यकर्ताओं से संपर्क भी साधेगी। 80 से ज्यादा बूथ वाले क्षेत्रों में बनेंगे नए मंडल, बदले मतदाता आंकड़ों के आधार पर ही बूथ पुनर्समायोजन होगा और कार्यकर्ताओं से संपर्क अभियान भी तेज करेगी बीजेपी। कानपुर लखनऊ की रफ्तार को मिली नई उड़ान, 63 किलोमीटर ग्रीन कॉरिडोर से अब सिर्फ 40 मिनट में हो जाएगा सफर। 42 करोड़ की लागत से हाईटेक ग्रीन कॉरिडोर तैयार और कैमरों से लैंस से पूरा का पूरा हाईवे, ऑटोमेटिक टोल वसूली भी। गाजियाबाद में मदद की गुहार के बीच में युवक की मौत, पिंक बूथ की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल, सूत्रों के मुताबिक एक ऑटो चालक से विवाद के बाद भाग रहा था युवक। युवक द्वारा मदद के लिए दरवाजा खटखटाया गया, शीशा टूट गया, उसे हाथ भी कटा जिससे खून बहा और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने 40 मिनट तक मदद न मिलने का आरोप लगाया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गैलेक्सी वेगा सोसाइटी में एक टावर की लिफ्ट अटकी, 4 बच्चियों ने घबराकर हनुमान चालीसा पढ़ी। लखनऊ में नवविवाहिता की हत्या से सनसनी, दहेज के लिए खतरनाक आरोप, शव को लेकर फरार हुए ससुराल वाले। बांदा में तेज हफ्ता, स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, चित्रकूट जा रहे 2 श्रद्धालुओं की मौत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
0: अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी की बड़ी खबर आपको देते हैं। चढ़ावा चोरी कांड में इस वक्त ये बड़ी खबर है, सूत्रों के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाने वाले कुछ विशेष दानदाताओं के दान को ट्रस्ट वापस कर सकता है, ये बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद से दर्जनों दानदाताओं ने, कुछ ने तो मीडिया के सामने आकर ट्रस्ट के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और अपने दान की चोरी या घोटाले का शक भी उन्होंने जाहिर किया था। कई श्रद्धालुओं का दावा था कि उनकी ओर से भेंट की गई वस्तुओं की रिसीट तक नहीं दी गई थी। आरोप यह भी है कि उनकी तरफ से दिए गए भेंट राम मंदिर में प्रदर्शित या सुरक्षित नहीं रखा गया। अब ट्रस्ट का मानना है कि गर्भगृह में सभी भेंट स्वरूप प्राप्त वस्तुओं को रखना संभव नहीं है क्योंकि पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। अब इस विषय पर ट्रस्ट स्तर पर मंथन जारी है। इन शिकायतों को देखते हुए ट्रस्ट संबंधित श्रद्धालुओं के द्वारा भेंट की गई वस्तुओं को लौटाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशीष, सबसे पहला सवाल, कितना गंभीर है ट्रस्ट इस फैसले को लेकर? दूसरा ये कि जब आपने रसीद नहीं दी तो आपको कैसे पता चलेगा कि असली दानदाता कौन है?
2: अब बिल्कुल देखिए राजीव, सबसे बड़ी बात है कि कई दानदाता इस समय सामने आए जब उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर चोरी का एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका जो सामान है वो चला गया, कहीं मिल नहीं रहा है, रिसिप्ट नहीं मिली है। तो इन सभी आरोपों को लेकर एक ट्रस्ट ने मंथन किया है पूरा, और मंथन करने के बाद क्योंकि ज्यादातर श्रद्धालु ये चाह रहे थे कि जो उनकी सामान है वो गर्भगृह में रखा जाए जहां पर श्री रामलला की मूर्ति, जहां पर दर्शन करते हैं, क्योंकि गर्भगृह में सीमित स्थान होता है, तो अब ऐसे में इन सारे सामानों को एक साथ वहां रख पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब ट्रस्ट ने विचार किया है, इस विकल्प के तौर पर तैयार किया जा रहा है कि आखिर क्या ऐसी चीजें हैं जिनको श्रद्धालुओं को वापस की जा सकती है पूजन कराने के बाद। यानी कि कहीं ना कहीं अभी तक जो आरोप थे कि वो चीजें गायब हो गई है, ट्रस्ट ही बैकफायर के तौर पर देखा जा रहा है और कह रहा है कि जो गर्भगृह में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं रखी जा सकती है, अब उनको वापस करना विकल्प पर चर्चा हो रही है। सूत्रों
0: जी
2: के
0: आशीष,
2: मुताबिक इस पर मंथन किया जा रहा है और मंथन के बाद जो निर्णय होगा वो सामने
0: बिल्कुल
2: लिया
0: देखना
2: जाएगा,
0: होगा कि सिर्फ मंथन ही
2: लेकिन
0: है
2: ये
0: या फिर गंभीरता से निर्णय लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर आपको देते हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटा दिया गया है। विवाद और इस्तीफे के बाद मंदिर ट्रस्ट की वेबसाइट को अब अपडेट कर दिया गया है, उसमें इस्तीफा देने वाले दोनों ही ट्रस्टियों का नाम अब नहीं है। दूसरी बड़ी खबर भी है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पहली बार ट्रस्ट की ओर से चोरी की रकम को लेकर दावा सामने आया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि चोरी की रकम को लेकर लगाए जा रहे राजनीतिक आरोप बेबुनियाद हैं। गोविंद देवगिरी ने लगभग 3 करोड़ रुपए की चढ़ावा चोरी की आशंका जाहिर की है। गोविंद देवगिरी ने SIT जांच से पूरी तरह संतोष जाहिर करते हुए कहा, खुद तो इस्तीफा नहीं देंगे। ये इस पर उन्होंने क्लैरिटी दी कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। गोविंद देवगिरी ने साफ कहा कि चढ़ावा चोरी का कोई भी राजनीतिक कनेक्शन नहीं है, ऐसे आरोप सिर्फ सियासी मकसद के तहत लगाए जा रहे हैं।
3: जहां तक मेरा आकलन है ये गलत भी हो सकता है क्योंकि SIT का अभी रिपोर्ट आना है, लेकिन जहां तक मेरा आकलन मैं आप लोगों से बतला सकता हूं वो 3 करोड़ के आसपास होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है।
4: नहीं नहीं देखो, चंपत राय जी की असावधानी हुई ये तो मैंने कहा है, लेकिन चंपत राय जी ने भी यह काम हमारे दूसरे न्यासी जो अनिल मिश्रा जी डॉक्टर रहे उनके लिए सौंपा हुआ था और वो इस काम को देख रहे थे, उनके द्वारा भी ये असावधानी हो गई। मैं उसको सिरे से खारिज कर रहा हूं, ये कपोल कल्पित है, ये झूठ है, ये अनावश्यक भी है और ये इस स्थिति में योग्य भी नहीं है।
0: अब बात यूपी में घोटालों के आरोपों की करते हैं। यूपी में एक बार फिर से वक्फ में घोटालों की मांग सामने आई है कि उसकी जांच की मांग सामने आई। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने मुख्यमंत्री योगी को चिट्ठी लिखी है। मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव सरकार तक के कार्यकाल में वक्फ के अंदर हुए घोटालों की पूरी जांच करने की मांग की है। मौलाना रिजवी ने लिखा है कि यूपी में सुन्नी और शिया दोनों ही वक्फ बोर्ड में समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान घोटाले हुए हैं, उनकी जांच की जाए।

0: अयोध्या में चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आते ही वक्फ के कथित घोटाले का सियासी शोर सुनाई पड़ने लगा था। पहले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष बासित अली ने बहराइच के सालार गाजी दरगाह में घोटाले के आरोप लगाए, फिर सीएम योगी ने कई मंचों से वक्फ के घोटालों का जिक्र किया। अब खुद मुस्लिम जमात के मौलाना रिजवी ने वक्फ में घोटालों के आरोप लगाए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर वक्फ के घोटालों की जांच करने की मांग की है।
1: मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सही तरीके से दोनों वक्फ बोर्डों का जांच पड़ताल करा दें तो आप समझिए और पूरी दुनिया देखेगी कि राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड का निकल करके सामने आएगा। वो लाखों का नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों का जो घोटाला है वो अरबों का घोटाला सामने निकल करके आएगा।
0: मौलाना रिजवी सीएम योगी के नाम लिखी चिट्ठी में दावा करते हैं कि 1989 से 1991 तक, 1993 से 1995 तक और 2003 से 2007 तक मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल रहा, फिर 2012 से 2017 तक अखिलेश का कार्यकाल रहा। इस दौरान आजम खान वक्फ मामलों के मंत्री रहे और उनके चहेतों ने वक्फ संभाला। 2000 से 2001 तक जुफर अहमद फारूकी, 2001 से 2003 तक अमीर आलम, 2004 से 2009 तक हाफिज उस्मान और फिर 2010 से 2026 तक जुफर अहमद फारूकी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे और मनमाने तरीके से बोर्ड के अंदर गड़बड़ियां की।
1: वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के मेंबरान ने और संबंधित अधिकारियों ने मिलकर के हमारे बुजुर्गों की वक्फ की हुई जमीन को खुर्द बुर्द किया, बेचा और भू माफियाओं के हाथ में सौदा कर दिया। मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है, मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी करें और अगर ऐसा कर देते हैं तो लोग राम मंदिर के चंदे की चोरी भूल जाएंगे और ये अरबों और खरबों की का करप्शन लोगों के सामने आएगा।
0: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकाल में वक्फ की संपत्तियों में घोटाले हुए, इसका सीधा आरोप खुद सीएम योगी अपने सार्वजनिक रैलियों कार्यक्रमों में लगाते रहे। जब राम मंदिर का मुद्दा सामने आया तो सीएम ने फिर से वक्फ घोटाले का जिक्र किया था।
2: मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके बेच करके और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है।
0: सियासी आरोप एक तरफ लेकिन आरोपों की जांच दूसरी तरफ। शिया वक्फ बोर्ड से जुड़े इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दें तो यूपी में किसी वक्फ घोटाले की सघन जांच अभी तक नहीं हो सकी है। पिछले दिनों बहराइच के सालार गाजी मसूद की दरगाह के घोटालों के मामले की जांच जरूर कराई जा रही है। हालांकि सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना है कि दरगाह कमेटी खुद प्रबंधन संभालती है और वक्फ बोर्ड के दायरे में नहीं है। बाकी सुन्नी वक्फ बोर्ड पर लग रहे तमाम पुराने आरोपों की जांच नहीं हो सकी, लेकिन ये जरूर पता चला है कि यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड के आधिकारिक रिकॉर्ड में 1,24,735 से अधिक संपत्तियां दर्ज हैं और डिजिटल सर्वे में खुलासा हुआ है कि वक्फ बोर्ड के दावे वाली लगभग 78% संपत्तियां राजस्व रिकॉर्ड में वक्फ के नाम दर्ज नहीं हैं। UMEED पोर्टल पर यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड की 29,747 संपत्तियों के आवेदन खारिज हो चुके हैं।
3: नई नई बातें लेकर आती है, कभी कहते हैं कि वक्फ की जांच कराएंगे, ये सब करेंगे, वक्फ का कानून लेकर आए तो बोले हम वक्फ को बचाने के लिए लाए हैं। जो इनके मिनिस्टर्स कहते थे कि हम वक्फ की जो उसमें गड़बड़ी है उसको बचाने के लिए लेकर आए, 9 साल से आपकी सरकार है, क्या किया, क्या हुआ? वो वसीम रिजवी था, क्या हुआ उसके साथ, कितनी जांच करा ली आपने?
4: तो क्या अब अयोध्या की तर्ज पर ही शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की भी जांच बिठाई जाएगी? क्या यूपी सरकार एक और SIT बनाने के मूड में है? नजरें अब यूपी सरकार पर हैं।
0: यूपी और देश में वक्फ की संपत्तियों के घोटालों के आरोप शुरू से लगते रहे हैं और उसे दूर करने के लिए ही सरकार ने वक्फ संशोधन कानून भी बनाया। उम्मीद लगाई जा रही है कि नए कानून के तहत बने वक्फ बोर्ड अब वक्फ संपत्तियों का उचित रखरखाव कर पाएंगे। बरेली से कृष्ण गोपाल राज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: जिस तरह अयोध्या मामले में वीएचपी अपील करती है कि किसी के पास चढ़ावा चोरी या घोटाले को लेकर कोई भी सबूत हो तो एसआईटी के पास उसे दे देना चाहिए, बिल्कुल उसी तर्ज पर अब समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि अगर किसी के पास वक्फी संपत्तियों से जुड़े हुए, घोटाले से जुड़े हुए कोई भी सबूत हो तो उसे सरकार को दे देना चाहिए और सरकार को उनकी जांच करा लेनी चाहिए।
6: दिल्ली के मौलवी हैं, वो कह रहे हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड में जिस तरीके की धांधली हुई है उसके सामने राम मंदिर का जो डोनेशन स्कैम हुआ है वो कुछ भी नहीं है।
7: देखिए, अब इस पूरे मुद्दे पे बहुत से लोग चाहते हैं इस मुद्दे को डाइवर्ट करना, कभी बाबा रामदेव बोल देते हैं, कभी कोई मौलाना और कोई बात बोल देता है, लेकिन समाजवादी पार्टी समझती है कि करोड़ों करोड़ों हिंदू धर्म के मानने वालों की आस्था का सवाल है और उस पूरे प्रकरण में अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है तो वहां पे जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और कहीं दूसरे स्थानों पे या दूसरे धर्म स्थल पे कहीं अगर कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से वहां सुधार होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन बयानबाजी नहीं। अगर कोई सबूत किसी के पास है, एविडेंस है तो सामने लाना चाहिए।
5: तो यूपी में वक्फ के अंदर अगर घोटाले हुए हैं तो बीजेपी के नेता से लेकर मुख्यमंत्री तक और मौलानाओं से लेकर मुस्लिम समाज के लोगों तक आरोप लगा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि इनकी जांच हो जानी चाहिए वरना आरोप सिर्फ सियासी माने जाएंगे। बीजेपी कह रहे हैं कि वक्फ कानून ही इसलिए बना है और सबूत मिले तो जांच भी जरूर होगी।
8: वक्फ के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पहले हुआ करता था। वक्फ की जमीनों को औने पौने दामों पर कब्ज हो जाते थे, किराए पे देते थे और उसके धन का दोहन होता था। वक्फ जिस भावना से किया जाता उस भावना का तिरस्कार होता था, लेकिन आज सरकार के प्रयासों के बाद हम वक्फ की संपत्तियों को रेगुलराइज करने का काम कर रहे हैं और वक्फ के संदर्भ में अगर किसी प्रकार की शिकायत आ रही है तो उस शिकायत का समाधान करने का भी काम कर रहे हैं। इस तरह की अनियमितताओं को रोका जाना बेहद आवश्यक है।
9: वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से और राम मंदिर की चोरी के ताल्लुक से जो मिसाल पेश की जा रही है ये किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है, इसलिए कि राम मंदिर हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था का उससे ताल्लुक है, इसलिए हमारा उस ताल्लुक से कोई बात करना या किसी भी चीज पर गुफ्तगू करना किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। वक्फ बोर्ड में जो मामलात हैं अगर उसमें खुर्द बुर्द ना हुई होती तो यकीनी तौर पर हुकूमत उस पर कानून क्यों बनाती। अब उस पर कानून बन चुका है, ऑलरेडी उसकी तमाम शिकायतें वहां पर पहुंची हुई हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि पिछले कुछ अरसे से और पिछले कुछ वक्त से वक्फ बोर्ड को आड़ बनाकर राम मंदिर की चोरी को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है और हैरत की बात तो यह है कि हमारे कुछ नाम निहाद उलमा इस ताल्लुक से अपने नजरियात का इजहार कर रहे हैं जबकि उनका कोई भी हक इस बात पर नहीं है कि वो राम मंदिर का ताल्लुक वक्फ बोर्ड से जोड़ें या वक्फ बोर्ड का ताल्लुक राम मंदिर से जोड़ें। दोनों चीजें अलग हैं और यकीनी तौर पर किसी भी एक चोरी को दूसरी चोरी से जस्टिफाई करना किसी भी सूरत में ईमानदारी नहीं हो सकती।
5: अब बात यूपी की चुनावी राजनीति की। यूपी में बीजेपी ने एसआईआर के बाद से हालात को लेकर नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। खबर है कि 19-22 जुलाई के बीच में यूपी में सभी विधानसभाओं में बूथ सम्मेलन बनाकर बीजेपी अगले चुनाव के लिए माइक्रो मैनेजमेंट शुरू करने जा रही है।
0: यूपी में चुनावी सरगर्मी यूं तो हर राजनीतिक दल के अंदर बढ़ रही है, लेकिन चुनाव की जमीनी तैयारी को लेकर बीजेपी सबसे गंभीरता और बारीकी से आगे बढ़ती नजर आ रही है। खासकर वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद जमीन पर जो हालात हैं उसे देखते हुए बीजेपी ने यूपी में बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। अब खबर है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 8 प्रमुख संगठनात्मक कार्यक्रमों का रोड मैप तैयार किया। जल्द ही कई जगह बूथों और मंडलों के पुनर्गठन होने वाले हैं। 19 से 22 जुलाई तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे जिसमें बूथों की मैपिंग कर संगठन को और मजबूत किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में बूथों की संख्या 80 से अधिक होगी वहां नए मंडलों का गठन होगा और जहां बीजेपी के वोट बैंक ज्यादा होंगे वहां नए बूथ भी बनेंगे। इसके बाद जल्द ही सेक्टर संयोजकों का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा।
10: दूसरा जो वोटर लिस्ट जो प्रकाशित हुआ वोटर लिस्ट को लेकर घर घर जाकर किसका भी नाम टूटा है
11: उस काम को हमारे विकास करें, और तीसरा जो हमारा था कि बूथ कमेटी को कैसे आउट कर सकता
0: है। दरअसल यूपी में जब से एसआईआर चल रहा था तभी से कांग्रेस और एसपी आरोप लगाती रही है कि बीजेपी सरकार के इशारे पर मुस्लिम, दलित और ओबीसी में यादव मतदाताओं के नामों को जानबूझकर बड़े पैमाने पर हटाया गया। हालांकि एसआईआर के बाद यूपी में 2,04,00,000 नाम कटे थे और 84,28,000 नए नाम जुड़े थे, जिससे राज्य का सियासी समीकरण पूरी तरह गर्मा गया। चुनावी लिहाज से बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन दोनों ही अपने अपने नफा नुकसान का गणित लगा रहे हैं, क्योंकि राज्य की करीब 150 से अधिक ऐसी सीटें हैं जहां पिछली जीतों का अंतर बहुत कम था। एसआईआर के दौरान ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से करीब 4 करोड़ पात्र मतदाता सूची में दर्ज होने से छूट रहे थे, जिसमें से 85% से 90% मतदाता बीजेपी के होने का दावा किया था। वैसे बीजेपी को एक तरफ तो लगता है कि 25,47,000 डुप्लीकेट नामों और अवैध वोटर्स को हटने से चुनाव में होने वाली फर्जी वोटिंग रुकेगी, जिसका सीधा राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिलेगा, लेकिन जिस तरह लखनऊ में करीब 30% यानी 12,00,000, गाजियाबाद में 28.83% यानी 8,18,000 वोट कटे, उससे बीजेपी को बड़ा डर भी है। बीजेपी की चुनावी रणनीति यही है कि एसआईआर के बाद जमीन पर जो बदलाव दिख रहे हैं उसके हिसाब से बूथवार तैयारी की जाए, क्योंकि यूपी में अंतिम मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या अब 13,39,00,000 हो गई है, जो पहले 15,44,00,000 थी। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: एक तरफ बीजेपी चुनावी मोर्चे पर अपना हर किला दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं, दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन में जुबानी कल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस की ओर से इमरान मसूद ने जिस तरह समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, उसे अब ओवैसी की पार्टी का साथ भी मिल चुका है। एक तरफ इमरान मसूद कहते हैं कि अखिलेश की पार्टी को मुस्लिम नेता बर्दाश्त नहीं है, दूसरी ओर ओवैसी की पार्टी कह रहे हैं कि अखिलेश के हिंदूवादी चेहरे का पर्दाफाश होने लगा है। ओवैसी फिर भी गठबंधन से बाहर है, लेकिन सबसे ज्यादा कलह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मची है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने अब इमरान मसूद के बयानों के हवाले से कांग्रेस पार्टी को जवाब देना शुरू कर दिया है।
7: सवाल गठबंधन का जब होता है तो गठबंधन धर्म दोनों दलों से निपटता है, और कांग्रेस और इंडिया जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है वो मजबूत है, लेकिन इमरान मसूद जैसे लोग इस गठबंधन को कमजोर करने का लगातार प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस राज्य के राष्ट्रीय नेतृत्व को देखना चाहिए। एक समस्या और है जो कांग्रेस के अंदर की, एक ये कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, दूसरी समस्या ये है कि इमरान प्रतापगढ़ी वो राज्यसभा भेज दिए गए, इमरान मसूद नहीं भेजे गए थे, तो अब कांग्रेस में यूपी में एक और झगड़ा बड़ा है कि कांग्रेस में बड़ा मुस्लिम चेहरा कौन, वो भी एक झगड़ा है। तो समाजवादी पार्टी समझती कि ये सारे झगड़े जितने बयान हैं, ऐसा लगता है कि अपने ही दल से नाराज हैं और भाजपा का दाना खाके वो लगातार बोलते हैं।
5: दरअसल समाजवादी पार्टी पर एक तरफ से हमले नहीं हो रहे हैं, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता जिस तरह सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर नजर आ रहे हैं, कभी शंकराचार्य के चरणों में बैठकर समाजवाद और सनातन की परिभाषा बता रहे हैं, कभी ब्राह्मण सम्मेलन करवा रहे हैं, ये ओवैसी की पार्टी को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। अब ओवैसी की पार्टी खुलेआम अखिलेश की सांसद निधि से कराए गए कामों को गिनाकर अखिलेश यादव को हिंदूवादी घोषित कर रहे हैं।
3: अखिलेश यादव जी के ने जो अपनी निधि का जो इस्तेमाल किया है वो ऐसा लग रहा है कि एक सांसद की सांसद निधि का उपयोग नहीं बल्कि किसी धार्मिक ट्रस्ट का वर्क ऑर्डर है। सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह सोलर लाइट लगाया गया मंदिर में, ऐसा लग रहा है कि वहां कोई मस्जिद ही नहीं है, कोई दूसरा धर्मस्थल भी नहीं है, और ये बात करते हैं कि हम तो समाजवाद और सेकुलरिज्म के चैंपियन हैं, हम तो संविधान बचाने निकले हैं। ये बताता कि अखिलेश यादव जी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर निकल चुके हैं। जो अखिलेश यादव राम मंदिर के विषय में 28 दिन में 29 ट्वीट करते हैं, 14 प्रेस वार्ता करते हैं, मस्जिद मदरसा खानकाह पर टारगेट किया गया, एक ट्वीट एक आंदोलन इनके विधायक और इनके द्वारा नहीं किया गया, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, कारोबार पे हमले हुए और तमाम इशूज, वक्फ का इशूज आया, कभी भी ये मुसलमानों के विषय पे बात नहीं करते, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर मुसलमानों को पॉलिटिकली अनटचेबल बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं।
7: देखिए, समाजवादी पार्टी तो सबको साथ लेके चलने का काम करती है, गिरजाघर, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, कहीं से भी अगर कोई प्रार्थना पत्र आता है कि वहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है, सड़क की ज़रूरत है, नाली बननी है, तो वो काम समाजवादी पार्टी करती है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी के लोकसभा क्षेत्र में जो समस्याएं थी, जो प्रार्थना पत्र आए थे, उनको लेके आगे कार्रवाई की गई, लाइट लगाई गई।
5: और बुलेटिन में रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
14: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
15: Wells Fargo Bank N.A. Member FDIC.
12: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, Complete Oral Health Ka Sach.
16: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: I'm a very independent person jise akele ghumna bahut pasand hai. Like, I don't need anyone's company. I love to just hang out by myself. Fun fact, I've never had any job in my life. Maine sirf content creation hi kiya hai aaj tak. Mera content creation journey start kiya when I was 16. So just fresh out of school.
4: To jab aapne ye baat apne family mein rakhi hogi, family ke samne rakhi hogi, to unka kya reaction tha? Kya matlab YouTuber banna hai?
3: So for them to even think ki main post graduation nahi karne wali hu was like mind blowing to them.
5: Most embarrassing influencer moment. A beauty hack that actually works.
6: भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता की भी भूमिका वरिष्ठ नेतृत्व तय करता है और इसलिए कई बार लोगों को खबर नहीं रहती है, लेकिन वरिष्ठ नेतृत्व सोचता है कार्यकर्ता जब अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक प्रकार से करता रहता है सामान्य कार्यकर्ता के नाते, तो उस कार्यकर्ता की भूमिका बदलनी है नेतृत्व तय करता है। आम जन को लगता है कि ये कोई नया निर्णय है, नेतृत्व पर्याप्त विचार करके निर्णय करता है।
7: वो हाई प्रोफाइल व्यक्ति थे और वो आगे भी मुख्यमंत्री की दौड़ में आ सकते थे, इसलिए हाई प्रोफाइल लोगों को ऊपर के नेता ज्यादा पसंद नहीं करते। कोई आदमी भोला वाला सा दिखे, मूर्ख सा दिखे, हाथ जोड़ता रहे, पांव छूता रहे, तो लगता है ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसको चलने दो।
8: और अगर तिवारी के बाद
7: आदमी है तो उसको काटो।
8: आप आशुतोष तिवारी के बारे में कह रहे हैं? ये
7: नहीं, कोई भी हो, ये नरोत्तम मिश्रा जी के लिए भी है, आशुतोष तिवारी जी के लिए भी है, वो भी हाई प्रोफाइल है। उनके पांव जमीन पे ही नहीं, जनता यहाँ जानती नहीं है उनको। दतिया जिले के मूल निवासी हैं, लेकिन दतिया में उनने कार्य किया ही नहीं, ऊपर बहुत काम किया आरएसएस में, इधर उधर, ऊपर उनको बहुत बड़ा नेता माना जाता है।
9: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: ईरान से जंग में पूरी ताकत से उतरा अमेरिका, लगातार तीसरे दिन एयर स्ट्राइक। कुवैत बहरेन में ईरानी ड्रोन का खौफ, ट्रंप बोले 2-3 हफ्ते चलेगी जंग। होर्मुज में लेंगे 20% टैक्स। होर्मुज हमले में हुई भारतीय नाविक की मौत के बाद ईरान के राजदूत तलब। यूएई के 2 ऑयल टैंकर्स पर क्रूज मिसाइल अटैक में गई जान, 8 घायल। दिल्ली के अंकित हत्याकांड में आप नेता ताहिर हुसैन दोषी करार, दिए जाते ही बीजेपी का हल्ला बोल, कहा ताहिर केजरीवाल का दाहिना हाथ, वो सिर्फ एक्टर, कोई और है डायरेक्टर। गाजियाबाद में पिंक बूथ के पास तड़प तड़प कर गई घायल शख्स की जान, लहूलुहान होने के बाद भी खड़ी देखती रही पुलिस। वर्दी वालों की संवेदनशीलता पर उठे सवाल। चुनाव से पहले पंजाब में आपसी लड़ाई सुलझाने में जुटी कांग्रेस, खड़गे के घर बैठक में राहुल गांधी और वेणुगोपाल मौजूद, भूपेश बघेल के फीडबैक और चन्नी के तल तेवर पर चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। शुरुआत करें नॉनस्टॉप 100 के साथ,
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
0: राम मंदिर रावल वास्तु ट्रस्ट में मंथन, सूत्रों के अनुसार श्रद्धालुओं की भेंट लौटाने के विकल्प पर विचार, कई श्रद्धालुओं ने ट्रस्ट के सामने उठाए सवाल। सूत्रों का कहना है कि श्रद्धालुओं ने भेंट की वस्तुओं की रसीद नहीं मिलने का आरोप लगाया, भेंट की वस्तुएं सुरक्षित न रखने का आरोप। सूत्रों के अनुसार भेंट प्रबंधन को लेकर ट्रस्ट स्तर पर मंथन जारी, शिकायतों के बाद विकल्पों पर कर रहे हैं विचार ट्रस्टी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट हुई अपडेट, चंपत राय डॉक्टर अनिल मिश्रा का विवरण हटाया गया, इस्तीफा मंजूर होने के बाद वेबसाइट से हटे नाम। वेबसाइट पर अब 12 पदाधिकारियों और सदस्यों का विवरण, महंत नित्य गोपाल दास अध्यक्ष के रूप में दर्ज, कृष्णमोहन अंतरिम महासचिव। राम मंदिर दान गबन मामले में एसआईटी जल्द सौंपेगी अंतिम रिपोर्ट, दान गबन मामले में जिम्मेदारी तय करेगी एसआईटी। दान प्रबंधन व्यवस्था में सुधार की सिफारिश कर सकती है एसआईटी, वित्तीय रिकॉर्ड और बैंक लेनदेन की जांच कर रही है एसआईटी। सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच जारी, गवाहों और आरोपियों के बयान की जांच का हिस्सा। दान प्रबंधन की हर प्रक्रिया की जांच कर रही है एसआईटी, निगरानी और प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय करेगी एसआईटी। दान प्रबंधन में एसओपी के पालन की जांच कर रही है एसआईटी, आंतरिक निगरानी में चूक की कर रही है जांच। 2020 दिल्ली दंगे मामले के दौरान आईबी अफसर की हत्या के मामले में कल कोर्ट के फैसले के बाद सियासी घमासान, बीजेपी ने जमकर आप और केजरीवाल पर बोला हमला। दिल्ली सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ताहिर हुसैन को एक्टर बताते हुए कहा कि कानून के हाथ डायरेक्टर्स तक भी पहुंचेंगे। कपिल मिश्रा ने दावा किया कि दिल्ली दंगों के दौरान सड़कें बंद करने वालों को केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का समर्थन मिला है। पहलगाम आतंकी हमले में बड़ा एक्शन, लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, मुकदमे का चाल शुरू। एनआईए ने उसके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट तैयार करके आरोपी बनाया, पहलगाम हमले में मास्टरमाइंड बताया। संभल जामा मस्जिद मामले में मस्जिद प्रबंधन समिति को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टली। चढ़ावा चोरी जांच रिपोर्ट की चर्चा के बीच सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर, जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को प्राधिकार बनाकर आरटीआई के दायरे में लाने की मांग। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बीजेपी ने कसी कमर, बीजेपी ने तैयार किया 8 संगठनात्मक कार्यक्रमों का रोडमैप। यूपी में बीजेपी 19 से 22 जुलाई तक हर विधानसभा में बूथ सम्मेलन करेगी आयोजित, बूथ मैपिंग और पुराने कार्यकर्ताओं के संपर्क अभियान में शामिल। 80 से अधिक बूथ वाले क्षेत्रों में बनेंगे नए मंडल, बदले मतदाता आंकड़ों के आधार पर होगा पुनर्समायोजन, पूरा कार्यकर्ताओं से संपर्क अभियान तेज करेगी बीजेपी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2028-29 के स्थायी सदस्य पद के लिए अपना अभियान शुरू किया, बोले हमारा शांति विजन ही दुनिया को संकट से बचाएगा। कैंपेन की शुरुआत करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने स्पष्ट संदेश दिया, भारत दुनिया को अधिक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और न्याय संगत माहौल के निर्माण के लिए काम करेगी। 2028-29 कार्यकाल की यूएनएससी के चुनाव जून 2027 में होंगे। एशिया प्रांत समूह की 1/5 सीट के लिए भारत और तजाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर आई एक रिपोर्ट को भारत और अमेरिका दोनों ने फर्जी बताया, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत ने किसी भी ट्रेड प्रस्ताव को नहीं ठुकराया है। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने फेक न्यूज पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा हमारी बातचीत लगातार जारी है, ट्रेड डील को जल्द पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ईरान के दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास से तनाव बढ़ने की खबरें आई सामने, तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक शहर में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय। पूर्वी बंदर अब्बास विस्फोट, विस्फोटकों के कारण नुकसान या हताहतों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हॉर्मुज में यूएई के तेल टैंकर्स पर ईरान का हमला, एक भारतीय नाविक की मौत, 8 अन्य घायल। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने भी किया पलटवार, ईरान ने एक बार फिर कुवैत पर किया हमला। ईरान के सरकारी टीवी ने दावा किया कि कुवैत में बैकी ठिकानों को ड्रोन हमले किए गए। हॉर्मुज में अमेरिकी जहाजों को क्रूज मिसाइल से किया गया हमला। ईरान पर ताजा अमेरिकी हमलों से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा ईरान पर जोरदार हमला करने वाले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स लगेगा। ट्रंप ने जहाजों पर टैक्स लगाने पर कहा अमेरिका इस रणनीतिक समुद्री मार्ग की सुरक्षा करेगा, इससे सुरक्षा होने वाला खर्च जहाजों से वसूला जाएगा। ट्रंप ने कहा अमेरिका अब गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट की भूमिका निभाएगा, यह टैक्स सभी कार्गो जहाजों पर लागू होगा। अमेरिका ने कहा आज से ईरानी फौज की नाकेबंदी शुरू करेंगे, यूएस नेवी ने दी जानकारी। ट्रंप ने सभी न्यूट्रल जहाजों को चेतावनी दी है नाकेबंदी लागू होने से पहले वो इस क्षेत्र से बाहर निकल आए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दुनिया में हमारी सेना सबसे मजबूत, हमें कोई नहीं दबा पाया बल्कि हम उन पर दबाव डाल रहे हैं। आईजीसी ने कहा हॉर्मुज में दखल देकर अमेरिका ने दुनिया भर में तेल गैस सप्लाई को खतरे में डाला। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची ने कहा ईरान हमेशा से

संभावित बाढ़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर। नेपाल के तराई और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण पश्चिम चंपारण में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा। वाल्मीकि नगर बैराज से 1,70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बघा में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, लेकिन प्रशासन ने गंडक नदी में तटवर्ती और बाढ़ संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की लोगों से अपील की। अरुणाचल प्रदेश में नदी के पानी छोड़े जाने से असम के धेमाजी और लखीमपुर जिलों में बाढ़ जैसे हालात। गाजियाबाद में मदरसा के बीच युवक की मौत, पिंक बूथ की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल।

युवक द्वारा मदद के लिए दरवाजे खटखटाने के दौरान शीशे से अटकटा, जिसके बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने लगाया 40 मिनट तक मदद न मिलने का आरोप। दिल्ली में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, पीतमपुरा शालीमार मार्ग पर बड़ी सरकारी कार्रवाई, जमीन पर बड़े अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। अवैध रूप से बनी बाजार पर बुलडोजर कार्रवाई, निर्माण पर दिल्ली सरकार की सख्त कार्रवाई। दिल्ली के सेशन जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, जज सिंगल को किया गया निलंबित। बीकानेर में गैंगस्टर रोहित गुडारा का पैतृक घर अज्ञात लोगों ने गिराया, देर रात को बुलडोजर एक्शन। पुलिस से प्रशासनिक कार्रवाई से किया इनकार, फरार गैंगस्टर रोहित गुडारा के पिता और परिजन नहीं थे घर पर। सतना में नवजात को एक्सपायर दवा चुराने का आरोप, पर्ची में मेल की जगह फीमेल लिखा, मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने हाईवे जाम किया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गैलेक्सी वेगा सोसाइटी में एक टावर से लिफ्ट अटकी, चार बच्चों ने घबराकर पढ़ी हनुमान चालीसा, वीडियो वायरल। बिहार के बेगूसराय में पुलिस की दबंग गई, भूमि विवाद कार्रवाई के दौरान एक महिला के साथ दुर्व्यवहार, वीडियो वायरल। नासमिक टूरिस्ट स्पॉट पर परिवार पर जानलेवा हमला, भावली वाटरफॉल घूमने गए परिवार पर हमला, युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर हमला। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कार से पहले स्कूटी सवार को मारी टक्कर, फिर अनियंत्रित होकर स्कूल बस में घुसी, एक की मौत। राजस्थान के बाढ़ में तेज रफ्तार डंपर आगे से चल रही कार में जा घुसा, पांच युवकों की मौत, तीन घायल। बांदा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, चित्रकूट जा रहे दो श्रद्धालुओं की मौत। भोपाल में दिन दहाड़े दुकान के बाहर बैठे कपड़ा कारोबारी पर चाकू से हमला, अचानक पीछे से आए दो बदमाशों ने कई बार चाकुओं से किया वार। गुजरात के अंबाजी मंदिर में दान चोरी का पुराना सीसीटीवी वीडियो वायरल, 500 के नोटों का एक बंडल पैर के नीचे दबाता नजर आया कर्मचारी। अकोला में नाले खुदाई के दौरान मिला पुराना हैंड ग्रेनेड, बम निरोधक दस्ते ने अपने कब्जे में लिया। इंदौर में मामली का आसूनी में कार और स्कूटी सवार की टक्कर, विवाद खड़ा, सड़क खड़े शख्स को हटने के लिए कहा तो युवक ने कार पर चढ़कर फोड़ा शीशा। जामनगर में हाईवे पर महिला को कार ने मारी जोरदार टक्कर, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के बांदा में नाले में डूबने से दो बहनों की दर्दनाक मौत, खेलते समय गड्ढे में डूबी बच्चियां। इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैच सीरीज का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम के बैस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा, दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मैच। इस मुकाबले में रोहित शर्मा, विराट कोहली भी वनडे टीम की वापसी करेंगे, जसप्रीत बुमराह 968 दिन बाद वनडे क्रिकेट में वापसी करेंगे। भारत की गेंदबाजी कमान जसप्रीत बुमराह संभालेंगे, मोहम्मद सिराज टीम में नहीं, ऑलराउंडर की भूमिका के लिए शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर के बीच मुकाबला। भारतीय टीम का वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड, बेंगलुरु ने अंग्रेजों के खिलाफ पिछले 5 वनडे मुकाबले जीते हैं। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मैच से पहले कहा कि विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप की योजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 7 साल बाद फिर बड़े पर्दे पर गोविंदा की एंट्री, फिल्म रूपा और दुनियादारी में आएंगे नजर, मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए। ऑपरेशन सफेद सागर का टीजर लॉन्च, करगिल युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स के मुश्किल ऑपरेशन को दिखाएगी सीरीज। वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय का ट्रेलर लॉन्च, अभिमन्यु सिंह और अर्चना पूरन सिंह, नवीन कसूरिया इस फिल्म में नजर आएंगे। इम्तियाज अली की बेटी इदा ने बॉयफ्रेंड के साथ की सगाई, इदा ने इंस्टाग्राम पर सगाई की तस्वीरें शेयर की। परिवार के साथ लंदन वेकेशन पर दिखी प्रियंका चोपड़ा, बेटी मालती ने निकाले मां बाप के बाल के क्लिप।

0: करने के साक्ष्य मौजूद हैं। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने फिर से नमाज शुरू करने का विरोध किया है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, अभी सुनवाई चली रही है, अब तक क्या कुछ हुआ है?
1: क्या सुनवाई चल रही है? और उसने ये इस मामले में बाद सुनवाई की तारीख तय होगी और जिसमें फाइनल हियरिंग के लिए सभी पक्षकारों को सुना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि इसमें चूंकि ये मामला बहुत संवेदनशील है, इसमें बहुत सोच समझ कर टिप्पणी करने की जरूरत है। अदालत में कोई ऐसी बातें ना हो जिससे गलत इंप्रेशन पड़े और गलत संदेश लोगों में जाए। कोर्ट ने बोला कि वो चाहते हैं कि 15-20 दिन के बाद एक सुचारू रूप से एक तारीख तय की जाए जिस तारीख पर सभी पक्षकार एक दिन के अंदर पूरी सुनवाई खत्म कर ली जाए और सभी पक्षकार अपने अपने दलीलें रखें और उसके बाद अदालत उस पर फैसला करे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 2-3 महीने बाद जब काफी इजी हो जाए मामला तो उस समय समय निकालकर, चूंकि इस बीच में बहुत सारे पर्व त्योहार हैं और ये सारी चीजें आ रही हैं, तो इसके बाद फिर एक तारीख तय कर ली जाए और तब उसमें सुनवाई हो। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि फिर से नमाज वहां शुरू करने का की जो ये याचिका है वो बिल्कुल उचित नहीं है और अब इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि कोर्ट का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है जिसमें उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बाकी अन्य साक्ष्यों के हवाले से अपना निर्णय दिया है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात दिल्ली दंगों की, जिसके मामले में आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने के बाद दिल्ली का सियासी पारा चढ़ चुका है। बीजेपी ने आज ताहिर के बहाने अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए उन पर आरोपों की बौछार कर दी है। आरोप यह है कि जब दिल्ली दंगा हुआ तब ताहिर हुसैन अरविंद केजरीवाल के दाएं हाथ थे। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि ताहिर हुसैन के अलावा अगर दिल्ली दंगे का कोई आरोपी है तो वो है अरविंद केजरीवाल।
2: इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, ये ताहिर हुसैन की तस्वीर जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित। अरविंद केजरीवाल का खासम खास और नफरत करने वाला कानून से और हिंदुओं से। जब अंकित शर्मा अपने कर्तव्य का पालन करके भीड़ के सामने आता है तो ताहिर हुसैन वो गुंडा है जो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ था, जिसने भड़काऊ बयान दिए और जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया।
0: वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी आप पार्टी पर हमला बोला है। कपिल मिश्रा ने सवाल किया कि ताहिर हुसैन तो दिल्ली दंगे का एक्टर है लेकिन डायरेक्टर कौन है? उधर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि ताहिर दंगा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे।
3: ताहिर हुसैन इस हत्या में शामिल है, ये कल न्यायालय ने साबित किया है, दोषी करार दिया है ताहिर हुसैन को। हमारा ये मानना है कि इस मामले में ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मर्डर है और ताहिर हुसैन के द्वारा और उसके साथियों के द्वारा और उनके मास्टरमाइंड्स के द्वारा दिल्ली में एक भयानक साजिश रची गई थी। हम ये भी मानते हैं कि ताहिर हुसैन केवल एक्टर है, इस पूरे घटनाक्रम का डायरेक्टर कोई और लोग हैं, मास्टरमाइंड कोई और लोग हैं। ताहिर हुसैन के हाथों में खंजर दिया गया लेकिन देने वाले, चलवाने वाले, इसका नैरेटिव बनाने वाले लोग अभी भी बचे हुए हैं। उमर खालिद जैसे लोग जिनको बचाने के लिए आज भी नैरेटिव बनाया जा रहा है। ताहिर हुसैन लगातार उनके संपर्क में था,
4: इनके लिए एविडेंस सारे इकट्ठे हो गए जबकि वो ताहिर पुलिस वालों के साथ घूम रहा था दंगा कंट्रोल कराने के लिए और कपिल कहाँ घूम रहा था दंगा कराने के लिए, कपिल बाहर है और ताहिर अंदर है, बस यही तो फर्क हो रहा है।
5: तो कोर्ट का फैसला है।
4: हाँ तो क्या, कोर्ट के अंदर एविडेंस जो आप देंगे वही तो आएगा ना, कोर्ट अपनी तरफ से क्या करेगा? कोर्ट में आपने जो एविडेंस दिए होंगे उन्हीं को देखा होगा कोर्ट ने और अभी तो कोर्ट के ऊपर कोर्ट है तो तब देखेंगे।
0: बीजेपी के इस हमले के बीच आप विधायक अमानतुल्ला खान ने कहा कि सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाएगी।
6: कोर्ट का फैसला है उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा क्या नहीं रहा, ये सबको मालूम।
0: और अब बात अरुणाचल प्रदेश करेंगे, जहां पर सैलाबी संकट गहराता जा रहा है। यहां पर प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले के पारसी पार्लों में मूसलाधार बारिश हो रही है, पूरा इलाका जलमग्न है।
5: डूबे हुए घर द्वार, डूबे हुए बाग बगीचे, डूबी हुई सड़कें, चारों तरफ पानी ही पानी, लगातार बारिश। ये तस्वीरें किसी झील या नदी की नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश की पारसी पार्लो कस्बे की हैं, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पानी की लहरें समंदर की तरह हिलोरे मार रही हैं। ये गोदाम लहरों की मार से नष्ट हो चुका है। अब ये तस्वीरें देखिए, किस तरह मलबे को पानी बहाए ले जा रहा है। लगातार कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी है। लोगों के आशियाने, सरकारी दफ्तर, स्कूल, बंगले, सब जगह बाढ़ का पानी भर चुका है। कई घर आधे से ज्यादा पानी में डूबे हुए हैं, तो कहीं बाग बगीचे पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। जो सड़कें कभी लोगों की आवाजाही का जरिया थी, आज वे भी पानी के नीचे गायब हो चुकी हैं। दूर दूर तक सिर्फ पानी का अथाह फैलाव नजर आता है। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित हो गई है। हालात इसलिए और गंभीर हैं क्योंकि कुमे नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का पानी किनारों को तोड़ते हुए पूरे कस्बे में फैल गया है, जिससे बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार बारिश से सिर्फ बाढ़ ही नहीं आई है बल्कि कई जगह भूस्खलन और मिट्टी की कटाव की घटनाएं भी सामने आई हैं। इसकी वजह से सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा, कई घाटी पुल तेज बहाव में बह गए, जिससे पारसी पार्लों का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया। भारत चीन सीमा के करीब बसे इस दूर दराज इलाके तक पहुँचना अब बेहद मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं, सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन लगातार जारी बारिश और बढ़ते जलस्तर ने लोगों की चिंता और मुश्किलें दोनों बढ़ा दी हैं। जब तक बारिश नहीं थमती और नदी का जलस्तर कम नहीं होता, तब तक इस सीमा क्षेत्र में हालात सामान्य होने की उम्मीद बेहद कम नजर आती है। युवराज मेहता, पारसी पार्लो, अरुणाचल प्रदेश, आज तक।
0: अब आपको एक तस्वीर उत्तराखंड की दिखाते हैं। यहां पर मॉनसून अब सिर्फ बरसाती आफत नहीं है बल्कि जिंदगी और मौत के बीच जंग में तब्दील हो गया है, जिसकी तस्दीक करती ये खौफनाक तस्वीरें हैं। खेड़ा नखारी गांव की हैं, जहां लंबे समय से पुल की मांग पूरी ना होने से ग्रामीणों ने उफनते बरसाती नाले के बीच एक विशाल पेड़ को जलधारा के ऊपर डालकर उसे ही वैकल्पिक पुल का रूप दे दिया। हैरानी की बात यह है कि रोजमर्रा की आवाजाही के लिए बनाए गए इस खतरनाक पुल का निर्माण कार्य कर रहे ग्रामीणों द्वारा मजबूरन हादसे को न्योता देते हुए खुद चलकर पुल की मजबूती परखते नजर आया। गांव में हर साल बरसात में बरसाती नदी उफान पर होती है, नतीजन गांव का संपर्क मुख्यालय से कट जाता है। दौरान सबसे ज्यादा मुश्किल मरीजों, बुजुर्गों को आती है, जबकि कई बार किसानों की फसल समय पर मंडी नहीं पहुंचने से उन्हें भारी नुकसान होता है। ये तस्वीर देखिए, अस्थाई पुल बनाया है पेड़ की शाख काटकर, और ऐसा ही हर साल ये ग्रामीण करने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्थाई पुल नहीं है। ऐसे में उन्हें अपना सहारा खुद बनना पड़ता है। और एक तस्वीर चीन के हेबेई प्रांत में चेगड़े में, जहां पर बाढ़ का पानी कारों को बहा ले गया। टाइफून बावी से आए बाढ़ में चीन ने तबाही मचाई है और ये इस साल की चीन की मुख्य भूमि से टकराने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान माना जा रहा था, जिससे पूर्वी तट पर भारी बारिश की, घनी आबादी वाले शहरों में तेज हवाएं चलाईं, खराब मौसम से निपटने की देश की क्षमता की परीक्षा हुई। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि तूफान से जिलिन, लियाओनिंग, हेबेई, शेडोंग, जियांगसू और अनहुई प्रांतों में मूसलाधार बारिश होगी, जिससे उन इलाकों में बाढ़ का खतरा और बढ़ जाएगा जहां पहले ही बारिश हो चुकी थी। ताज के पत्तों की तरह बहती ये कारें आप देखिए, कैसे तेज बहाव के कारण ये प्राकृतिक आपदा है जिसके आगे बेबस मानव इस वक्त दिखाई दे रहा है। चीन हो, जापान हो, या फिर कोई भी शक्तिशाली देश हो, प्राकृतिक आपदा के आगे सभी घुटने टेक देते हैं। वक्त इशू से ब्रेक का हौसला, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

ईरान से जंग में पूरी ताकत से उतरा अमेरिका, लगातार तीसरे दिन एयर स्ट्राइक, कुवैत बहरेन में दिखी अमेरिकी ड्रोन का खौफ। ट्रंप बोले 2-3 हफ्ते चलेगी जंग, होमोज मिलेंगे 20% टैक्स। होमोज हमले में हुई भारतीय नाविक की मौत के बाद ईरान के राजदूत तलब, यूएई के 2 ऑयल टैंकर्स पर क्रूज मिसाइल अटैक में गई जान, 8 घायल। दिल्ली के अंकित हत्याकांड में आप नेता ताहिर हुसैन को दोषी करार दिए जाते ही बीजेपी का हल्ला बोल, कहा ताहिर केजरीवाल का दाहिना हाथ, वो सिर्फ एक्टर, कोई और है डायरेक्टर। गाजियाबाद में पिंक बूथ के पास सड़क पड़क कर गई खाल शख्स की जान, लहूलुहान होने के बावजूद खड़ी देखती रही पुलिस, वर्दी वालों की संवेदनशीलता पर उठे सवाल। चुनाव से पहले पंजाब में आपसी लड़ाई, सुलझाने में जुटी कांग्रेस, खड़गे के घर बैठक में राहुल गांधी, वेणुगोपाल मौजूद, भूपेश बघेल के फीडबैक और चन्नी के तल तेवर की चर्चा।

नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं नेहा बात। ईरान पर अमेरिकी हमले का एक नया दौर शुरू हो चुका है। अब ये लड़ाई हॉर्मुज में तेज हो गई है। वहां अमेरिका ने पहली बार एक ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल किया जो अब तक इस लड़ाई का हिस्सा ही नहीं था। आपको उस अमेरिकी हथियार की और उससे हुई तबाही की तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे ईरान के एटॉमिक सेंटर को लेकर ट्रंप का नया प्लान क्या है। और बात मुश्तबा खामने की करेंगे जिन्हें लेकर सस्पेंस गहरा गया है। अमेरिका का मिशन बेहद स्पष्ट है। वो हर हाल में ईरान को तबाह करना चाहता है, उसकी सैन्य क्षमता को पूरी तरह ध्वस्त करना चाहता है, इसके परमाणु केंद्रों को मटिया मेट करना चाहता है। और इसी संकल्प के साथ ट्रंप लगातार अपने ऑर्डर भी दे रहे हैं और ईरान पर अमेरिकी सेना टारगेट सेट कर रहे हैं। उसके लिए युद्ध विराम के बाद शांति की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब तीसरी लहर में अमेरिकी फौज ने 3 बार ईरान पर एक बड़े हमले किए हैं। और अब सामने आ रहा है कि अमेरिका ईरान के नए निर्माणाधीन परमाणु केंद्र को तबाह करने जा रहा है।

0: ईरान के सेफ जोन पर अमेरिकी टारगेट, जहां ईरान का यूरेनियम भंडार, उस ओर तैनात हथियार। ट्रंप ने चेताया, अब पिकेक्स माउंटेन होगा तबाह। अमेरिकी फौज की तैयारी, ईरान के सामरिक केंद्र पर होगा बड़ा हमला। जब तक ईरान अपने मिशन एटम पर अडिग है, तब तक अमेरिका के मिसाइल और लड़ाकू विमान गरजते रहेंगे, बम बरसते रहेंगे। 28 फरवरी को शुरू हुई लड़ाई का अहम मुद्दा था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। तब से अब तक अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह तबाह करने की मुहिम में जुटा हुआ है, और अब उसका अगला मोर्चा बनने जा रहा है पिकेक्स माउंटेन। ट्रंप ने कह दिया है कि अमेरिका ईरान में पिकेक्स माउंटेन को नष्ट कर देगा। दरअसल पिकेक्स माउंटेन अचानक ट्रंप के लिए इतना अहम क्यों हो गया? हॉर्मुज, चल डमरू मध्य, बंदर अब्बास, खारदीप और किशमदीप जैसे अहम सामरिक आर्थिक ठिकानों पर हमले के बीच अमेरिका को पिकेक्स माउंटेन के बारे में ऐसा क्या पता चल गया जो ट्रंप ने मिसाइलों का मुंह उस माउंटेन की तरफ मोड़ने की धमकी दे डाली? आखिर वो पिकेक्स माउंटेन इतना अहम क्यों है? तो जान लीजिए उस पिकेक्स माउंटेन के बारे में। खबर है कि ये ईरान का बेहद गुप्त और भूमिगत एटॉमिक फैसिलिटी है। नतांज परमाणु केंद्र से महज 1.5 किलोमीटर दूर है। शक है कि ईरान यहाँ यूरेनियम संवर्धन या सेंट्रीफ्यूज का निर्माण भी करता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान के वैज्ञानिक 24 घंटे अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाने में जुटे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कह दिया कि अमेरिका ईरान में पिकेक्स माउंटेन को नष्ट कर देगा। ट्रंप ने साफ शब्दों में ईरान को बता दिया है कि अमेरिका अब पिकेक्स माउंटेन को नष्ट करने जा रहा है। ईरानी तैयार रहें।
1: ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध एक बार फिर गहराता जा रहा है, और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पिकेक्स माउंटेन की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि वो पिकेक्स माउंटेन को निशाना बनाएंगे। पिकेक्स माउंटेन, जो ईरान का सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर बंकर माना जाता है, ये माउंटेन ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी नतांज के नजदीक है। ग्रेनाइट से बना हुआ ये पहाड़ और इसके अंदर का बंकर इतना सुरक्षित और गहराई में है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मिसाइलें भी इसे आसानी से तबाह नहीं कर सकती।
0: पिकेक्स माउंटेन को लेकर अमेरिका की चिंता बढ़ी हुई है, इसकी ठोस वजह भी है। वैसे तो आधिकारिक तौर पर इस ठिकाने पर यूरेनियम संवर्धन को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट को भरोसा है कि इसका इस्तेमाल यूरेनियम संवर्धन या उसके भंडारण के लिए किया जाता है। जून 2025 की ये तस्वीरें आपको याद होंगी, तब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला बोला था। खबर है कि उसी के बाद ईरान पिकेक्स माउंटेन को डेवलप कर रहा है। आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि ईरान ने अपने यूरेनियम भंडार का कुछ हिस्सा शायद पहले ही पिकेक्स माउंटेन सेंटर पर छिपा दिया हो। जानकारी के मुताबिक पिकेक्स माउंटेन पुराने परमाणु केंद्रों की तुलना में बहुत ज्यादा सुरक्षित और गहरा है। ईरान के दुश्मनों के लिए इस केंद्र को पारंपरिक हथियारों से तबाह करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होगा। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बंकर बस्टर बम भी बेदम हो जाएगा, क्योंकि पिकेक्स माउंटेन का अंदरूनी हिस्सा ग्रेनाइट चट्टानों के नीचे करीब 2000 फीट ज्यादा गहराई में स्थित है। तो क्या अमेरिका पिकेक्स माउंटेन के लिए अपने ऑपरेशन में जमीनी सेना का इस्तेमाल करेगा?
2: जो वो नाम देते हैं, और वो कोहे कोलंग का नाम लेते, को का मतलब है वो बर्फ की बात करते हैं जो उनकी भाषा में है। अभी ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो फिजाइल मटेरियल है, जो इनरिच्ड यूरेनियम है, उनका सुनने में आया है, अभी सच्चाई तो किसी को मालूम नहीं है। ये तो सिर्फ सब लोग अपना असेसमेंट कर रहे हैं, अमेरिका भी अपना असेसमेंट कर रहा है कि वो जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो इस पिकेक्स माउंटेन के नीचे रखा गया है तकरीबन 2000 फुट पर, और ये माउंटेन ग्रेनाइट का है। तो जो कोई भी हथियार जो अमेरिका के पास है वो उस डेप्थ तक नहीं जा सकता है, राइट? तो इसलिए अभी अमेरिका चाहता है कि जाके अगर वो उस डेप्थ पर ना जाए तो कम से कम उसको किसी तरह से न्यूट्रलाइज कर दे। अभी वो जो उसके रास्ते हैं वो बंद कर दे या कुछ और है।
0: ट्रंप का ताजा बयान संकेत देता है कि अमेरिका का अगला टारगेट पिकेक्स माउंटेन है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल पिकेक्स माउंटेन में कोई गतिविधि नहीं दिख रही। ट्रंप के शब्दों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम ठीक से नहीं चल रहा। ट्रंप की धमकी से साफ है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका नई और बड़ी चोट करने की तैयारी कर चुका है, और ऐसी सूरत में युद्ध के लंबा खिंचने की पूरी आशंका है। आज तक ब्यूरो।
3: और इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है ओमान के पास, एक बार फिर जहाज को निशाना बनाया गया है। ब्रिटेन की यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन से बताया कि 13 जुलाई को ओमान के लीमा से तकरीबन 13 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में एक तेल टैंकर पर मिसाइली हमला किया गया। यूके एमटीओ के मुताबिक घटना की जानकारी सैन्य अधिकारियों के जरिए मिली है और मामले की जांच जारी है। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ये जो जहाज पर ताजा तरीन हमला हुआ है, किस बात के संकेत दे रहा है अशरफ?
4: नहीं, दरअसल ये तो हम पिछले 3 दिन से लगातार 4 दिन से देख रहे हैं कि जहां एक तरफ अमेरिका की तरफ से तीसरा दिन आज था हमलों का, कई सारे पोर्ट सिटीज पे जहां जिनमें बंदर अब्बास, बुशेर और खाक द्वीप के साथ साथ जो है बाकी जो नेवी है ईरान की, उन पर हमले किए जा रहे हैं। 170 ठिकानों पर हमले का दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान बिल्कुल जो चाहता है कि स्टेट ऑफ हार्मूज पर उनकी उसकी पकड़ रहे। 2 दिन पहले उन्होंने स्टेट ऑफ हार्मूज को बंद करने की घोषणा की। उस बीच ईरान और आईआरजीसी का कहना है कि जो जहाज ईरान के आदेश और आईआरजीसी के आदेश को न मानते हुए स्टेट ऑफ हार्मूज को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। हमने देखा कि बीती रात जो है 2 इमाराती वेसल्स को जो है निशाना बनाया गया आईआरजीसी की तरफ से, उनमें से एक ने आग पकड़ी। अब यूएई का कहना है कि आग जो है उसको नियंत्रण में लाया गया है, लेकिन उसमें बदकिस्मती से भारतीय एक नाविक की मौत हुई, 6 अन्य घायल है, उनमें 4 की हालत जो है नाजुक बताई जा रही है। 2 यूक्रेन के जो नाविक हैं वो भी उस हमले में घायल हुए हैं। उस बीच अब ये भी खबर आ रही है कि आईआरजीसी की तरफ से एक और यूएई के टैंकर को निशाना बनाया गया है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच उसकी जारी है। उस बीच आज सुबह करीब 6 बजे से जो है लगातार बहरीन में जो यूएस 5th फ्लीट का बेड़ा है उस पर कई मिसाइल जो हैं ईरान की तरफ से दागे गए हैं और उनका दावा है कि काफी नुकसान पहुंचाया गया है अमेरिकी बेस को। और उसी तरह जार्डन में भी जो है अमेरिकी बेस, उस पर भी जवाबी कार्रवाई जो है आईआरजीसी की तरफ से की गई है।
3: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अमेरिका के हमले जारी हैं, ईरान के अलग अलग ठिकानों पर भारी तबाही हुई है। हमले की नई सीरीज में अमेरिकी सेना घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। उन हथियारों का इस्तेमाल हॉर्मुज में हुआ है, उसे देखकर ईरान हैरान है, क्योंकि अमेरिका के आयुध भंडार से निकला वो हथियार पहली बार तबाही मचाता दिखा है। हॉर्मुज अब तनाव का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है।

0: हॉर्मुज के समुद्र में आग लगी हुई है। हॉर्मुज में लगातार धमाके हो रहे हैं। दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन है हॉर्मुज जलडमरू मध्य, लेकिन अभी अमेरिका और ईरान की अदावत में यहां बारूद की बारिश हो रही है। अमेरिका ईरान के सामरिक ठिकानों को तबाह करने में जुटा है, तो ईरान भी कई जहाजों को मिसाइलों से टारगेट कर रहा है। हॉर्मुज अब सिर्फ तेल सप्लाई का रास्ता नहीं, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच ताकत की नई जंग का मैदान बन चुका है। तेल व्यापार की इस अहम रूट की जो ताजा तस्वीरें आई वो बता रही हैं कि अमेरिका हॉर्मुज में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। अमेरिकी मिलिट्री ने पहली बार ईरान से लड़ाई में अपना कोर्सियर सी ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ये घातक हथियार कैसे तबाही मचा रहा है उसकी तस्वीर देखिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस वीडियो को जारी किया है। वीडियो में एक ड्रोन तेज रफ्तार से पानी में डॉक की तरफ बढ़ता दिख रहा है और टकराते ही वहां जोरदार धमाका होता है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने 3 कोर्सियर सी ड्रोन दागे और बंदर अब्बास नौसैनिक अड्डे पर हमला किया। ये वही इलाका है जहां ईरान के सबमरीन और जहाजों की मरम्मत होती है। अमेरिका ने अपने सी ड्रोन से हमला कर सीधे ईरान के सामरिक ठिकानों को निशाना बनाया। पेंटागन ने जानकारी दी है कि इन हथियारबंद ड्रोन्स ने बंदर अब्बास में वहां की इमारतों को निशाना बनाया। ये खास समुद्री ड्रोन है जिसे पहली बार हॉर्मुज में इस्तेमाल किया गया। आखिर ये सी ड्रोन होते क्या है? दरअसल इन्हें अनमैन्ड सरफेस वेसल भी कहा जाता है। ये बिना क्रू के चलने वाली नावें हैं जो रिमोट से कंट्रोल की जाती हैं और खुद ब खुद चल सकती हैं। ये सबमरीन की तरह पानी के अंदर नहीं बल्कि पानी की सतह पर चलती हैं। इन सी ड्रोन में कैमरा, रडार, सेंसर, कम्युनिकेशन सिस्टम और हथियार लगे होते हैं। साइज में ये चंद मीटर की छोटी बोट से लेकर बड़े कार्गो जहाज जितने बड़े भी हो सकते हैं।
1: ये सुइसाइड ड्रोन है, जिस प्रकार से बाकी जो एरियल ड्रोन्स काम करते हैं ये उसी प्रकार से काम करता है। ये तो इसको ये कंट्रोल जो भी टारगेट है, फर्ज करो अगर टारगेट कोई पेट्रोल बोट है ईरान की या कोई इस प्रकार की या ईरान की कोई भी शिप हो उसके ऊपर अगर उसने अटैक करना है तो फिर ये सुइसाइड ड्रोन भेज देते हैं और उसके बाद जाके ये उस टारगेट को हिट करके उस टारगेट को बर्बाद कर देगा। इसके अलावा उनके पास एक और भी है, उनके पास एक लूकस ड्रोन भी है जो लॉयटरिंग म्यूनिशन है। इस प्रकार के म्यूनिशन भी आपने देखा होगा, भारत ने इस्तेमाल किए थे ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन ये लॉयटरिंग म्यूनिशन है। तो ये जो ड्रोन्स है ये भी शिप के जरिए से भेजे जाते हैं, वो इलाके के ऊपर लॉयटर करते हैं और उसके बाद जब भी टारगेट मिल जाती है उस टारगेट को वो हिट करके बर्बाद कर देते हैं।
0: अमेरिका ने इन सी ड्रोन का इस्तेमाल उस वक्त किया जब हॉर्मुज को लेकर दावेदारी तेज है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब अमेरिका हॉर्मुज का गार्जियन बनेगा, इसकी सुरक्षा करेगा और इसके बदले दुनिया से कीमत भी वसूलेगा, तो दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची का सीधा जवाब, हॉर्मुज का गार्जियन हमेशा ईरान था, है और रहेगा। यानी अब लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की नहीं, हॉर्मुज पर नियंत्रण की भी है।
2: We'll be open. We've cut down their capability very substantially, but they, you know, they're going to fight for a while. Our military has done a fantastic job, and you know the bottom line, though, and I say it to everybody, and I say it as much as you want to listen. Iran will not have a nuclear weapon. If we didn't bomb them with the B-2 bombers, that plane right there. If we didn't bomb them, they would have had a nuclear weapon long ago. Within one month from the day we bombed them, they would have had, if we didn't do it, they would have had a nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, Israel would no longer be with us, and the Middle East probably would no longer be with us.
0: Trump ne elan kar diya hai ki America Hormuz Jaldamru Madhya ki suraksha ki zimmedari apne haath mein lega. ट्रंप के ऐलान के साथ ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक अमेरिकी नौसेना ईरानी बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले जहाजों की निगरानी करेगी। ऐसे दावे और ऐलान के बाद अमेरिका ने बीती रात भी ईरान के सैन्य ठिकानों, एयर डिफेंस सिस्टम और तटीय रडार पर हमले किए।
2: numbers that we haven't had in years. and we're hitting them very hard, and it'll continue, and we'll see what happens. But we're knocking out all of their offensive capability, and we're controlling the straits. We're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through.
0: अभी एक दिन पहले ही ईरान ने हॉर्मुज में यूएई के दो जहाजों पर हमला किया। क्रूज मिसाइल से हमले में दोनों जहाजों को नुकसान पहुंचा। इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए। घायलों में से 6 नाविक भारतीय हैं। इसे लेकर भारत ने भी गहरी नाराजगी जताई और ईरानी राजनयिक को समन किया। हॉर्मुज में जारी तनाव के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हॉर्मुज पर वर्चस्व की लड़ाई सिर्फ खाड़ी तक सीमित रहेगी या फिर पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज तक ब्यूरो।
3: हॉर्मुज में जारी तनाव के बीच ईरान के तेल मंत्री मोहसिन पाकनेजाद ने दावा किया कि ईरान का तेल निर्यात बिना किसी रुकावट के जारी है। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका भी हॉर्मुज पर नियंत्रण का दावा कर रहा है और ईरान भी अपने दावे कर रहा है। ईरान के तेल मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने समझौते के तहत किए अपने वादों को तोड़ा है, उसका उल्लंघन किया है। कच्चे तेल से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान पर ताजा अमेरिकी हमलों के बीच कच्चे तेल का भाव एक बार फिर आसमान छूने लगा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कच्चे तेल का भाव अब $86 प्रति बैरल हो गया है। ये एक महीने का सबसे उच्चतम स्तर बताया जा रहा है। ईरान का तेल लगातार महंगा होता जा रहा है। क्रूड ऑयल के दाम अब अंतर्राष्ट्रीय भाव इसका $86 प्रति बैरल हो गया है। यह अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बीच सबसे अहम सवाल है कि मोश्तबा खामनेई क्या आज सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे या फिर नहीं। दो दिन पहले उनके दफ्तर की ओर से इसकी जानकारी दी गई थी। खामनेई ने अमेरिका को धमकी दी है, लेकिन आखिर वो हैं कहां। अब सभी की निगाहें तेहरान की ओर है।

0: 28 फरवरी को शुरू लड़ाई के बाद से अब तक मुस्तफा खामनेई सामने नहीं आए। वो बेहद खुफिया ठिकानों से अपनी फौज के लिए फरमान जारी कर रहे हैं, अमेरिका को धमकी दे रहे हैं। ऐसे तमाम हलचल के बीच ट्रंप ने नया दावा किया। उन्होंने 13 जुलाई को कहा कि ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर मारे जा चुके हैं, ईरान की सैन्य क्षमताएं बुरी तरह खत्म हुई हैं, उनके पास कोई नौसेना नहीं, उनके पास कोई वायुसेना नहीं, उनकी एंटी एयरक्राफ्ट क्षमता खत्म हो गई, उनके सभी नेता मारे जा चुके हैं। फॉक्स न्यूज को दिया इंटरव्यू में ऐसे तमाम दावे करते हुए ट्रंप ने यह भी कहा कि दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे और उनके उत्तराधिकारी मुज्तबा खामनेई 90% खत्म हो चुके हैं। अमेरिका और इसराइल के हमले में मुज्तबा खामनेई के गंभीर रूप से जख्मी होने की खबर आई थी, तब से वो सेफ ठिकानों पर हैं, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया और तो और अपने पिता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार से भी दूर रहे। 6 दिनों तक ईरान के तेहरान, कोम और इराक के नजफ, करबला में आयोजन हुए, लेकिन मुज्तबा सामने नहीं आए। लेकिन आयतुल्ला अली खामनेई को सुपुर्द खाक किए जाने के बाद मुज्तबा ने अपना लिखित संदेश जारी किया था और कह दिया था कि इस्लामिक गणराज्य के लोग पूर्व सुप्रीम लीडर और उनके पिता अली खामनेई की हत्या का बदला लेने की मांग कर रहे हैं। अपने सोशल मीडिया पर जारी किए गए एक संदेश में उन्होंने पिता अली खामनेई और युद्ध में मारे गए शहीदों के खून का बदला लेने का संकल्प लिया। मुज्तबा खामनेई ने कहा है कि ईरान का बदला अनिवार्य रूप से लिया जाना चाहिए, यह मामला उनके या अन्य अधिकारियों के व्यक्तिगत अस्तित्व पर निर्भर करता है, चाहे हम मौजूद हों या ना हों, ये होकर रहेगा। ये मुज्तबा खामनेई का लिखित बयान था। अमेरिका को साफ तौर पर धमकी दी गई, लेकिन इन सब के बीच खबर है कि पहली बार नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई दुनिया के सामने आ सकते हैं। खबरों के मुताबिक आज वो तेहरान में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। 2 दिन पहले ही ईरानी मीडिया फार्स न्यूज ने मुज्तबा खामनेई को लेकर जानकारी दी थी। उसके मुताबिक आज मुज्तबा खामनेई तेहरान में आयोजित होने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। सर्वोच्च नेता तेहरान के मुसल्ला में शहीद इमाम मुजाहिद की याद में एक समारोह में मौजूद रहेंगे। दरअसल ईरान के सामने उसके नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की सुरक्षा का सवाल है। अमेरिका पहले ही मुज्तबा खामनेई पर करीब 92 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान कर चुका है। CIA और मोसाद यानी अमेरिका और इसराइल की खुफिया एजेंसियां लगातार मुज्तबा के पीछे पड़ी हुई हैं। ऐसे में सस्पेंस गहराया हुआ है कि क्या अमेरिकी हमले और चेतावनी के बीच मुज्तबा सामने आएंगे। आज तक ब्यूरो।
1: इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने जिन 2 जहाजों पर कल हमला किया उसमें एक भारतीय नाविक की जान गई है। दोनों जहाजों के कुल 46 क्रू सदस्यों में 30 भारतीय नाविक थे। MTL बाहिया पर सवार 12 भारतीयों में से एक की दुखद मौत की खबर आ रही है। कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। MT मोम्बासा पर सवार 18 भारतीयों में से 9 घायल हैं, जिनमें से 2 की गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। मृतक भारतीय नागरिक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की जा चुकी है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई है। और विदेश मंत्रालय की ओर से यह बयान आया, उन्होंने कहा कि हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। UAE में हमारा मिशन और पोस्ट की स्थिति पर बारीकी से हम नजर बनाए हुए हैं। प्रभावित भारतीय नाविकों की हर संभव मदद सुनिश्चित करने के लिए UAE अधिकारियों के संपर्क में विदेश मंत्रालय है। विदेश मंत्रालय ने सुबह नई दिल्ली में ईरान दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब किया है और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हौसला, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Roll out.
4: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
5: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
7: In association with
3: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
5: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
8: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
9: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
8: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
9: They score!
8: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
7: In association with
3: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
10: So sorry.

0: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
4: अरुणाचल प्रदेश में मानसूनी आफत का कहर। बाढ़ की चपेट में भारत चीन बॉर्डर के कई इलाके। मूसलाधार बारिश के चलते खतरे के निशान के ऊपर बह रही है कुमेय नदी। अरुणाचल प्रदेश में हो रही लगातार बारिश ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। कुमेय नदी में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से पारसी पार्लो सर्कल और दामिन सब डिवीजन सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दामिन में होरी दामिन को जोड़ने वाला पुल पूरी तरह बह गया है, जिससे सड़क संपर्क कट गया है। लगातार बारिश के कारण स्कूलों, दफ्तरों और घरों में पानी भर गया है। इलाके की कई कॉलोनियों और गांव की सड़कें पूरी तरह जलमग्न हैं। राज्य सरकार की माने तो बाढ़ में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। राज्य के 26 जिलों के 425 गांवों में बाढ़ से कुल 97,182 लोग प्रभावित हुए हैं, साथ ही कृषि और सार्वजनिक संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुँचा है। वहीं बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस और अन्य विभागों के साथ मिलकर नुकसान का जायजा ले रहा है और राहत कार्य चलाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश से युवराज मेहता के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

मध्य प्रदेश के धर्म मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज के लिए दी जाएगी भोजशाला परिसर के पास खुली जगह। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट की रोक रहेगी बरकरार। दिल्ली के अंकित हत्याकांड में आम आदमी पार्टी नेता ताहिर हुसैन को दोषी करार दिए जाते ही बीजेपी का हल्ला बोल, कहा ताहिर केजरीवाल का दाहिना हाथ, वो सिर्फ एक्टर, कोई और है डायरेक्टर। गाजियाबाद में पिंक बूथ के पास तड़प तड़प कर गई शख्स की जान, लहूलुहान होने के बाद भी खड़ी देखती रही पुलिस, वर्दी वालों की संवेदनशीलता पर उठे सवाल। ईरान से जंग में पूरी ताकत से उतरा अमेरिका, लगातार तीसरे दिन एयर स्ट्राइक, कुवैत बहरीन में ईरानी ड्रोन का खौफ, ट्रंप बोले 2-3 हफ्ते चलेगी जंग, हॉर्मुज में लेंगे 20% टैक्स। और हॉर्मुज हमले में हुई भारतीय नाविक की मौत के बाद ईरान की राजदूत तलब, यूएई के 2 ऑयल टैंकरों पर क्रूज मिसाइल अटैक में गई जान, विदेश मंत्रालय ने हमले की कड़ी निंदा की।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दो बज गए हैं, न्यूज रूम लाइव में एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर है। और जैसा कि हम आपको शुरुआत में बताते हैं कि आज न्यूज रूम लाइव में हम आपको कौन सी खबरें दिखाने वाले हैं, तो वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले किस खबर के बारे में बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे, राहुल गांधी ने बैठक बुलाई। पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है, पिछले कुछ लंबे दिनों से हो रहा है, इस बैठक के बाद क्या रिजल्ट निकल के आ पाएगा, सब कुछ शांत होगा, हम आपको बताएंगे। दूसरी जो बड़ी खबर है वो भी हम आपको बता देते हैं, जो आज न्यूज रूम में हम बात करने जा रहे हैं कि भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आया है, मुस्लिम पक्ष की नमाज को लेकर, सिर्फ शुक्रवार को लेकर क्या अस्थायी व्यवस्था की गई है, यह हम आपको बताने वाले हैं। तीसरी जो बड़ी खबर होने वाली है वो होगी राम मंदिर को लेकर। राम मंदिर को लेकर पिछले कुछ दिनों से क्या चल रहा है, आप सभी लोग देख रहे हैं। तो राम मंदिर पर ट्रस्ट को लेकर अब क्या एक नया प्लान आने वाला है, यह हम आपको बताएंगे। और ठीक 2:30 बजे यानी आधे घंटे बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि तड़प तड़प कर मर गई इंसानियत, कहां की क्या खबर है, पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, भोजशालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है, यह हम आपको बता रहे हैं। और अस्थायी व्यवस्था की गई है, भोजशाला परिसर से पास में सटी हुई जो खुली जगह है वो शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने के लिए दी गई है मुस्लिम पक्ष को कि वो वहां नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन ये फिर आपको बता दें, ये अस्थायी व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा, 3 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। जुमे की नमाज के लिए, शुक्रवार को जो नमाज होती है उसके लिए भोजशाला परिसर के ठीक पास सटी हुई खुली जगह दी जाएगी ताकि वहां पर मुस्लिम पक्ष नमाज अदा कर सके। लेकिन फिर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया ये अस्थायी व्यवस्था है और हाईकोर्ट का आदेश जारी रहेगा, बरकरार रहेगा। अगली सुनवाई होगी 3 जुलाई में, लेकिन तब तक हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपील की गई थी, मुस्लिम पक्ष की तरफ से मांग की गई थी, तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि भोजशाला परिसर के पास की खुली जगह उनको दी जाएगी शुक्रवार को। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और क्या मांग की गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से?
1: मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि वहाँ विवादित परिसर पे जो हाईकोर्ट का आदेश है उस आदेश को अभी स्टे किया जाए और उन्हें फिर से वहां पर नमाज करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि मीनाक्षी अरोड़ा, अभिषेक मनु सिंघवी और हुजैफा अहमदी, ये सारे लोग मुस्लिम पक्ष की ओर से यही दलील दे रहे थे कि 13वीं शताब्दी से वहां पर मस्जिद का अस्तित्व है, वहां नमाज हो रही है, 1935 से वहां हर फ्राइडे को नमाज का अंग्रेजों ने भी इजाजत दी है, तो लिहाजा इस पर इस तरह से बैन लगाना उचित नहीं है। और वहां पर कहीं भी 13वीं शताब्दी से अब तक कहीं भी मंदिर होने के प्रमाण नहीं है, मंदिर के रूप में वो इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा कि एक संवेदनशील मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दे पर कोर्ट में बहुत सोच समझ कर बोलने की जरूरत है, क्योंकि इससे इंप्रेशन खराब हो सकता है, कोई भी बात अगर ऊंच नीच हो जाती है तो उससे इंप्रेशन खराब होगा। कोर्ट ने कहा कि ये संवेदनशील मुद्दा है, इस पर आराम से सुनवाई की जरूरत है, जिसमें एक या दो दिन हम ऐसा तय करते हैं।
0: अच्छा, बताइए कि अगली सुनवाई की क्या तारीख बताई गई है, कि जुलाई के 3rd हफ्ते में या फिर 3 हफ्ते बाद है सुनवाई?
1: अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद, कोर्ट ने कहा है कि 3 हफ्ते बाद इस मामले में सुनवाई के लिए तारीख लगाएंगे और सभी पक्षकारों को जिसमें सहूलियत होगी उस हिसाब से तारीख लगाई जाएगी और सारे लोग, 1 या 2 दिन समय रहेगा जिसमें लोग फाइनल हियरिंग होगी और उसके बाद फिर कोर्ट इसमें फैसला करेगा।
0: शुक्रिया, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो अब एक और बड़ी खबर की बात करते हैं और ये बड़ी खबर राम मंदिर से जुड़ी हुई है और ये सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको बता रहे हैं कि राम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में अयोध्या के किसी प्रमुख संत को शामिल किया जा सकता है। और जिन नामों की चर्चा की जा रही है उनमें जगत गुरु वासुदेवाचार्य, महंत मिथिलेश, नंदिनी शरण और अधिकारी राजकुमार दास समेत कुछ अन्य संतों के नाम भी शामिल हैं। हालांकि पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि कौन सा नाम आगे आएगा, लेकिन इन नामों की चर्चा चल रही है। हालांकि ट्रस्ट की ओर से इस खबर की पुष्टि नहीं की गई है। महंत मिथिलेश, नंदिनी शरण के नाम की भी चर्चा है, साथ ही जगत गुरु वासुदेवाचार्य के नाम की भी चर्चा है, अधिकारी राजकुमार दास समेत कुछ और भी संत हैं जिनका नाम इसमें शामिल है। रुक करेंगे हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव का। आशीष, क्या खबर आ रही है, किन नामों की चर्चा हो रही है?
2: देखिए राजीव, सबसे बड़ी बात है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में जो सीईओ तो अपॉइंट होने के लिए कहीं ना कहीं संभावनाएं और सारी चर्चाएं चल रही हैं। दूसरी तरफ अब जो नए नाम है, यानी कि अगर हम बात करें तो प्रमुख संतों को भी शामिल किए जाना इसमें संभावित है और इसी को लेकर नए नाम है, क्योंकि 1 अगस्त सीईओ होगा तो कहीं ना कहीं प्रमुख संत भी शामिल हो सकते हैं। 22 तारीख की जो मीटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है और उसके लिए कई नाम भी सामने हैं। हालांकि अगर बताऊँ तो जगत गुरु वासुदेवाचार्य, महंत मिथिलेश, नंदिनी शरण और अधिकारी राजकुमार दास समेत कई ऐसे वो नाम हैं जो इस चर्चा में हैं और ट्रस्ट में भी चर्चा में चल रही है कि इनके नामों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी ऐसा क्लियर नहीं किया गया किसके नाम आगे आएंगे, लेकिन ये तो ज़रूर है कि किसी एक बड़े को शामिल किया जाना है। तो ये भी ज़रूरी है कि एक तरफ जिस तरीके से जो राम मंदिर पूरा ट्रस्ट की तरफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे उसमें नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसको लेकर भी ये खबर अहम हो जाती है, क्योंकि क्या रोल होगा इनका वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दूसरी अगर इनको शामिल किया जाता है प्रमुख संत को, तो उनकी जिम्मेदारियों को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि महासचिव अभी भी जो बनाया जाना है वो भी एक बड़ा जिम्मेदारी वाला है। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रमुख संत को अयोध्या में शामिल किया जाना ट्रस्ट में, और कहीं ना कहीं जो चंपत राय गए हैं ट्रस्ट से और जैसे कि अनिल मिश्रा को हटाया गया, तो उनका रिप्लेसमेंट कैसे किया जाए, किस तरीके से, ये भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आस्था पर चोट ना लगे और जो हिंदू आस्था है उसको भी सम्मानित किया जा सके, संतों की जो आस्था है, क्योंकि संत लगातार

0: करने पर इस वक्त विचार किया जा रहा है ट्रस्ट की तरफ से, क्योंकि कुछ दानदाताओं की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे जो अभी मैं आपको बता रहा था। कीमती दान लौटा सकता है ट्रस्ट, जो कीमती दान दिया गया है, बहुत सारे सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण दिए गए हैं, तो वो जो कीमती दान है वो ट्रस्ट की तरफ से वापस लौटाया जा सकता है। इसके अलावा SIT की फाइनल रिपोर्ट बहुत जल्द, अब देखिए 15 तारीख थी, 15 तारीख तक वो रिपोर्ट वगैरह सबमिट करनी थी और उसके लिए SIT लगातार प्रयास भी कर रही थी, पूछताछ भी कर रही थी, तो फाइनल रिपोर्ट बहुत जल्दी यहां पर सबमिट होने वाली है। और राम मंदिर की नई वेबसाइट भी तैयार हो गई है, बहुत बदलाव हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव ही बदलाव किया गया है और लोगों के मन में वो आस्था वापस लाने की कोशिश है। चंपत राय, अनिल मिश्रा के नाम इस वेबसाइट से हट गए हैं, आस्था डगमगाई लोगों की जब ये आरोप लगने लगे चंपत राय पर, अनिल मिश्रा पर, तो वेबसाइट से अब नाम हट गए हैं। इसी दौरान एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, चढ़ावा चोरी मामले में मंदिर ट्रस्ट का बड़ा दावा सामने आया है, 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी नहीं, ये गोविंद देव की तरफ से कहा गया है कि 3 करोड़ से ज्यादा की चोरी नहीं हुई। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें। सहयोगी हमारे आशीष लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। आशीष, एक तरफ तो बदलाव बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, SIT की रिपोर्ट भी सबमिट होने वाली है और ये भी अब देवगिरी की तरफ से दावा किया गया है कि 3 करोड़ से ज्यादा की चोरी नहीं हुई है।
1: अब बिल्कुल देखिए, अगर SIT जांच अभी कर रही है, उसने फाइनल रिपोर्ट नहीं दी है और ऐसे में गोविंद गिरी लगातार कह रहे हैं कि 3 करोड़ के लगभग आसपास की चोरी है और चोरों को पुलिस ने पकड़ा भी है, लेकिन जो पूरी तरीके से SIT जब रिपोर्ट सौंपेगी तो उसके मुताबिक ही जाहिर हो पाएगा, क्योंकि करोड़ों रुपए की जो लैंड है, करोड़ों रुपए का जो चढ़ावा है, जिस तरीके से बरामदगी भी किया जा रहा है, तो ऐसे में अभी तो पुलिस और SIT अलग अलग पूरी तरीके से जाँच कर रही है। ये भी ज़रूर माना जा रहा है कि जो अपराधी हैं, जो आरोपी बनाए जा रहे हैं, वो भी नए नाम शामिल हो सकते हैं और उनके पास क्या बरामदगी होगी। चढ़ावा से जुड़ी हुई कई ऐसी मामले सामने आए जिसमें कहा गया चढ़ावा गायब हुआ है, चढ़ावे को भी सर्च किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी इनिशियल स्टेज पर अगर राम मंदिर ट्रस्ट मान रहा है कि 3 करोड़ की हुई है, तो ये तो शुरुआत है कि 3 करोड़ मान ली गई है, तो इसके ऊपर अभी कितना और है ये बहुत बड़ा सवाल है। और SIT और पुलिस अपनी जांच जब सबमिट करेगी, फाइनल यानी चार्जशीट लगाएगी, तब उसमें जाहिर होगा कि कितने की बरामदगी हुई है। तो शुरुआती में अगर 3 करोड़ का आ गया है और ट्रस्ट भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये रकम अभी वो बहुत ज्यादा है और ऐसे में इसके अलावा जो आभूषण है, इसके अलावा जो लैंड है, इसके अलावा जो गाड़ियां खरीदी गई हैं,
0: कई फैसले भी देखने को मिल सकते हैं, अभी तो ऐसा ही लग रहा है। शुक्रिया आशीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं एक और मुद्दे की जो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा तेजी के साथ उठ रहा है, वक्फ की बात यहां पर की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से वक्फ को लेकर किस तरह की टिप्पणियां की गई हैं, ये लगातार हम सभी देख ही रहे हैं। इसके साथ ही अब ये भी खबर आई है कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो मौलाना है रिजवी, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो अखिलेश का राज था, उससे पहले का राज था, चाहे सिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, जमकर घोटाला किया गया है, अब उन सब की जांच होनी चाहिए। एक चिट्ठी भी लिखी है CM योगी को।
2: अयोध्या में चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आते ही वक्फ के कथित घोटाले का सियासी शोर सुनाई पड़ने लगा था। पहले BJP अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष बासित अली ने बहराइच के सालार गाजी दरगाह में घोटाले के आरोप लगाए, फिर CM योगी ने कई मंचों से वक्फ के घोटालों का जिक्र किया, अब खुद मुस्लिम जमात के मौलाना रिजवी ने वक्फ में घोटालों के आरोप लगाए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने CM योगी को चिट्ठी लिखकर वक्फ के घोटालों की जाँच करने की मांग की है।
3: राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड का निकल करके सामने आएगा, वो लाखों का नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों का जो घोटाला है वो अरबों का घोटाला सामने निकल करके आएगा।
2: मौलाना रिजवी CM योगी के नाम लिखी चिट्ठी में दावा करते हैं कि 1989 से 1991 तक, 1993 से 1995 तक और 2003 से 2007 तक मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल रहा, फिर 2012 से 2017 तक अखिलेश का कार्यकाल रहा, इस दौरान आजम खान वक्फ मामलों के मंत्री रहे और उनके चहेतों ने वक्फ संभाला, 2000 से 2001 तक जुफर अहमद फारूकी, 2001 से 2003 तक अमीर आलम, 2004 से 2009 तक हाफिज उस्मान और फिर 2010 से 2026 तक जुफर अहमद

0: मोहम्मद फारूकी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे और मनमाने तरीके से बोर्ड के अंदर गड़बड़ियां की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकाल में वक्फ की संपत्तियों में घोटाले हुए, इसका सीधा आरोप खुद सीएम योगी अपने सार्वजनिक रैलियों कार्यक्रमों में लगाते रहे। जब राम मंदिर का मुद्दा सामने आया तो सीएम ने फिर से वक्फ घोटाले का जिक्र किया था।
1: मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके बेच करके और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है।
0: सियासी आरोप एक तरफ लेकिन आरोपों की जांच दूसरी तरफ। शिया वक्फ बोर्ड से जुड़े इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दें तो यूपी में किसी वक्फ घोटाले की सघन जांच अभी तक नहीं हो सकी है। यूपी और देश में वक्फ की संपत्तियों के घोटालों के आरोप शुरू से लगते रहे हैं और उसे दूर करने के लिए ही सरकार ने वक्फ संशोधन कानून भी बनाया। उम्मीद लगाई जा रही है कि नए कानून के तहत बने वक्फ बोर्ड अब वक्फ संपत्तियों का उचित रखरखाव कर पाएंगे। बरेली से कृष्ण गोपाल राज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: तो देखिए, वक्फ पर लगातार घमासान चला आ रहा है, एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी से फखरुल हसन और दूसरी तरफ बीजेपी से राकेश त्रिपाठी निशाना साध रहे हैं एक दूसरे पर।
3: अभी इस पूरे मुद्दे पे बहुत से लोग चाहते हैं इस मुद्दे को डाइवर्ट करना। कभी बाबा रामदेव बोल देते हैं, कभी कोई मौलाना और कोई बात बोल देता है, लेकिन समाजवादी पार्टी समझती है कि करोड़ों करोड़ों हिंदू धर्म के मानने वालों की आस्था का सवाल है और उस पूरे प्रकरण में अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है, तो वहां पे जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं दूसरे स्थानों पे या दूसरे धर्म स्थल पे कहीं अगर कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से वहां सुधार होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन बयानबाजी नहीं। अगर कोई सबूत किसी के पास है, एविडेंस है, तो सामने लाना चाहिए।
4: वक्फ के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पहले हुआ करता था। वक्फ की जमीनों को औने पौने दामों पर कब्ज हो जाते थे, किराए पे देते थे और उसके धन का दोहन होता था। वक्फ जिस भावना से किया जाता उस भावना का तिरस्कार होता था। लेकिन आज सरकार के प्रयासों के बाद हम वक्फ की संपत्तियों को रेगुलराइज करने का काम कर रहे हैं और वक्फ के संदर्भ में अगर किसी प्रकार की शिकायत आ रही है तो उस शिकायत का समाधान करने का भी काम कर रहे हैं। इस तरह की अनियमितताओं को रोका जाना बेहद आवश्यक है।
2: और अब एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। 6 साल पहले दंगा हुआ था 2020 में, लेकिन अब इस पर राजनीति जमकर गरमा रही है। बीजेपी का यह कहना है कि केजरीवाल ही डायरेक्टर है इस दंगे के, ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 6 साल पहले दिल्ली में हुए दंगे का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया। अदालत ने इस केस में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया। अब बीजेपी इस फैसले के बाद केजरीवाल पर हल्ला बोल रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि पार्टी पहले ही ताहिर हुसैन से रिश्ते तोड़ चुकी है।

0: 2020 में जिस तरह से उत्तर पूर्वी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दंगे करवाए थे, अभी ताहिर हुसैन को उसमें प्रमुख रूप से दोषी माना गया है। अब ताहिर हुसैन कौन है? ताहिर हुसैन अरविंद केजरीवाल के खास सिपे सलार थे और जिस तरह से वो पूरा अंजाम दिया गया था मामले को और जिस तरह से उस आईबी ऑफिसर की हत्या की गई थी, वो आज भी सोचते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। अरविंद केजरीवाल उस समय मुख्यमंत्री थे, एक बार भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या और भी जितने इनकी जमात के लोग हैं, किसी एक के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था।
1: तो 6 साल पहले दिल्ली दंगा हुआ था और उसके बाद अभी तक इस मामले पर सियासत देखी जा रही है और अब जब नाम ताहिर का आ गया है तो आम आदमी पार्टी उनसे पल्ला झाड़ रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि इन सब के पीछे अरविंद केजरीवाल का ही हाथ है। एक रिपोर्ट आपके सामने।
2: ये वाकया 6 साल पहले का है जब पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस गई। इस हिंसा ने दिल्ली के दिलो दिमाग पर गहरे जख्म किए। करीब 53 बेकसूरों की मौत ने इस हिंसा को बेहद भयावह बना दिया। 6 साल बाद अब इस मामले में हिसाब हुआ है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट का इंसाफ सामने आया है। अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन दोषी पाया गया। ताहिर हुसैन के अलावा 4 और आरोपियों को कोर्ट ने दोषी पाया। आपको बता दें कि 26 फरवरी 2020 को खजूरी खास नाले से अंकित शर्मा का शव मिला था। उनके पिता ने ताहिर हुसैन समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। तमाम गवाहों की पेशी सबूतों और सुनवाई के बाद अदालत का फैसला अब दिल्ली के सामने है। जहां तक ताहिर हुसैन का सवाल है तो खबर है कि कोर्ट की सुनवाई के दौरान वो फूट फूट कर रोने लगा। ताहिर की माने तो वो बेकसूर है, उसे फंसाया गया है।
3: ताहिर जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए।
2: ताहिर हुसैन के अपने तर्क हैं, उसके पास ऊपरी अदालत में जाने का पूरा हक है, लेकिन फिलहाल ताहिर हुसैन को लेकर दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर 6 साल पुरानी हिंसा को लेकर दंगल शुरू हो गया।
4: देखिए, 2020 में जो दंगे हुए, आज ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन और ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोगों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू, जो वहाँ पे रहने वाला हिंदू समाज है, उनको मारने की साजिश थी। और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए, नौजवान बेगुनाह अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर, जिनको कई बार चाकुओं से गोदा गया और बाद में उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया।
5: कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का सेशन से आया है, तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा, क्या नहीं रहा, ये सबको।
2: तो ताहिर हुसैन दिल्ली की राजनीति का फिर से एक अहम किरदार हो गया है। हिंसा में नाम आने के बाद ताहिर हुसैन से केजरीवाल ने किनारा कर लिया था, आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने गले लगा लिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि ताहिर हुसैन का सरपरस्त कौन था? आज तक ब्यूरो।
1: और 6 साल पहले जब ये दंगे हुए थे, एक नाम सामने आया था अंकित शर्मा, जिनकी जिन ममता से हत्या कर दी गई थी। अब उनके भाई अंकुर शर्मा से बात की मेरी सहयोगी पूजा शाली ने।
6: अंकुर, आपने जब ये अब खबर सुनी है कि उस केस में कन्विक्शंस हो गए हैं 2020 में जो हादसा हुआ था आपके भाई के साथ, अब किस तरह से आपका पहला थॉट होगा? क्या आपको कहीं ना कहीं थोड़ी खुशी है, संतोष है कि एक फैसला आ गया कन्विक्शन का ताहिर हुसैन के खिलाफ?
7: जी मैम, हमारी पहले से ही ये मांग थी कि जो भाई के दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और सभी लोगों की ये मांग थी, कभी मीडिया कर्मी थी, कभी हमारी सिविल जनता है, कभी राजनीतिक पार्टियों ने हमारा साथ दिया, सभी लोगों ने हमारा साथ दिया। सभी की ये मांग थी कि जो भाई को जिसने बुरी तरीके से बोलते भी उसको मारा गया था और वो अपनी ड्यूटी करते हुए आईबी की तरफ से वहाँ ड्यूटी करता हुआ देश के लिए शहीद हुआ, और सभी की ये मांग थी कि भाई को इंसाफ मिले और जो दोषी है उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और जिन लोगों ने भाई के साथ ये किया है उन लोगों को तो सजा मिले। एक सबक सरकार को और कोर्ट को देना चाहिए सभी को, जो ऐसे गलत इरादे मन में पाले बैठे हैं किसी को मारने के लिए,
6: उस वक्त काफी लोगों ने कहा, जैसे ताहिर हुसैन ने कहा मुझे फंसाया जा रहा है, हमने कुछ नहीं किया, हम ये तो किसी और ने मारा है, तो बहुत उनको, क्योंकि वो नेता रहे तो उनको बहुत सपोर्ट भी मिला। तो क्या आपको उस वक्त उम्मीद थी कि ये कन्विक्शन आ पाएगा और कहीं ना कहीं जस्टिस मिल पाएगी उस वक्त?
7: मैम हमें उम्मीद तो थी कि भाई को इंसाफ मिलेगा, और सभी लोगों ने, सभी राजनीतिक पार्टियों ने, सभी जनता ने, सभी मीडिया चैनल्स ने हमारे भाई का सपोर्ट किया, हमें इंसाफ दिलाने में हमारी मदद करी। तो हमें उम्मीद तो थी पहले से ही, जो भी दोषी है उन सबको सजा मिलेगी, और जो दिल्ली पुलिस की एसआईटी टीम है वो उन्होंने जांच करी, जो भी उन्हें सारे सबूत मिले, वीडियो मिली, फोरेंसिक रिपोर्ट मिली, जो भी सारे उन्होंने, जो भी तथ्य थे सारे उन्होंने कोर्ट में पेश किए, जो भी दोषी थे उनको सजा मिली मैम।
1: और अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, पंजाब को लेकर कांग्रेस नेताओं की जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। राहुल गांधी के विदेश दौरे से लौटते ही ये बैठक शुरू हुई, और कोशिश ये की गई कि पंजाब में जो चला आ रहा है कलह कह सकते हैं, अंदरूनी गुटबाजी कह सकते हैं, उसका खात्मा किया जाए। अब बैठक में राहुल गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल भी शामिल थे, और पंजाब कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई थी। भूपेश बघेल भी वापस जा चुके हैं, लंबे वक्त तक पंजाब में रुके थे, समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की थी लेकिन उन समस्याओं का समाधान हुआ नहीं, भूपेश बघेल वापस चले गए। चरणजीत सिंह चन्नी से उनकी कई बार बातचीत भी हुई लेकिन समाधान नहीं निकला। राहुल गौतम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, बैठक तो हो गई है दिल्ली में पंजाब को लेकर, लेकिन इस बैठक के बाद पंजाब में अब सब कुछ नॉर्मल होता हुआ आपको दिखाई देगा या नहीं?
8: देखिए, इसको लेकर अभी थोड़ी देर में क्लैरिटी आएगी कि आखिर पंजाब को लेकर क्या फैसला किया है, लेकिन जाहिर है एक आसान फैसला नहीं रहने वाला है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी अपने ही फैसले को रिव्यू करती है तो ये कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट करना होगा कि कांग्रेस पार्टी से पहले गलती हुई थी जब उन्होंने ये फैसला किया कि राजा वरिंग को कंटिन्यू कराया जाएगा SPCC, और नहीं करती है एक नाराजगी है, एक बड़ी टिकरी हो रही है पार्टी की पंजाब के अंदर, जिस प्रकार से तमाम जो नेता है, चरणजीत सिंह चन्नी है, रंधावा है, तमाम जो लोग हैं उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है, तो कोई आसान काम नहीं है आलाकमान के लिए। और आलाकमान
1: देखिए, आसान काम होता तो बहुत पहले इस मुद्दे को सुलझा लिया गया होता, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया, भविष्य क्या होगा देखेंगे। यहाँ रुकेंगे बहुत एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
12: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
13: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today and let us surprise you.
14: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
15: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
16: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
17: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
16: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
17: They score!
16: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
9: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े चेहरे जनता के सबसे बड़े सवाल और आज तक की सबसे बड़ी पंचायत 15 जुलाई लखनऊ।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

मध्य प्रदेश के धार में मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज के लिए दी जाएगी भोजशाला परिसर के पास खुली जगह। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, भोजशाला में नमाज पर लगी रहेगी रोक बरकरार। दिल्ली के अंकित हत्याकांड में ताहिर हुसैन को दोषी करार दिए जाते ही बीजेपी का हल्ला बोल, कहा ताहिर केजरीवाल का दाहिना हाथ, वो सिर्फ एक्टर, कोई और था डायरेक्टर। गाजियाबाद में पिंक बूथ के पास तड़प तड़प कर गई घायल शख्स की जान, लहूलुहान होने के बाद भी खड़ी देखती रही पुलिस, वर्दी वालों की संवेदनशीलता पर उठे सवाल। ईरान से जंग में पूरी ताकत से उतरा अमेरिका, लगातार तीसरे दिन एयर स्ट्राइक कुवैत, बहरीन में ईरानी ड्रोन का खौफ, ट्रंप बोले 2-3 हफ्ते चलेगी जंग, हॉर्मुज में लेंगे 20% टैक्स। T20 में हुई करारी हार का बदला ले रहे इंग्लैंड के खिलाफ, थोड़ी देर में मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया, गिल की कप्तानी में रोहित, विराट और बुमराह पर होगी नजर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
1: और अब बात करेंगे एक ऐसी खबर की जब सामने आई तो बहुत से सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पुलिस के सामने कुछ लोग, एक शख्स तड़पता रहा, उसका खून निकलता रहा, तड़पता रहा, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की उसे बचाने की। संवेदनशीलता पर सवाल उठे। गाजियाबाद के मधुबन बाबूधाम थाना इलाके का ये मामला है जिसने पुलिस के रवैये पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। ये शख्स जो जमीन पर है, जो लहूलुहान है, वो मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन उसे अस्पताल पहुंचाने की जगह पुलिस वाले खड़े होकर देखते रहे, उसकी मौत का तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की। और सामने देखिए एम्बुलेंस भी है जिसकी उस शख्स को बहुत ज्यादा जरूरत थी। एम्बुलेंस ठीक सामने पुलिस बूथ, सामने पुलिस कर्मी वहां पर मौजूद हैं। और जो स्थानीय लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि करीब 40 मिनट तक, सोचिए जबकि एम्बुलेंस भी है, पुलिस भी है, महिला पुलिस है सामने, लेकिन 40 मिनट तक ये शख्स यहां पर इंतजार करता रहा कि कोई उसे बचा लेगा, लेकिन कोई नहीं आया।
2: कोई सड़क पर खड़ा होकर वीडियो बना रहा है, कोई घटना पर हैरानी जता रहा है, लेकिन खून से लथपथ और तड़पते युवक को बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। खून से सना युवक सड़क पर पड़ा है। उसकी हालत ऐसी भी नहीं है कि किसी से मदद की गुहार तक लगा सके, किसी को मदद के लिए पुकार सके, और कोई ऐसा भी नहीं जो इस हाल में उसकी मदद के लिए आगे आ सके। लेकिन इस घटना के बीच सबसे बड़ी लापरवाही की इन तस्वीरों को देखिए। सामने पड़ा युवक तड़प रहा है, ठीक सामने पुलिस का पिंक बूथ है, दो महिला पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद हैं, लेकिन वो भी इस युवक की मदद के लिए आगे नहीं आ रही। ये तस्वीरें इसलिए भी बेहद परेशान करने वाली है क्योंकि इस पिंक बूथ पर लगी चोट के चलते ही इस युवक की जान गई।
3: राचा करे, कोई राचा ना करा, मेरा लड़का के दम में टूट गया, तो अब अस्पताल भी ना करे से मुझे अस्पताल चले गए, अस्पताल में भी गई, वहाँ भी मेरा के नहीं दिखाए, मेरा के खेदा के वहाँ से भेज के मेरा बेटा के चिराई घर में भेज दिए, कह रहे तुम्हारा बेटा ठीक है, तुम्हारा बेटा आईसीयू में है, तुम्हारा बेटा के रेफर कर दिए, आई ना बताए कि तुम्हारा बेटा के चिराई घर में बेटा।
2: दरअसल पूरा मामला गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम इलाके का है। बताया जा रहा है कि इस युवक का एक ऑटो वाले से विवाद हुआ था। ऑटो वाले से बचने के लिए युवक पिंक बूथ की तरफ भागा, वहां अंदर मौजूद पुलिसकर्मियों को बुलाने की कोशिश की, और इसी कोशिश में उसने कांच का दरवाजा खटखटाया जिससे शीशा टूट गया। युवक का हाथ पूरी तरह जख्मी हो गया और खून बहने लगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि युवक करीब 40 मिनट तक लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़ा रहा। इस दौरान उसने मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी।
4: चार पांच लड़के आए ऑटो से, सीधा टेम्पो अंदर घुसाया, और घुसाने के बाद उसके बाद फिर बाहर 10 मिनट बाहर आए हैं वो। बाहर आने के बाद उन्होंने फिर यहाँ पे आपस में खींचातानी हुई है उनमें,
5: आपस में ही लड़ रहे थे।
4: हाँ, पहले से भी लड़ते हुए आ रहे वो, तो फिर यहाँ पे रिपोर्ट करने आए थे, फिर वो सारे पांचों के पांचों बाहर आए। मैडम ने कहती कि ये पिंक बूथ है, हाँ। यहाँ पे तुम्हारी वो नहीं, जेंट चौकी में जाओ, हाँ। फिर वहाँ जाके उन्होंने वापसी टेम्पू निकाला है, यहाँ पे रुकाया टेम्पू, यहाँ पे रुकाने के बाद उन्होंने फिर बाहर निकले हैं। बाहर निकलने के बाद फिर खींचातानी हुई है उनमें, फिर वो लड़का बहुत देर तक यहाँ पड़ा रहा। पड़ा रहने के बाद
5: पड़ा रहा मतलब
4: गिरा पड़ा रहा, सरा नशे में, आप फूल नशे में,
5: ठीक है।
4: उसके बाद वो फिर 2-4-5 मिनट बाद फिर अंदर गया, वहां जाके शीशे उसमें लोहे के गेट में हाथ मारा, फिर उसके बाद जाके कांच के शीशे में हाथ मारा।
5: अच्छा, जब उसको चोट लग गई, खून निकल रहा था, तो आप दिखा सकते हैं कहां पड़ा रहा और कितनी देर?
4: यही पड़ा था, अभी एक मिनट ये बता देंगे जी इतने।
2: यहाँ तक कि मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने भी उसकी कोई मदद नहीं की।
5: पिंक बूथ है, यानी अगर कोई महिला मुसीबत में पड़ती है, वो अगर मदद के लिए आती है तो अंदर मौजूद पुलिसकर्मी उसकी मदद करेंगी, लेकिन अगर कोई और आता है तो उसे यहाँ पर जाहिर सी बात है तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। लेकिन रविवार को जो कुछ भी यहाँ पर हुआ उस पर यकीन करना एक बार की मुश्किल है। दोपहर तकरीबन 3:30 बजे के आसपास एक ऑटो आता है और सीधे अंदर घुस जाता है। आप देखिए यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर ऑटो आ जाता है। ऑटो में कुल 3 लोग थे, एक ऑटो चला भी रहा था, तो करीब 4 से 5 लोग अंदर मौजूद थे। उनकी आपस में किसी बात पे लड़ाई हो रही थी, उनको शायद पिंक बूथ समझ में नहीं आया होगा, वो यहाँ पर लड़ने लगते हैं। जब यहाँ पर समझाया गया तो वो ऑटो लेके वापस बाहर की तरफ आते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं कुछ दूर। आगे आप जो चौराहा देख रहे हैं, इस चौराहे के पास पहुंचते हैं, ऑटो रुकता है, उनमें आपस में फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो ऑटो में ज्यादातर लोग थे वो चले जाते हैं, जबकि जो राजकुमार है, 22 साल उम्र है, पास में ही रहता था सिवान, वो वहीं सड़क पर लेट गया। बताया जा रहा है कि वो शराब के नशे में था और जो बाकी लोग थे वो भी शराब के नशे में थे। वो वहीं 3-4 मिनट पड़ा रहा, जैसा कि आई विटनेस हमें बताया। उसके बाद फिर वो वापस आता है, और वापस वो आया तो अंदर की तरफ जब वो आया पुलिस चौकी में, तो हम आपको दिखाएं कि वो चौकी में दोबारा आता है, और चौकी में जब वो दोबारा आता है तो सामने जो आप ये लोहे का गेट देख रहे हैं इसको बजाने लगा। ये जाहिर सी बात है, ये तो बंद है, आप देखिए तब भी इस पे ताला लगा था। उसके बाद जब उसकी कंडीशन देखी तो जो अंदर महिला पुलिसकर्मी थी उन्होंने, ये जो गेट है, आप ये गेट देखिए, ये बन चुका है, तब ये गेट ये टूट गया था शीशे का।
2: गाजियाबाद में इस घटना ने पुलिस के रवैये और असंवेदनशीलता पर कई सवाल उठाए, जिसके बाद पुलिस ने दावा किया कि युवक नशे की हालत में था और इसी नशे में उसने शीशे पर हाथ मारकर खुद को जख्मी किया।
6: एक ऑटो चालक द्वारा एक ऑटो सवारी को बिठाया गया, दोनों ही नशे की हालत में थे। पैसे के लेन देन को लेके दोनों में आपस में वाद विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों ही पिंक बूथ पर पहुंचे और शराब के नशे की हालत में ऑटो सवारी ने तेज से पिंक बूथ के गेट पर हाथ मारा, जिससे उसके हाथ में कांच गड़ गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।
2: इस दावे के बीच सवाल ये है कि नशे की हालत में ही सही वो विवाद सुलझाने के लिए पुलिस के पास गया था, तब पुलिस ने क्या किया? जब युवक का हाथ कट गया तो पुलिस ने उसका उपचार क्यों नहीं कराया? क्या सही वक्त पर युवक को मदद मिल जाती तो वो आज जिंदा ना होता? गाजियाबाद से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
7: ऐसा एक मामला सामने आया नासिक से, जहां पर पता चला कि पर्यटक जो जगह होती है जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहां पर सुरक्षा को लेकर कैसे सवाल उठते हैं। एक परिवार वहां पर जाता है, वहां पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ की जाती है और जब उसका विरोध किया जाता है तो लोग झुंड बना के 15 किलोमीटर तक पीछा करते हैं, हाथों में डंडा लेकर गाड़ी को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, मारपीट करते हैं। और ये देखिए अंदर जो डरा सहमा परिवार है वो ये वीडियो बना रहा है। ये भावली डैम गए थे और वहां पर जब छेड़छाड़ का विरोध किया तो ये गुंडे पीछे पड़ गए। हालांकि अब 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
8: बाइक पर सवार दो शख्स एक कार का पीछा कर रहे हैं। पीछे बैठे शख्स के हाथ में लोहे की रॉड है, एक रॉड बाइक की टंकी पर भी रखी हुई है। कुछ पल बीतते ही पीछे बैठा शख्स लोहे की रॉड को आगे जा रही कार पर दे मारता है और फिर दूसरी रॉड को भी उठाकर कार पर हमला करता है, जिससे कार में बैठा पूरा परिवार सहम जाता है। शोर चीख पुकार मच जाती है। अब कार के अंदर की तस्वीरें देखिए। कार का शीशा बुरी तरह चकनाचूर हो गया, कांच के टुकड़े महिला के चेहरे पर लग गए हैं। कार में बैठे लोग बेहद डरे हुए हैं। हैरान करने वाली और बेहद खौफनाक यह घटना महाराष्ट्र के नासिक की, जहां भवाली वाटरफॉल घूमने गए एक परिवार के साथ हुई इस घटना ने पर्यटकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए,
9: क्योंकि ये जिस तरीके से ये हुआ, जहां पर ये फॉल के पास ये मामला शुरू हुआ था और तकरीबन 10-15 किलोमीटर तक उन लोगों को चेज करना, जिस तरीके से उनकी गाड़ी को तोड़ देना, पूरे विंडो पेंस पे पूरे आयरन रॉड फेंकना, ये एक आम बात नहीं है। मुंबई पुलिस ऐसे मानसून के समय में काफी सारे लोग बाहर घूमने फॉल्स की तरफ जाते हैं, ऐसा इंसिडेंट जनरली देखा नहीं जाता है, तो जाहिर सी बात है नासिक पुलिस भी सकते में है कि आखिर इस तरह से कैसे कोई कर सकता है, और इसकी वजह से काफी ज्यादा एक्शन में वो दिख रही है।
8: आरोप है कि कुछ लोगों ने महिलाओं से छेड़छाड़ की, जब विरोध किया तो मारपीट शुरू कर दी। परिवार वाले किसी तरह वहां से निकले तो आरोपियों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। करीब 15 किलोमीटर तक आरोपित कार का पीछा करते रहे।
10: त्याच्यानंतर आम्ही पुढे आलो. पुढे आल्यानंतर त्यांनी व्हाईट बलेनोमध्ये पुढे येऊन आम्हाला क्रॉस करून आमच्या गाडीच्या काचा फोडायला जे चालू केल्या तर पूर्ण 20 किलोमीटरपर्यंत आमच्या मागे आलेले. पूर्ण रॉड घेऊन पूर्ण मारलेले. आमची गाडी पूर्ण संपवलेली आहे. मुलं ते अजून पण हे आमचे.
11: घटना के बाद डरे सहमे परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस वालों ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू की. आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की, स्थानीय लोगों की मदद ली और 9 आरोपियों को धर दबोचा.
12: जो इसको एक घटना हुई, इस अनुचित घटना के अकॉर्डिंगली जो है वो पहले अंबड़ पुलिस स्टेशन में 0 नंबर से जो FIR रजिस्टर हुआ उसको अकॉर्डिंगली वो तुरंत हमने वीडियो और बाकी टेक्निकल एनालिसिस करके इसमें हमने 9 आरोपी अभी तक निष्पन्न की है, जो कि FIR में 6-7 आरोपी थे. बट इसमें जो शेल्टर देने वाले आरोपी है या फिर एसोसिएट्स है जिनको इन्होंने हेल्प किया था वो भी हमने इसमें आरोपी की है और अभी तक हमने 9 आरोपी इसमें ताबे में लिया है.
11: इस घटना ने एक बार फिर नासिक और इगतपुरी के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए. हालांकि पुलिस का दावा कुछ और ही है.
12: पर्यटन को सुरक्षा ऑलरेडी दी हुई है. पर्यटन के वहां पे बंदोबस्त भी था, वो लोग भी वहां पे पुलिस को मिले. बस इस घटना में जो है ये घटना कुछ 7-8 किलोमीटर दूर जाके जहां पे कोई मोबाइल लोकेशन नहीं आ रहा था उस पॉइंट पे हुई है. और जो दूसरा पॉइंट है इसमें मौका के अकॉर्डिंगली जो हम कार्रवाई करने वाले हैं या फिर जो है उसके पूरे सेक्शंस देखे जाएंगे और देखने के बाद जो है अभी तो स्ट्रिंजेंट सेक्शन लगा है वो भी हम उसकी कार्रवाई आगे.
11: नासिक के इस परिवार के साथ जो हुआ वो बेहद खौफनाक था. 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. कुछ और आरोपियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है. नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ आज तक ब्यूरो.
7: सड़कों पर जिस तरह के मामले सामने आते हैं ना उससे सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं. इंदौर से ठीक एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक गाड़ी जा रही है लेकिन एक मामूली सी बात पर एक शख्स गाड़ी के बोनट पर बैठ जाता है, कांच की बोतल से गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और परिवार को मारने की कोशिश करता है.
13: कार की बोनट पर एक शख्स बैठा है, उसके हाथ में शराब की बोतल है. कार में बैठे परिवार वाले कुछ भी बोलते उससे पहले ही ये शख्स कार के शीशे को बोतल से तोड़ देता है और कार में बैठे पति पत्नी बेहद घबरा जाते हैं. उसका डर उसकी आवाज से समझा जा सकता है. ये खौफनाक तस्वीरें इंदौर के मोती तबेला इलाके की हैं, जहां रोड रेज का बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक गाड़ी में मामूली कट लग जाने की बात को लेकर इस शख्स ने एक कार पर हमला कर दिया. आरोपी ने कार के शीशे तोड़ दिए और कार के बोनट पर चढ़कर जमकर हंगामा करता नजर आया. इस वक्त उसका एक साथी भी वहीं मौजूद था. इस दौरान कार के अंदर बैठे दंपति घबरा गए लेकिन बाहर नहीं निकले. उन्होंने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया. पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. एक बार फिर पूरा वीडियो देखिए और समझिए कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था.
14: मैं वाइफ के साथ अपना घर से सपना संगीता आइसक्रीम खाने हम लोग जा रहे थे. उसी बीच ये दो व्यक्ति मेरी गाड़ी को कट मारते थे और कुछ इशारे करते थे आगे गया. जैसे मैं आगे गया उन्होंने अपनी गाड़ी धीरे करी और मुझे रोकने की कोशिश करी. मैं नहीं रुका तो इन्होंने गाड़ी पर हमला किया. हमला होने के बाद इन्होंने मैंने कांच पीछे करके इनसे बचने की कोशिश करी, उनसे पूछने की कोशिश करी, पर ये लोग आक्रोश में थे इसलिए मैं गाड़ी को आगे जैन मिठाई भंडार तरफ ले गया. ले जाने के बाद इन्होंने अपनी गाड़ी आगे सामने खड़ी कर दी और मुझे गाली गलौज करी और मारने की धमकी दी. मारने की धमकी के साथ साथ ये इशारे कर रहे थे जान से मारने के, सभी के हाथ दिखा रहे थे. उसके बाद मैं जैसे ही गाड़ी आगे लेने गया तो वो व्यक्ति मेरी गाड़ी के ऊपर आया. गाड़ी के ऊपर आने के बाद उसने गाड़ी के सांस पर बोतल मारी.
13: परिवार वालों की शिकायत के बाद पुलिस एक्शन में आई, आरोपी युवक की तलाश शुरू की और कुछ ही देर में आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया.
15: 9 बजे की घटना है. ये खानपुरा क्षेत्र में रहते हैं और केसरबाग रोड तरफ से ये टावर चौराहे की तरफ जा रहे थे. तभी रास्ते में मोती तबेला के पास में GMB के पास में 2 अज्ञात बाइक सवार आए और इनकी इनके वाहन जो टाटा हैरियर गाड़ी है उसके आगे इनकी बाइक को लगाकर गाड़ी रोकी और एक बॉटल से जो इनकी गाड़ी की स्क्रीन है उसको खोला गया, इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस पर से थाना राजूहार पर अपराध क्रमांक 226/26 धारा 296, 326, 351, 3 और 119 एक का पंजीबद्ध किया गया।
7: और अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं और ये बड़ी खबर है संभल में, संभल से जहां पर अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी संभल में कई तरह के एक्शन देखने को मिले हैं, अब अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें भी सामने आई है, वो हम आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश का संभल जो पिछले काफी वक्त से चर्चा में, अब यहां पर ये देखिए ये पीला पंजा और ये बताया जा रहा है कि अवैध कब्जा यहां पर किया गया था, सरकारी संपत्ति पर किया गया था, तो अब इसको कब्जा मुक्त किया जा रहा है।
16: एक्शन के दौरान पूरी सतर्कता बढ़ती जा रही है कि किसी भी तरह से जो माहौल है वो खराब ना हो या फिर ऐसा कोई हादसा ना हो जिससे प्रशासन की कोई लापरवाही की बात कही जाए। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो देखिए जो ईदगाह है वो आपको तस्वीरों में ध्वस्त होती हुई जो है नज़र आएगी और इसी ईदगाह को ध्वस्त करने के लिए जो पूरी प्रशासन की बड़ी टीम है वो इस वक्त मौके पर जो पहुंची है, जहां तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह के साथ ही नायब तहसीलदार दीपक जुड़ैल और तमाम जो अलग अलग थानों की पुलिस फोर्स है वो गाँव में जो तैनात की गई है। और देखिए इसी ईदगाह को लेकर प्रशासन के द्वारा धारा 67 की कार्यवाही यहाँ पर शुरू की गई थी। हालांकि फिलहाल अगर जो यहाँ पर देखा जाए तो देखिए पीछे की तरफ आपको देखिए भारी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर आपको जो तैनात नजर आएंगे और इसी तरह से जो पूरे इलाके में पुलिसकर्मियों की तैनाती है वो की गई है जिससे कि किसी भी हाल में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, माहौल ख़राब ना हो, तो उसका विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। यहाँ आप देखेंगे तो देखिए लगातार पुलिसकर्मियों की निगाह बनी हुई है, दूसरी तरफ सीसीटीवी कैमरे और जो ड्रोन कैमरे उसको नज़र रखी जा रही है। फिलहाल देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो ईदगाह है वो यहाँ पर मलबे में तब्दील होना शुरू हो चुकी है और इसी ईदगाह को लेकर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई और अब यहाँ पर तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह और नायब तहसीलदार दीपक जुड़ैल की मौजूदगी में इस पूरी ईदगाह को ध्वस्त यहाँ पर जो किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और भारी संख्या में पूरे इलाके में जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो देखिए लगातार, हालांकि अभी अब से कुछ देर पहले यहाँ जो ग्रामीण थे वो भी यहाँ मौके पर पहुँचे, उनकी तरफ से ये कारण भी पूछा गया कि क्यों कार्रवाई की जा रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से सीधे तौर पर ये हवाला दिया गया कि धारा 67 के तहत ये पूरी कार्रवाई जो है की जा रही है उसको अंजाम दिया जा रहा है और यही वजह है कि अब यहाँ पर तहसीलदार की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई को किया जा रहा है। देखिए तहसीलदार संभल धीरेंद्र कुमार सिंह भी मौके पर मौजूद हैं। सर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, सर क्या कुछ ये पूरा मामला है?
17: इस ग्राम में भूमाफियाओं की बहुतायत है और इनके द्वारा अभी इसके पहले आपने देखा कि एक व्यक्ति एक गरीब आदमी के बैनामे की भूमि पर कब्जा कर रखा था, उस कब्जे को आज हटवाया गया और यह गाटा संख्या 208 और 210 कब्रिस्तान की के नाम से चकबंदी में रिजर्व भूमि थी और आप देख रहे हैं कि यह NH के किनारे स्थित है, इसलिए इस भूमि पर किसी प्रकार से कब्जा करने के लिए इन लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर ईदगाह बनवाई और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मिट्टी वगैरह डाल करके इस पर भविष्य में प्लाटिंग करने की योजना थी, आज उन सभी योजनाओं को ध्वस्त करते हुए या जमीन कब्जा मुक्त कराते हुए कब्रिस्तान के प्रयोजन हेतु वापस उपलब्ध करा दी जाएगी ग्राम सभा को।
16: तो ये देखिए तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह थे और देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए जो इस ईदगाह की जो पूरी मीनार थी फिलहाल उसको यहाँ पर पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है इस बुलडोजर एक्शन के जरिए और आप यहाँ देखेंगे तो देखिए अब से कुछ ही देर पहले ये मीनार जो है यहाँ पर जो खड़ी हुई आपको जो तस्वीरों में नजर आ रही थी जो कि 30 से 40 फीट ऊंची पूरी मीनार थी, लेकिन अब इसको बुलडोजर एक्शन के जरिए ध्वस्त कर दिया गया है और प्रशासन की मौजूदगी में, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को किया जा रहा है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक।
7: देखिए कोर्ट के आदेश के बाद ये अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है और हमारे सहयोगी अभिनव बता रहे थे कि किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और जब बात की जा रही है तो ये भी कहा गया कि कई जो गरीब लोग हैं उनकी बैनामे वाली संपत्ति पर कब्जा किया गया और उसके बाद प्रशासन से जब गुहार लगाई गई तो प्रशासन ने ऐसे तमाम जो अवैध कब्जे हैं उनको अतिक्रमण मुक्त किया है। पीला पंजा से पहले भी आपने देखा होगा संभल में कई जगहों पर चला है और एक बार फिर से जो अवैध ईदगाह थी उस पर एक्शन हुआ और उसको आप देख सकते हैं कि कैसे उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है। लेकिन ऐसे में कोई अराजक तत्व फायदा ना उठाए तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई थी, पुलिस के इंतजाम किए गए थे कि कहीं कोई माहौल बिगाड़ ना सके। और यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक,
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
0: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ।
19: Hey, it's your ceiling vent, so I'm dripping. Could be the rain, could be the upstairs bathroom. Yikes. You could hire the guy your neighbor recommended, but I'm pretty sure that's just his cousin. Do we know if he's licensed, or does he just own a ladder?
20: Listen to your home. Go with Thumbtack. Upload a photo or voice note, and we'll diagnose your project and match you with the right pro for the job. Thumbtack. We know homes. Hire the right pro today.
21: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
22: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
7: चीन के हेबेई प्रांत के चेंगड़े में बाढ़ का पानी कारों को अपने साथ बहा ले गया। टाइफून बाबी की बात यहां पर की जा रही है, जो कि बताया जा रहा है कि चीन के इस साल टकराने वाले सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक है और इसकी वजह से कई कारें बह गईं और इसके साथ ही बाढ़ का असर भी देखा जा रहा है। प्रशासन की तरफ से लोगों को सावधान बरतने के लिए कहा गया है और चीन के कई प्रांतों में इस तूफान का असर देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है।
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
23: At Buyers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
21: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
22: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
24: Oh, sorry.

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn, and you're instantly connected.
3: This is 80s hits, exclusively on TuneIn.
2: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
4: You're listening to MSNBC.
2: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now, and thank us later.
5: Jahan friends, isayat, sona, masala ya vistar. 1498 mein kya thi Vasco da Gama ki mancha? Madhumakhi jaise gore jo shahad lekar aa rahe the, Bharat ko dank marna shuru kar diya. Aur bewakoof rajaon ka fayda uthakar is desh ko gulam banaya. Lekin Mir Jafar aur Mir Qasim ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया. कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक, तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए. मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर.
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

मध्य प्रदेश के धार्मिक मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज के लिए दी जाएगी भोजशाला परिसर के पास में खुली जगह। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, भोजशाला में नमाज पर रोक बरकरार रहेगी। दिल्ली के अंकित हत्याकांड में ताहिर हुसैन को दोषी करार दिए जाते ही बीजेपी का हल्ला बोल, कहा ताहिर केजरीवाल का दाहिना हाथ, वो सिर्फ एक्टर डायरेक्टर कोई और था। गाजियाबाद में पिंक बूथ के पास तड़प तड़प कर घायल शख्स की गई जान, लहूलुहान होने के बाद भी देखती रही पुलिस वर्दी वालों की संवेदनहीनता पर सवाल। ईरान से जंग में पूरी ताकत से उतरा अब अमेरिका, लगातार तीसरे दिन एयर स्ट्राइक, कुवैत बहरीन में ईरानी ड्रोन का खौफ, ट्रंप बोले 2-3 हफ्तों तक चलेगी जंग, होर्मुज मिलेंगे 20% टैक्स। T20 में हुई करारी हार का बदला लेने इंग्लैंड के खिलाफ थोड़ी देर में मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया, गिल की कप्तानी में रोहित, विराट और बुमराह पर नजर।

0: मैं हूं राजीव ढोंडियाल और अब सुपर फास्ट अंदाज में शुरुआत करते हैं 100 शहर 100 खबर के।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: भोजशाला मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, मामला संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से धैर्य रखने की अपील, कहा कि सोच समझ कर टिप्पणी की आवश्यकता वरना गलत संदेश जाएगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार, परिसर में नमाज पढ़ने पर रोक रहेगी जारी, 1 से 3 बजे के बीच अलग जगह पर व्यवस्था का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि एसआई कोर्ट की अनुमति के बिना भोजशाला परिसर में कोई भी संरचनात्मक बदलाव नहीं कर सकती और अब इस मामले में सुनवाई 3 हफ्ते के बाद होगी। बाकी पूर्व विधानसभा उपचुनाव से पहले गरमाई सियासत, जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर की संपत्ति को लेकर बीजेपी और आरजेडी ने खड़े किए सवाल। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए कहा कि करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि आरजेडी ने भलाई ना करने की बात कही। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर ट्रस्ट में मंथन, सूत्रों के मुताबिक श्रद्धालुओं की भेंट लौटाने के विकल्प पर भी विचार कर श्रद्धालुओं ने ट्रस्ट पर उठाए थे सवाल। सूत्रों का कहना है कि श्रद्धालुओं ने भेंट की वस्तुओं की रसीद नहीं मिलने के आरोप लगाए और भेंट की वस्तुएं सुरक्षित न रखने का भी आरोप था। सूत्रों के मुताबिक भेंट प्रबंधन को लेकर ट्रस्ट स्तर पर मंथन जारी है, शिकायतों के बाद विकल्पों पर विचार कर रहा है ट्रस्ट। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट पर अपडेट, अब चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा का विवरण हटाया गया है, इस्तीफे के बाद ये नाम हटे। वेबसाइट पर अब 12 पदाधिकारियों और सदस्यों का विवरण है, महंत नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष के रूप में दर्ज, कृष्ण मोहन अंतरिम महासचिव के रूप में दर्ज है। राम मंदिर दान खबर मामले में एसआईटी जल्द सौंपेगी अंतरिम रिपोर्ट, दान खबर मामले में गिरफ्तार जिम्मेदारी जल्द तय करेगी एसआईटी। दान प्रबंधन व्यवस्था में सुधार की सिफारिश भी कर सकती है एसआईटी, वित्तीय रिकॉर्ड और बैंक लेन देन की जांच भी एसआईटी कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की भी जांच जारी, गवाहों और आरोपियों के बयान का भी जांच का हिस्सा है। दान प्रबंधन की हर प्रक्रिया की जांच कर रही है एसआईटी, निगरानी और प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय करेगी एसआईटी। दान प्रबंधन में एसओपी के पालन की जांच कर रही है टीम, आंतरिक निगरानी की चूक भी एसआईटी की निगरानी में। 2020 दिल्ली दंगों मामले में आईबी अधिकारी की हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला सामने आया, इसके बाद सियासी घमासान, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी केजरीवाल पर बोला हमला। दिल्ली सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता कमल मिश्रा ने ताहिर हुसैन को एक्टर बताते हुए डायरेक्टरों तक पहुंचेंगे ये कहा। कमल मिश्रा ने दावा किया कि दिल्ली दंगों के दौरान सड़कें बंद करने वालों को केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का समर्थन मिला था। पहलगाम आतंकी हमले में बड़ा एक्शन लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, मुकदमे का ट्रायल शुरू। एनआईए ने उसके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट तैयार कर उसे आरोपी बनाया है, पहलगाम हमले का उसे मास्टर माइंड बताया गया, भगोड़ा घोषित करवाने की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। संभल जामा मस्जिद केस में मस्जिद प्रबंधन समिति का बड़ा झटका लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी। संभल में ईदगाह पर प्रशासन का बड़ा बुलडोजर एक्शन, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण पर एक्शन। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बीजेपी ने कसे कमर, बीजेपी ने तैयार किया 8 संगठनात्मक कार्यक्रमों का रोडमैप, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में तय हुई रणनीति। यूपी में बीजेपी 19 से 22 जुलाई तक हर विधानसभा में बूथ सम्मेलन करेगी आयोजित, बूथ मैपिंग और पुराने कार्यकर्ताओं से संपर्क भी अभियान में शामिल। 80 से ज्यादा बूथ वाले क्षेत्रों में बनेंगे नए मंडल बदले, मतदाता आंकड़ों के आधार पर भी बूथ पुनर्समायोजन होगा और पूरा कार्यकर्ताओं का संपर्क अभियान तेज करेगी बीजेपी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 के अस्थायी सदस्य के पद के लिए अपना अभियान किया शुरू, बोले हमारा शांति विजन ही दुनिया को संकट से बचाएगा। कैंपेन की शुरुआत करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट संदेश दिया, भारत दुनिया को अधिक सुरक्षित, शांतिपूर्ण, न्यायसंगत माहौल के निर्माण के लिए काम करेगा। 2028-29 कार्यकाल के लिए यूएनएससी के चुनाव जून 2027 में होंगे, एशिया प्रशांत समूह की एकमात्र सीट के लिए भारत और ताजिकिस्तान के बीच में मुकाबला। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर एक रिपोर्ट आई है, भारत और अमेरिका दोनों ने इसे फर्जी बताया है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने किसी भी ट्रेड प्रस्ताव को ठुकराया ही नहीं है। अमेरिका के राजदूत सर्गियो गोर ने भी फेक न्यूज पर नाराजगी जताई, कहा हमारी बातचीत जारी है, ट्रेड डील पर जल्द लगेगी मुहर, प्रतिबद्धता फिर से दोहराई। ईरान के दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास के में तनाव की खबरें सामने आई है, तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक शहर में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। पूर्वी बंदर अब्बास में विस्फोटों के चलते नुकसान या हताहतों को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, साथ ही कई जहाजों को निशाना बनाया गया। हॉर्मुज में यूएई के तेल टैंकर पर ईरान की तरफ से हमला, एक भारतीय नाविक की मौत, 8 अन्य घायल। अमेरिकी हमलों के बाद से ईरान ने भी किया पलटवार, ईरान ने एक बार फिर से कुवैत पर किया हमला। ईरान के सरकारी टीवी ने दावा किया कि कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमले किए गए, हॉर्मुज में अमेरिकी जहाजों को क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। ईरान पर ताजा अमेरिकी हमलों से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ी धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा कि हम ईरान पर जोरदार हमला करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स लगाएंगे। ट्रंप ने जहाजों पर टैक्स लगाने पर कहा कि अमेरिका इस रणनीतिक समुद्री मार्ग की सुरक्षा करेगा, इसलिए सुरक्षा पर होने वाले खर्च तो जहाजों से वसूले जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब गार्डियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट की भूमिका निभाएगा और ये टैक्स सभी कार्गो जहाजों पर लागू होगा, पर ईरान के जहाजों को इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। अमेरिका ने कहा कि आज से ईरानी पोर्ट्स पर नाकेबंदी शुरू करेंगे, यूएस ने भी जानकारी दी। ट्रंप ने सभी न्यूट्रल जहाजों को चेतावनी दी है कि नाकेबंदी लागू होने से पहले वो इस क्षेत्र से बाहर निकल जाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दुनिया में हमारी सेना सबसे मजबूत है, हमें कोई भी दबा नहीं सकता, बल्कि हम तो सब पर दबाव डाल सकते हैं। IRGC ने कहा हॉर्मुज में दखल देकर अमेरिका ने दुनिया भर में तेल गैस सप्लाई को खतरे में डाला है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान हमेशा से हॉर्मुज का संरक्षक रहा है, आगे भी रहेगा। अपने पोस्ट में अराग़ची ने 20% शुल्क को ज्यादा बताते हुए कहा कि ईरान इस मामले में निष्पक्ष और उचित रुख अपनाएगा। हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल गैस शिपिंग मार्गों में से एक। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि सैन्य कार्रवाई अभी भी जारी रह सकती है, सैन्य अभियान 2 से 3 हफ्तों तक चलने का भी दावा किया। ट्रंप ने ईरान पर हमले जारी रखने की चेतावनी देते हुए पिकेक्स माउंटेन को संभावित निशाना बताया और ईरान को बड़े हमले के लिए तैयार रहने की वार्निंग दी गई। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हो रहे जवाबी हमलों के बीच में तेल की कीमतें 2% बढ़कर 4 हफ्तों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष में अब तक 14 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि घायल सैनिकों की संख्या 400 से ज्यादा। यूएई ने ओमान में मुंबासा और अल बहिया नाम के टैंकर्स पर हुए हमले की निंदा की, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का इसे गंभीर उल्लंघन बताया गया। विद्रोहियों पर सैन्य कार्रवाई के लिए

नेपाल के तराई और पहाड़ी इलाकों में लगातार भारी बारिश के चलते पश्चिम चंपारण में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा। वाल्मीकि नगर बैराज में 1,70,000 क्यूसिक पानी डिस्चार्ज किया गया। बगहा में फिलहाल स्थिति नियंत्रित है, लेकिन प्रशासन ने गंडक नदी के तटवर्ती और बाढ़ संभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क किया है। अरुणाचल प्रदेश में नदी में पानी छोड़े जाने के बाद से असम के धेमाजी और लखीमपुर जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अचानक जलस्तर बढ़ा, कई निचले इलाके प्रभावित हुए। गाजियाबाद में मदद की गुहार के बीच में युवक की मौत। पिंक बूथ पर कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल। सूत्रों के मुताबिक एक ऑटो चालक से विवाद में ये युवक भाग रहा था। युवक द्वारा मदद के लिए दरवाजा खटखटाया गया, शीशा टूटा, उसका हाथ कट गया और अत्यधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया 40 मिनट से ज्यादा समय तक तो मदद ही नहीं मिली। दिल्ली में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। पीतमपुरा शालीमार बाग पर मार्ग पर कार्रवाई हुई है और सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। अवैध रूप से बनी मजार पर भी एक्शन हुआ है। निर्माण पर दिल्ली सरकार की सख्त कार्रवाई। दिल्ली के सेशन जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई। जज सिंघल को किया गया सस्पेंड। बर्धमान के 300 साल पुराने सर्वमंगला मंदिर में चोरी दान पात्र तोड़कर लगभग 1,00,000 रुपए लेकर बदमाश फरार। पालघर में तेज हवा बनी आफत। उड़ता हुआ टिन पात्र एक महिला पर जा गिरा। खौफनाक हादसा सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के धाराशिव में दूध मिलावट का बड़ा खेल हुआ है। 6 महीने में 23 करोड़ लीटर दूध में मिलावट की आशंका है। बिजनौर में कार डंपर की जबरदस्त टक्कर के बाद बवाल। पुलिस से धक्का मुक्की और हंगामे की तस्वीरें आई सामने। वसई में पार्किंग में खड़ी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में अचानक आग लगी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बीकानेर में गैंगस्टर रोहित गोदारा के पैतृक घर, उस पर अज्ञात लोगों ने इसे गिरा दिया। देर रात यह एक्शन हुआ। पुलिस ने प्रशासनिक कार्रवाई से फिलहाल किया इनकार। फरार गैंगस्टर रोहित गोदारा के पिता और परिजन घर पर नहीं है। सतना में नवजात को एक्सपायर्ड दवा चढ़ाने का आरोप है। पर्ची में मेल की जगह फीमेल लिखा। मौत के बाद आक्रोशित परिवार वालों का हाईवे पर हंगामा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गैलेक्सी वेगा सोसाइटी में एक टावर की लिफ्ट अटक गई। 4 बच्चियों ने घबराकर पढ़ी हनुमान चालीसा। बिहार के बेगूसराय में पुलिस की दबंग गई। भूमि विवाद की कार्रवाई के दौरान एक महिला के साथ दुर्व्यवहार, वीडियो वायरल। नासिक में टूरिस्ट स्पॉट पर परिवार पर जानलेवा हमला। भावली वाटरफॉल घूमने गए परिवार पर हमला। युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर भी हमला। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कार से पहले स्कूटी सवार को मारी गई टक्कर, फिर अनियंत्रित होकर स्कूल बस में जा घुसी एक कार, एक की मौत। राजस्थान के बाड़मेर में तेज रफ्तार डंपर आगे चल रही कार में जा घुसा, 5 लोगों की मौत, 3 घायल। बांदा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, चित्रकूट जा रहे 2 श्रद्धालुओं की मौत। भोपाल में दिन दहाड़े दुकान के बाहर बैठे कपड़ा कारोबारी पर चाकू से हमला। अचानक पीछे से आए 2 बदमाशों ने कई बार चाकुओं से गोदा। गुजरात के अंबाजी मंदिर में दान चोरी का पुराना सीसीटीवी वायरल। युवक 500 के नोटों का एक बंडल अपने पैर के नीचे दबाता दिखाई दिया। अकोला में नाले की खुदाई के दौरान मिला पुराना हैंड ग्रेनेड, बम निरोधक दस्ते ने कब्जे में लिया। इंदौर में मामूली कहा सुने में कार और स्कूटी सवार में विवाद। सड़क किनारे खड़े शख्स को हटने के लिए कहा गया तो युवक ने कार पर चढ़कर शीशा फोड़ दिया। जामनगर में हाईवे पर महिला को कार ने मारी जोरदार टक्कर, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के बांदा में नाले में डूबने से 2 बहनों की दर्दनाक मौत, खेलते समय गड्ढे में डूब गई बच्चियां। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला अब से थोड़ी देर बाद वेस्टइंडीज में खेला जाएगा मैच। इस मुकाबले में रोहित शर्मा, विराट कोहली पर सबकी निगाह, जो वनडे में वापसी करेंगे। जसप्रीत बुमराह 968 दिनों के बाद वनडे में वापसी करेंगे। भारत की गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह संभालेंगे। मोहम्मद सिराज टीम में नहीं, ऑलराउंडर की भूमिका में शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर के बीच मुकाबला। भारतीय टीम का वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड है। मेन इन ब्लू ने अंग्रेजों के खिलाफ अब तक खेले गए 5 वनडे मुकाबले जीते हैं। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मैच से पहले कहा कि विराट कोहली 2027 वनडे वर्ल्ड कप की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा, रोको को बताया टीम की अहम कड़ी। 7 साल के बाद फिर बड़े पर्दे पर गोविंदा की एंट्री फिल्म रूपा और दुनियादारी में आएंगे नजर। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंदा ने दी जानकारी। ऑपरेशन सफेद सागर का टीजर रिलीज। कारगिल युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स के मुश्किल ऑपरेशन को सीरीज में दिखाया जाएगा।
वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय का ट्रेलर हुआ रिलीज, अभिमन्यु सिंह, अर्चना पूरन।

सिंह, नवीन कस्तूरिया, प्रसन्ना बिष्ट अहम भूमिका। इम्तियाज अली की बेटी इदा ने बॉयफ्रेंड के साथ सगाई कर ली, इंस्टाग्राम पर तस्वीरें की शेयर। परिवार के साथ लंदन वेकेशन पर दिखाई दी प्रियंका चोपड़ा, बेटी मालती ने मां के बालों के क्लिप निकाली। ईरान पर अमेरिकी हमले का नया दौर जारी है और बड़ी खबर आपको देते हैं कि अब यह लड़ाई होर्मुज में और ज्यादा तेज हो गई है। अमेरिका ने पहली बार एक ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल किया है जो अब तक इस लड़ाई का हिस्सा नहीं था। आपको उस अमेरिकी हथियार की और उससे हुई तबाही की हम तस्वीर दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे ईरान के एटॉमिक सेंटर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का नया प्लान क्या है, और बात मुज्तबा खामिनेई की भी करेंगे जिन्हें लेकर सस्पेंस गहराया हुआ है। अमेरिका का मिशन बेहद स्पष्ट रहा है और वो हर हाल में ईरान को तबाह करना चाहते हैं, उनकी सैन्य क्षमता को पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहते हैं और इसके परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं परमाणु केंद्रों पर, जहां बटिया मेट करने की प्लानिंग अमेरिका की है। इसी संकल्प के साथ डोनाल्ड ट्रंप लगातार अब ऑर्डर दे रहे हैं, ईरान पर अमेरिकी सेना टारगेट सेट कर रही है। युद्ध विराम के बाद शांति की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब तीसरी लहर में अमेरिकी फौज ने 3 बार ईरान पर बड़े हमले किए हैं और अब सामने आ रहा है कि अमेरिका ईरान के नए निर्माणाधीन परमाणु केंद्र को भी तबाह करने जा रहा है।

0: ईरान के सेफ जोन पर अमेरिकी टारगेट, जहां ईरान का यूरेनियम भंडार, उस ओर तैनात हथियार। ट्रंप ने चेताया, अब पिकेक्स माउंटेन होगा तबाह। अमेरिकी फौज की तैयारी, ईरान के सामरिक केंद्र पर होगा बड़ा हमला। जब तक ईरान अपने मिशन एटम पर अडिग है, तब तक अमेरिका के मिसाइल और लड़ाकू विमान गरजते रहेंगे, बम बरसते रहेंगे। 28 फरवरी को शुरू हुई लड़ाई का अहम मुद्दा था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। तब से अब तक अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह तबाह करने की मुहिम में जुटा हुआ है, और अब उसका अगला मोर्चा बनने जा रहा है पिकेक्स माउंटेन। ट्रंप ने कह दिया है कि अमेरिका ईरान में पिकेक्स माउंटेन को नष्ट कर देगा। दरअसल पिकेक्स माउंटेन अचानक ट्रंप के लिए इतना अहम क्यों हो गया? हॉर्मुज, चल डमरू मध्य, बंदर अब्बास, खार द्वीप और केशम द्वीप जैसे अहम सामरिक आर्थिक ठिकानों पर हमले के बीच अमेरिका को पिकेक्स माउंटेन के बारे में ऐसा क्या पता चल गया जो ट्रंप ने मिसाइलों का मुंह उस माउंटेन की तरफ मोड़ने की धमकी दे डाली? आखिर वो पिकेक्स माउंटेन इतना अहम क्यों है? तो जान लीजिए उस पिकेक्स माउंटेन के बारे में। खबर है कि ये ईरान का बेहद गुप्त और भूमिगत एटॉमिक फैसिलिटी है, नतांज परमाणु केंद्र से महज 1.5 किलोमीटर दूर है। शक है कि ईरान यहाँ यूरेनियम संवर्धन या सेंट्रीफ्यूज का निर्माण भी करता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान के वैज्ञानिक 24 घंटे अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाने में जुटे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कह दिया कि अमेरिका ईरान में पिकेक्स माउंटेन को नष्ट कर देगा। ट्रंप ने साफ शब्दों में ईरान को बता दिया है कि अमेरिका अब पिकेक्स माउंटेन को नष्ट करने जा रहा है। ईरानी तैयार रहें।
1: ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध एक बार फिर गहराता जा रहा है, और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पिकेक्स माउंटेन की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि वो पिकेक्स माउंटेन को निशाना बनाएंगे। पिकेक्स माउंटेन, जो ईरान का सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर बंकर माना जाता है, ये माउंटेन ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी नतांज के नजदीक है। ग्रेनाइट से बना हुआ ये पहाड़ और इसके अंदर का बंकर इतना सुरक्षित और गहराई में है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मिसाइलें भी इसे आसानी से तबाह नहीं कर सकती।
0: पिकेक्स माउंटेन को लेकर अमेरिका की चिंता बढ़ी हुई है, इसकी ठोस वजह भी है। वैसे तो आधिकारिक तौर पर इस ठिकाने पर यूरेनियम संवर्धन को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट को भरोसा है कि इसका इस्तेमाल यूरेनियम संवर्धन या उसके भंडारण के लिए किया जाता है। जून 2025 की ये तस्वीरें आपको याद होंगी, तब अमेरिका और इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला बोला था। खबर है कि उसी के बाद ईरान पिकेक्स माउंटेन को डेवलप कर रहा है। आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि ईरान ने अपने यूरेनियम भंडार का कुछ हिस्सा शायद पहले ही पिकेक्स माउंटेन सेंटर पर छिपा दिया हो। जानकारी के मुताबिक पिकेक्स माउंटेन पुराने परमाणु केंद्रों की तुलना में बहुत ज्यादा सुरक्षित और गहरा है। ईरान के दुश्मनों के लिए इस केंद्र को पारंपरिक हथियारों से तबाह करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होगा। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बंकर बस्टर बम भी बेदम हो जाएगा, क्योंकि पिकेक्स माउंटेन का अंदरूनी हिस्सा ग्रेनाइट चट्टानों के नीचे करीब 2000 फीट ज्यादा गहराई में स्थित है। तो क्या अमेरिका पिकेक्स माउंटेन के लिए अपने ऑपरेशन में जमीनी सेना का इस्तेमाल करेगा?
2: जो वो नाम देते हैं, वो कोहे कोलंग का नाम लेते, को का मतलब है वो बर्फ, बर्फीले की बर्फ की बात करते हैं जो उनकी भाषा में है। अभी ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो फिजाइल मटेरियल है, जो इनरिच्ड यूरेनियम है, उनका सुनने में आया है, अभी सच्चाई तो किसी को मालूम नहीं है। ये तो सिर्फ सब लोग अपना असेसमेंट कर रहे हैं, अमेरिका भी अपना असेसमेंट कर रहा है कि वो जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो उस इस पिकेक्स माउंटेन के नीचे रखा गया है तकरीबन 2000 फुट पर, और ये माउंटेन ग्रेनाइट का है। तो जो कोई भी हथियार जो अमेरिका के पास है वो उस डेप्थ तक नहीं जा सकता है, राइट? तो इसलिए अभी अमेरिका चाहता है कि जाके अगर वो उस डेप्थ पर ना जाए तो कम से कम उसको किसी तरह से न्यूट्रलाइज कर दे। अभी वो जो उसके रास्ते हैं वो बंद कर दे या कुछ और है।
0: ट्रंप का ताजा बयान संकेत देता है कि अमेरिका का अगला टारगेट पिकेक्स माउंटेन है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल पिकेक्स माउंटेन में कोई गतिविधि नहीं दिख रही। ट्रंप के शब्दों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम ठीक से नहीं चल रहा। ट्रंप की धमकी से साफ है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका नई और बड़ी चोट करने की तैयारी कर चुका है, और ऐसी सूरत में युद्ध के लंबा खिंचने की पूरी आशंका है। आज तक ब्यूरो।
3: अब खबर राजस्थान के बीकानेर से है, जहां पर गैंगस्टर रोहित गोदारा के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बीकानेर के लूणकरणसर में रोहित गोदारा का घर है, वहां पर बुलडोजर चल गया रात में। लेकिन ये बुलडोजर किसने चलाया ये नहीं पता चला है कि आखिर गैंगस्टर के घर पर ये बुलडोजर किसने भेजा, किसने चलवाया, क्योंकि प्रशासन तो अभी किसी भी तरह के एक्शन से इनकार कर, प्रशासन कह रहा है कि बुलडोजर हमने नहीं चलाया, हमने ये मकान नहीं गिरवाया, क्योंकि ये तो वैध मकान है और तमाम पेपर्स भी उन्हीं के नाम है और पेपर भी सही। तो ऐसे में ये एक्शन प्रशासन ने नहीं करवाया तो किसने करवाया, ये बड़ा सवाल है। हालांकि अंदर खाने तमाम दूसरी तरह की बातें भी चल रही हैं।
4: गैंगस्टर रोहित गोदारा का पुश्तैनी घर पूरी तरह तबाह हो गया है, पूरा घर टूट गया है, मलबा बन गया है, क्योंकि देर रात बीकानेर के लूणकरणसर में रोहित गोदारा के घर पर बुलडोजर चला है। इन तस्वीरों को देखिए, पूरे घर के हर हिस्से को बुलडोजर से ढह दिया गया है। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये कि गैंगस्टर रोहित गोदारा के घर पर बुलडोजर किसने चलाया, इसका किसी को पता नहीं है। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई देर रात हुई। स्थानीय लोगों का दावा है कि देर रात कुछ लोग जेसीबी मशीन और कई वाहन लेकर गैंगस्टर रोहित गोदारा के पैतृक घर पहुंचे और इसके बाद उसके आलीशान मकान को पूरी तरह तोड़ दिया। सुबह जब आसपास के लोगों ने मकान को टूटा देखा तो उन्होंने मौके के वीडियो बनाए जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। घटना के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने किसी भी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई से साफ इनकार किया है।
5: असलियत तो ये कि प्रशासन नहीं चलाया है, लेकिन प्रशासन के सूत्रों का कहना है कि रोहित गोदारा जिस तरह से गैर कानूनी काम कर रहा है वो उस लिहाज से उन्होंने इस तरह से जवाब देना उचित समझा है। हालांकि इसे अज्ञात कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले रोहित गोदारा के माँ और बाप दोनों को अलग अलग जेलों में बंद कर दिया गया था गिरफ्तार करके, क्योंकि ये इमारत वैध थी और सही जमीन पर बनी हुई थी, कोई कागजात पुलिस के पास थे नहीं। मगर रोहित गोदारा को तोड़ना है, रोहित गोदारा जिस तरह से अपने गैंग को आगे बढ़ा रहा है उस लिहाज से कार्रवाई की है प्रशासन ने, उसको एक संदेश देने के लिए कि तुम जिस तरह से हरकतें कर रहे हो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन पुलिस और प्रशासन इसे अपनी कार्रवाई इसलिए नहीं मान रहा है कि वहां पर इस मकान के खिलाफ कोई दस्तावेज नहीं थे जिसे तोड़ा गया है।
4: ऐसे में साफ नहीं हुआ है कि आखिर रोहित गोदारा के पुश्तैनी घर पर बुलडोजर किसने चलाया, देर रात रोहित गोदारा के घर को किसने ढहाया। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
3: बड़ी खबर आपको देते हैं, बर्मिंघम वनडे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। थोड़ी ही देर बाद यानी कि 3:30 बजे पहली बॉल डलेगी और टीम इंडिया पहले गेंदबाजी कर रही है। बड़ी खबर आपको देते हैं, स्क्वाड बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर एक बार फिर से इसमें दिखाई दे रहे हैं। कुलदीप को मौका नहीं दिया गया, जबकि वॉशिंगटन सुंदर इससे पहले T20s में लगातार फेल हुए हैं एज अ बैटर भी एज अ बॉलर भी। लेकिन बर्मिंघम में जहां पर बिल्कुल दूसरी टीम ही एक तरीके से कह सकते हैं, कैप्टन दूसरे हैं, टीम अलग है, रोहित कोहली बुमराह सब वापसी कर रहे हैं, शुभमन गिल कैप्टन है। थोड़ी देर में ये पहला मैच है, टीम इंडिया टॉस हारी और पहले इंग्लैंड की टीम ने बैटिंग का फैसला लिया। एक बार फिर से इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो बहुत ही ताबड़तोड़ तगड़ी दिखाई दे रही है और बहुत ही बैलेंस टीम उनकी दिखाई दे रही है। अब भारतीय टीम T20 के हार का बदला लेने का प्रयास करेगी। अब रुकना छोटे से ब्रेक, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
6: चोगन परफ्यूम्स।
8: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। कंसीडरिंग क्लेयर इजंट इन पेरिस राइट नाउ, दैट सीम्ड ऑड टू द बैंक एंड टू क्लेयर। Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
10: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox. For 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray music collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
11: French edition for him.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
5: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: हिंट बड़े आराम से। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: मध्य प्रदेश के धार में मुस्लिम पक्ष को जुम्मे की नमाज के लिए दी जाएगी भोजशाला परिसर में खुली जगह। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, भोजशाला में नमाज पर लगी रोक रहेगी बरकरार। दिल्ली के अंकित हत्याकांड में ताहिर हुसैन दोषी करार दिए जाते। बीजेपी का हल्ला बोल, कहा ताहिर केजरीवाल का दाहिना हाथ, वो सिर्फ एक्टर, कोई और था डायरेक्टर। गाजियाबाद में पिंक बूथ के पास तड़प तड़प कर घायल शख्स की गई जान, लहूलुहान होने के बाद भी खड़ी देखती रही पुलिस, वर्दी वालों के संवेदनहीनता पर सवाल। ईरान से जंग में पूरी ताकत से उतरा अमेरिका, लगातार तीसरे दिन स्ट्राइक हुए बहरीन में ईरानी ड्रोन का खौफ। ट्रंप बोले, 2-3 हफ्ते चलेगी जंग, होर्मुज में लेंगे 20% टैक्स। भारत के खिलाफ पहले वनडे में इंग्लैंड ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का फैसला रोहित शर्मा, विराट कोहली का फिर दिखेगा मैदान में जलवा।
1: हम सभी के पूर्व सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है, ये सामने भी लिखा हुआ है, मार्क गेट में भी यही लिखा हुआ था, डरते क्यों भाई? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बाप का नहीं हुआ किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पूर्वपुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो।
2: सब सनातनी थे तो फिर यहाँ पर इतने दरारें क्यों डालने की कोशिश की जाती है?
3: मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है, देश संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा।
4: रामदेव का एक बयान अचानक से चर्चा के घेरे में आ गया, विवाद भी उस पर उठ रहे हैं। स्वामी रामदेव की तरफ से हिंदू राष्ट्र को लेकर और इसके साथ ही जो बाकी बातें कही गई हैं, हम उनसे ही जानते हैं कि आखिर उनके कहने के पीछे कारण क्या रहा है इसका। क्योंकि आम तौर पर जब भी हिंदू राष्ट्र को लेकर किसी तरह का कोई बयान आता है, उसके इर्द गिर्द चर्चा जरूर होती है। स्वामी रामदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये मूल अगर मैं आपके उस बयान का समझूं, क्या संदेश, क्या उद्देश्य आपका इस बयान के साथ स्वामी जी?
5: इसके पीछे एक ही भावना है कि हम सब राष्ट्र में एकता के भाव से रहे। हमारा संविधान भी हमें सिखाता है कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट रखें, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता को हम सर्वोपरि रखें। हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है, हमारे लिए सत्य सर्वोपरि है, न्याय सर्वोपरि है, सच्चरित्रता, पवित्रता और राष्ट्र हित सब प्रकार से वो सर्वोपरि है। ये जो मजहबी एजेंडे चलते रहते हैं बीच बीच में, कुछ पॉलिटिकल लोग, कुछ रिलीजियस लोग इस देश में विभाजन करते रहते, मैं जाति पंथ वर्ग समुदायों के नाम पर, राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, वैचारिक तौर पर किसी भी प्रकार के विभाजन का पक्षधर नहीं। मैं कहता हूं हम सबके पूर्वज एक है, तो इसमें कितना ऊंचा भाव आता है कि हम सब एक है, एकता का भाव। और पूर्वजों के चरित्र से, मैंने कहा अपने पूर्वजों के चरित्र जैसा अपना चरित्र बनाओ, और जैसे वो पराक्रमी थे, जैसे पुरुषार्थी थे, भाग्यवादी मत बनो और इसे देश को आगे बढ़ाओ। तो ये कहीं विधानसभा लोकसभा में कोई बिल पास नहीं होगा, लोगों के चरित्र की पवित्रता से, लोगों की प्रीति से, लोगों की समरसता से और लोगों के पुरुषार्थ से ये हिंदू राष्ट्र का गौरव प्रतिष्ठापित होगा। और इसमें तो सबको गौरव होना ही चाहिए।
4: नहीं स्वामी जी, जो आपने कहा ना कि चाहे कोई दाढ़ी रखवाए या कटवाए, चाहे कोई कोई भी लिबास पहने, उसका चरित्र उसके पूर्वजों जैसा होना चाहिए। यहां पर पूर्वजों से आपका संदर्भ क्या है? क्योंकि जब भी कोई ये कहता है ना कि चाहे आप आज किसी भी धर्म के हो, आपके पूर्वज एक ही हैं, सब इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, सब इससे आमराय नहीं रखते हैं भारत में।
5: अब तो नहीं श्वेता जी, अब चीजें बदल रही। हमारे सब भारत के 99% मुसलमान कहते हैं हम तो कन्वर्टेड मुसलमान है। इसका मतलब हमारे पूर्वज कौन थे? और ऐतिहासिक दृष्टि से देखिए, तीन दृष्टि रखिए इसके पीछे। ऐतिहासिक दृष्टि, 1400 साल पहले क्या दुनिया में इस्लाम था? 2600 साल पहले क्या दुनिया में ईसाइयत थी? 3000 साल पहले क्या इस देश में यहूदी मत था? तो क्या था? मानवता। और इस मानव धर्म को ही वेद में मनोर्भव जनया दव्यम धर्म, हमारे पूर्वज जो साप्रथमा संस्कृति विश्ववारा का जो देश है, तो अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का मतलब है राम की मर्यादा, कृष्ण का योग और कर्मयोग, हनुमान की सेवा और शिव का शिवत्व और समत्व, बुद्ध का बुद्धत्व और महावीर की अहिंसा और भगवान गुरु नानक देव जी की समता, सब में अपने पूर्वजों का जो सचरित्रता है, उनकी जो पवित्रता है, उसको हम जीवन में आत्मसात करते हैं तो ये तो देश बहुत महान बनेगा। देश केवल आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से मान नहीं होता है, देश का चरित्र मान होना चाहिए। आज जिस तरह से रिश्तों का कत्ल हो रहा है, जिस तरह से देश का बचपन और देश का यौवन भटक रहा है, देश में जिस तरह से अलग अलग प्रकार का ढोंग आडम्बर पाखंड अंधविश्वास और एक दूसरे के प्रति मजहबी तौर पर जो घृणा नफरत पनप रहा है, उसका समाधान है तो कि जब हम समान रूप से अपने एक पूर्वजों की संतान है और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं और उन जैसा पवित्र चरित्र हमारा होता है, तो देश में कितनी महानता होगी। तो इसमें तो किसी भी प्रकार की कोई नफरत, कोई घृणा की गुंजाइश ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई वर्चस्व, किसी प्रकार से किसी के एक दूसरे की अधीनता वाला कोई भाव नहीं है, एक दिव्यता वाला भाव है मेरी बहन श्वेता जी।
4: पर स्वामी जी, आपने सुन लिया होगा कि जो
5: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मंत्रियों ने भी बयान दिया कि हमारे भी पूर्वज एक ही है, हमारे डीएनए एक ही है, हम सब के का बड़ा जो देश है, गुरु देश है या पिता देश है या वो भारत है।
4: आपने सुन लिया होगा सब जो राजनेता आपको अपनी अपनी तरफ से खरी खोटी सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ये देश संविधान से चलता है, आपका हिंदू राष्ट्र का मॉडल उन्हें समझ में नहीं आ रहा है।
5: अब देखो, जो दुर्बुद्धि राजनेता है, या तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे या तो उनको भगवान सदगति प्रदान करे। तो मैं कह रहा हूं देश में संविधान सर्वोपरि है, लेकिन हमारा देश में संविधान यही हमें सिखाता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, और हमारा सनातन धर्म हमें यही सिखाता है, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरी ऐसी, ये महाभारत, ये वाल्मीकि रामायण भी हमें सिखाती है, ये अथर्वेद भी हमें सिखाता है, माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्या, ये वेद का उद्घोष भी हमें यही सिखाता है। तो हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है, हमारे लिए मातृभूमि सर्वोपरि है, हमारे लिए सनातन धर्म भी सर्वोपरि है, और हमारे लिए हमारे पूर्वज और उनका महान चरित्र भी सर्वोपरि है। तो इसमें तो किसी भी प्रकार की कोई विरोधाभासी बातें नहीं है। तो मुझे लगता है ये जो थोड़े अल्पबुद्धि वाले, दुर्बुद्धि वाले, अविवेकी जो राजनेता हैं, उनको थोड़ी ऐतिहासिक समझ, थोड़ी अपनी बौद्धिक समझ को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझना चाहिए। खाली कुछ राजनीतिक पार्टियां बना लेने से, कुछ वोट मिल जाने से, कुछ एमएलए एमपी आपके बन गए, उससे आप कोई महान नहीं हो जाते। महान तो तब होंगे जब पूर्वजों के स्वामी जी रहेंगे और उनके
4: ईरान अमेरिका युद्ध जब हुआ तब आपने जो बातें कही थी उसकी वजह से कई शिया मुस्लिम जो है वो आपसे बहुत ही प्रभावित भी हुए थे, आपके साथ हाँ में हाँ मिलाई थी। अब शिया धर्म गुरुओं ने भी आपका इस मुद्दे पर विरोध किया है और एआईएमआईएम की तरफ से भी बयान आ रहा है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, किसी हिंदू राष्ट्र की थ्योरी से नहीं।
5: नहीं देखिए, डरना तो भगवान से भी नहीं चाहिए, भगवान तो प्रेम करता है, भगवान डराता कहाँ। खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, ईश्वर बोलो, भगवान बोलो, परमात्मा बोलो, और भगवान डराता कहाँ है? डरने की किसी को भी कोई बात ही नहीं है। और जहां तक सिया सुन्नियों की बात है, मैं तो कहता हूँ सिया सुन्नी भी एक दूसरे से मत डरो, एक दूसरे को मत डराओ, नहीं तो अमेरिका जो है वो फायदा उठाएगा। मैं तो कहता हूँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स भी आपस में एक दूसरे को डरो मत और डराओ मत। मैं तो कहता हूँ आस्तिक और नास्तिक जितने भी अलग अलग मत पंथ संप्रदाय है, जाति वर्ग समुदाय है, सब एक ही भाव रखो, हम सब के भीतर एक ही जैसा शरीर, एक ही जैसी इंद्रियां, एक ही जैसी चेतना आत्मा, और हम सब का ही की परमात्मा। तो ये एकत्व का भाव क्यों ना रखो मेरे भाई। और ये एकत्व का भाव ही सिखाता है कि हम सब के पूर्वज हिंदू आर्य वैदिक सनातनी थे, हम सब ऋषिकाओं की संतान है। अपने पूर्वजों को लेकर के कहां कंफ्यूजन है मेरी बहन श्वेता जी, बताओ।
4: 2009 में आपने देवबंद जाने का जिक्र किया
5: और मैंने वहां पर भी ये बात को कही थी कि हमारे मजा वाला हो सकते पूर्वज अलग नहीं, सबने तालियां बजाई थी और एक स्वर से समर्थन किया था।
4: 2009 में आकर के स्वीकार किया गया, आज 2026 में नहीं कर रहे हैं सब।
5: अब ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन, देखो जिनको नेता बनना है, अपना वर्चस्व कायम करना है, जिनको पोलराइजेशन करना है,
6: उनको ये सिर्फ ही बातें करनी होंगी। मुझे ना एमएलए बनना, ना सीएम, ना पीएम, ना प्रेसिडेंट, ना मुझे कोई शंकराचार्य बनना है, ना मुझे कोई अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाना है, ना मुझे कोई अपना मजहबी वर्चस्व बनाना है। मुझे तो भारत माता के प्रगति के लिए अपने जीवन की आहुति लगानी। मैं सबसे कहूंगा राष्ट्र सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है, अपने पूर्वजों का चरित्र सर्वोपरि है, इसको मान करके सब आगे बढ़ेंगे तो कितना अच्छा होगा। ये जाति वर्ग समुदायों के नाम पर, मजहबों के नाम पर आपस में ये जो घृणा है, नफरत है, एक दूसरे से दूरियां, हेट है, जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान, चाहे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। तो राम और हनुमान, कृष्ण और जितने भी गौतम, कणा, जमनी, पाणिनि, पतंजलि आदि अपने महान पूर्वजों के ऊपर सबको समान रूप से क्यों ना गर्व रखना चाहिए मेरी बहन। अब कुछ लोग सिरफिरे हैं, अब उन्हीं के लिए तो बहन दिया कि भाई ये सिरफिरा पन बंद करो, देश को आगे रखो, संविधान को आगे रखो, अपने चरित्र को इतना पवित्र बनाओ कि सारी दुनिया हमसे सीखे। कल भी मैंने बोला था, फिर दोहरा रहा हूं, एक देश प्रसूत सकाशा दग्र जन्मना सोम सोम चरित्र शिक्षण पृथ्व्याम सर्व मानवा। भारत के महान होने से मतलब विकसित भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, दिव्य भव्य भारत का मतलब केवल अमेरिका की तरह दूसरे देशों पर ध्वज जमाना, युद्ध थोपना नहीं है। भारत पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन का और रिलीजियस कॉलोनाइजेशन का विरोधी देश है। हम तो यम निज परोवित गणानल बुचेत साम उदार चरित नाम तो वसुधैव कुटुंबकम के उपासक, हम दुनिया को एक बाजारिक परिवार मानते हैं। मेरी बहन, ये इस बयान के पीछे का तात्पर्य है और यही मैंने पूरे अपने लगभग आधा पौने घंटे का जो व्याख्यान है, पूज्य हमारे जगतगुरु निश्चलानंद जी महाराज पूरी पीठ के जो शंकराचार्य, उनकी सन्निधि में मैंने यही बात कही। श्वेता जी, इसमें आपत्तिजनक बात क्या है वो आप मुझे बताओ, मैं अपनी बात भी वापस लेने के लिए तैयार हूँ।
4: आपत्तिजनक है या नहीं, ये तो जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं और जो मुद्दे उठा रहे हैं उसके बीच सवाल तो मेरा ये है कि जहां पर एक धर्म के भीतर एकता नहीं आ रही है और हर धर्म में इस तरह की चीजें दिख रही हैं, एक धर्म के भीतर एकता नहीं आ रही है, आप कह रहे हैं कि सभी अपने धर्म के भेदभाव भुलाकर अपने पूर्वजों को केवल भारतीय होने को और भारतीय संस्कृति को याद रख के आगे बढ़े, आपको लगता है कि आपके इस विचार को स्वीकार कोई भी करेगा आज?
6: क्यों नहीं करेंगे, 99% लोग करेंगे, 1% जो सिर्फ रे लोग हैं उनको लोग ही समझा देंगे। हमारे यहाँ तो एकत्व मनोपश्यता ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्मा वासुदेव सर्वम सियाराम में सब जगह जानी, ये हमारे देश की मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, मूल पहचान, ये हमारे देश की मूल विरासत है, इसको कोई ना माने तो ये अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता होगी। और मैंने ये बोला था, फिर दोहरा रहा हूं मेरे बहन श्वेता जी, किसी को बुरा लगे तो लाख लगे, जो अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ है, मैंने कहा था जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता, इसलिए अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता रखो। अपने पूर्वजों की जो महान शिक्षाएं हैं, महान आदर्श है, सब नर करे परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरत शुद्ध नीति, राम राज्य के बारे में, हिंदू राष्ट्र के बारे में कुछ छिछोरे लोगों ने कुछ हल्की बातें कही होंगी, मुझे लगता है इस बहाने हिंदू राष्ट्र से मतलब, आर्य वैदिक राष्ट्र से मतलब, और एक भारत की मूल संस्कृति, मूल विरासत से क्या तात्पर्य है, ये शायद ये बातें और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी।
4: स्वामी जी, एक और चीज मैं इसमें जोड़ लेना चाहती हूँ, क्योंकि कई सारे जो आपके बयान पर रिएक्शंस आ रहे हैं जो आम लोगों के, उनमें ये भी सवाल सब उठा रहे हैं कि एक तरफ मथुरा में वहां पर कार सेवा की शुरुआत हो रही है और मुझे लगता है कि आप मंदिर को लेकर आप उसका समर्थन भी करते होंगे, तो ऐसे में विद्वेष और एकता ये एक साथ कैसे आएंगे?
6: नहीं, देखिए, इस देश में कुछ मूल स्थान है हमारे, जैसे काशी विश्वनाथ है, सबको पता है कि वहां युगों युगों से भगवान शिव का वो पवित्र धाम है। ज्ञानवापी मस्जिद तो मुगलों के काल में एक अलग प्रकार से एक कुछ जो आक्रमणकारी आक्रांता जो इस्लामिक थॉट प्रोसेस है ना, उनके साथ अपने आप को अलाइन मत कीजिए।
5: जहां तक भगवान कृष्ण का सवाल है, तो 5,500 साल पहले ये एक, इसके पीछे मैंने कहा ना, एक ऐतिहासिक सरोकार है, एक सांस्कृतिक सरोकार है, और इस देश की एक विरासत का गौरव है, उसको आप कैसे भुला सकते हैं। तो हर जगह मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़ा करना ये तो मूर्खता की बात है, लेकिन कुछ हमारे पवित्र तीर्थ है, जैसे मथुरा है, जैसे काशी विश्वनाथ है, इनके ऊपर तो कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। और मैं तो किसी भी प्रकार के विवाद का पोषक नहीं रहा हूं, मेरा पूरा 50 सालों का जीवन है, उसमें भी 35 सालों का तो सार्वजनिक जीवन है, 60 साल का लगभग मैं हो चुका हूं, तो मैंने तो कभी भी हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफरत की बात नहीं की, और आज भी एकता की बात कर रहा हूं और अंतिम श्वास तक करूंगा, और मैं आश्वस्त हूं एक दिन भारत पूरा जुड़ेगा, और मैं खाली भारत ही नहीं, मैं तो कहता हूं पूरी मानवता में एकता होनी चाहिए। ये जो एक दूसरे के साथ युद्ध, घृणा, नफरत, और ये जो वर्चस्ववाद का एक, पहले तो राष्ट्रवाद के नाम पर कुछ लोगों ने जो है नफरत फैलाई, फिर जो है अलग अलग और दूसरे थॉट प्रोसेस के नाम पर नफरत फैलाई, किसी भी प्रकार के वर्चस्ववाद का मैं विरोधी हूं। मैं तो कहता हूं सब मिलजुल करके रहो और देश को सर्वोपरि मानो, संविधान को सर्वोपरि मानो, मानवता को सर्वोपरि मानो, सच्चरित्रता, पवित्रता को, दिव्यता को सर्वोपरि मानो ना ये। और बाकी जो लिबास अलग अलग है, जाति पंथ वर्ग समुदाय भारत में अलग अलग नाम उसे जाना जाता है, लोगों को सरनेम अलग अलग आदि है, लेकिन हमारे भीतर तो पंच तत्व तो एक है ना, आत्मा तो एक है, सबका परमात्मा या प्रकृति मानो, परमेश्वर मानो, एक सुपर पावर मानो, कुछ भी नाम बोलो, निराकार, सगुण, साकार, हम तो सब जो है विचारों का आदर करते हैं, तो इसमें भेद कहाँ आ गए मेरे बहन श्वेता।
4: ठीक है, चलिए, आपके इसी मानवता और एकता के संदेश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए स्वामी जी,
5: बहुत बहुत प्रणाम।
4: देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
0: तो योग गुरु बाबा रामदेव ने जो बयान दिया था उसके बाद काफी बवाल मचा, उस बवाल के बाद आज तक से उन्होंने एक बार फिर से अपने दिए गए बयान का समर्थन किया है, तो ये बातचीत आपने सुनी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यूपी की चुनावी राजनीति की। यूपी में बीजेपी ने SIR के बाद हालात को लेकर नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। खबर है कि 19-20 जुलाई के बीच में यूपी में सभी विधानसभाओं में बूथ सम्मेलन बनाकर बीजेपी अगले चुनावों के लिए माइक्रो मैनेजमेंट शुरू कर रही है।
7: यूपी में चुनावी सरगर्मी यूं तो हर राजनीतिक दल के अंदर बढ़ रही है, लेकिन चुनाव की जमीनी तैयारी को लेकर बीजेपी सबसे गंभीरता और बारीकी से आगे बढ़ती नजर आ रही है। खासकर वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद जमीन पर जो हालात हैं उसे देखते हुए बीजेपी ने यूपी में बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। अब खबर है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 8 प्रमुख संगठनात्मक कार्यक्रमों का रोडमैप तैयार किया। जल्द ही कई जगह बूथों और मंडलों के पुनर्गठन होने वाले हैं। 19 से 22 जुलाई तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बूथों की मैपिंग कर संगठन को और मजबूत किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में बूथों की संख्या 80 से अधिक होगी वहां नए मंडलों का गठन होगा, और जहां बीजेपी के वोट बैंक ज्यादा होंगे वहां नए बूथ भी बनेंगे। इसके बाद जल्द ही सेक्टर संयोजकों का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा।
8: दूसरा जो वोटर लिस्ट जो प्रकाशित हुआ, वोटर लिस्ट को लेकर घर घर जाकर किसका भी नाम टूटा है उसको काम को वहां पर निकालते हैं, और तीसरा जो हमारा था कि बूथ कमेटी को कैसे और
7: दरअसल यूपी में जब से SIR चल रहा था तभी से कांग्रेस और SP आरोप लगाती रही है कि बीजेपी सरकार के इशारे पर मुस्लिम, दलित और OBC में यादव मतदाताओं के नामों को जानबूझकर बड़े पैमाने पर हटाया गया। हालांकि SIR के बाद यूपी में 2,04,00,000 नाम कटे थे और 84,28,000 नए नाम जुड़े थे, जिससे राज्य का सियासी समीकरण पूरी तरह गर्मा गया। चुनावी लिहाज से बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन दोनों ही अपने अपने नफा नुकसान का गणित लगा रहे हैं, क्योंकि राज्य की करीब 150 से अधिक ऐसी सीटें हैं जहां पिछली जीतों का अंतर बहुत कम था। SIR के दौरान ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से करीब 4 करोड़ पात्र मतदाता सूची में दर्ज होने से छूट रहे थे, जिसमें से 85% से 90% मतदाता बीजेपी के होने का दावा किया था। वैसे बीजेपी को एक तरफ तो लगता है कि 25,47,000 डुप्लीकेट नामों और अवैध वोटर्स को हटने से चुनाव में होने वाली फर्जी वोटिंग रुकेगी, जिसका सीधा राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिलेगा, लेकिन जिस तरह लखनऊ में करीब 30% यानी 12 लाख, गाजियाबाद में 28.83% यानी 8,18,000 वोट कटे, उससे बीजेपी को बड़ा डर भी है। बीजेपी की चुनावी रणनीति यही है कि एसआईआर के बाद जमीन पर जो बदलाव दिख रहे हैं उसके हिसाब से बूथवार तैयारी की जाए, क्योंकि यूपी में अंतिम मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या अब 13,39,00,000 हो गई है, जो पहले 15,44,00,000 थी। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
9: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ।
11: What's going on, everyone? It's Bluff here, and we're driving through the states in the Bluffmobile, and the best thing that we can do is play our favorite casino-style games on SpinQuest. They have over 1,000 games, including live dealer, blackjack, and craps, with tons of slots and unlimited options. You can get a $30 coin pack for just $10 for new users. Sign up today. Go to SpinQuest.com right now.
12: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
13: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
14: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
15: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
9: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
10: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
9: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
16: Oh, sorry!

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Diehard music fan? Qello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Qello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
3: Jai Hind friends, is Ayat, Sona, Masala ya Vistar? 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई? कौन थे इसके महानायक? तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

देश के धार में मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज के लिए दी जाएगी भोजशाला परिसर के पास खुली जगह। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, भोजशाला में नमाज पर लगी रोक बरकरार रहेगी। दिल्ली में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को दोषी करार दिए जाते ही बीजेपी का हल्ला बोल, कहा ताहिर अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ, वो सिर्फ एक्टर, डायरेक्टर कोई और था। गाजियाबाद में पिंक बूथ के पास तड़प तड़प कर गई घायल शख्स की जान, लहूलुहान होने के बाद भी खड़ी दिखती रही पुलिस, वर्दी वालों की संवेदनहीनता पर उठे सवाल।

0: खौफ, डोनाल्ड ट्रंप बोले 2-3 हफ्ते चलेगी जंग, हॉर्मूज में लेंगे 25% टैक्स अमरीकी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुड।
3: ट्रंप की टोलबाजी, दुनिया हैरान। ईरान पर अमेरिका का महाहमला। ईरान का पलटवार, कांपी धरती। पाताल में महासीक्रेट परमाणु किला। यूएई के जहाजों पर मिसाइल अटैक। हमले में भारतीय नाविक की मौत। पहली बार समुद्री ड्रोन से कोहराम। हुर्मुज में आर्थिक विनाश का संग्राम।
0: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। और इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक खबर खाड़ी देशों से आ रही है, जहां खाड़ी में तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल अब ऐसा लग रहा है कि बज रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच आर पार की जंग शुरू हो गई है। बुलेटिन में हम आपको विस्तार से दिखाएंगे क्या है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो टोलबाजी का नया प्लान उनका है वो क्या है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। कैसे डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले से अब कभी हॉर्मूज में दुनिया का कोई भी देश बिना टोल चुकाए व्यापार नहीं कर सकेगा, या अमेरिका को टोल चुकाना होगा या फिर ईरान को। इसके अलावा हम आपको बताएंगे ईरान का वो महासीक्रेट परमाणु ठिकाना कहां है, जहां से वो अब भी खतरा अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज को है कि अब भी ईरान परमाणु बम बना सकता है। और आखिर तीसरी रात भी अमेरिका ने ईरान पर भारी बमबारी क्यों जारी रखी, क्या अमेरिका और ईरान का जो सीजफायर का समझौता है एमओयू है वो अब पूरी तरह टूट चुका है। साथ ही हम ये भी खबर जानेंगे कि आखिर ईरान पर आज भारत इतना नाराज क्यों है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो अमेरिकी सेना ने लगातार तीसरी रात ईरान को बमों और मिसाइलों से दहला दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के भीतर घुसकर 5 घंटों तक ताबड़तोड़ बमबारी की है। बुशहर, चाबहार, जास, बंदर अब्बास, ये ऐसे महत्वपूर्ण ठिकाने हैं जहां 1,000 किलोमीटर के दायरे में अमेरिका की मिसाइलें पिछले 12 घंटों में जबरदस्त तरीके से बरसी है, काल बनकर बरसी है। जो केशम द्वीप है या कीश द्वीप जिसे कहते हैं, कीश द्वीप के बंदरगाह से लेकर बलूचिस्तान की सीमा तक सिर्फ आग ही आग, लपटे और धुएं का गुबार इस समय नजर आ रहा है। ईरान के मिसाइल ठिकाने, ड्रोन ठिकाने, जहां जहां अमेरिका और इजराइल की इंटेलिजेंस इनपुट्स थे उन्हें बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है। अमेरिका के सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड का दावा यह है कि इस वक्त 50,000 अमेरिकी सैनिक खाड़ी में ईरान के खिलाफ मोर्चा संभाल चुके हैं। और इस बीच अब सवाल यह है कि अमेरिका ने तीसरी रात ईरान पर फिर हमला क्यों किया, क्योंकि ठीक इससे पहले ईरान ने हॉर्मुज में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के 2 बड़े तेल टैंकरों, एक मोम्बासा और दूसरा अल बहिया, दोनों तेल के टैंकरों पर क्रूज मिसाइलों से हमला कर दिया था। और इस कायरतापूर्ण हमले में एक भारतीय नाविक की भी मौत हो गई, 6 भारतीयों समेत 8 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। तीसरी रात की भीषण बमबारी के तुरंत बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बकायदा एक टॉक शो में ऐलान कर दिया कि अमेरिकी सेना अगले 2 दिनों तक ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे घातक हमला करने का जो प्लान है उसे अंजाम दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम अब धमकी यह देते हुए कहा कि आज की रात भी ईरान पर बहुत भारी रहेगी, क्योंकि ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला होगा जो आज की रात भी जारी रहेगा और कल की रात भी जारी रहेगा। ईरान अब अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। उनके पास केवल बड़ी बातें करने के अलावा अब बड़े हथियार अमेरिका के मुताबिक नहीं बचे हैं। हम आपको विस्तार से इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा, आप सुनिए।
4: We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing. And what they're doing is being very foolish, very stupid.
0: तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत साफ दे दिए हैं कि अब सबसे बड़े और सबसे संवेदनशील इलाके में, यानी जो फीनिक्स माउंटेन न्यूक्लियर साइट है, अब अमेरिका बमों से उसे उड़ा देने का आदेश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे सकते हैं। यानी अब बात सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि न्यूक्लियर वॉर अगर ईरान वहां बढ़ता है तो वहां पर भी अमेरिका अब उन्हें ध्वस्त कर देगा। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि वो फीनिक्स माउंटेन न्यूक्लियर साइट है क्या, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्यों ईरान में ये कहा जा रहा है कि अब एक बड़ा हमला हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, ईरान का एक महासीक्रेट परमाणु किला, ये कोहे कोलंग गजला, ये जो इलाका है ईरान का, अब हम बात कर रहे हैं ईरान के इस बेहद संवेदनशील पश्चिमी इलाके में, जो असली नाम है ना इसका कोहे कोलंग गजला, ये नतान से महज 2 किलोमीटर दूर, और ये है वो टॉप सीक्रेट कोहे कोलंग गजला, ईरान का नतान्स न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स से महज 2 किलोमीटर दूर दक्षिण में। ये जो जाग्रोस माउंटेन का इलाका कहलाता है ना, ये जाग्रोस पर्वत में अंदर पहाड़ के बेहद अंदर गहरी सुरंगों में एक टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट ईरान का है, जो कहा जाता है ये ईरान का सबसे गुप्त और सबसे मजबूत न्यूक्लियर साइट है। ईरान के मुताबिक या जो विश्व में जो आकलन है विशेषज्ञों का, वो ये है कि अमेरिका की जो सबसे अंदर तक वार करने वाली बंकर बस्टर मिसाइल है, उससे भी 100 मीटर और नीचे जाकर यहां पर ईरान के जो टॉप सीक्रेट प्लान्स है, हथियार है, मिसाइलें हैं, परमाणु कार्यक्रम को जिस तरह आगे बढ़ाना है वो इसी जगह पर है। अमेरिका का कोई बंकर बस्टर इसे ध्वस्त नहीं कर सकता। माना यह जाता है कि ये तो दरअसल ग्रेनाइट की बेहद सख्त चट्टानों के भीतर 300 फीट की गहराई पर है। यानी आपको याद है हम फोर्दो के बारे में आप और मैं विस्तार से चर्चा किया करते थे कि फोर्दो में जो ईरान का प्लांट है वो सबसे सुरक्षित है, ये फोर्दो से भी ज्यादा गहरा है और ज्यादा सुरक्षित है, और इसीलिए पारंपरिक जो बंकर बस्टर बम है ना, वो इसे नष्ट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पहाड़ के भीतर 300 फीट की गहराई में महासुरक्षित ये बंकर है। अमेरिका को अब शक है कि ईरान का वो जो 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है वो यही कहीं छिपा हुआ है, ये अमेरिका का आकलन है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA को भी इस कोहे कोलंग गजला का कभी एक्सेस नहीं दिया गया है, IAEA की निगरानी से यह दूर रहा है। अमेरिका और इसराइल का अब आकलन यह है कि ईरान इस साइट को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, यानी जो उसका मुख्य न्यूक्लियर साइट्स है जिसके बारे में दुनिया को मालूम है, चाहे वो नतांज हो चाहे फोर्दो हो, उसके क्षतिग्रस्त होने के बाद ईरान का जो कार्यक्रम है वो इसी जगह पर अभी भी जारी है, ये आकलन है। और हाल के सैटेलाइट इमेजेस, क्योंकि अमेरिका की सैटेलाइट और इजराइल की सैटेलाइट इसके चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं, उनका यह आकलन है कि यहां पर निर्माण कार्य और सुरंगों को और मजबूत करने की गतिविधियां नजर आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसे ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को छिपाने और फिर से शुरू करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। दरअसल ये जो साइट है ना, ये ईरान अमेरिका इजराइल तनाव का एक नया फोकस पॉइंट बन गई है। जी हां, यही वो साइट है जो इस समय सबसे बड़ा खतरा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। अब यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है, क्या दुनिया की जो सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक महाशक्ति है यानी अमेरिका अब एक वैश्विक वसूली एजेंट बन चुका है? क्या व्हाइट हाउस में बैठा दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी यानी अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंतरराष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाकर किसी ग्लोबल

0: उन्होंने चूल्हे में झोंक दिया। उन्होंने अपने पोस्ट में टोल वसूली का बकायदा ऐलान करते हुए क्या कहा, हम आपको वो सुनाते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है, यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है, ईरान के साथ या उसके बिना यह खुला रहेगा। हम ईरान की नाकेबंदी को फिर से लागू कर रहे हैं, यानी अमेरिका अब फिर से ईरान की नाकेबंदी कर रहा है, और इसे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सिर्फ ईरान के जहाजों या ग्राहकों को ही आने जाने से रोकती है। ये अमेरिका की नाकेबंदी, बाकी सभी देश इस स्ट्रेट को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का निष्पक्ष और खुले तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। अब से अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट का गार्डियन या गार्जियन माना जाएगा, यानी उसका संरक्षक माना जाएगा। साथ ही निष्पक्षता के नाते दुनिया के इस बेहद संवेदनशील हिस्से में सुरक्षा और हिफाजत का काम करने के लिए जितने भी जरूरी खर्च है उसकी भरपाई के तौर पर यहां से भेजे जाने वाले सभी कार्गो पर 20% का अतिरिक्त दर, यानी एडिशनल टैक्स अमेरिका वसूलेगा। ये प्रक्रिया और व्यवस्था तुरंत लागू कर दी जाएगी, ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है, उन्होंने बकायदा लिखित में कहा है। सोचिए, जो अमेरिका दशकों से दुनिया को नियम आधारित व्यवस्था यानी रूल्स बेस्ड ऑर्डर का पाठ पढ़ाता था, आज उसका यह रूप देकर मित्र देश भी अब अपना सर पीट रहे हैं कि कौन व्हाइट हाउस में आ गया है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विदेश मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कुछ दिन पहले चीख चीख कर दावा किया था कि कोई भी देश अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर टोल नहीं वसूल सकता। तो फिर आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस मुंह से यह टैक्स वसूली की बात कर रहे हैं? व्हाइट हाउस में दिया गया डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है, हम आपको वो भी सुनवाते हैं।
1: Yeah, I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping. For instance, you look at the five countries. You have Saudi Arabia. You have UAE. You have Qatar, or Qatar, as I always say. You have Qatar, Bahrain. And by the way, you have others. You have Kuwait. And you have others, and they will do very well. But we think it's appropriate that we don't need them. You know, we have more oil than any other country in the world. When you add Venezuela.
0: तो सुना आपने, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां पर वसूली की बात कर रहे हैं, कह रहे बड़े अमीर देश हैं, जब इनकी सुरक्षा हो रही है तो उस पर पेमेंट तो होगा ही। डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट सहयोगी और अमेरिका के विदेश मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का भी बयान हम आपको सुनवाएंगे। 23 जून को मार्को रूबियो ने साफ साफ कहा था कि किसी भी देश को अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर टोल वसूलने या फीस लेने का कोई अधिकार नहीं है। यह उन क्लॉज का जो यूनाइटेड नेशंस के लॉज ऑफ द सीज है उसका वायलेशन या उल्लंघन है, सुनिए।
2: Well, that's the law. It's an international waterway. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway. That's existing international law. That's the way it is in international waterways all over the world, and that's the way we expect it'll be here.
0: तो सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति अपने ही विदेश मंत्री की बात नहीं मानते, या फिर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आइए अब हम आपको विस्तार से दिखाते हैं कि अगर अमेरिका ने हॉर्मुज पर 20% टैक्स 20% असल में वसूला तो हर दिन अमेरिका कितनी वसूली करेगा, हॉर्मुज से कितनी कमाई कर सकेगा अमेरिका। एक सुपर टैंकर 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर अगर निकल रहा है तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल यहां से गुजरता है। 20 लाख बैरल तेल $160 करोड़ 80 डॉलर प्रति बैरल के रेट से अगर आप लगाएं तो 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन एक सामान्य सुपर टैंकर में करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल आता है। कच्चे तेल की मौजूदा कीमत लगभग $80 प्रति बैरल है, बीच में तो करीब $120 $125 तक पहुंच गई थी। आमतौर से जब दुनिया में स्थिति सामान्य रहती है तो यह $65, $67, $70 के आसपास है, इस समय $80 के आसपास है। इस हिसाब से एक सुपर टैंकर के तेल की कीमत $16 करोड़ होगी, और अगर 20% की दर से अमेरिका को एक सुपर टैंकर से 3.2 करोड़ डॉलर मिलेंगे। जी हां, ये अमेरिका की कमाई

0: होगी। हॉर्मुज से रोजाना 10 सुपर टैंकर कुल मिलाकर 2 करोड़ बैरल तेल लेकर निकलेंगे, तो अमेरिका को 20% प्रति टैंकर के दर से 32 करोड़ डॉलर की कमाई होगी। यानी अमेरिका हर 5 दिन की कमाई से एक बुर्ज खलीफा खड़ा कर सकता है, क्योंकि उसे बनाने में करीब 1.5 अरब डॉलर का खर्च आया था। यही नहीं, अमेरिका इस टोल से हर दिन करीब 4 चंद्रयान मिशन जैसे पैसे कमा सकता है। दरअसल भारत के सफल चंद्रयान 3 मिशन का जो कुल बजट था वो लगभग 615 करोड़ रुपए या 75 मिलियन डॉलर था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के टोल का ऐलान करते ही तेल की कीमतों में 9% का उछाल आ गया। अगर उस पर टोल भी जोड़ दिया जाए तो दुनिया भर में तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ने लगेंगी, या ये कहें तेल की कीमतों में आग लग जाएगी, और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता की इस समय बात भी है। तो एक तरफ जहां दुनिया के बड़े बड़े महादेश और ताकतवर मुल्क अमेरिका के खौफ में दुबके बैठे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी पर चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्राजील ने अमेरिका को उसकी हैसियत याद दिला दी। बड़ी खबर इस समय आ रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंका देने वाली अंतर्राष्ट्रीय गलियारों से आ रही खबर। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज टोल प्लान की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। जब पूरी दुनिया ट्रंप के इस हफ्ता वसूली के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, तब ब्राजील ने खुलकर अमेरिका के इस कदम को समुद्री डकैती या पायरेसी ऑन द हाई सीज करार दिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने सीधे शब्दों में अमेरिका पर हमला बोलते हुए कहा कि पुराने जमाने में इस तरह की हरकत को समुद्री डकैती या पायरेसी कहा जाता था। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा एक महाशक्तिशाली देश अब खुद एक समुद्री डाकू नहीं बन सकता। अमेरिका को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों से वसूली करने का कोई हक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को हॉर्मुज जलडमरू मध्य का गार्डियन यानी रखवाला घोषित कर रहे हैं, लूला डी सिल्वा ने उस पर भी तंज कसते हुए कहा कि वॉशिंगटन डीसी दूसरों की मजबूरी और तबाही का फायदा उठाकर मुनाफा कमाने की साजिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है। ब्राजील ने पूरी दुनिया को एक बार फिर याद दिलाया कि यह रणनीतिक समुद्री रास्ता हमेशा से अंतरराष्ट्रीय नेविगेशन इंटरनेशनल नेविगेशन के लिए मुफ्त खुला रहा है। यानी 28 फरवरी से पहले अमेरिका की बमबारी से पहले हॉर्मुज का रास्ता फ्री था, सबके लिए खुला था। तो फिर आज अमेरिका किस मुंह से वहां टोल मांग रहा है, यह प्रश्न ब्राजील ने उठाया है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है यहां पर, चाहे अमेरिका हो या ईरान, टोल कोई भी वसूले, हॉर्मुज की सुरक्षा की गारंटी तो अभी कोई नहीं दे पा रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वो हमला जो यूएई से आ रहे जहाजों पर हुआ, और इस हमले में दुर्भाग्यवश एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। 6 भारतीय इसमें घायल हैं, इनमें से 4 की हालत इस समय गंभीर बताई जा रही है। यूएई के मुताबिक ईरान की एक क्रूज मिसाइल ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में 2 बड़े टैंकरों को निशाना बनाया, और इस मिसाइल हमले में 1 क्रू मेंबर की मौत हो गई है, 8 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। घायल में 2 यूक्रेन के भी हैं, 6 भारतीय हैं। इन जहाजों के नाम मोम्बासा और अलबाहिया हैं। ये दोनों सुपर टैंकर्स हैं जिन पर हमला हुआ। ये दोनों हॉर्मुज के दक्षिणी शिपिंग लेन से गुजरने का प्रयास कर रहे थे जो ओमान के तट के बेहद करीब है। ईरान का दावा यह है कि सारे जहाज केवल उसके इलाके से गुजरे ताकि ईरान वहां से टोल वसूली कर सके, लेकिन जब ये ओमान के रास्ते से गुजर रहे थे तो ईरान ने क्रूज मिसाइल से इन पर हमला किया, और इसीलिए ओमान के तट के पास गुजरते इन जहाजों पर हमला हुआ। हमले के बाद दोनों जहाजों में भीषण आग लगी, जैसा आप उन तस्वीरों में देख भी सकते हैं। बहुत मेहनत के बाद आग पर काबू तो कर लिया गया, लेकिन एक भारतीय की मौत हो गई, 8 कुल मिला के नाविक इसमें घायल है। और इस घटना की यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कड़े शब्दों में निंदा की है। इस घटना ने यह भी साबित कर दिया कि सुरक्षा देने वाले डोनाल्ड ट्रंप का दावा, अमेरिका के राष्ट्रपति का दावा कितना खोखला है। और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में हुए इस हमले को लेकर ईरान के राजनयिक को तलब किया। हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर सोमवार को हुए हमले के सिलसिले में विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजनयिक को तलब किया। उनमें डिप्टी चीफ ऑफ मिशन मोहम्मद जावेद हुसैनी भी शामिल थे। इसके थोड़ी देर बाद वो रक्षा मंत्रालय से रवाना हुए। कल हॉर्मुज में एक भारतीय नाविक की मौत और 6 भारतीयों के घायल होने के मामले में भारत सरकार ने ईरान पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की, गुस्सा जाहिर किया इस पर। और अब रुख करते हैं देश की एक बड़ी खबर की ओर। आपको याद है 2020 के दिल्ली दंगों के सबसे खौफनाक अध्याय यानी भारत की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसके एक अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में अदालत ने एक बड़ा फैसला दिया है। आज तक के पास इस वक्त कोर्ट के फैसले की वो एक्सक्लूसिव ऑर्डर कॉपी मौजूद है। इस ऑर्डर कॉपी के मुताबिक कोर्ट ने साफ माना है कि 25 फरवरी 2020 की शाम ताहिर हुसैन, जो उस समय आम आदमी पार्टी का काउंसलर और बाद में पूर्व काउंसलर था, ताहिर हुसैन चांदबाग पुलिया के उस हिंसक भीड़ की अगुवाई कर रहा था जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाना था। अदालत ने माना कि ताहिर हुसैन भले ही सीधे वार ना कर रहा हो लेकिन आईपीसी की धारा 149 के तहत वो वाइकेरियसली लाइबल यानी हत्या और अपहरण के लिए समान रूप से जिम्मेदार और दोषी पाया गया है। इस उग्र भीड़ ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी अंकित शर्मा को घसीटा और उन पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, धारदार हथियारों से बर्बर हमले किए जिससे उनके शरीर पर 51 चाकू के शार्प एज्ड वेपन्स और ब्लंट वेपन्स की इंजरीज थी। 51 निशान थे। अदालत के इस फैसले के बाद अब दिल्ली की सियासत में एक महासंग्राम छिड़ गया है जहां दोषी ताहिर हुसैन खुद को बेगुनाह बताकर अदालत के इस फैसले को नाइंसाफी बताकर रोने लगे। वहीं बीजेपी ने न केवल ताहिर हुसैन पर बल्कि आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर धावा बोल दिया। बीजेपी का तीखा सवाल है कि एक जाबाज इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर की नृशंस हत्या की साजिश रचने वालों को आखिर किसका राजनीतिक संरक्षण हासिल था। सुनिए,
1: ताहिर हुसैन इस हत्या की हत्या में शामिल है, ये कल न्यायालय ने साबित किया है, दोषी करार दिया है ताहिर हुसैन को। हमारा यह मानना है कि इस मामले में यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मर्डर है और ताहिर हुसैन के द्वारा और उसके साथियों के द्वारा और उनके मास्टरमाइंड्स के द्वारा दिल्ली में एक भयानक साजिश रची गई थी। हम ये भी मानते हैं कि ताहिर हुसैन केवल एक्टर है, इस पूरे घटनाक्रम का डायरेक्टर कोई और लोग हैं, मास्टरमाइंड कोई और लोग हैं। ताहिर हुसैन के हाथों में खंजर दिया गया लेकिन देने वाले, चलवाने वाले, इसका नैरेटिव बनाने वाले लोग अभी भी बचे हुए हैं। उमर खालिद जैसे लोग जिनको बचाने के लिए आज भी नैरेटिव बनाया जा रहा है, ताहिर हुसैन लगातार उनके संपर्क में था।
0: एक और बड़ी खबर पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी है। इस मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। जम्मू की एक अदालत ने पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के सरगना और मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज मोहम्मद सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। वहीं उसकी गैर मौजूदगी में मुकदमे का जो ट्रायल है वो शुरू कर दिया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हाफिज मोहम्मद सईद लश्कर-ए-तैयबा के संगठन के जो सरगना है उसके खिलाफ जुलाई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट तैयार कर ली थी और उसे आरोपी बनाया था। पहलगाम हमले में उसे बाकायदा मास्टरमाइंड बताया गया है। अब उसे भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: Chogan Perfumes.
4: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, That seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
6: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: French edition for him.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पापा
2: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया
2: है।
4: हां ओ ला भाई मेरा बैट,
5: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
4: बिना तो चार्ज हुआ यार।
6: ओला बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
9: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
10: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
11: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
9: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
12: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, भोजशाला में नमाज पर लगी रोक बरकरार रहेगी। दिल्ली में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में आम आदमी पार्टी के पूर्व काउंसलर ताहिर हुसैन को दोषी करार दिए जाते ही बीजेपी का बड़ा हल्ला बोल, कहा ताहिर अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ वो सिर्फ एक्टर, कोई और था डायरेक्टर। 23 से सजा पर बहस।

3000 किलो का बम, हर बम में 1500 किलो विस्फोटक, सात इलाकों में हमला, 25 से ज्यादा सैन्य ठिकाने तबाह, रूस का सबसे विनाशकारी हमला, चारों तरफ बर्बादी का मंजर। यूक्रेन की राजधानी की दहल रही है, इमारतें जमीन दोज हो रही हैं। खेरसोन से लेकर डोनेट्स्क और ओडेसा से लेकर क्रोमाटोर्स्क तक भी बमों की बरसात से धुआं धुआं हो चुके हैं। आखिर क्यों 3000 किलो के बम रूस को करने पड़े इस्तेमाल? क्या यूक्रेन डाल रहा है हथियार, या फिर अब उसका भी है मिशन आर पार?

आप देख रहे हैं रणभूमि, आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत। जी हां, 3000 किलोग्राम का बम जिसमें लगभग 1500 किलोग्राम तो विस्फोटक है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जहां ये बम गिरा होगा वहां विनाश की किस तरह की लहर होगी और किस कदर बर्बादी रही होगी। हम बात कर रहे हैं रूस के उस विनाशकारी प्रहार की जिसने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में पिछले 24 घंटों में कोहराम मचा दिया है। हम आपको विस्तार से दिखाएंगे कि आखिर इतना विनाशकारी बम गिराने की रूस को जरूरत क्यों पड़ी और इस बम की खासियत क्या है। लेकिन पिछले 24 घंटों में कीव यानी यूक्रेन की राजधानी से लेकर खेरसोन तक एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, रूस ने तबाही मचा दी। यूक्रेन के अंदर जगह जगह बमबारी की है, इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, कई सैन्य ठिकाने पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिए गए हैं। हमलों से रिहायशी इलाकों को भी खासा नुकसान पहुंचने की खबर पहुंची है और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने तो बाकायदा एक इलाके की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की और नुकसान की पूरी जानकारी दुनिया के सामने साझा की है। वैसे तो इस वक्त पेरिस में है यूक्रेन के राष्ट्रपति और पूरे यूरोप का समर्थन हासिल करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने गुहार लगाई कि रूस की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उन्हें हवा में ही गिराने के लिए जिस एंटी मिसाइल शील्ड की उन्हें जरूरत है यूक्रेन को वो दी जाए। यूक्रेन धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है रूस के सामने, ये यूरोप के नेताओं के सामने उन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि अब 2022 से शुरू हुआ युद्ध, फरवरी 2022 में युद्ध शुरू हुआ था, अब ये जुलाई 2026 है और यूक्रेन की ताकत अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है। अगर उसे अब पश्चिमी देशों ने हथियार नहीं दिए तो इस युद्ध को जीतना उसके लिए असंभव हो जाएगा। वैसे कई यूरोपीय देश एकजुट होकर जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस शील्ड है, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को बनाने और यूक्रेन की मदद करने के लिए आगे आ तो रहे हैं, लेकिन जिस संख्या में यूक्रेन को हथियार चाहिए और जिस गति से यूक्रेन को हथियार चाहिए वो उसे नहीं मिल पा रहे हैं। दरअसल यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर रूस के हमलों की खबर तेजी से आ रही है। यूक्रेन इससे उबर भी नहीं पाया, कई घंटों तक बमबारी और तबाही का ऐसा तांडव देखने को मिला है जिससे उबरने में यूक्रेन की सेना और आम नागरिकों को अभी लंबा वक्त लगेगा। नुकसान केवल सैन्य ठिकानों का नहीं हुआ है, रिहायशी इलाकों में भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। और आप अंदाजा लगाइए, अगर 3000 किलोग्राम का एक नहीं बल्कि कई बम रूस ने अलग अलग शहरों में बरसाए हैं तो कितना नुकसान हुआ होगा, हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें देखकर आप भी दहल जाएंगे। जगह जगह धमाकों की आवाज और आग के शोले, धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। देखिए रूस के इस विनाशकारी हमले और सीरीज ऑफ अटैक्स हुए हैं रूस की तरफ से, उस पर हमारी यह खास क्राउड रिपोर्ट।

0: यूक्रेन के डोनेट्स्क के शिरोवो इलाके की इन दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए। दोनों एक ही जगह की हैं। पहली तस्वीर में 4 से 5 झोपड़ी नुमा ठिकाने हैं। दूसरी तस्वीर 10 से 15 सेकंड बाद की इसी जगह की है। हमले के बाद इनके परखच्चे उड़ चुके हैं। 3000 किलो के बमों ने मचाई भारी तबाही। रूसी हमले में यूक्रेन के कई इलाके बर्बाद। कीव पर भी बरसाए बम, 10 दिन में तीसरा बड़ा हमला। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेनी सेना के टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट यूनिट के कई ठिकानों को इन हमलों में तबाह किया है। डोनेट्स्क की कमांड पोस्ट को निशाना बनाकर किए गए इन हमलों से हुए नुकसान का अभी तक यूक्रेन की ओर से कोई खुलासा नहीं किया गया है। रूस ने ओरिखोव इलाके में हमले की तस्वीरें भी जारी की हैं। ये हमले भारी आबादी वाले जेपोरिजिया रीजन के इस इलाके में किए गए। जिस FAB-3000 बम से हमला किया गया था उसमें करीब 1270 किलो विस्फोटक लदा हुआ था। पूरी दुनिया में ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हैरान कर देने वाला ये हमला रूस ने किया है। जेपोरिजिया में किए गए इस हमले में ड्रोन या किसी साधारण मिसाइल की जगह एक ऐसे विनाशकारी बम को गिराया गया जिसे आम तौर पर किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए ही गिराया जाता है। ये है 3000 किलो का FAB कैटेगरी का वो बम जिससे हुई तबाही ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। बम गिरते ही एक के बाद एक कई धमाके होने लगे। 10 से 15 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। आग की लपटें चारों ओर फैल गईं और काले धुएं का गुबार किसी परमाणु विस्फोट की तरह आसमान को छूने लगा। इस महीने रूस और यूक्रेन के हमलों में तेजी आई है और 4.5 साल से चल रहा युद्ध और भीषण हो गया है। रूस ने पिछले 15 दिन में यूक्रेन की राजधानी कीव पर तीसरा बड़ा हमला किया है। ये यूक्रेन की राजधानी कीव में सुबह के नजारे वाली तस्वीरें हैं। आमतौर पर इस मौसम में आसमान बिल्कुल नीला दिखाई देता है, लेकिन मंगलवार की सुबह धुएं की परत पूरे आसमान पर बिखरी दिखाई दी। इसकी वजह थी पूरी रात हुई रूस की बमबारी। रात भर रूसी मिसाइलें गरजती रहीं और बम बरसाती रहीं। रूस की 8 S-400 बैलिस्टिक मिसाइल से हुए इन हमलों से कीव दहल गया। यूक्रेन ने हाल ही में मिली पैट्रियट इंटरसेप्टर से इन्हें रोकने की कोशिश की और 4 हमलों को नाकाम भी कर दिया, लेकिन रूस की बाकी 4 मिसाइलें अपने ठिकानों पर पहुंचने में कामयाब हो गईं। इनमें से कई हमले रिहायशी इलाकों में किए गए थे। कई हाई राइज बिल्डिंग इनकी चपेट में आ गई और उनमें आग लगने से लोग फंस गए। रूस के इन हमलों से सड़कों में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, कारें जल चुकी हैं, इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं। राहत दल पूरी रात बचाव अभियान चलाते देखे गए। कई घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाना पड़ा। यूक्रेन ने भी पलटवार करते हुए रूस की ऑयल रिफाइनरी पर निशाना साधा है। पिछले एक महीने में यूक्रेन ने रूस के कई तेल डिपो पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यूक्रेन के इन हमलों में रूस के तेल उत्पादन और सप्लाई चेन को भारी नुकसान पहुंचा है। ताजा हमले में यूक्रेन ने गाज़प्रोम सलावत रिफाइनरी को निशाना बनाया जो उसकी सीमा से करीब 1400 किलोमीटर दूर है। इस हमले के फौरन बाद रिफाइनरी में आग लग गई और आग की लपटों ने पूरे परिसर को अपने आगोश में ले लिया। आग और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। पिछले कुछ वक्त से रूस के हमले अब रिहायशी इलाकों पर भी बढ़ रहे हैं, जिससे जान गंवाने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। यूक्रेन ने क्रीमिया के साथ साथ मॉस्को के आसपास के इलाकों में उन ठिकानों को निशाना बनाना तेज कर दिया है जिससे रूस में तेल का संकट बढ़ाया जा सके। आज तक ब्यूरो।
1: आप सोचिए, ये जंग फरवरी 2022 में शुरू हुई थी और अब आधा जुलाई 2026 का निकल चुका है। रूस की तरफ से अब अटैक्स इंटेंसिफाई किए जा रहे हैं, तेज किए जा रहे हैं। कई जगह 3000 किलोग्राम के बम गिराए गए हैं। यूक्रेन के वो कौन कौन से इलाके हैं, अब हम आपको यूक्रेन के इस मानचित्र पर ये इलाका दिखा रहे हैं और इनका महत्व क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस मानचित्र पर देखिए, ये तो है यूक्रेन की राजधानी कीव। कीव न केवल एक आर्थिक केंद्र है बल्कि एक राजनीतिक केंद्र है, और जब कीव पर हमले होते हैं तो ये यूक्रेन के दिल पर हमला करने की तरह है, ये यूक्रेन को झकझोरने के लिए है। साथ ही उत्तर में चर्निहाइव पर अगर हमला हो रहा है या ज़ेपोरोजिया पर, और ज़ेपोरोजिया एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, डेनिप्रो नदी जहां से गुजरती है, यहां इनका बहुत महत्वपूर्ण एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है ज़ेपोरोजिया का, वहां पर हमले हो रहे हैं। डेनिप्रो और डोनेस्क दोनों बहुत महत्वपूर्ण के जिन पर भारी बमबारी हो रही है, आधे से ज्यादा डोनेस्क तो अब रूस के कब्जे में है। डेनिप्रो का भी एक इलाका, सीमावर्ती इलाका, अब इस दिशा में रूस की सेना आगे बढ़ रही है, तो अब एक तरह से सीमा यहां तक बढ़ती जा गई है, रूस का वर्चस्व इन इलाकों तक आ गया है। जहां जहां अभी भी यूक्रेन की सेना है उन पर भारी बमबारी हो रही है, ज़ेपोरोजिया पर हो रही है, चर्निहाइव पर हो रही है, ज़ाइटामोर पर हो रही है, और जो महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है ओडेसा, रूस ने कई बार कोशिश भी की कि अगर ओडेसा पर भी उसका कंट्रोल हो जाए, वो नहीं हो पाया, लेकिन ओडेसा पर बमबारी जारी है। ये आपको दिखाता है कि किस तरह से बहुत कोशिश कर रहा है रूस कि वो यूक्रेन के शक्ति के स्तंभ जो है उनको ध्वस्त करे। रूस के हमलों से नाराज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने क्या किया, अब हम आपको बताते हैं। जो फैब 3000 है, तबाही मचाने वाला वो आसमानी दैत्य, ये आसमानी दैत्य क्यों है ये हम आपको समझाते हैं। दरअसल ये एक हाई एक्सप्लोसिव एरियल बॉम्ब है। एरियल बॉम्ब का मतलब ये है कि ये 3000 किलोग्राम का बम, 1500 किलोग्राम इसमें विस्फोटक है। इसकी जो कुल मिलाकर लंबाई है, ये 3.3 मीटर इसकी लंबाई है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा, कितना लंबा ये बॉमर विमान से गिराने जाने वाला बम है। ये जो फैब सीरीज है M54, इसका एक अत्याधुनिक वर्जन है, जिसको रूस की सेना एरिया डोमिनेशन के लिए, यानी जिस एरिया में वो भारी तबाही मचाना चाहती है वहां पर इस बम को गिराती है, क्योंकि उसके आसपास के पूरे इलाके में अब यूक्रेन की सेना वहां कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा, ये SU-34 जो विमान है उससे इसको लॉन्च किया जाता है, जैसे भारत के पास Su-30 MKI है, उसी सीरीज में Su-34 रूस का एक स्ट्रेटेजिक विमान है जिसका वो इस्तेमाल करता है, फाइटर बॉमर विमान है उसका इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसकी खासियत क्या है, इसका जो ब्लास्ट का रेडियस है, जो पैमाना है जिसमें बमबारी होती है, जिसमें नुकसान पहुंचता है, वो बहुत बड़ा है, सैकड़ों मीटर तक ये काफी असरदार रहता है, क्योंकि न केवल जब बम गिरता है उससे नुकसान, बल्कि जिस तीव्रता से विस्फोट होता है एक बड़े इलाके में पूरी तरह नुकसान वहां पर होता है। फिर इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, बहुत महंगे बम है ये, इनका इस्तेमाल जो दुश्मन के वाइटल एसेट्स और वाइटल पॉइंट्स है, स्ट्रेटजिक एसेट्स है, उनको ध्वस्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सुरंगें महत्वपूर्ण, इमारतें महत्वपूर्ण, सैन्य ठिकाने महत्वपूर्ण, सैन्य ठिकानों की तबाही के लिए भारी नुकसान दुश्मन के पहुंचाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और रूस के हमलों से इस समय यूक्रेन बेहद नाराज है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को बताया कि रूस ने कहां कहां हमले किए, यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ। उन्होंने लिखा, रूस ने हमारे कई शहरों और कई इलाकों में अलग अलग तरह के 135 ड्रोन और 10 मिसाइलों से हमला किया। उन्होंने दावा किया कि इनमें से ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल्स थी। खार्किव के इलाके में 7 लोग घायल हुए, एक बच्चा भी घायल हुआ है। आम रिहायशी इमारतों पर हमला हुआ, एक गैस स्टेशन पर हमला हुआ, रेलवे के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया। चर्निहाइव का जिक्र करते हुए, वो उत्तर में जो एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है यूक्रेन के, चर्निहाइव इलाके में 3 लोग घायल हुए। रूस ने एक रिहायशी इमारत और पावर ग्रिड की सुविधाओं को इस समय नुकसान पहुंचाया है। हजारों परिवार इस समय बिजली से वंचित हैं चर्निहाइव के इलाके में। फिर अगर आप दक्षिण की तरफ आगे बढ़े तो ज़ेपोरोजिया का इलाका, वहां पर भी यूक्रेन का दावा है कि एक बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला किया। राजधानी में 16 जगहों पर यह हमले हुए, स्कूलों पर नुकसान हुआ, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया। अच्छा, अब जो सीमावर्ती इलाका है, हम डेनिप्रो की बात करें, डोनेस्क की बात करें, ज़ाइटमेर की बात करें, तो ओडेसा जो पोर्ट का इलाका है वहां पर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, रूस के हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मांग की है कि रूस पर और ज्यादा अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने की समय आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, यूरोपियन यूनियन ईयू का जो 21वां प्रतिबंध पैकेज है उसे तुरंत लागू कर देना चाहिए। आज मंगलवार हो गया है, इसी हफ्ते इसे लागू कर देना चाहिए। प्रतिबंधों के फैसले में हर दिन की देरी रूस को और तैयारी करने का समय देती है। रूस और ताकतवर होता है हर चीज, फिर चाहे वो माइक्रोचिप्स हो या फिर दोहरे इस्तेमाल में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान, डुअल यूज टेक्नोलॉजी हो, जिसका इस्तेमाल रूस युद्ध को और लंबा खींचने और यूक्रेन पर और बड़े हमले के लिए कर सकता है, उन्हें रूस पहुंचने से पूरी तरह रोका जाना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूरोप की एंटी बैलिस्टिक क्षमताओं पर हमारे सहयोगी के साथ हुए समझौते सचमुच यूक्रेन के लोगों की सुरक्षा को और बेहतर बना सकते हैं, इसीलिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द यूक्रेन को और हथियार और खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड मिलनी चाहिए।
2: Сьогодні відбулась зустріч коаліції охочих. Дуже важлива зустріч, результативна. Ми не просто зберігаємо цей формат. Ми в рамках коаліції рухаємось до моменту, коли можна буде констатувати, що мир стає ближче, і саме співпраця між нами тут в Європі та з Америкою, з президентом Америки, з усіма в світі, хто хоче миру, саме наша співпраця наближає завершення війни. 40 учасників було сьогодні. До коаліції приєдналась Молдова, Північна Македонія. Ми вітаємо це рішення. Сьогодні багато хто говорив, що зараз завдяки нашим воїнам, нашим операціям особлива ситуація. І цілком справедливий наш тиск на Росію дійсно значний. Треба тиснути більше. Співпраці в Європі має бути більше.
1: तो यूक्रेन का दावा है कि यूरोप के देशों को मिलकर यूक्रेन की रक्षा करने के लिए एक साझा सैन्य रणनीति बनाकर उन्हें हथियार देने की आवश्यकता है। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, लेकिन रणभूमि में आज इतना ही। छोटा सा ब्रेक, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
5: Hi, it's Sierra Miller. I can't wait for you to check out my new collection of shoes and accessories at Designer Shoe Warehouse. If you love shoes as much as I do, then trust me, I got you. From cute sneakerinas to the perfect flip-flops to stunning heels, these shoes are all style, no drama. It's a girl's girl summer, and DSW has just the shoes. Shop the Sierra Miller collection right now at your DSW store or DSW.com.
6: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
8: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn, a carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus, featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar, plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
9: The action never stops, and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversations. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first, welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
10: Jai Hind friends, Isaiah, Sona, Masala ya Vistar. 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक? तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।

0: यूपी के सीएम आदित्यनाथ की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात संभव, शाम 6 बजे दोनों के बीच हो सकती है मीटिंग। यूपी चुनाव को लेकर मंथन के आसार। दिल्ली के अंकित हत्याकांड में ताहिर हुसैन को दोषी करार दिए जाते ही बीजेपी का हल्ला बोल, कहा ताहिर केजरीवाल का दाहिना हाथ, वो सिर्फ एक्टर, कोई और था डायरेक्टर। 23 से सजा पर बहस। तीन भाषा नीति पर केंद्र और एनसीईआरटी को नोटिस, सीबीएसई को 10 दिन में जवाब देने के निर्देश। एससी ने फिलहाल रोक लगाने से किया इनकार, क्लास 9वीं से तीन भाषा नीति को दी गई चुनौती। खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई दर ने भी लोगों की जेबें की ढीली, जून में 9.37% पहुंचा। ईंधन ऊर्जा कीमतों ने इजाफा का पड़ा असर, खाद्य महंगाई पर बढ़कर 5.50% हुई। ईरान के हमले में भारतीय नाविक की मौत पर विदेश मंत्रालय सख्त, दिल्ली में ईरानी राजनयिक को किया तलब, जहाजों पर हमले को लेकर जताया विरोध, तत्काल अटैक रोकने की मांग की।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में एक अदालती फैसले को लेकर है। अदालत में यानी कड़कड़ूमा कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसके मुताबिक अंकित शर्मा, जो एक खुफिया विभाग के अधिकारी थे, उनकी हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के तत्कालीन पार्षद और AIMIM के 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के एक प्रत्याशी ताहिर हुसैन को इस पे दोषी करार दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ पांच और आरोपियों को भी दोषी करार दिया गया है। इस सरकारी रिकॉर्ड को अगर नजर डाले तो 53 लोगों की दिल्ली दंगों में हत्या की गई थी और इसी में खुफिया विभाग के अफसर अंकित शर्मा भी शामिल थे। सेशंस कोर्ट ने फिलहाल यह फैसला सुनाया है और 11 में से पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है और उन पांच में से एक तत्कालीन पार्षद और AIMIM के प्रत्याशी भी है। अदालत ने ताहिर हुसैन को अलग अलग मामलों में दोषी पाया है जिसमें हत्या, अपहरण, दंगा समेत कई गुना शामिल है। मामले में सजा का ऐलान अब 23 जुलाई को होना है, लेकिन उससे पहले इस फैसले को लेकर जमकर राजनीति भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी दंगे के वक्त ताहिर का समर्थन कर रही थी, कह रही थी कि ताहिर इस दंगे में शामिल नहीं है और उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद और अदालत के फैसले के बाद ऐसा पल्ला झाड़ रहे हैं कि कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ताहिर मामले पर ओवैसी की पार्टी भी पूरी तरीके से चुप है। सिर्फ कांग्रेस ने यह बात जरूर कही है कि कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि ताहिर का नाम अगर कपिल होता तो वो जरूर बच जाता। उधर बीजेपी सवाल पूछ रही है कि एक्टर ताहिर दोषी करार दिया गया है लेकिन डायरेक्टर कहां है। आरोप लगा रही है कि दिल्ली दंगे में अंकित शर्मा की हत्या पर केजरीवाल और सोनिया गांधी ने सिर्फ तुष्टीकरण की खातिर चुप्पी साध रखी थी और पंजाब के लोगों को भी ऐसे नेताओं से अब सावधान रहना चाहिए। ऐसे में दंगल में हम चर्चा करेंगे कि दिल्ली दंगों के इस फैसले के छींटे पंजाब की राजनीति पर भी गिरेंगे क्या, क्योंकि पंजाब के भीतर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। कई सवाल है दिल्ली दंगे के बाकी आरोपियों का क्या होगा, क्योंकि कई ऐसे भी मामले हैं जिसमें कोई भी दोषी करार नहीं दिया गया है, उन्हें छोड़ दिया गया है। उन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं।
1: छह साल पहले दिल्ली में हुए दंगे को लेकर दिल्ली की अदालत ने जो फैसला सुनाया उसे लेकर सुलगती सियासत का एक सिरा पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार तक पहुंचता है। 2020 की फरवरी के आखिरी हफ्ते में दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की हत्या हुई थी। मारे गए 40 मुस्लिम और 13 हिंदुओं में एक नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर अंकित शर्मा का भी था, जिसकी हत्या के केस में कड़कड़डूमा की अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया।
2: कड़कड़डूमा में ASJ कोर्ट ने अंकित शर्मा, जो कि IB के एम्प्लॉई थे, उनके मर्डर केस में पांच लोगों को सजा सुनाई है, जिसमें ताहिर हुसैन, जावेद, अनास, नाजिम और कासिम शामिल हैं। इनको 188, 153, 147, 48, 49 IPC और 365 और 302 में सजा सुनाई गई है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो केस की थी वो क्राइम ब्रांच ने करी थी।
1: दंगों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में जो आरोप लगाए थे उनमें से अदालत ने हत्या की धारा 302, अपहरण की धारा 365, दंगे से जुड़े अपराधों की धारा 147, 148, 149 और समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की धारा 153 और सरकारी आदेश तोड़ने की धारा 188 के तहत ताहिर को दोषी करार दिया है।
3: ये जो ट्रायल था टोटल 11 लोगों के केस था, 11 में से 6 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है और जो गिल्टी हेल्ड किया है वो 5 लोगों को दिया है।
1: दोषियों की सजा का ऐलान 16 जुलाई को होगा, लेकिन पांच दोषियों में से एक आम आदमी पार्टी के तत्कालीन पार्षद और AIMIM के विधानसभा उम्मीदवार रहे ताहिर हुसैन ने इसे नाइंसाफी कहा है।
4: ताहिर जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए।
1: लेकिन BJP से इंसाफ की मिसाल कहती है और 51 बार चाकुओं से गोद कर मारे गए अंकित शर्मा के हत्यारों के साथ ताहिर हुसैन के गुनाह का जिक्र भी करती है।
5: ही हुसैन, ताहिर हुसैन इंस्टिगेटेड द मॉब व्हेन अंकित केम फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस मॉब। जब अंकित शर्मा अपने कर्तव्य का पालन करके भीड़ के सामने आता है तो ताहिर हुसैन वो गुंडा है जो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ था, जिसने भड़काऊ बयान दिए और जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। और आगे कोर्ट कहता है, When the accused persons were acting in pursuance to a conspiracy and common object to kill Hindus, it covered killing of Ankit as well for the reasons that Ankit was killed because he was a Hindu.
1: सियासत ये है कि दिल्ली की घटना पर पंजाब में पॉलिटिकल घेराबंदी हो गई, क्योंकि दिल्ली दंगे से ठीक पहले दिल्ली पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दे चुके कपिल मिश्रा ने अब इन दंगों के डायरेक्टर का सवाल उठाया है।
6: ताहिर हुसैन केवल एक्टर है, इस पूरे घटनाक्रम का डायरेक्टर कोई और लोग है, मास्टरमाइंड कोई और लोग है।
1: हालांकि चुप्पी सिर्फ आम आदमी पार्टी लीडरशिप की ही नहीं है। जिस AIMIM ने पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया था, दिल्ली दंगे के आरोपी होने के बावजूद जो ताहिर 33,000 वोट पाता है, अब तक ओवैसी की पार्टी उस पर चुप है, लेकिन केजरीवाल की पार्टी के विधायक अब भी ताहिर हुसैन के समर्थन में खड़े हैं।
7: कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का सेशन से आया है, तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे।
1: केजरीवाल के विधायक को ताहिर के लिए ऊपरी अदालतों में इंसाफ की उम्मीद बची हुई लगती है, तो कांग्रेस के नेता ताहिर के साथ इंसाफ की उम्मीद छोड़ चुके हैं और वजह बताते हैं ताहिर का मजहब।
8: उसका नाम ताहिर है, ये बड़ी चीज है, अगर उसका नाम कपिल होता वो भी बरी हो जाता।
1: दरअसल दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन के दोषी करार होने का असर अब दिल्ली से पंजाब तक दिख रहा है, क्योंकि पंजाब में बीजेपी की दो चुनौतियां केजरीवाल और कांग्रेस हैं, लिहाजा बीजेपी अब ताहिर कांड के जरिए दोनों दलों को कटघरे में खड़ा करना चाहती है।
9: हमले का कोई मास्टरमाइंड है तो वो अरविंद केजरीवाल है, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता ने तो इस घटना को अपनी आंखों से देखा था और दिल्ली विधानसभा में उनको सबक सिखाया है, लेकिन अभी पंजाब की जनता को समझना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो दो मुंह चरित्र वाला आदमी है, जो कहेगा वो करेगा नहीं और जो करता है वो बताता नहीं है।
5: क्यों है कि घटिया ओछी राजनीति करने के लिए सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं, गिद्ध बन के लाशों पे जो राजनीति करते हैं और पीड़ित परिवार के साथ नहीं खड़े होते हैं, ये खड़े होते हैं आरोपी के साथ, क्योंकि आरोपी का धर्म इन्हें दिखाई देता है, वो इनका वोट बैंक है।
1: हालांकि दिल्ली दंगे को लेकर AIMIM सवाल उठाती रही है कि जिस दंगे में 53 लोगों की जान चली गई, उसमें 6 साल बाद भी सिर्फ एक हत्या के केस में दोषियों की पहचान क्यों हो पाई? आखिर वो कैसी जांच थी जिसमें इसी दंगे में मारे गए हाशिम अली की हत्या के 12 और अनवर हत्याकांड के 5 आरोपी बरी हो जाते हैं? दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: तो दिल्ली दंगों में 53 लोगों की जान गई थी और ये पहला मामला है 6 साल के बाद जिसमें किसी का कन्विक्शन हुआ है, कोई दोषी पाया गया है। हालांकि सजा का ऐलान 23 तारीख को होगा, लेकिन इसके साथ साथ राजनीति भी शुरू हो गई और चर्चा इसी बात को लेकर भी होगी कि 6 साल के बाद एक ही कन्विक्शन और इसी बात को लेकर राजनीति भी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, हुदा जरीवाला पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी इस पर अपनी भूमिका रखेंगे, आम आदमी पार्टी और MIM इस मुद्दे को लेकर चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते, वो इस चर्चा में नहीं है, अजय वर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर अपनी भूमिका रखेंगे और विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार भी इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल इस पैनल के सामने और उसके साथ साथ थोड़ी देर में हमारे साथ में कपिल मिश्रा दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली दंगों को लेकर उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए थे और वो कई और भी मुद्दे इसमें जोड़ना चाहते हैं, उस पर उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन मामला अब मजहबी बनता जा रहा है, क्योंकि सवाल सीधे सीधे उठाया जा रहा है कि अगर ताहिर की जगह कपिल होता तो हो सकता है कि फैसला कुछ और होता। पहला सवाल हमारा इस पैनल को यही होगा कि क्या इस पूरे मामले को मजहबी बनाना क्या सही साबित होगा, आखिरकार कौन इस मामले को मजहबी बना रहा है। दूसरा सवाल, केजरीवाल और कांग्रेस को लेकर भी अब भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को घेरना शुरू कर दिया है और खास करके पंजाब को लेकर, तो ताहिर हुसैन के कन्विक्शन के बाद केजरीवाल और कांग्रेस को घेरना क्या एक सियासी चाल है, दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, इस पूरे मामले को लेकर अब क्या पंजाब के भीतर भी सियासी राजनीति खेली जाएगी और उसको लेकर भी घेरने की कोशिश होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले कपिल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री है। कपिल मिश्रा जी, पहला सवाल मेरा यही होगा इस पूरे कन्विक्शन को लेकर, पहली केस है 53 में से कि जिसमें कोई कन्विक्शन दिखाई दे रहा है,
10: जिसमें सरकार के तरफ से दोषी पाए गए 5 लोग और उसमें ताहिर हुसैन भी शामिल है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है?
11: देखिए, बहुप्रतीक्षित ये न्याय फाइनली जाकर हुआ है एक पर्टिकुलर केस में, जिसमें सभी को पता था अंकित शर्मा जी को ताहिर हुसैन के घर में ले जाया गया, 51 बार चाकुओं से उनको गोदा गया और शव को नाले में फेंक दिया गया। 2 दिन बाद वो शव नाले से निकला और वो दृश्य पूरे देश ने देखा, दिल्ली ने देखा। तो ये एक तरह से इसमें अपराधी कौन है ये पूरी दिल्ली जानती थी, पूरा देश जानता था। लेकिन न्याय की अपनी एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया पूरी हुई है, ताहिर हुसैन दोषी सिद्ध हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का एक एक्टर है, लेकिन इसके मास्टरमाइंड, इसके डायरेक्टर और भी बहुत सारे लोग हैं, और या तो कानून की अदालत में अन्यथा ईश्वर की अदालत में उनका भी न्याय होना अभी बाकी है।
10: तो इसका मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक दिल्ली पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की है, क्योंकि इसमें 53 में से यह पहला मामला है जिसमें कन्विक्शन मिला है, बाकी मामलों में नहीं मिला है, और आप कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेटर तो अभी तक पकड़े ही नहीं गए।
11: नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कन्विक्शन बाकी है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है लार्जर कॉन्स्पिरेसी का, जो पूरा केस है जो देश की अदालतों में चल रहा है और उसके अपराधी जेल के अंदर भी बैठे हुए हैं, तो इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली चल रहा है। लेकिन क्योंकि कानून की, जैसा कि मैंने कहा, न्याय की अपनी एक गति है और वो गति पक्षपात रहित हो, इसके लिए समय भी उसमें लगता है, वो समय लग रहा है। और हम भी सभी लोग जो पीड़ित पक्ष है वो शांति से न्याय की प्रतीक्षा में है और न्याय मिलना शुरू हो चुका है। ताहिर हुसैन ने जो अपराध किया अंकित शर्मा जी के साथ, वो

0: घर के वीडियो फुटेज वो सब कुछ सबके सामने था। तो ये ओपन एंड शट केस था, इसमें ताहिर हुसैन का अपराध सिद्ध हो चुका है और हम ये मानते हैं स्वागत योग्य निर्णय है।
1: लेकिन ताहिर हुसैन जो है हत्या अपहरण के मामले में दोषी है, कॉन्स्पिरेसी के मामले में दोषी नहीं है, यानी साजिश रचने के मामले में दोषी नहीं है, तो कॉन्स्पिरेटर कौन है? क्योंकि आखिरकार दंगे भड़काने और कॉन्स्पिरेसी करने के आरोपी मुख्य आरोपी होते हैं, तो वो कौन है?
0: इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपसे, मैंने मेरे बात ही यहीं से मैंने शुरू की है कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट में एक मासूम आईबी ऑफिसर का जो मर्डर हुआ उसका फैसला आया है और बहुत फैसला लार्जर कॉन्स्पिरेसी का फैसला आना और अपराधी और मास्टरमाइंड जिन्होंने सड़कें बंद करवाने का पाप किया, जिन्होंने लोगों को भड़काने का, सड़कों पे आने का, आग जलाने का, दंगा करवाने का, उसकी जो कॉन्स्पिरेसी जो लोग कर रहे थे, जो बार बार इनके पक्ष में खड़े हो रहे थे, जो अपराधियों को बेगुनाह साबित करने का नैरेटिव मीडिया में पत्रकारों के माध्यम से, चुनिंदा पत्रकारों के माध्यम से, कुछ वकीलों के माध्यम से, कुछ एनजीओ, कुछ एक्टिविस्ट, कुछ लेखक विचारकों के माध्यम से जो इकोसिस्टम जिहादी और आतंकवादी को बेगुनाह साबित करने का नैरेटिव चलाता है, उनमें से कई लोग न्याय की अदालत में साबित होंगे लेकिन बहुतों का न्याय ईश्वर की अदालत में होगा।
1: नहीं, लेकिन मतलब आप यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मैं यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लेखक है, पत्रकार है, जो एक्टिविस्ट है, जो सीएएनआरसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, वो सारी इसमें कॉन्स्पिरेटर है, उन्होंने दंगे भड़काए यहां पर।
0: साहिल जी, मेरा जो कहना है वो बड़ा सिंपल है। इस देश में एक इकोसिस्टम है जो जिहादियों को मासूम बताने का पाप बार बार करता है उसके लिए, और उसमें उसके मीडिया में बैठे हुए लोग भी हैं, पत्रकार जगत में, न्याय जगत में, वकालत में, और ये एक खुला हुआ सच है। मैं कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा जिसमें किसी को कोई अचंभा हो जाए या कोई सरप्राइज हो जाए। दिल्ली दंगों के एक फैसले का न्याय हुआ है, हम लोगों ने सबको बहुत पीड़ा है, 6 साल पहले की घटना है, लेकिन ऐसा लगता है कल ही हो, जब आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को घसीटा गया था, उनको लेके जाया गया था, जब सड़कें बंद कर दी गई थी, जब दुकानें जलाई गई थी, दिलबर नेगी जैसे मासूम उत्तराखंड के बालक को पहले हाथ पैर काटे और उसके बाद जिंदा जला दिया गया, वो सब चीज ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत पुरानी बात हो चुकी है। उसकी पीड़ा, उसका कष्ट अभी हम लोगों की आंखों में, उसके आंसू अभी सूखे नहीं है। तो डेफिनेटली ये एक जो निर्णय है न्यायालय का उसी दिशा में है, न्याय की दिशा में है। लेकिन यह भी बात सच है कि बहुत सारे अपराधी शायद कभी भी, क्योंकि उनके जो अपराध हैं वो माइंडसेट में जहर घोलने के अपराध हैं, और ये अपराध उन्होंने नक्सलियों के समर्थन में भी किए, बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों के समर्थन में भी किए, और यही अपराध आज वो उमर खालिद और ताहिर हुसैन जैसे लोगों के समर्थन में भी कर रहे हैं।
1: लेकिन मामला सिर्फ अंकित शर्मा की हत्या का नहीं है, यह बात मैं मानता हूं कि यह जघन्य अपराध है जिस तरीके से हत्या की गई थी, लेकिन उसके साथ साथ कई और हत्याएं हुई है जिसमें कन्विक्शन नहीं हो पाया है। इमरान मसूद इसीलिए कह रहे हैं कि अगर ताहिर कपिल होता तो शायद इस तरीके की सजा नहीं होती, वो दोषी नहीं पाया जाता।
0: अगर ताहिर कपिल होता तो अपनी छत पे पत्थर ही नहीं रखता, बम ही नहीं रखता, मंदिरों की तरफ निशाना बनाते हुए गुलैल ही नहीं रखता। अगर ताहिर कपिल होता तो उसके हाथ में चाकू ही नहीं होता। अगर ताहिर कपिल होता तो पत्थर लेके सड़कों पे निकलने वाली भीड़ को उकसाने का काम ही नहीं कर रहा होता। अगर ताहिर कपिल होता तो सड़कें बंद करने का जो पाप है वो ही नहीं करता। अगर ताहिर कपिल होता तो बहुत कुछ ऐसे अपराध हैं जो होते ही नहीं, लेकिन वो कपिल नहीं है। और जिस भाषा में, जिस संदर्भ में आप कह रहे हैं, इमरान मसूद ने जिस तरफ इशारा किया है उसी तरफ इशारा करूं तो कसाब से लेकर और भी कोई भी जितने भी आतंकवादी हैं उनके भी जो नाम है और उनकी और पहचान है वो एक कारण है उनके आतंकवादी और जिहादी होने का। उनमें से कोई भी कपिल होता तो शायद वो जिहादी आतंकवादी होता ही नहीं।
1: नहीं, लेकिन जो कपिल है उन पर भी तो इन्फ्लेमेटरी स्पीच देने का या भड़काने के आरोप लगे थे। हमने सभी ने आपका वीडियो देखा था कि जिसमें आप डीसीपी के बगल में खड़े हैं और भड़का रहे हैं कि अगर इन लोगों को हटाया नहीं गया तो उसके बाद कानून हाथ में ले लेंगे, तो ये भी तो कपिल देखे हुए हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है?
0: साहिल जी, सारी चीजें आपके ही चैनल पे चली हैं, देश के सभी मीडिया चैनल्स पे चली हैं। मैंने जो बोला वो भी सबके सामने चला है और बाकी लोगों ने जो बोला वो भी सबके सामने चला है, पर आज मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि इस देश में सड़कें बंद करवाना अपराध है, लेकिन बच्चे स्कूल चले जाएं, बुजुर्ग अस्पताल चले जाएं, लोग अपने काम धंधों पर, नौकरी पर जा सकें, इसके लिए सड़क खुलवाने की मांग करना यह अपराध नहीं हो सकता है। किसकी छत पर पत्थर थे, ये वीडियो रिकॉर्डेड है ना। आज हम सवाल इस प्रकार से कर रहे हैं जैसे हमने वीडियो देखे ही ना हो, जैसे हमने सत्य देखे ही ना हो। वीडियो में है कि ताहिर हुसैन की छत पर बम

0: थे, पत्थर थे, गुलेल थी। वीडियो में है कि रस्सी बांध बांध के स्कूलों के अंदर उतर के लोगों को मारा गया। वीडियो में है किस प्रकार से शव निकल के आया। उन लोगों के बयान भी वीडियो में है जिन्होंने लगातार, जो उस वक्त सत्ता में बैठे थे दिल्ली की और ताहिर हुसैन को बेगुनाह कहने का पाप कर रहे थे, बार बार बेगुनाह कह रहे थे, और उन्हीं के लोग आज भी बार बार ताहिर हुसैन को बेगुनाह साबित करने का अपराध कर रहे हैं, जबकि न्यायालय में अपराध सिद्ध हो चुका है। तो मुझे यह लगता है कि आज हम मुद्दे को कितना भी डाइवर्ट करने की कोशिश करें, लेकिन 6 साल से यही झूठा नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है कि अपराधी कौन। मैं फिर से कहना चाहता हूं, सड़क बंद करने वाले लोग जिन बस्तियों से, गलियों से, मोहल्ले से निकले थे, दंगा करने वाले लोग भी उन्हीं बस्तियों से, मोहल्लों से, गलियों से निकले थे। सीसीटीवी तोड़ के आग लगाने वाले लोग भी वहीं से निकले थे और हत्या करने वाले लोग भी वहीं से निकले थे। ये कोई विवादित विषय नहीं है, यह तथ्य में स्पष्ट में सूर्य के प्रकाश की तरह साबित हो चुका सत्य है।
1: ठीक है कपिल मिश्रा जी, आपका शुक्रिया। लेकिन यह दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि 2020 के दिल्ली दंगों के केस में 700 एफआईआर दर्ज किए गए थे और इसी अदालत ने 2 जून को अनवर की हत्या में सभी आरोपियों को निर्दोष करार दिया था, यह कहते हुए कि दिल्ली पुलिस की जांच में जो विटनेस अदालत के सामने आए वो सही तरीके से पेश नहीं किए गए, उन पर भरोसा अदालत को नहीं है। इसी तरीके से अप्रैल महीने में 12 लोगों को बरी किया गया था, जोरहार पुलिया में मुशर्रफ की हत्या हुई थी, उस मामले में 12 लोगों को बरी कर दिया गया था क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से नहीं देखा गया था। लेकिन आज की स्थिति में सवाल अभी भी यही उठता है और जिस तरीके से कपिल मिश्रा भी यहां पर कह रहे थे, अजय वर्मा जी, कपिल मिश्रा ये कह रहे हैं कि अगर ताहिर कपिल होता तो वो अपनी छत पर पत्थर नहीं रखता और इस तरीके की हत्याओं में शामिल नहीं होता, ये बात भी कहने की कोशिश हुई है। कांग्रेस पार्टी इसे मजहबी करार देने की तो कोशिश नहीं कर रही है जिसको लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, अजय वर्मा जी।
2: साहिल जोशी जी, दिल्ली में जब चुनाव चल रहे थे तो जो टॉप के हेट स्पीचर्स थे, जो देश की सोशल फैब्रिक खत्म कर रहे थे, उसमें से अभी ये वर्तमान में जो मंत्री जी बैठे हैं उनका नाम प्रमुखता से था, पूरे देश ने देखा था, वो रिपोर्ट भी थी, वो मुकदमे भी हुए, लेकिन जज भी इनके, गवाह भी इनके, कातिल भी इनके, मुकदमे भी इनके, वकील भी इनके, अपील भी इनकी, दलील भी। आपको याद होना चाहिए दिल्ली सरकार देश के गृह मंत्रालय के अंदर आती है और देश के गृह मंत्रालय में जो दिल्ली पुलिस और वहां की सिक्योरिटी थी वो माननीय अमित शाह जी थे। उसमें मैं कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, देश के 145 करोड़ लोग पूछ रहे हैं कि मानवता कलंकित हुई, मानवता शर्मसार हुई, मानवता का कत्ल हुआ। बात हिंदू मुस्लिम के कत्ल या हिंदू मुस्लिम के कोर्ट की नहीं है, 53 लोगों का वहां पर मर्डर हुआ, उसमें 40 मुसलमान थे और 13 हिंदू थे। लेकिन जो परिस्थिति आती है, जो हेट स्पीचर्स के गैंग के, प्रोपोगंडा गैंग के लोग हैं, ये देश की सोशल फैब्रिक को खत्म करके। अब आपसे मैं एक चीज, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, मेरा एक सुझाव आपको भी है साहिल जी, आप बहुत योग्य एंकर है। आपने कहा कि क्या इस केस का असर पंजाब के चुनावों में पड़ेगा। 24 जुलाई को देश की राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो रहा है 2027 में, और 2027 में 7 स्टेटों में चुनाव है जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब, गुजरात, ये और ये है, ये है। तो क्या ये 7 स्टेटों में इस केस का मुकदमे का सब 7 चुनावों में 7 स्टेट में नहीं पड़ेगा, अकेला पंजाब में ही क्यों? अकेला पंजाब में इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और उसका प्रोपोगंडा गैंग, उसकी सारे सहयोगी, जो 8 उसके सहयोगी हैं, ईडी, सीबीआईटी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, एसआईआर, ज्ञानेश मोदी, केंद्रीय सुरक्षा बल भी शामिल हो गए बंगाल चुनाव के बाद, उनका उद्देश्य यह है कि आने वाले चुनाव में पंजाब को हथियाया जाए। जी जोशी साहब बताएं, मैं पूरा जवाब दे दूं, मैंने
1: अपना जवाब आपको देना होगा ना, नहीं एक बात का तो जवाब देना मुझे, नहीं नहीं नहीं वो ठीक है, पंजाब पर हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि ये मेरा तीसरा सवाल था, पंजाब की सियासत को लेकर तीसरा सवाल था। मुख्य मुद्दे पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो सवाल मैंने कपिल मिश्रा जी को भी पूछे थे, यही सवाल आपको भी पूछना है। अदालत का फैसला है, अदालत ने कहा है कि ताहिर हुसैन हत्या, अपहरण और दंगे भड़काने के मामले में दोषी है, भले वो कॉन्स्पिरसी में नहीं हो लेकिन हत्या, अपहरण और दंगे भड़काने के मामले में वो दोषी है। लेकिन उसके बावजूद आप वहां पर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई कपिल अगर दाम होता तो शायद दोषी नहीं पाया जाता, ये किस आधार पर आप कह रहे हैं?
2: देखिए,
1: आपका अदालत पर भी भरोसा नहीं है, ट्रायल पर भी भरोसा नहीं है, इसका कारण जरा बता दीजिएगा मुझे।
2: साहिल जोशी जी, अदालत अपना काम कर रही है, देश का जो इस वक्त इको सिस्टम और देश में भारतीय जनता पार्टी का जो एक जो सेल है जिसे बोलते हैं स्लीपर सेल, पूरे देश के हर संस्थान में हर जगह घुस चुका है वो सत्ता पक्ष होने की वजह से। मैं इनके बहुत सारे सबूत आपको मिल जाएंगे, कहीं भी आप देख सकते हैं। अदालत दिल जो अपना काम कर रही है, जो दंगाई होगा, जो दोषी होगा, जो कातिल होगा। लेकिन कातिलों का मामला आता तो इशरत जहां के कातिलों को और उसके बलात्कार करने वाले उस बच्चे को गुजरात में टोपी, माला, मिठाई, बंदूकें छोड़ी जाती हैं। ये देश का, इस लोकतंत्र का कौन सा न्याय है? और अगर कहीं यहाँ दूसरी हत्याएं होती हैं, दूसरी चीजें होती हैं, हम तो देश के सोशल फैब्रिक पे बात कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान पे बात कर रहे हैं, हम ना तो अदालत पे कोई टिप्पणी कर रहे हैं, ना हम किसी
1: दोषी
2: होगा वो
1: भी पाया जाएगा। नहीं, ये अजय वर्मा जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप हो सको तो दोबारा आप मुझे बाद में समझा दीजिएगा, लेकिन अजय आलोक जी, जो मैं देख रहा हूं उसमें दो चीजें साफ नजर आ रही है। एक, मैंने दो उदाहरण सामने रखे, 700 एफआईआर और दो ऐसे केसेस दो महीने पहले यही अदालत में उनके सामने जाती है, अदालत कहती है कि दिल्ली पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं है और हम सबको बरी कर रहे हैं उसमें। इस केस में कन्विक्शन होता है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया आती है कि देखिए अगर इनका नाम कपिल होता तो शायद कन्विक्शन नहीं हुआ होता। क्या मतलब निकालेंगे आप? अजय वर्मा जी कह रहे हैं कि उससे जोड़कर मत देखिएगा।
0: मेरे और आपके मतलब निकालने से क्या होता है? कुछ होगा? कांग्रेस पार्टी के चरित्र या चेहरे पे कोई असर पड़ेगा? इस बयान के बाद देश क्या मतलब निकाल रहा है वो इंपॉर्टेंट है साहिल जी, और आपके कार्यक्रम से ये मैसेज भी जा रहा है कि कांग्रेस क्या चाहती है। आपके चैनल पर बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जज भी इनके, कोर्ट भी इनका, ट्रायल भी इनकी, एजेंसी भी इनकी। मतलब ये अपने शासन में ऐसे ही चलाते थे? दिल्ली दंगे जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमेशा एक चीज कॉमन आ रहा है, दंगाइयों को बचाने की कोशिश कौन करता है, और खासकर दिल्ली दंगों में। 1984 का सिख दंगा हुआ था, किसने दंगाइयों को बचाया? भारतीय जनता पार्टी ने बचाया कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा पीड़ितों के साथ लड़के लड़ाई लड़ी, नरेंद्र मोदी जी के शासन में आने के बाद उनको सजा मिली। आप तो खड़े थे सज्जन कुमार के साथ, टाइटलर के साथ, उनको मंत्री बना बना के। ये बात क्या पंजाब नहीं जानता है? ये बात दिल्ली नहीं जानती? ये बात देश नहीं जानता है? इस ताहिर हुसैन के लिए, जिससे खुलेआम हिंदुओं पर अटैक किया, एक शब्द नहीं निकला कांग्रेस पार्टी के उस 2020 में। आम आदमी पार्टी डिफेंड करते रही, कांग्रेस साइड से बचती रही। क्यों? क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएगा। इमरान मसूद कहता है कि अगर कपिल होता तो सजा नहीं होती। भाई इतना अगर नफरत हो गया देश के सिस्टम से और हिंदुओं से तो फिर यहां रहते क्यों? निकलो यहां से। आप ये सोचिए 2020 में डोनाल्ड ट्रंप यहां आने वाले थे, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने के लिए किया गया था। अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस दिन आए उस दिन दंगे भड़काए गए, साजिशन सोचा समझा प्लान करके दंगा भड़काया गया, हिंदुओं को मारा गया ताकि पूरे विश्व में हिंदुस्तान की छवि खराब हो सके, पूरे विश्व में हिंदुस्तान को दिखाया जा सके कि यहां पर अल्पसंख्यकों का दमन होता है, जो कि रोज दिन कांग्रेस पार्टी, सपाई और आम आदमी पार्टी हमेशा ये बोलते रहती है यहां दमन होता है। अगर दमन होता तो इमरान मसूद की औकात होती ये बात बोलने की, अगर कपिल होता तो बच जाता। ये दमन का निशानी है। खुलेआम कहते रहते हैं कि हमारी मस्जिदें शहीद कर दी, हम मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता, ये दमन होता है? दिन दिन भर पानी पी पी के मोदी को, भाजपा को गाली देते रहते हैं, ये दमन होता है? दमन इमरजेंसी में हुआ था जय जी, जरा पूछिएगा अपने पिताजी से, अपने दादाजी से कि क्या होता था दमन, जब मार डंडा जेल में ठूस दिया जाता था कोई बड़े से बड़ा नेता को। दमन इमरजेंसी में होता था जब बिना विपक्ष के पार्लियामेंट में पास करवा दिया। ये देश सेक्युलर देश है, खाक पत्थर सेक्युलर देश है ये।
2: देखिए आपको आलोक जी, शायद उम्र में आप छोटे ही होंगे, आप जो बात कर रहे हैं मैं बहुत समय से सारी चीजें देख रहा हूं, लेकिन जो 2014 के बाद का है, नया भारत विकसित हुआ है, जो 2014 के बाद एक नया भारत विकसित हुआ है, यहाँ परिभाषा ही, यहाँ सोशल फैब्रिक की परिभाषा या सिस्टम की परिभाषा, यहाँ हिंदू मुस्लिम की परिभाषा ही बदल गई है इस हिंदुस्तान में। मतलब यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी तो सबको रहने का समानता का अधिकार बाबा साहब का संविधान देता है। अगर गॉडसे का संविधान या आपका संविधान कोई है तो भाई वो मुझे पता नहीं है क्या कहता है। इस देश में, इस देश की जनता ये पूछना चाहती है आपसे कि कितने होते हैं, अगर कानून है तो सबके लिए समान हो, वो चाहे सलीम हो, रहीम हो, सतनाम हो और विक्टर हो या कपिल हो, सबके लिए समान हो। लेकिन अभी मैंने आपको एक और भी उदाहरण, में कई सारे उदाहरण, गऊ हत्या पर जब यूपी में एक इंस्पेक्टर को मार दिया जाता है गुलाबटी में और उसके एक हत्यारे को आप अपनी पार्टी में पदाधिकारी बना के माला पहनवाते हैं, तो ये आपका नैरेटिव और आपकी सोच और आपकी आंखें, ये देश नहीं देख रहा है, पूरे देश के
1: नहीं। लेकिन अगर हम दिल्ली दंगों की बात करें, अजय वर्मा जी,
2: अजीब सा ही
1: विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ में, लेकिन दिल्ली दंगों की बात करते हुए बड़ी दिलचस्प बात है, जो कन्विक्ट होता है उसके आधार पर पार्टियां चुनती है कि किसका साथ देना है। 2020 के इस दंगों में दिसंबर 2024 में 5 हिंदुओं को कन्विक्ट किया गया था, अदालत ने कन्विक्ट किया था, अनलॉफुल असेंबली के लिए कन्विक्ट किया गया था, दंगों के दौरान जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया उसके बारे में कन्विक्ट किया गया था, लेकिन तब तो यह मामला नहीं उठा था हिंदू मुसलमान का। अजय आलोक जी, इसीलिए तो सवाल उठता है ना, कई बार कांग्रेस पार्टी को भी मौका मिल जाता है कि ऐसे में अपनी राजनीति करे। आप भी उसी तरीके से, आज ताहिर हुसैन कन्विक्ट हुआ है तो आप उसको पंजाब से जोड़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं, यह आरोप लगाया जा रहा है।
3: देखिए, ताहिर हुसैन कन्विक्ट हुआ है, सारा मुसलमान नहीं कन्विक्ट हुआ है। ताहिर हुसैन के साथ जो जो दंगाई मुसलमान थे उनकी भूमिका जांचनी चाहिए। हमें भी आपके सामने मंत्री जी ने कहा कि डायरेक्टर कोई और है जिसकी जांच चल रही है, आने वाले समय में अदालतें उस पर भी निर्णय लेंगी। जब 5 हिंदू कन्विक्ट हुए थे तब तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि कन्विक्टों के साथ खड़ी हो जाए। कोई हम बोलेंगे क्या कि अमर अकबर अमर नाम था इसलिए कन्विक्ट हो गया, शमशेर नाम था इसलिए कन्विक्ट हो गया? आज ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ी, किसको पटाने की कोशिश हो रही है कि ये ताहिर था इसीलिए कन्विक्ट हो गया? हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, लेकिन ये मुस्लिम मुस्लिम 24 घंटा करते हैं। देश की सबसे बड़ी सोशल फैब्रिक के डैमेज करने वाले ये कांग्रेस ही है, आज से नहीं बहुत पहले से। मुसलमानों को कटवाते हैं दंगा में, चाहे वो भागलपुर का दंगा हो, चाहे कहीं का मेरठ का दंगा हो, चाहे कहीं का दंगा हो, इतिहास निकाल के देखिए। दंगा में सबसे अगर मुसलमानों को माने में कांग्रेस के शासन में हुई 2002 के बाद से, कभी आज तक गुजरात में दंगों का नाम भी सुना? कैसे हुआ ये? क्योंकि शासन प्रशासन आता है। यूपी में दंगे हुए 2017 के बाद से, बिहार में एक भी दंगा हुआ 22 साल से? ये दंगे करवाते हैं कांग्रेसी, ये मुसलमानों को पटाते हैं फिर कटवाते हैं। अफसोस है कि मुसलमान इस बात को समझता नहीं है। अरे देखिए ना, एक भी ऑफिशियल एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगा जहां भड़काने की कोशिश की गई वहां प्रशासन ने काम किया, दंगे नहीं करने दिए। दंगाइयों को भर दिया,
2: 2014 के बाद
3: डाल दिया गया, हिम्मत नहीं हुई दंगे करने की। आपका बस
2: एक मिनट दिसंबर 2014
3: सोनिया गांधी ने हमला किया था, रोड पे निकलो,
2: मणिपुर
3: रोड पे निकलो, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ो, हथियार उठाना है तो उठाओ। सोनिया गांधी ने क्यों कहा था
2: 2016
3: क्यों कहा था? सोनिया गांधी किसको भड़काना चाह रही थी? किसको भड़काना चाह रही थी? वो लोग आत्मा चाहते हैं कि देश का मुसलमान सड़कों पे आ जाए, आपके लिए हमला
2: करें। संजुबान हमला, दंतेवाड़ा हमला,
1: मुझे हुदा जरीवाला के पास भी जाना है।
2: अब पंजाब सुखमा हम याद
1: है, मुझे हुदा जम्मू बस स्टैंड जरीवाला के पास भी जाना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और AIIMM ने इस चर्चा में शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन एक मिनट अजय वर्मा जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनका बयान आ गया है पहली बार इस वर्डिक्ट को लेकर, जो कड़कड़ूमा कोर्ट का जो फैसला आया उसको लेकर उनका बयान इस वक्त आया हुआ है। उन्होंने कहा है कि ताहिर हुसैन को कोर्ट द्वारा दोषी करार दिया गया है, उसने दिल्ली में दंगे भड़काने का काम किया, वो दिल्ली और दिल्ली की जनता का दोषी है। रेखा गुप्ता यहां पर कह रही है हजारों लोगों को उसने पीड़ा दी है और आम आदमी पार्टी ने ताहिर को राजनीतिक संरक्षण दिया था। क्या कहा था उन्होंने, जरा सुना देते हैं।
4: क्या काम किया अंकित शर्मा की हत्या का जिम्मेदार जिसे पाया गया, ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली का दोषी है, दिल्ली की जनता का दोषी है, जिसने हजारों लोगों को पीड़ा दी और सैकड़ों लोगों की ने उसमें जान गंवाई, ऐसे ताहिर हुसैन के साथ में आम आदमी पार्टी का संपर्क, राजनीतिक संरक्षण जो था, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी इस बात का जवाब देंगे कि दिल्ली में दंगे भड़काने जैसे कितने और कृत्य उन्होंने किए हैं? दिल्ली में जिस तरीके की घटना उस दंगों के माध्यम से की गई, दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाई, दिल्ली में कत्लेआम हुआ, दिल्ली में पत्थरबाजी से लेकर के हर एक काम हुआ, और अधिकारी मारे जा रहे थे, तेजाब फेंक करके उनको नाले में डाल दिया गया, ऐसे ताहिर हुसैन को अदालत के द्वारा सजा दिया जाना सच में न्याय मिला है उन लोगों को जिन्होंने उस कृत्य में अपनी जान गंवाई। और ताहिर हुसैन, केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, इन सब की जवाबदेही।
1: कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता भी आम आदमी पार्टी पर निशाना बना रही है। जाहिर सी बात है कि ताहिर हुसैन तब आम आदमी पार्टी के पार्षद थे और उस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि ताहिर हुसैन को शायद इसमें फंसाया जा रहा है। उसके बाद एआईएमआईएम ने ताहिर हुसैन को दिल्ली विधानसभा का अपना प्रत्याशी बनाया था और आज दोनों ही पार्टियां इस चर्चा में शामिल नहीं हो रही है। लेकिन हुदा जरीवाला आम आदमी पार्टी पर सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कितना सही कितना गलत, क्योंकि एआईएमआईएम के भी वो प्रत्याशी रहे।
5: जी आप तमाम लोगों को आदाब, जय हिंद। अर्ज कहती हूं, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल करके भी चर्चा नहीं होती। ये सारा मामला जो ताहिर हुसैन जी का है वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक तरफा, बिकॉज ही इज अ मुस्लिम, बिकॉज वो आम आदमी पार्टी के नेता थे, सिर्फ इसलिए उनको कॉर्नर किया जा रहा है। एक नेता अगर अपने घर में, कहीं उनके घर में चलिए मान लेते पत्थर मिले भी, तो अपनी बचाव में अगर वो पथराव कर रहे थे, उनकी लोग कर रहे थे, वो पूरा इल्जाम उन पे नहीं जा सकता, पहली बात। दूसरी बात ये कि कोर्ट्स आपको इजाजत देती है कि अगर आपका एक कोर्ट से कहीं से कन्विक्शन हुआ है तो आप हायर कोर्ट्स में अपील कर सके, ये फुल एंड फाइनल जजमेंट नहीं है। तीसरी बात, कपिल मिश्रा जो कैब एनआरसी के प्रोटेस्ट में बकायदे से बच्चों के ऊपर गोली तान रहा था, उस पे तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कहती, उसका तो कोई कन्विक्शन नहीं हुआ। तो ये सेलेक्टिव राजनीति क्यों? इसमें लीगल पर्सपेक्टिव अलग है, जो पॉलिटिकल एंगल है वो अलग है, बट मुझे ये बताइए, जस्ट बिकॉज ही इज अ ताहिर हुसैन यू आर गोइंग टू कॉर्नर हिम? ये सरासर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जो भाजपा,
1: लेकिन हुदा जी
5: पुरानी मुहिम है,
1: आपने कहा कि लीगल पर्सपेक्टिव अलग है, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो लीगल पर्सपेक्टिव के आधार पर ही जो राजनीति हो रही है उस पर कर रहे हैं। लीगल पर्सपेक्टिव के आधार पर ही ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया है और उनके साथ में पांच चार लोग और लोग दोषी करार दिए गए।
5: प्रिजम्पशन, जी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के बारे में हमारा लॉ ही बात करता है, जिसमें हर अक्यूज इनोसेंट प्रिज्यूम किया जाता है अनलेस एंड अंटिल प्रूवन गिल्टी, और अगर उसको एक कोर्ट से कन्विक्शन हो गया फर्दर वो दूसरे कोर्ट में अपील करने का ऑप्शन गिल्टी, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन
1: कोर्ट ने उन्हें गिल्टी करार दिया है, उनको करार दिया है गिल्टी, उनको दोषी करार दिया है।
5: बट ही ताहिर हुसैन जी हैज द ऑप्शन कि वो फर्दर और सुप्रीम कोर्ट में, बिगर कोर्ट में वो अपील कर सके, तो ये फाइनल जजमेंट नहीं होता है, पहली बात। आपने देखा था आम आदमी पार्टी के केस में भी, जब एक के बाद एक उनको केसेस में फंसाया जाया था, फाइनली सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं राहत जब मिली, तो यही साबित होता है ना कि लोअर कोर्ट्स में अगर नहीं,
1: लेकिन अगर ऐसी बात है हुदा जी,
5: जस्टिस
1: तो क्या कारण है कि
5: गलत तरीके से कन्विक्शन?
1: हुदा जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अगर जिस व्यक्ति को ताहिर हुसैन को, संजय सिंह उनके साथ में खड़े थे, उनका यह कहना था कि वो उसमें शामिल नहीं है, ठीक है, आज आम आदमी पार्टी उनके सपोर्ट में खड़े होकर क्यों नहीं बात कर रही है? अगर इतना ही उनको लगता है कि उनको गलत तरीके से दोषी करार दिया गया, क्यों नहीं आज आम आदमी पार्टी उनके साथ में खड़ी है? क्यों नहीं एआईएमआईएम जो कहती है कि मुसलमानों को इस तरीके से फंसाया जा रहा है, इसीलिए ताहिर हुसैन को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया था, कैंडिडेट दिया गया था उन्हें, आज वो भी उस चर्चा में नहीं है, क्यों नहीं शामिल होना चाहते उसके साथ?
5: ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, आम आदमी पार्टी या एमआईएम को खड़े होना चाहिए ताहिर हुसैन के साथ, वो फिलहाल अगर नहीं खड़े हो रहे हैं वो डेफिनेटली सवाल किया जा सकता है, बट दैट सर्टेनली डजंट मीन कि आप ताहिर हुसैन को ऑल आउट गिल्टी साबित कर दें। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, ऑब्वियसली उनके काउंसिलर रह चुके हैं हमारे आम आदमी पार्टी के, वो एक बहुत कर्मठ नेता रह चुके हैं, कहीं अगर किनाराकश हो रही आम आदमी पार्टी इस वक्त तो वो एक पॉलिटिकल रीजनिंग के तहत हो सकता है, इस पे आप पूरी आम आदमी पार्टी पे सवाल नहीं उठा सकते। जहां तक एमआईएम के सवाल है, उनके प्रवक्ता उनके नेता बेहतर इसका जवाब
1: देंगे। दिल्ली दंगों का केस आपने भी काफी करीब से देखा हुआ है, जिस तरीके से ताहिर हुसैन के कन्विक्शन के बाद एक के बाद एक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही है और एक्सपेक्टेड लाइंस पर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी यूफोरिया पे है इस पूरे मामले को लेकर, कहना है कि देखिए हम तो कह रहे थे आम आदमी पार्टी इसमें शामिल है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर कपिल होता तो हो सकता है कि कन्विक्शन नहीं होता, राजनीतिक दृष्टि से आप इसको कह रहे। अजय आलोक जी आपके पास आता हूं, जरा विनोद जी से एक प्रतिक्रिया ले लूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। विनोद जी
6: देखिए साहिल, हर पार्टी अदालत के फैसले को अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करती है और अपने हिसाब से उसका प्रचार करती है। जब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को डिस्चार्ज किया गया था कोर्ट से, तो आम आदमी पार्टी ने फैसले का स्वागत किया था और उसको उस पर बीजेपी को कटघरे पर खड़ा किया था। आज बीजेपी जो है ताहिर हुसैन के फैसले को लेकर के आम आदमी पार्टी को कटघरे पर खड़ा कर रही है, तो ये अदालत के फैसले को अपने माकूल के हिसाब से लोग करते हैं। जब तक देखिए फैशन कोर्ट का फैसला, जब तक हाईकोर्ट में चैलेंज होगा, हाईकोर्ट
5: से फैसला दे रहा है, खुदा जी मुझे, खुदा जी
6: मैं बीच में नहीं बोला था आपने, खुदा जी मुझे मैं बीच
5: में
6: नहीं बोला,
5: अपील का ऑप्शन होता है,
6: मुझे बात पूरी करने दीजिए,
5: देने में नहीं ले सकते,
6: आप क्षमा कीजिए, मुझे मैं बीच में आपको नहीं बोला, मुझे बोले दीजिए, जब तक हाईकोर्ट से इससे एडवर्स फैसला नहीं आता है तब तक जो है लीगली ताहिर हुसैन जो है कन्विक्ट माने जाएंगे। जब हाईकोर्ट इस फैसले को निरस्त कर देता है तो बेदाग हो जाएंगे, ये न्याय का नियम है नंबर एक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठता है, यह है जिस तरह ताहिर हुसैन के मामले में जांच करके उनको कन्विक्ट कराया गया, बाकी जो 52 लोग जिनकी हत्या हुई है उनको मारने वाले कहां हैं? ये सवाल तो लाजमी है, उस पर 13 मुसलमान और 40 मुसलमान और 13 हिंदू, मैं हिंदू मुसलमान में जाता ही नहीं, मैं उसकी बातें नहीं करता, मैं कहता हूँ 53 लोग पड़े, मुझे
1: ये
6: गलत बात है ना, मैं बोला नहीं,
1: हुदा जी एक मिनट,
6: बाकी 3 लोग भी हैं,
1: हुदा जी एक मिनट, जरा उनको रोकिए प्लीज, विनोद जी ने जो सवाल उठाया हुआ है
6: कि बाकी जो
1: विनोद जी ने जो सवाल उठाया हुआ है, हुदा जी आपके पास पे आऊंगा, अजय आलोक जी मुझे पता है कि आपको हुदा जी ने जो सवाल उठाया, हुदा हजारीवाला जो कह रहे थे उसका जवाब आपको देना है, लेकिन विनोद अग्निहोत्री कुछ मूलभूत सवाल भी यहां पर उठा रहे हैं, कोई बेसिक सवाल यहां पर उठा रहे हैं जिसपे दिल्ली पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक ही मामले में कन्विक्शन तक पहुंच पाता है, 53 मामले ऐसे हैं, 52 मामले ऐसे हैं कि जहां पर उनका कन्विक्शन फेल है, इस पर भी बात होना जरूरी है। अजय आलोक,
2: कन्वेक्शन रेट क्या हुआ जरा सा देश की सरकार बताएगी?
3: मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली पुलिस की कन्विक्शन रेट फेल है, अभी भी जांच चल रही है और समय समय पे अदालतें भी उनके उसका रिमाइंडर दे रही है। 5 आदमी को जो बरी किया था पिछले बार, तब भी अदालत ने कहा था कि हमें लगता है कि आपने इसमें जांच ठीक से नहीं की है, और उसके बाद से दिल्ली पुलिस रिविजिट कर रही है हर चीज को, जिससे मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस की क्षमताओं पर हमें संदेह करने का भी समय नहीं है, अदालत को अपना काम करने दीजिए, पहली बात नंबर एक। दूसरा, हुदा मैडम, यह मुस्लिम विक्टिमाइजेशन कार्ड खेलना बंद कीजिए, ठीक है ना? आप तो ये भी नहीं कहेंगे कि बुरहान वानी आतंकवादी था, कसाब आतंकवादी था, बोलिए बुरहान वानी आतंकवादी था कि नहीं, कश्मीर था, बुरहान वानी आतंकवादी था कि नहीं मानेंगे इसको आतंकवादी, कसाब को भी आतंकवादी ये लोग नहीं मानेंगे। अरे क्या बात हो रही है, अदालत ने सजा दे दी और उसके बावजूद आप कह रही है ताहिर जी आप लोग उनको अपना नेता मानते हो, अपना भगवान मानते हो, अल्लाह से भी बराबर दर्जा देती है आप लोग उनको, ऐसे ऐसे बुरहान वानी को चुप रहिए, मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग मुस्लिम विक्टिम कार्ड नहीं खेलते, आंसू जहां आना है कांग्रेस पार्टी के पास जाके बाहिए, पूरे देश भर में मुसलमान विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे,
5: अरे कार्ड हम नहीं खेलते,
3: आतंकवादी को आतंकवादी, हत्यारा को हत्यारा कहना सीखिए, ठीक है ना? हम लोग किसी को हत्यारे को हत्यारा या भगवान नहीं बनाते,
5: इल्जाम लगा रहे हैं
3: यहाँ पे बैठ गए मुस्लिम विक्टिमाइजेशन कार्ड खेलने के लिए,
5: सेक्शन 120
3: शुक्र मनाइए, ये सऊदी अरब नहीं है, सऊदी अरब होता ना तो हत्या के इल्जाम में गर्दन काट ली जाती है, अदालतों का इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता है, ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम है जिसके कारण आप आज कह रही है कि अभी तक कन्विक्ट नहीं, लोअर कोर्ट का कन्विक्शन आ गया तब भी मुस्लिम विक्टिम कार्ड यहाँ खेलने बैठ गए,
5: तो राजनीतिक मिश्रण
3: ऐसे ही ऐसे लोगों के कारण मुसलमान कौम का दिमाग खराब हो जाता है, और ऐसे ऐसे आतंकवादियों को क्या मिलती है,
5: ये केस अपील
3: हमारे भैया बचाव के लिए तो एक ही कुछ सिस्टम खड़ा है, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक का हो, चाहे वो राजनीतिज्ञों का हो, चाहे अफसरों का हो,
5: आपको
3: इस इको सिस्टम को ये समझना चाहिए कि ऐसे विक्टिम कार्ड खेल के कुछ नहीं होगा, अपराधी हमें एक बात और याद दिला दूं, साहिल जी मैं एक बात किसी में चुप करवाइए, मैं एक बात याद और दिलवाता हूं, साहिल जी
1: ठीक है, हुदा जी एक मिनट आपको सुन लिया हमने, हुदा जी आपको सुन लिया, जरा एक मिनट उन्हें शांत करिए प्लीज, अजय आलोक जी एक मिनट,
2: अग्निहोत्री जी को भी तो पूरा सुनवा दीजिए,
1: एक मिनट हुदा जी एक मिनट,
3: मैं 10 सेकंड में खत्म कर लूं,
1: एक मिनट मुझे विनोद जी के पास ही जाना है, मैं एक मिनट अजय आलोक जी विनोद जी के, चलिए एक मिनट मुझे जरा विनोद जी के पास जाना है, अजय आलोक जी दोबारा आपके पास आऊंगा मैं, विनोद जी आपने अजय आलोक जी का जवाब सुना, उन्होंने कहा कि अदालत पे छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल पुलिस की कोई गलती ऐसा हमें लगता नहीं है, एक ही कन्विक्शन एक ही केस में, एक ही मर्डर केस में कन्विक्शन है 53 में से, आप क्या कहेंगे विनोद जी उसका, और उसके बाद अजय आलोक उसका जवाब
6: देंगे। देखिए मैं भी कुछ भाई, अजय भाई सत्ता पक्ष के प्रवक्ता है इसलिए वो निश्चित रूप से उस प्रक्रिया को डिफेंड करेंगे, उनका काम है। मैं ये कहता हूं कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं तो 53 लोगों की हत्या में से कम 10-5 लोगों का मामला तो सामने आना चाहिए था ना दिल्ली पुलिस का। कई बार अदालतों में दिल्ली पुलिस को, अभी आप जो दो उदाहरण दिए गए, जो मुस्तफा और अनवर की हत्या के मामले में अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस गवाह नहीं पेश कर पाई, तो अदालत ने ही कहा है ना, तो या हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठेगा भाई। कई बार सीबीआई की कार्यप्रणाली पर अदालतों ने सवाल उठाए हैं। प्रियदर्शनी मिट्टू का केस मुझे याद है, जब सीबीआई पेश नहीं कर पाई थी, कोर्ट ने जज ने लिखा था फैसले में कि मैं कन्विंस हूं कि ये मर्डर किया है एक्यूज ने, लेकिन पुलिस सीबीआई पूरे प्रमाण पेश सबूत नहीं पेश कर पाई है, इसलिए हम इसको सजा नहीं दे रहे हैं। आज वही मीडिया ने छापा इंडिया एक्सप्रेस ने कि लुक सीबीआई है तो विक्टिम। तो कई बार एजेंसियां जो है ढीले ढाले रवैये के कारण कई केसों को ढीला छोड़ देती है, ये फैक्ट है। अब दिल्ली पुलिस कब तक अंतहीन जांच चलेगी भाई। और रही बात निदा जी, देखिए आपके लिए एक बात बताता हूँ, माया कोडनानी का कन्विक्शन सेशन कोर्ट से हुआ था, सबने उनको कन्विक्ट माना था और सब किसी ने नहीं कहा था कि उनको हाईकोर्ट से जो है रिलीफ मिल जाएगी तो रहने दीजिए। इसी तरह ताहिर हुसैन जब तक कन्विक्ट है लोअर कोर्ट से तब तक कन्विक्ट माने जाएंगे, अगर हाईकोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आ गया तो बेदागबरी हो जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है।
5: कोर्ट ने हर प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने ताहिर हुसैन को एक्विट कर दिया था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चार्ज।
3: देखिए मैं दो बातें आपके दर्शकों को याद दिला रहा हूँ, एक मिनट मैं दो बातें बस याद दिला रहा
1: हूँ जी। केस के बारे में जानकारी हम दे रहे हैं,
5: कोर्ट में होते हैं।
1: ठीक है हुदा जी, ठीक है होंगे, जब होंगे तब होंगे। वही तो आलोक जी, विनोद जी आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक वो ऊपरी अदालत से जब तक उनका कन्विक्शन स्टे नहीं किया जाता तब तक वो दोषी करार रहेंगे। माया कोदनानी के केस के बारे में आपको अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया गया, गुजरात दंगों का मामला था ये, और ऐसे कई मामले हम आपके सामने पेश कर सकते हैं। लेकिन अजय आलोक जी एक बार फिर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को लेकर, यह बात ठीक है कि चलिए ताहिर हुसैन का कन्विक्शन हो चुका है, एक केस के भीतर दिल्ली पुलिस, एक मिनट हुदा जी प्लीज आई विल कम टू यू मैं आपको सवाल पूछूंगा, लेकिन जरा रुकिए एक मिनट। अजय आलोक जी एक बार फिर विनोद जी इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि ये कोई बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन नहीं देखा जाएगा। 6 साल पहले 53 लोगों की हत्या की जाती है, 40 मुसलमान 13 हिंदू, उसमें से एक ही केस में कन्विक्शन लेकर आ पाती है दिल्ली पुलिस, अभी तक ये कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा।
3: देखिए मैं दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड की तारीफ यहां करने के लिए नहीं हूं, उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं होगा, अदालतें उनसे सवाल पूछेंगी क्योंकि सारे केस रजिस्टर्ड है और सब जुडिशियल है, नंबर एक। नंबर दो, मैं आपको याद दिलाता हूं कि दिल्ली पुलिस का काम कैसे स्लो किया जाता होगा, विनोद जी को भी याद होगा, कन्हैया कुमार का केस हुआ जेएनयू में, भारत तड़े टिकुड़े होंगे इंशाल्लाह खुलेआम नारे लगाए गए,
2: अभी नहीं बोला
3: कैसे एक इको सिस्टम में कन्हैया कुमार की फाइल को साइन नहीं किया, कभी साइन नहीं किया आगे बढ़ने देने के लिए ताकि उनका कन्विक्शन हो सके। तो इसमें दिल्ली पुलिस को दोषी दीजिएगा कि राजनीतिक संरक्षण देने वालों को। दूसरा उदाहरण देता हूं, इनको बेल मिली लोअर कोर्ट से, माननीय अरविंद केजरीवाल जी को लोअर कोर्ट से बेल मिली, हाई कोर्ट ने सैंक्शन ले लिया कि हम दोबारा सुनवाई करेंगे, ये हाई कोर्ट के खिलाफ इन्होंने अभियान छेड़ दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं इस देश में, सिर्फ पुलिस को क्यों बदनाम करना है भाई, ये तो इकोसिस्टम बैठा हुआ है कि ऐसे ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करते रहेंगे क्योंकि धर्म के नाम पे मुसलमान अपीजमेंट हो रहा है। एक आदमी कह रहा है कि कपिल होता तो नहीं होता कन्विक्शन, दूसरा कोर्ट को ही चैलेंज कर दे रहा है, तीसरा कांग्रेस ही कह रहे हैं कि जज भी मेरा, वकील भी मेरा, सिस्टम भी मेरा,
1: अजय वर्मा जी
3: कैसे होगी, क्या 60 साल तक में
1: 30 सेकंड, अजय वर्मा
2: ये सरकार के पक्षकार है, इनकी ड्यूटी अपना रखेंगे। ये कपिल मिश्रा जब दिल्ली विधायक थे तो मानसी सोनी का एक कांड टेप लेके सीडी लेके विधानसभा में सुनाया था, कहा अटैच था देश, उस वक्त गुजरात के सीएम जो थे, अब देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है। जस्टिस लोया गोधरा कांड इन्होंने याद दिला दिया, जस्टिस लोया और हीरेन पांडे की आत्मा को अभी मुक्ति नहीं मिली है, आसमान में ही है, ब्रह्मांड में घूम रही है, मौका आएगा। क्या
1: पार्टी बदलती है वैसे चीजें बदलती रहती है,
2: नहीं तो ये जो
1: जी आखिर में आलोक जी 10 सेकंड में मुझे आपसे चाहिए 700 FIR, नहीं ठीक है एक मिनट अजय वर्मा जी एक मिनट
2: सर यही कह रहा हूँ, 700
1: रोकिए उनको, मुझे विनोद जी के पास आखिर में 20 सेकंड है विनोद जी, 700 FIR है विनोद जी, 700 FIR है, 700 FIR है हर दंगे के केस में, सिर्फ दिल्ली दंगे की बात नहीं है, हर दंगे के केस में इसी तरीके का प्रोग्रेस देखा जाता है। विनोद जी
6: देखिए होता ये है कि जो दंगाई होते हैं उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है किसी न किसी पार्टी से। आप याद करिए कि मलयाना और हाशिमपुरा के कांड तो पुलिस ने किया था, उनके जो पीड़ित थे उनको न्याय मिलने में 32-34 साल लग गए वहां से, और अभी तक जो है आखिर में जाके फैसला जो है वो लटका रहा। ये
1: सालों का इंतजार होता है, और दिल्ली दंगों के मामलों में भी 6 साल का इंतजार करना पड़ा अंकित शर्मा के परिवार को। आखिरकार अंकित शर्मा के परिवार को तो न्याय मिल पाया, लेकिन कैसे ऐसे और परिवार है जो न्याय के इंतजार में, दिल्ली दंगों के मामले में। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए आज तक।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 Products, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
4: वी आर ओवर जिमी।
5: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
6: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी हिंट बड़े आराम से
2: उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े चेहरे जनता के सबसे बड़े सवाल और आज तक की सबसे बड़ी पंचायत 15 जुलाई लखनऊ
3: इंडियन क्रिकेट ने अगर कोई गोट देखा है तो आज मैं उनके सामने बैठा हूं। वैभव सूर्यवंशी को पारी आप कैसे देखते हैं?
4: ह्यूज टैलेंट विदाउट एनी डाउट इज एज गुड एज सचिन और विराट कोहली।
3: लेकिन क्रिकेटिंग हलकों में क्या उसी तरह से नाम बज रहा था सचिन तेंदुलकर का जैसे आज वैभव सूर्यवंशी का बजे?
4: आई थिंक वैभव का थोड़ा ज्यादा है,
3: उनका डेब्यू थोड़ा सा डिलेड है,
4: बट आप इतिहास देखिए तो आपको एहसास होगा कभी कभी लेट ना हो जाए।
3: विराट में आपने ऐसा क्या देखा?
4: विराट को देख के मेरे को मैकेनरो याद आते हैं,
3: जॉन मैकेनरो।
4: हाँ, क्योंकि जब तक वो लड़ते नहीं थे वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे। थोड़ा सा जो उनका अजीब लगता है कि वो ज़्यादा जोशीले हो जाते। आई लव

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
3: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
2: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
4: Williams keeps it. First down. Touchdown.
2: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
5: We are over, Jimmy.
6: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PP ab samal lega. आप अपना देख लो।
7: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइयत, सोना, मसाला या विस्तार? 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई? कौन थे इसके महानायक? तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।
8: ये वाकया 6 साल पहले का है, जब पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस गई। इस हिंसा ने दिल्ली के दिलो दिमाग पर गहरे जख्म किए। करीब 53 बेकसूरों की मौत ने इस हिंसा को बेहद भयावह बना दिया। 6 साल बाद अब इस मामले में हिसाब हुआ है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट का इंसाफ सामने आया है। अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन दोषी पाया गया। ताहिर हुसैन के अलावा 4 और आरोपियों को कोर्ट ने दोषी पाया। आपको बता दें कि 26 फरवरी 2020 को खजूरी खास नाले से अंकित शर्मा का शव मिला था। उनके पिता ने ताहिर हुसैन समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। तमाम गवाहों की पेशी सबूतों और सुनवाई के बाद अदालत का फैसला अब दिल्ली के सामने है। जहां तक ताहिर हुसैन का सवाल है तो खबर है कि कोर्ट की सुनवाई के दौरान वो फूट फूट कर रोने लगा। ताहिर की माने तो वो बेकसूर है, उसे फंसाया गया है।
9: ताहिर जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए।
8: ताहिर हुसैन के अपने तर्क हैं, उसके पास ऊपरी अदालत में जाने का पूरा हक है। लेकिन फिलहाल ताहिर हुसैन को लेकर दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर 6 साल पुरानी हिंसा को लेकर दंगल शुरू हो गया।
10: देखिए, 2020 में जो दंगे हुए, आज ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन और ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोगों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू जो वहाँ पे रहने वाला हिंदू समाज है उनको मारने की साजिश थी। और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए, नौजवान बेगुनाह अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर, जिनको कई बार चाकुओं से गोदा गया और बाद में उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया।
11: कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा, क्या नहीं रहा, ये सकते हैं।
8: तो ताहिर हुसैन दिल्ली की राजनीति का फिर से एक अहम किरदार हो गया है। हिंसा में नाम आने के बाद ताहिर हुसैन से केजरीवाल ने किनारा कर लिया था। आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने गले लगा लिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि ताहिर हुसैन का सरपरस्त कौन था?
12: आज तक ब्यूरो।
13: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, बने रहिए आज तक के साथ।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: दिल्ली दौरे पर सीएम योगी की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात। हाई लेवल मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर बातचीत के आसार। राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज। दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन के दोषी होने पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ठनी। सीएम रेखा गुप्ता ने लगाया आम आदमी पार्टी पर संरक्षण देने का आरोप। कपिल मिश्रा का तंज, ताहिर सिर्फ एक्टर, असली डायरेक्टर कोई और। तीन भाषा नीति पर केंद्र और एनसीईआरटी को नोटिस। सीबीएसई को 10 दिन में जवाब देने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से किया इनकार। क्लास 9वीं से तीन भाषा नीति को दी गई चुनौती। खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई दर ने भी लोगों की जेबें की ढीली। जून में 9.87% पहुंचा। ईंधन ऊर्जा की कीमतों में इजाफे का पड़ा असर। खाद्य महंगाई दर बढ़कर 5.49%। और ईरान के हमले में भारतीय नाविक की मौत पर विदेश मंत्रालय सख्त। दिल्ली में ईरानी राजनयिक को किया तलब। जहाजों पर हमले को लेकर जताया विरोध। तत्काल अटैक रोकने की मांग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: मोटर लिस्ट जो प्रकाशित हुआ उस मोटर लिस्ट को लेकर घर घर जा करके जिसका भी नाम चुका है उस काम को
1: भारतीय जनता पार्टी SIR के पश्चात अपनी रणनीति बना करके जनता के बीच में जा रही है, घर घर जाकर के मतदाताओं का सत्यापन करेंगे।
2: देखिए SIR को लेकर के समाजवादी प्रहरी के लोगों ने ना एक भी गलत वोट जुड़ने दिया ना एक भी सही वोट कटने दिया, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग आज हताश हैं, हैरान हैं, परेशान हैं।

0: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। मैं इस समय लखनऊ में हूँ और उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं, चुनावी तैयारियां हैं, उन सब पर आज हम हल्ला बोल करने वाले हैं यहां से। क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि अलग अलग जिलों में जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, 2017 से पहले की यूपी और आज के यूपी का फर्क वो दिखा रहे हैं, और इसके साथ ही सामने है समाजवादी पार्टी जिसका है पीडीए, जिसका है सनातनी समाजवाद, और उसके साथ वो किस तरह की टक्कर बीजेपी को इस बार देंगे। और इन सब के बीच एसआईआर के साथ जिस तरह के परिवर्तन अब हुए हैं उसमें अब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बूथ मैनेजमेंट की अपनी योजना बना रही है, ये सारी चीजें आज चर्चा का विषय हमारे सामने होंगी। बीजेपी का संगठन किस तरह की तैयारी कर रहा है, विपक्षी जो पार्टियां हैं वो किस तरह की तैयारी कर रही हैं। सवाल है कि सनातनी समाजवाद वर्सेस हिंदुत्ववाद के इस दांव में बूथ मैनेजमेंट यूपी में क्या सबसे अहम होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमित शाह से भी मुलाकात करते हैं और इन सारी चीजों के बीच आज का हल्ला बोल। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट।
1: योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में चुनावी मुकाबले के लिए तैयार है। उद्घाटन, शिलान्यास और यूपी के लगभग हर जिले को नापना इस तैयारी का हिस्सा है। 2017 से पहले और अब का फर्क गिनाना योगी आदित्यनाथ का चुनावी अंदाज है।
2: यह डबल इंजन की सरकार गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं करती है। अगर कोई रंग में भंग करने का काम करता है और उपद्रव पैदा करने का कार्य करता है तो उपद्रवी से कायदे से निपटती है, बहुत कायदे से।
1: योगी की इस रणनीति के बीच बीजेपी अच्छे से जानती है कि चुनाव के लिए संगठन और समीकरण बेहद अहम है। यूपी बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करते हुए 8 प्रमुख संगठनात्मक कार्यक्रमों का रोड मैप तैयार किया है। 19 से 22 जुलाई तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। बूथों की मैपिंग कर संगठन को और मजबूत किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में बूथों की संख्या 80 से अधिक होगी वहां नए मंडलों का गठन किया जाएगा। एसआईआर के बाद बदले मतदाता आंकड़ों के आधार पर कई जगह बूथों और मंडलों का पुनर्गठन होगा।
3: दूसरा जो वोटर लिस्ट जो प्रकाशित हुआ है, वोटर लिस्ट को लेकर के घर घर जाकर के जिसका भी नाम छूटा है उसको काम को वहाँ भी निकालते हैं। और तीसरा जो हमारा था कि बूथ कमेटी को कैसे और लेकर के चर्चा हुई है।
1: यूपी में चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन की रणनीति में जुलाई के पहले हफ्ते से सरगर्मी आई है जब पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे थे। यूपी में 12 जुलाई को वृक्षारोपण कार्यक्रम का पहला चरण पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को नए सिरे से बूथ स्तर तक पहुंचाने की रणनीति बनाई जा रही है। चुनाव से पहले सभी जिलों में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। जून में बीजेपी ने यूपी की टीम भी नए सिरे से बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की टीम में 19 उपाध्यक्ष हैं, जिनमें 8 ओबीसी हैं। यूपी में संगठन को टॉप गियर में डालने का बीजेपी का ये फैसला अखिलेश यादव के दाव के बीच आया है। अखिलेश यादव जहां अपने पीडीए के समीकरण पर मजबूती से खड़े हैं, वहीं समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन जैसे आयोजन कर और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बीजेपी को घेर कर, साथ ही सनातन की बात कर बीजेपी के हिंदुत्व वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश की है।
4: सांचा नहीं, पूरा ढांचा बदलना चाहिए। सनातनी बहुत दुखी है, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी हैं, और इस सरकार ने कष्ट दुख दिया है, महंगाई दी।
1: बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की तैयारियों के बीच असल सवाल एसआईआर के बाद बनी परिस्थितियों का है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया में तकरीबन 2,04,00,000 नाम कटे और तकरीबन 84,28,000 नए नाम जुड़े।
5: भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के पश्चात अपनी रणनीति बना करके जनता के बीच में जा रही है। हमारे सभी कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, मंत्री सभी जो है बूथ लेवल पर जाकर के घर घर जाकर के मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। सत्यापन करने में जिनके नाम कटे हैं या जिनके नाम छूट गए हैं उसकी सूची बनाएंगे, उसको ठीक कराएंगे। एक वॉर रूम और एक डिजिटल ऐप के माध्यम से हम लगातार इन सब चीजों पर नजर रखेंगे।
6: देखिए एसआईआर को लेकर के समाजवादी प्रहरी के लोगों ने ना एक भी गलत वोट जुड़ने दिया ना एक भी सही वोट कटने दिया, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग आज हताश हैं, हैरान हैं, परेशान हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा उनको क्या करें क्या नहीं करें। अपने सरकारी तन को लगा करके उन्होंने बहुत सी मशीनरी लगा करके उन्हें एसआईआर के माध्यम से दुरुपयोग करने का काम किया, लेकिन हम समाजवादी प्रहरी के लोग, हम समाजवादी पार्टी के लोग उनके इस मंसूबे को हम नाकामयाब करेंगे। वो कितना भी कुछ कर लें लेकिन एसआईआर में वो कामयाब नहीं हो पाएंगे।
1: एसआईआर पर विपक्ष के राजनीतिक विरोध के बीच पिछले साल बिहार चुनाव से राज्यों में एसआईआर हो रहे हैं। बिहार, बंगाल, पुडुचेरी में एनडीए सरकारें बनी हैं, जबकि केरल में कांग्रेस और तमिलनाडु में टीवीके सरकार बनी है। अब सबकी निगाहें यूपी पर हैं। आज तक पेरो।
0: तो हमारे साथ हल्ला बोल में जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, कुछ के जुड़ने का इंतजार है अभी, लेकिन जो जुड़ चुके हैं उनका हम स्वागत करते चलते हैं। अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ हैं, आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और साथ में अनुपम मिश्र प्रवक्ता आरएलडी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और अरुण भारती सांसद एलजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हम आपको देते चलें। बड़ी खबर योगी आदित्यनाथ के अमित शाह से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ पहुंचे मिलने अमित शाह से, कर्तव्य भवन पहुंचे योगी आदित्यनाथ, कई अहम मुद्दों पर बातचीत की बात कही जा रही है। 2027 में जिसके संग बूथ यूपी में वही मजबूत, यह भारतीय जनता पार्टी का नारा है। कई अहम मुद्दों पर बातचीत के लिए ये दोनों नेता मुलाकात इस समय कर रहे हैं। बीजेपी जिस तरीके से यूपी चुनाव से पहले इस समय ग्राउंड लेवल पर अपनी मजबूती को लेकर जुटी हुई है, उस क्रम में ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण। पीयूष मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। पीयूष, क्या खबर है, ये मुलाकात बहुत अहम हो जाती है यूपी चुनावों से पहले?
7: जी बिल्कुल, बहुत अहम ये मुलाकात है और कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। श्वेता, इस वक्त जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो ये मुलाकात चल रही है। लगभग 15 मिनट पहले योगी आदित्यनाथ कर्तव्य भवन में पहुंचे और यहां पर वो गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। यहीं पर गृह मंत्रालय भी है और यहां पर पहले से अमित शाह मौजूद थे, तब योगी आदित्यनाथ पहुंचे और दोनों नेताओं के बीच इस वक्त जब हम आपसे बात करें तो ये मुलाकात चल रही है। ये मुलाकात इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी में संगठन का नया प्रारूप सामने आ गया है। नए मंत्री और उपाध्यक्ष की जो लिस्ट है वो सामने आ गई है और आपको याद होगा कुछ दिनों पहले नितिन नवीन भी उत्तर प्रदेश पहुंचे थे और उसके बाद सभी नेताओं के साथ केशव प्रसाद मौर्य हो, योगी आदित्यनाथ हो और वहां के जो इकाई के बड़े वरिष्ठ नेता हो, उन सब के साथ मिलकर उन्होंने अलग अलग जगह जाकर एक बैठक भी की थी। तो संगठनात्मक बैठक उत्तर प्रदेश में नितिन नवीन कर चुके हैं, लेकिन ये मुलाकात 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि नए संगठन के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए आ रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कल एसआईटी अपनी रिपोर्ट, जो चढ़ावा चोरी का मामला प्रकरण अयोध्या में है उसको लेकर भी सबमिट कर सकती है। 15 तारीख है जो आखिरी डेट बताई जा रही है कि एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद जो है उससे पहले योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचे। तो उत्तर प्रदेश से जुड़े कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर ये मुलाकात हो रही है। कई मुद्दे राजनीतिक मुद्दे भी हैं, प्रशासनिक मुद्दे भी हैं जिनको लेकर ये मुलाकात हो रही है और अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि लगभग आधे पौने घंटे के आसपास ये मुलाकात चलने वाली है। कर्तव्य भवन में ये मुलाकात हो रही है। कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद उतरे थे, उसके बाद सीधे वो यूपी भवन पहुंचे और वहां से लगभग 5:30 बजे के आसपास वो कर्तव्य भवन के लिए निकले और अभी फिलहाल वो यहाँ मौजूद हैं जहाँ गृह मंत्रालय भी है और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बेहद खास मुलाकात चल रही है इस वक्त।
0: बहुत शुक्रिया पीयूष इस पूरी जानकारी के लिए। सुधांशु जी, आपसे शुरुआत करते हुए कि उत्तर प्रदेश में जो ये चुनाव है, मुद्दा अहम रहेगा या बूथ मैनेजमेंट, मुद्दा या मैनेजमेंट क्या जिताएगा चुनाव?
8: देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एक स्वरूप है वो दूसरी पार्टियों से अलग है। हम एक विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित पार्टी है, तो इसलिए हमारे यहां कार्यकर्ता और जो

0: साथ में ले लो, वो वही 20वीं शताब्दी की टेम्पलेट, 20वीं शताब्दी की सुविधा की राजनीति और वही 20वीं शताब्दी के बयानों के द्वारा वो ये सोचते हैं बगैर मेहनत किए हुए सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा और हमारे जो नेता हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 2021 का बंगाल का चुनाव था, जो ममता जी के मुख्य रणनीतिकार प्रशांत किशोर का वक्तव्य था कि हमारी गिनती 30% से शुरू होती है, भाजपा क्या मुकाबला करेगी, और पूरे देश को पता है कि वहां 30% का मतलब क्या था। सही है, ये 30% और 20% से शुरू करते हैं, हम -30 और -20 से शुरू करते हैं और उसके बाद वो इतिहास रचते हैं। तो हमारा आदर्श वाक्य क्या है कि भाई वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। और इनके लिए कहना चाहूंगा कि भाई मेहनत करो, फिर आके ये कहो कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। एक संस्कृत का सुभाषित है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी उद्यम से कार्य सिद्ध होते हैं, केवल ख्वाब देखने और कल्पना करने से नहीं, सोते हुए शेर के मुंह में अपने आप आके हिरन प्रवेश नहीं करते हैं। मगर यहां क्या कहा जाए, चुनाव के दौरान कहीं पर भी लोग दिखाई नहीं पड़ा। बताइए, योगी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, अमित शाह जी पश्चिम बंगाल के चुनाव में उन्होंने ऐलानिया कहा मैं 25 दिन रहूंगा बंगाल में। बताइए विपक्ष किस नेता ने कहा कि मैं इतने दिन रहूंगा? राहुल गांधी जी ने कहा, चलो बंगाल में आपका ज्यादा नहीं था, असम में आप मुख्य विपक्षी दल थे, आपने कहा कि मैं इतने दिन डेरा डाल के रहूंगा, आपने केरल में कहा इतने दिन डेरा डाल के रहूंगा। तो हकीकत ये है
1: अभय जी,
0: बूथ की जो व्यवस्था,
1: अभय जी मुस्कुरा जरूर रहे हैं, लेकिन क्या इस बात से आप सहमत हैं कि चुनाव के उपरांत ये कहने से कि ये गलत कर दिया वो गलत कर दिया, उससे बेहतर होता है थोड़ी सी तैयारी कर लिया जाए, थोड़ा सा परिश्रम, या मतलब बीजेपी को इलेक्शन मशीन कहने वाली बहुत पार्टियां हैं, लेकिन क्या आप इस साइंटिफिक तैयारी, इस तैयारी को साइंटिफिक मान रहे हैं या फिर नहीं मान रहे हैं?
2: श्वेता जी, यही भाषण में यही प्रवचन मेरे विद्वान भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता का लोकसभा के उत्तर प्रदेश के चुनाव में सुनता था। 80 में से 47 सीटों पर परास्त कर दिया हमारे गठबंधन ने इनको। इस बार की लड़ाई उत्तर प्रदेश की अलग प्रकार की लड़ाई है। पहली लड़ाई इनकी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी आस्था, हनुमान जी का के प्रति जो अपमान इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी यात्रा के आगे नचाकर किया है उससे है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने संकेत दिए, चंदा चोरी की खबर तो उनको पहले से थी, अयोध्या में हरा दिया, चित्रकूट में हरा दिया, बद्रीनाथ में हरा दिया, रामेश्वरम में हरा दिया, खाटू श्याम में हरा दिया, अब दायित्व दिया उत्तर प्रदेश की जनता को और देश की जनता को कि इनको परास्त करिएगा, जघन्य पाप किया इन्होंने। दूसरा, इन्होंने नागरिकों की सुरक्षा की उत्तर प्रदेश में चोरी की, 4,491 हत्याएं प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश में हो रही है, 8,520 हत्या के प्रयास हो रहे हैं, 52,165 जघन्य अपराध जिसमें हत्या, बलात्कार, महिलाओं के अपहरण सबसे ज्यादा। इन्होंने शिक्षा की चोरी की उत्तर प्रदेश में, 9,500 स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षक के भरोसे हैं, 6.5 लाख विद्यार्थी उसमें पढ़ते हैं, 4.25 करोड़ बच्चे उत्तर प्रदेश के स्कूलों में, 2,60,000 स्कूलों में पढ़ते हैं। जानती है हिंदुस्तान में सबसे कम रिटेंशन रेट 37% उत्तर प्रदेश का है, 2.75 करोड़ 2,75,00,000 बच्चे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाते, 2,50,00,000 बच्चे कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लेते क्योंकि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो वहां का सिर्फ 24% है। इन्होंने स्वास्थ्य के अधिकारों की चोरी की, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा अस्पताल चला रहे हो या मुर्दा घर, 5,000 डॉक्टर नहीं है, भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले एक के बाद एक इन्होंने किए, 8.34 करोड़, गौर से सुनिए उत्तर प्रदेश के लोगों, 8.5 करोड़ लोग लगभग पलायन कर गए और उन्होंने एफिडेविट दिया 90% लोगों ने कि हमारे परिवार की आमदनी 10,000 रुपए से कम है। उत्तर प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाला, सहायक शिक्षक 59,000 भर्ती घोटाला, यूपी वीएससी लोअर सबऑर्डिनेट भर्ती घोटाला, यूपी टीईटी घोटाला, पीटी और अन्य अधीनस्थ सेवाएं भर्ती घोटाला, 14 घोटाले बड़े घोटाले इन्होंने किए। ये कहते हमने तो जंगल राज समाप्त कर दिया, अरे साहब ब्रजेश सिंह खुला छुट्टा घूम रहा है, 106 मुकदमे, बादशाह सिंह 88 मुकदमे, ब्रजभूषण सरन सिंह 84 मुकदमे, उदय भान सिंह 83 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे, संग्राम सिंह 28 मुकदमे, सोनू सिंह 27 मुकदमे, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे, मोनू सिंह 48 मुकदमे, सनी सिंह 48 मुकदमे, धनय सिंह 46 मुकदमे। एक लंबी फेरिस्त है इनकी, अपराधियों को सरपरस्ती सत्ता की है और राग अलापते हैं ये। इन्होंने उन्होंने भीषणतम भ्रष्टाचार किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए, उन्होंने कहा

0: स्वास्थ्य सेवा, और मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी सरकार की रिपोर्ट है, स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश की, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश की, यह भी मोदी सरकार की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, जो उत्तम प्रदेश था, उसको सबसे निचले दर्जे पर पहुंचा दिया। बुनियादी लड़ाई यह है उत्तर प्रदेश के नागरिकों की, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की। जवाब देने चाहिए, एक के बाद एक प्रोजेक्ट किसको बड़ा राग अलापते कि बहुत गंगा एक्सप्रेसवे। अरे पहले तो बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, और किसको दिए वो? एक के बाद एक प्रोजेक्ट, सारे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट अडानी जी को इन्होंने थमा दिए। जितने बड़ी परियोजनाएं हैं, नोएडा डेटा सेंटर परियोजना, बरसाना बायो सीएनजी परियोजना, 1500 मेगावाट विद्युत परियोजना है, अरे साहब एक ही आदमी को सारे ठेके दे देंगे और राग अलापते हैं कि हमने बहुत उत्तर प्रदेश में काम कर दिया। तो साहब उत्तर प्रदेश की जनता आप सबक सिखाएगी, और याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी का पराभव उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होगा। सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम हनुमान जी दंडित करेंगे इनको, क्योंकि इन्होंने आस्था को खंडित किया। वो नपेंद्र मिश्र को बचा रहे हैं, वो चंपत राय को बचा रहे हैं, जो जिन पर आरोप है जघन्य अपराध और पाप के। नपेंद्र मिश्र को कहते थे ये कि ये सरयू को रक्त रंजित करने वाला, राम भक्तों पर गोली चलाने वाला आदमी, इनके आर्टिकल लिखते थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंचजन्य में कि सीआईए का एजेंट है नपेंद्र मिश्र। अरे अगर आरोप लगे कि 40% कंस्ट्रक्शन में भी घोटाला हुआ है तो क्या उसको आप नोटिस तक नहीं देंगे? अरे एसआईटी आपने बनाई, एसआईटी रिपोर्ट किसको सौंप रही है? उसी संजय प्रसाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, जो इस ट्रस्ट के मेंबर हैं, और उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी ट्रस्ट के उन्हीं लोगों को जिन पर गंभीर आरोप थे। वो क्या जांच करेंगे साहब? वो तो क्लीन चिट खेल रहे हैं। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान प्रभु की आंख में धूल नहीं झोंक सकते, जो हनुमान जी है उनको मुष्टि का प्रहार करेंगे और मूर्छा।
1: ठीक है सुधांशु जी आप जाहिर है जवाब देना चाहेंगे, लेकिन मैं जल्दी से एक बार आशुतोष जी से भी सवाल पूछ लेती हूँ। आशुतोष जी ये बताइए कि ये मुद्दे तो हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, और इसीलिए मैंने पहला सवाल सुधांशु जी से पूछा ही यही कि मुद्दे या मैनेजमेंट, अब उसको मैनेजमेंट शब्द दे या कोई और दे, लेकिन सीधी सी बात है कि अगर इन मुद्दों को भी आपको जन जन तक पहुंचाना है तो उसके लिए आपको बूथ और बूथ के जरिए उन सभी वोटरों तक तो जाना पड़ेगा या नहीं?
2: नहीं, धन्यवाद श्वेता जी। देखिए ये बात तो बिल्कुल साफ है कि बिना बूथ मैनेजमेंट के आप चुनाव तो नहीं जीत सकते हैं, और मुझे लगता है कि जो पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती थी, उस पार्टी के कैबिनेट मंत्री 15 हार गए चुनाव में, और बूथ मैनेजमेंट ये कर रहे थे। हमको समझ में नहीं आ रहा था कि बूथ मैनेजमेंट होता कैसे है। हाँ, बूथ मैनेजमेंट ऐसे होता है कि जब प्रधानी का चुनाव चल रहा था, इनकी सरकार केंद्र में भी थी और इनकी सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी, तो हमारे कैंडिडेटों का पर्चा नहीं भरने दिया, कुछ महिला कैंडिडेटों की साड़ी खींच ली गई, कुछ को जो है थप्पड़ मारा गया, कुछ को भगा दिया गया। ये बूथ मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का दिखाई पड़ता है। लेकिन ये बूथ मैनेजमेंट साहब कहाँ चला गया था कि आप जो है सीट से सीट हारते चले जा रहे थे? तो देश के गृह राज्य मंत्री लखीमपुर से हार गए, तो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे वो चंदौली से हार गए। इसके अलावा लंबी लिस्ट है, खुद प्रधानमंत्री पहली दूसरी काउंटिंग में पीछे चल रहे थे, रक्षा मंत्री भी पीछे चल रहे थे। तो ये कैसा बूथ मैनेजमेंट है जो आपको चुनाव हरा देता है? खैर, ये आपकी अपनी तरीके हो सकते हैं, जब आप जीत जाओ तो आप दुनिया की बड़ी पार्टी, और जब हार जाओ तो आप कहने लगो कि भाई वो संविधान वाला सिस्टम चल गया और मुसलमानों ने वोट दे दिया। ये सब चलता नहीं है। कहानी यह है कि इस देश ने इतना अत्याचार कभी नहीं देखा है, और आज के समय में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है चंदा चोरी। जिस नाम पे भारतीय जनता पार्टी का बनी थी, जिस चीज को लेके भारतीय जनता पार्टी आगे चलती थी, जिसका गर्व करती थी, उस पूरे चंदा चोरी में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अब लिप्त पाई जा रही है। और पता नहीं कौन सी पॉलिटिकल इम्यूनिटी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल गिरी को देखिए कि आज हम जब 1.5 महीने बाद बात कर रहे हैं, पूरा देश मान चुका है ये चोर हैं, तो एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। वरना इनका बुलडोजर, इनका एफआईआर, इनकी पुलिस इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये दिन भर होता रहता है विपक्ष के ऊपर। ईडी, सीबीआई, विजिलेंस हम लोगों के घर में ही बैठी रहती है। और ये कौन सा मैनेजमेंट है? तो बूथ मैनेजमेंट नहीं है, इंस्टीट्यूशनल बॉडीज का मैनेजमेंट और इलेक्शन कमीशन का मैनेजमेंट ही भारतीय जनता पार्टी की जीत है। लेकिन जब जनता अपने पे आती है तो कहते हैं ना कि जब रास्ते सूने हो जाते हैं तो संसद आवारा हो जाती है, तो अब रास्ते सूने नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना आगाज कर दिया, 2024 से वो तैयारियां शुरू हो चुकी है और हमें खुशी है कि हमारे नेता ने आपकी ये चोरी भी पकड़ी और आपकी उस रास्ते को भी रोका जो गलत रास्ते में आप संविधान को खत्म करने जा रहे थे। तो इसलिए ये जबरदस्ती के शेख चिल्ली बनने की जरूरत नहीं है, जनता के मुद्दों से भटकिए नहीं, कहीं मत जाइए, सबसे पहले चंदा चोरों का हिसाब कीजिए तब आगे बढ़ते हैं कि कहां जाना है। पिछले एक हफ्ते से लगातार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, कभी शमशान की बात करने लग रहे हैं, कभी कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, कभी वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, कभी काशी मथुरा की बात कर रहे हैं, लेकिन चंपत राय का नाम किसी के जबान पे नहीं आ रहा है। क्या आपने इतना ना समझ रखा है देश की जनता में कि आप कुछ भी करेंगे और कहीं भी डाइवर्जन पॉलिटिक्स करेंगे और लोग समझ जाएंगे? ये कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं है, ये कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल बॉडीज का मैनेजमेंट है, ये ईडी सीबीआई वाली पार्टी है। आज साफ तौर से चुनाव हो जाए, भारतीय जनता पार्टी 2027 में 27 सीट नहीं पाएगी, ये पूरे यकीन से हम मैं बोल रहा हूं। और आप देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी अपने सारे काले कारनामे वो करने के लिए तैयार है और हम भी तैयार हैं और इस देश की और उत्तर प्रदेश की जनता भी तैयार है इनको सबक सिखाने के लिए।
1: ठीक है अनुपम मिश्रा जी, क्या एसआईआर के साथ जो हम देख रहे हैं कि बीजेपी अब उसके अनुसार बूथ बूथ पर जाने की जो तैयारी चल रही है, एसआईआर के हिसाब से आप लोग का आकलन क्या है कि वोट जो अभी तक कॉम्बिनेशन होता था कि कौन जाति कौन धर्म किसके साथ जोड़कर आपके वोटर आपके लिए एक जीत का फॉर्मूला बना देते थे, उसमें परिवर्तन आप लोग देख रहे हैं? आप लोग का ग्राउंड वर्क क्या कहता है?
3: श्वेता, मैं पहले तो ये कहूंगा कि सिर्फ आरोप लगाने से विकास नहीं रुकता है और ना विकास की धारा को बदला जा सकता है। जनता बदलाव देखती है, जनता सुशासन देखती है, कानून और व्यवस्था देखती है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि विगत कई वर्षों से लगातार जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में विकासवादी बदलाव हो रहा है वो जमीन तैयार कर रहा है और बिना बूथ स्तर पर मैनेजमेंट के कुछ नहीं होता। हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने भी, हमने एक नारा दिया है कि एक बूथ और 10 यूथ, और इसी संकल्प के साथ हमारे कार्यकर्ता जमीन पर हैं और लगातार जनता के टच में हैं। जबरदस्त उत्साह है पूरे उत्तर प्रदेश में। और मैं आपको एक घटना बता दूं, क्योंकि अभी से पहले जब हमारे कांग्रेस पार्टी के मित्र बोल रहे थे तो मुझे याद है 2 दिन पहले ऐसे ही हम लोग बाहर घूम रहे थे तो एक ऐसे ही आपकी एक डिबेट आ रही थी, मैं प्रसंगवश ये बात यहाँ कह रहा हूँ। तो ये जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग अब मंदिर चढ़ावा और चोरी की बात करते हैं तो जनता हंस रही होती है इन पर, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कल तक भगवान को एक काल्पनिक बता रहे थे। एक पार्टी के वरिष्ठ सांसद जो समाजवादी पार्टी के राम गोपाल जी हैं वो कह रहे थे कि भगवान राम इलीगल ऑक्यूपेंट हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि जो गुंबद पे चढ़ गया वो वहीं चिपका रह गया, हमने उसको उतरने नहीं दिया। आज इन्हें चंदा चोरी सब जो हुआ है वो गलत है, पूरे हिंदुस्तान के राम भक्त आहत हैं इससे। लेकिन ये भी पूरी जनता को भरोसा है, उत्तर प्रदेश को और देश की जनता को, कि इसमें न्याय होगा क्योंकि योगी जी की सरकार है और वो छोड़ने वाली किसी को नहीं, लगातार उस पर काम हो रहा है। तो ये सब दिखावे बातें हैं, इनकी बातों में कोई मतलब नहीं है। जनता को चाहिए विकास, जनता को चाहिए एक सशक्त सरकार जो प्रदेश में विकास करती हो और जनहित की कल्याणकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ती हो जो इससे पहले चढ़ती रही हैं। तो आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है, निवेश हो रहा है, लोगों के लिए रोजगार के नए नए मार्ग सृजन हो रहे हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं जो है वो धरातल पर हैं। पहले कट एंड कमीशन चलता था। हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं, अभय जी को मैं बता दूं कि आपके ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी का ये कहना था, उन्होंने ही ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि जब हम 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं तो 15 पैसे नीचे पहुंचता है। आप खुद सोचिए कि आपने किस तरीके की, इतने दिनों के प्रशासन में किस तरीके की व्यवस्था बनाई थी कि आप 1 रुपया भेजते तो आपके लोग 85 पैसे उसके खा जाया करते थे। तो श्वेता, मेरा कहना सिर्फ यहाँ पर यह है कि जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में एक बदलाव है, देश को दिखाई दे रहा, उत्तर प्रदेश को दिखाई दे रहा है कि एक ऐसी सरकार केंद्र और राज्य में अब शासन में है जो न केवल लॉ एंड ऑर्डर पर काम कर रही है बल्कि देश के युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, सुरक्षा और विकास की भावना से प्रेरित होकर कार्य कर रही है। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जिले जिले जा रहे हैं, ये आपको इससे सोचना चाहिए और सबक लेना चाहिए। किसी भी इलेक्शन में जाने से पहले चुनाव आपका कार्यालय नहीं होता है जहां बड़े बड़े बैनर होर्डिंग पोस्टर्स लगाते हैं और अपने लोगों से मालाएं पहुंचते हैं। एक मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद का यदि आज दौरा कर रहा है तो उससे इन सारे लोगों को भी सीख लेनी चाहिए। ये मेहनत है, जो लोग शासन में है, सरकार में है, उसके बावजूद वो धरातल पर है, रैली कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जनमानस से मिल रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं और अपनी योजनाओं को, अपनी कार्य योजनाओं को, अपने विकास की योजनाओं को जनता तक पहुंचा ही नहीं रहे, हम उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं। तो मेरा ये आपसे कहना है, समाजवादी पार्टी से भी कहना है, कांग्रेस पार्टी से भी कहना है, नकारात्मक चीजों में मत ऊर्जा जाया करिए। आज जनता नारों और नकारात्मक राजनीति से ऊब चुकी है, जनता को डिलीवरी चाहिए, जनता उसी में विश्वास करे जो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है और हम सब लोग उसी मार्ग पर हैं। हमारा अलायंस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: अच्छा, एसआईआर में क्या होता है कि बहुत सारे नाम नए जुड़ते हैं, बहुत सारे नाम कटते हैं पुराने, तो नए नाम जुड़ते भी हैं। अब एलजेपी से आमतौर पर बिहार के चुनाव पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन अरुण भारती जी बड़े बड़े पैमाने पर एलजेपी का की तैयारियां यहां पर दिख रही हैं। पूरे लखनऊ में मैंने देखा कि पोस्टर ही पोस्टर लगे हैं यहां पर। आप लोग किस तरह की उम्मीद लगाकर हैं यहां पर कि एक ऐसे साथी के तौर पर यहां पर एंट्री रहेगी कि एलजेपी इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में कोई बड़ा हिस्सा, कोई बड़ी हिस्सेदारी की उम्मीद में है?
4: श्वेता जी, सबसे पहले मैं लगातार प्रवक्ताओं को सुन रहा था, अपने मित्रों को सुन रहा था,
1: क्योंकि आपके पास तो राज्य का प्रभार है।
4: एक बात मैं आज क्लियर कर देना चाहूंगा। जी जी, मैं एक बात क्लियर कर देता हूं। लोकसभा चुनाव की बार बार जिक्र की जाती है और उसमें कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सपा ने, कांग्रेस ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। देखिए, उन्होंने उस वक्त नैरेटिव चलाया था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, और यह नैरेटिव उत्तर प्रदेश में और बिहार में दोनों जगह चलाया गया। बिहार में चिराग पासवान जी ने हर मंच से खड़े होकर के कहा कि जब तक रामविलास पासवान जी के वंशज हैं, ना आरक्षण को खतरा है, ना संविधान को खतरा है। और क्या हुआ, बिहार में 40 में से 30 सीटें हार जाते हैं। बिहार चुनावों में, बिहार विधानसभा चुनावों में यही बात फिर से दोहराई जाती है। उसके बावजूद देखिए, जब चिराग पासवान जी खड़े होकर के एक मजबूत एलाई के रूप में अपनी बात को रखते हैं और हर मंच से यह कहते हैं कि जब तक चिराग पासवान है, न संविधान को खतरा है और न आरक्षण को खतरा है, और 243 सीटों में से 202 सीटें अलायंस में जीत कर, इंडिया अलायंस जीत करके आती है। किसी कारण से बहन मायावती जी आज अगर होती उस वक्त और खड़े होकर के एक दलित चेहरे के रूप में अगर बोलती कि जब तक मायावती जी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात हुई नहीं और चिराग पासवान जी पूरे समय बिहार में थे। लेकिन अगर चिराग पासवान जी भी अगर उस वक्त उत्तर प्रदेश में आते तो कहानी कुछ और होती। और आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम लोग उनके नेतृत्व में लगातार घूम रहे हैं, क्षेत्र में हर जगह जा रहे हैं, पासी पासवान समाज की बात कर रहे हैं, पंडित पासी पासवान समाज की बात कर रहे हैं, ए टू जी की बात कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र कह रहे हैं कि हम लोग सब जगह हम लोगों ने घूमने का काम किया, देखने का काम किया, हुजूर आप लोगों को जाने की जरूरत है पासी पासवान समाज के पास। आपके ही लोग लगातार दलितों के जान के दुश्मन बने हुए हैं, जान तो लेते ही हैं, उनकी जमीन भी लेते हैं। कल भी मैं गया हुआ था एक घटना में जहां पर पता चला कि आपके विधायक ही उस दलित की जमीन के पीछे पड़े हुए हैं और उनके दो घर के दोनों भाइयों को मार दिया है। आपके विधायक के नाम पर FIR है, जहां आप दलितों को भरमा करके लोकसभा चुनाव में वोट ले लिए थे। चिराग पासवान जी अब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, पंडित पासी पासवान ए टू जी की बात कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर के मजबूती से इस बात को रखेंगे कि जब तक चिराग पासवान रामविलास पासवान जी के वंशज है, तब तक ना आरक्षण को खतरा है, ना संविधान को खतरा है। और आपका जो ये नैरेटिव, ये जो भ्रम जाल बनाया हुआ है ना, ये देखिए कैसे धराशायी होता है। बिहार में धराशायी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी धराशायी होगा। आप ये बताइए कि कितनी बार आपके नेता अखिलेश जी बिहार गए, तेजस्वी जी के साथ नजर नहीं आए? मतलब साथ में अलाई है, दिल्ली में साथ में बैठते हैं, बिहार में नहीं दिखते हैं। क्यों, वहां पर घोटालों का राज सामने आ जाता है क्या?
1: हम उम्मीद करते हैं सुधांशु जी की टिकट बंटवारे तक भी ये दोस्ती, ये भाईचारा कायम रहेगा पार्टियों में। कम से कम एनडीए के भीतर भी। लेकिन सुधांशु जी ये समझाइए कि जैसे केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि असली पीडीए जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जी अभय जी, जी अभय जी, अभय जी
5: देखिए
0: जी जी जी श्वेता जी,
1: जी बताएं।
0: हाँ जी श्वेता जी, मैं बस मैं छोटी छोटी सी दो बातें कहना चाहता हूं अपने दोनों दोस्तों को, अरुण भारती जी को और अनुपम मिश्र को। अरुण भारती जी कहां से आते हैं? बिहार से। बिहार में 20 वर्षों से इनकी सरकार है, नीतीश बाबू थे, अब सम्राट चौधरी जी आ गए। इन्होंने जो कास्ट का सर्वे कराया ना, चौंक जाएंगी जान करके, 13 करोड़ की आबादी में 9 करोड़ लोग ऐसे हैं दे आर गेटिंग 67 रुपीज पर डे। इतनी भीषण तम भ्रष्टाचार में बिहार को डुबा दिया, 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ। पूरे विश्व में ऐसा स्कैम कहीं नहीं हुआ होगा। ये अनुपम मिश्र जी अभी आरएलडी वाले कह रहे थे, आरएलडी वाले अभी अनुपम मिश्र जी कह रहे थे, क्या कह रहे थे वो, अरे साहब आपके नेता का क्या बयान था, 54 नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। अब क्या हुआ, क्या मूल्यांकन करेंगे अपने नेता का? और कब कहा था आपको, हाथरस में लहू लुहान कर दिया आदित्यनाथ जी की सरकार ने मार मार कर। क्यों गए थे हाथरस? क्योंकि एक दलित बिटिया को रात के अंधियार में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जला दिया था। क्या कसूर था उसके और उसके परिवार का कि वो बलात्कारियों का विरोध कर रहे थे? इसलिए उन्नाव में क्या हुआ, पोस्ट टू पिलर भागती रही बच्ची, उसके पिताजी की संस्थागत हत्या थाने में कर दी, दलित परिवार की बच्ची। अभी कह रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश गए थे दलित परिवार, अरे जाइए ना मेरठ में, मेरठ में दलित परिवार की बच्ची को पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार का व्यवहार परिलक्षित होता है, पुलिस अधिकारी ने सरे रहा जो दलित बच्ची के लिए न्याय मांगने आए थे उनको मार मार के अधमरा कर दिया लोगों को। क्या न्याय करोगे आप? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में होते हैं। इन दोनों नेताओं को बोलने का हक ही नहीं है, अपने प्रांत में एक बिहार में ठीक करे और उत्तर प्रदेश में जाए दलितों के घर, किसानों के घर, लखीमपुर खीरी में किसानों को रोल कर मार दिया।
1: जी आरोप आप तो चौधरी आप पर तमाम लगे हैं और मुझे लगता है कि सिलसिलेवार आपको उन सबका जवाब देना चाहिए। और उसके साथ ही जिस तरीके से जो मैं बोल रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं असली पीडीए बीजेपी के साथ है, और उधर अखिलेश यादव की तरफ से कहा जाता है कि सनातन ही समाजवाद है, तो इनके बीच में, इन ब्लर होती लाइनों के बीच में आज उत्तर प्रदेश के मुद्दों पे आप लोग खुद को क्या ऐसा पा रहे हैं कि आपको मालूम है कि बूथ के व्यक्ति व्यक्ति तक जाकर आपको स्पष्टीकरण देना होगा?
6: देखिए पहली बात तो ये श्वेता जी, अभय दुबे जी, क्रमवार जवाब देता हूं, अभय दुबे जी का पूरा वक्तव्य कोई जाके देख ले, बूथ पे वो बेचारे बोले ही नहीं। अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आप पूरी तरह सरेंडर्ड हैं कि बूथ पे हमारा कुछ है ही नहीं तो बोलने की क्या, या फिर जो कुछ आप बोलते हैं जो आपकी पार्टी एआई जनरेटेड दे देती है, डिबेट कोई भी हो वही स्क्रिप्ट दोबारा पढ़ दी जाती है, यानी विषय के ऊपर विषय बोलना ही नहीं है। अब मैं बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, इनका बूथ मैनेजमेंट क्या होता था श्वेता जी, जब बूथ कैप्चरिंग होती थी, मतपेटी लुटती थी, ये लोग जीतते थे। जब से हर बूथ पे सीसीटीवी आ गया है, अब जब हर बूथ पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस आ गए हैं, अब बूथ कैप्चरिंग की कोई घटना नहीं होती है। और ये 1993 से शुरुआत हुई, 1993 के बाद से आज तक कांग्रेस को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली। केवल उसी दौर में ही क्लियर मेजोरिटी मिलती थी जब बूथ कैप्चरिंग होती थी, मत पेटियां लुटती थी, तो उनका मैनेजमेंट सिर्फ इतना। और मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग यंग एज में, राजीव गांधी जी की डेथ हो गई थी मगर 1991 का वोटिंग हो चुकी थी, राजीव गांधी के पक्ष में बूथ कैप्चरिंग की गई, अमेठी में गोलियां चली, 22 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई और संजय सिंह को गोली लगी थी। अब मैं बताना चाहता हूं, जब से चुनाव शांतिपूर्ण होने लगे, जिस राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव हो जाते हैं, एक दौर में यूपी में आई सबसे ज्यादा बदनाम थे, गोलियां चलती थी, चुनावी हिंसा होती थी, बूथ पे गोलियां चलती थी, लोग मारे जाते थे, घायल होते थे, कट्टे बरामद होते थे। जब से खत्म हुआ यूपी में इनका राज खत्म हो गया, बिहार में खत्म हुआ इनका राज खत्म हो गया, बंगाल में खत्म हुआ इनका राज खत्म हो गया। अब आते मुद्दे के ऊपर, मैं बताना चाहता हूं आशुतोष वर्मा जी को भी और अपने अभय दुबे जी को भी, भाई साहब ये बताइए आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता यूपी में क्या हुआ? अरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानीज इंसेफेलाइटिस, जिसको जापानी बुखार कहते थे, हर साल सैकड़ों बच्चों का मरना नियति मान ली गई थी, अब पिछले कुछ सालों में कितनी डेथ हुई बताइए, मच्छर भी साफ माफिया भी साफ। आपका बूथ मैनेजमेंट यह था कि मुख्तार अंसारी
0: कब्जा करेंगे,
6: अब न वो है न दूसरी चीज है। अब मेरी पूरी पूरी बात सुनिए सर, आपने रिटर्न पे बोली है, मैं बताना चाहता हूं, आप कह रहे हैं बताइए, मैं उत्तर प्रदेश में पूछना चाहता हूं, पिछले 10 साल में कभी सुना कि किसी बड़े व्यापारी का अपहरण करके फिरौती मांगी गई हो? जो बहुत आम बात होती थी, अपहरण हो गया फिरौती मांगी गई, एक नहीं मांगी जाती, बात खत्म हो गई। एक्सप्रेसवे सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अगर आज आप देखें सरकार आने से पहले 14 से पहले क्या स्थिति थी, सिर्फ 2 रेगुलर एयरपोर्ट थे, लखनऊ और वाराणसी। आज इतने सारे रेगुलर एयरपोर्ट्स हैं, 3-3 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। एमएसएमई के द्वारा 3.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अब दूसरी अर्थव्यवस्था भारत में हो गई है। गंगा एक्सप्रेसवे पूरा उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए चल रहा है। ये सारी बातें तो अपनी जगह सोचिए जो बदलाव है। और सुनिए भाई साहब, कान खोलिए और सुनिए, महिलाओं के प्रति अत्याचार में जो कन्विक्शन रेट है यानी सजा दिलाना, वो राष्ट्रीय औसत है 23%, उत्तर प्रदेश में 50% है, यानी कौनो बच नहीं पा रहा है। अब दूसरी बात का जवाब देता हूं जो आशुतोष वर्मा जी ने कहा, हाँ ठीक है, इन्होंने कहा कि साहब इनको बहुत ज्यादा वो दर्द है चंदा चोरी को लेकर, तो हम भी ये कहना चाहते हैं साहब, हम तो खुद एक राम भक्त कार सेवक के रूप में 9 नवंबर 1989 को हॉस्टल में शिलान्यास भी कराए थे, हम अप्रैल 1987 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण संकल्प की रैली में भी गए थे, हम 4 अप्रैल 1991 को दिल्ली की रैली में भी गए थे, और हम लोग क्या कहते थे कि अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, और जन्मभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी है। मगर आज जो हुआ है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, हर हिंदू का हृदय है टूटा, आज आंख में पानी है, पर हर दोषी को सजा मिलेगी जिसने की बेईमानी है। मगर इनके लिए कहना चाहूंगा, जिनका खून नहीं खौला था, खून नहीं वो पानी है, आज भक्ति का स्वांग रचाते, ये भक्ति नहीं शैतानी है, जो श्रीराम जन्मभूमि के शिलान्यास में उद्घाटन में बुलाने पे नहीं गए और लिख के दिया हम नहीं आएंगे, वो बाबर की कब्र पे 3-3 पीढ़ियां गई बगैर बुलाए। 59 जवाहरलाल नेहरू, 68 इंदिरा गांधी, 2005 राहुल गांधी अलॉन्ग विद मनमोहन सिंह। तो भाई साहब आप क्या आप बोलने की बात करते हैं, विकास हो, कानून व्यवस्था हो, या यथार्थ हो, और या बूथ के ऊपर धरती पे काम करना हो, तो हमें वो धरातल पर जो काम मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में और योगी जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 साल में हुआ है, वो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि परिवर्तन की एक नई राह पर उत्तर प्रदेश आगे उठता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं श्वेता जी कहूंगा, मैं दिल्ली रहता था उस जमाने में, तो उस जमाने में स्थिति क्या थी कि बिजनेसमैन कहता था मुझे यूपी नहीं जाना, अब माफिया कहता मुझे यूपी नहीं जाना। याद करिए मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में थे, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई कि मैं पंजाब की जेल में रहना चाहूंगा, यूपी नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार के दामने रहमत में महफूज महसूस कर रहे थे। और आज भी इनमें देखिए आपस में कितना बढ़िया, बूथ मैनेजमेंट तो छोड़ दीजिए, इनका गठबंधन मैनेजमेंट देखिए, अभी इमरान मसूद क्या क्या बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के बारे में, आशुतोष वर्मा जी उस पर खुद प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और सुनिए, जब मध्य प्रदेश का चुनाव था अभय जी के राज्य में, तो क्या बोला था कमलनाथ जी ने, अखिलेश वखिलेश छोड़ो, अखिलेश जी ने जाके क्या बोला था कांग्रेस के लिए, बहुत नंबरी पार्टी है ये, बहुत चालू पार्टी है। तो ये चालू नंबरी वेश अखिलेश वखिलेश आपस में पहले गठबंधन मैनेजमेंट कर ना पा रहे हैं और आकर बूथ मैनेजमेंट में भाषण दे रहे हैं। इसीलिए मैं कहूंगा भाई साहब पहले आप देखिए, जिसे कहेंगे एक ईमानदारी से धरती पे काम करिए। और कांग्रेस की तो हैसियत मैं एक लाइन में बता दूं, समाजवादी पार्टी अगर समर्थन न करे तो पिछले 30 सालों से अमेठी रायबरेली जीतने की हैसियत नहीं है, ये अपनी सीट नहीं जीत सकते, अमेठी रायबरेली में हमेशा सपा ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया तब ये जीते हैं, और मुस्लिम लीग समर्थन न करे तो वायनाड नहीं जीत सकते।
1: पिछले चुनाव में
6: वायनाड में दोनों भाई बहन
1: पासा पलट दिया था ना सुधांशु जी, अभय जी, लेकिन
6: हाँ
1: अभय जी क्या सिलेक्टिव तौर पर आंकड़े अगर आप देखेंगे तो जनता दोनों आंखों से देख रही है, उसको मालूम है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरी जी
6: श्वेता जी 2024 पे एक लाइन बोल दूं, एक लाइन 2024 पे, अभी अभय जी ने बहुत गिनाया तो मैं आपके दर्शकों से कहता हूं, 2024 में इन्होंने संविधान के अलावा जो एक झूठा दिलासा दिया था, इन्होंने कहा था 1 लाख रुपए हर परिवार की महिला को मिलेंगे, 8,500 रुपए खटाखट खटाखट खटाखट, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, भारत की 140 करोड़ की आबादी है, 4.5 लोग पर पर्सन है, उसके हिसाब से 31 करोड़ करीब 31.5 करोड़ परिवार भारत में आते हैं, 1.5 करोड़ परिवार जो अच्छी स्थिति में उनको छोड़ दीजिए तो ये कह रहे थे 30 करोड़ परिवारों को 1 लाख रुपया साल देंगे, यानी 30 लाख करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और मैं चैलेंज करता हूं कोई दर्शक जाके देखे, 2024 में भारत सरकार की रेवेन्यू रिसीव जो थी 26 लाख करोड़ थी, यानी भारत सरकार की आमदनी 26 लाख करोड़ थी और ये निर्लज्जता से कह रहे थे हम 30 लाख करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और वो कहानी हो गई बहुत पुरानी।
1: ठीक है, अभय जी, आशुतोष जी, एक एक करके मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने जवाब दें। अभय जी, आपसे शुरुआत करते हुए।
0: जी जी जी, बूथ बूथ बहुत चिल्ला रहे थे, हर बूथ ज्ञानादेश की लूट, जीतते नहीं चुनाव, जनादेश नहीं ज्ञानादेश से लूट रहे हैं, वोट काट काट के प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन कर कर। क्या कहा, गंगा एक्सप्रेसवे, ये अडानी इंटरप्राइजेस को गंगा एक्सप्रेसवे का 464 किलोमीटर लंबा हिस्सा 17,085 करोड़ रुपए का है। अरे साहब, आपका क्या है उसमें, सारे तो BOT पे प्रोजेक्ट दिए और कहते हैं कि और वो उसका कर चुकाएंगे प्रदेश के नागरिक। अगर इतनी ही संपन्नता थी, इतने रोजगार थे तो 8.5 करोड़ लोगों ने पलायन क्यों किया उत्तर प्रदेश से, रोजगार के लिए पलायन किया जानते हैं, क्योंकि रोजगार के अवसर उत्तर प्रदेश की सरकार उनको मुहैया नहीं करा रही थी। तो
6: एक मिनट
0: आप सुनिए ना, 8.34 करोड़ ई श्रम, सुनिए,
6: अरे 24 करोड़ की आबादी में 8.5 करोड़,
0: अरे हाँ भाई साहब, ई श्रम पोर्टल पे
6: कुछ भी,
0: यस यस,
6: एक तिहाई से ज्यादा उत्तर प्रदेश खाली हो गया।
0: चुनौती देता हूं मैं, ई श्रम पोर्टल,
6: देखिए दर्शकों,
0: इसीलिए आप कह रहे थे 4 करोड़ लोग SIR में नहीं मिल, मैं दर्शकों से आग्रह करता हूं
6: किस राज्य में चले गए,
0: पर जाइए नरेंद्र मोदी जी के, एक सेकंड सुनिए ना, अरे उन्होंने शपथ पत्र दिए सारे नागरिकों ने कि 10,000 रुपए से कम हमारी प्रति माह की आमदनी है और हमारे पूरे परिवार की, और उत्तर प्रदेश से पलायन करने वालों की सूची केंद्र सरकार ने डाल रखी है, हर एक प्रांत की डाल रखी है, जिसमें देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है। भारतीय जनता पार्टी के पास वैमनस्य फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है, बहुत घृणित पाप किया इन्होंने, चंदा चोरी का सबसे बड़ा, देवद्रव्य की चोरी हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पाप है, इस पाप का प्रायश्चित नहीं दंड भोगना पड़ेगा, 60,000 वर्षों तक दंडित किए जाओगे, याद रखना। हम जो मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पर हमला किया था वो 10,000, उसको हमने 1026 से अब तक याद रखा है, तो आपका भी 1,000 साल।
1: अभय जी आखिरी एक मिनट है, मैं चाहूंगी कि आशुतोष जी भी अपनी बात रख लें।
6: एक मिनट,
1: ठीक है आशुतोष जी।
2: मैं सबसे पहले मैं क्रमवार आता हूं, लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जवाब देना जरूरी है, पूरी डिबेट बूथ पे हो रही है। अब बिना आंख झपकाए भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी में, उत्तर प्रदेश में कितने बूथ हैं इस समय, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा आपकी पता चल जाएगी आपकी स्थिति क्या है, कितने बूथ हैं इस समय जो रजिस्टर्ड।
6: अभी बताता हूं, सुनिए,
2: ठीक है,
6: जवाब दे दो,
2: ठीक है, मैं नहीं बताइएगा, मेरे से बताते हुए बताइएगा, ठीक है। उसके बाद ये बूथ की बात कर रहे हैं लगातार, आज हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी में गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक कहीं व्यापारियों की हत्या नहीं हो रही है, माफियों की हत्या नहीं हो रही है। गाजीपुर मई 2026 में विनीत राय के बेटे को अपहरण किया जाता है, अगले दिन उनके बेटे को गोली मार दी जाती है। और आप गाजियाबाद की बात करते हैं, गाजियाबाद के बगल में बड़ौत में सोहनलाल अग्रवाल के बेटे और बेटी दोनों उनकी हत्या कर दी जाती है जून में, लेकिन आपके कान में ये जून नहीं रंगता क्योंकि आप तो वोट नहीं करते और शायद आपको लगता है कि सब कुछ चंगा सी बोलने में फायदा रहता है। तो बूथ की बात करना और हत्याओं की बात करना, हकीकत उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। उसके बाद अभी ये LJP के लोग आए, स्वागत है उत्तर प्रदेश में, बहुत बहुत स्वागत है अरुण भारती जी, आपने चुनाव लड़ा, आप बहुत ज्यादा दलितों की चिंता कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि पासी वोट उनके पास से चला गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक बी टीम बिहार से बुला के लाई है, लेकिन आप समझ लीजिए पूर्वांचल से लेके दक्षिण तक,
1: माफ कीजिएगा आशुतोष जी, समय इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
2: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
1: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना? अर्ज किया है, पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
3: वाँ वाँ वाँ वाँ।
1: सेबी और एनएसई का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड एप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
4: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
7: पापा,
8: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
9: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
8: छक्का?
9: सब कैशलेस हो गया है।
8: हाँ,
10: ला भाई मेरा बैट।
8: वो अभी तो ठीक हुआ तू?
10: चार्ज हुआ यार।
8: बैट किसका है?
11: टाटा AIG है तो भरोसा है।
12: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
13: वी आर ओवर जिमी।
14: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
15: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
16: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
17: अरे, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
18: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
19: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
20: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
21: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
22: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
20: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
23: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
3: है।
4: हाँ ला, ला भाई मेरा बैट।
3: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
5: तो चार्ज हुआ यार।
6: ला बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: वी आर ओवर जिमी।
9: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
10: उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े चेहरे, जनता के सबसे बड़े सवाल और आज तक की सबसे बड़ी पंचायत, 15 जुलाई लखनऊ।
11: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
12: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच, हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
13: भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता की भी भूमिका वरिष्ठ नेतृत्व तय करता है और इसलिए कई बार लोगों को खबर नहीं रहती है, लेकिन वरिष्ठ नेतृत्व सोचता है। कार्यकर्ता जब अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक प्रकार से करता रहता है सामान्य कार्यकर्ता के नाते, तो उस कार्यकर्ता की भूमिका बदलनी है, नेतृत्व तय करता है। आमजन को लगता है कि ये कोई नया निर्णय है। नेतृत्व पर्याप्त विचार करके निर्णय करता है।
14: वो हाई प्रोफाइल व्यक्ति थे और वो आगे भी मुख्यमंत्री की दौड़ में आ सकते थे, इसलिए हाई प्रोफाइल लोगों को ऊपर के नेता ज्यादा पसंद नहीं करते। कोई आदमी भोला वाला सा दिखे, मूर्ख सा दिखे, हाथ जोड़ता रहे, पांव छूता रहे, तो लगता है ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसको चलने दो।
15: और आशुतोष तिवारी के बारे में कह रहे हैं ये?
14: नहीं, कोई भी हो, ये नरोत्तम मिश्रा जी के लिए भी है, आशुतोष तिवारी जी के लिए भी, वो भी हाई प्रोफाइल है। उनके पांव जमीन पे ही नहीं, जनता यहाँ जानती नहीं है उनको। दतिया जिले के मूल निवासी हैं, लेकिन दतिया में उनने कार्य किया ही नहीं, ऊपर बहुत काम किया, RSS में इधर उधर, ऊपर उनको बहुत बड़ा नेता माना जाता है।

0: एसआईआर के साथ बूथों के बदले हुए परिवेश में अलग अलग पार्टियां किस तरह की तैयारी कर रही है और बीजेपी किस तरीके से संगठन उसका तैयार है यूपी चुनावों के लिए, उस पर आप देख रहे थे हल्ला बोल। आगे देखिए 7 बजे की खबरें नेहा बाथम के साथ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शामिल होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह सीएम योगी के बीच 40 मिनट तक चली वार्ता, हाई लेवल मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर बातचीत, राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज। दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन के दोषी होने पर आप और बीजेपी में ठनी, सीएम रेखा गुप्ता ने लगाया आम आदमी पार्टी पर संरक्षण देने का आरोप, कपिल मिश्रा का तंज, ताहिर सिर्फ एक्टर, असली डायरेक्टर कोई और है। तीन भाषा नीति पर केंद्र और एनसीईआरटी को नोटिस, सीबीएसई को 10 दिन में जवाब देने का निर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से किया इनकार, क्लास 9वीं से 3 भाषा नीति को दी गई चुनौती। खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई दर ने भी लोगों की जेबें की ढीली, जून में 9.87% पहुंचा, ईंधन ऊर्जा की कीमतों में इजाफा का पड़ा असर, खाद्य महंगाई दर बढ़कर 5.49%। ईरान के हमले में भारतीय नाविक की मौत पर विदेश मंत्रालय सख्त, दिल्ली में ईरानी राजनयिक को किया तलब, जहाजों पर हमले को लेकर जताया विरोध, तत्काल अटैक रोकने की मांग की। और शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। ये मुलाकात तकरीबन 40 मिनट तक चली, कई कयास इस मुलाकात को लेकर लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को लेकर यह हाई लेवल मुलाकात हुई है। कर्तव्य भवन में गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, करीब 40 मिनट तक ये बैठक चली। योगी अमित शाह के बीच चर्चा, पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, जाहिर तौर पर चुनाव को लेकर मंथन, लेकिन क्या अहम बातें इस बैठक की निकलकर सामने आ रही हैं?
1: ये देखिए नेहा, कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान भी कर दिया। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए थे, लखनऊ में उन्होंने सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात की थी, कई वरिष्ठ नेता भी उसमें मौजूद थे। उस मुलाकात के बाद अब योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे और उनकी मुलाकात गृहमंत्री अमित शाह से हुई है। ये मुलाकात अब कर्तव्य भवन में हुई है, जहां पर गृह मंत्रालय का दफ्तर भी है। लगभग 40 मिनट से ज्यादा ये मुलाकात हुई थी, 6:45 के आसपास वो कर्तव्य भवन पहुंच गए थे और 6:42 के आसपास वो वहां से निकले। 6 बजे के आसपास ये मुलाकात हुई, यानी 40 मिनट से ज्यादा की ये मुलाकात हुई है। और सूत्र ये बताते हैं कि जो चर्चा हुई है वो उसका केंद्र बिंदु आगामी विधानसभा चुनाव रहे हैं, संगठन को किस तरह से मजबूत करना है उस पर चर्चा हुई है। साथ साथ ये भी कुछ सूत्रों ने दावा किया है कि जब उत्तर प्रदेश में संगठन का नया रूप निकल के सामने आ गया है, उसके बाद अब जो राष्ट्रीय टीम है बीजेपी की, उसका भी जल्द ऐलान होने वाला है, तो संभवतः उस पर भी चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश से भी कुछ नामों को मांगा गया है जिनको राष्ट्रीय टीम में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा लगभग सभी राज्यों से मांगा गया, लेकिन इन सभी राजनीतिक गतिविधियों के मद्देनजर ये मुलाकात बेहद अहम है, क्योंकि कई बड़े मुद्दों पर यह चर्चा हुई है, प्रशासनिक और साथ साथ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है। और ये मुलाकात इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नई बीजेपी की टीम के आने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए।
0: पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात राम मंदिर पर जारी घमासान की। एक तरफ राम मंदिर रावा चोरी के मामले में जांच जारी है, नित नए खुलासे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब राम मंदिर के मसले पर पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है।
2: ऐसे पोस्टर्स यूपी के अलग अलग शहरों में लगाए गए हैं। एक पोस्टर में अखिलेश और मुलायम सिंह यादव हैं, इसमें लिखा है मुलायम सरकार की असलियत। दूसरे पोस्टर में अखिलेश शिवपाल और राम गोपाल यादव की तस्वीरें हैं, इसमें लिखा गया है दिल में बाबर मुंह में राम। ऐसे पोस्टर्स लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर और अयोध्या में लगाए गए हैं।
3: जैसे चुनाव नजदीक आएगा, सब पुराने बयान निकाले जाएंगे, प्रहर पोस्टर निकाले जाएंगे, सबके निकलेंगे।
2: इस सियासत से इतर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेजी से बढ़ रही है। खबर है कि मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाने वाले कुछ विशेष दानदाताओं के दान को ट्रस्ट वापस कर सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद दर्जनों दानदाताओं ने ट्रस्ट के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और अपने दान की चोरी या घोटाले का शक जाहिर किया था। कई श्रद्धालुओं का दावा था कि उनकी ओर से भेंट की गई वस्तुओं की रसीद नहीं दी गई। आरोप ये भी है कि उनकी दी गई भेंट राम मंदिर में प्रदर्शित या सुरक्षित नहीं रखी गई। अब इन वस्तुओं को लौटाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उधर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटा दिया गया है। खबर ये भी है कि चढ़ावा चोरी की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम जल्द ही अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। आज तक ब्यूरो।
0: अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आते ही वक्फ के कथित घोटाले का सियासी शोर सुनाई देने लगा। पहले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष बासित अली ने बहराइच के सालार गाजी दरगाह में घोटाले के आरोप लगाए, फिर सीएम योगी ने कई मंचों से वक्फ के घोटालों का जिक्र कर दिया। अब खुद मुस्लिम जमात के मौलाना रिजवी ने वक्फ में घोटालों के आरोप लगा दिए।
4: क्या वक्फ बोर्ड में भी चल रही है धांधली? क्या वक्फ बोर्ड में भी हुआ है घोटाला? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर वक्फ के घोटालों की जांच करने की मांग की है
5: कि राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड का निकल करके सामने आएगा। वो लाखों का नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों का जो घोटाला है वो अरबों का घोटाला सामने निकल करके आएगा।
4: मौलाना रिजवी सीएम योगी के नाम लिखी चिट्ठी में दावा करते हैं कि वक्फ बोर्ड में सबसे ज्यादा लूट समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई।
5: जो वक्फ के जिम्मेदारान थे उन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को जो करोड़ों में थी उनको रेवड़ियों के भाव बेचा गया, वक्फ की संपत्ति को बर्बाद किया गया और ये सारी बर्बादी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई।
4: शहाबुद्दीन रिजवी अकेले शख्स नहीं हैं जो वक्फ में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं।
6: पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो हर जगह को पर घपलेबाजी हो रही है पूरी तरीके से।
4: समाजवादी पार्टी पर यह आरोप खुद सीएम योगी अपनी सार्वजनिक रैलियों और कार्यक्रमों में लगाते रहे हैं। जब राम मंदिर का मुद्दा सामने आया तो सीएम ने फिर से वक्फ घोटाले का जिक्र किया था।
7: अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई।
4: सियासी आरोप एक तरफ लेकिन आरोपों की जांच दूसरी तरफ। शिया वक्फ बोर्ड से जुड़े इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दिया जाए तो यूपी में किसी वक्फ घोटाले की सघन जांच अभी तक नहीं हो सकी है।
8: दूसरे स्थानों पे या दूसरे धर्म स्थल पे कहीं अगर कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से वहां सुधार होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन बयानबाजी नहीं। अगर कोई सबूत किसी के पास है, एविडेंस है तो वो सामने लाना चाहिए।
9: वक्फ के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पहले हुआ करता था। वक्फ की जमीनों को औने पौने दामों पर कब्ज हो जाते थे, किराए पे देते थे और उसके धन का दोहन होता था। वक्फ जिस भावना से किया जाता उस भावना का तिरस्कार होता था। लेकिन आज सरकार के प्रयासों के बाद हम वक्फ की संपत्तियों को रेगुलराइज करने का काम कर रहे हैं।
4: यूपी और देश में वक्फ की संपत्तियों के घोटालों के आरोप शुरू से लगते रहे हैं और उसे दूर करने के लिए ही सरकार ने वक्फ संशोधन कानून भी बनाया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि नए कानून के तहत बने वक्फ बोर्ड अब वक्फ संपत्तियों का उचित रखरखाव कर पाएंगे। बरेली से कृष्ण गोपाल राज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: और बात दिल्ली दंगे पर आए फैसले की, जिसमें आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद एक बार फिर से दिल्ली की सियासत गर्म हो गई।
4: छह साल पहले दिल्ली में हुए दंगे को लेकर दिल्ली की अदालत ने जो फैसला सुनाया, अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन दोषी पाए गए हैं। वहीं ताहिर के अलावा चार और आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
10: क्या अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी इस बात का जवाब देंगे कि दिल्ली में दंगे भड़काने जैसे कितने और कृत्य उन्होंने किए हैं?
4: आपको बता दें कि 26 फरवरी 2020 को खजूरी खास नाले से अंकित शर्मा का शव मिला था। उनके पिता ने ताहिर हुसैन समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। तमाम गवाहों की पेशी, सबूतों और सुनवाई के बाद अदालत का फैसला दिल्ली के सामने है। जहां तक ताहिर हुसैन का सवाल है तो खबर है कि कोर्ट की सुनवाई के दौरान वो फूट फूट कर रोने लगा। ताहिर की माने तो वो बेकसूर है, उसे फंसाया गया है।
11: अरे जी आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर बताइए।
4: हिंसा में नाम आने के बाद ताहिर हुसैन से केजरीवाल ने किनारा कर लिया था। आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने गले लगा लिया।
12: 2020 में जो दंगे हुए, आज ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन और ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोगों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू जो वहाँ पे रहने वाला हिंदू समाज है उनको मारने की साजिश थी। और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए, नौजवान बेगुनाह अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर जिनको कई बार चाकुओं से गोदा गया और बाद में उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया।
13: कोर्ट का फैसला है उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा क्या नहीं रहा।
14: लेकिन उसका नाम ताहिर, ये बड़ी चीज है, अगर उसका नाम कपिल होता वो भी परी हो जाता।
4: दिल्ली दंगे को लेकर एआईएफ हाथी रही है कि जिस दंगे में 53 लोगों की हत्या हुई उसमें 6 साल बाद भी सिर्फ एक हत्या के केस में दोषियों की पहचान क्यों हो पाई है। आखिर वो कैसी जांच थी जिसमें इसी दंगे में मारे गए हाशिम अली की हत्या के 12 और अनवर हत्याकांड के 5 आरोपी बरी हो जाते हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और बात बांकीपुर उपचुनाव की, इसमें एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आ चुका है। यहां तेज प्रताप की पार्टी से उम्मीदवार वीणा मानवी का नामांकन रद्द हो गया। जांच के दौरान निर्वाचन पदाधिकारियों ने पाया कि उनके नामांकन पत्र में निर्धारित नियमों का पालन ही नहीं किया गया था। कल नामांकन के दौरान भी जोरदार हंगामा हुआ। इस बीच बांकीपुर में प्रशांत किशोर की संपत्ति को लेकर सियासत तेज है।
4: प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से नामांकन किया तो सियासत उनकी संपत्ति को लेकर शुरू हो गई। प्रशांत किशोर ने हलफनामे में करीब 198 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा दिया है, जिसमें प्रशांत किशोर के पास 96 करोड़ की संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के पास करीब 102 करोड़ की संपत्ति है।
15: पहेलिया महाराज, इतना धन आपके पास है जो आप खुद डिक्लेयर कर रहे हैं, कैसे आया इस पे मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा। कुछ तो किया होता बिहार के लिए, बिहार से लेकर के और बाहर देने की प्रवृत्ति तो इनमें और बाकी जो लोग जिनके ऊपर बाहर गुड़गांव और विदेशों में संपत्ति रखने के केस चल रहे हैं उसमें अंतर क्या रह गया?
16: कि इतना संपत्ति वाले राजनीति में सेवा भाव से क्या काम करें।
4: उधर बांकीपुर में बीजेपी की तैयारियों का जायजा लेने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की।
17: बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में एक मंडल अध्यक्ष जैसे कार्यकर्ता

0: मारकर खुद को जख्मी किया।
1: एक ऑटो चालक द्वारा एक ऑटो सवारी को बिठाया गया। दोनों ही नशे की हालत में थे। पैसे के लेन देन को लेकर दोनों में आपस में वाद विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों ही पिंक बूथ पर पहुंचे और शराब के नशे की हालत में ऑटो सवारी ने तेज से पिंक बूथ के गेट पर हाथ मारा, जिससे उसके हाथ में कांच गड़ गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।
0: इस दावे के बीच सवाल ये है कि नशे की हालत में ही सही वो विवाद सुलझाने के लिए पुलिस के पास गया था, तब पुलिस ने क्या किया? जब युवक का हाथ कट गया तो पुलिस ने उसका उपचार क्यों नहीं कराया? क्या सही वक्त पर युवक को मदद मिल जाती तो वो आज जिंदा ना होता? गाजियाबाद से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: वहीं इंदौर से रोड रेज का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां टशनबाजी के चलते एक युवक कार की बोनेट पर चढ़ गया और शराब की बोतल से कार के शीशे को तोड़ दिया।
3: कार की बोनेट पर एक शख्स बैठा है, उसके हाथ में शराब की बोतल है। कार में बैठे परिवार वाले कुछ भी बोलते उससे पहले ही ये शख्स कार के शीशे को बोतल से तोड़ देता है और कार में बैठे पति पत्नी बेहद घबरा जाते हैं। उसका डर उसकी आवाज से समझा जा सकता है। ये खौफनाक तस्वीरें इंदौर के मोती तबेला इलाके की हैं, जहां रोड रेज का बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक गाड़ी में मामूली कट लग जाने की बात को लेकर इस शख्स ने एक कार पर हमला कर दिया।
4: इन्होंने अपनी गाड़ी आगे सामने खड़ी कर दी और मुझे गाली गलौज करी और मारने की धमकी दी। मारने की धमकी के साथ साथ ये इशारे कर रहे थे जान से मारने के, तरीके हाथ दिखा रहे थे। उसके बाद मैं जैसे ही गाड़ी आगे लेने गया तो वो व्यक्ति मेरी गाड़ी के ऊपर आया। गाड़ी के ऊपर आने के बाद उसने गाड़ी के सांस पर बोतल मारी।
3: परिवार वालों की शिकायत के बाद पुलिस एक्शन में आई, आरोपी युवक की तलाश शुरू की और कुछ ही देर में आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया।
5: 9 बजे की घटना है, ये खान अन्नपूर्णा क्षेत्र में रहते हैं और केसरबाग रोड तरफ से ये अपना टावर चौराहे की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में मोती तबेला के पास में जीएमबी के पास में दो अज्ञात बाइक सवार आए और इनके वाहन जो टाटा हैरियर गाड़ी उसके आगे इनकी बाइक को लगाकर गाड़ी रोकी और एक बॉटल से जो इनकी गाड़ी की स्क्रीन है उसको खोला गया, इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस पर से थाना राजूहार पर अपराध क्रमांक 226/26 धारा 296, 324, 351, 3 और 119(1) का पंजीबद्ध किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त महोदय द्वारा टीमों का गठन किया गया।
3: इंदौर में हुई रोड रेज की यह घटना बेहद सनसनीखेज है। जिस तरह से बीच सड़क कार पर हमला हुआ वो बेहद हैरान करने वाला है। हालांकि अब मामले के दोनों आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा कस चुका है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: महाराष्ट्र के नासिक में भी चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। यहां पर भावली डैम घूमने आए एक परिवार की महिलाओं से कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की। जब परिवार ने उसका विरोध किया तो आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी और काफी दूर तक इस परिवार का पीछा किया।
6: बाइक पर सवार दो शख्स एक कार का पीछा कर रहे हैं। पीछे बैठे शख्स के हाथ में लोहे की रॉड है। एक रॉड बाइक की टंकी पर भी रखी हुई है। कुछ पल बीतते ही पीछे बैठा शख्स लोहे की रॉड को आगे जा रही कार पर मारता है और फिर दूसरी रॉड को भी उठाकर कार पर हमला करता है, जिससे कार में बैठा पूरा परिवार सहम जाता है। शोर चीख पुकार मच जाती है। अब कार के अंदर की तस्वीरें देखिए। कार का शीशा बुरी तरह चकनाचूर हो गया। कांच के टुकड़े महिला के चेहरे पर लग गए हैं। कार में बैठे लोग बेहद डरे हुए हैं। हैरान करने वाली और बेहद खौफनाक यह घटना महाराष्ट्र के नासिक की, जहां भवाली वाटरफॉल घूमने गए एक परिवार के साथ हुई इस घटना ने पर्यटकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
2: अहमदाबाद शेयर बाजार की कारोबार के दौरान बिकवाली के दबाव के बीच घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 561 अंक कमजोर होकर 77,055 और निफ्टी 159 अंक टूटकर 24,052

0: के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में गिरावट, ट्रंप के युद्ध विराम खत्म होने वाले बयान, ईरान पर ताजा हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल और ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट से मिले नकारात्मक संकेत के चलते गिरावट आई है। शेयर बाजार की गिरावट के बीच रुपए पर भी दबाव जारी रहा। डॉलर के मुकाबले रुपया 62 पैसे कमजोर होकर 96.30 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। रुपए में गिरावट मुख्य रूप से डॉलर की मजबूती और विदेशी पूंजी निकासी के चलते हुई है। वहीं सराफा बाजार में आज मिश्रित रुख रहा। सोना 476 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 1,41,712 रुपए पर बंद हुआ, जबकि चांदी 849 रुपए बढ़कर 2,19,571 रुपए के स्तर पर बंद हुई। सोने चांदी की मिश्रित रुख रुपए की कमजोरी और वैश्विक अनिश्चितता के चलते देखने को मिला है। इस बीच बड़ी खबर क्रिकेट मैदान से, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले वनडे में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को 259 रन का लक्ष्य दिया है। अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने 43 रन की पारी खेली। 80 रन पर इंग्लैंड के 5 विकेट गिर गए थे, लेकिन लियाम डॉसन जो रूट की साझेदारी ने इंग्लैंड को शुरुआती झटकों से उबार दिया। दोनों ने हाफ सेंचुरी जमाई है। हर किसी की नगाह होगी रोहित शर्मा और विराट कोहली की बल्लेबाजी पर, जो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं और अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए दावेदारी कर रहे हैं। और अब बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की। पहले सेमीफाइनल में आज रात स्पेन और फ्रांस का मुकाबला होगा। स्पेन इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में दिखाई दिया है। टीम ने अब तक खेले गए सभी 6 मुकाबले जीतकर अपनी ताकत साबित कर दी है। स्पेन ने पूरे टूर्नामेंट में 27 गोल किए, जबकि उसके खिलाफ सिर्फ 4 गोल हुए। स्पेन के स्टार खिलाड़ी यमाल ने निको के साथ मिलकर टीम के आक्रमण को नई धार दी है। उधर फ्रांस भी इस अहम मुकाबले के लिए तैयार है। स्टार खिलाड़ी एम्बापे की रफ्तार और गोल करने की काबिलियत किसी भी डिफेंस को मुश्किल में डाल सकती है। फ्रांस की टीम भी इस बार कोई मैच अभी तक नहीं हारी है। उसने इस वर्ल्ड कप में अब तक 13 गोल किए और सिर्फ 7 गोल खाए हैं। एम्बापे 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की दावेदारी में सबसे आगे चल रहे हैं। और बात दुनिया भर की खबरों की। ईरान और अमेरिका बीच तनाव खत्म नहीं हो रहा है। लगातार तीसरे दिन अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए, वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा हमला करने की धमकी दे दी है।
1: अमेरिका की मिसाइलें लगातार तीसरी रात ईरान के शहरों में कहर बनकर बरसी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के भीतर घुसकर पूरे 5 घंटे तक ताबड़तोड़ बमबारी की। वो शहर चाबहार, जास्क और बंदर अब्बास जैसे इलाकों में 1000 किलोमीटर के दायरे में अमेरिकी मिसाइलों ने जमकर तबाही मचाई। किश्त द्वीप के बंदरगाह से लेकर बलूचिस्तान सीमा तक सिर्फ आग की लपटें और धुएं का गुबार दिख रहा है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकाने मटिया मेट कर दिए गए हैं। सेंटकॉम का दावा है कि इस वक्त 50,000 अमेरिकी सैनिक खाड़ी में ईरान के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे हैं। तीसरी रात की भीषण बमबारी के तुरंत बाद ट्रंप ने एक टॉक शो में सीधे ऐलान किया है कि अमेरिकी सेना अगले 2 दिनों तक ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा और घातक हमला करने जा रही है।
2: Anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait, and I think in the end we will end up discontrolling the whole thing. And what they're doing is being very foolish, very stupid.
1: इतना ही नहीं, ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो जल्द ही ईरान के सबसे संवेदनशील पिकैक्स माउंटेन न्यूक्लियर साइट को बमों से उड़ाने का आदेश दे सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
0: इस बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: Ready for the next big IPO? Apply for it on Grow. Open your free DMAT account, check all IPO details, apply easily in a few taps. And that's it. Download Grow now for stocks, mutual funds and IPOs.
2: Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
3: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
4: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
5: देख, इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
6: अच्छा, सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
5: अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह,
7: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
8: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
10: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
11: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
10: छक्का?
11: सब कैशलेस हो गया।
12: टाटा AIG है तो भरोसा है।
13: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार। देश के हीरो की पहली पसंद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
9: Ready for the next big IPO? Apply for it on Grow. Open your free DMAT account, check all IPO details, apply easily in a few taps. And that's it. Download Grow now for stocks, mutual funds and IPOs.
10: Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
11: We are over, Jimmy.
12: Hey, life mein scratches to aayenge. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबा केसरी हिंट बड़े आराम से
2: उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े चेहरे जनता के सबसे बड़े सवाल और आज तक की सबसे बड़ी पंचायत 15 जुलाई लखनऊ
3: शेयर बाजार जहां कुछ लोग सीखते रह जाते हैं और कुछ इतिहास लिख जाते हैं। आखिर बड़ा पैसा बनता कैसे है, कौन सी सोच, कौन सी रणनीति और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिजटेक की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स। यहां मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से, उन मार्केट लेजेंड से जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव दिए हैं, मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है। जानेंगे उनकी जर्नी, बड़े फैसले, निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच। मनी मेकर्स, बाजार के बड़े नाम, बड़ी सीख, सिर्फ बिजटेक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह सीएम योगी के बीच तकरीबन 40 मिनट तक चली बैठक। हाई लेवल मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर बातचीत, राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज। दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन के दोषी होने पर आप और बीजेपी में ठनी, सीएम रेखा गुप्ता ने लगाया आप पर संरक्षण देने का आरोप। कपिल मिश्रा का तंज, ताहिर सिर्फ एक्टर है, असली डायरेक्टर कोई और है। तीन भाषा नीति पर केंद्र और एनसीईआरटी को नोटिस, सीबीएसई को 10 दिन में जवाब देने के निर्देश। एससी ने फिलहाल रोक लगाने से किया इनकार, क्लास 9वीं से तीन भाषा नीति को दी गई है चुनौती। खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई दर भी लोगों की जेबें ढीली की, जून में 9.87% पहुंचा खुदरा महंगाई दर। ईंधन ऊंचा, ऊर्जा की कीमतों में इजाफा का पड़ा असर, खाद्य महंगाई दर बढ़कर 5.49% हुई। बर्मिंगम वनडे में भारत के सामने 259 रन का लक्ष्य, रूट और डॉसन की 50, अक्षर पटेल ने झटके 4 विकेट।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बात। आज विशेष में बात करेंगे उस मॉनसून की जो लगता है कि कहीं खो सा गया है। जून में तो बारिश हुई नहीं, जुलाई आया तो पहले हफ्ते में जमकर बारिश हुई, लगा कि जून का डेफिसिट भी जुलाई ये बारिश खत्म कर देगी, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे फिर से सूखा पड़ रहा हो। 5 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है और हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से में पानी की एक बूंद नहीं गिरी है। सवाल यही कि ऐसा क्यों हो रहा है और इससे आगे कितना नुकसान होने वाला है, खासतौर पर किसानों को क्या नुकसान होने वाला है, पूरी रिपोर्ट देखिए।
3: अचानक से बरसता मॉनसून कहां चला गया? जुलाई में बारिश की रफ्तार पर क्यों ब्रेक लग गया? क्या यह अल नीनो का असर है या फिर से सूखा पड़ने वाला है? मॉनसून पर लगा ये ब्रेक फसलों के लिए कितना नुकसानदायक है? पिछले हफ्ते हुई ये शानदार बारिश बता रही थी कि देर से ही सही, लेकिन मॉनसून जब आया तो झूम कर बरसा। किसानों को लगा कि उनकी फसलों की बंपर पैदावार होगी, लेकिन 2 दिन में ही ये चिलचिलाती धूप निकल आई, भीषण गर्मी के साथ उमस। ऐसा लगता है कि जैसे मई जून फिर से लौट आया हो। सवाल है कि बारिश अचानक से कहां चली गई, मॉनसून पर यह ब्रेक क्यों लगा? मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून में बारिश अक्सर स्पेल में यानी कि अलग अलग अवधि में होती है। 2 जुलाई से 9 जुलाई तक अच्छी वर्षा हुई, फिर ब्रेक हो गया। वजह यह है कि जब मॉनसून साउथ में रहता है तो भारत के मैदानी क्षेत्रों में अच्छी बारिश होती है, फिर मॉनसून पहाड़ों की तरफ खिसकता है तो बारिश रुक जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी यही स्थिति है। अब सवाल है कि आगे बारिश कब होगी, तो मौसम विभाग बता रहा है कि अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 19 जुलाई से दोबारा उत्तर पश्चिम भारत यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश की पूरी संभावना है।
4: क्या ये सिस्टम मतलब साइक्लिक है या कोई असाधारण घटना है?
5: नहीं, कोई असाधारण घटना नहीं है कि जैसे जो जैसे कि मॉनसून जब ट्रफ हमारा नॉर्मल या उसके साउथ में रहता है तो भारत के मैदानी क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा देखने को मिलती रहती है, और जैसे जैसे ये नॉर्थ की तरफ जाता है यानी फुटहिल्स की तरफ जाता है, अभी आज की अगर स्थिति बात करूं मैं 14 जुलाई की, तो जो मॉनसून ट्रफ का जो पश्चिमी सिरा है वो अभी जम्मू से स्टार्ट होकर के जम्मू देन देहरादून बाराबंकी से होकर के और ईस्ट सेंट्रल व्यू ऑफ बंगाल में जा रहा है, यानी कि मॉनसून ट्रफ का जो पश्चिमी सिरा है वो अपनी सामान्य स्थिति काफ़ी ऊपर फुटहिल्स में है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जो तराई बेल्ट है जैसे नदन पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये सब पॉकेट्स में वर्षा मिल रही है।
3: लेकिन सवाल है कि इससे नुकसान कितना हुआ, अब इसे भी समझिए। जून में बारिश का 40% का डेफिसिट था, फिर जुलाई के पहले हफ्ते में अच्छी बारिश हुई तो यह डेफिसिट घटकर अब 19% रह गया, यानी 21% की रिकवरी हुई है। ये उम्मीद थी कि जुलाई में ठीक ठाक बारिश होगी तो यह पूरा डेफिसिट कवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सवाल है कि कहीं यह पूरा डेफिसिट बढ़ता ना चला जाए, क्योंकि बारिश कम होने का मतलब है कि सब कुछ कम होना। यह पूरा का पूरा दुष्चक्र है जो सबको प्रभावित करता है, और एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इसका लंबा असर देश की जीडीपी पर पड़ सकता है। ये समझने से पहले आप ये जानिए कि कैसे कम बारिश फसलों पर असर डाल रही है। आमतौर पर जुलाई से सितंबर के सीजन में खरीफ की फसल 1104 लाख हेक्टेयर में बोई जाती है। 2025 में 10 जुलाई तक 632 लाख हेक्टेयर पर फसल की बुआई हुई थी, जो 2026 में 16% घटकर सिर्फ 531 लाख हेक्टेयर रह गई। सबसे ज्यादा असर हुआ है दलहनों पर। 2025 की तुलना में किसानों ने दालों की 23% कम बुआई की है। इसी तरह से मोटे अनाज की 22% कम, तिलहन की 21% कम, कपास की 15% कम और धान की 9% कम बुआई हुई है। ये सारी वो फसलें हैं जिनमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और पानी बरस ही नहीं रहा तो किसान इन फसलों की बुआई ही नहीं कर पाए। सरकार खुद किसानों को सलाह दे रही है कि किसान अब कम अवधि वाली फसलों को प्राथमिकता दें।
6: अभी जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है, अब बोनी और तेजी से होगी। पिछले साल इस समय तक 442 लाख 80 हजार हेक्टेयर में बोनी हुई थी, सोइंग हुई थी, लेकिन कल तक 350 लाख 85 हजार हेक्टेयर में बोनी हुई है। इसका मतलब 91.95 लाख हेक्टेयर में बुआई अभी कम हुई है, लेकिन उम्मीद यह है कि इस अच्छी वर्षा के कारण अब बोनी का क्षेत्र तेजी से बढ़ेगा। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है।
3: सरकार के किसानों को दी गई ये राय बता रही है कि हालात ठीक नहीं है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इसका सीधा असर देश के जीडीपी पर पड़ सकता है। अगर मॉनसून में ठीक से बारिश नहीं हुई तो महंगाई भी बढ़ सकती है।
7: अगर आपके पास मॉनसून रेनफॉल कम होता है तो नेचुरली हमारी राइस फील्ड, देन मेज, मक्का और ये जो और 3-4 दलहन है, सब पे इनका प्रभाव पड़ेगा। और इनका प्रोडक्शन अगर कम होगा तो नेचुरली जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी पे आप लोगों को जैसे अंदाजा है कि करीब 17-18% जीडीपी हमारा एग्रीकल्चर से आता है, और 47% के करीब वर्क फोर्स इसके ऊपर डिपेंडेंस है। तो इन चीजों को ध्यान में रखे अगर हम देखें, और अगर जो महंगाई बढ़ेगी वो करीब 4-5% के करीब बढ़ सकती है, तो इससे लंबा एक चेन रिएक्शन शुरू होगी।
3: यानी मॉनसून में कम बारिश बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। बारिश कम होने का मतलब है फसल कम, मतलब तिलहन और दलहन आयात करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये कम वर्षा अल नीनो की वजह से हो रही है? अल नीनो के साथ आपको एक और टर्म समझना होगा, इंडियन ओशन डाइपोल यानी आईओडी। दरअसल दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर इस समय प्रशांत महासागर में बन रहे अल नीनो सिस्टम और इंडियन ओशन डाइपोल यानी आईओडी पर है। अल नीनो यानी पूर्व में प्रशांत महासागर की सतह से गर्म चलने वाली हवाओं के चक्र से दुनिया भर के मौसम पर होने वाले असर और इंडियन ओशन डाइपोल की स्थिति ये तय करेगी कि भारत में मॉनसून कैसा होगा। वैज्ञानिक कह चुके हैं कि प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसका असर एशिया प्रायद्वीप में सितंबर महीने के बाद दिखना शुरू हो सकता है। लेकिन हिंद महासागर में आईओडी की स्थिति क्या होगी, इस पर स्पष्टता आने में अभी महीने भर का समय और लग सकता है।
4: प्रशांत महासागर की सतह जब गर्म होगी तो हवाएं वो पश्चिम की ओर आएंगी, जो ट्रोपोस्फीयर में एक इक्वेशन बनेगा, लेकिन उसके साथ उसका असर पड़ेगा भारत के मानसून पर भी। लेकिन नजर इस बात की है कि क्या इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव होगा या नकारात्मक होगा। दरअसल सैटेलाइट की तस्वीर अगर हम देखें, और मौसम विभाग ये मान रहा है कि अभी तक जो इंडियन ओशन डायपोल है वो न्यूट्रल है। अब अगर भारत से नीचे आते हैं और इसी से थोड़ा और जब नीचे आएंगे तो इथोपिया या अफ्रीका के पास, दरअसल हम देखते हैं अफ्रीका के पास नोटिस करते हैं यहीं से इंडियन ओशन डायपोल को, तो ये दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका के पास, और इसी के साथ साथ कि यहां की सतह क्या गर्म है, और उसी के साथ दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया के पास क्या यहां जो समंदर है हिंद महासागर, उसकी सतह ठंडी है। अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है और पॉजिटिव होता है तो वो प्रशांत की ओर से आने वाली इन गर्म हवाओं को निष्क्रिय कर देगी और पॉजिटिव आईओडी की स्थिति में बारिश तेज होगी। लेकिन चिंता इस बात की है कि अभी तक इंडियन ओशन डायपोल बिल्कुल न्यूट्रल है और जब तक वो पॉजिटिव नहीं होता तो 1997 या 2023 की स्थिति नहीं बनती, और ऐसे में एल नीनो का असर अगस्त के बाद से भारत के मौसम पर डालेगा। न सिर्फ बरसात कम होगी बल्कि उसका असर देश की खेती बारी पर भी पड़ेगा।
3: एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि देश को एल नीनो के प्रभाव के लिए तैयार रहना चाहिए। भले ही उसका असर सितंबर के बाद महसूस किया जाएगा, लेकिन अगर एल नीनो आया तो फिर सूखा ही सूखा है। एक्सपर्ट पूरी तैयारी करने को कह रहे हैं।
8: IMD forecast will keep coming along the way for days to weeks, and government will use it and private sector will use it for making decisions, kind of crisis management, as well as food, energy, water, etc. So we have to just deal with it as it comes, prepare for the worst, hope for the best, but rely on skillful early warnings to manage resources, disasters, and protect lives, livelihoods, properties, businesses, etc. That's the deal this year.
3: Ashutosh Mishra, Delhi, Aaj Tak.
0: जुलाई से सितंबर तक का सीजन किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये सीजन खरीफ का है, यानी कि दलहन और तिलहन इसी सीजन में बोया जाता है, धान बोया जाता है, लेकिन खराब होती है।
3: विदर्भ का किसान इस समय तिहरी मार झेल रहा है। पहले मॉनसून देर से आया, फिर कई किसानों को सोयाबीन के बीजों का अंकुरण नहीं होने के कारण दोबारा बुआई करनी पड़ी, और अब पिछले 6 दिनों से बारिश थमने के कारण खेतों में खड़ी फसल सूखने लगी है। विदर्भ की 80-85% खेती आज भी सिर्फ मानसून पर निर्भर है। ऐसे में किसान खेतों में गुड़ाई कर बची हुई नमी फसलों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
9: हमारा करीबन है 1.5 लाख रुपए। अब कैसा भरेंगे, अब जो भी होगा बैंक देखेंगे, हमारी हर राशि में लगाएंगे खेत, और इसके और कुछ कर सकते नहीं, हम क्या करेंगे। हमने कर्जा जो लिए काय के लिए, फसल के लिए, फसल ही नहीं रही तो पैसे भरेंगे कहाँ से। अभी समझ लो 8-10 दिन पानी नहीं आया तो ट्रैक्टर डालो, खेत काला करके मोकला करो, इसके अलावा कुछ कर सकते नहीं हम।
10: मजदूर के भाव बढ़ गए, अब खाद के भाव बढ़ गए, बीज के भाव बढ़ गए, तो कितना पैसा लगाना, जितना पैसा रहता सोना नाना सब बैंक पे रखना पड़ता, कर्जा लेना पड़ता, फसल आने के बाद में वापिस दे देते, अब ये आया ही नहीं तो कैसा करेंगे हम।
3: इस साल विदर्भ में मॉनसून की शुरुआत देर से हुई। शुरुआती बारिश के बाद किसानों ने बड़े पैमाने पर सोयाबीन, कपास, धान और तुअर की बुआई की, लेकिन सामान्य के मुकाबले अब तक अपेक्षित बारिश का केवल 70-75% हिस्सा ही दर्ज हो पाया है, जिससे बारिश का बैकलॉग बना हुआ है। पिछले 6 दिनों से बारिश लगभग थम सी गई है।
11: ज्यादा अगर फसल विदर्भ में होती है तो वो है कॉटन की, कपास की। अब वो भी फसल देखिए आप किस तरह से, यहाँ पर एक एक पत्ता जो है उसका पानी नहीं होने के चलते जो है पीला पड़ते जा रहा है, तो कहीं जलते नजर आ रहा है। ये पूरी हकीकत जो है ये विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों की है। लगभग विदर्भ में जिस तरीके से सरकारी आंकड़े के मुताबिक जो है वो यहाँ पर जिस तरीके से हर साल बारिश होनी थी उससे कम हुई है, तो लगभग विदर्भ के पूरे क्षेत्र में लगभग 75% ही बुआई हुई है, जो पिछले साल के मुताबिक, यानी पिछले साल लगभग 99-100% बुआई हुई थी, लेकिन इस वक्त बुआई इसलिए कम हुई है कि बारिश ही ठीक ठाक नहीं है। पश्चिम विदर्भ में कुछ इलाकों में मानो अकोला या उसके लगभग जो है वो अमरावती है, यवतमाल है, बुलढाणा है, वहां तो ठीक ठाक बारिश जरूर नजर आ रही है, लेकिन वो कुछ ही इलाकों में है, चंद इलाकों में है।
3: मराठवाड़ा में इस साल मॉनसून की बेरुखी के कारण किसानों पर दोबारा बुआई का भारी संकट मंडरा रहा है। इसी आर्थिक और मानसिक तनाव के चलते बीड जिले के एक किसान ने आत्महत्या कर ली। गेवराई तहसील के रानमला गांव के 25 साल के युवा किसान मुकुंद गंगाराम हिंगे ने रविवार को अपने घर में फांसी लगा दी। इस साल बारिश न होने से फसलें बर्बाद हो गई, जिससे कर्ज चुकाने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
12: पाऊस पानी नहीं, आज विहिरीत पानी नहीं, बोरला पानी नहीं, ऊस जळून गेलाय आणि त्याला त्याच्याकडे कर्जाचा डोंगर झाल्यामुळे त्यांना निराश झाला आणि निराश होऊन त्यांना आत्महत्या केली।
3: बीड जिले में इस साल बारिश की स्थिति बेहद चिंताजनक है। जुलाई का आधा महीना बीत जाने के बाद भी जिले में केवल 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जिले में कुल 8 लाख हेक्टेयर बुआई के लायक क्षेत्र है, लेकिन पानी की कमी के कारण अब तक केवल 4 लाख हेक्टेयर पर ही किसी तरह बुआई हो सकी है। जिन किसानों ने शुरुआती हल्की बारिश पर बुआई की थी, उनकी फसलें अब सूख चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में भी मानसून की रफ्तार थम सी गई है। जून लगभग सूखा गुजर गया और जुलाई में भी बारिश उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा असर अब किसानों पर दिख रहा है। बेमेतरा और राजनांदगांव जैसे कृषि प्रधान जिलों में खेत तैयार हैं, लेकिन पानी नहीं है। कहीं बुआई नहीं हो पा रही तो कहीं अंकुर निकलने के बाद फसल सूखने लगी है। किसान अब आसमान की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं।
13: इस बार मौसम की बेरुखी से सबसे ज्यादा परेशानी अगर हो रही है तो किसानों को हो रही है, हम लोगों को हो रही है। मैं जान सकता हूं कि क्या स्थिति है। अब आप देखिए कि मेरे पूरे खेत की जुताई हो चुकी है, पूरा खेत तैयार है। मैं सिर्फ पानी का इंतजार कर रहा था कि पानी गिरे तो अपनी फसलों को जो लगाऊं, रोपाई करूं। सबसे पहले चीज थी कि हमने ये उम्मीद थी कि इस बार बरसात अच्छी होगी। हालांकि सरकार जो वैज्ञानिक है वो कह रहे थे बरसात कम होगी, लेकिन उम्मीद थी कि बरसात अच्छी होगी, इसीलिए हम तैयारी की। लेकिन क्या करें, उम्मीद में हम अपने खेतों की जुताई कर चुके हैं, तो हम सीधा सीधा श्री पद्धति से, जो वैज्ञानिक पद्धति होता है श्री पद्धति, उससे हम उनारी कर रहे हैं ताकि अगर पानी गिरे तो हमारी फसल कुछ तो हो जाए, इसी उम्मीद से हम लोग अभी फसल को लगा रहे हैं।
3: बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता सिर्फ फसल तक सीमित नहीं है। कई किसानों ने खाद और बीज खरीदने के लिए कर्ज लिया है। उन्हें दोबारा बुआई की आशंका और आर्थिक नुकसान दोनों का डर सता रहा है। इसीलिए किसान सरकार से फसल नुकसान का सर्वे, उचित मुआवजा और फसल बीमा के दावों का जल्द निपटारा करने की मांग कर रहे हैं।
14: मानसून देखा है तो पिछले एक हफ्ते सक्रिय रहा है, लेकिन पिछले 4-5 दिन से देखा है तो कोई खास सिस्टम नहीं है। और मानसून ट्रफ भी है जो उत्तर को और पोजिशन है, जिसकी वजह से प्रदेश का पिछले 2 दिन से शुष्क रहा। लेकिन आज का स्थिति में देखा है तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो हेड बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ है, जिस प्रभाव से आज और कल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की चांस है। पूर्वी इलाकों में 1-2 स्थानों पर मध्य से लेके भारी वर्षा भी होने की संभावना है।
3: आज तक ब्यूरो।
0: वक्त एक ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
15: Order for Jennifer C.
16: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
15: Yeah. Can you handle that much caffeine?
16: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
15: Oh, really? That's great.
16: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
15: Yeah, you just said that.
16: Did you say I just said that?
15: Yeah, I'm cutting you off.
16: I can't have any more? Why not?
17: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
18: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
19: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
20: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
21: Ready for the next big IPO? Apply for it on Grow. Open your free DMAT account, check all IPO details, apply easily in a few taps. And that's it. Download Grow now for stocks, mutual funds and IPOs.
22: Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: पापा।
6: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ। तू
5: चार्ज हुआ यार।
8: बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: वी आर ओवर जिमी।
11: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
12: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइयत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई? कौन थे इसके महानायक? तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
1: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
3: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
4: Ready for the next big IPO? Apply for it on Grow. Open your free DMAT account, check all IPO details, apply easily in a few taps. And that's it. Download Grow now for stocks, mutual funds, and IPOs.
5: Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
6: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
7: Money, money, money, money, every month.
8: Soch badlo aur bank bhi.
9: We are over, Jimmy.
10: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PP ab samal lega. Aap apna dekh lo.
11: छह साल पहले दिल्ली में हुए दंगे को लेकर दिल्ली की अदालत ने जो फैसला सुनाया उसे लेकर सुलगती सियासत का एक सिरा पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार तक पहुंचता है। 2020 की फरवरी के आखिरी हफ्ते में दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की हत्या हुई थी। मारे गए 40 मुस्लिम और 13 हिंदुओं में एक नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर अंकित शर्मा का भी था, जिसकी हत्या के केस में कड़कड़डूमा की अदालत ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। दंगों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में जो आरोप लगाए थे उनमें से अदालत ने हत्या की धारा 302, अपहरण की धारा 365, दंगे से जुड़े अपराधों की धारा 147, 148, 149 और समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की धारा 153A और सरकारी आदेश तोड़ने की धारा 188 के तहत ताहिर को दोषी करार दिया है। दोषियों की सजा का ऐलान 16 जुलाई को होगा, लेकिन 5 दोषियों में से एक आम आदमी पार्टी के तत्कालीन पार्षद और AIMIM के विधानसभा उम्मीदवार रहे ताहिर हुसैन ने इसे नाइंसाफी कहा है। लेकिन बीजेपी से इंसाफ की मिसाल कहती है और 51 बार चाकुओं से गोद कर मारे गए अंकित शर्मा के हत्यारों के साथ ताहिर हुसैन के गुनाह का जिक्र भी करती है। सियासत ये है कि दिल्ली की घटना पर पंजाब में पॉलिटिकल घेराबंदी हो गई, क्योंकि दिल्ली दंगे से ठीक पहले दिल्ली पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दे चुके कपिल मिश्रा ने अब इन दंगों के डायरेक्टर का सवाल उठाया है। हालांकि चुप्पी सिर्फ आम आदमी पार्टी लीडरशिप की ही नहीं है। जिस AIMIM ने पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया था, दिल्ली दंगे के आरोपी होने के बावजूद जो ताहिर 33,000 वोट पाता है, अब तक ओवैसी की पार्टी उस पर चुप है, लेकिन केजरीवाल की पार्टी के विधायक अब भी ताहिर हुसैन के समर्थन में खड़े हैं। केजरीवाल के विधायक को ताहिर के लिए ऊपरी अदालतों में इंसाफ की उम्मीद बची हुई लगती है, तो कांग्रेस के नेता ताहिर के साथ इंसाफ की उम्मीद छोड़ चुके हैं और वजह बताते हैं ताहिर का मजहब। दरअसल दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन के दोषी करार होने का असर अब दिल्ली से पंजाब तक दिख रहा है, क्योंकि पंजाब में बीजेपी की 2 चुनौतियां केजरीवाल और कांग्रेस हैं, लिहाजा बीजेपी अब ताहिर खान के जरिए दोनों दलों को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। हालांकि दिल्ली दंगे को लेकर AIMIM सवाल उठाती रही है कि जिस दंगे में 53 लोगों की जान चली गई, उसमें 6 साल बाद भी सिर्फ एक हत्या के केस में दोषियों की पहचान क्यों हो पाई। आखिर वो कैसी जांच थी जिसमें इसी दंगे में मारे गए हाशिम अली की हत्या के 12 और अनवर हत्याकांड के 5 आरोपी बरी हो जाते हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।

0: विशेष मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए खबरदार मेरी सहयोगी श्वेता सिंह के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
1: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: बांकीपुर चुनाव को लेकर नितिन नवीन के घर एनडीए के हाई लेवल बैठक, सहयोगियों के साथ जीत का बनाया प्लान। बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, पवन सिंह मनोज तिवारी भी संभालेंगे मोर्चा। दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन के दोषी होने पर आप और बीजेपी में ठनी, सीएम रेखा गुप्ता ने लगाया आप पर संरक्षण देने का आरोप, कपिल मिश्रा का कटाक्ष, ताहिर सिर्फ एक्टर, असली डायरेक्टर कोई और। तीन भाषा नीति पर केंद्र एनसीईआरटी को नोटिस, सीबीएसई को 10 दिन में जवाब देने का निर्देश, एससी ने फिलहाल रोक लगाने से किया इनकार, क्लास 9वीं से तीन भाषा नीति को दी गई चुनौती। दिल्ली के मयूर विहार में कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली, मौके पर मौत, मृतक ने पत्नी की गोली मारकर की थी हत्या, वारदात के बाद से था फरार। और ईरान के हमले में भारतीय नाविक की मौत पर भारत सख्त, दिल्ली में ईरानी राजनयिक तलब, विदेश मंत्रालय ने जहाजों पर हमले को लेकर जताया विरोध।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। मैं इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं, जहां पर कल पंचायत आज तक का आयोजन होना है और यूपी चुनावों से पहले जो चुनावी पिच का कैरेक्टर है वो हमारी इस पंचायत आज तक के साथ ही सेट हो जाएगा। लेकिन हम खबरदार की शुरुआत आज की खबरों से ही करते हैं। एक आम आदमी जब अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने कहीं पर जाता है तो इस विश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ कि उसे एक सुरक्षित माहौल मिलेगा, खुशी खुशी अपने परिवार के साथ वो समय बिता सकेगा। लेकिन महाराष्ट्र में भागवत परिवार का यही भरोसा टूटा। नासिक में परिवार के साथ सब छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर कुछ लोगों ने परिवार की महिलाओं के साथ छेड़खानी की तो विरोध हुआ तो उन लोगों ने 15 किलोमीटर तक उस परिवार का पीछा किया जो गाड़ी से लौट रहे थे। 4 बार हमला तक किया गया इस परिवार पर।
1: बारिश का मौसम, महाराष्ट्र की अलग अलग वाटरफॉल, जहां इस वक्त हर परिवार छुट्टी मनाने के लिए अपनों के संग कुछ खुशी के पल बिताने के लिए पहुंचता है। लेकिन 12 जुलाई रविवार को नासिक के भावली वाटरफॉल के पास भागवत परिवार के साथ जो कुछ हुआ है वो हर आम आदमी को डरा देता है जो कहीं छुट्टी मनाने जाता है।
2: वहां के दो लोकलाइट थे, उन्होंने कुछ गंदी कमेंट पास कर दी। वो व्हाइट कलर की बलून है, उसने आगे हमारे आके रास्ता ब्लॉक किया।
3: छह जगह पर अटैक किया लोगों ने।
2: मेरा भाई बैठा था, उसकी कांच फोड़ दी।
3: कांच फूट रही थी तो बच्चा भी डर गया।
2: फाइटर से वगैरह कांच फोड़ी तो हमने गाड़ी थोड़ा रिवर्स लेके भागना चालू किया।
3: जहां भी रुक के वहां पे हमारी गाड़ी फूटी।
1: सबसे पहले दहशत के इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक कार में भागता हुआ मेहर भागवत का परिवार, जिनके पीछे एक बाइक पर हाथ में लोहे की रॉड लेकर अटैक करने के लिए आते दो गुंडे, और फिर
4: फोटो
1: दो लोग बाइक से, बाकी लोग सफेद रंग की कार से इस परिवार का पीछा 15 किलोमीटर तक करके हमला करते हैं, जो रविवार को नासिक के भावली वाटरफॉल के पास पिकनिक मनाने पहुंचे। इसके बाद ये सवाल हर आम आदमी का परिवार पूछना चाहता है, क्या पिकनिक स्पॉट पर भी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल सकती है? अब आप जानना चाहेंगे कि यहाँ हुआ क्या। मीर भागवत और उनकी पत्नी की साफ बीती को आज हर परिवार इसीलिए जरूर सुने।
2: मैं और मेरे भाई की फैमिली है ना, हम टोटल 8 लोग, उसके 2 बच्चे, मेरे 2 बच्चे, मिसेस उसकी, मेरी मिसेस, हम भावली डैम पे घूमने गए थे फैमिली के साथ में, टाइम स्पेंड करेंगे अच्छे फैमिली के साथ में। हम वहाँ पे गए तकरीबन 2-3 बजे, वहाँ पे खाना वगैरह खाया, पानी में खेले हम सब। 5:30 बजे के करीब निकलना है, भाई शाम हो रही है, तो बच्चे आके गाड़ी में बैठे, लेडीज़ वगैरह निकलने लगे और हम जेंट्स थे तो सब जो खाने के बैग वगैरह थे हम पीछे से लेके आ रहे थे। तो मिसेस जा रही थी थोड़े अभी पानी में भीगने की वजह से ड्रेसेस वगैरह गीले थे, तो किसी वहाँ के दो लोकलाइट थे, उन्होंने कुछ गंदी कमेंट पास कर दी। तो मिसेस ने उनसे आर्ग्यू किया कि आप ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने भी आर्ग्यू किया।
3: चेंज करने हम कार के पास जा रहे थे तो वहाँ पे एक बाइक पे दो लड़के खड़े थे, तो मैं उनके वहाँ से तो जाना ही पड़ेगा, तो उनके बाजू से गई तो उन्होंने मुझे सिट्टी बजाई और कुछ कमेंट पास की। तो मैंने उनको बोला तुम पागल हो गए कि पब्लिक प्लेस में लेडीज को छेड़ रहे हो, उनको समझता नहीं आजकल क्या चल रहा है इनका। नहीं बोले ऐसा दस्त थे, वो मराठी में मुझे बोलने लगे वगैरह, तो फिर मैं थोड़ा उनके ऊपर ये करने लगा।
2: तो उनका ये चालू था झगड़ा, तो मैंने दूर से देखा तो मैं भागते हुए गया कि क्या हुआ। तो इस मिसेस ने बोला कि ये मुझे छेड़ रहे, तो मैंने उनको डांटा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो।
3: मेरे हस्बैंड ने देखा कि इसका क्या चल रहा है उनके साथ, तो फिर ये भी पीछे से, अरे मेरे जा बहू नहीं बोलता, निकल जा बोले वो ऐसे मराठी बोले, निकल जाओ तुम, क्यों दिमाग लड़ा ले। वहाँ पे बाद में जो लड़के खड़े थे 7-8-10 लड़के थे जो कार है वहाँ पे, तो वो आए बोले हमारे गाँव के लड़के को तुम ऐसे कैसे बोल सकते, हाथ भी लगा सकते।
2: तो मैंने उनको थोड़ा सा ये किया कि भाई तुम निकल जाओ, तो वो निकल गए। लेकिन वहाँ के जो लोकलाइट थे, वहाँ पे एक 4-व्हीलर में कोई शॉप रन करते वहाँ के लोकल बिजनेस, तो वहाँ के जो 6-8 बच्चे थे लोकल लाइट, वो आए, क्या हुआ क्या हुआ, तो वो लोग इशू करने लग गए।
3: थोड़ी सी हाथापाई हुई हमारी, वहाँ पे पब्लिक लोगों ने हमको बचा लिया, चलो निकलो यहाँ से, जाने दो, छोड़ो। आगे जाके इन्होंने बलेनो पूरा आगे सामने से आके उन्होंने आड़ी गाड़ी लगा दी और डायरेक्ट फाइटर से कांच फोड़ना चालू कर दी। तो हम डर गए, मैंने को बोला किरण भगाओ गाड़ी भगाओ, इन्होंने इतनी गाड़ी भगाई तो पीछे से फिर टू व्हीलर रोड वगैरह लेके अपने वीडियो में देखा, वो सब घटना चालू हो गई। फिर आगे जाके उनका एक लड़का गाड़ी पे लटका भी, पूरा लटका।
1: सोचिए कितने बेखौफ रहे होंगे वो गुंडे जो 15 किलोमीटर तक पीछा करके हमला करते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि क्या रास्ते में कहीं पुलिस नहीं थी, कहीं पुलिस पोस्ट नहीं थी।
2: वहां से आगे आने पे भावली डैम है, वहां पे हमें पुलिस वैन मिली ब्लू कलर की। तो वहां पे हमने पूछा कि हमें पुलिस कंप्लेंट करनी है, वो बोले ठीक है आप इगतपुरी पुलिस स्टेशन जाइए। आगे निकले वहां से भावली डैम से 2 किलोमीटर आगे, तो एक व्हाइट कलर की बलेनो है, उसने आगे हमारे आके रास्ता ब्लॉक किया। जैसा रास्ता ब्लॉक किया तो वहाँ से उसमें से उतर के 2-4 बच्चे भागे, उन्होंने आगे की और मेरे बाजू में जो मेरा भाई बैठा था उसकी कांच फोड़ दी। तो हमने गाड़ी थोड़ा रिवर्स लेके भागना चालू किया, बोला इगतपुरी पुलिस स्टेशन जाते हैं। लेकिन जैसे हम नासिक मुंबई हाईवे पे आए फ्लाईओवर के नीचे नियर बाय, वहाँ पे 2 बाइक जो वीडियो वायरल हो रहा है पीछे से आके रॉड से मार रहे हैं, उन्होंने पीछे से रॉड से मारा और आगे आके वापस उन्होंने 2-व्हीलर से हमें ब्लॉक किया। वहाँ पे उन्होंने आगे वापस 70 से हमारी गाड़ी फोड़ी। फिर हमने सोचा इगतपुरी में जाना गलत होगा, ये लोकल लाइट है, तो इससे अच्छा अपन नासिक की तरफ भागते
1: हैं। सुनकर डर लगता है, मानो फिल्म में जैसे किसी विलेन का जंगल राज दिखाते वो हालत सच में हो। मतलब रोक रोक कर परिवार पर हमला होता रहा और भागवत परिवार जान बचाने को भागता रहा।
3: 6 जगह पर अटैक किया लगभग उनको। सबसे पहले उन्होंने भावली डैम के आगे जो टर्न आता है ना वहाँ पे पकड़ा, क्योंकि उनको पता है यहाँ से टर्न मारना थोड़ा बड़ी गाड़ी को मुश्किल होगा। बरोबर वहाँ पे पकड़ा, वहाँ पे आए काच भी छोड़े, वहाँ पे बच्चे डर गए, तब हमने मोबाइल चालू नहीं किया। उसके बाद वहाँ से जब हम निकले तो पीछे 2 बाइक पे जो लड़के आ रहे थे जो रोड था, तो मैंने बेटे को बोला, मैंने बेटा मोबाइल निकाल के उनका वीडियो ले और बाकी जाने दो। फिर मेरे बेटे ने वो वीडियो लिया, तो वीडियो लेते ले तो उसने वीडियो देखा कि वो देख रहा है कि हम मोबाइल वीडियो ले रहे। फिर उसने रॉड फेंका, 2-2 रॉड फेंके, वहाँ पे उनका निशाना चुप गया। फिर आगे जाके फिर उनका भी निशाना परफेक्ट लगा, वो वीडियो हम ले नहीं सके, कांच फूट रही थी तो बच्चा भी डर गया, वो वीडियो हमने लिया। फिर आगे जाके टोल नाका के बाहर रुके, तो एक पिंक शर्ट वाला है उसने आके से बटन बंद कर दिया हमारी गाड़ी का, बंद कर दिया, कांच खुले थे पूरे बंद कर दिया। फिर बोले उतर जाओ, अपन ये करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, मिटा देंगे ऐसा वैसा। तो ये मेरे हस्बैंड बोले चलो देखते, फिर मेरे पागल हो गए कि यहाँ पे उतरना रिस्की है, निकलो। फिर से हम वहां से वापस निकले।
1: पीड़ित परिवार का नासिक में नेशनल हाईवे पर 15 किलोमीटर तक पीछा करते ये गुंडे, टोल प्लाजा, सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड, हाईवे पुलिस, जहां सब कुछ होता है, लेकिन किसी से ये नहीं डरता और कोई मदद के लिए भी आगे नहीं आता।
2: अटैक करने के लिए उन्होंने 70 फाइटर्स और ये बेसबॉल के ये थे, शायद बेसबॉल के आप उसको क्या बोलते हैं, स्टिक्स बोल सकते हैं, कुछ लकड़ी के भी थे। और मेरे हिसाब से मुझे किसी के हाथ में एक सिल्वर कलर का शायद छोटी सी ऐसी तलवार, तो ऐसी थोड़ा कर्व शेप में होता, लेकिन वो सीधी थी, लेकिन सिल्वर तार चमक रहा था। अभी वो क्या हो रहा था, मेरा इंटेंशन था कि भागना है, बचना है।
1: इस कार की हालत देखी, चारों तरफ से हमला हुआ, पत्नी बच्चे चीख रहे होंगे, पति गाड़ी भगाते रहे कि किसी तरह इनसे बच जाए। आखिरकार ये पुलिस तक पहुंचे, उसके बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 3 लोग अभी फरार।
5: हमने 9 आरोपी अभी तक निष्पन्न किए हैं, जो कि एफआईआर में 6-7 आरोपी थे, बट इसमें जो शेल्टर देने वाले आरोपी है या फिर एसोसिएट्स है जिनको इन्होंने हेल्प किया था, वो भी हमने इसमें आरोपी किए हैं, और अभी तक हमने 9 आरोपी इसमें ताबे में लिया है। इसमें आगे की जो कार्रवाई है वो आगे की कार्रवाई चल रही है। पर्यटन को सुरक्षा ऑलरेडी दी हुई है, पर्यटन के वहां पे बंदोबस्त भी था, वो लोग भी वहां पे पुलिस को मिले। पर इस घटना में जो है, ये घटना कुछ 7-8 किलोमीटर दूर जाके जहां पे कोई मोबाइल लोकेशन नहीं आ रहा था उस पॉइंट पे हुई है।
1: ऐसे आरोपी हर पिकनिक स्पॉट के पास हर राज्य में मिलते हैं, जो कहीं तय दर से ज्यादा कीमत लेने को, कहीं भाषा को लेकर, कहीं संस्कृति को लेकर या तो विवाद करते हैं या छेड़खानी और मारपीट करते हैं। ये सोचते हैं कि ये लोकल है तो बाहर से छुट्टी मनाने आए लोगों पर हमला कर सकते हैं, उनको डरा सकते हैं। ये उन्हीं लोगों पर हमला करते हैं जिनके सैलानी बनकर आने से इनके और इनके इलाके के लोगों को रोजगार मिलता है। जरूरी है कि नासिक के दोषियों को ऐसी सजा मिले जिसे सुनकर देखकर बाकी जगहों पर ऐसी आपराधिक सोच वाले सिहर जाए, ताकि कोई परिवार, कोई आम आदमी किसी जगह छुट्टी मनाने जाने से पहले डरे नहीं।
0: अगली खबर भी हमारी आम आदमी के सरोकार की है। जहां पर लगभग हर जगह की पुलिस की तरफ से दावा यही किया जाता है कि पुलिस का हाथ जो होता है वो आम आदमी के साथ होता है, लेकिन गाजियाबाद में क्या हुआ है वो तस्वीरें देखकर कोई भी सिहर उठेगा। 22 साल का एक नौजवान एक पुलिस बूथ के बाहर तड़प तड़प कर जान दे देता है। 22 साल का ये नौजवान एक पिंक बूथ पर गया था जो कि कहने के लिए महिलाओं के लिए पुलिस थाना होता है, लेकिन उस नौजवान की मदद करना तो दूर, वहां पर दावा है कि दरवाजा तक बंद कर लिया गया।
6: पुलिस कराते हुए मेरा बेटा का जान चल गया, किस लिए चल गया, क्यों चला गया, इतनी क्यों मेरा बेटा के हाथ कट गया, क्यों मेरा बेटा के जान चल गया।
1: 22 साल के बेटे को गवा

0: मजबूत का रुख किया, लेकिन वहाँ उसे मदद नहीं मिली।
1: मेरा लड़का चौकी में गया नाम दाखिल कराने, मेरा लड़का के चौकी में से बाहर धक्का मार के निकाल के दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद मेरा लड़का दीवार में हाथ मारा तभी न खोले, उसके बाद मेरा लड़का शीशा पर हाथ मार दिया, मेरा लड़का के हाथ कट गया, खून निकलते निकलते मेरा लड़का वह बेहोश हो गया।
2: गाजियाबाद का ये मामला सामने आया तो पुलिस की तरफ से भी एक अजीबोगरीब सफाई दी गई। कहा गया कि जो व्यक्ति था वो नशे में था और जिससे बहस हुई थी उसके वो लोग भी नशे में थे, पर क्या पुलिस ने उन सबको आगे मेडिकल के लिए भेजा, जांच के लिए भेजा, ये तय करने के लिए, निर्धारित करने के लिए कि वो नशे में थे, हाथ अगर कट गया था तो किसी तरह की मेडिकल सहायता पहुंचाने की कोशिश की गई। देखिए दलील तो कई तरह की दे दी जाएंगी, लेकिन इस पूरे मामले में सवाल ज्यों के त्यों बने हुए हैं।
0: आप सोच रहे होंगे कि मरने वाले राजकुमार के हाथ से खून कैसे निकला, तो इस सवाल का जवाब ये कांच का दरवाजा है जिसे जोर से खटखटाने की वजह से राजकुमार के हाथ पे चोट लग गई। वो बेसुध होकर बूथ के आगे गिर जाता है और ज्यादा खून निकलने से उसकी मौत हो जाती है।
3: पिंक बूथ है, यानी अगर कोई महिला मुसीबत में पड़ती है वो अगर मदद के लिए आती है तो अंदर मौजूद पुलिसकर्मी उसकी मदद करेंगी, लेकिन अगर कोई और आता है तो उसे यहाँ पर जाहिर सी बात है तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। लेकिन रविवार को जो कुछ भी यहाँ पर हुआ उस पर यकीन करना एक बार की मुश्किल है। दोपहर तकरीबन 3:30 बजे के आसपास एक ऑटो आता है और सीधे अंदर घुस जाता है। आप देखिए यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर ऑटो आ जाता है, ऑटो में कुल 3 लोग थे, एक ऑटो चला भी रहा था, तो करीब 4 से 5 लोग अंदर मौजूद थे। उनकी आपस में किसी बात पे लड़ाई हो रही थी, उनको शायद पिंक बूथ समझ में नहीं आया होगा, वो यहाँ पर लड़ने लगते हैं। जब यहाँ पर समझाया गया तो वो ऑटो लेके वापस बाहर की तरफ आते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं कुछ दूर आगे। आप जो चौराहा देख रहे हैं इस चौराहे के पास पहुंचते हैं, ऑटो रुकता है, उनमें आपस में फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और उसके बाद जो ऑटो में ज्यादातर लोग थे वो चले जाते हैं, जबकि जो राजकुमार है 22 साल उम्र है, पास में ही रहता था सिवान, वो वहीं सड़क पर लेट गया।
0: राजकुमार ने जब मदद की गुहार इस पिंक बूथ में लगाई तब इसी तरह का माहौल होगा, लेकिन जब राजकुमार की सुनवाई नहीं हुई तो उसने बूथ के कांच के गेट को खटखटाया और इसी दौरान उसकी नस कटने से खून बहने लगा। लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने मदद तो दूर पास के पुलिस स्टेशन से मदद कराने या एम्बुलेंस बुलाने तक की जहमत नहीं उठाई। दावा है कि जिससे राजकुमार की बाद में जान चली गई।
4: जो 100 नंबर कॉल थी परसों वो किसने की थी?
5: वो तो उन्होंने करीब बेटे में करी थी कि जब वो शीशे में हाथ हाथ मारा।
4: अच्छा, हाथ हाथ मारा जब शीशे में। कितनी देर तक वो बाहर पड़ा रहा? आपने कुछ
5: जो बताया मैं था नहीं।
4: अच्छा, कितनी देर बाहर पड़ा?
5: और मैं रात को आया थे बहुत देर तक।
4: कितनी देर तक बाहर बॉडी पड़ी रही होगी?
5: पता नहीं।
0: अब आप सोचिए, पुलिस ने एम्बुलेंस तक बुलाने की कोशिश नहीं की, मतलब पिंक बूथ में मौजूद पुलिसकर्मियों ने अपने दरवाजे पर मदद की गुहार लगाते एक आम आदमी को न सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया बल्कि उसकी आवाज कानों तक ना आए इसके लिए दरवाजा बंद कर लिया।
3: बताया जा रहा है कि वो शराब के नशे में था और जो बाकी लोग थे वो भी शराब के नशे में थे। वो वहीं 3-4 मिनट पड़ा रहा जैसा कि आई विटनेस हमें बताया, उसके बाद फिर वो वापस आता है और वापस वो आया तो अंदर की तरफ जब वो आया पुलिस चौकी में, तो हम आपको दिखाएं कि वो चौकी में दोबारा आता है और चौकी में जब वो दोबारा आता है तो सामने जो आप ये लोहे का गेट देख रहे हैं इसको बजाने लगा। ये जाहिर सी बात है ये तो बंद है, आप देखिए तब भी इस पे ताला लगा था। उसके बाद जब उसकी कंडीशन देखी तो जो अंदर महिला पुलिसकर्मी थी उन्होंने ये जो गेट है, आप ये गेट देखिए ये बन चुका है, तब ये गेट ये टूट गया था शीशे का।
0: आज तक को पता चला है कि आसपास के लोगों की शिकायत के बाद एक बाइक सवार पुलिसकर्मी आया, उसने राजकुमार को ऑटो में बैठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की लेकिन एक भी ऑटो नहीं रुका। इसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई जिसे आने में हुई देरी ने दावा है कि राजकुमार की जान ले ली।
6: एक ऑटो चालक द्वारा एक ऑटो सवारी को बिठाया गया, दोनों ही नशे की हालत में थे। पैसे के लेन देन को लेकर दोनों में आपस में वाद विवाद हुआ जिसके बाद दोनों ही पिंक बूथ पर पहुंचे और शराब के नशे की हालत में ऑटो सवारी ने तेज से पिंक बूथ के गेट पर हाथ मारा जिससे उसके हाथ में कांच गड़ गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।
0: यूपी पुलिस अक्सर एनकाउंटर वाले वीडियो दिखाकर अपराधियों को खबरदार करती है, लेकिन गाजियाबाद की ये घटना बताती है कि यूपी पुलिस को सख्त बनने के साथ संवेदनशील बनने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर वो संवेदनशील

0: आवश्यकता होती तो 22 साल का नौजवान पिंक बूथ के बाहर तड़प कर दम नहीं तोड़ता। हिमांशु मिश्रा, गाजियाबाद, आज तक।
1: अब खबरदार करता सवाल यह है कि क्या मुस्लिम वोट की खातिर दंगा भड़काने, दंगा कराने वाले आरोप जिस व्यक्ति पर लगे हों उसका बचाव भी किया जाएगा राजनीतिक पार्टियों द्वारा। ये मामला 2020 दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोप लगा तत्कालीन आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर, और अब आरोप सिद्ध हुए आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या में। अब इसी महीने सजा भी सुनाई जानी है, लेकिन उस समय राजनीति कैसी हो रही है वो देखिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए, आम आदमी पार्टी ने कहा हमने तो पहले ही पार्टी से निकाल दिया था, ओवैसी की पार्टी खामोश रहती है, चुप्पी साधे रहती है, इमरान मसूद समर्थन में सामने आ जाते हैं।
2: कई घंटों से यहाँ दंगा ही अपना आतंक मचा रहे हैं, और मेरे जो नीचे मेरा मेन गेट है, जो फाटक है मेन गेट का, उस गेट को तोड़ के भी जबरदस्ती अंदर घुस के लोग छुप कर चढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। मेरी अपील है इस वीडियो के माध्यम से कि तुरंत यहाँ पुलिस फोर्स को भेजा जाए और इस दंगे को कंट्रोल किया जाए। स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है और अब तो हालात ये बन चुके हैं कि आपस में दोनों तरफ से फायरिंग भी स्टार्ट हो गई है।
0: ये वो ताहिर हुसैन है जो 2020 के दिल्ली दंगे में खुद को निर्दोष दिखाता रहा, जबकि इसी ताहिर को दिल्ली दंगे के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में 6 साल बाद दोषी ठहराया गया है। छह साल पहले दिल्ली में हुए दंगे को लेकर दिल्ली की अदालत ने जो फैसला सुनाया उसे लेकर सुलगती सियासत का एक सिरा पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार तक पहुंचता है। 2020 की फरवरी के आखिरी हफ्ते में दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की हत्या हुई थी। मारे गए 40 मुस्लिम और 13 हिंदुओं में एक नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर अंकित शर्मा का भी था, जिसकी हत्या के केस में करकटडूमा की अदालत ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया।
3: करकटडूमा में ASJ कोर्ट ने अंकित शर्मा, जो कि आईबी के एम्प्लॉय थे, उनके मर्डर केस में 5 लोगों को सजा सुनाई है, जिसमें ताहिर हुसैन, जावेद, अनास, नाजिम और कासिम शामिल हैं। इनको 188, 153, 147, 48, 49 IPC और 365 और 302 में सजा सुनाई गई है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो केस की थी वो क्राइम ब्रांच ने करी थी।
0: दंगों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में जो आरोप लगाए थे उनमें से अदालत ने हत्या की धारा 302, अपहरण की धारा 365, दंगे से जुड़े अपराधों की धारा 147, 148, 149 और समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की धारा 153 और सरकारी आदेश तोड़ने की धारा 188 के तहत ताहिर को दोषी करार दिया है।
4: ये जो ट्रायल था टोटल 11 लोगों के केस था, 11 में से 6 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है और जो गिल्टी हेल्ड किया है वो 5 लोगों को दिया है।
0: दोषियों की सजा का ऐलान 16 जुलाई को होगा, लेकिन 5 दोषियों में से एक आम आदमी पार्टी के तत्कालीन पार्षद और AIMIM के विधानसभा उम्मीदवार रहे ताहिर हुसैन ने इसे नाइंसाफी कहा है।
5: ताहिर जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए।
0: लेकिन BJP से इंसाफ की मिसाल कहती है, और 51 बार चाकुओं से गोद कर मारे गए अंकित शर्मा के हत्यारों के साथ ताहिर हुसैन के गुनाह का जिक्र भी करती है।
6: ही हुसैन, ताहिर हुसैन इंस्टिगेटेड द मॉब व्हेन अंकित केम फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस मॉब। जब अंकित शर्मा अपने कर्तव्य का पालन करके भीड़ के सामने आता है तो ताहिर हुसैन वो गुंडा है जो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ था, जिसने भड़काऊ बयान दिए और जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। और आगे कोर्ट कहता है, When the accused persons were acting in pursuance to a conspiracy and common object to kill Hindus, it covered killing of Ankit as well for the
1: और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं, जहां पर ईरान और अमेरिका के बीच जो संघर्ष है वो एक बार फिर शुरू हो चुका है। इसका असर भारत पर किस तरीके से पड़ रहा है, महंगाई के रूप में थोक और खुदरा महंगाई में वृद्धि देखी गई है, और इसके साथ ही जो तेल की कीमतें हैं उनमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। ये आने वाले दिनों के लिए भी बहुत चिंताजनक परिस्थिति है। इसके साथ ही ईरान से जुड़ी बड़ी खबर भी हम आपको बता देते हैं। ईरान युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि 28 फरवरी से अब तक 13 भारतीयों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 भारतीय लापता हैं।

0: क्या मिट्टी में मिली सस्ते तेल की आस? क्या तेल और गैस फिर महंगे होंगे? क्या फिर $120 प्रति बैरल तक कच्चे तेल की कीमत हो जाएगी? जिसका डर था वही हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर शुरू हुई लड़ाई ने भारत समेत पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से खुला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर बंद हो गया। भारत से जुड़े 11 जहाज फारस की खाड़ी में फंसे, जिसने तेल गैस को लेकर एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी, क्योंकि खुदरा के बाद अब थोक महंगाई भी बढ़ गई। थोक महंगाई जून में उम्मीद से ज्यादा बढ़कर 9.87% तक चली गई, जो मई महीने में 9.68% थी। इससे पहले खुदरा महंगाई दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तय 4% के टारगेट के पार निकलकर 4.38% हो गई। और चिंता की बात है कि लगातार छठा महीना है जब महंगाई दर में इजाफा हुआ। इन सब के बीच अमेरिका और ईरान में होती ताजा झड़प महंगाई की दोहरी मार को ताकत दे सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल के दाम है, जो महीने के सबसे ऊंचे स्तर $86 प्रति बैरल पर पहुंच गए। युद्ध विराम के बाद कच्चा तेल $70 के आसपास तक गिर गया था। इसके बाद तेल के दाम में राहत की उम्मीद आम आदमी लगा रहा था, लेकिन लड़ाई के नए दौर से इस उम्मीद पर पानी फिरता दिखता है, क्योंकि अगर लड़ाई लंबी खींची तो फिर तेल के दाम बढ़ाने का दबाव भी बढ़ता जाएगा।
1: राजनीति हो रही है। पहले तो पेट्रोल का दाम हमारे यहाँ शुरू से ही ज्यादा है, जिसको कि लॉजिकली कम होना चाहिए। इन कंपैरिजन अब नेपाल में कम है, बांग्लादेश में कम है, दूसरी जगह कम है, इंडिया में ही ज्यादा है।
2: 2014 में सिलेंडर था ₹465 का, आज सिलेंडर मिल रहा है ₹1500 का। तो महंगाई तो रिकॉर्ड तोड़ गई, ना ही इन पर महंगाई रुकी, ना ही इन पर भ्रष्टाचार रुका।
3: इस समय वर्तमान स्थिति जो हो गई है, यहाँ पर स्थितियाँ इतनी ख़राब हो गई हैं कि व्यापार कहीं पर है नहीं, और ख़ास करके वाराणसी में खाली सिर्फ यात्रीगण आ रहे हैं, लेकिन कोई तरह का व्यापार नहीं हो पा रहा है। हर आदमी पूरी तरीके से त्रस्त है।
0: दुनिया भर के लोग भले ही मुश्किल में हों, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप महंगाई का नया तूफान लाने में जुट गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर 20% टैक्स लगाने के उनके प्लान ने दुनिया को परेशान कर दिया है।
4: Yeah, I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money, and so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping. For instance, you look at the five countries. You have Saudi Arabia, you have UAE, you have Qatar, or Qatar as I always say, you have Qatar, Bahrain, and by the way, you have others. You have Kuwait. And you have others, and they will do very well. But we think it's appropriate that we don't need them. You know, we have more oil than any other country in the world. When you add Venezuela,
0: Trump की अगर चली, तो फिर भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का 90% आयात करता है, उसके लिए 20% की दर से एक तरफा टोल बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर ऐसा हुआ, तो फिर इससे तेल और गैस का आयात महंगा होगा। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से आयात बिल बढ़ेगा, चालू घाटे में इजाफा होगा, महंगाई को कंट्रोल करने वाली कोशिशें जटिल हो जाएंगी। टेंशन की बात यह कि हॉर्मुज पर टोल लगाने की ईरान की भी इच्छा है, जिसकी सेना के प्रवक्ता ने कहा, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने अधिकारों से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं ईरानी संसद में हॉर्मुज के प्रबंधन से जुड़ा एक बिल पेश किया गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ट्रंप के बयान का जवाब देते हुए कहा कि सुरक्षित समुद्री रास्ता उपलब्ध कराने वाले को टोल मिलना चाहिए। ये जिम्मेदारी हमेशा से ईरान निभाता आया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि 20% तो बहुत ज्यादा है, हम उचित शुल्क लेंगे। तो नौबत राहत की जगह आफत की आ चुकी है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे को झुकाकर बातचीत में फायदा लेने के लिए एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान पर लगातार तीसरे दिन अमेरिकी हमला खबरदार करता है कि अगर ये युद्ध नहीं रुका, तो फिर आने वाले दिनों में सरकार और आम आदमी दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।
5: अमेरिका ईरान के बीच जो ये फिर से जंग शुरू हुई है उसमें अभी इसराइल का किरदार नहीं है, लेकिन इसराइल की तरफ से धमकी दी गई है ईरान को। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर ईरान की तरफ से इसराइल पर हमला किया गया तो ईरान एक ऐसा पलटवार देखेगा जो उसने इससे पहले नहीं देखे। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो नए तरीके से फिर से युद्ध शुरू हो गया है उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर कैसा पड़ेगा।

0: तरह से इस समय ईरान युद्ध वापस शुरू हो गया है, हुर्मुज के बंद होने के पूरे आसार हैं। उसका असर भारत की जो करेंसी है उस पे पड़ रहा है, हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारा इंपोर्ट बिल होगा वो बढ़ेगा, हमें ज्यादा दाम दे के तेल खरीदना पड़ेगा। ऐसी स्थिति के अंदर मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार के पास कोई बहुत ज्यादा लिवरेज है कि वो दाम कम कर दें, क्योंकि अभी जो आंकड़े आए हैं उससे हमें ये पता लगता है कि पिछले 3 महीनों में व्यापारिक घाटा भी बहुत बढ़ गया है। तो इस समय भारत सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वो कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर सके, तो दाम कम होने की उम्मीद बहुत कम है। महंगाई का पूरा असर दो चीजों पे आ रहा है, एक तो महंगा तेल और गिरता हुआ रुपया। हमारे जो तेल आयात हो रहा है वो महंगा हो रहा है, क्योंकि एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसके रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं, और दूसरी तरफ रुपया कमजोर हो रहा है, मतलब हमें ज्यादा रुपए दे के तेल खरीदना पड़ रहा है। और तेल के साथ साथ बाकी जो हम चीजें इंपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया से, चाहे वो केमिकल्स हो, बाकी प्रोडक्ट्स हो, उन सबके दाम बढ़ रहे हैं।
1: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। दो व्यापारिक जहाजों पर सुबह जो हमले हुए उसको लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया अपनी दर्ज की है। विदेश मंत्रालय की तरफ से ईरानी दूतावास के उप प्रमुख को तलब किया गया और भारत की कड़ी प्रतिक्रिया को दर्ज किया गया। इन दो व्यापारिक जहाजों में 30 भारतीय नाविक सवार थे, जिनमें से एक की मौत हो गई, 10 घायल हो गए हैं। भारत की तरफ से कड़ी आपत्ति दर्ज की गई है और कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय वाटर्स हैं वहां पर शांति बरकरार रहनी चाहिए, इस तरह के हमलों की कोई जगह नहीं। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अमेरिकी नियंत्रण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नहीं चाहते हैं, वो ईरान के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले परमाणु ठिकाने पर भी कंट्रोल चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि यहां पर ईरान ने यूरेनियम को छिपाया हुआ है।
2: ओपन, इट विल बी ओपन। वी हैव कट डाउन देयर कैपेबिलिटी वेरी सब्सटेंशियली, बट दे यू नो दे आर गोना फाइट फॉर अ व्हाइल। आवर मिलिट्री हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब, एंड यू नो द बॉटम लाइन दैट आई से इट to everybody, and I said as much as you want to listen, Iran will not have a nuclear weapon.
3: क्या डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को भड़काने जा रहे हैं? क्या अमेरिका का अगला निशाना ईरान की सबसे संवेदनशील पिकैक्स माउंटेन न्यूक्लियर साइट? अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बुशहर, चाबहार, जास, कोनार्क, अबू मूसा और बंदर अब्बास में सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए।
2: We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing. And what they're doing is being very foolish, very stupid.
3: लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इससे आगे जाकर सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहना चाहते और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहते हैं।
2: They would have had a nuclear weapon long ago. Within one month from the day we bombed them, they would have had, if we didn't do it, they would have had a nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, Israel would no longer be with us. The Middle East probably would no longer be with us. Because you saw, they sent missiles to 5 different countries that never even knew they were involved.
3: Iran ki Pekax Mountain nuclear site ka adhikarik naam Kuwe Kolangazla. ये ईरान के नतांज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स से लगभग 2 किलोमीटर दक्षिण में जागरोस पर्वत पर है। पहाड़ के अंदर गहरी सुरंगों में बना ये ईरान का सबसे गुप्त और मजबूत न्यूक्लियर साइट माना जाता है। ये ग्रेनाइट की बेहद सख्त चट्टानों के भीतर करीब 300 फीट की गहराई में है। ये फार्दों से भी ज्यादा गहरा और सुरक्षित, इसीलिए पारंपरिक बंकर बस्टर बमों से नष्ट करना कहते हैं कि बहुत मुश्किल। अमेरिका को शक है कि ईरान ने अपने 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम को यहीं छिपा रखा है।
4: ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी नतांज के पास एक ऐसा पहाड़ है जिसके भीतर काफी गहराई में एक ऐसा बंकर बना है जिसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मिसाइलें भी आसानी से तबाह नहीं कर सकती।
5: अमेरिका का दावा यह है कि वो नतांज, ये जो पिकैक्स माउंटेन है नतांज के जो नजदीक है, वहां पर इनका एनरिच्ड यूरेनियम है और वहां पर उसको बर्बाद करने की वो कोशिश करेगा।
3: गौर करने वाली बात है कि IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को इस साइट पर कभी जाने की इजाजत नहीं दी। अमेरिका और इसराइल का मानना है कि ईरान इस परमाणु केंद्र को बीमा पॉलिसी की तरह इस्तेमाल कर रहा है, यानी मुख्य न्यूक्लियर साइट्स नतांज फोर्दो के क्षतिग्रस्त होने के बाद यहां अपना कार्यक्रम जारी रखे हुए है। हाल की सैटेलाइट इमेज में यहां निर्माण कार्य और सुरंगों को मजबूत करने की गतिविधि दिखी। ट्रंप इसे ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को छिपाने और फिर से शुरू करने की कोशिश मानते हैं
5: कि वो जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो उस इस पिकैक्स माउंटेन के नीचे रखा गया है तकरीबन 2000 फुट पर, और ये माउंटेन ग्रेनाइट का है। तो जो कोई भी हथियार जो अमेरिका के पास है वो उस डेप्थ तक नहीं जा सकता है, राइट। तो इसलिए अभी अमेरिका चाहता है कि जाके अगर वो उस डेप्थ पर ना जाए तो कम से कम उसको किसी तरह से न्यूट्रलाइज कर दे।
3: ट्रंप का फोकस हॉर्मुज कंट्रोल करने के साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई साल पीछे करने का लगता है, ताकि नवंबर में होने वाले चुनावों में वो कुछ उपलब्धि जनता को बता सके। ट्रंप की तरफ से मुस्तबा को लेकर भी बड़ी बात कही गई। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से सोमवार को कहा कि आयतुल्लाह अली खामनेई मारे जा चुके हैं और उनके बेटे मुस्तबा खामनेई भी 90% खत्म हो चुके हैं।
2: They had tremendous radar, it's all gone. They had tremendous anti-aircraft, it's all gone. Sadly, their leadership is all gone. They had their first-tier leaders are all dead. Their second-tier leaders are all dead. Their third-tier leaders, who we're dealing with, more or less, some of them are already gone.
3: ईरान ने नए सर्वोच्च नेता मुज़्तबा खामनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं दिखे, और तब से उनकी सेहत को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। हालांकि मुज़्तबा खामनेई के नाम से शनिवार को जारी एक लिखित बयान में ईरान ने पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई की हत्या का बदला लेने की कसम खाई। बयान में कहा गया कि हम आपके पवित्र खून और इन दोनों युद्धों में शहीद हुए सभी लोगों के खून का बदला लेने का संकल्प लेते हैं। दुनिया भर में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बदला लेने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्द दुनिया भर के स्वतंत्र लोग इस मिशन का अपना अपना हिस्सा पूरा करेंगे। अप्रैल में दावा हुआ था कि अमेरिका इसराइल के हमले में मुज़्तबा गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद वो दिखाई नहीं दिए, लेकिन अब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि 23 तारीख को पिता की शोक सभा में मुज़्तबा सार्वजनिक रूप से दिख सकते हैं।
1: आज तक राजस्थान में गर्भवती महिलाओं की मौत पर लगातार खबरदार कर रहा है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से 18 गर्भवती महिलाओं की मौत पर वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब देने से इनकार किया, कहा मिलते हैं ब्रेक के बाद, हंसते हुए वहां से निकल गए। अब आज वो भीलवाड़ा पहुंचे जहां पर जांच के लिए ही उन्हें जाना था, लेकिन वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर उन्होंने पहले लिया, उसके बाद हंसते हुए गुलदस्ता वहां स्वीकार किया। सवाल यह है कि जांच के बीच इस तरह की चीजों की क्या जगह।
3: खबरदार करके आज पूछिए राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से, गर्भवती महिलाओं की सरकारी अस्पताल में मौत पर जांच करने जाने पर गार्ड ऑफ ऑनर कैसे ले लेते हैं मंत्री जी? क्या इतना भी नहीं लगता कि ये गार्ड ऑफ ऑनर लेने का समय नहीं?
6: गार्ड विसर्जन।
3: खबरदार करके आज पूछिए राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री से, 2 महीने में 18 गर्भवती महिलाओं की मौत की वजह जिन्हें अब तक नहीं पता, वो भीलवाड़ा पहुंचकर क्या पहले सरकारी गार्ड ऑफ ऑनर की रस्म निभाना जरूरी समझते रहे? खबरदार करके आज पूछिए राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री से, क्या हाथ में ये गुलाबों का गुलदस्ता लेते वक्त जिम्मेदारी जवाबदेही के कांटे चुभे नहीं? जहां 18 परिवारों में फैले मातम की वजह खोजते, वहां स्वागत में गुलदस्ता लेते दिखे स्वास्थ्य मंत्री।
6: 2 दिन के बाद बाकी सब ब्रेक के बाद
3: फिर याद आया, कह रहे जो स्वास्थ्य मंत्री जयपुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त 18 गर्भवती महिलाओं की मौत की वजह के सवाल पर हंसते हुए हाथ हिलाते हुए मिलते हैं ब्रेक के बाद बोलते हुए निकले हूँ।
6: 2 दिन के बाद बाकी सब ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद
3: उनसे क्या ही जनता उम्मीद करे कि वो भीलवाड़ा जहां 6 दिन में 5 गर्भवती महिलाओं की जान गई वहां जांच करने पहुंचेंगे तो भीलवाड़ा के सर्किट हाउस पर न तो गार्ड ऑफ ऑनर लेना भूलेंगे, न डॉक्टरों और अधिकारियों से गुलदस्ता लेना भूलेंगे। ये 2 वीडियो बताते हैं असल में गर्भवती महिलाओं की मौत को लेकर कितने संवेदनशील और संजीदा राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हैं। सोचिए और इस तस्वीर के साथ अब देखिए, जिस प्रदेश में दो महीने में कोटा में 5, बीकानेर में 4, भीलवाड़ा में 5 और बांसवाड़ा में 4 गर्भवती महिलाओं की जान चली गई हो, उसकी वजह जानने निकले स्वास्थ्य मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देना और गुलदस्ता भेंट करना न सिस्टम भूलता है, न खुद मंत्री जी इसको भूलते हैं। यही सिस्टम अगर वक्त रहते कमियां खोज लेता तो ईशा पांडे जैसी गर्भवती महिलाओं की जान नहीं जाती।
7: सेकेंड डे से ही हम डॉक्टरों को कह रहे थे, नर्सों को कह रहे थे कि आप प्लीज उसको एक बार प्रॉपर तरीके से चेक करें, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्यों इसके चेहरे पर सूजन आ रही है, क्यों उसके हाथ पैर में पीलापन आ रहा है, क्यों ठंडा हो रहा है हाथ पैर, तो प्रॉपर ढंग से चेक करें। कोई भी डॉक्टर सही ढंग से सुनने को तैयार नहीं था, आता नॉर्मल कुछ भी बता करके इंजेक्शन देके वापस चला जाता। सर अगर ये प्रॉपर ढंग से सेकेंड डे ट्रीटमेंट हो जाता ना तो आज मेरी धर्मपत्नी यहाँ पर जीवित रहती और इस तरह से बच्चे उसके बिना माँ के नहीं रहते।
3: ऐसे ही हर परिवार की कहानी है जिन्होंने अपनी पत्नी बेटी और बहू को खोया, जो जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ जो सरकारी अस्पताल में ये इलाज कराने पहुंची और इनकी जान चली गई।
8: एक बार हमें पूरे रूम तक पहुंचना जो फिर आपको सही।
3: भीलवाड़ा पहुंचकर गुलाब तो ऐसे लिया और दिया जा रहा है जैसे राजस्थान के हेल्थ सिस्टम ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। मुस्कुराकर गुलाब लेने और गुलाब देने वाली इसी सोच की वजह से सवाल है कि सही जवाब मौत का पता चलेगा, क्योंकि जरा इस पर गौर करिए, जैसे जांच नहीं बल्कि चुनावी दौरा करने मंत्री पहुंचे हों, इतनी भीड़ लेकर कौन सी जांच होगी। जहां सम्मान भी कराना गजेंद्र सिंह खींवसर को याद रहता है। हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री 18 मौत की जांच करके सब पता कर लें, लेकिन लक्षण इनके जांच वाले दौरे पर ऐसे दिखे नहीं, जिससे लगे कि स्वास्थ्य मंत्री को वाकई अपने विभाग के अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की मौत से रत्ती भर फर्क पड़ता हो। फर्क पड़ता तो कम से कम ऐसी तस्वीरें नहीं आती। ऐसे स्वागत सत्कार तब अच्छे लगते हैं जब कोई जनता के हित का काम किया जाए, तब नहीं जब खुद की जवाबदेही कटघरे में खड़ी हो।
1: और अब हम आपको युवाओं नौजवानों की रोजगार के हक में खबरदार करते हैं। हम हमेशा आपसे कहते हैं कि हम केवल खबरदार करके छोड़ते नहीं, बल्कि उस खबर के अंजाम तक पहुंचने तक उस खबर के साथ रहते हैं, उससे खबरदार करते हैं। राजस्थान की ऐसी ही खबर देखिए।
3: क्या राजस्थान में सरकारी नौकरी बिना रुलाए नहीं दी जा सकती? सवाल सीधा सा है। वजह मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के घर के बाहर बैठे ये बेरोजगार जो चपरासी भर्ती परीक्षा में पास हुए लेकिन फिलहाल वेटिंग लिस्ट में है। आप सोचेंगे वेटिंग लिस्ट में है तो प्रदर्शन क्यों? इसलिए पहले मुख्यमंत्री का बयान सुनिएगा।
9: राज्य सेवा के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे अधिकारी कर्मयोगी की भावना से रूल बेस्ड से रोल बेस्ड कार्यशैली की ओर अग्रसर होंगे। एक वर्ष के भीतर कर्मचारियों द्वारा पद त्यागने की स्थिति में उस पद की प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। एकल महिला कर्मचारी के लिए चाइल्ड केयर लीव 3 के स्थान पर 6 चरणों में स्वीकृत किया जाएगा।
3: मतलब समझिए, मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर किसी भर्ती में चयनित शख्स 1 साल के भीतर पद छोड़ देगा तो उसी भर्ती की वेटिंग लिस्ट से किसी और को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी चपरासी भर्ती में ये नियम लागू करने से मना कर दिया गया। अब जो 1-2 नंबर से वेटिंग लिस्ट में चले गए उनको लगता है कि जो मौका मिल सकता था वो भी छिन रहा है, क्योंकि भर्ती नियम लागू होने से पहले की है।
10: जिस तरह से ये भर्ती में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा खाली पद बच जाएंगे इस नौकरी में। सरकार ने 1 साल का वेटिंग का नियम भी बना दिया है, मगर जिस नौकरी में जरूरत है इस नियम को लागू करने के लिए उसमें अधिकारी लागू नहीं कर पा रहे हैं।
3: डिप्रेशन की दवाइयां पॉलिथीन में लेकर बैठे रामपाल प्रजापति 40 साल के हो चुके, सितंबर में ओवर एज हो जाएंगे, चपरासी परीक्षा में आधे पॉइंट से फाइनल रिजल्ट में रह गए। ऐसे लोग डरे हुए हैं, वेटिंग लिस्ट वालों को मौका नहीं देंगे तो रामपाल जैसे बेरोजगार टूट जाएंगे।
11: मेरी एज भी नहीं है सर, मैं कहाँ जाऊंगा, इसमें 1 ईयर वेटिंग रूल के लिए आए सर हम, ये हमें मिलना चाहिए, ये हमारा न्याय है, अपने न्याय के लिए हम हक मांग रहे हैं सर।
3: पॉलिटेक्निक की 2015 में पढ़ाई कर चुके भरतपुर के गौरव सिंह 30 साल के होगा, हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, भर्ती की वेटिंग लिस्ट में। शिव प्रकाश शर्मा 1 नंबर से फाइनल मेरिट से बाहर है, वेटिंग का नियम इस भर्ती में लागू हो जाए तभी इनको नौकरी मिल पाएगी।
12: EWS से मेरे लगभग अभी मेरे से ऊपर लगभग 2000 बच्चे हैं EWS वाले।
13: क्या चाहते हो?
12: सर वन ईयर वेटिंग नियम लागू हो जाए सर, प्रक्रिया दिन भर्ती हमें सब में सर, पोर्तगढ़ के साथ में भी ही चाहते हैं सर बस।
3: दरअसल चपरासी भर्ती में पास होने वाले लोग टीचर भर्ती, एलडीसी, प्राध्यापक भर्ती से लेकर वाहन चालक भर्ती तक में परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 25,000 से 30,000 पद खाली रह जाएंगे। अगर इसी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में वेटिंग लिस्ट में आए लोगों से पद भर लेंगे तो ना तो दोबारा भर्ती परीक्षा कराने का खर्च जनता पर आएगा, ना ही भर्तियां लटकेंगी।
10: इसमें और भी नौकरियों को की तैयारी करने वाले लोग, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग, पीएचडी, एमबीए, एमसीए, ये सारे लोग आ गए और वो नौकरी पा लिए हैं, मगर कहा जा रहा है कि अभी भी ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, छुट्टियों पर जा रहे हैं बाकी भर्ती की तैयारियों के लिए। ऐसे में करीब 25,000 से 30,000 ये पद खाली रह सकते हैं और सरकार फिर से भर्ती निकालेगी और इन बच्चों के साथ जो पॉइंट से एक नंबर से रह गए हैं, बड़ा अन्याय हो जाएगा। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
1: खबरदार में आज के लिए इतना ही, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट राजीव ढोंडियाल के साथ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक और हरदम रहिए खबरदार।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: Ready for the next big IPO? Apply for it on Grow. Open your free DMAT account, check all IPO details, apply easily in a few taps. And that's it. Download Grow now for stocks, mutual funds and IPOs.
6: Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
7: Papa!
8: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
9: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
8: छक्का?
9: सब कैशलेस हो गया है।
8: हाँ
10: ओ ले ला भाई मेरा बैट।
11: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
10: वो अभी तो चार्ज हुआ यार।
12: ओ ले बैट किसका है?
13: टाटा AIG है तो भरोसा है।
14: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
15: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
16: गहरी सफाई।
15: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
16: गहरी खुशबू
15: और प्यार भरी भी।
16: कैसे?
15: यह है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
17: इसीलिए फेना ही लेना।
18: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
19: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से?
20: तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
21: वाह वाह वाह वाह।
20: सेबी और NSE का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
22: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
23: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
24: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
25: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
26: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। इन एसोसिएशन विद
27: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
26: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
3: Ye pillar kabhi nahi tootega. Roongta Steel TMT se bana.
4: Roongta nahi, to ghar strong nahi. Roongta Steel TMT bar, ekdam solid.
5: We are over, Jimmy.
6: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
7: Ready for the next big IPO? Apply for it on Grow. Open your free DMAT account, check all IPO details, apply easily in a few taps. And that's it. Download Grow now for stocks, mutual funds and IPOs.
8: Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
9: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
10: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान है। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
12: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
13: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
11: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
14: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और ब्लैक एंड व्हाइट में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और ईरान एक लंबी लड़ाई पर निकल पड़े और इस बार की लड़ाई किस हद तक जाएगी इसका किसी को अंदाजा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अगले 3 हफ्तों में ईरान पर उनका कहर बरपेगा और इसकी आग में उसके न्यूक्लियर ठिकाने भी जलेंगे। और ईरान अमेरिका को याद दिला रहा है कि उसके ठिकानों के लिए अब उसने नई मिसाइलों की खेप तैयार कर ली है। दुनिया को लगा था कि दोनों ही देश पहले न्यूक्लियर और अब होर्मुज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सच यह है कि अब की बार की जंग दोनों देशों के बीच वर्षों पुरानी नफरत की जंग है और दोनों ही देशों ने अपनी नफरत की इस आग में शांति प्रयासों और आपसी भरोसे को जला दिया है। और इसीलिए दुनिया इस बात से डरी हुई है कि इस बार की जंग का अंत न जाने कहां जाकर होगा। इसके बाद हम राम मंदिर ट्रस्ट के CEO फॉर्मूले की बात करेंगे जो पहली बार लाया गया है। चंदा चोरी के चंपत होने की घटना के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहता है और इसीलिए अब की बार उसने ट्रस्ट के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त करने का फैसला किया है और इसके लिए बकायदा वैकेंसीज जारी की गई हैं। सवाल यह है कि क्या सीईओ की नियुक्ति से चंदा चोरी जैसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकेगी। और आखिर में हम नासिक की उस घटना के बारे में आपको दिखाएंगे जिसने टूरिस्ट स्पॉट पर जाने वाले हर एक सैलानी को डरा दिया है। सोचे किसी टूरिस्ट स्पॉट पर आप परिवार के साथ जाएं और वहां के स्थानीय मवाली महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करें और फिर जान से मारने के लिए आपके कार का पीछा करें। यह एक ऐसी डरावनी स्थिति है जो किसी को भी दिला सकते हैं। नासिक के परिवार के साथ ऐसा ही हुआ है। लेकिन आज सबसे पहले यह समझने की हम कोशिश करेंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ युद्ध विराम यानी कि सीज फायर आखिर टिका क्यों नहीं। पिछले महीने 17 जून को जब अमेरिका और ईरान ने शांति समझौते के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए तो पूरी दुनिया ने यही माना कि यह युद्ध अब थम गया है। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत के लोग भी यह सोच रहे थे कि अब शायद महंगाई कम होगी और तेल के दाम भी कम हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि यह हो नहीं सकता था। इस MOU में अमेरिका और ईरान ने जिन शर्तों पर सहमति जताई थी उनके मुताबिक निश्चित रूप से हालात पूरी तरह से सामान्य होने वाले थे। लेकिन यहां दुनिया ने एक भूल कर दी। एक बात समझने में थोड़ी सी भूल की गई है। दुनिया यह नहीं समझ पाए कि अब तक ऐसा कोई MOU या समझौता नहीं बना है जो अमेरिका और ईरान की नफरत को कम कर दे। आप इन दोनों ही देशों के बीच में युद्ध रुकने की कल्पना तो कर सकते हैं, लेकिन यह उम्मीद करना शायद गलत होगा कि अमेरिका और ईरान की नफरत कम होगी। नफरत कम होगी और असल में इसी नफरत की तपिश आज पूरी दुनिया महसूस कर रहे हैं। यानी अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर मुश्किल सिर्फ इसलिए नहीं है कि दोनों देशों के हित टकराते हैं, असली वजह यह है कि दोनों देशों के बीच में नफरत की एक लंबी विरासत और भरोसे का एक गहरा संकट है। और आज सबसे पहले हम आपको इसी के बारे में बताना चाहते हैं। साल 1979 से पहले तक अमेरिका और ईरान गहरा दोस्त दोनों हुआ करते थे। दोस्ती भी ऐसी थी कि ईरान में पहलवी वंश के राजा अमेरिका को कभी नाराज नहीं करते थे और एक दूसरे को अपना असली सहयोगी मानते थे। ये तस्वीरें साल 1972 की हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। अब जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनकी पत्नी पैट निक्सन तेहरान में पहुंचे थे, उस वक्त एयरपोर्ट से लेकर आज के आजादी टावर तक उनका भव्य काफिला निकला था और ईरान के लोगों ने बड़ी संख्या में सड़क के दोनों ओर खड़े होकर उनका शानदार स्वागत किया था। सोचिए, एक वो दौर था जब अमेरिका के राष्ट्रपतियों का स्वागत करने के लिए ईरान की सड़कों पर लोग थे, बड़ी संख्या में जाया करते थे। और एक आज का ईरान है जहां पर सड़कों पर आने वाली भीड़ अमेरिका के खिलाफ डेथ टू अमेरिका के नारे लगा रही है। और इस बदलाव और नफरत के पीछे सबसे बड़ा कारण है ईरान की इस्लामिक क्रांति। यह क्रांति साल 1979 में हुई और इसके पीछे एक बड़ा कारण यह था कि जब ईरान में पहलवी वंश का शासन था तब मुस्लिम धर्म गुरुओं को चिंता हुई कि ईरान के शाह उनके देश को व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि सफेद क्रांति की तरफ धकेल रहे हैं। यह चिंता पैदा हुई। इसका मतलब यह था कि जो ईरान इस्लाम धर्म को मानता है वहां पर अमेरिका की संस्कृति फैलने से इस्लाम धर्म के तौर तरीके खत्म हो रहे हैं। जब यह बात वहां आम लोगों तक पहुंचे तो ईरान के शाह के खिलाफ गुस्सा तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि ईरान के शाह अमेरिका के बेहद करीब थे, उनके संबंध बहुत अच्छे थे। इसीलिए यहीं से ईरान के लोगों में अमेरिका के खिलाफ नफरत पैदा होनी शुरू हो गई और धीरे धीरे एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ कि ईरान के लोग ये सोचने लगे कि अगर वो अपने शाह यानी कि राजा को हटाएंगे तो अमेरिका भी उनके देश से अपने आप हट जाएगा। इसी के बाद साल
1979 में ईरान में इस्लामिक शासन आ गया और इसी दौरान कुछ छात्रों ने ईरान में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को बंधक बना लिया। पूरी दुनिया में खबर छाई। उस वक्त भी अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपरपावर मानता था, शक्तिशाली मानता था, और जब उसकी धमकियों के बाद भी ईरान ने उसके नागरिकों को रिहा नहीं किया तो ये नफरत और ये कड़वाहट काफी ज्यादा बढ़ गए। और अब स्थिति यह है कि ईरान के अपने आंतरिक मुद्दे चाहे जो हो, जब बात अमेरिका की आती है तो ईरान की इस्लामिक सरकार और लोग उसे एक दुश्मन के रूप में ही देखते हैं। और यही वजह है कि जब भी दोनों ही देशों के बीच में सीज फायर की बात होती है तो सवाल सिर्फ हथियार रोकने का नहीं होता, बल्कि यह होता है कि क्या सामने वाला अपने वादे पर कामयाब रहेगा, क्या वो अपने वादे पूरे करेगा। समस्या यह है कि दोनों ही देशों के अनुभव उन्हें यही सिखाते रहे हैं कि भरोसा करना महंगा पड़ सकता है। अमेरिका को लगता है कि ईरान बातचीत के साथ साथ अपने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय नेटवर्क को लगातार आगे बढ़ाता रहेगा। दूसरी ओर ईरान का मानना है कि अमेरिका सरकार बदलते ही किसी भी समझौते से पीछे हट सकता है, जैसा कि परमाणु समझौते के मामले में हुआ था और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा सरकार में हुए समझौतों को रद्द कर दिया था। यानी कि यहां पर युद्ध सिर्फ मिसाइलों का नहीं, यादों का भी है, और दशकों पुराने अविश्वास ने हर नई बातचीत को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है। यही कारण है कि अमेरिका और ईरान के बीच में होने वाला कोई भी सीज फायर अक्सर स्थायी शांति नहीं बल्कि अस्थायी विराम बनकर ही रह जाता है। दोनों देश गोलीबारी रोक सकते हैं लेकिन एक दूसरे पर ये शक करना नहीं छोड़ते हैं। और आपको पता ही होगा कि जब रिश्तों की नींव भरोसे पर नहीं बदले डर और शक पर खड़ी हो तब युद्ध खत्म होने के बाद भी शांति शुरू नहीं होती। ऐसे में सीज फायर कागज पर तो लिखा जा सकता है लेकिन जमीन पर उसे निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है और इस बार भी यही हो रहा है। आप खुद देखिए कि अमेरिका और ईरान ने कैसे एक दूसरे पर हमले किए हैं।

शुरुआती हमलों के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका और ईरान इस सीज फायर को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक उसने लगातार तीसरी रात ईरान पर अपने हमलों को जारी रखा और ये हमले पूरे 5 घंटों तक किए गए। इनमें ईरान के बुशेहर प्रांत, चाबहार पोर्ट, जास्क, कोनारक, अबू मूसा द्वीप और बंदर अब्बास पर मिसाइलें दागी गई। हम मैप में भी आपको दिखा रहे हैं। जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर कंगान, किश द्वीप और किश्म द्वीप जैसे इलाकों में भी धमाकों की खबरें आई हैं और ये हमले इसलिए किए गए ताकि ईरान की रक्षा प्रणाली, मिसाइल लॉन्च साइट, ड्रोन बेस और समुद्री हमले की क्षमता को कमजोर किया जा सके। यानी जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर अपने हमले क्यों जारी रखे हैं, तो इसका जवाब यह है कि अमेरिका ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना चाहता है और इसीलिए लगातार हमले कर रहा है। उसका मकसद यह है कि जब वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करे या वहां से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा दे, तो ईरान उस पर कोई भी पलटवार ना कर पाए, कोई हमला ना कर पाए। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने 50,000 से ज्यादा सैनिकों को मिडिल ईस्ट में तैनात करके रखा है और एक नए वीडियो में यह बताया गया है कि अमेरिका ने पहली बार इस युद्ध में सी ड्रोन का इस्तेमाल किया है। जी हां, सी ड्रोन का। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब यह लड़ाई आसानी से रुकने वाली नहीं है और अब ईरान भी आज रात नए हमले कर सकता है।

अब ये देखिए कि अमेरिका ने जिस सी ड्रोन का पहली बार इस युद्ध में इस्तेमाल किया उसे गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है। इस सी ड्रोन का नाम है कोर्सेयर और इसे अनमैन्ड सरफेस वेसल भी कहा जाता है। ये एक समुद्री पोत या बड़ी नाव जैसा होता है, इसमें कोई सैनिक नहीं होता, कोई भी सैनिक नहीं। इसकी जगह इस सी ड्रोन को रिमोट से कंट्रोल किया जाता है और तय लक्ष्य पर पहुंचाने के बाद इसमें विस्फोट करके सैन्य ठिकानों को, जरूरी ढांचों को नुकसान पहुंचाया जाता है। और अमेरिका का दावा है कि कल रात के हमले में उसने बिल्कुल ऐसा ही किया, और क्यों किया अब वो भी देखिए। तो पहला, इस तरह के सी ड्रोन से हमला करने में जोखिम बहुत कम होता है, और दूसरा, इसकी पहचान करना भी आसान नहीं होता है। इसकी लंबाई सिर्फ 24 फीट यानी कि 7.3 मीटर की होती है, यानी कि जितना लंबा एक ट्रक होता है उतने ही लंबे ये सी ड्रोन होते हैं। और इससे भी बड़ी बात क्या है, इससे भी बड़ी बात यह है कि इन्हें 1000 पाउंड यानी 454 किलोग्राम विस्फोटक से लादा जा सकता है। अब इनकी मारक क्षमता जाने, इनकी मारक क्षमता 1850 किलोमीटर होती है, और ये सी ड्रोन ज्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। एक कोर्सेयर सी ड्रोन की कीमत $1 मिलियन यानी कि लगभग 9.5 करोड़ रुपए होती है। और यही वजह है कि इस बार अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। 7 अप्रैल से पहले हुए युद्ध में अमेरिका ने महंगे हथियारों का इस्तेमाल किया था, महंगे, लेकिन अब वो सस्ते हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अमेरिका स्मार्ट वॉर लड़ना चाहता है। स्मार्ट वॉर जो अब तक ईरान से लड़ा था, और ईरान की तरफ से यह स्मार्ट वॉर अब तक लड़ी जा रही थी। ईरान ने अब तक अपने शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया था जिनकी लागत लगभग 40 लाख रुपए माने जाते हैं, और इस रणनीति से ईरान को अमेरिका पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली। लेकिन अब अमेरिका भी बिल्कुल यही कर रहा है जो ईरान कर रहा था। और अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है अब वो भी आपको दिखाते हैं। अमेरिका का पहला मकसद है ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से खत्म करना, और दूसरा मकसद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को पूरी तरह से सामान्य बनाना। अमेरिका और ईरान के बीच में जिस MOU पर सहमति बनी थी उसमें भी ये दोनों शर्तें शामिल थी, लेकिन इसके बावजूद ये युद्ध फिर से शुरू हुआ। और इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि ईरान पर आरोप है कि उसने हॉर्मुज में कुछ जहाजों पर हमले किए। अब जब ये हमले हुए तो अमेरिका ने कहा कि ईरान तो समझौते का पालन नहीं कर रहा है, और इस वजह से वो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तो करेगा ही। बड़ी बड़ी बातें भी अमेरिका की तरफ से होने लगे, और उसके बाद तो अटैक ही कर दिया गया। तो जब पहले दिन अमेरिका की तरफ से ये हमले हुए तो इनका मकसद हॉर्मुज में नियंत्रण तक सीमित था, कंट्रोल करना सीमित था। लेकिन जो बात है वो अब आगे निकल गई है, मतलब अब ये हो रहा है कि अमेरिका इस युद्ध को ईरान की परमाणु क्षमता खत्म करने का एक दूसरा मौका मान रहा है, जिसके संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान के पिकेक्स माउंटेन को भी निशाना बनाएगा, और ईरान इसके लिए तैयार रहे। अब आप पूछेंगे कि ये पिकेक्स माउंटेन क्या है, तो इसका जवाब यह है कि इस युद्ध की सबसे बड़ी जड़ यही पहाड़ी है, ईरान। इसका एक खास नाम है जिसे कूहे कोलांग गजला कहते हैं। यह ईरान के नतांज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर जागरूस पर्वत में मौजूद है, और जागरूस माउंटेन वही पर्वत श्रृंखला है जिसने ईरान को कई युद्ध जिताए हैं, क्योंकि इन पहाड़ियों के अंदर बने हुए सैन्य और परमाणु ठिकानों तक कोई भी बम नहीं पहुंच सकता। इसीलिए दावा है कि ईरान ने अपने 400 किलो यूरेनियम को बिल्कुल इसी ठिकाने पर छिपाया हुआ है। ईरान का यह परमाणु ठिकाना फोर्डो से ज्यादा गहरा है और ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। और यहां पर अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उसने बंकर बस्टर बॉम्ब 300 फीट अंदर तक परमाणु ठिकाने तक उसके पहुंच नहीं सकते हैं। अमेरिका और इसराइल दोनों ही देश ये मानते हैं कि ईरान इस परमाणु ठिकानों को बीमा पॉलिसी की तरह इस्तेमाल कर रहा है, यानी बड़े परमाणु ठिकाने नष्ट होने के बाद उसने अपने यूरेनियम को

0: एनको ने लिखा था ईस्टर एक्स फॉर हिटलर, ये मैसेज आप देख रहे हैं। बाद में जब इसराइल ने भी गजा, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, इराक और ईरान पर हमले किए, तब उनमें भी अपनी मिसाइलों पर इसराइल ने बिल्कुल इसी तरह के संदेश लिखे। और अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो साल 2006 में जब इसराइल ने लेबनान पर मिसाइलें दागी तो उन पर इसराइल के छोटे छोटे बच्चे संदेश लिख रहे थे, और बाद में इन्हीं मिसाइलों से लेबनान में जमकर कहर बरपाया गया था। यानी कि पहले अमेरिका और इसराइल ने अलग अलग युद्धों में इस रणनीति को अपनाया, और अब ईरान भी यही कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि यह परंपरा अमेरिका और इसराइल ने ही शुरू की हो। आज से 2500 साल पहले जब यूनानी सैनिक स्लिंग यानी कि गुलेल नाम के हथियार चलाते थे, तब उनमें सीसे की गोली को रखा जाता था। उस वक्त ये गोली या पत्थर बहुत तेज गति से जाकर दुश्मन को घायल कर सकते थे, और इनका इस्तेमाल पैदल सेना या घेराबंदी में होता था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तब सीसे की इस गोली को दागने से पहले उस पर ग्रीक भाषा में कुछ संदेश लिखे जाते थे, जिनका अर्थ होता था लो इसे या ये लो वार। ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी एक ऐसी सीसे की गोली रखी हुई है जो 2400 साल पुरानी है, और जिससे यह पता चलता है कि आज ईरान जिन मिसाइलों पर संदेश लिखकर दाग रहा है वो रणनीति कोई नई रणनीति नहीं है, और इसका मकसद होता है दुश्मन को डराना, अपनी पहचान दिखाना और युद्ध में आत्मविश्वास पैदा करना। और अभी ईरान अपने मिसाइलों पर बिल्कुल इसी तरह के संदेश लिखकर यही मैसेज देने का प्रयास कर रहा है। इस युद्ध का एक और बड़ा कारण है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो आप लगातार सुन रहे हैं। ईरान का कहना है कि होर्मुज पर उसका कानूनी अधिकार बनता है, और इसीलिए होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से सिर्फ वही टोल वसूली करेगा, यानी कि सिर्फ ईरान ही टैक्स लेगा। जबकि अमेरिका का कहना है कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा सिर्फ वही दे सकता है, और इसी आधार पर राष्ट्रपति ट्रंप होर्मुज में अब हर जहाज से 20% टैक्स यानी कि शुल्क लेने की बात कर रहे हैं। और अभी इस पर खूब विवाद हो रहा है, और इसी विवाद के बीच में ईरान ने यूएई से आ रहे दो जहाजों या टैंकरों पर होर्मुज में हमला कर दिया है। यह एक बहुत चिंताजनक खबर है। इनमें एक टैंकर का नाम बुम्बासा है और दूसरे का नाम अल बहिया है। यह हमला उस समय हुआ जब ये दोनों ही टैंकर होर्मुज के दक्षिणी शिपिंग लेन से गुजर रहे थे, जो कि ओमान तट के बेहद नजदीक है, करीब है, यानी कि ये ईरान के तट से नहीं जा रहे थे, जिसके जो है कारण हो सकता है कि ईरान ने इन पर हमला किया, बिल्कुल उसके तट से नहीं जा रहे थे। ईरान ऐसा इसलिए भी कर सकता है क्योंकि अगर ये जहाज उसके इलाके से गुजरेंगे तो वो इनसे टोल की मांग कर सकेगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो होर्मुज में उसका नियंत्रण कमजोर होगा। और आरोप है कि इन्हीं वजहों से जब यूएई से आ रहे दो टैंकर होर्मुज को पार कर रहे थे तब उन पर हमला हुआ, और यह हमला इसलिए भी चिंता पैदा करने वाला है क्योंकि इनमें एक टैंकर में भारतीय नाविक सवार थे, जिनमें से एक नाविक की मौत हो गई है और 8 नाविक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 6 भारत के हैं। जी हां, 6 नागरिक इनमें भारत के हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब अमेरिकी हमलों में हमारे नाविक मारे गए थे तब तो इन पर खूब राजनीति हुई, खूब हंगामा हुआ, लेकिन जब ईरान के हमलों में आज हमारा एक नाविक मारा गया तो इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, कोई ज्यादा सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि ईरान ऐसा कैसे कर सकता है। हालांकि इस हमले को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजनयिक को तलब किया है, और इस घटना पर भारत ने गहरी नाराजगी जताई है। यहां पर सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी उठता है, जो ये कहते हैं कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल देने की मांग कर रहे हैं कि अमेरिका ही उन्हें सुरक्षा की गारंटी दे सकता है, जबकि सच यह है कि अमेरिका की मौजूदगी में, जी हां, अमेरिका की मौजूदगी में लगातार होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमले हुए हैं और अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाया।
1: I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping. For instance, you look at the 5 countries. You have Saudi Arabia. You have UAE. You have Qatar, or Qatar, as I always say. You have Qatar, Bahrain. And by the way, you have others. You have Kuwait. And you have others, and they will do very well. But we think it's appropriate that we don't need them. You know, we have more oil than any other country in the world. When you add Venezuela, which has been amazing, which has tremendous amounts of oil that we control.
0: ये सवाल कई लोग पूछते हैं कि जिन जहाजों पर दूसरे देशों का झंडा होता है, उनमें भारतीय नाविक क्यों सवार होते हैं? आपसे भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे सवाल पूछे होंगे। तो ऐसे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि इस वक्त दुनिया के हर 5 नाविकों में से 1 नाविक भारत का ही है। 16 साल पहले साल 2010

में भारत के कुल नाविकों की संख्या 62,267 थी, लेकिन साल 2024 में यही नाविक 3,23,000 हो गए, यानी 15 सालों में इनकी संख्या 5 गुना बढ़ गए। और आज पूरी दुनिया में 18,90,000 नाविक काम करते हैं, इनमें 3,23,000 नाविक हमारे देश यानी भारत के हैं, और फिलीपींस और चीन के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा नाविक भारत के हैं। साल 2024 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि हमारे जो कुल नाविक हैं उनमें 90% विदेशी झंडे वाले जहाजों पर काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछले महीने फ्रांस में राष्ट्रपति से मिले थे, डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, तब उन्होंने नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उनके सामने उठाया था। और यह मुद्दा हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब भी भारत के झंडे वाले 7 जहाज होर्मुज के उस पार फारस की खाड़ी में मौजूद हैं, जिनमें हमारे 148 नाविक फंसे हुए हैं। लेकिन अमेरिका और ईरान के युद्ध के कारण इन भारतीय नाविकों की सुरक्षा इस समय खतरे में है। ऊपर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर भी अड़ गए हैं कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से 20% टोल चाहिए, और यह पैसा कम नहीं है, यह पैसा बहुत ज्यादा है। इस युद्ध से पहले हर दिन 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरता था, जिसकी कीमत आज के हिसाब से 15,380 करोड़ रुपए होती है। अगर इस पर अमेरिका 20% टोल लेता है तो उसे प्रतिदिन 3,076 करोड़ रुपए मिलेंगे, और यह पैसा इतना ज्यादा है कि इसे सिर्फ 4 दिन के टोल से अमेरिका एक बुर्ज खलीफा बनाने के बराबर पैसा कमा लेगा। और यह टोल इतना ज्यादा है, यह टोल इतना है कि इसे हर दिन एक राफेल लड़ाकू विमान खरीदा जा सकता है हर दिन। और यही कारण है कि ईरान कह रहा है कि अमेरिका को ऐसा करने की इजाजत नहीं है, और वो अमेरिका से भी कम टोल होर्मुज में लेगा। अब यहां पर आप यह भी देखिए कि इस युद्ध से पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला ही हुआ था, वहां से गुजरने वाले जहाजों पर ना तो कोई भी टोल लगता था, ना ही उन पर कोई भी वहां हमला होता था। लेकिन अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद आज स्थिति यह है कि जब अब ये युद्ध होर्मुज को खुलवाने के लिए ही लड़ना पड़ रहा है, और इससे यह भी पता चलता है कि इस युद्ध से अमेरिका ने दुनिया को सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही दी हैं। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि होर्मुज का इतिहास कहता है कि यहां जितने भी युद्ध लड़े गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लेकर आए। माना जाता है कि होर्मुज ये नाम पारसी धर्म के भगवान अहुरा माज़दा से लिया गया है। अहुरा माज़दा का अर्थ होता है ज्ञान का स्वामी, यानी लॉर्ड ऑफ विजडम, और इसी नाम से मौजूदा ईरान में प्राचीन शासकों के नाम जुड़े। होर्मुज द्वीप का नाम पड़ा, और होर्मुज नमक संरचना यानी होर्मुज सॉल्ट फॉर्मेशन की नींव पड़ी, और इसी होर्मुज ने फिर से कई युद्ध देखे भी, बार बार वहां पर युद्ध होते रहे। इनमें 1507 में पुर्तगाल ने होर्मुज पर कब्जा किया। उस वक्त 16वीं सदी में यूरोपीय ताकतें एशिया के व्यापार पर कब्जा करना चाहती थी, जिसके बाद पुर्तगाल के समुद्री यात्री अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत पहुंचे, और रास्ते में होर्मुज द्वीप पर उन्होंने कब्जा कर लिया। उस वक्त पुर्तगाल ने भी वहां पर किला बनाया और होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूला। करीब 1 सदी तक पुर्तगाल ने इस इलाके पर अपना कंट्रोल, अपना प्रभाव बनाए रखा। लेकिन 1622 में फारस के शाह अब्बास प्रथम और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से पुर्तगालियों को यहां से बाहर कर दिया गया। फिर साल 1951 में ब्रिटेन ने ईरान को दबाने की कोशिशें की। उस वक्त ब्रिटेन की कंपनी एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी ईरानी तेल पर कड़ा नियंत्रण रखती थी, और ईरान इस पर काफी ज्यादा नाराज भी था, एतराज जताता था। 1951 में ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक ने कहा था कि तेल हमारा है, फायदा भी हमें ही मिलना चाहिए। उन्होंने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया, लेकिन इसके जवाब में ब्रिटेन ने ईरानी तेल निर्यात रोकने की कोशिशें की, भरसक प्रयास किया, और अबादान बंदरगाह की नाकेबंदी कर दी। ठीक उसी तरह जैसे आज अमेरिका ईरान की नाकेबंदी कर रहा है। सोचने वाली बात यह है कि उस वक्त ब्रिटेन की नाकेबंदी को हटाने वाला देश कोई और नहीं था बल्कि अमेरिका था, और आज यही अमेरिका इसी ईरान को धमकियां दे रहा है और उसी ईरान से युद्ध लड़ रहा है। ईरान और इराक के बीच जब 1980 से 1988 के बीच में युद्ध लड़ा गया, तब भी दोनों ही देशों ने एक दूसरे के तेल जहाजों पर खूब बारूद बरसाया, तब इसे टैंकर वॉर कहा गया। इसमें ईरान ने समुद्र में सी माइंस बिछाए, और बाद में अमेरिका का उससे बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। फिर साल 2012, 2015, 2024 में भी बिल्कुल इसी तरह की घटनाएं हुई, और अब साल 2026 में ईरान और अमेरिका के बीच में होर्मुज को लेकर काफी ज्यादा तनाव है, गतिरोध लगातार बना हुआ है। स्थिति यह है कि ईरान ने होर्मुज से

हालांकि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहाजों से 20% टोल वसूलने के प्रस्ताव को वापस ले लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है, शायद कई लोग इसमें राहत भी देख रहे होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि भाई 20% हम टैक्स लेंगे, और टैक्स क्यों लेंगे, क्योंकि हम आपको सुरक्षा देंगे। आपको सुरक्षा देने में हमारा भी तो पैसा खर्च होगा ना, कि अमेरिका का पैसा खर्च होगा, तो उस पैसे को हम आप ही से वसूलेंगे। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले के बयान, और अब एक बड़ी खबर यह है कि वसूली का प्रस्ताव वापस ले लिया गया। अब आप कुछ तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें जो कि यमन से आए हैं, और यमन में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया। आप जान रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि ये जश्न किस चीज का मन रहा है, क्यों मनाया जा रहा है? ये जश्न है सऊदी अरब पर हमले का, जो हूती के लड़ाकों ने किया है। और अब ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब और ईरान के प्रॉक्सी संगठन हूती के बीच में भी एक नया युद्ध छिड़ सकता है। युद्ध का कारण है ईरान की एयरलाइन का एक विमान जो हूती नियंत्रण सना एयरपोर्ट पर पहुंचा था। दावा यह है कि इस विमान में हूती का एक प्रतिनिधिमंडल आयतुल्ला खामिने के नमाज जनाजे से वापस यमन लौट रहा था, लेकिन दक्षिणी यमन में मौजूद सऊदी अरब के समर्थन वाली सरकार को लगा, उनको लगा कि ईरान इस विमान के जरिए हूतियों को हथियार भेज रहा है, और इसी शक के आधार पर यमन के सना एयरपोर्ट पर उसने हमला कर दिया। और जब हमला हुआ तो हूती ने कहा कि यह हमला सऊदी अरब ने किया है, और इसीलिए हूती ने भी सऊदी अरब पर मिसाइलें दाग दी, जिससे युद्ध का एक नया मोर्चा खुल गया है। लेकिन इसमें बड़ी बात समझने की यह है कि जो मिडिल ईस्ट में मुस्लिम वर्ल्ड है, यानी कि मुस्लिम जनसंख्या है, उसे अब तक काफी एकजुट माना जाता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि इस्लामिक ईरान पड़ोस के मुस्लिम देशों पर बम बरसा रहा है। जिस सऊदी अरब में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, उस पर मुस्लिम देश यमन का हूती संगठन हमले कर रहा है, और इन सारे हमलों में यही दिखता है कि मुस्लिम देशों के बीच में भी नफरत कम नहीं है, और ये नफरत इन लोगों के जश्न में भी दिखाई देती है। जब टीवी पर लोग युद्ध देखते हैं तो वो उनके लिए सिर्फ एक खबर होती है, लेकिन हकीकत में ऐसे युद्ध आपकी जेब और आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है, और इस युद्ध में भी बिल्कुल यही हो रहा है। अब हम आपको ये बताएंगे कि ये युद्ध कैसे आपके रसोई तक पहुंचने वाला है, और इससे पेट्रोल डीजल की कीमतें भी प्रभावित हो सकती हैं। पिछले महीने शांति समझौता होने के बाद एक बैरल कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $70 का हो गया था, और ये कीमतें युद्ध से पहले के स्तर पर पहुंच गए थे। लेकिन दोबारा युद्ध शुरू होने के बाद ब्रेंट क्रूड में एक बैरल तेल $85 तक पर पहुंच गया है, और इसका सीधा मतलब यह है कि अब आप पेट्रोल डीजल के सस्ता होने की उम्मीदें तो कुछ वक्त के लिए छोड़ दीजिए, और संभव है कि यह पेट्रोल डीजल युद्ध के कारण महंगा भी हो जाए। और अगर यह महंगा होता है तो इसका आम आदमी पर सीधा असर पड़ेगा, बल्कि आप इसे बड़ी मार भी कह सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले ही भारत में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत में थोक महंगाई, यानी बड़े दुकानदार छोटे दुकानदारों को जो सामान बेचते हैं, उसकी महंगाई दर 9.87% पर पहुंच गई है। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो पहले ये महंगाई दर जून 2025 में -0.4 थी, लेकिन अब 9.87% हो गई है। और अगर ज्यादा दूर भी ना जाए तो युद्ध शुरू होने से पहले फरवरी के महीने में यही महंगाई दर 2.18% थी। आप अंदर देख रहे हैं कितना बड़ा है और कितना बड़ा गैप आ गया है। इसके अलावा खुदरा महंगाई, यानी कि जिस कीमत पर आम लोग सामान खरीदते हैं, वो

महंगाई भी 4.38% हो गई है, जो कि जनवरी में सिर्फ 2.74% थी। यानी कि महंगाई अब नियंत्रण से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब जब ये युद्ध फिर से सुलग रहा है, तो इस महंगाई में इस युद्ध के कारण एक और विस्फोट हो सकता है, और ये भी तब होगा जब कई बड़े देशों की तुलना में भारत में महंगाई दर अब ज्यादा हो गई है। हमने आपको डेटा भी बताया, आप चीन, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में महंगाई के आंकड़े देख सकते हैं, जहां पर महंगाई भारत से कम है, जबकि पहले भारत में इन देशों के मुकाबले महंगाई काफी कम थी, यानी कि महंगाई दर कम थी, लेकिन अब बढ़ गई है। अब बड़ी खबर एक और आपको देते हैं। बड़ी खबर यह है कि अब आतंकी चैट जीपीटी जैसे एआई बॉट से ये पूछ रहे हैं कि वो खुद को एक फिदायिन हमला खुद से कैसे करवा सकते हैं, या हमला करने के लिए वो बम कैसे बना सकते हैं। ये हैरान कर देने वाली खबर है। आप में से बहुत सारे लोग चैट जीपीटी का, क्लॉड, जेमिनाई या ग्रुक जैसे एआई बॉट का इस्तेमाल करते होंगे, काम के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए करते होंगे, लेकिन बड़े आतंकी संगठन उनके आतंकी ऐसा कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया डर रही है। नाइजीरिया के आतंकी संगठन बोको हराम का एक नया मामला सामने आया, जिस पर पूरी दुनिया में अब बहस छिड़ गई है। कुछ वक्त पहले बोको हराम के लड़ाकों ने नाइजीरिया में एक सैन्य ठिकाने पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी चुनौती यह थी कि वो सुरक्षा के लिए बनाए गए खाई को पार नहीं कर पा रहे थे, और उनकी मोटरसाइकिलें बिल्कुल एक ही जगह पर जाकर रुक गई थी। उस वक्त मोटरसाइकिलों पर सवार आतंकवादियों ने कई तरीके अपनाए, लेकिन वो नाकाम रहे, और आखिर में उन्होंने एआई की मदद ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली। उन्होंने एक एआई चैटबॉट से सलाह मांगी और उसे यह बताया कि उनके पास किस तरह की मोटरसाइकिल है, कितनी दूरी पार करनी है, किस तरह की छलांग लगानी है। एआई से मिली जानकारी के आधार पर उन्होंने मोटरसाइकिलों में बदलाव किए और उनकी रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की गई, और आतंकियों ने खुद गड्ढे खोदकर अभ्यास किया ताकि असली हमले से पहले छलांग लगाने की क्षमता हासिल की जा सके, खुद को तैयार किया। अब यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह दिखाती है कि एआई अब सिर्फ आपके और हमारे इस्तेमाल तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ आतंकी समूह इसे जमीनी ऑपरेशन की तैयारी में इस्तेमाल करने की कोशिशें कर रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने लगभग 60 इंटरव्यूज किए हैं, और इसमें बोको हराम के 27 पूर्व आतंकियों ने बताया है कि वो एआई का इस्तेमाल आतंकवादी हमलों से पहले उसकी योजना बनाने, जानकारी जुटाने में, निर्णय लेने में, हमलों के बाद और अपनी रणनीति की समीक्षा करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि अब किसी आतंकी को बम बनाना होता है, किसी सैन्य ठिकाने पर हमला करना होता है, तो वो एआई से पूछता है, जैसे आप और हम लोग करते हैं ना, बिल्कुल एआई से पूछता है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि जब कोई एआई बॉट उस आतंकी को उसके सवाल का जवाब नहीं देता है, तो इंटरेस्टिंग यह है कि ये आतंकी दूसरे चैट बॉट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप ये समझ पाएंगे कि अब सिर्फ आप ही एआई से अपना काम नहीं करवा रहे हैं, आतंकी भी अब एआई के भरोसे अपने हमलों को सटीक बनाने में जुटे हुए हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि अब तक आपने बड़ी बड़ी कंपनीज, संस्थाओं और संगठनों में नियुक्त होने वाले सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नौकरी के बारे में सुना होगा, लेकिन अब पहली बार ऐसा होगा जब अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट यानी कि राम जन्मभूमि मंदिर में भी सीईओ की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक विज्ञापन निकाला है, ये एडवर्टीजमेंट है, जिसमें लोगों से मंदिर का सीईओ बनने के लिए आवेदन मांगा गया है, और इस नौकरी के लिए कुछ योग्यताएं भी इसमें बताए गए हैं, जैसे कि नौकरी का ठिकाना अयोध्या होगा, यानी कि अयोध्या में रहकर ही काम करना होगा, वेतन बातचीत के दौरान तय होगा कि कितनी तनख्वाह मिलेगी, सीईओ बनने के लिए उम्र 50 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए, ये योग्यता रखी गई है, कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, सार्वजनिक संगठन, संस्था, सरकारी विभाग या किसी कंपनी के प्रबंधन में कम से कम 20 साल का तो अनुभव होना ही चाहिए, 20 साल का अनुभव चाहिए। अगर किसी के पास में बड़े मंदिरों में प्रबंधन या कामकाज का 20 साल का अनुभव हो तो वो उसे प्राथमिकता देंगे, प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा राम मंदिर का सीईओ बनना तो है ही, उसे सक्रिय हिंदू होना भी अनिवार्य है। अगर आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो आपको इस नौकरी में वरीयता दी जाएगी, यानी कि आपके लिए ये प्लस पॉइंट होगा, आपकी आस्था भगवान राम में है। भाषा में हिंदी और अंग्रेजी दोनों आना अनिवार्य है, और राम मंदिर का सीईओ बनने के लिए आखिरी आवेदन 18 जुलाई तक भेजे जाएंगे, और अभी कई लोग इस नौकरी के लिए आवेदन कर भी चुके हैं, इनमें पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर भी शामिल है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि

अगर ये भर्ती हो जाती है तो राम मंदिर पहला ऐसा मंदिर होगा जहां पर सीईओ की नियुक्ति होगी, लेकिन हकीकत में जानकारी सही नहीं है। जी हाँ, ये पहली बार नहीं होगा। भारत में कई बड़े मंदिर ऐसे हैं जहां पर बड़ी कंपनियों की तरह सीईओ नियुक्त किए गए हैं, जैसे तिरुपति बालाजी, शिरडी का साईं बाबा का मंदिर और श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भी सीईओ नियुक्त किए गए हैं। और यहां पर हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि कंपनियों की तरह मंदिरों में सीईओ नियुक्त करने का कॉन्सेप्ट जो है वो आज का नहीं है, सैकड़ों साल पुराना है। लोग तो यही सोचते हैं कि मंदिर पुजारियों के द्वारा चलाए जाने चाहिए, लेकिन इतिहास बताता है कि जब मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, दान के रूप में सैकड़ों या हजारों करोड़ रुपए आने लगे, अस्पताल, स्कूल, गौशाला, अन्न क्षेत्र और धर्मशालाएं चलाए जाने लगी, हजारों कर्मचारी काम करने लगे और सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, आईटी सिस्टम और डिजिटल दान जैसी व्यवस्थाएं आ गई, तब बिल्कुल कंपनियों की तरह मंदिरों को भी सीईओ की आवश्यकता पड़ी। इसकी मजबूत नींव लगभग 1000 साल पहले चोल साम्राज्य में रखी जा चुकी थी। दक्षिण भारत के महान शासक राजराज चोल प्रथम ने तब तंजावुर में विश्व प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो उन्होंने केवल एक भव्य मंदिर ही नहीं बनवाया, बल्कि उसके संचालन के लिए एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा भी उन्होंने तैयार किया। इस मंदिर से जुड़े हुए शिलालेख ये बताते हैं कि वहां सैकड़ों कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। हर पद, हर जिम्मेदारी, हर भुगतान का वहां बकायदा रिकॉर्ड रखा जाता था। यह व्यवस्था इतनी विकसित थी कि आज के किसी भी बड़े संस्थान या किसी भी बड़े प्रशासनिक संरचना से इसकी तुलना की जा सकती है। मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि एक बड़ा संस्थान था। 10वीं या 11वीं शताब्दी में बड़े मंदिर केवल धार्मिक केंद्र नहीं थे, वो उस समय के सबसे बड़े आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों में शामिल थे। इतिहासकारों के अनुसार उस दौर में मंदिर राज्य के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा संस्थान था। यानी कि मंदिर उस समय केवल आस्था का केंद्र नहीं थे, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था का भी एक प्रमुख आधार थे। और इसी वजह से मंदिरों में कई पद बनाए गए। उनमें से एक पद जो है स्थानांतर का था, जो कि मंदिर के ट्रस्टी और सर्वोच्च प्रशासक होते थे। दूसरा पद था कोइली केल विकर का होता था यह पद, जो कि मंदिर के प्रबंधक यानी कि मैनेज जिनको करते थे, मैनेजर एक तरीके से आप कह सकते थे कि होते थे। तीसरा पद होता था पंडारतार का, जो कि मंदिर के कोषाध्यक्ष थे। यानी कि 1000 साल पहले ही हमारे देश के मंदिरों में ऐसी व्यवस्था बन गई थी जिनमें बड़े धार्मिक निर्णय पुजारी लेते थे, जबकि प्रशासनिक निर्णय अधिकारी संभाला करते थे। और राम मंदिर अब इसी व्यवस्था में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भीड़ के लिहाज से ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर बन गया है, जहां प्रबंधन के सही इंतजाम और सीईओ जैसा अधिकारी होना आवश्यक है, जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। पहले छेड़छाड़, फिर आवाज उठाने पर जान से मारने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र के नासिक में एक परिवार के साथ यही हुआ है। नासिक के भावली वाटरफॉल घूमने गए एक परिवार की महिलाओं के साथ वहां पर मौजूद कुछ स्थानीय गुंडों ने छेड़छाड़ की, और जब इन महिलाओं ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। और जब इन महिलाओं के परिवार ने वहां से जान बचाकर वहां से भागा, तो इन्हीं गुंडों ने, इन्हीं मवालियों ने, इनके साथियों ने लगभग 15 किलोमीटर तक उनका पीछा किया। उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके, लाठी डंडों से उनकी गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए। इन गुंडों की कोशिश थी कि किसी तरह ये परिवार अपनी गाड़ी से निकले और वो उनको मार सके, उन पर हमला कर सके। हम आपको इस परिवार के द्वारा बनाया गया एक वीडियो भी दिखा रहे हैं। इस वीडियो में बाइक सवार लड़के दिखाई दे रहे हैं जो कार के पीछे से कार पर डंडा फेंक रहे हैं ताकि ये शीशा तोड़ सके। अगर आप ध्यान से बिल्कुल देखें तो इस बाइक का नंबर अधूरा दिखाई दे रहा है। नंबर अधूरा है, अक्सर ऐसा कब होता है? अक्सर ऐसा काम कौन करते हैं? प्रोफेशनल अपराधी करते हैं, ताकि अपराध के समय उनके वाहन की पहचान ना हो सके। इन गुंडों के हमले से परिवार बहुत ज्यादा डर गया था, वो बचने के लिए सीधे नासिक की ओर भागे और वहां जाकर पुलिस स्टेशन पर इन अपराधियों के खिलाफ उन्होंने मामला दर्ज करवाया। किसी भी परिवार के लिए बहुत भयानक स्थिति होती है जब वो किसी अनजान टूरिस्ट प्लेस पर घूमने के लिए जाते हैं और वहां के स्थानीय मवाली उन्हें परेशान करने लगते हैं। अक्सर पुलिस व्यवस्था की नाकामी की वजह से इन लोकल गुंडों का विरोध करना बड़े खतरों को दावत देने जैसा बन जाता है। और यह खतरा किस स्तर पर होता है? ये नासिक की ये जो वारदात है, ये जो तस्वीर है, ये पीड़ित परिवार है, वो खुद आपको बताएगा।

0: एक परिवार के लिए ये बहुत डरावनी स्थिति है। सोचिए, लोकल गुंडे बाइक से कार का कुछ इस तरह से पीछा कर रहे हैं और आपको मारने की कोशिश में आपकी गाड़ी पर पत्थर और लाठियों से हमला कर रहे हैं। इन्हें कानून का कोई डर नहीं है। इन्हें शायद पता है कि सैलानियों के साथ मारपीट होगी तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बाहरी हैं। आप तो बस उस परिवार की हालत देखिए जो क्वालिटी टाइम बिताने के लिए वाटरफॉल पर आया था, लेकिन अब उनकी कार की विंडस्क्रीन और साइड डोर के शीशे तोड़ दिए गए हैं और कुछ गुंडे उनकी जान के पीछे पड़ गए हैं। आप उस पिता की हालत का अंदाजा लगाइए जो अपनी पत्नी और बच्चों की जान बचाने के लिए गाड़ी को जितना तेज हो सके उतना तेज भगाने की कोशिश में लगा है, लेकिन गुंडे एक बाइक से उनकी कार का पीछा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कार को रोक दिया जाए। जिस तरह से पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता था कि गुंडे एक परिवार की महिलाओं को छेड़ते हैं और विरोध करने पर मारते पीटते हैं और उनमें कानून का कोई डर नहीं रहता, ठीक यही घटना महाराष्ट्र के नासिक में हुई।
1: चेंज करने हम कार के पास जा रहे थे तो वहाँ पे एक बाइक पे दो लड़के खड़े थे, तो मैं उनके वहाँ से तो जाना ही पड़ेगा तो उनके बाजू से गई, तो उन्होंने मुझे शिट्टी बजाई और कुछ कमेंट पास किए, तो मैंने उनको बोला तुम पागल हो गए क्या, पब्लिक प्लेस में लेडीज को छेड़ रहे हो, तो फिर ये भी पीछे से अरे मेरे जा निकल जाओ, बोले ऐसे मराठी बोले निकल जाओ तुम क्यों दिमाग लड़ा लेडीज से, और उन्हें ऐसे करके निकल दे। तो वहाँ पे बाजू में जो लड़के खड़े थे 7-8-10 लड़के थे जो कार है वहाँ पे, तो वो आए बोले हमारे गाँव के लड़के को तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, हाथ क्यों लगा सकते हो, अरे भाई मैंने मारा ही नहीं, हाथ ही नहीं लगा, तो क्यों, नहीं नहीं हम ही पाई लो हमने देखा ऐसे वगैरह बोल रहे थे, बोलो ठीक है। तो फिर वो गालियाँ देने लगे, हम भी गाले, फिर सर हम भी नहीं रुके, फिर हमने भी उनको थोड़ा सा ये किया, थोड़ी सी हाथापाई हुई हमारी, वहाँ पे पब्लिक लोगों ने हमको बचा लिया कि चलो निकलो यहाँ से जाने दो छोड़ो, हम भी हमारा निकले गाड़ी में आगे जाके सामने से आके उन्होंने आड़ी गाड़ी लगा दी और डायरेक्ट फाइटर से ना कांच फोड़ना चालू कर दी, तो हम डर गए, मैंने उनको बोला कि भगाओ गाड़ी भगाओ।
0: हवाली वाटरफॉल के बदमाशों ने इस कार की हालत क्या की है वो देखिए। इसी कार के जरिए परिवार अपनी जान बचाकर भाग रहा था, अगर पीड़ित परिवार ने गुंडों से डर कर कार रोक दी होती तो जो हालत आज आप देख रहे हैं मुमकिन है वो हालत उस परिवार की होती।
2: हम आगे निकले वहाँ से भावली डैम से 2 किलोमीटर आगे, तो एक व्हाइट कलर की बलेनो है, उसने आगे हमारे आके रास्ता ब्लॉक किया, जैसा रास्ता ब्लॉक किया तो वहाँ से उसमें से उतर के 2-4 बच्चे भागे, उन्होंने आगे की और मेरे बाजू में जो मेरा भाई बैठा था उसकी कांच फोड़ दी, तो हमने गाड़ी थोड़ा रिवर्स लेके भागना चालू किया बोला इगतपुरी पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन जैसे हम नासिक मुंबई हाईवे पे आए फ्लाईओवर के नीचे नियर बाय, वहाँ पे 2 बाइक जो वीडियो वायरल हो रहा है पीछे से आके रॉड से मार रहे, उन्होंने पीछे से रॉड से मारा और आगे आके वापस उन्होंने 2-व्हीलर से हमें ब्लॉक किया, वहाँ पे उन्होंने आगे वापस 70 से हमारी गाड़ी फोड़ी।
0: हवाली वाटरफॉल पर बदमाशों की जिस टोली ने महिलाओं से छेड़छाड़ के बाद मारपीट की थी उस टोली में 1-2 नहीं 10 से ज्यादा बदमाश शामिल थे। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, इनमें वो बदमाश भी हैं जिन्होंने महिलाओं से छेड़छाड़ की थी, वो भी हैं जिन्होंने परिवार को मारने के लिए कई किलोमीटर तक उनका पीछा किया था, और इनमें वो भी हैं जिन्होंने इन बदमाशों को छिपाने में मदद की थी।
3: जो एक घटना हुई इस अनुचित घटना के अकॉर्डिंगली जो है वो पहले अंबड़ पुलिस स्टेशन में 0 नंबर से जो FIR रजिस्टर हुआ उसको अकॉर्डिंगली वो तुरंत हमने वीडियोस और बाकी टेक्निकल एनालिसिस करके इसमें हमने 9 आरोपी अभी तक निष्पन्न किए हैं, जो कि FIR में 6-7 आरोपी थे, बट इसमें जो शेल्टर देने वाले आरोपी है या फिर एसोसिएट्स है जिनको इन्होंने हेल्प किया था वो भी हमने इसमें आरोपी किए हैं, और अभी तक हमने 9 आरोपी इसमें ताबे में लिया।
4: अब हम रूठे हुए मानसून का कारण आपको बताएंगे। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में 2 जुलाई के बाद से मॉनसून की झमाझम बारिश हुई। 7 से 9 जुलाई के बीच तो पूरे दिल्ली NCR में जबरदस्त बारिश हुई है, लेकिन 10 जुलाई के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मॉनसून इंसानों की किसी बात से नाराज हो गया हो और चला गया हो। कहां तो कुछ दिन पहले तक आसमान में छाए बादलों ने कुछ खुशियां दी थी, और कहां तो अब खुला आसमान और चटक धूप ने लोगों को बेहाल कर दिया है। और अब सवाल यह है कि मानसून के चले जाने की वजह क्या है। दरअसल मानसून कुछ दिनों की छुट्टी पर गया है, और इसे मानसून के जानकार मानसून ब्रेक कहते हैं, और ये मौसम में रुके हुए एक अस्थायी प्राकृतिक बदलाव इसे कहते हैं, जिससे कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। मानसून ने ब्रेक इसलिए लगाया है क्योंकि मानसून थ्रू यानी कि मानसून के कम दबाव का क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्व की ओर खिसक गया है। बारिश के मौसम में ये मानसून थ्रू पश्चिम से पूर्व की ओर बनता है, जैसे उत्तर भारत के राज्यों में बढ़िया बारिश होती है, यानी कि ये एक कम दबाव का क्षेत्र है जो फिलहाल दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से अड़कर पहाड़ों की ओर यानी कि उत्तराखंड, पूर्वी यूपी, बिहार और पूर्वोत्तर भारत की ओर चला गया है। इसीलिए फिलहाल बारिश भी इन्हीं इलाकों में हो रही है और काफी तेज बारिश भी हो रही है। और ये सामान्य बात है, जुलाई अगस्त में यानी कि मानसून के मौसम में इस तरह से बीच बीच में हफ्ता या 10 दिन के लिए इस तरह की स्थिति बन जाती है। फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक 19 जुलाई के बाद मानसून का ये ब्रेक टाइम खत्म हो जाएगा और बंगाल की खाड़ी की नम हवाओं की मदद से मानसून जो है वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा। कुछ अगली दूसरी खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली में नए बने द्वारका एक्सप्रेस वे की टनल में अचानक एक कार में आग लग गई। आमतौर पर टनल्स में जब इस तरह के हादसे होते हैं तो स्थिति काफी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अगर एयर सर्कुलेशन की व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो टनल में धुआं भरने से दम घुट सकता है। लेकिन इस टनल में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस टनल में इस तरह की दुर्घटनाओं के लिए एक अलग तरह का ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया गया है जो आग लगने के तुरंत बाद सक्रिय हो गया, एक्टिव हो गया। और इस स्प्रिंकलर सिस्टम ने घटनास्थल के पास में ही बड़ी मात्रा में पानी बरसाया। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो बारिश हो रही, कुछ ही मिनटों में कार में लगी आग बुझ भी गई और स्प्रिंकलर सिस्टम बंद हो गया। इस घटना का वीडियो सामने आया जिसका सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बज है। लोग इस तरह की आग बुझाने वाली व्यवस्था को देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं, साथ ही हैरान भी।

0: टनल में लगी आग की यह घटना भांपने और एक्शन लेने का एक खास सिस्टम लगाया हुआ है और सुबह लगभग 11 बजे जैसे ही कार के इंजन में आग लगी वैसे ही टनल में लगाया गया ये विट्स यानी कि वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम एक्टिव हो गया। ये सिस्टम AI आधारित वीडियो एनालिटिक्स सिस्टम है जो कि CCTV के जरिए ट्रैफिक पर नजर रखता है और हर हलचल को नोट करता है। विट्स ने टनल कंट्रोल सेंटर को बताया कि टनल के खास हिस्से में आग लगने की घटना हुई है। इसके बाद टनल में लगे हुए का अन्य सिस्टम LHDS यानी कि लीनियर हीट डिटेक्शन सिस्टम ने कंट्रोल सेंटर को बताया कि टनल के उस हिस्से का तापमान बढ़ता जा रहा है। इन दोनों ही सिस्टम से मिली जानकारी के बाद टनल का फायर सेफ्टी मोड ऑन हो गया और ऐसा होते ही टनल में लगा हाई प्रेशर वाटर मिस सिस्टम शुरू हो गया। इसने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। इस बीच इसी सिस्टम ने इमरजेंसी अनाउंसमेंट भी करने शुरू कर दी और टनल में मौजूद वेरिएबल मैसेज साइन के जरिए लोगों को हादसे की जानकारी दी गई। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of...
3: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
5: When your cat is acting weirder, or your dog is being louder, your turtle moves slower.
6: Hello, Ted.
5: Your cat seems thirstier.
7: Whoa, slow down, buddy.
5: Or your puppy is acting clumsier. Day or night. If you don't know what's wrong, know where to go.
6: Veg ER for pets. This is Kate.
5: Veg. The better, kinder ER for pets.
8: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio. And fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: मैं करता हूँ ना,
2: मैं करूँगा।
3: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
1: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
3: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
1: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB, दोनों ही चैंपियन है।
3: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
4: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
5: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
6: गहरी सफाई,
7: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
6: गहरी खुशबू
7: और प्यार भरी भी।
6: कैसे?
7: यह है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
8: इसीलिए फेना ही लेना।
9: Ready for the next big IPO? Apply for it on Grow. Open your free DMAT account, check all IPO details, apply easily in a few taps. And that's it. Download Grow now for stocks, mutual funds and IPOs.
10: Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
11: आगे आगे,
12: अरे उधर
11: उधर किधर,
12: करेक्ट करेक्ट,
13: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
14: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
15: जिमी,
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
2: गहरी सफाई।
3: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
2: गहरी खुशबू
3: और प्यार भरी भी।
2: कैसे?
3: यह है एक्टिव नीडल्स की शक्ति।
4: इसीलिए फेना ही लेना।
5: Ready for the next big IPO? Apply for it on Grow. Open your free DMAT account, check all IPO details, apply easily in a few taps. And that's it. Download Grow now for stocks, mutual funds and IPOs.
6: Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
7: We are over, Jimmy.
8: Hey, life mein scratches to aayenge. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
9: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
10: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
11: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
10: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
12: पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन को लगा बड़ा झटका। आईबी अफसर अंकित शर्मा के हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया। ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया। अंकित शर्मा की हत्या के मामले में 6 साल बाद दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नाजिम, काशिम, अनस, जावेद और ताहिर हुसैन को हत्या, अपहरण, दुश्मनी को बढ़ावा देने और दंगा करने का दोषी ठहराया। वहीं कोर्ट की सुनवाई के दौरान आरोपी ताहिर हुसैन कोर्ट में रोने लगा। फैसले के बाद ताहिर ने अपने आप को बेगुनाह बताया।
13: ताहिर जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए।
12: वहीं कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा। बीजेपी ने सीधे ताहिर हुसैन के बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की।
14: आज जो लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, सनातनी बनने का ढोंग कर रहे हैं, ये लोग जब सत्ता में थे तब इन्होंने अंकित शर्मा जैसे न जाने कितने बेगुनाह निरपराध हिंदू नौजवानों का हत्या करवाने का, मर्डर कराने का जो दिल्ली दंगों का पूरा प्लान था, उसके ये भागीदार थे और बाद में अपराधियों को बचाने की भी सारी कोशिश केजरीवाल और उनके गैंग के द्वारा की गई थी।
12: 26 फरवरी 2020 को खजूरी खास नाले से अंकित शर्मा का शव मिला था। उनके पिता ने ताहिर हुसैन समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था, जिसको लेकर कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आज तक भी

संसद सत्र और यूपी में चुनावी सरगर्मी के बीच गृह मंत्री अमित शाह से मिले योगी आदित्यनाथ। कर्तव्य भवन में दोनों के बीच चर्चा। लखनऊ तक अटकलों का बाजार गर्म। कल लखनऊ में सजेगा पंचायत, आज तक उत्तर प्रदेश का महामंच। मुख्यमंत्री योगी समेत राजनीतिक दिग्गज करेंगे शिरकत। विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष की आवाज। दिल्ली दंगे मामले में ताहिर हुसैन के दोषी होने पर आप बीजेपी में ठनी। सीएम रेखा ने लगाया आम आदमी पार्टी पर संरक्षण का आरोप। कपिल मिश्रा का कटाक्ष, ताहिर सिर्फ एक्टर, असली डायरेक्टर कोई और।

0: महंगाई के बाद थोक महंगाई दर ने भी लोगों की जेबें की ढीली। जून में 9.87% पहुंची। ईंधन ऊर्जा के दामों में बढ़ोतरी का पड़ा असर। खाद्य महंगाई दर बढ़कर 5.49% हुई। और 24 घंटों में ट्रंप का यूटर्न का, हॉर्मुज में नहीं लगेगा 20% टैक्स। टैरिफ की जगह अमेरिका में खाड़ी देश करेंगे निवेश। ईरानी जहाजों की नाकाबंदी का किया ऐलान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। आज पाकिस्तान की गोद में बैठे आतंक के आकाओं की नींद उड़ाने वाली खबर की शुरुआत हम दस्तक से कर रहे हैं। पहलगाम अटैक केस में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद के खिलाफ एनआईए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अब पहलगाम केस में हाफिज के खिलाफ ट्रायल का कानूनी रास्ता खुल गया और ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि एनआईए अदालत की तरफ से हाफिज के खिलाफ जारी हुए गैर जमानती वारंट के बाद पाकिस्तान में हाफिज की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पाकिस्तान को डर है कि आतंकवादी हाफिज के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट कहीं आने वाले दिनों में उसका डेथ वारंट तो नहीं सिद्ध होगा।
1: गुंडी, गुंडी, मेरी गुंडी।
2: मोस्ट वांटेड हाफिज पर बड़े एक्शन की तैयारी। हाफिज के खिलाफ एनआईए कोर्ट ने जारी किया वारंट। हाफिज पर चला हंटर तो पाकिस्तान में भारी टेंशन। टारगेट पर पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड सईद। क्या गैर जमानती वारंट है मोस्ट वांटेड का डेथ वारंट? हाफिज सईद को वारंट, मुनीर को लगा करंट। पहलगाम आतंकी हमले की साजिश के सूत्रधार हाफिज सईद के खिलाफ एनआईए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। आरोप यही है कि पहलगाम हमले की साजिश हाफिज सईद ने अपने सीक्रेट ठिकाने में बैठकर रची थी। हमले की प्लानिंग से लेकर आतंकियों की ट्रेनिंग में हाफिज सईद शामिल था। पहले पहलगाम आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं के ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिट्टी में मिलाया गया। फिर हमले को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों को चुन चुन कर सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतारा। अब पाकिस्तानी बिल में छिपे मोस्ट वांटेड हाफिज सईद से हिसाब किताब पूरा करने की घड़ी बेहद करीब आ गई है।
3: एनआईए ने पाकिस्तान में बैठे लश्करे तैयबा के सरगना 26/11 और पहलगाम हमले के सूत्रधार हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवा दिया है। इसके पहले 8 जुलाई को एनआईए ने पहलगाम हमले के मामले में सप्लीमेंट्री जासीर दाखिल करके हाफिज सईद को आरोपी बनाया था। एनआईए का दावा है कि हाफिज के सीक्रेट ठिकाने पर पहलगाम हमले की साजिश रची गई थी। अब गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद हाफिज सईद के खिलाफ पहलगाम हमले के मामले में ट्रायल शुरू होगा।
2: कानून के जानकार मानते हैं कि हाफिज सईद के खिलाफ ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल शुरू होने के बाद सजा सुनाई जाएगी। चूंकि हाफिज सईद पाकिस्तान में है, लिहाजा डिप्लोमेटिक चैनल के तहत भारत हाफिज के प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है। दूसरा विकल्प, सीक्रेट ऑपरेशन के तहत हाफिज सईद का खात्मा, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिकी कमांडोज ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था। वैसे ऑपरेशन से दूर के बाद से ही हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर का तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि एक के बाद एक हिंदुस्तान के दुश्मनों का सफाया पाकिस्तान में जारी है। यही वजह है कि आसिम मुनीर की सलाह पर हाफिज सईद अंडरग्राउंड है, लाहौर के जौहर टाउन जैसे रिहायशी इलाके में छिपा है। हवाई हमले से बचने के लिए जौहर टाउन में रखा गया। हाफिज सईद की सिक्योरिटी पुलिस और सेना के हवाले। मुनीर की इजाजत के बिना हाफिज सईद कहीं नहीं जाता। भारत के ऑपरेशन हाफिज सईद का डर ऐसा है कि पाकिस्तान में खुलेआम घूमने वाला मोस्ट वांटेड अब सिर्फ और सिर्फ पोस्टरों में नजर आता है। ये तस्वीरें बीते साल की हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के अलग अलग शहरों ने मुनीर की सरपरस्ती में दहशतगर्दों की रैलियां निकाली थी। आप देख सकते हैं कि रैलियों में आसिम मुनीर और हाफिज सईद के पोस्टर लहराए जा रहे थे। एक पोस्टर में आसिम मुनीर की तस्वीर, दूसरे पोस्टर में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हाफिज सईद की फोटो। यही तस्वीर आसिम मुनीर और आतंक के आकाओं के बीच गठजोड़ का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन पाकिस्तान को पता है कि आईएसआई के दुलारे और मुनीर के प्यारे हाफिज सईद का खेल किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। ऐसे में मुनीर के कहने पर हाफिज सईद के बेटे तलहा को लश्कर तैयबा की कमान सौंपी गई है। ऑपरेशन सिंदूर की चोट के बाद हाफिज अंडरग्राउंड है और तलहा को आगे किया गया। तलहा सईद को भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रचने का जिम्मा सौंपा गया। पाकिस्तान की नई साजिश यही है कि पर्दे के पीछे दिमाग हाफिज सईद का होगा और मुखौटा उसके बेटे तलहा सईद का। इसी कड़ी में पाकिस्तान में आतंकी मजलिसों में अब हाफिज सईद नहीं आता, जबकि उसका नफरती टेप बजाया जाता है। नफरती टेप नंबर एक,
4: मेरे सिप्पा सलार ने कहा तू सांसें बंद करेगा, तू पानी बंद करेगा, अंबिया तेरी सांसें बंद करेंगे, और ये भी कहा था फिर बहेगा खून तेरे दरियाओं में।
2: नफरती टेप नंबर दो,
5: कहा था अगर तुम पानी बंद करोगे खुदा की कसम तुम्हारी सांसें बंद करेंगे। इंशाल्लाह हम मुजाहिद हैं, हम पाकिस्तान है, आज के रसूल है। आज सबसी बात में कहूंगा कि फिरका बारियत से हमें निकल कर हमें यकजा होना पड़ेगा।
2: नफरती टेप नंबर तीन,
6: जिस शख्सियत ने ये बात की थी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज 28 मई के दिन, ये मई का दिन पाकिस्तान के लिए बड़ा ही बाबरकत है। 10 मई को हमने सुपर पावर का ख्वाब देखने वालों को अल्लाह के फजल से शिकस्त दी।
2: नफरती टेप नंबर चार,
7: बदला उस दिन होगा जिस दिन हिंदुस्तान के जेरे कब्जा वो रियासत जो 1947 में हमारे साथ मिलने का वादा किया गया था वो पूरी हो जाएगी, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। उस दिन 71 का इंशाल्लाह हम बदला लेने की बात करेंगे।
2: हाफिज सईद का यही भारत विरोधी एजेंडा है जो आसिफ मुनीर का सबसे बड़ा हथकंडा है, लेकिन भारत ने आतंकियों को उनके घर में घुस कर मारा है। भारत की हिट लिस्ट पर एक एक दुश्मन का नाम है जिसमें सबसे ऊपर हाफिज सईद है। बड़ी बात यह है कि हाफिज सईद देश की खुफिया एजेंसियों की रडार पर है, यानी मौका मिलते ही हाफिज का दी एंड तय है।
3: हमने बीते साल हाफिज सईद के ठिकाने को लेकर सबसे सटीक और विश्वसनीय रिपोर्ट दिखाई थी। हमने खुलासा किया था कि हाफिज सईद कहां रहता है, उसका सुरक्षा घेरा कैसा है, लेकिन अब हाफिज सईद खुलेआम पाकिस्तान में रैलियां करता हुआ और रैलियों में भारत के खिलाफ जहर उगलता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसके पीछे हाफिज सईद और आसिम मुनीर का डर है, क्योंकि बीते कुछ सालों में पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को आसिम मुनीर का पहरा भी बचा नहीं पाया। एक एक करके अज्ञात हमलावर पाकिस्तान में इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों को निशाना बना रहा है।
0: आतंकवादी हाफिज सईद, आतंकवाद की दुनिया का वो नाम है जिसके हाथ सैकड़ों बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। पाकिस्तान में चल रही आतंक की फैक्ट्रियों में सबसे बड़ी फैक्ट्री हाफिज सईद की ही है, लेकिन आतंकवादियों के ठिकानों पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाफिज और मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंक के आकाओं को अब मौत का डर सता रहा है। सभी अंडरग्राउंड हो चुके हैं, कोई पुनीर के पहरे में अभी तक जिंदा है तो कोई ISI की गोद में छिपकर बैठ गया है, लेकिन पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज की पूरी कोशिशों के बावजूद हमारे देश के इन दुश्मनों आतंकवादियों की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
8: ये आजादी की तहरीक है,
9: पता लगा मेरे छोटे निकल आ रहे
2: हैं। आज तक के खुलासे से पाकिस्तान बेनकाब, कैमरे पर आतंकी हाफिज सईद का ठिकाना, लाहौर के जौहर टाउन में हाफिज की कोठी, हाफिज सईद पर पाक का झूठ पकड़ा गया, आतंकी आका हाफिज सईद पर बड़ा खुलासा।
9: पता लग गया ना मेरे छोटे निकल आ रहे हैं, फिर खैर नहीं किसे दे।
2: जगह E116 जौहर टाउन लाहौर। यही पता है हाफिज सईद का, वही हाफिज सईद जो भारत का मोस्ट वांटेड है। 26/11 से लेकर पहलगाम आतंकी हमले समेत दर्जनों हमलों का मास्टरमाइंड है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की सरपरस्ती में लंबे वक्त से जौहर टाउन में रह रहा है। आज हाफिज सईद के सीक्रेट ठिकाने का वीडियो सबूत बहुत गौर से देखिए। इसी बिल में हाफिज सईद छुपा हुआ है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने हाफिज सईद के ठिकाने की सैटेलाइट तस्वीरें हासिल की हैं। हाफिज सईद के दिल में मौत का डर ऐसा है कि पाकिस्तानी सेना और लश्कर आतंकियों के कड़े सुरक्षा घेरे में सांसें ले रहा है। तस्वीरों में नजर आ रहा ये कोई और नहीं बल्कि हाफिज सईद का बॉडीगार्ड है। हाफिज सईद के पड़ोसी और उसके बॉडीगार्ड के बीच हुई बातचीत का एक हिस्सा सुनिए।
9: इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। दो चार दिन
10: ठीक है सर जी, मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह।
9: ये हाफिज साहब पर्सनल ने जितनी भी सिक्योरिटी हाफिज ने पर्सनल रखी सारी ठीक है इंशाल्लाह ठीक है।
2: ये है हाफिज सईद के पर्सनल बॉडीगार्ड जिसके हाथों में हथियार है।
9: तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी दो चार दिन
10: ठीक है सर जी, मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह।
9: ये हाफिज साहब पर्सनल ने
2: कैमरे पर वो कबूल करता है कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन का ठिकाना यही है। अब वीडियो का अगला हिस्सा बहुत गौर से सुनिए।
9: हाफिज साहब पता लग गया ना मेरी सिक्योरिटी कल आ रहा है, पैर नहीं किसे दे।
2: हाफिज सईद का निजी सुरक्षा गार्ड तस्दीक करता है कि वो यही रहता है, वो भी पाकिस्तानी सेना और लाहौर पुलिस के स्पेशल कमांडोज के पहरे में। हाफिज सईद लाहौर।

0: जाए। मौलाना ने यह भी कहा कि वक्फ का यह घोटाला समाजवादी पार्टी की सरकार यानी कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री वाले कार्यकाल में हुआ है, लेकिन मौलाना के वक्फ बोर्ड में घोटाले वाले खुलासे पर हंगामा और बवाल मचना शुरू हो गया है। आइए आपको दिखाएं कैसे मौलाना ने श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चल रही राजनीति के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मन की बात कह दी है।
1: मौलाना का बड़ा खुलासा, वक्त घोटाला उजागर कर डाला। वक्त घोटाले पर मौलाना का दावा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी भूल जाएंगे। मौलाना ने की सीएम योगी से वक्त घोटाले की जांच की मांग। मौलाना ने लगाए समाजवादी पार्टी की सरकार में वक्त घोटाले के आरोप। मौलाना बोले कैसे वक्त वाली गरीबों की जमीन भू माफिया खा गए। जब अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी और ट्रस्ट से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। जब चढ़ावा चोरी केस में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गबन की गई रकम का पता लगाने के लिए इनकम टैक्स विभाग की मदद ली जा रही है। जब विपक्ष कतार लगाकर राम मंदिर में चढ़ावे से लेकर चंदे तक और दान से लेकर जमीन खरीद तक के घोटाले पर सवाल खड़े कर रहा है और सीधे सरकार को घेर रहा है, कार्रवाई का हिसाब मांग रहा है।
2: राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाया जाए।
3: राम मंदिर के अंदर जो डकैती हुई है बीजेपी की सरकार और आरएसएस की नेताओं की, बिना ये संभव नहीं।
1: ऐसे में एक मौलाना आते हैं और सुनी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड दोनों में बड़े घोटाले की बात कहते हैं। और तो और मौलाना ये भी दावा करते हैं कि अगर सीएम योगी दोनों सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड की जांच करा दे तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी से बड़ा घोटाला सामने आएगा।
4: मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सही तरीके से दोनों वक्फ बोर्डों का जांच पड़ताल करा दें तो आप समझिए और पूरी दुनिया देखेगी कि राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड का निकल करके सामने आएगा। वो लाखों का नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों का जो घोटाला है वो अरबों का घोटाला सामने निकल करके आएगा।
1: बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ठीक वैसी ही बात करते हैं जैसे कि सीएम योगी ने वक्त के घोटालों, खांडवियों और भ्रष्टाचार पर विपक्ष की चुप्पी पर सवाल खड़े किए।
5: मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है, क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है।
1: पहले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष बासित अली ने बहराइच के सालार गाजी दरगाह में घोटाले के आरोप लगाए, फिर सीएम योगी ने कई मंचों से वक्फ के घोटालों का जिक्र किया। अब खुद मुस्लिम जमात के मौलाना रजवी ने वक्फ में घोटालों के आरोप लगाए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर वक्फ के घोटालों की जांच करने की मांग की है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान कैसे वक्फ बोर्ड की जमीनें भू माफियाओं को बेच दी गयी, कैसे वक्फ की जमीनें डकार दी गईं, न सिर्फ इसका खुलासा कर रहे हैं बल्कि नाम ले लेकर आरोप लगा रहे हैं। मौलाना रजवी सीएम योगी के नाम लिखी चिट्ठी में दावा करते हैं कि 1989-91 तक, 1993-95 तक और 2003-2007 तक मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल रहा, फिर 2012-17 तक अखिलेश का कार्यकाल रहा, इस दौरान आजम खान वक्फ मामलों के मंत्री रहे।

0: और उनके चहेतों ने वक्त संभाला। 2000-2001 तक जुफर अहमद फारूकी, 2001 से 2003 तक अमीर आलम, 2004 से 2009 तक हाफिज उस्मान और फिर 2010 से 2026 तक जुफर अहमद फारूकी वक्त बोर्ड के चेयरमैन रहे और मनमाने तरीके से बोर्ड के अंदर गड़बड़ियां की हैं।
1: ये सारी बर्बादी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई। 3 बार मुलायम सिंह यादव जी प्रधान को मुख्यमंत्री बने और 1 बार अखिलेश यादव जी सपा के शासनकाल में आजम खां अल्पसंख्यक और वक्फ और हज के मंत्री हुआ करते थे। आजम खां के चहीतों को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का और शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। जुफर फारूकी चेयरमैन रहे, अमीर आलम रहे, उसके बाद में हाफिज मोहम्मद उस्मान रहे और ये सब वो लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के और आजम खां के चहीते लोग हैं। इन लोगों के शासनकाल में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के मेंबरान ने और संबंधित अधिकारियों ने मिलकर के हमारे बुजुर्गों की वक्फ की हुई जमीन को खुर्द बुर्द किया, बेचा और भू माफियाओं के हाथ में सौदा कर दिया।
2: मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वक्फ बोर्ड के घोटाले के श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी से जोड़ा तो राजनीति शुरू हो गई। अब ओबीसी की पार्टी मौलाना को पेड मौलाना बता रही है तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि यह सब चढ़ावा चोरी के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए मौलाना से करवाया गया है।
0: वक्फ में घोटाले पर मौलाना का खुलासा इसलिए और चर्चा का विषय बन रहा है क्योंकि वो सीएम योगी से जांच की बात तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि वक्त का घोटाला इतना बड़ा है कि राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी को भूल जाएंगे।
1: तो मैं ये भी बताऊं आपको कि जो लोग वक्त संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, दरअसल मुजरिम वही है। उन्होंने अपने आलीशान फाइव स्टार होटलों की तरह अपने मकानात बना रखे हैं, शॉपिंग कम्प्लेक्स बना रखे हैं, शादी हॉल बना रखे हैं और उसे होने वाली आमदनी अपनी पॉकेट में खर्चा करते हैं। वो किसी गरीब मुसलमान को नहीं जाती। मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी करें और अगर ऐसा कर देते हैं तो लोग राम मंदिर के चंदे की चोरी भूल जाएंगे।
3: अब इस पूरे मुद्दे पे बहुत से लोग चाहते हैं इस मुद्दे को डाइवर्ट करना, कहीं दूसरे स्थानों पे या दूसरे धर्म स्थल पे कहीं अगर कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से वहां सुधार होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन बयानबाजी नहीं। अगर कोई सबूत किसी के पास है, एविडेंस है तो वो सामने लाना चाहिए।
4: राम मंदिर हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था का उससे ताल्लुक है, इसलिए हमारा उस ताल्लुक से कोई बात करना या किसी भी चीज पर गुफ्तगू करना किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि पिछले कुछ अरसे से और पिछले कुछ वक्त से वक्फ बोर्ड को आड़ बनाकर राम मंदिर की चोरी को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। दोनों चीजें अलग हैं।
0: सियासी आरोप एक तरफ लेकिन आरोपों की जांच दूसरी तरफ। शिया वक्फ बोर्ड से जुड़े इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दें तो यूपी में किसी वक्फ घोटाले की सघन जांच अभी तक नहीं हो पाई है।
2: दशक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दशक के अगले हिस्से में आपको बताएंगे ईरान पर बमबारी, हॉर्मुज में टैक्स की बारी। आप देखते रहिए दशक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
2: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
1: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
2: अर्ज किया है,
1: पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
3: वाँ वाँ वाँ वाँ वाँ।
1: सेबी और एनएसई का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
4: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
5: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
6: पापा।
7: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
8: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
7: छक्का?
8: सब कैशलेस हो गया है।
7: हाँ, ला भाई मेरा बैट।
9: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
10: डिस्चार्ज हुआ यार।
11: बैट किसका है?
12: टाटा AIG है तो भरोसा है।
13: वी आर ओवर जिमी।
14: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
15: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
16: AU, सोच बदलो और बैंक भी।
17: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
18: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
19: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान।
11: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
1: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी जॉइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
2: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
5: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
9: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
15: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े चेहरे, जनता के सबसे बड़े सवाल और आज तक की सबसे बड़ी पंचायत, 15 जुलाई लखनऊ।
20: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइयत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक? तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।

0: छतरी न खोल बरसात में,
1: आहा भीग जाने दे
0: मेरी छतरी के नीचे आजा।
1: क्यों भीगे रे सलमा खड़ी खड़ी?
0: सलमा या कमला?
1: सलमा भी थी, कलमा भी होगी, कमला भी होगी।
2: अरे आप कमला गाओगे,
1: सलमा
2: ये सलमा गाएंगे।
1: कोई तो आगे और पीछा होगा।
0: मैं कमला पसंद, ये सलमा पसंद। नेताओं ने मिलकर ये ट्रस्ट बनाया है जिसमें लैक ऑफ ट्रस्ट जो है आजकल सबसे ज्यादा है, तो का ही कर सकते हैं आप। और सब लोग पल्ला झाड़ रहे हैं, संघ ने इधर लेटर जारी कर दिया।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
1: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी, स्वागत एक बार फिर से आपका। अब बात हॉर्मुज पर ट्रंप टैक्स। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ा युद्ध आने वाले दिनों में किस करवट बैठेगा, हॉर्मुज से तय होगा। बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया था कि हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा होगा और हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल गैस टैंकर्स को 20% टैक्स देना होगा। ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान ने हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद करने की धमकी दी थी। वो हॉर्मुज पर ट्रंप के टैक्स को दुनिया के कई देशों ने खुलकर विरोध किया। इस वक्त हॉर्मुज पर टैक्स को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हॉर्मुज पर 20% टैक्स वसूलने वाले दावे से पलट गए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। ट्रंप का दावा है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलने का उनका कोई प्लान, कोई इरादा नहीं है। हॉर्मुज को खुलवाने के बदले मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका में निवेश करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी हमने शुरू कर दी है और ईरान ने डील का मौका गवा दिया। बड़ी बात यह है कि 24 घंटे पहले ट्रंप ने हॉर्मुज पर सुरक्षा देने के बदले 20% टैक्स वसूलने का ऐलान किया था, लेकिन ट्रंप अब अपने ऐलान से पलट गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर यही है, आखिर हॉर्मुज पर टोल पर पलटने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा था, क्या मिडिल ईस्ट और विभिन्न सहयोगी देशों के दबाव में ट्रंप ने पलटी मारी है। आइए आपको अपनी इस डिटेल्ड रिपोर्ट में हम दिखाते हैं।
2: आज की रात फिर ईरान पर हमले की धमकी। ट्रंप का खुला ऐलान, हॉर्मुज पर कब्जे तक जंग। क्या ईरान बहाना, हॉर्मुज पर है ट्रंप का निशाना। क्या है हॉर्मुज पर ईरान टैक्स बनाम ट्रंप टैक्स। ईरान अमेरिका की लड़ाई हॉर्मुज टैक्स पर आई। हॉर्मुज पर अमेरिका का प्लान ट्रंप टैक्स।
3: We'll be open. We've cut down their capability very substantially, but they, you know, they're going to fight for a while. Our military has done a fantastic job. And you know the bottom line, though, and I say it to everybody, and I say it as much as you want to listen, Iran will not have a nuclear weapon. If we didn't bomb them with the B-2 bombers, that plane right there, if we didn't bomb them, they would have had a nuclear weapon long ago. Within 1 month from the day we bombed them, they would have had, if we didn't do it, they would have had a nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, Israel would no longer be with us, and the Middle East probably would no longer be with us.
2: जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर 28 फरवरी को हमला किया, तब ट्रंप ने दुनिया को हमले की कई वजह गिनाई थी। वजह नंबर एक, ईरान को एटम बम बनाने से रोकना। वजह नंबर दो, ईरान से तानाशाह हुकूमत को हटाना। वजह नंबर तीन, ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करना। वजह नंबर चार, ईरान की मिसाइल शक्ति को मिटाना। ईरान को लेकर ट्रंप की सैन्य रणनीति पूरी तरह फेल रही। न तो ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ, न ही ईरान अपना एटमी प्रोग्राम रोकने को तैयार हुआ, और न ही अपने मिसाइल कार्यक्रम से पीछे हटने को तैयार हुआ। उल्टा ईरान ने हॉर्मुज पर नियंत्रण करके दुनिया की 20% तेल सप्लाई को बंधक बना लिया। हॉर्मुज को ईरान ने अमेरिका की कमजोर नस की तरह इस्तेमाल किया। भले ही 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के MOU पर साइन हो गए, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज से पीछे हटने से इनकार कर दिया। 17 जून को शांति समझौते पर दस्तखत हुए, लेकिन 25 जून को सिंगापुर के मालवाहक जहाज को ओमान के तट के करीब निशाना बनाया। ईरान ने इस जहाज पर ड्रोन से हमला किया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसे शांति समझौते का उल्लंघन मानते हुए ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। बार पलटवार के बाद अमेरिका ईरान के बीच हमले रोकने पर सहमति बन गई। 6 और 7 जुलाई को एक बार फिर ईरान ने हॉर्मुज पर कतर के एक LNG टैंकर और एक सऊदी तेल टैंकर समेत 3 जहाजों को निशाना बनाया। IRGC ने इन जहाजों पर हमले किए। हमले को अमेरिकी राष्ट्रपति ने शांति समझौते का उल्लंघन बताते हुए उसे रद्द करने का ऐलान किया। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। तो जवाब में ईरान ने मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। अभी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खत्म होता उससे पहले ही होर्मुज़ पर ईरान ने यूएई के दो टैंकरों पर हमला किया। इस हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और ऐलान किया कि अब होर्मुज़ पर पूरी तरह अमेरिका का नियंत्रण होगा और गुजरने वाले टैंकरों को 20% टैक्स चुकाना पड़ेगा। मतलब यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच अब पूरी जंग होर्मुज़ पर नियंत्रण को लेकर चल रही है। ये वही होर्मुज़ है जिसे खोलने के बदले ईरान खुद टैक्स वसूलना चाहता है, लेकिन ट्रंप का प्लान यही है कि ईरान नहीं बल्कि अमेरिका होर्मुज़ पर टैक्स वसूलेगा। होर्मुज़ खुला है और ईरान के साथ या उसके बिना खुला ही रहेगा। हम ईरानी नाकेबंदी को फिर से लागू कर रहे हैं। इसे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सिर्फ ईरान के जहाजों या ग्राहकों को ही आने जाने से रोकती है। बाकी सभी देश इस होर्मुज़ का खुले तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। अब से अमेरिका को गार्जियन ऑफ होर्मुज़ माना जाएगा। साथ ही निष्पक्षता के नाते दुनिया के इस बेहद संवेदनशील इलाके में सुरक्षा और हिफाजत का काम करने के लिए जरूरी सभी खर्चों की भरपाई के तौर पर यहां से भेजे जाने वाले सभी कार्गो पर 20% की दर से शुल्क लिया जाएगा। ये प्रक्रिया और सिस्टम तुरंत से शुरू हो जाएंगे। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ने होर्मुज़ पर अपने टोल टैक्स का ऐलान किया। उधर IRGC ने ट्रंप को धमकी देते हुए यही कहा है कि होर्मुज़ को लेकर ट्रंप का सपना कभी पूरा नहीं होगा। ईरान की सेना ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों के बाहर और उसके बलों की इजाजत के बिना वाणिज्यिक या तेल टैंकर यातायात में किसी भी अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप का बलपूर्वक जवाब देंगे। अमेरिकी सेना को रसद संबंधी मदद प्रदान करने वाले किसी भी क्षेत्रीय देश को ईरान की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ युद्ध में भाग लेने वाला माना जाएगा। हम किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज़ के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे। होर्मुज़ को जहाजों के लिए तभी फिर से खोला जाएगा जब वहां अमेरिकी सैनिक गतिविधि समाप्त हो जाएगी। भले ही ट्रंप की नजरें होर्मुज़ टैक्स से होने वाली कमाई पर टिकी हों, लेकिन ईरान होर्मुज़ पर ट्रंप टैक्स के खिलाफ दीवार बनकर खड़ा है। ईरान की धमकी के बाद एक बार फिर होर्मुज़ से आवाजाही ठप है। ये तब है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर नए हमले की धमकी दे रखी है।
3: End up discontrolling the whole thing. And what they're doing is being very foolish, very stupid.
2: आज की रात एक बार फिर ईरान के सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी सेना हमला करेगी। बड़ी बात यह है कि होर्मुज़ पर कब्जे की जंग के चलते अमेरिका ने पहली बार सी ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ये तस्वीरें ईरान के बंदरगाह पर अमेरिकी सी ड्रोन से मची तबाही की हैं। आप देख सकते हैं अमेरिका के समुद्री ड्रोन ने ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पर भारी तबाही मचाई है। US सेंट्रल कमांड के मुताबिक 13 जुलाई की रात 3 समुद्री ड्रोन से ईरान के बंदर अब्बास नेवल बेस पर पनडुब्बी और जहाज रखरखाव सर्विस सेंटर को तबाह कर दिया है। अमेरिका ने समुद्री ड्रोन का पहली बार युद्ध में इस्तेमाल किया है। सेंटकॉम की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, कल सेंटकॉम की फोर्स ने कई वनवे अटैक ड्रोन का इस्तेमाल करके ईरान में पनडुब्बी और जहाज के रखरखाव की सुविधा पर सफलतापूर्वक हमला किया। 3 कोरसेर अनमैन्ड सरफेस वेसल ने बंदर अब्बास नेवल बेस के पोर्ट पर हमला किया। ये पहली बार था जब अमेरिकी फोर्स ने कॉम्बैट ऑपरेशन में समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल किया। कल रात के हमलों से ईरान की कमर्शियल शिपिंग पर हमले जारी रखने की क्षमता कमजोर हो गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के कई शहरों पर 5 घंटे तक लगातार बमबारी की और वो शहर चाबहार, जास, कोनार, अबू बूसा और बंदर अब्बास में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने धमकी दी है कि आज की रात भी ईरान पर हमले जारी रहेंगे।
3: And we're hitting them very hard, and it'll continue, and we'll see what happens. But we're knocking out all of their offensive capability, and we're controlling the straits. We're putting the blockade back, and it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through.
2: सवाल यही है कि युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना स्टैंड क्यों बदला? क्या ये जंग ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोकने के बजाय होर्मुज़ से कमाई करने के लिए ट्रंप लड़ रहे हैं?
3: Yeah, I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping. For instance, you look at the five countries. You have Saudi Arabia. You have UAE. You have Qatar, or Qatar, as I always say. You have Qatar, Bahrain. And by the way, you have others. You have Kuwait, and you have others. And they will do very well. But we think it's appropriate that we don't need them. You know, we have more oil than any other country in the world. When you add Venezuela.
2: अमेरिकी राष्ट्रपति ने हॉर्मुज पर सुरक्षा देने के बदले 20 फीसदी टैक्स वसूलने का ऐलान किया है। अब हॉर्मुज पर ट्रंप टैक्स का ईरान के साथ तमाम मुल्कों ने विरोध किया है। ब्रिटेन ने साफ कहा है कि हॉर्मुज बिना किसी टैक्स के खुलना चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, चीन प्रस्तावों का पूरा विवरण अमेरिका ही बताएगा, लेकिन हमारा रुख हमेशा से यही रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हॉर्मुज को बिना किसी टोल या शुल्क के खोला जाना चाहिए। ऐसा कोई भी शुल्क वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर सकता है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने भी हॉर्मुज पर ट्रंप टोल का विरोध किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों से इस तरह पैसा वसूलना गलत है, ये तो समुद्री डकैती जैसा काम है। हॉर्मुज पर बढ़ते तनाव के बीच भारत विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है।
4: वी आर क्लोजली फॉलोइंग द डेवलपमेंट्स दैट आर हैपनिंग इन वेस्ट एशिया। We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
2: बड़ी बात यह है कि हॉर्मुज पर टैक्स को लेकर ट्रंप का ऐलान उन्हें खुद कटघरे में खड़ा करता है। जब ईरान ने टैक्स वसूलने का ऐलान किया था, तब अमेरिका के विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में यही कहा था कि हॉर्मुज पर कोई टैक्स नहीं होगा।
5: That's the law. It's an international waterway. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway. That's existing international law. That's the way it is in international waterways all over the world, and that's the way we expect it'll be here.
2: अब सवाल यही है कि हॉर्मुज पर जिस टैक्स का विरोध अमेरिका कर रहा था, अब उसी हॉर्मुज पर टैक्स क्यों वसूलना चाहता है?
6: दुनिया की 20% से ज्यादा की ऊर्जा आपूर्ति और हर दिन 2 करोड़ बैरल से ज्यादा का तेल निर्यात सुनिश्चित करने वाला रास्ता यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बीते 3 महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग का बंधक बना हुआ है। ये रास्ता लगातार बाधित है। अमेरिका इस रास्ते को खुलवाने की बात तो करता है, ईरान की तरफ से किसी तरीके की टोल वसूली का विरोध भी करता है, लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान ने इस रास्ते के लिए नया संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका अब इस रास्ते को खुलवाने और जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए टोल वसूलेगा, और वो भी 20% का। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी 27 फरवरी 2026 की स्थिति में लौट पाएगा, जब यहाँ पर न तो जंग की आग थी और न ही किसी तरीके की टोल वसूली।
2: कुछ डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की असल वजह तेल और गैस है। ऐसे में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ईरान पर अमेरिका का हमला ईरान के तेल और गैस पर कब्जा करने के लिए किया गया। अगर ऐसा नहीं है तो हॉर्मुज पर ट्रंप टोल क्यों वसूलना चाहते हैं? आज तक ब्यूरो।
1: अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज में अब आर पार का युद्ध शुरू हो चुका है। ट्रंप ने ईरान को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अब वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करेंगे। साथ ही ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई 90% तक खत्म हो चुके हैं। अमेरिका और इसराइल के हमलों से ईरान की सैन्य शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जबकि खबर यह भी है कि मुश्तबा खामनेई 23 जुलाई को दुनिया के सामने आ सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ ट्रंप का बड़बोलापन है और मुश्तबा अभी जिंदा हैं, शक्तिशाली हैं? क्योंकि ईरान किसी भी कीमत पर न तो हॉर्मुज में ट्रंप की टोल वसूली को तैयार है और न ही पिछले कई दिनों से हो रहे अमेरिकी हमलों के सामने झुकने को ईरान तैयार है। हम आपको दिखाएं मुश्तबा खामनेई कैसे ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं।
2: डोनाल्ड ट्रंप का दावा, मुश्तबा खामनेई 90% खत्म। मुश्तबा का चैलेंज, खामनेई की मौत का बदला जरूर लेंगे। हॉर्मुज पर छिड़ी तगड़ी जंग, मुश्तबा ट्रंप को दिखाएंगे दम। अब दुनिया के सामने आएंगे मुश्तबा खामनेई, 23 जुलाई की तारीख तय। हुर्मुज में लगातार हमले, ईरान और अमेरिका आगे क्या करेंगे? स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में हो रहे हमलों के साथ साथ ईरान और अमेरिका की मनमानी पर अब दुनिया का रुख बदल रहा है। भारत ने भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में मंगलवार की सुबह दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास के उप प्रमुख को तलब कर भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराया। मंत्रालय ने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर इस तरह के हमले तुरंत बंद होने चाहिए। विदेश मंत्रालय के मुताबिक हमले का शिकार बने दोनों जहाजों पर कुल 30 भारतीय नाविक सवार थे। इनमें एक भारतीय की मौत हो गई जबकि 6 घायल हुए हैं। भारत ने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव चिंता का विषय है।
4: इशूड अ स्टेटमेंट पोस्ट समनिंग ऑफ द डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ऑफ ईरान, वी कन्वेड टू देम आवर डीपेस्ट कंसर्न्स एंड दैट वी स्ट्रांगली कंडेम्ड व्हाट हैज हैपेंड। वी लॉस्ट a precious Indian life and there are several Indian nationals who have been injured and couple of them are also seriously injured. So we conveyed our strongest protest with the Iranian side on this particular matter that these attacks which we condemn must stop at the earliest. At the same time there should be de-escalation and the two sides should come to the negotiating table and take the path of dialogue and diplomacy so that peace and stability can be ensured in West Asia.
2: इस बीच विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत से जुड़े 11 जहाज और 148 भारतीय नाविक फिलहाल फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। ये सभी जहाज हुर्मुज स्ट्रेट से गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि 28 फरवरी से अब तक ईरान और अमेरिकी युद्ध के बीच 13 भारतीयों की मौत हो चुकी है जबकि 3 भारतीय अब भी लापता है। सरकारी सूत्रों ने ये जानकारी दी है। अब एक तरफ हुर्मुज को लेकर दुनिया के कई मुल्क अमेरिका और ईरान के खिलाफ खड़े हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान में एक दूसरे के लिए चेतावनियों का दौर जारी है। आयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार में ईरान के नए सुप्रीम लीडर कहीं नजर नहीं आए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुश्तबा को लेकर नया दावा किया है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उनके पास अब कोई नौसेना नहीं बची है, उनकी वायुसेना नहीं बची है, सब कुछ खत्म हो चुका है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी खत्म हो चुका है, उनके सभी नेता मारे जा चुके हैं, उनके सबसे बेहतरीन नेता मारे जा चुके हैं, खामेनेई खत्म हो चुके हैं और उनके बेटे मुश्तबा भी 90% खत्म हो चुके हैं।
3: We're here for 4 months, so I think we've done a lot. We've knocked out their navy in a period of 1 month. We knocked out their air force. Their air force is non-existent. We knocked out most of their missiles. Most of their drones. We knocked out their drone manufacturing capability about 92%. Their missile capability for manufacturing, we knocked out 89%. And they have a little capability, but they don't have any capability for us. This is almost a military skirmish.
2: इससे पहले मुश्तबा खामेनेई के नाम से शनिवार यानी 11 जुलाई को जारी एक लिखित बयान में ईरान ने पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने की कसम खाई। मुश्तबा ने कहा कि हम आपके पवित्र खून और इन दोनों युद्धों में शहीद हुए सभी लोगों के खून का बदला लेने का संकल्प लेते हैं। दुनिया भर में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बदला लेने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्द दुनिया भर के स्वतंत्र लोग इस मिशन का अपना अपना हिस्सा पूरा करेंगे। इतना ही नहीं, इस बीच मुश्तबा के दुनिया के सामने आने की खबरें भी आने लगी हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वो अली खामेनेई की शोक सभा में सबके सामने आ सकते हैं। ये मेमोरियल तेहरान में 23 जुलाई की शाम 5 बजे से 7 बजे तक होगा। इसे शहीद मुजाहिद इमाम को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जा रहा है। इसी साल 23 अप्रैल को अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें बताया गया था कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनेई अमेरिका इजराइल के उस हवाई हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे जिसमें उनके पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत हो गई थी। हालांकि वो मानसिक रूप से पूरी तरह सक्रिय हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कई ईरानी अधिकारियों के हवाले से जिनकी पहचान नहीं बताई गई कहा कि मुश्तबा खामेनेई ने फिलहाल के लिए निर्णय लेने की जिम्मेदारी रिवॉल्यूशनरी गार्ड की वैचारिक सेना के जनरलों को सौंप दी है। अखबार ने अधिकारियों के हवाले से कहा था उनके एक पैर का 3 बार ऑपरेशन किया गया है और अब उन्हें कृत्रिम पैर यानी प्रोस्थेटिक लगाए जाने का इंतजार है। उनके एक हाथ की भी सर्जरी हुई है और उसकी कार्य क्षमता धीरे धीरे वापस आ रही है। उनके चेहरे और होंठ बुरी तरह झुलस गए हैं जिससे उन्हें बोलने में कठिनाई होती है। इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के हवाई हमलों में आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद मुश्तबा खामनेई को सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के बाद से वो सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। उन्होंने कोई वीडियो संदेश भी जारी नहीं किया है। इससे इस बात को लेकर सवाल उठे हैं कि उसी हमले में वो कितने गंभीर रूप से घायल हुए थे और अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए हुई वार्ताओं में उनकी कितनी भूमिका रही है।
1: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
9: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
10: We are over, Jimmy.
11: Hey, life mein scratches to aayenge. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
12: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
13: एयू
14: सोच बदलो और बैंक भी।

0: छतरी ना खोल बरसात में,
1: आहा भीग जाने दे
0: मेरी छतरी के नीचे आजा।
1: क्यों भीगे रे सलमा खड़ी खड़ी?
0: सलमा या कमला?
1: सलमा भी थी, कलमा भी होगी, ये कमला भी होगी।
2: अरे आप कमला गाओगे,
1: मैं सलमा,
2: ये सलमा गाएंगे।
1: कोई तो आगे और पीछे होगा।
0: मैं कमला पसंद, ये सलमा पसंद। नेताओं ने मिलकर ये ट्रस्ट बनाया है जिसमें लैक ऑफ ट्रस्ट जो है आजकल सबसे ज्यादा है, तो का ही कर सकते हैं आप। और सब लोग पल्ला झाड़ रहे हैं, संघ ने इधर लेटर जारी कर दिया।

0: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
1: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
0: Smartless.
2: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
0: Marketplace.
3: Big three on the program today, or, you know, the big three of
0: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
4: We are over, Jimmy.
5: Hey, life mein scratches to aayenge. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
6: योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में चुनावी मुकाबले के लिए तैयार है। उद्घाटन, शिलान्यास और यूपी के लगभग हर जिले को नापना इस तैयारी का हिस्सा है। 2017 से पहले और अब का फर्क गिनाना योगी आदित्यनाथ का चुनावी अंदाज है। योगी की इस रणनीति के बीच बीजेपी अच्छे से जानती है कि चुनाव के लिए संगठन और समीकरण बेहद अहम है। यूपी बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करते हुए 8 प्रमुख संगठनात्मक कार्यक्रमों का रोड मैप तैयार किया है। 19 से 22 जुलाई तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। बूथों की मैपिंग कर संगठन को और मजबूत किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में बूथों की संख्या 80 से अधिक होगी, वहां नए मंडलों का गठन किया जाएगा। SIR के बाद बदले मतदाता आंकड़ों के आधार पर कई जगह बूथों और मंडलों का पुनर्गठन होगा। यूपी में चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन की रणनीति में जुलाई के पहले हफ्ते से सरगर्मी आई है, जब पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे थे। यूपी में 12 जुलाई को वृक्षारोपण कार्यक्रम का पहला चरण पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को नए सिरे से बूथ स्तर तक पहुंचाने की रणनीति बनाई जा रही है। चुनाव से पहले सभी जिलों में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। जून में बीजेपी ने यूपी की टीम भी नए सिरे से बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की टीम में 19 उपाध्यक्ष हैं, जिनमें 8 ओबीसी हैं। यूपी में संगठन को टॉप गियर में डालने का बीजेपी का ये फैसला अखिलेश यादव के दाव के बीच आया है। अखिलेश यादव जहां अपने पीडीए के समीकरण पर मजबूती से खड़े हैं, वहीं समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन जैसे आयोजन कर और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बीजेपी को घेर कर, साथ ही सनातन की बात कर बीजेपी के हिंदुत्व वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश की है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की तैयारियों के बीच असल सवाल SIR के बाद बनी परिस्थितियों का है। उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया में तकरीबन 2,04,00,000 नाम कटे और तकरीबन 84,28,000 नए नाम जुड़े। SIR पर विपक्ष के राजनीतिक विरोध के बीच पिछले साल बिहार चुनाव से राज्यों में SIR हो रहे हैं। बिहार, बंगाल, पुडुचेरी में NDA सरकारें बनी हैं, जबकि केरल में कांग्रेस और तमिलनाडु में TVK सरकार बनी है। अब सबकी निगाहें यूपी पर है। आज तक देखो।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: आज तक भर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

संसद सत्र की तैयारी के बीच गृह मंत्री से हाई प्रोफाइल मुलाकातों का सिलसिला जारी। यूपी के सीएम के बाद अमित शाह से मिले नितिन नवीन और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे। कल लखनऊ में सजेगा पंचायत, आज तक उत्तर प्रदेश का महामंच, सीएम योगी समेत राजनीतिक दिग्गज होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष की आवाज़।

दिल्ली दंगे के मामले में ताहिर हुसैन के दोषी होने पर आप और बीजेपी में ठनी। सीएम ने लगाया आप पर संरक्षण का आरोप। कपिल मिश्रा का कटाक्ष, ताहिर एक्टर, असली डायरेक्टर कोई और। खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई दर ने भी लोगों की जेबें की ढीली। जून में 9.87% पहुंची। ईंधन ऊर्जा के दामों में बढ़ोतरी का पड़ा असर। खाद्य महंगाई दर बढ़कर हुई 5.49%। और 24 घंटे में ट्रंप का यूटर्न, बोले हॉर्मुज में नहीं लगेगा 20% टैक्स। टैरिफ की जगह अमेरिका में खाड़ी देश करेंगे निवेश। ईरानी जहाजों की नाकेबंदी का ऐलान।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हनीमून पर अपने ही पति के कत्ल की आरोपी सोनम की जमानत सही है या गलत, इस पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में अब भी सुनवाई जारी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय पुलिस से पूछा कि जब उसने सोनम को गिरफ्तार किया था तब क्या सोनम को उसकी गिरफ्तारी की वजह बताई थी। अगर वजह बताई थी तो वो दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश किया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई अब 21 जुलाई को होगी। दरअसल मेघालय पुलिस की एक छोटी सी कानूनी धारा की गलती की वजह से सोनम फिलहाल जमानत पर बाहर है। सोनम जेल के बाहर आजाद रहेगी या वापस जेल जाएगी, ये वो सवाल है जिसका जवाब तलाशने में खुद देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को भी वक्त लग रहा है। 1 जुलाई को सोनम की जमानत कानूनी सवालों में लिपटकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। 3 जुलाई को तय हुआ कि इस केस को एक तारीख दो, तो 9 जुलाई को नई तारीख दी गई। पहली सुनवाई हुई। मेघालय पुलिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए, दलील दी कि मेघालय की पहले लोअर कोर्ट और फिर हाई कोर्ट ने सोनम को गलत जमानत दी है। एक धारा के टाइपो एरर की वजह से कोई जमानत का हकदार नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने दलील सुनी और फिर सोनम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा कि उसकी जमानत क्यों न खारिज कर दी जाए। 14 जुलाई को दूसरी सुनवाई की तारीख तय हुई। लगा 14 जुलाई को ही इस बात का फैसला हो ही जाएगा कि सोनम वापस जेल जाएगी या बाहर आजाद रहेगी, लेकिन दलील और बहस यहां तक पहुंच गई जहां सुप्रीम कोर्ट को मेघालय पुलिस से पूछना पड़ा कि गलत धारा छोड़िए, क्या आपने सोनम को गिरफ्तार करते वक्त उसे उसकी गिरफ्तारी की वजह बताई थी? अगर हाँ तो वो दस्तावेज हूबहू कोर्ट को दिखाइए। अब दिखाने के लिए तो वक्त चाहिए, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते का और वक्त दे दिया। कहा 21 जुलाई को दस्तावेज के साथ आइए और तब तय करेंगे कि सोनम का करना क्या है। वैसे है ना कमाल, एक हाई प्रोफाइल और बेहद चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस के मामले में आरोपी नंबर 1 सोनम 9 महीने में ही जमानत पर रिहा हो जाती है। इसी साल 27 अप्रैल को सोनम को शिलोंग की एक अदालत जमानत दे देती है। पुलिस मेघालय हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देती है, लेकिन मेघालय हाईकोर्ट भी 29 जून को अपने फैसले में सोनम की जमानत को बरकरार रखती है। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सोनम को जमानत पर बाहर आए लगभग 2.5 महीने तो हो ही चुके हैं, पर कमाल देखिए कि 2.5 महीने बाद भी ये फैसला नहीं हो पाया कि सोनम की आजादी सही है या गलत। एक साल पहले केस हुआ था, सोनम रघुवंशी केस, इंदौर की एक थी जिसने हनीमून पे अपने हस्बैंड राजा रघुवंशी को मार डाला था। उसके बाद मेघालय पुलिस ने अरेस्ट किया, 9 महीने जेल में रही। उसके बाद लोअर कोर्ट ने उसे जमानत दे दी, फिर हाईकोर्ट ने दे दी, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, पहली चीज कि एक मर्डर केस में क्या 9 महीने के अंदर जमानत देना बड़ा नॉर्मल है? नंबर 2, जो इसमें लॉजिक दिया गया वो ये कि पहले आईपीसी था, बीएनएस हो गया। बीएनएस में टोटल सेक्शन 358 है और मेघालय पुलिस की गलती से टाइपो एरर है, जो अपने एसजी साहब ने कहा, तुषार मेहता साहब ने, कि 403 लग गया, वो होना था 103। तो सिर्फ एक टाइपो एरर की वजह से कत्ल जैसे संगीन जुर्म में लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट इस तरीके से जमानत दे सकती है? गलत है। आप कैसे ले सकते?
1: गलत है। अगर आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से टाइपो मिस्टेक टू अर इज अ ह्यूमन थिंग, ये बात तो पहली है। मिस्टेक्स टू बी रेक्टिफाइड एंड नॉट टू बी रेटिफाइड। अगर ये आपका रघुवंशी के केस में अगर गलती से ये 103 बदले में 403 आप बता रहे हैं, 403 लग, तो ये मिस्टेक है, ऑनेस्ट बोनाफाइड मिस्टेक, इसको तो नजरअंदाज करना चाहिए था।
0: लेकिन कोर्ट ने कहा कि 403 है नहीं, इसका मतलब है सोनम को आपने बताया नहीं कि उसका क्राइम क्या।
1: यू आर टू टेक्निकल। अरे बाकी तो बताया होगा ना, सेक्शन में नहीं बताया होगा 403, पर बाकी तो कंटेंट तो बताया होंगे। कंटेंट तो ये है ना कि मर्डर किया, ये बताया क्या था हमने क्या नहीं।
0: वकील साहब उनके यही कह रहे हैं कि हमें तो अपने क्लाइंट का क्राइम बताया ही नहीं।
1: भाई फॉरगेट 103, ये जरूरी नहीं है कि 103 क्या 403 बताना चाहिए। अगर ये जिस बताया होगा कि आपने इसका मर्डर किया है तो मर्डर तो आ गया ना।
0: तो आपको लगता है जो 2 कोर्ट जमानत पे अभी बाहर है सोनम, क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ टाइपो एरर की वजह से वापस?
1: अगर ये आधार दिया होगा सेशन कोर्ट हाई कोर्ट ने कि टाइपो मिस्टेक 403 से है, वो तो माने ही नहीं होंगे, वो तो उन्होंने जब बेल दी, जमानत दी, तब ये लिखा होगा उन्होंने कि भाई ऐसा 403 में ऑफेंस ही नहीं, हम कैसा है इसका ग्राउंड है, दैट इज रॉन्ग।
0: दरअसल मेघालय पुलिस ने सोनम की गिरफ्तारी के बाद कत्ल से जुड़े मामले में नए नए जन्मे भारतीय न्यायिक संहिता यानी BNS की जो धारा लगाई थी वो कानून की किताब में तो छोड़िए किसी अदालत या पुलिस स्टेशन के पन्नों तक में दर्ज नहीं। यानी मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी के कत्ल के मामले में सोनम पर जो धारा लगाई उस धारा का कोई वजूद ही नहीं है। अब जब वो धारा ही नहीं है तो अदालत को कैसे पता चलेगा कि पुलिस ने सोनम को किस जुर्म में पकड़ा है, और जब पुलिस को ही पता नहीं तो पुलिस सोनम को कैसे बताएगी कि उसे किस जुर्म में उसने गिरफ्तार किया है। ये लाइनें हमारी नहीं है, ये मेघालय हाई कोर्ट ने कहा है सोनम को जमानत देते हुए। अगर अब भी आप पूरी कहानी नहीं समझ पाए तो चलिए आसान लफ्जों में समझाता हूँ। पिछले साल मई में राजा रघुवंशी के कत्ल के बाद मेघालय पुलिस ने सोनम समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें 3 किराए के कातिल थे और 1 सोनम का प्रेम। बाद में मेघालय पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की और सोनम को अपने ही पति के कत्ल के इल्जाम में आरोपी नंबर 1 बनाए। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत में मुकदमा शुरू हो गया। मुकदमा शुरू होते ही सोनम ने शिलांग की निचली अदालत में जमानत की अर्जी लगा दी। बस यहीं से खेल शुरू हुआ। असल में 1 जुलाई 2024 से देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे CRPC और IPC में बड़े बदलाव करते हुए न सिर्फ इनके नाम बदल दिए गए बल्कि बहुत सी धाराएं या तो हटा दी गई या फिर कई धाराओं को एक साथ जोड़ दी गई। अब IPC यानी इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी BNS का जन्म हो चुका था। इस BNS के तहत देश में होने वाले तमाम जुर्मों को कुल 358 धाराओं में लपेट दिया गया। यानी BNS के तहत देश में होने वाले हर तरह के जुर्म के लिए कुल 358 धाराएं हैं। अब जाहिर है आजादी के बाद से चली आ रही IPC की धाराओं की जगह जब BNS और उसकी नई धाराएं आईं, तो आम लोगों को छोड़िए खुद पुलिस और कानून के रखवालों को इसे समझने, रटने और याद करने में मुश्किलें आने लगी। मसलन पहले लोगों की जुबान पर रटा हुआ था कि IPC की धारा 300 यानी केस मर्डर का है और धारा 302 यानी कितनी सजा उस मर्डर के लिए मिलेगी। BNS में धारा 300 की जगह 100 हो गया, 101 मतलब मर्डर केस का है, जबकि BNS में 302 की जगह 103 नई धारा बनी। 103 ये बताती है कि मर्डर के लिए क्या सजा मिलेगी। सोनम के केस में गलती ये हुई कि मेघालय पुलिस ने BNS की धारा 103 यानी मर्डर के केस की जगह 403 लिख दिया। अब चूंकि BNS की धारा 358 पर आकर ही खत्म हो जाती है तो जाहिर कानून की किताब में 403 नंबर की धारा कोई हो ही नहीं सकती। बस इसी एक गलती को शिलांग की निचली अदालत ने पकड़ लिया। कोर्ट का कहना था कि जब धारा 304 है ही नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि सोनम को किस जुर्म में पकड़ा गया है। यानी इस हिसाब से सोनम का भी उसका जुर्म पुलिस ने नहीं बताया होगा। इसीलिए निचली अदालत ने इसी साल 27 अप्रैल को सोनम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म सुना दिया। जाहिर है सोनम को जमानत मिल जाना हर किसी के लिए हैरान करने वाला था, मेघालय पुलिस भी हैरान थी। इसी के बाद मेघालय पुलिस ने सोनम को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले को मेघालय हाईकोर्ट में चुनौती दी। मेघालय हाईकोर्ट में इस पर लंबी बहस हुई। उम्मीद यही थी कि हाईकोर्ट निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सोनम की जमानत खारिज कर देगी, लेकिन मेघालय हाईकोर्ट ने भी चौंका दिया।
2: Was given bail on the grounds that due to clerical error, a section, the number of the section was changed from 103 to 403. There is no 403 in the BNS, and the grounds of arrest. It is not that the grounds of arrest were not made to understand. When the transit demand was made, also the grounds of arrest were made given to understand to

0: रहे थे कि नहीं सोनम को मतलब अपन सजा दिलवा के मानेंगे, मगर वो हमारा वकील ने भी क्या करा हमको कुछ समझ नहीं पड़ रही है कि सोनम जेल के अंदर होना चाहिए तो वो बाहर कैसे मतलब वो कर रही है।
1: लगातार टीवी चैनलों पे भी आ रही है, अपना इंटरव्यू दे रही है, बोल रही है कि मैं बाहर ही रहूंगी।
0: हाँ देखो मैं वो बाहर रहने का बोल रही हूँ, मेरे को तो हमको तो कानून पे भरोसा था और कानून के भरोसे ही हम अभी तक बैठे थे कि कानून हमारा साथ देगा मतलब हमारे राजा को इंसाफ मिलेगा, मगर हमको आज तक इंसाफ नहीं मिला तो बाकी लड़के उनको क्या इंसाफ मिलेगा, जब हमको नहीं मिला तो मतलब आगे क्या हम उम्मीद रख सकते कानून से मतलब कि इंसाफ मिलेगा, क्योंकि है ना जब सोनम ने इतना बड़ा गुनाह करा उसको छोड़ दिया है तो छोटे मोटे उनको तो वैसे भी छोड़ सकती है सरकार मतलब कानून मतलब, क्योंकि हमको कानून पे अब विश्वास नहीं है, क्योंकि हमने सोचा था कि कानून हमारा साथ देगा मगर है ना कानून पे से भी हमारा विश्वास अब हटते ही जा रहा है।
1: ये बोलता है कि सोनम को जमानत नहीं मिलना चाहिए। अगर उसको जमानत दे दिए तो अभी आप सरकार पूरे ऑल इंडिया देख रहे कि लेडीज है आदमी को क्यों मार रही है। उसकी वजह से सरकार से पूछो, सरकार ने पूछा कि क्यों मार रही है, सरकार तो वहां के आँख बंद करके बैठी है। ऐसे औरतों को अगर सरकार छूट देती रहेगी तो कई पति मरेंगे, कई पति मरेंगे। तो मेरा से कहना का मतलब उसको जो जमानत नहीं, उसके रद्द करना चाहिए।
2: क्या लगता है पुलिस ने जो वहां पे कार्रवाई की है, जो केस डायरी उन्होंने पेश की
1: उसके
2: है उसमें
1: जो
2: कहीं ना
1: केस
2: कहीं
1: डायरी बनी थी 790 के चार्जशीट बनी थी, उसमें एक भी दहाड़ नहीं लगी है और सोनम बाहर आ गई है। तो जो अभी तक वो केस के जो फाइल में अभी तक यही नहीं मालूम पड़ा कि इसको किस आधार पर छोड़ा है। इसका फायदा वो सोनम उठा रही है।
3: निचली अदालत से जमानत मिलने के बाद सोनम ने शिलोंग में एक लोकल चैनल से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान सोनम के वकील भी उसके साथ थे। सुनिए जमानत पर बाहर आने के बाद सोनम ने क्या कहा।
4: आप क्या बोलना चाहते हैं, जो आपको बेल मिला है तब से क्या आप मतलब कंप्लाई कर रहे हो जो कंडीशंस कोर्ट ने रखा है?
5: हाँ, मैं हमेशा बेल कंडीशन जो मुझे मिला हुआ है यहाँ से उसको मैंने हमेशा मान्य किया है और मैं उस चीज़ को कभी नहीं तोड़ूंगी।
4: जब से बेल मिला कोर्ट से आप कहाँ रह रहे हो और आपकी खर्चा ये सब एक्सपेंसेस आप थोड़ा बता सकते हो, कैसे मैनेज कर रहे हो?
5: मैं शिलोंग में ही रह रही हूँ, मैं शिलोंग से बाहर नहीं गई हूँ और मैं खर्चे के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती हूँ, वो सब मेरा खुद का है। और मैं कहाँ रह रही हूँ शिलोंग के अंदर वो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकती, सेफ्टी रीजन की वजह से।
4: अभी ये भी है चर्चा हो रहा है कि आपकी प्लान्स है शिलोंग छोड़ने के लिए, और मतलब कोई प्लान्स है इंदौर जाने के लिए अभी?
5: नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है अभी इंदौर जाने के लिए, क्योंकि अभी मेरा केस चल रहा है यहाँ पे और जब तक वो ख़त्म नहीं होता मैं नहीं जाऊँगी। अभी ट्रायल चल रहा है और मेरा जनता से यही गुहार है और यही रिक्वेस्ट है कि वो अफवाहों में ना जाए, क्योंकि ये सब झूठ बोल रहे हैं जो भी है अभी मेरे बारे में चल रहा है वो।
4: ये भी क्वेश्चन था जो आपने ऑलरेडी जवाब दिया, फिर भी अगर कुछ और बोलना चाहते हो, जो पब्लिक ओपिनियन है आपके बारे में, आपको क्या लगता है डे वन से आपके अगेंस्ट है और आपका क्या ओपिनियन है ये पूरे इशू के बारे में?
5: मैं अभी इस चीज़ में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि अभी मेरा केस जो है वो ट्रायल में चल रहा है, तो मैं अभी इस चीज़ के लिए कुछ नहीं बोलना चाहूँगी।
4: मेरा आखिरी सवाल है, क्या क्या बोलना चाहते हो आप, जो आपकी कमिटमेंट, मैं थोड़ा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देते हैं अपने ऑडियंस के लिए, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग अबाउट योर कमिटमेंट टू कोऑपरेटिंग विद द कोर्ट प्रोसीडिंग्स?
5: हाँ, मैं हमेशा कोर्ट का जो भी फैसला है उस पर मैंने कोऑपरेट किया है और मैं आगे भी उस चीज़ के लिए कोऑपरेट करूंगी, और मुझे जो भी कोर्ट से टर्म्स एंड कंडीशन दिए थे उसको मैं मान्य करते हुए और मैं अपने न्यायालय का रिस्पेक्ट करते हुए मैं उन सारी चीज़ों को हमेशा से रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट करती थी, करूंगी, और हमेशा उन सारी चीजों के लिए मेरे लिए रिस्पेक्ट है और रहेगी।
3: हालांकि मेघालय पुलिस ने ऐलान किया है कि अब वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। मेघालय पुलिस का ये भी कहना है कि धारा लिखने के दौरान उनसे गलती जरूर हुई और बाद में उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी इस गलती को माना भी, मगर इस एक गलती के लिए सोनम के जमानत पर बाहर आने को मेघालय पुलिस गलत मानती है। आज तक ब्यूरो। सोनम की इसी आजादी के बाद से अब ये सवाल उठने लगा है कि सिया का क्या होगा? क्या बिना चश्मदीद ठोस सबूत और सिर्फ अपनी कहानी के बलबूते पुणे पुलिस सिया को सजा दिलवा पाएगी? हालांकि केतन की तरफ से

0: वरिष्ठ वकील उज्जवल निगम इस केस को लड़ेंगे, लेकिन उज्जवल निगम का कहना है कि वो इस केस की पैरवी तभी शुरू करेंगे जब चार्जशीट दाखिल हो जाएगी।
1: सोनम तो कानून की एक छोटी सी धारा की गलती से आजाद हो गई, मगर क्या सिया को पुणे पुलिस केतन के कत्ल के इल्जाम में सजा दिला पाएगी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि केतन मर्डर केस में पुलिस के पास सिवाय सिया और चेतन के बयान के ऐसा एक भी पुख्ता सबूत या गवाह नहीं है जो ये साबित कर सके कि केतन को सिया या चेतन ने धक्का देकर खाई में गिराया था। सिया और चेतन को छोड़िए, पुलिस के लिए फिलहाल यही साबित करना मुश्किल है कि केतन खुद फिसल कर अनजाने में खाई में जा गिरा या उसे धक्का देकर गिराया गया था। इस केस को कानूनी नुक्ता नजर से समझने के लिए जरूरी है कि पहले ये समझा जाए कि पुणे पुलिस के पास अभी क्या क्या है और पुलिस किन किन सबूतों को सामने रखकर मामले की जांच कर रही है। तो फिलहाल पुलिस के पास सिया और चेतन है जिनसे पूछताछ की जा रही है। इन दोनों के अलावा क्राइम सीन का रिक्रिएशन, सीसीटीवी में कैद बिना चेहरे के हुडी में चेतन, चेतन सिया के कॉल डिटेल्स, डिलीटेड मैसेज, मोबाइल डेटा और केतन चेतन और सिया के घर वालों के बयान है। पर जो सबसे अहम चीज मिसिंग है वो है चश्मदीद, यानी कोई ऐसा गवाह जिसने 18 जून की सुबह केतन को खाई में धक्का देते सिया या चेतन को देखा हो। वारदात के 12 दिन बाद भी ऐसा कोई भी गवाह अब तक सामने नहीं आया, न ही किसी के सामने आने की उम्मीद है। जिस जगह से केतन को धक्का दिया गया वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। अब बिना चश्मदीद के पुलिस क्या क्या करेगी या क्या कर सकती है? ऐसे केस में अमूमन हर पुलिस सरकमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य सबूतों को ही अपना आखिरी हथियार बनाती है, यानी हालात के हिसाब से बाकी सबूतों की कड़ियों को जोड़कर एक पूरी कहानी तैयार करना। शर्त यह है कि इस कहानी में कहीं झोल नहीं होनी चाहिए, कहानी का सिरा शुरू से आखिर तक एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। ऐसे कई केस पहले हुए हैं जिनमें बिना गवाह या ठोस सबूत के सिर्फ सरकमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर ही मुजरिमों को सजा दी गई, पर उन केसों में कहानी और कत्ल का मकसद बेहद मजबूत था। लेकिन आरोशी जैसे केस भी हुए हैं जिनमें कोई चश्मदीद नहीं था, बस कहानी ही कहानी थी, मगर उस कहानी की कड़ियां पुलिस या सीबीआई आपस में जोड़ने में नाकाम रही, जिसकी वजह से आरोशी का कातिल आज भी आजाद है।
0: जिसमें आई विटनेस नहीं है उसको आप कैसे अंजाम तक पहुंचाएंगे?
2: ये देखो, सबूत क्या है इस पे आधार पे होगा भाई साहब, मैं आज तो कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि कोई भी केस आने के बाद देखिए एकदम टारगेट फिक्स रहता है। इन्वेस्टिगेशन पेपर्स क्या है, ये जरूरी नहीं कि हर केस में कोई आई विटनेस हो या न हो। केस सरकमस्टेंशियल एविडेंस पे रहती है, कई केसेस में ऐसा है कि आई विटनेस भी रहता है पर पुलिस नहीं बताती है।
0: ओके,
2: ऐसा भी होता है क्योंकि ऐसा है कि उसके सेफ्टी के लिए अपने को मालूम नहीं आज, वी डोंट नो एनीथिंग।
1: केतन के केस में पुलिस जिस एंगल से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है उसमें सबसे जरूरी मोटिव यानी कत्ल का मकसद पहले दिन से ही एक है, और वो ये है कि सिया केतन से नहीं चेतन से प्यार करती थी और चेतन से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ केतन से उसका रिश्ता तय कर दोनों की सगाई भी कर दी। सिया और चेतन की कॉल डिटेल, मैसेज, दोनों के मिलने जुलने और कई लोगों के बयान को पकड़कर पुणे पुलिस बड़ी आसानी से चेतन और सिया के रिश्ते साबित कर देगी। शायद खुद सिया और चेतन भी अपने रिश्तों की बात कबूल कर लेंगे, मगर चेतन और सिया प्यार करते थे और सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, बस इस बात पर उसने केतन को मार डाला, इसे पुणे पुलिस कैसे साबित करेगी? 18 जून की सुबह यानी हादसे वाले दिन सिया केतन के साथ थी जब केतन खाई में गिरा। सिर्फ इस बात पर सिया को केतन का कातिल नहीं ठहराया जा सकता, वो ये कहकर बच सकती है कि लोगढ़ किला वो जाना ही नहीं चाहती थी, बल्कि उसे तो खुद केतन जिद करके अपने साथ ले गया। सिया की माँ तो इस बात के सबूत अभी से मीडिया को दिखा रही है। अब अगर कोर्ट में ये साबित हो गया कि केतन की वजह से ही सिया उस दिन पहाड़ पर गई थी, तो सिया की केतन को खाई में गिराकर मारने वाली साजिश की थ्योरी वैसे ही फेल हो जाएगी।
3: कि मम्मी जी मैं ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ,
4: तो
3: मैंने बोला कि बेटा ट्रैकिंग के लिए क्यों जा रहे हो? बोले नहीं, मेरी रात को उसकी मम्मी से बात हुई है, मैंने उसकी मम्मी जी को बताया है कि मम्मी केतन बोल रहे हैं कि चलने के लिए, पर मैंने उनको मना किया, मैंने इशारा किया कि मम्मी आप उनको मना करो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसकी जब बोल रहा है ना केतन तो जा बेटा, कुछ होगा उसके लिए सरप्राइज बर्थडे का।
4: तो केतन की मम्मी ने हाँ भर दी,
3: हाँ भरी थी, वो वीडियो कॉलिंग चालू था उनका
2: जी,
5: और मैंने
3: केतन के साथ बात चालू थी सिया की वीडियो कॉलिंग के, उस टाइम पे बीच में केतन की मम्मी राखी दीदी आए थे, तो सिया ने बोला था मम्मी जी आप उसको पूछो बोलो कि हमको ट्रैकिंग नहीं जाना है करके, पर उन्होंने बोला ठीक है बेटा उसकी इच्छा है तो चले जा।
6: पुणे पुलिस के रिक्रिएशन या डमी ट्रायल से भी न कुछ फायदा होने वाला, न नए सबूत मिलने वाले। पहाड़ी से धक्का देने की वजह से केतन गिरा या फिसलने की वजह से गिरा, दोनों सूरत में बॉडी कहाँ और कितनी दूर गिरी, ये 100% कोई भी रिक्रिएशन सच नहीं बता सकती। एक ही आदमी को अगर आप एक ही जगह से 5 बार धक्का देकर गिराएं या 5 बार फिसल कर वो खुद गिरे, तो जरूरी नहीं कि हर बार एक ही जगह पर जाकर गिरेगा। किले पर 18 जून को चेतन की मौजूदगी साबित हो भी जाए तो भी पुणे पुलिस के लिए ये साबित करना टेढ़ी खीर साबित होगी कि वो केतन को मारने के इरादे से ही वहाँ आया था। खुद केतन के पिता ने ये बात कही है कि सिया 19 जून को अपने बर्थडे से एक दिन पहले 18 जून को ये कहकर केतन को अपने साथ किले पर ले गई थी कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहती है। सिया और चेतन बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि केतन को मालूम था कि चेतन भी वहाँ आएगा, क्योंकि चेतन न सिर्फ सिया का बल्कि सिया के भाई साहिल का भी दोस्त है।
7: फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी में उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे, तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे।
6: यानी सिर्फ चेतन और सिया की दोस्ती या केतन से शादी न करने की सिया की कोशिश को केतन के कत्ल का मोटिव ठहराकर दोनों को सजा दिलाना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए केतन के कत्ल की प्लानिंग की तमाम कड़ियों को भी जोड़ना होगा। शायद पुणे पुलिस को इस बात का एहसास है, इसीलिए पुणे पुलिस खासकर सिया का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहती है, यानी उसे झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने बिठाना चाहती है। हालांकि इसके लिए पुलिस को न सिर्फ अदालत की इजाजत लेनी होगी बल्कि खुद सिया की भी इजाजत जरूरी है। और मान लीजिए लाई डिटेक्टर टेस्ट हो भी गया तो अदालत में उस टेस्ट रिपोर्ट की कोई मान्यता नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे अभी सिया या चेतन पुलिस हिरासत में जो भी बयान दे दे, चाहे अपना जुर्म कबूल भी कर ले, मगर ये कोर्ट में मान्य नहीं होगा। अलबत्ता लाई डिटेक्टर टेस्ट से कुछ नए सबूत पुलिस जरूर निकाल सकती है, यानी ये केस पुणे पुलिस के लिए इतना आसान नहीं होने वाला, खासकर बिना चश्मदीद और कत्ल के मकसद को बिना मजबूत कड़ियों के साथ जोड़े, वरना केतन की कहानी सिर्फ पुलिस और मीडिया की कहानी बनकर ही रह जाएगी। कैमरामैन गोपाल हारने और श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार बाबले पुणे आज।
0: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।
8: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
9: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today.
10: taxes and fees excluded from price guarantee.
9: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

बर्मिंघम वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। गिल, पटेल, अय्यर की बदौलत मिली शानदार जीत। 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे। संसद सत्र की तैयारी के बीच गृह मंत्री से हाई प्रोफाइल मुलाकातों का सिलसिला जारी। योगी के बाद अमित शाह से मिले नितिन नवीन और शिंदे। कल लखनऊ में सजेगा पंचायत, आज तक उत्तर प्रदेश का महामंच। सीएम योगी समेत राजनीतिक दिग्गज करेंगे शिरकत। विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष की आवाज। दिल्ली दंगे मामले में ताहिर हुसैन के दोषी होने पर आप बीजेपी में ठनी। सीएम ने लगाया आप पर संरक्षण का आरोप। कपिल मिश्रा का कटाक्ष, ताहिर एक्टर, असली डायरेक्टर कोई और। 24 घंटे में ट्रंप का यूटर्न। का हॉर्मुज में नहीं लगेगा 20% टैक्स। टैरिफ की जगह अमेरिका में खाड़ी देश करेंगे निवेश। ईरानी जहाजों की नाकाबंदी का ऐलान।

0: दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, यूबीटी के 6 बागी सांसदों के साथ अमित शाह से मिले। संजय राउत का दावा, यूबीटी छोड़ने वाले 6 सांसदों की सदस्यता होगी रद्द, राजनीतिक भविष्य होगा खत्म। महाराष्ट्र सरकार की सीएजी रिपोर्ट पर यूबीटी का हमला, आनंद दुबे बोले खाली पड़े हॉस्टल पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रही है महाराष्ट्र सरकार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवंडी में कथित अवैध स्कूल की तोड़फोड़ पर लगाई अंतरिम रोक, किरीट सुमैया ने बताया था स्कूल जिहाद। महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई, पुणे में पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से संपर्क रखने वाले 66 लोगों से पूछताछ। गुजरात की मोरबी में किसानों की बड़ी रैली, बिजली के खंभों के मुआवजे वाले सरकारी परिपत्र का बहिष्कार। आमिर खान की तीसरी शादी पर मुफ्ती का फतवा, कहा शरीयत के खिलाफ ये गुनाह। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 149वीं भव्य रथ यात्रा से पहले ग्रैंड रिहर्सल, 30,000 से अधिक पुलिस समेत सुरक्षा बल के जवान मौजूद। महाराष्ट्र के नांदेड़ में चोरी के पैसों को लेकर चोरों में बहस, 2 सगे भाइयों ने 17 वर्ष के नाबालिग की हत्या कर दी। नागपुर में महानगर पालिका के बगीचे में गांजे की खेती से हड़कंप, वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश। महाराष्ट्र के वसई में पार्किंग में खड़ी ई स्कूटर में भीषण आग, जलकर हुई खाक। पालघर में तेज हवा बनी आफत, उड़ता हुआ टिन का शेड महिला पर गिरा, खौफनाक हादसा। महाराष्ट्र के धाराशिव में दूध मिलावट का बड़ा खेल, 6 महीने में 23 करोड़ लीटर दूध में मिलावट की आशंका। नासिक में छेड़छाड़ का विरोध करने पर परिवार पर हमला, 20 किलोमीटर तक पीछा कर कार में तोड़फोड़ की, पुलिस ने 9 को गिरफ्तार किया। गुजरात के वडोदरा में बीच सड़क आवारा सांडों की लड़ाई हुई। मची भगदड़, राहगीरों में दहशत। धुरंधर के बाद बॉक्स ऑफिस पर आएगी रणबीर कपूर की प्रलय, अगले महीने शुरू होगी शूटिंग। 7 साल बाद फिर बड़े पर्दे पर गोविंदा की एंट्री, रूपा और दुनियादारी में दिखेंगे, मुंबई में दी जानकारी। तुम्बाड़ 2 में नजर आएंगी आलिया, 2027 दिसंबर में होगी रिलीज। ऑपरेशन सफेद सागर का टीजर रिलीज, करगिल युद्ध के दौरान इंडियन फोर्स के मुश्किल ऑपरेशन को दिखाएगी सीरीज। वेब सीरीज आदर्श शबाल विद्यालय का ट्रेलर रिलीज, अभिमन्यु सिंह, अर्चना पूरन सिंह, नवीन कस्तूरिया, प्रसन्ना बिष्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। मुंबई मेट्रो में हम बुलेटिन की शुरुआत इस समय एक बड़ी और अच्छी खबर से कर रहे हैं। भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम वनडे में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है और भारत ने लक्ष्य का पीछा बहुत आसानी से किया। भारत ने इंग्लैंड को 258 पर ऑल आउट किया और 4 विकेट पर 28 गेंद बाकी रहते हुए 262 रन बना लिए। इसमें भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए, वहीं प्रसिद्ध कृष्णा बरार और दुबे ने एक दो दो विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा बरार ने लिया, दुबे ने 2 विकेट लिया। बल्लेबाजी करते हुए गिल ने शानदार 75 गेंदों पर 80 रन बनाए। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने 35 रनों की बहुत शानदार पारी खेली और वॉशिंगटन सुंदर ने कमाल कर दिया, 52 रन उन्होंने बनाए। इस तरह से 28 गेंदें बाकी रहते हुए बहुत आसानी से भारत ने इंग्लैंड को पहले वनडे में हराकर 1-0 की बढ़त सीरीज में हासिल कर ली है। दिल्ली में शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह के घर पर एकनाथ शिंदे और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की बैठक खत्म हो गई है। अमित शाह से मिलने के बाद एकनाथ शिंदे बोले, ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, हमारे 6 सांसद भी हमारे साथ मौजूद है। शिंदे ने कहा कि बैठक उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों पर केंद्रित रही। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अमित शाह से मुलाकात की थी। शिवसेना उद्धव गुट के जो 6 सांसद शिंदे के साथ आए वो भी अमित शाह से मिले एकनाथ शिंदे के साथ और नितिन नवीन के घर हो रही बैठक भी खत्म हो गई।
1: मीटिंग हुई, सदिच्छा भेंट थी और अमित भाई के साथ हमारे 6 सांसद थे, उनकी बैठक हुई है, सदिच्छा भेंट थी और उनके चुनाव क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में।
2: मॉनसून सत्र फ्रूटफुल रहेगा सर, मॉनसून सत्र अच्छा रहेगा।
1: मॉनसून सत्र तो अच्छा ही है, मानसून अच्छा, आज बारिश गिरा है, अच्छी शुरुआत हुई है दिल्ली में।
2: ठीक है।
0: कल उद्धव ठाकरे ने पेपरली के विरोध में दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन को समर्थन का ऐलान किया, तो आज देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को हताश और निराश बता दिया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी बोले कि उद्धव ठाकरे युवाओं को वर्गलाकर श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसी हिंसा कराने का स्वप्न देख रहे हैं।
3: यह सच है कि पार्टी में टूट के बाद उद्धव ठाकरे के सामने महाराष्ट्र में अपना सियासी अस्तित्व बचाने की चुनौती है। इसीलिए उद्धव कभी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में मुंबई में राम रक्षा आंदोलन करते हैं, जिसके तहत उन्होंने अपने समर्थकों के साथ हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके खुद को हिंदुत्व का रक्षक बताने का संदेश दिया था। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में जंतर मंतर पर पेपर लीक केस में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक के प्रदर्शन को समर्थन देने का ऐलान करके पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की।
4: समय आया है पूरे देश में अपने अपनी पार्टी का जो एजेंडा है बाजू में रखकर हम सारे लोग इकट्ठा आकर वो जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन करें, और वो इसलिए करें क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी का एजेंडा नहीं है, अपने देश का भविष्य का विषय है, और देश के भविष्य के लिए आज जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो देश की स्थिति बड़ी बुरी हो सकती है, खराब हो सकती है। और मैं आज खुलेआम सोनम वांगचुक जी को और दीपके को मेरा समर्थन दे रहा हूं। अगर जरूरत पड़े तो मैं भी दिल्ली जाऊंगा, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से पूरे देश के जितने सारे राजनीतिक पार्टियां हैं उनको यही कह रहा हूं, आप जहां भी हो, जिस राज्य में हो, जिस शहर में हो, आप बाहर आइए और समर्थन के लिए कुछ ना कुछ जरूर करिए। मैं सारे सांसद जितने कितने 550 सबको मैं और राज्यसभा के सबको मैं ये सवाल पूछ रहा हूं या रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रिक्वेस्ट शब्द जरा अच्छा है, कि अगर आप में जरा भी इंसानियत बाकी रही हो तो आप इस आंदोलन का समर्थन करें।
3: लेकिन महायुति ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार करने में देरी नहीं की। मुख्यमंत्री फडणवीस ने उद्धव को हताश और निराश करार देते हुए राम रक्षा आंदोलन से पहले राम रक्षा के चार मंत्र सही ढंग से पढ़ने की चुनौती दे डाली।
5: देखिए, उद्धव ठाकरे जी एक हताश, निराश और फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति है। इनका राजनीति में कोई वजूद बचा नहीं है। ये जो सारी चीजें वो बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन से बोलते हैं।
3: अब उद्धव पर साझा प्रहार करते हुए शिवसेना प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि घर में बैठकर आंदोलन को समर्थन करने से अच्छा होगा उद्धव खुद आंदोलन में शामिल हो। शिंदे बोले, उद्धव अपनी सियासत चमकाने के लिए देश के युवाओं को भड़काकर श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसी हिंसा का सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा।
6: सोनम वांगचुक जी को जो सपोर्ट उबाटा ने किया है ये सिर्फ मैं कहता हूं कि एक राजनीतिक फायदा उठाने का एक कोशिश है, और मैं ये कहूंगा कि वो हमेशा कहते हैं बंगाल में ये हो गया, बांग्लादेश में ये हो गया, नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, ये ऐसे बोल बोल के यहां के युवाओं को उकसाने का काम, कोशिश ये उबाटा करती है या कांग्रेस करती है।
3: शिंदे यही नहीं रुके, उद्धव के सवाल उठाने पर उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश में हर तरफ भ्रष्टाचार था, लेकिन अब पीएम मोदी की लीडरशिप में देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है।
6: 2014 से पहले की परिस्थिति देखिए, 2014 से पहले कितने बड़े बड़े स्कैम हुए, कितने बड़े बड़े घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुए, ये यहाँ के देश के युवाओं ने देखा है अपनी आंखों से। और 2014 के बाद जैसे देश को आगे बढ़ाने का काम, पूरा जीवन समर्पित करने का काम मोदी जी ने देश के लिए किया है, इसलिए ये ऐसे परिस्थिति में कई देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खत्म है, डगमगा गई है, चरमरा गई है, ऐसी परिस्थिति में भारत देश की अर्थव्यवस्था न की मजबूत की बल्कि उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आज भारत एक विकसित भारत 2047 का सपना जो है आर्थिक महासत्ता बनाने का मोदी जी लिए हुए है।
3: लेकिन शिवसेना यूपीटी महायुति को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती।
7: लीगल बैटल चल रहा है, ये जो 6 लोग भाग कर चले गए हैं उनको इतना आसान नहीं है सर्वाइव करना, उनकी सदस्यता रद्द होने वाली है। आप देखिए, ये ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे।
3: फिलहाल जब से उद्धव के 6 सांसदों ने शिंदे कैंप का दामन थामा है, तब से उद्धव की बेचैनी साफ दिख रही है। इसीलिए उद्धव और आदित्य ठाकरे उन्हें घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और हर मौके पर उद्धव और शिंदे दोनों में खुद को बाला साहब का असली उत्तराधिकारी साबित करने की होड़ दिखती है। ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी कह रही है कि जब उद्धव का सब कुछ लुट गया तो उद्धव खुद को श्री राम भक्त सिद्ध करके अपने पाप धोना चाहते हैं।
8: राम मंदिर में हुए दान चोरी के मामले में अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में आने वाली 18 तारीख को नागपुर में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी उनके द्वारा की जा रही है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम जी। सर, उद्धव ठाकरे मुंबई में एक राम पठन कर चुके थे, अब नागपुर में भी करने वाले हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ये पार्टी का आंदोलन नहीं है, धर्म के लिए, उनका एक तरीके से धर्म की रक्षा के लिए वो सड़कों पर उतर रहे हैं।
9: ऐसा है कि बचे कुछ सांसद और विधायक और पार्षद, कब उनको छोड़कर असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के साथ चले जाए इसका भरोसा नहीं। अब सब कुछ लूट गया, सब कुछ टूट गया, बिखर गया और इसके कारण उनको हताशा निराशा उनको सता रही है, तो और लोग छोड़ करके न जाए तो उनको दिखाने का प्रयास कि देखो मेरा भगवान राम के प्रति प्रेम कायम है। कौन सा प्रेम आपका? राहुल गांधी कह रहे थे कि राम हुए ही नहीं, काल्पनिक है, तब आपकी बोलती बंद हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट में 500 वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर का फैसला आने वाला था तो ये वही कांग्रेस है जो वहां पे वकील दिए जा रही थी ताकि फैसला देरी से आए, तब उद्धव ठाकरे की बोलती बंद हो गई।
0: सरकारी पैसों की बर्बादी और कागजी खेल का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसे सुनकर देखकर आप दंग रह जाएंगे। जालना जिले में ऐसे हॉस्टल्स को लाखों करोड़ों का सरकारी अनुदान बांट दिया गया जो या तो बंद पड़े थे या फिर वहां किसी हॉस्टल का नामो निशान ही नहीं था। सीएजी की 2024 की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ। जालना जिले के 4 अनु छात्रावासों में फर्जी रिकॉर्ड के दम पर जनता के टैक्स के 1,62,00,000 रुपए डकार लिए गए। ये पूरा फर्जीवाड़ा हमारी इस रिपोर्ट में आई है, हम आपको दिखाएं।

0: सीएजी की रिपोर्ट ने महाराष्ट्र के जालना जिले के समाज कल्याण विभाग की पोल खोलकर रख दी है। यहां कागजों पर छात्र पढ़ रहे थे, बायोमेट्रिक हाजिरी लग रही थी, लेकिन हकीकत में खंडहर बन चुके हॉस्टल्स पर धूल की मोटी परत जमी थी। जालना में महात्मा ज्योतिबा फुले हॉस्टल में स्वीकृत क्षमता 38 छात्रों की थी, लेकिन निरीक्षण में इमारत जर्जर और बंद मिली। इसके बावजूद 2019 से 2024 के बीच इसे 18,10,000 का फंड जारी हुआ। जाफराबाद में राजा श्री शाहू महाराज बालिका हॉस्टल में कागजों पर 24 छात्राएं दर्ज थीं, मौके पर एक भी नहीं मिली। धूल से सने कमरों वाले इस हॉस्टल को 42,74,000 का अनुदान मिला। गोला पांगरी में नेहरू बालक हॉस्टल में भी छात्र न मिले न कर्मचारी, चारों तरफ कबाड़ का अंबार, फिर भी 31,20,000 का सरकारी फंड इसे दिया गया। बेलोरा के ज्ञानदीप बालक हॉस्टल में बायोमेट्रिक मशीनें सालों से बंद थीं, फिर भी फर्जी अटेंडेंस शीट जमा कर 16,69,000 रुपए लिए गए। सीएजी की रिपोर्ट में इस फर्जीवाड़े और जनता की गाढ़ी कमाई के दुरुपयोग का मामला एक्सपोज हुआ तो पूरे महाराष्ट्र में जालना सुर्खियों में आ गया।
1: बोले तो ये जी मुंबई वो तपासनी के लिए आए थे, इसके पहले हमने बारंबार जाके उसको तपासनी करे, तपासनी में से वो कोई बच्चे कम ज्यादा मिलते थे, लेकिन वो सब हॉस्टल चालू थे। एक लेडीज की है और 3 जेंट्स के, इसमें से एक मंठा तालुके का है, एक जाफराबाद तालुका और 2 जालना तालुके के, इसमें से प्रॉपर कोई एक था। उसका भी वो जो बिल्डिंग थी, वो इमारत थी, वो थोड़ा गिरने के लायक हो गई थी, किराए से ले हुई, उसने वो ट्रांसफर कर दिया। तो जब ये जी के लोग आ गए, जब वो वहाँ वो दिखी नहीं उनको, कम ज्यादा बच्चे उसमें थे, और मोरे साहब बोल के अपने गोला पांगरी वहाँ की भी चालू थी, लेकिन बच्चे कम थे, इसलिए उन्होंने वो दोनों तीनों पे चारों हॉस्टल पे उनको मेमो दिया और उनको मालूमत मंगाया।
0: भले ही अधिकारी अब लीपापोती और कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन इस खुलासे ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए सीधे राज्य के बजट प्रबंधन और फिजूल खर्ची पर कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
2: वाह भाई वाह, महाराष्ट्र सरकार भी गजब पैसा खर्चा करती है। एक तरफ लाडली बहनों को देने के लिए उनके पास पैसा नहीं ऐसा वो कहते हैं, और दूसरी तरफ 4 साल से छात्रों के लिए बनाई गई हॉस्टल में पैसे खर्च हो रहे हैं, वो भी 1.62 करोड़ रुपए, जहाँ छात्र रहते ही नहीं है। मतलब स्टूडेंट हॉस्टल बना लेकिन वहाँ स्टूडेंट नहीं है, फिर भी पैसे पानी की तरफ बरसाते रहो। दूसरी तरफ महाराष्ट्र पर हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, कोई सुध लेने वाला नहीं। ये तो अच्छा हुआ कैग रिपोर्ट में सब कुछ सामने आया, वरना जीवन भर पता नहीं चलता कि हमारे ही पैसों का चंपत कहाँ हो रहा है। धन्य हो महाराष्ट्र की सरकार, आपने लोगों से वादे किए थे कि आप अच्छे दिन लाएंगे।
0: बायोमेट्रिक मशीनें बंद, सीसीटीवी नदारद और बुनियादी सुविधाओं के नाम पर सिर्फ 0। जालना के इन 4 हॉस्टल्स की कहानी बताती है कैसे प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के गठजोड़ ने सरकारी खजाने को चूना लगाया। अब देखना यह है कि सीएजी की इस रिपोर्ट के बाद सरकार इन धांधली करने वाले हॉस्टल संचालकों और आंखें मूंद कर बैठे अधिकारियों पर क्या सख्त एक्शन लेती है।
3: जालना का ये हॉस्टल घोटाला सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि जनता की कमाई पर सरेआम डाका है। कागजों पर दौड़ते हॉस्टल्स और जमीन पर ताले, व्यवस्था की गाल पर करारा तमाचा है। अब देखना ये होगा कि इस कैग की चार्जशीट के बाद क्या जिम्मेदार चेहरे सलाखों के पीछे जाते हैं, या फिर हर बार की तरह फाइलें दब जाती है। जालना से मेरे सहयोगी गौरव साली के साथ कैमरा पर्सन सचिन सावंत और मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
4: वियतनाम की फू क्वोक द्वीप के पास एक दर्दनाक नाग हादसे में अपनी जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर विशेष विमान से मुंबई सोमवार रात ले आए गए। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो टर्मिनल पर शव पहुंचते ही माहौल बेहद गमगीन हो गया। एक मोबाइल कंपनी की तरफ से आयोजित डीलर ट्रिप पर 32 भारतीय पर्यटक वियतनाम गए थे, लेकिन तट से केवल 400 मीटर की दूरी पर उनकी स्पीड बोट समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों की चपेट में आकर डूब गई। मृतकों में सबसे अधिक 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद शवों को विशेष एम्बुलेंस और विमानों से उनके पैतृक गांव भेज दिया गया। एक पर्यटक की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज हो ची मिन्ह सिटी के अस्पताल में चल रहा है। मोबाइल कंपनी ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है।
5: वियतनाम में जो बोट ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद वियतनाम सरकार ने एक एरोप्लेन भेजकर जो बॉडीज हैं, क्योंकि पैसेंजर्स तो पहले ही आ गए थे, लेकिन जो बॉडीज हैं उनको यहाँ देश में भेजने के लिए उन्होंने मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यहाँ भेजा था। साथ ही कई सारे जो एम्बुलेंसेज हैं, हर्सेज हैं, उनको यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से जो हर्सेज हैं उनको ले जाया गया ताकि वियतनाम की एरोप्लेन से उनको उतार कर उन बॉडीज को यहाँ डोमेस्टिक जो डिपार्चर्स हैं वहाँ पर रखा जाए। और डोमेस्टिक की अब देख लीजिए, तकरीबन सवेरे 6 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में कई सारी जो फ्लाइट्स हैं, या चाहे वो तिरुवनंतपुरम हो या फिर कोयम्बटूर हो, चेन्नई हो, आंध्रा में हो, तो ये तमाम जगहों पे ये जो 15 बॉडीज़ हैं, बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 बॉडीज़ जो हैं वो चेन्नई भेजी जानी हैं और वहीं बाकी बॉडीज़ आंध्रा और जो तिरुवनंतपुरम है केरला, वहाँ भेजी जानी है। तो तमाम परिवारजन जो इंतज़ार कर रहे हैं अपने प्रियजनों के पार्थिव शरीरों का, उनके पार्थिव शरीरों को यहाँ इस वक्त डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे, क्या जो कार्गो टर्मिनल है वहाँ पे रखा गया है, यहाँ से उनको ट्रांसफ़र एक एक करके एक शेड्यूल बनाया गया है जिसके अनुसार ये सारी बॉडीज़ जो लोकल जहाँ पे पहुँचानी है वहाँ पे, क्योंकि लोकल स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ वो परिवारों के साथ कोऑर्डिनेशन तमाम चीज़ें एक साथ करके ये, ताकि ये जो ट्रेजेडी है उसकी जो कह लीजिए जिस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है परिवारों के ऊपर वो कम से कम हो, जो ग्रीविंग फैमिलीज हैं उनको उनके मॉर्टल रिमेन्स, जो उनके प्रियजन हैं उनके जल्द से जल्द मिल जाए, यही कोशिश फिलहाल सरकार और जो सारे लोग हैं वो इन्वॉल्व इसमें करने की कोशिश कर रहे हैं। किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।
4: महाराष्ट्र में FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मिलावटी दूध और साफ सफाई के बिना बने खाने के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रहा है। FDA के कमिश्नर IAS तुकाराम मुंडे का 25वां ट्रांसफर है और वो जहां भी जाते हैं एक्शन मोड में नजर आते हैं। मुंडे ने कहा, दूध सिर्फ खाने की चीज नहीं है, ये करोड़ों लोगों के लिए पोषण का आधार है, इसलिए दूध में मिलावट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुंडे के नेतृत्व में FDA ने गुटखा विरोधी अभियान भी शुरू किया। महाराष्ट्र में 2012 से गुटखे पर प्रतिबंध है। FDA ने पूरे महाराष्ट्र राज्य में 904 जगहों पर छापे मारे।
6: महाराष्ट्र FDA एक्शन मोड पर है, चाहे फिर गुटखा हो, दूध में मिलावट हो या फिर रेस्टोरेंट्स की साफ सफाई हो, इन सभी चीजों पर एक्शन किया जा रहा है। लाइसेंसेस सस्पेंड किए जा रहे हैं और इस वजह से कई जगहों में महाराष्ट्र में तो दूध जो है वो फेंका जा रहा है ताकि रेड से बचा जा सके। अब सवाल ये है कि ये रेड आने वाले समय में भी शुरू रहेंगी और इससे जो लोग पदार्थ खाते हैं उसके क्वालिटी पर फर्क पड़ेगा क्या? कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल का मुस्तफा शेख आज तक।
4: सांसद मिलिंद देवड़ा ने BMC को क्या दिया सुझाव, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
4: स्वागत एक बार फिर से आपका मुंबई मेट्रो में। मुंबई में शिवसेना से राज्यसभा के सांसद मिलिंद देवड़ा ने एक सुझाव दिया, BMC को उन लोगों के नाम सार्वजनिक करने चाहिए और जुर्माना लगाना चाहिए जो बार बार पब्लिक प्लेस पर टॉयलेट करते हैं, थूकते हैं, कचरा फेंकते हैं। मिलिंद ने ये कहा कि जिस तरह से असम में सार्वजनिक जगहों पर पेशाब करने वाले लोगों की वीडियोस बड़ी स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं, मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी को भी बिल्कुल वैसा करना चाहिए। मिलिंद के इस बयान पर मुंबईकर्स ने कहा कि ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
9: आपने देखा होगा कि आज की न्यूज में असम के तिनसुकिया म्यूनिसिपैलिटी ने एक बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच अपनाया है वहां के स्थानिक नागरिकों में सिविक सेंस इंस्टॉल करने के लिए। इस न्यूज को देखकर मुझे भी एक प्रकार से प्रेरणा मार्गदर्शन मिली है और मैं भी इस बात पर विचार कर रहा हूं कि क्या मुंबई महानगर पालिका, जो देश का सबसे बड़ा सबसे अमीर महानगर पालिका है, इस बात पर हम सबको गर्व है, टू मेक मुंबई अ मोर क्लीन सिटी एंड दिस कुड अप्लाई टू एनी सिटी इन द कंट्री नॉट जस्ट मुंबई, शुड म्यूनिसिपैलिटीज अप्लाई अ सिमिलर स्कीम and a similar methodology of instilling civic sense in its people. For example, जो लोग घड़ी घड़ी हर बार कचरा फेंकते हैं, public areas में थूकते हैं, who urinate in public, हमारे मुंबई में जो
10: ट्वीट करके वो स्क्रीन पे दिखाने है तो बात गलत है, वो कोई भी हो रहे दो। और मुंबई महापालिका ने जो उनका जो अधिकारी मार्ग उन कार्रवाई भी कर रहे हैं, और अभी जो शौचालय मेरे मुंबई में जो सुलभ शौचालय जैसे शौचालय लोगों के लिए वो बढ़ाने मांगते हैं, वो बढ़ाने के बाद कोई ऐसा करेगा उसको ऊपर जो दंडक उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, मगर एक ट्वीट करके दूसरों प्रदर्शन करके कुछ मतलब नहीं उसका। कौन करेगा ऐसा समर्थन, वो स्क्रीन पे दिखाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करो पुलिस का।
4: मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

आज लखनऊ में सजेगा पंचायत, आज तक उत्तर प्रदेश का महामंच। मुख्यमंत्री योगी समेत राजनीतिक दिग्गज करेंगे शिरकत। विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष की आवाज। संसद सत्र की तैयारी के बीच गृह मंत्री अमित शाह से हाई प्रोफाइल मुलाकातों का सिलसिला जारी। यूपी के सीएम योगी के बाद अमित शाह से मिले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन के दोषी होने पर आप बीजेपी में ढली। सीएम रेखा ने आप पर संरक्षण का आरोप लगाया। कपिल मिश्रा ने किया कटाक्ष। ताहिर सिर्फ एक्टर, असली डायरेक्टर कोई और। बर्मिंघम वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से धोया। शुभमन गिल, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर की बदौलत मिली शानदार जीत। 3 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे। और 24 घंटों में ट्रंप का यूटर्न। हॉर्मुज में नहीं लगेगा 20% टैक्स, टैरिफ की जगह खाड़ी देश करेंगे अमेरिका में निवेश। ईरानी जहाजों की नाकेबंदी का ऐलान।

17 जुलाई को पीएम का पंजाब दौरा, 2500 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला, स्वास्थ्य रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा। बेंगलुरु में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ का 88 वर्ष की उम्र में निधन, लंबे समय से थे बीमार। पीएम मोदी ने वरिष्ठ बीजेपी नेता गौड़ के निधन पर दुख व्यक्त किया, एक युग का अंत बताया, मजबूत स्तंभ बताया। अमित शाह ने कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया, राष्ट्र सेवा को समर्पित रहा उनका जीवन, कहा आईआईटी कानपुर की रिसर्च में खुलासा, E20 पेट्रोल से इंजन को नुकसान का सबूत नहीं, माइलेज पर 5% से कम का असर। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, हाई लेवल मीटिंग में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत। श्री राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, 22 जुलाई को नई टीम का ऐलान संभव, डॉक्टर कृष्ण मोहन बन सकते हैं महासचिव। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ बनने की होड़, अब तक हजारों लोगों ने आवेदन किया, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का नाम भी शामिल। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी आज पेश करती है कर सकती है अपनी फाइनल रिपोर्ट, तय होगी जिम्मेदारी, पैसों के लेन देन की जांच। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी बोले, स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है, चढ़ावा चोरी मामले में 3 करोड़ रुपए की चोरी का उनका अनुमान उन्होंने लगाया। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर गुरुग्राम में हंगामा, बीजेपी कार्यालय के बाहर कांग्रेसियों ने हनुमान चालीसा पढ़ा। चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कांगड़ा में कांग्रेस का प्रदर्शन, पोस्ट ऑफिस से हनुमान मंदिर तक निकाली रोष रैली। श्री राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जम्मू में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। ज्ञानवापी विवाद को लेकर वाराणसी में हुई बैठक में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने मध्यस्थता से किया इनकार, अब अदालत का मानेंगे निर्णय। मध्य प्रदेश के धार में मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज के लिए दी जाएगी भोजशाला परिसर के पास खुली जगह, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। 3 भाषा नीति पर केंद्र और एनसीईआरटी को नोटिस, सीबीएसई को 10 दिन में जवाब देने का निर्देश। सीबीएसई ने R3 भाषा असेसमेंट फ्रेमवर्क जारी किया, 10वीं में 3री भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं, स्कूल स्तर पर होगा मूल्यांकन, लेकिन 10वीं पास करने के लिए असेसमेंट क्लियर करना जरूरी। दिल्ली दंगे मामले में ताहिर हुसैन के दोषी पर आप बीजेपी में ठहरी, सीएम रेखा ने आप पर संरक्षण देने का आरोप लगाया, सीएम का आप पर हमला, बोली ताहिर ने दिल्ली में हिंसा भड़काई, दिल्ली की जनता केजरीवाल को कभी माफ नहीं करेगी, केजरीवाल संजात सिंह बाकी आप नेताओं से मांगा जवाब। मंत्री कपिल मिश्रा ने आप पर किया कटाक्ष, बोले आप सरकार ने दंगाइयों को बचाया, ताहिर तो सिर्फ एक्टर है, असली डायरेक्टर तो कोई और। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए की बड़ी बैठक, नितिन नवीन के घर पर सहयोगी दलों के नेताओं ने जीत के लिए बनाई रणनीति। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर नितिन नवीन बोले, बांकीपुर की जनता ने मुझे प्यार और स्नेह दिया, उम्मीद है अब नीरज सिन्हा को भी मिलेगा आशीर्वाद। बांकीपुर से तेज प्रताप यादव की पार्टी की प्रत्याशी वीणा मानवी का नामांकन रन, 10 की जगह 9 प्रस्तावकों ने हस्ताक्षर किए, तकनीकी खामी के चलते निर्णय। बांकीपुर प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने पर तेज प्रताप पहुंचे, बोले हमारे साथ षड्यंत्र हुआ, हम जाएंगे कोर्ट। बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, पवन सिंह मनोज तिवारी का नाम। दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, यूबीटी के 6 बागी सांसदों के साथ अमित शाह से मिले। संजय राउत का बड़ा बयान, यूबीटी छोड़ने वाले 6 सांसदों की सदस्यता होगी रद्द, बोले राजनीतिक भविष्य होगा खत्म। महाराष्ट्र सरकार की सीएजी रिपोर्ट पर यूबीटी का हमला, आनंद दुबे बोले खाली पड़े हॉस्टल पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रही है महाराष्ट्र सरकार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवंडी में कथित अवैध स्कूल की तोड़फोड़ पर अंतरिम रोक लगाई, किरीट सुमैया ने कहा था स्कूल जिहाद। महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई, पुणे में पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से संपर्क रखने वाली 66 लोगों से पूछताछ। गुजरात के मोरबी में किसानों की बड़ी रैली, बिजली के खंभों के मुआवजे वाले सरकारी परिपत्र का किया बहिष्कार। संभल में फिर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, कब्रिस्तान की जमीन पर बनी अवैध ईदगाह को किया जमींदोज। चेन्नई में सीएम विजय ने बांटे नियुक्ति पत्र, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी किया उद्घाटन। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं की होगी सघन स्क्रीनिंग, 15 जुलाई से 5 दिवसीय अभियान शुरू, लापरवाही पर तय होगी जिम्मेदारी। आमिर खान की तीसरी शादी पर मुफ्ती का फतवा जारी, गैर मुस्लिम महिला से निकाह को बताया खिलाफ, बोले ऐसा करना गुनाह। फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंगा पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर, डार्क चॉकलेट फूड कलर से बनाई लियोनेल मेसी की प्रतिमा। टेरी गढ़वाल में महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए शानदार पहल, पुलिस ने किया टीम गौरा का गठन, सेल्फ डिफेंस साइबर अपराध से बचाने की ट्रेनिंग। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से चारधाम यात्रा, 44 लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन किए, 15 लाख श्रद्धालु अब तक पहुंचे। अमरनाथ यात्रा ने बनाया रिकॉर्ड, 12 दिन में 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। पर्यटकों से गुलजार हुई चमोली की फूलों की घाटी, फूलों की घाटी में अब तक 11,000 पर्यटकों ने दीदार किया।
एक जून से पर्यटकों के लिए खोल दी गई थी फूलों की घाटी। 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच अपने चरम सौंदर्य पर होती है वैली ऑफ फ्लावर्स। मॉनसून के चलते एहतियातन पर्यटकों की सुरक्षा के लिए निर्णय, आज से 15 सितंबर तक ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग पर रोक। नेपाल में भारी बारिश से गंडक का बढ़ा जलस्तर, वाल्मीकि नगर बैराज से करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जल संसाधन विभाग के सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा, घाटों पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को हटाया गया। डीएम बोले बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में नर्मदा नदी में कूदकर डूब रही लड़की को पुलिस ने बाहर निकाला, CPR देकर बचाई लड़की की जान। दिल्ली के मयूर विहार में पत्नी की हत्या के बाद कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली और मौके पर ही मौत। पूर्वी दिल्ली में फर्जी डिलीवरी के बहाने करीब 10 लाख की विदेशी मुद्रा की लूट का खुलासा। मिर्ची स्प्रे मारकर लूटने वाले दो गिरफ्तार। द्वारका एक्सप्रेसवे टनल में अचानक जलने लगी कार, NHAI ने बताया AI स्मार्ट सिस्टम से बची बड़ी घटना, कोई हताहत नहीं। कानपुर में पारिवारिक विवाद के चलते कार्रवाई का दबाव बना रहे युवक ने थाने के भीतर खुद को आग लगा ली, बचाने में दारोगा समेत 30 पुलिसकर्मी भी झुलसे। गाजियाबाद में पिंक बूथ के पास तड़प तड़प कर घायल व्यक्ति की जान हो गई, लहूलुहान होने के बाद भी खड़ी देखती रही पुलिस वाली, वर्दी वालों की संवेदनहीनता पर उठे सवाल। महाराष्ट्र के वसई में पार्किंग में खड़े स्कूटर में लगी भीषण आग, वाहन जलकर खाक। पालघर में तेज हवा बनी आफत, उड़ता हुआ टिन का शेड महिला पर गिरा, खौफनाक हादसा। महाराष्ट्र के धारा शिफ्ट में दूध मिलावट का बड़ा खेल, 6 महीने में 23 करोड़ लीटर दूध में मिलावट की आशंका। नासिक में छेड़छाड़ का विरोध करने पर परिवार पर हमला, 20 किलोमीटर तक पीछा कर कार में तोड़फोड़ की, पुलिस ने 9 को गिरफ्तार किया। गुजरात में वडोदरा में बीच सड़क आवारा सांडों की लड़ाई से भगदड़, राहगीरों में दहशत। कौशाम्बी में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, 28 पेज का सुसाइड नोट लिखा, ससुराल वालों पर आरोप। हापुड़ में पानी की बोतल में तेजाब मिलाकर देने का मामला, 2 के खिलाफ केस दर्ज, पानी पीने से युवती की तबीयत बिगड़ी। बरेली में पुलिस ने हिरासत में आरोपी का हाथ कटा, परिवार ने प्रताड़ना के आरोप लगाए, पुलिस ने शीशे पर हाथ मारने की बात कही। मथुरा पुलिस का बड़ा खुलासा, चोरी के 2,60,00,000 रुपए नकद और 60,00,000 रुपए की ज्वेलरी बरामद, 4 गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में नशे में धुत सिपाही ने 2 लोगों को कार से रौंदा, बिना टायर के हाईवे पर दौड़ाई गाड़ी, मुकदमा दर्ज। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में लड़के से मारपीट, कपड़े उतारने का वीडियो वायरल, पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। जम्मू के राजौरी में आतंक अलर्ट, CCTV में संदिग्ध दिखने के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। पीलीभीत जिला अस्पताल में पैरामेडिकल छात्रा की हत्या, चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। महाराष्ट्र के नांदेड़ में चोरी के पैसों को लेकर बहस, 2 भाइयों ने 17 वर्ष के नाबालिग साथी की हत्या कर। नागपुर में महानगर पालिका के बागीचे में गांजे की खेती से हड़कंप, वीडियो वायरल, प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। धुरंधर के बाद बॉक्स ऑफिस पर आएगी रणवीर कपूर की प्रलय, रिपोर्ट्स के अनुसार अगले महीने शुरू हो जाएगी शूटिंग। 7 वर्ष बाद फिर बड़े पदरे पर गोविंदा की एंट्री, रूपा और दुनियादारी में आएंगे नजर, मुंबई में दी जानकारी। तुम्बाड़ 2 में नजर आएंगी आलिया, 3 दिसंबर को आएगी फिल्म। ऑपरेशन सफेद सागर का टीजर रिलीज, करगिल युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स के मुश्किल ऑपरेशन को दिखाएगी सीरीज। वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय का ट्रेलर रिलीज, अभिमन्यु सिंह, अर्चना पूरन सिंह, नवीन कस्तूरिया, प्रसन्ना बिष्ट, 24 जुलाई से होगी स्ट्रीम। बैंक ऑफ बड़ौदा के अनुसार अक्टूबर तक ब्याज दरों को नहीं बदलेगा RBI। बैंक ऑफ बड़ौदा की इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट में इस वर्ष 6.5 से 6.8% ग्रोथ रेट का अनुमान। त्योहारों पर मनमाना किराया वसूलने वाली एयरलाइंस पर कसेगा सरकार का शिकंजा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नियम बनाकर नियंत्रण किए जाने की तैयारी। RBI ने बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोकपालों को ग्राहकों की शिकायतों का तुरंत समाधान करने का निर्देश दिया, बार बार आने वाले मुद्दों पर जरूरी कदम उठाने को कहा। जुलाई के अंत तक 15,000 करोड़ रुपए जुटाने के लक्ष्य के साथ आएंगे 5 बड़े IPO, निवेशकों के लिए अच्छा मौका। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, एक औसत कार मालिक के लिए खुद माइलेज चेक करना आसान नहीं, E20 पेट्रोल विवाद के बीच ऑथराइज्ड डीलर से माइलेज चेक कराने के लिए कहा। हॉर्मुज में टैक्स वसूलने पर ट्रंप का यूटर्न, कहा हॉर्मुज में नहीं लगेगा 20% टैक्स। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने इराक के नए PM से मुलाकात की, जैदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान को चेतावनी, अगर हम पर हमला किया तो इस बार हम बहुत शक्तिशाली जवाब देंगे। ईरान पर तीसरे दिन भी अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले, किश्तद्वीप हमले में लगी भीषण आग, बंदर अब्बास में तबाही ही तबाही। ईरान के हमले में भारतीय नाविक की मौत पर विदेश मंत्रालय सख्त, ईरान में दिल्ली के डिप्टी राजदूत को बुलाया और भारतीय जहाजों पर हमले रोकने की मांग की।
ब्लैक सी में ओडेसा बंदरगाह पर यूक्रेनी जहाज पर रूस का हमला, धू धू कर जला जहाज, कोई हताहत नहीं। रूस पर 21वें दौर का प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर बटा यूरोपीय संघ, ब्रसेल्स में विदेश मंत्रियों की बैठक में नहीं बनी सहमति। दक्षिण चीन सागर पर यूरोपीय संघ के बयान से भड़का चीन, कहा साउथ चाइना सी विवाद में दखल न दे यूरोप, गैर जिम्मेदारा बयान से प्रभावित होंगे रिश्ते। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में कंस्ट्रक्शन साइट पर आग लगने से कई की मौत, 6 लोग अभी भी लापता। बढ़ती इबोला महामारी पर WHO चिंतित, कहा इबोला से निपटने के लिए फंड की भारी कमी, जरूरी बजट का आधा हिस्सा भी नहीं मिला।

नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और ब्लैक एंड व्हाइट में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और ईरान एक लंबी लड़ाई पर निकल पड़े और इस बार की लड़ाई किस हद तक जाएगी इसका किसी को अंदाजा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अगले 3 हफ्तों में ईरान पर उनका कहर बरपेगा और इसकी आग में उसके न्यूक्लियर ठिकाने भी जले।

तपेगा और इसकी आग में उसके न्यूक्लियर ठिकाने भी जलेंगे। और ईरान अमेरिका को याद दिला रहा है कि उसके ठिकानों के लिए अब उसने नई मिसाइलों की खेप तैयार कर ली है। दुनिया को लगा था कि दोनों ही देश पहले न्यूक्लियर और अब होर्मुज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सच यह है कि अब की बार की जंग दोनों देशों के बीच वर्षों पुरानी नफरत की जंग है और दोनों ही देशों ने अपनी नफरत की इस आग में शांति प्रयासों और आपसी भरोसे को जला दिया है। और इसीलिए दुनिया इस बात से डरी हुई है कि इस बार की जंग का अंत न जाने कहां जाकर होगा। इसके बाद हम राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ फॉर्मूले की बात करेंगे जो पहली बार लाया गया है। चंदा चोरी के चंपत होने की घटना के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहता है और इसीलिए अब की बार उसने ट्रस्ट के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त करने का फैसला किया है और इसके लिए बकायदा वैकेंसीज जारी की गई हैं। सवाल यह है कि क्या सीईओ की नियुक्ति से चंदा चोरी जैसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकेगी। और आखिर में हम नासिक की उस घटना के बारे में आपको दिखाएंगे जिसने टूरिस्ट स्पॉट पर जाने वाले हर एक सैलानी को डरा दिया है। सोचे किसी टूरिस्ट स्पॉट पर आप परिवार के साथ जाएं और वहां के स्थानीय मवाली महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करें और फिर जान से मारने के लिए आपकी कार का पीछा करें। यह एक ऐसी डरावनी स्थिति है जो किसी को भी दिला सकती है। नासिक के परिवार के साथ ऐसा ही हुआ है। लेकिन आज सबसे पहले यह समझने की हम कोशिश करेंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ युद्ध विराम यानी कि सीज फायर आखिर टिका क्यों नहीं। पिछले महीने 17 जून को जब अमेरिका और ईरान ने शांति समझौते के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए तो पूरी दुनिया ने यही माना कि यह युद्ध अब थम गया है। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत के लोग भी यह सोच रहे थे कि अब शायद महंगाई कम होगी और तेल के दाम भी कम हो जाएंगे और ऐसा नहीं है कि यह हो नहीं सकता था। इस एमओयू में अमेरिका और ईरान ने जिन शर्तों पर सहमति जताई थी उनके मुताबिक निश्चित रूप से हालात पूरी तरह से सामान्य होने वाले थे। लेकिन यहां दुनिया ने एक भूल कर दी। एक बात समझने में थोड़ी सी भूल की गई है। दुनिया यह नहीं समझ पाए कि अब तक ऐसा कोई एमओयू या समझौता नहीं बना है जो अमेरिका और ईरान की नफरत को कम कर दे। आप इन दोनों ही देशों के बीच में युद्ध रुकने की कल्पना तो कर सकते हैं लेकिन यह उम्मीद करना शायद गलत होगा कि अमेरिका और ईरान की नफरत कम होगी। नफरत कम होगी और असल में इसी नफरत की तपिश आज पूरी दुनिया महसूस कर रहे हैं। यानी अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर मुश्किल सिर्फ इसलिए नहीं है कि दोनों देशों के हित टकराते हैं, असली वजह यह है कि दोनों देशों के बीच में नफरत की एक लंबी विरासत और भरोसे का एक गहरा संकट है। और आज सबसे पहले हम आपको इसी के बारे में बताना चाहते हैं। साल 1979 से पहले तक अमेरिका और ईरान गहरा दोस्त दोनों हुआ करते थे। दोस्ती भी ऐसी थी कि ईरान में पहलवी वंश के राजा अमेरिका को कभी नाराज नहीं करते थे और एक दूसरे को अपना असली सहयोगी मानते थे। ये तस्वीरें साल 1972 की हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। अब जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनकी पत्नी पैट निक्सन तेहरान में पहुंचे थे उस वक्त एयरपोर्ट से लेकर आज के आजादी टावर तक उनका भव्य काफिला निकला था और ईरान के लोगों ने बड़ी संख्या में सड़क के दोनों ओर खड़े होकर उनका शानदार स्वागत किया था। सोचिए एक वो दौर था जब अमेरिका के राष्ट्रपतियों का स्वागत करने के लिए ईरान की सड़कों पर लोग थे, बड़ी संख्या में जाया करते थे और एक आज का ईरान है जहां पर सड़कों पर आने वाली भीड़ अमेरिका के खिलाफ डेथ टू अमेरिका के नारे लगा रही है। और इस बदलाव और नफरत के पीछे सबसे बड़ा कारण है ईरान की इस्लामिक क्रांति। यह क्रांति साल 1979 में हुई और इसके पीछे एक बड़ा कारण यह था कि जब ईरान में पहलवी वंश का शासन था तब मुस्लिम धर्मगुरुओं को चिंता हुई कि ईरान के शाह उनके देश को व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि सफेद क्रांति की तरफ धकेल रहे हैं। यह चिंता पैदा हुई। इसका मतलब यह था कि जो ईरान इस्लाम धर्म को मानता है वहां पर अमेरिका की संस्कृति फैलने से इस्लाम धर्म के तौर तरीके खत्म हो रहे हैं। जब यह बात वहां आम लोगों तक पहुंचे तो ईरान के शाह के खिलाफ गुस्सा तेजी से बढ़ने लगा क्योंकि ईरान के शाह अमेरिका के बेहद करीब थे, उनके संबंध बहुत अच्छे थे। इसीलिए यहीं से ईरान के लोगों में अमेरिका के खिलाफ नफरत पैदा होनी शुरू हो गई और धीरे धीरे एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ कि ईरान के लोग यह सोचने लगे कि अगर वो अपने शाह यानी कि राजा को हटाएंगे तो अमेरिका भी उनके देश से अपने आप हट जाएगा। इसी के बाद साल 1979 में ईरान में इस्लामिक शासन आ गया और इसी दौरान कुछ छात्रों ने ईरान में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को बंधक बना लिया। पूरी दुनिया में खबर छाई। उस वक्त भी अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपरपावर मानता था, शक्तिशाली मानता था और जब

की धमकियों के बाद भी ईरान ने उसके नागरिकों को रिहा नहीं किया तो ये नफरत और ये कड़वाहट काफी ज्यादा बढ़ गए और अब स्थिति यह है कि ईरान के अपने आंतरिक मुद्दे चाहे जो हो, जब बात अमेरिका की आती है तो ईरान की इस्लामिक सरकार और लोग उसे एक दुश्मन के रूप में ही देखते हैं और यही वजह है कि जब भी दोनों ही देशों के बीच में सीज फायर की बात होती है तो सवाल सिर्फ हथियार रोकने का नहीं होता बल्कि यह होता है कि क्या सामने वाला अपने वादे पर कामयाब रहेगा, क्या वो अपने वादे पूरे करेगा। समस्या यह है कि दोनों ही देशों के अनुभव उन्हें यही सिखाते रहे हैं कि भरोसा करना महंगा पड़ सकता है। अमेरिका को लगता है कि ईरान बातचीत के साथ साथ अपने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय नेटवर्क को लगातार आगे बढ़ाता रहेगा। दूसरी ओर ईरान का मानना है कि अमेरिका सरकार बदलते ही किसी भी समझौते से पीछे हट सकता है, जैसा कि परमाणु समझौते के मामले में हुआ था और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा सरकार में हुए समझौतों को रद्द कर दिया था। यानी कि यहां पर युद्ध सिर्फ मिसाइलों का नहीं, यादों का भी है और दशकों पुराने अविश्वास ने हर नई बातचीत को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है। यही कारण है कि अमेरिका और ईरान के बीच में होने वाला कोई भी सीज फायर अक्सर स्थायी शांति नहीं बल्कि अस्थायी विराम बनकर ही रह जाता है। दोनों देश गोलीबारी रोक सकते हैं लेकिन एक दूसरे पर ये शक करना नहीं छोड़ते हैं और आपको पता ही होगा कि जब रिश्तों की नींव भरोसे पर नहीं बदले डर और शक पर खड़ी हो तब युद्ध खत्म होने के बाद भी शांति शुरू नहीं होती। ऐसे में सीज फायर कागज पर तो लिखा जा सकता है लेकिन जमीन पर उसे निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है और इस बार भी यही हो रहा है। आप खुद देखिए कि अमेरिका और ईरान ने कैसे एक दूसरे पर हमले किए हैं।

शुरुआती हमलों के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका और ईरान इस सीज फायर को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक उसने लगातार तीसरी रात ईरान पर अपने हमलों को जारी रखा और ये हमले पूरे 5 घंटों तक किए गए। इनमें ईरान के बुशेहर प्रांत, चाबहार पोर्ट, जास्क, कोनारक, अबू मूसा द्वीप और बंदर अब्बास पर मिसाइलें दागी गई। हम मैप में भी आपको दिखा रहे हैं। जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर कंगान, किश द्वीप और किश्म द्वीप जैसे इलाकों में भी धमाकों की खबरें आई हैं और ये हमले इसलिए किए गए ताकि ईरान की रक्षा प्रणाली, मिसाइल लॉन्च साइट, ड्रोन बेस और समुद्री हमले की क्षमता को कमजोर किया जा सके। यानी जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर अपने हमले क्यों जारी रखे हैं, तो इसका जवाब यह है कि अमेरिका ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना चाहता है और इसीलिए लगातार हमले कर रहा है। उसका मकसद यह है कि जब वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करे या वहां से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा दे, तो ईरान उस पर कोई भी पलटवार ना कर पाए, कोई हमला ना कर पाए। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने 50,000 से ज्यादा सैनिकों को मिडिल ईस्ट में तैनात करके रखा है और एक नए वीडियो में यह बताया गया है कि अमेरिका ने पहली बार इस युद्ध में सी ड्रोन का इस्तेमाल किया है। जी हां, सी ड्रोन का। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब यह लड़ाई आसानी से रुकने वाली नहीं है और अब ईरान भी आज रात नए हमले कर सकता है।

0: अब ये देखिए कि अमेरिका ने जिस सी ड्रोन का पहली बार इस युद्ध में इस्तेमाल किया उसे गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है। इस सी ड्रोन का नाम है कोर्सेर और इसे अनमैन्ड सर्फेस वेसल भी कहा जाता है। ये एक समुद्री पोत या बड़ी नाव जैसा होता है, इसमें कोई सैनिक नहीं होता, कोई भी सैनिक नहीं। इसकी जगह इस सी ड्रोन को रिमोट से कंट्रोल किया जाता है और तय लक्ष्य पर पहुंचाने के बाद इसमें विस्फोट करके सैन्य ठिकानों को, जरूरी ढांचों को नुकसान पहुंचाया जाता है। और अमेरिका का दावा है कि कल रात के हमले में उसने बिल्कुल ऐसा ही किया, और क्यों किया अब वो भी देखिए। तो पहला, इस तरह की सी ड्रोन से हमला करने में जोखिम बहुत कम होता है, और दूसरा, इसकी पहचान करना भी आसान नहीं होता है। इसकी लंबाई सिर्फ 24 फीट यानी कि 7.3 मीटर की होती है, यानी कि जितना लंबा एक ट्रक होता है उतने ही लंबे ये सी ड्रोन होते हैं। और इससे भी बड़ी बात क्या है, इससे भी बड़ी बात यह है कि इन्हें 1000 पाउंड यानी 454 किलोग्राम विस्फोटक से लादा जा सकता है। अब इनकी मारक क्षमता जाने, इनकी मारक क्षमता 1850 किलोमीटर होती है, और ये सी ड्रोन ज्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। एक कोर्सेर सी ड्रोन की कीमत $1 मिलियन यानी कि लगभग 9.5 करोड़ रुपए होती है। और यही वजह है कि इस बार अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। 7 अप्रैल से पहले हुए युद्ध में अमेरिका ने महंगे हथियारों का इस्तेमाल किया था, महंगे, लेकिन अब वो सस्ते हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अमेरिका स्मार्ट वॉर लड़ना चाहता है। स्मार्ट वॉर जो अब तक ईरान से लड़ा था, और ईरान की तरफ से ये स्मार्ट वॉर अब तक लड़ी जा रही थी। ईरान ने अब तक अपने शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया था जिनकी लागत लगभग 40 लाख रुपए माने जाते हैं, और इस रणनीति से ईरान को अमेरिका पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली। लेकिन अब अमेरिका भी बिल्कुल यही कर रहा है जो ईरान कर रहा था। और अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है अब वो भी आपको दिखाते हैं। अमेरिका का पहला मकसद है ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से खत्म करना, और दूसरा मकसद है स्ट्रेट ऑफ फॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही को पूरी तरह से सामान्य बनाना। अमेरिका और ईरान के बीच में जिस MOU पर सहमति बनी थी उसमें भी ये दोनों शर्तें शामिल थी, लेकिन इसके बावजूद ये युद्ध फिर से शुरू हुआ। और इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि ईरान पर आरोप है कि उसने होर्मुज में कुछ जहाजों पर हमले किए। अब जब ये हमले हुए तो अमेरिका ने कहा कि ईरान तो समझौते का पालन नहीं कर रहा है, और इस वजह से वो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तो करेगा ही। बड़ी बड़ी बातें भी अमेरिका की तरफ से होने लगे, और उसके बाद तो अटैक ही कर दिया गया। तो जब पहले दिन अमेरिका की तरफ से ये हमले हुए तो इनका मकसद होर्मुज में नियंत्रण तक सीमित था, कंट्रोल करना सीमित था। लेकिन जो बात है वो अब आगे निकल गई है, मतलब अब यह हो रहा है कि अमेरिका इस युद्ध को ईरान की परमाणु क्षमता खत्म करने का एक दूसरा मौका मान रहा है, जिसके संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान के पिकेक्स माउंटेन को भी निशाना बनाएगा, और ईरान इसके लिए तैयार रहे। अब आप पूछेंगे कि यह पिकेक्स माउंटेन क्या है, तो इसका जवाब यह है कि इस युद्ध की सबसे बड़ी जड़ यही पहाड़ी है, ईरान। इसका एक खास नाम है जिसे कूहे कोलांग गजला कहते हैं। यह ईरान के नतांज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर जागरूस पर्वत में मौजूद है, और जागरूस माउंटेन वही पर्वत श्रृंखला है जिसने ईरान को कई युद्ध जिताए हैं, क्योंकि इन पहाड़ियों के अंदर बने हुए सैन्य और परमाणु ठिकानों तक कोई भी बम नहीं पहुंच सकता। इसीलिए दावा है कि ईरान ने अपने 400 किलो यूरेनियम को बिल्कुल इसी ठिकाने पर छिपाया हुआ है। ईरान का यह परमाणु ठिकाना फोर्डो से ज्यादा गहरा है और ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, और यहां पर अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उसने बंकर बस्टर बॉम्ब 300 फीट अंदर तक परमाणु ठिकाने तक उसके पहुंच नहीं सकते हैं। अमेरिका और इसराइल दोनों ही देश ये मानते हैं कि ईरान इस परमाणु ठिकानों को बीमा पॉलिसी की तरह इस्तेमाल कर रहा है, यानी बड़े परमाणु ठिकाने नष्ट होने के बाद उसने अपने यूरेनियम को इस जगह पर सुरक्षित कर लिया है जहां पर सिर्फ बम गिराने से बात बनेगी नहीं, यानी कि अमेरिका को इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। बम गिराकर अमेरिका इस परमाणु ठिकानों की एंट्री और एग्जिट को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर उसे यहां पर छिपा हुआ ये यूरेनियम हासिल करना है तो उसे अपने सैनिकों को इस पहाड़ी पर उतारना ही होगा, और ये मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं होगा।
1: Thank you. Great speech, Mr. President. Go get Pickaxe Mountain and don't keep the speaker waiting. I appreciate your time, sir.
2: Okay, and we will do that. We're going to take out Pickaxe Mountain. Tell the Iranians to be ready.
1: I will.
2: Let them know
1: did.
2: We're coming, okay? There's not you a damn did. Thing they can do about it. All right. Thank you, sir.
0: अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी बहरीन और जॉर्डन में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी। इनमें वेपन्स सपोर्ट डिपो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर, अमेरिकी सैनिकों के घर और कई सैन्य रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया है। और यहां पर ईरान एक नई धमकी भी दे रहा है। उसने कहा है कि अब एक के बदले वो दो रणनीति पर काम कर रहा है, यानी कि ईरान हर एक ठिकाने पर हुए हमले के बदले अमेरिका के दो ठिकानों पर हमले कर रहा है। ये उसकी रणनीति है। और ईरान का दावा है कि उसने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के फिफ्थ फ्लीट के मुख्यालय को निशाना बनाकर इसकी शुरुआत भी कर दी है। और जॉर्डन में भी उसने एक अमेरिकी एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है।

0: ईरान ने अमेरिका के जितने भी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागे उन सब पर कोई ना कोई संदेश लिखा गया था। जैसे प्रेस टीवी द्वारा जारी किए गए इन वीडियोस में मिसाइलों पर लिखा गया था कि हम युद्ध के मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ईरान ने पहली बार अपनी इन मिसाइलों पर ऐसे संदेश लिखे हैं। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ईरान लगातार अपनी मिसाइलों को दागने से पहले उन पर कोई ना कोई संदेश जरूर लिखता है। और ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं किया जा रहा है, इनका मकसद है, जी हां, मकसद है अमेरिका और इसराइल को शर्मिंदा करना। कारण यह है कि पहले मिसाइलों पर संदेश लेकर उन्हें दागने की परंपरा अमेरिका और इसराइल ने ही आगे बढ़ाई थी। अगर आप दूसरे विश्व युद्ध की इस तस्वीर को देखेंगे तब अमेरिका ने अपने बॉम्ब पर संदेश लेकर उन्हें जर्मनी के खिलाफ इस्तेमाल किया था। इनमें भी इस बॉम्ब पर अमेरिकी सैनिकों ने लिखा था ईस्टर एक्स फॉर हिटलर। ये मैसेज आप देख रहे हैं। बाद में जब इसराइल ने भी गजा, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, इराक और ईरान पर हमले किए तब उनमें भी अपनी मिसाइलों पर इसराइल ने बिल्कुल इसी तरह के संदेश लिखे। और अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो साल 2006 में जब इसराइल ने लेबनान पर मिसाइलें दागी तो उन पर इसराइल के छोटे छोटे बच्चे संदेश लिख रहे थे। और बाद में इन्हीं मिसाइलों से लेबनान में जमकर कहर बरपाया गया था। यानी कि पहले अमेरिका और इसराइल ने अलग अलग युद्धों में इस रणनीति को अपनाया और अब ईरान भी यही कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि यह परंपरा अमेरिका और इसराइल ने ही शुरू की हो। आज से 2500 साल पहले जब यूनानी सैनिक स्लिंग यानी कि गुलेल नाम के हथियार चलाते थे तब उनमें शीशे की गोली को रखा जाता था। उस वक्त ये गोली या पत्थर बहुत तेज गति से जाकर दुश्मन को घायल कर सकते थे और इनका इस्तेमाल पैदल सेना या घेराबंदी में होता था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तब शीशे की इस गोली को दागने से पहले उस पर ग्रीक भाषा में कुछ संदेश लिखे जाते थे जिनका अर्थ होता था लो इसे या ये लो आर। ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी एक ऐसी शीशे की गोली रखी हुई है जो 2400 साल पुरानी है और जिससे यह पता चलता है कि आज ईरान जिन मिसाइलों पर संदेश लिखकर दाग रहा है वो रणनीति कोई नई रणनीति नहीं है और इसका मकसद होता है दुश्मन को डराना, अपनी पहचान दिखाना और युद्ध में आत्मविश्वास पैदा करना। और अभी ईरान अपने मिसाइलों पर बिल्कुल इसी तरह के संदेश लिखकर यही मैसेज देने का प्रयास कर रहा है। इस युद्ध का एक और बड़ा कारण है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो आप लगातार सुन रहे हैं। ईरान का कहना है कि होर्मुज पर उसका कानूनी अधिकार बनता है और इसीलिए होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से सिर्फ वही टोल वसूली करेगा, यानी कि सिर्फ ईरान ही टैक्स लेगा। जबकि अमेरिका का कहना है कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा सिर्फ वही दे सकता है। और इसी आधार पर राष्ट्रपति ट्रंप होर्मुज में अब हर जहाज से 20% टैक्स यानी कि शुल्क लेने की बात कर रहे हैं और अभी इस पर खूब विवाद हो रहा है। और इसी विवाद के बीच में ईरान ने यूएई से आ रहे दो जहाजों या टैंकरों पर होर्मुज में हमला कर दिया है। यह एक बहुत चिंताजनक खबर है। इनमें एक टैंकर का नाम बुम्बासा है और दूसरे का नाम अल बहिया है। यह हमला उस समय हुआ जब ये दोनों ही टैंकर होर्मुज के दक्षिणी शिपिंग लेन से गुजर रहे थे जो कि ओमान तट के बेहद नजदीक है, करीब है, यानी कि ये ईरान के तट से नहीं जा रहे थे, जिसके जो है कारण हो सकता है कि ईरान ने इन पर हमला किया, बिल्कुल उसके तट से नहीं जा रहे थे। ईरान ऐसा इसलिए भी कर सकता है क्योंकि अगर ये जहाज उसके इलाके से गुजरेंगे तो वो इनसे टोल की मांग कर सकेगा और अगर ऐसा नहीं होगा तो होर्मुज में उसका नियंत्रण कमजोर होगा। और आरोप है कि इन्हीं वजहों से जब यूएई से आ रहे दो टैंकर होर्मुज को पार कर रहे थे तब उन पर हमला हुआ। और यह हमला इसलिए भी चिंता पैदा करने वाला है क्योंकि इनमें एक टैंकर में भारतीय नाविक सवार थे जिनमें से एक नाविक की मौत हो गई है और 8 नाविक गंभीर रूप से घायल हो गए जिनमें से 6 भारत के हैं। जी हां, 6 नागरिक इनमें भारत के हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब अमेरिकी हमलों में हमारे नाविक मारे गए थे तब तो इन पर खूब राजनीति हुई, खूब हंगामा हुआ, लेकिन जब ईरान के हमलों में आज हमारा एक नाविक मारा गया तो इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, कोई ज्यादा सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि ईरान ऐसा कैसे कर सकता है। हालांकि इस हमले को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजनयिक को तलब किया है और इस घटना पर भारत ने गहरी नाराजगी जताई है। यहां पर सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी उठता है जो ये कहते हैं कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल देने की मांग कर रहे हैं कि अमेरिका ही उन्हें सुरक्षा की गारंटी दे सकता है, जबकि सच यह है कि अमेरिका की मौजूदगी में, जी हां, अमेरिका की मौजूदगी में लगातार होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमले हुए हैं और अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाया।
1: I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping. For instance, you look at the five countries. You have Saudi Arabia, you have UAE, you have Qatar, or Qatar, as I always say, you have Qatar, Bahrain, and by the way, you have others. You have Kuwait, and you have others, and they will do very well. But we think it's appropriate that we don't need them. You know, we have more oil than any other country in the world. When you add Venezuela, which has been amazing, which has tremendous amounts of oil that we control.
0: ये सवाल कई लोग पूछते हैं कि जिन जहाजों पर दूसरे देशों का झंडा होता है उनमें भारतीय नाविक क्यों सवार होते हैं. आपसे भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे सवाल पूछे होंगे. तो ऐसे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि इस वक्त दुनिया के हर पांच नाविकों में से एक नाविक भारत का ही है. 16 साल पहले साल 2010 में भारत के कुल नाविकों की संख्या 62,267 थी, लेकिन साल 2024 में यही नाविक 3,23,000 हो गए. यानी 15 सालों में इनकी संख्या 5 गुना बढ़ गए. और आज पूरी दुनिया में 18,90,000 नाविक काम करते हैं. इनमें 3,23,000 नाविक हमारे देश यानी भारत के हैं, और फिलीपींस और चीन के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा नाविक भारत के हैं. साल 2024 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि हमारे जो कुल नाविक हैं उनमें 90% विदेशी झंडे वाले जहाजों पर काम कर रहे हैं. और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछले महीने फ्रांस में राष्ट्रपति से मिले थे, डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, तब उन्होंने नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उनके सामने उठाया था. और यह मुद्दा हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब भी भारत के झंडे वाले 7 जहाज होर्मुज के उस पार फारस की खाड़ी में मौजूद हैं, जिनमें हमारे 148 नाविक फंसे हुए हैं. लेकिन अमेरिका और ईरान के युद्ध के कारण इन भारतीय नाविकों की सुरक्षा इस समय खतरे में है. ऊपर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर भी अड़ गए हैं कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से 20% टोल चाहिए, और यह पैसा कम नहीं है, यह पैसा बहुत ज्यादा है. इस युद्ध से पहले हर दिन 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरता था, जिसकी कीमत आज के हिसाब से 15,380 करोड़ रुपए होती है. अगर इस पर अमेरिका 20% टोल लेता है तो उसे प्रतिदिन 3,076 करोड़ रुपए मिलेंगे. और यह पैसा इतना ज्यादा है कि इससे सिर्फ 4 दिन के टोल से अमेरिका एक बुर्ज खलीफा बनाने के बराबर पैसा कमा लेगा. और यह टोल इतना ज्यादा है, यह टोल इतना है कि इससे हर दिन एक राफेल लड़ाकू विमान खरीदा जा सकता है हर दिन. और यही कारण है कि ईरान कह रहा है कि अमेरिका को ऐसा करने की इजाजत नहीं है, और वो अमेरिका से भी कम टोल होर्मुज में लेगा. अब यहां पर आप यह भी देखिए कि इस युद्ध से पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला ही हुआ था. वहां से गुजरने वाले जहाजों पर ना तो कोई भी टोल लगता था, ना ही उन पर कोई भी वहां हमला होता था. लेकिन अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद आज स्थिति यह है कि जब अब ये युद्ध होर्मुज को खुलवाने के लिए ही लड़ना पड़ रहा है, और इससे यह भी पता चलता है कि इस युद्ध से अमेरिका ने दुनिया को सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही दी हैं. हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि होर्मुज का इतिहास कहता है कि यहां जितने भी युद्ध लड़े गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लेकर आए हैं. माना जाता है कि होर्मुज ये नाम पारसी धर्म के भगवान अहुरा माज़दा से लिया गया है. अहुरा माज़दा का अर्थ होता है ज्ञान का स्वामी यानी लॉर्ड ऑफ विजडम, और इसी नाम से मौजूदा ईरान में प्राचीन शासकों के नाम जुड़े. होर्मुज द्वीप का नाम पड़ा, और होर्मुज नमक संरचना यानी होर्मुज सॉल्ट फॉर्मेशन की नींव पड़ी, और इसी होर्मुज ने फिर से कई युद्ध देखे भी, बार बार वहां पर युद्ध होते रहे. इनमें 1507 में पुर्तगाल ने होर्मुज पर कब्जा किया. उस वक्त 16वीं सदी में यूरोपीय ताकतें एशिया के व्यापार पर कब्जा करना चाहती थी, जिसके बाद पुर्तगाल के समुद्री यात्री अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत पहुंचे, और रास्ते में होर्मुज द्वीप पर उन्होंने कब्जा कर लिया. उस वक्त पुर्तगाल ने भी वहां पर किला बनाया और होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूला. करीब 1 सदी तक पुर्तगाल ने इस इलाके पर अपना कंट्रोल, अपना प्रभाव बनाए रखा. लेकिन 1622 में फारस के शाह अब्बास प्रथम और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से पुर्तगालियों को यहां से बाहर कर दिया गया. फिर साल 1951 आया. साल 1951 में ब्रिटेन ने ईरान को दबाने की कोशिशें की. उस वक्त ब्रिटेन की कंपनी एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी ईरानी तेल पर कड़ा नियंत्रण रखती थी, और ईरान इस पर काफी ज्यादा नाराज भी था, एतराज जताता था. 1951 में ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक ने कहा था कि तेल हमारा है, फायदा भी हमें ही मिलना चाहिए. उन्होंने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया. लेकिन इसके जवाब में ब्रिटेन ने ईरानी तेल निर्यात रोकने की कोशिशें की, भरसक प्रयास किया, और अबादान बंदरगाह की नाकेबंदी कर दी. ठीक उसी तरह जैसे आज अमेरिका ईरान की नाकेबंदी कर रहा है। सोचने वाली बात यह है कि उस वक्त ब्रिटेन की नाकेबंदी को हटाने वाला देश कोई और नहीं था बल्कि अमेरिका था, और आज यही अमेरिका इसी ईरान को धमकियां दे रहा है और उसी ईरान से युद्ध लड़ रहा है। ईरान और इराक के बीच जब 1980 से 1988 के बीच में युद्ध लड़ा गया, तब भी दोनों ही देशों ने एक दूसरे के तेल जहाजों पर खूब बारूद बरसाया। तब इसे टैंकर वॉर कहा गया। इसमें ईरान ने समुद्र में सी माइंस बिछाए और बाद में अमेरिका का उससे बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। फिर साल 2012, 2015, 2024 में भी बिल्कुल इसी तरह की घटनाएं हुए, और अब साल 2026 में ईरान और अमेरिका के बीच में होर्मुज को लेकर काफी ज्यादा तनाव है, गतिरोध लगातार बना हुआ है। स्थिति यह है कि ईरान ने होर्मुज से टोल वसूलने के लिए आज अपनी ही संसद में एक प्रस्ताव को पास करा लिया।

हालांकि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहाजों से 20% टोल वसूलने के प्रस्ताव को वापस ले लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है, शायद कई लोग इसमें राहत भी देख रहे होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि भाई 20% हम टैक्स लेंगे, और टैक्स क्यों लेंगे, क्योंकि हम आपको सुरक्षा देंगे। आपको सुरक्षा देने में हमारा भी तो पैसा खर्च होगा ना, कि अमेरिका का पैसा खर्च होगा, तो उस पैसे को हम आप ही से वसूलेंगे। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले के बयान, और अब एक बड़ी खबर यह है कि वसूली का प्रस्ताव वापस ले लिया गया। अब आप कुछ तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें जो कि यमन से आए हैं, और यमन में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया है। आप जान रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि ये जश्न किस चीज का मन रहा है, क्यों मनाया जा रहा है? ये जश्न है सऊदी अरब पर हमले का, जो हूती के लड़ाकों ने किया है। और अब ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब और ईरान के प्रॉक्सी संगठन हूती के बीच में भी एक नया युद्ध छिड़ सकता है। युद्ध का कारण है ईरान की एयरलाइन का एक विमान जो हूती नियंत्रण सना एयरपोर्ट पर पहुंचा था। दावा यह है कि इस विमान में हूती का एक प्रतिनिधिमंडल आयातुल्ला खामिनेई के नमाज जनाजे से वापस यमन लौट रहा था, लेकिन दक्षिणी यमन में मौजूद सऊदी अरब के समर्थन वाली सरकार को लगा, उनको लगा कि ईरान इस विमान के जरिए हूतियों को हथियार भेज रहा है, और इसी शक के आधार पर यमन के सना एयरपोर्ट पर उसने हमला कर दिया। और जब हमला हुआ तो हूती ने कहा कि यह हमला सऊदी अरब ने किया है, और इसीलिए हूती ने भी सऊदी अरब पर मिसाइलें दाग दी, जिससे युद्ध का एक नया मोर्चा खुल गया है। लेकिन इसमें बड़ी बात समझने की यह है कि जो मिडिल ईस्ट में मुस्लिम वर्ल्ड है, यानी कि मुस्लिम जनसंख्या है, उसे अब तक काफी एकजुट माना जाता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि इस्लामिक ईरान पड़ोस के मुस्लिम देशों पर बम बरसा रहा है। जिस सऊदी अरब में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, उस पर मुस्लिम देश यमन का हूती संगठन हमले कर रहा है, और इन सारे हमलों में यही दिखता है कि मुस्लिम देशों के बीच में भी नफरत कम नहीं है, और यह नफरत इन लोगों के जश्न में भी दिखाई देती है। जब टीवी पर लोग युद्ध देखते हैं तो वो उनके लिए सिर्फ एक खबर होती है, लेकिन हकीकत में ऐसे युद्ध आपकी जेब और आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है, और इस युद्ध में भी बिल्कुल यही हो रहा है। अब हम आपको ये बताएंगे कि ये युद्ध कैसे आपके रसोई तक पहुंचने वाला है, और इससे पेट्रोल डीजल की कीमतें भी प्रभावित हो सकती हैं। पिछले महीने शांति समझौता होने के बाद एक बैरल कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $70 का हो गया था, और ये कीमतें युद्ध से पहले के स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन दोबारा युद्ध शुरू होने के बाद ब्रेंट क्रूड में एक बैरल तेल $85 तक पर पहुंच गया है, और इसका सीधा मतलब यह है कि अब आप पेट्रोल डीजल के सस्ता होने की उम्मीदें तो कुछ वक्त के लिए छोड़ दीजिए, और संभव है कि यह पेट्रोल डीजल युद्ध के कारण महंगा भी हो जाए। और अगर यह महंगा होता है तो इसका आम आदमी पर सीधा असर पड़ेगा, बल्कि आप इसे बड़ी मार भी कह सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले ही भारत में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत में थोक महंगाई, यानी बड़े दुकानदार छोटे दुकानदारों को जो सामान बेचते हैं, उसकी महंगाई दर 9.87% पर पहुंच गई है। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो पहले ये महंगाई दर जून 2025 में -0.4 थी, लेकिन अब 9.87% हो गई है। और अगर ज्यादा दूर भी ना जाए तो युद्ध शुरू होने से पहले फरवरी के महीने में यही महंगाई दर 2.18% थी। आप अंदर देख रहे हैं कितना बड़ा है और कितना बड़ा गैप आ गया है। इसके अलावा खुदरा महंगाई, यानी कि जिस कीमत पर आम लोग सामान खरीदते हैं, वो खुदरा महंगाई भी 4.38% हो गई है, जो कि जनवरी में सिर्फ 2.74% थी। यानी कि महंगाई अब नियंत्रण से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अब जब यह युद्ध फिर से सुलग रहा है तो इस महंगाई में इस युद्ध के कारण एक और विस्फोट हो सकता है।
और ये भी तब होगा जब कई बड़े देशों की तुलना में भारत में महंगाई दर अब ज्यादा हो गई है। हमने आपको डेटा भी बताया, आप चीन, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में महंगाई के आंकड़े देख सकते हैं, जहां पर महंगाई भारत से कम है, जबकि पहले भारत में इन देशों के मुकाबले महंगाई काफी कम थी, यानी कि महंगाई दर कम थी, लेकिन अब बढ़ गई है। अब बड़ी खबर एक और आपको देते हैं। बड़ी खबर यह है कि अब आतंकी चैट जीपीटी जैसे एआई बॉट से ये पूछ रहे हैं कि वो खुद को एक फिदायिन हमला खुद से कैसे करवा सकते हैं, या हमला करने के लिए वो बम कैसे बना सकते हैं। ये हैरान कर देने वाली खबर है। आप में से बहुत सारे लोग चैट जीपीटी का, क्लॉड, जेमिनाई या ग्रुक जैसे एआई बॉट का इस्तेमाल करते होंगे, काम के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए करते होंगे, लेकिन बड़े आतंकी संगठन उनके आतंकी ऐसा कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया डर रही है। नाइजीरिया के आतंकी संगठन बोको हराम का एक नया मामला सामने आया जिस पर पूरी दुनिया में अब बहस छिड़ गई है। कुछ वक्त पहले बोको हराम के लड़ाकों ने नाइजीरिया में एक सैन्य ठिकाने पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी चुनौती यह थी कि वो सुरक्षा के लिए बनाए गए खाई को पार नहीं कर पा रहे थे और उनकी मोटरसाइकिलें बिल्कुल एक ही जगह पर जाकर रुक गई थी। उस वक्त मोटरसाइकिलों पर सवार आतंकवादियों ने कई तरीके अपनाए, लेकिन वो नाकाम रहे और आखिर में उन्होंने एआई की मदद ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली। उन्होंने एक एआई चैटबॉट से सलाह मांगी और उसे यह बताया कि उनके पास किस तरह की मोटरसाइकिल है, कितनी दूरी पार करनी है, किस तरह की छलांग लगानी है। एआई से मिली जानकारी के आधार पर उन्होंने मोटरसाइकिलों में बदलाव किए और उनकी रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की गई और आतंकियों ने खुद गड्ढे खोदकर अभ्यास किया ताकि असली हमले से पहले छलांग लगाने की क्षमता हासिल की जा सके, खुद को तैयार किया। अब यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह दिखाती है कि एआई अब सिर्फ आपके और हमारे इस्तेमाल तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ आतंकी समूह इसे जमीनी ऑपरेशन की तैयारी में इस्तेमाल करने की कोशिशें कर रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने लगभग 60 इंटरव्यूज किए हैं और इसमें बोको हराम के 27 पूर्व आतंकियों ने बताया है कि वो एआई का इस्तेमाल आतंकवादी हमलों से पहले उसकी योजना बनाने, जानकारी जुटाने में, निर्णय लेने में, हमलों के बाद और अपनी रणनीति की समीक्षा करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि अब किसी आतंकी को बम बनाना होता है, किसी सैन्य ठिकाने पर हमला करना होता है तो वो एआई से पूछता है, जैसा आप और हम लोग करते हैं ना, बिल्कुल एआई से पूछता है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि जब कोई एआई बॉट उस आतंकी को उसके सवाल का जवाब नहीं देता है तो इंटरेस्टिंग यह है कि ये आतंकी दूसरे चैट बॉट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अब सिर्फ आप ही एआई से अपना काम नहीं करवा रहे हैं, आतंकी भी अब एआई के भरोसे अपने हमलों को सटीक बनाने में जुटे हुए हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि अब तक आपने बड़ी बड़ी कंपनीज, संस्थाओं और संगठनों में नियुक्त होने वाले सीईओस यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नौकरी के बारे में सुना होगा, लेकिन अब आप पहली बार ऐसा होगा जब अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट यानी कि राम जन्मभूमि मंदिर में भी सीईओ की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक विज्ञापन निकाला है, ये एडवर्टीजमेंट है, जिसमें लोगों से मंदिर का सीईओ बनने के लिए आवेदन मांगा गया है और इस नौकरी के लिए कुछ योग्यताएं भी इसमें बताए गए हैं, जैसे कि नौकरी का ठिकाना अयोध्या होगा, यानी कि अयोध्या में रहकर ही काम करना होगा, वेतन बातचीत के दौरान तय होगा कि कितनी तनख्वाह मिलेगी, सीईओ बनने के लिए उम्र 50 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए, ये योग्यता रखी गई है, कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, सार्वजनिक संगठन, संस्था, सरकारी विभाग या किसी कंपनी के प्रबंधन में कम से कम 20 साल का तो अनुभव होना ही चाहिए, 20 साल का अनुभव चाहिए। अगर किसी के पास में बड़े मंदिरों में प्रबंधन या कामकाज का 20 साल का अनुभव हो तो वो उसे प्राथमिकता देंगे, प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा राम मंदिर का सीईओ बनना तो है ही, उसे सक्रिय हिंदू होना भी अनिवार्य है। अगर आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो आपको इस नौकरी में वरीयता दी जाएगी, यानी कि आपके लिए ये प्लस पॉइंट होगा, आपकी आस्था भगवान राम में है। भाषा में हिंदी और अंग्रेजी दोनों आना अनिवार्य है और राम मंदिर का सीईओ बनने के लिए आखिरी आवेदन 18 जुलाई तक भेजे जाएंगे और अभी कई लोग इस नौकरी के लिए आवेदन कर भी चुके हैं, इनमें पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर भी शामिल है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये भर्ती हो जाती है तो राम मंदिर पहला ऐसा मंदिर होगा जहां पर सीईओ की नियुक्ति होगी, लेकिन हकीकत में जानकारी सही नहीं है। जी हाँ,
ये पहली बार नहीं होगा। भारत में कई बड़े मंदिर ऐसे हैं जहां पर बड़ी कंपनियों की तरह सीईओ नियुक्त किए गए हैं, जैसे तिरुपति बालाजी, शिरडी का साईं बाबा का मंदिर और श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भी सीईओ नियुक्त किए गए हैं। और यहां पर हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कंपनियों की तरह मंदिरों में सीईओ नियुक्त करने का कॉन्सेप्ट जो है वो आज का नहीं है, सैकड़ों साल पुराना है। लोग तो यही सोचते हैं कि मंदिर पुजारियों के द्वारा चलाए जाने चाहिए, लेकिन इतिहास बताता है कि जब मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, दान के रूप में सैकड़ों या हजारों करोड़ रुपए आने लगे, अस्पताल, स्कूल, गौशाला, अन्न क्षेत्र और धर्मशालाएं चलाए जाने लगी, हजारों कर्मचारी काम करने लगे और सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, आईटी सिस्टम और डिजिटल दान जैसी व्यवस्थाएं आ गईं, तब बिल्कुल कंपनियों की तरह मंदिरों को भी सीईओ की आवश्यकता पड़ी। इसकी मजबूत नींव लगभग 1000 साल पहले चोल साम्राज्य में रखी जा चुकी थी। दक्षिण भारत के महान शासक राजराज चोल प्रथम ने तब तंजावुर में विश्व प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो उन्होंने केवल एक भव्य मंदिर ही नहीं बनवाया, बल्कि उसके संचालन के लिए एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा भी उन्होंने तैयार किया। इस मंदिर से जुड़े हुए शिलालेख ये बताते हैं कि वहां सैकड़ों कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। हर पद, हर जिम्मेदारी, हर भुगतान का वहां बकायदा रिकॉर्ड रखा जाता था। यह व्यवस्था इतनी विकसित थी कि आज के किसी भी बड़े संस्थान या किसी भी बड़े प्रशासनिक संरचना से इसकी तुलना की जा सकती है। मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि एक बड़ा संस्थान था। 10वीं या 11वीं शताब्दी में बड़े मंदिर केवल धार्मिक केंद्र नहीं थे, वो उस समय के सबसे बड़े आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों में शामिल थे। इतिहासकारों के अनुसार उस दौर में मंदिर राज्य के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा संस्थान था। यानी कि मंदिर उस समय केवल आस्था का केंद्र नहीं थे, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था का भी एक प्रमुख आधार थे। और इसी वजह से मंदिरों में कई पद बनाए गए। उनमें से एक पद जो है स्थानांतर का था, जो कि मंदिर के ट्रस्टी और सर्वोच्च प्रशासक होते थे। दूसरा पद था केल विकर का होता था। यह पद जो कि मंदिर के प्रबंधक यानी कि मैनेज इनको करते थे, मैनेजर एक तरीके से आप कह सकते थे कि होते थे। तीसरा पद होता था पंडारतार का, जो कि मंदिर के कोषाध्यक्ष थे। यानी कि 1000 साल पहले ही हमारे देश के मंदिरों में ऐसी व्यवस्था बन गई थी जिनमें बड़े धार्मिक निर्णय पुजारी लेते थे, जबकि प्रशासनिक निर्णय अधिकारी संभाला करते थे। और राम मंदिर अब इसी व्यवस्था में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भीड़ के लिहाज से ये भारत का अब सबसे बड़ा मंदिर बन गया है, जहां प्रबंधन के सही इंतजाम और सीईओ जैसा अधिकारी होना आवश्यक है, जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। पहले छेड़छाड़, फिर आवाज उठाने पर जान से मारने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र के नासिक में एक परिवार के साथ यही हुआ है। नासिक के भावली वाटरफॉल घूमने गए एक परिवार की महिलाओं के साथ वहां पर मौजूद कुछ स्थानीय गुंडों ने छेड़छाड़ की, और जब इन महिलाओं ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। और जब इन महिलाओं के परिवार ने वहां से जान बचाकर वहां से भागा, तो इन्हीं गुंडों ने, इन्हीं मवालियों ने, इनके साथियों ने लगभग 15 किलोमीटर तक उनका पीछा किया। उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके, लाठी डंडों से उनकी गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए। इन गुंडों की कोशिश थी कि किसी तरह ये परिवार अपनी गाड़ी से निकले और वो उनको मार सके, उन पर हमला कर सके। हम आपको इस परिवार के द्वारा बनाया गया एक वीडियो भी दिखा रहे हैं। इस वीडियो में बाइक सवार लड़के दिखाई दे रहे हैं जो कार के पीछे से कार पर डंडा फेंक रहे हैं ताकि ये शीशा तोड़ सके। अगर आप ध्यान से बिल्कुल देखें तो इस बाइक का नंबर अधूरा दिखाई दे रहा है। नंबर अधूरा है, अक्सर ऐसा कब होता है? अक्सर ऐसा काम कौन करते हैं? प्रोफेशनल अपराधी करते हैं, ताकि अपराध के समय उनके वाहन की पहचान ना हो सके। इन गुंडों के हमले से परिवार बहुत ज्यादा डर गया था। वो बचने के लिए सीधे नासिक की ओर भागे और वहां जाकर पुलिस स्टेशन पर इन अपराधियों के खिलाफ उन्होंने मामला दर्ज करवाया। किसी भी परिवार के लिए बहुत भयानक स्थिति होती है जब वो किसी अनजान टूरिस्ट प्लेस पर घूमने के लिए जाते हैं और वहां के स्थानीय मवाली उन्हें परेशान करने लगते हैं। अक्सर पुलिस व्यवस्था की नाकामी की वजह से इन लोकल गुंडों का विरोध करना बड़े खतरों को दावत देने जैसा बन जाता है। और ये खतरा किस स्तर पर होता है? ये नासिक की ये जो वारदात है, ये जो तस्वीर है, ये पीड़ित परिवार है, वो खुद आपको बताएगा।

0: एक परिवार के लिए ये बहुत डरावनी स्थिति है। सोचिए, लोकल गुंडे बाइक से कार का कुछ इस तरह से पीछा कर रहे हैं और आपको मारने की कोशिश में आपकी गाड़ी पर पत्थर और लाठियों से हमला कर रहे हैं। इन्हें कानून का कोई डर नहीं है। इन्हें शायद पता है कि सैलानियों के साथ मारपीट होगी तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बाहरी हैं। आप तो बस उस परिवार की हालत देखिए जो क्वालिटी टाइम बिताने के लिए वाटरफॉल पर आया था, लेकिन अब उनकी कार की विंडस्क्रीन और साइड डोर के शीशे तोड़ दिए गए हैं और कुछ गुंडे उनकी जान के पीछे पड़ गए हैं। आप उस पिता की हालत का अंदाजा लगाइए जो अपनी पत्नी और बच्चों की जान बचाने के लिए गाड़ी को जितना तेज हो सके उतना तेज भगाने की कोशिश में लगा है, लेकिन गुंडे एक बाइक से उनकी कार का पीछा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कार को रोक दिया जाए। जिस तरह से पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता था कि गुंडे एक परिवार की महिलाओं को छेड़ते हैं और विरोध करने पर मारते पीटते हैं और उनमें कानून का कोई डर नहीं रहता, ठीक यही घटना महाराष्ट्र के नासिक में हुई।
1: चेंज करने हम कार के पास जा रहे थे तो वहाँ पे एक बाइक पे दो लड़के खड़े थे, तो मैं उनके वहाँ से तो जाना ही पड़ेगा, तो उनके बाजू से गई तो उन्होंने मुझे शिट्टी बजाई और कुछ कमेंट पास किए, तो मैंने उनको बोला तुम पागल हो गए कि पब्लिक प्लेस में लेडीज को छेड़ रहे हो, तो फिर ये भी पीछे से अरे मैं जा बोल नहीं रहा, निकल जाओ बोले ऐसे मराठी बोले निकल जाओ तुम क्यों दिमाग लड़ा लेडीज से, और उन्हें ऐसे करके निकल दे। तो वहाँ पे बाजू में जो लड़के खड़े थे 7-8-10 लड़के थे जो कार है वहाँ पे, तो वो आए बोले हमारे गाँव के लड़कों को तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, हाथ क्यों लगा सकते हो, अरे भाई मैंने मारा ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाया, तो क्यों नहीं नहीं हम ही पाई लो हमने देखा ऐसे वगैरह बोल रहे थे, बोलो ठीक है। तो फिर वो गालियाँ देने लगे, हम भी गाले, फिर सर हम भी नहीं रुके, फिर हमने भी उनको थोड़ा सा ये किया, थोड़ी सी हाथापाई हुई हमारी, वहाँ पे पब्लिक लोगों ने हमको बचा ली कि चलो निकलो यहाँ से जाने दो छोड़ो, हम भी हमारा निकले गाड़ी में आगे जाके सामने से आके उन्होंने आड़ी गाड़ी लगा दी और डायरेक्ट फाइटर से है ना कांच फोड़ने चालू कर दी, तो हम डर गए, मैंने उनको बोला कि भगाओ गाड़ी भगाओ।
0: हवाली वाटरफॉल के बदमाशों ने इस कार की हालत क्या की है वो देखिए। इसी कार के जरिए परिवार अपनी जान बचाकर भाग रहा था, अगर पीड़ित परिवार ने गुंडों से डर कर कार रोक दी होती तो जो हालत आज आप देख रहे हैं मुमकिन है वो हालत उस परिवार की होती।
2: हम आगे निकले वहाँ से भावली डैम से 2 किलोमीटर आगे, तो एक व्हाइट कलर की बोलेनो है, उसने आगे हमारे आके रास्ता ब्लॉक किया, जैसा रास्ता ब्लॉक किया तो वहाँ से उसमें से उतर के 2-4 बच्चे भागे, उन्होंने आगे की और मेरे बाजू में जो मेरा भाई बैठा था उसकी कांच फोड़ दी, तो हमने गाड़ी थोड़ा रिवर्स लेके भागना चालू किया, हमने भागना चालू किया बोला इगतपुरी पुलिस स्टेशन जाते, लेकिन जैसे हम नासिक मुंबई हाईवे पे आए फ्लाईओवर के नीचे नियर बाय, वहाँ पे दो बाइक जो वीडियो वायरल हो रहा है पीछे से आके रॉड से मार रहे, उन्होंने पीछे से रॉड से मारा और आगे आके वापस उन्होंने 2-व्हीलर से हमें ब्लॉक किया, वहाँ पे उन्होंने आगे वापस 70 से हमारी गाड़ी फोड़ी।
0: हवाली वाटरफॉल पर बदमाशों की जिस टोली ने महिलाओं से छेड़छाड़ के बाद मारपीट की थी उस टोली में 1-2 नहीं 10 से ज्यादा बदमाश शामिल थे। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, इनमें वो बदमाश भी हैं जिन्होंने महिलाओं से छेड़छाड़ की थी, वो भी हैं जिन्होंने परिवार को मारने के लिए कई किलोमीटर तक उनका पीछा किया था, और इनमें वो भी हैं जिन्होंने इन बदमाशों को छिपाने में मदद की थी।
3: जो एक घटना हुई इस अनुचित घटना के अकॉर्डिंगली जो है वो पहले अंबड़ पुलिस स्टेशन में 0 नंबर से जो FIR रजिस्टर हुआ उसको अकॉर्डिंगली वो तुरंत हमने वीडियोस और बाकी टेक्निकल एनालिसिस करके इसमें हमने 9 आरोपी अभी तक निष्पन्न किए हैं, जो कि FIR में 6-7 आरोपी थे, बट इसमें जो शेल्टर देने वाले आरोपी है या फिर एसोसिएट्स है जिनको इन्होंने हेल्प किया था वो भी हमने इसमें आरोपी किए हैं, और अभी तक हमने 9 आरोपी इसमें ताबे में लिया।
4: अब हम रूठे हुए मानसून का कारण आपको बताएंगे। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में 2 जुलाई के बाद से मॉनसून की झमाझम बारिश हुई। 7 से 9 जुलाई के बीच तो पूरे दिल्ली NCR में जबरदस्त बारिश हुई है, लेकिन 10 जुलाई के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मॉनसून इंसानों की किसी बात से नाराज हो गया हो और चला गया हो। कहां तो कुछ दिन पहले तक आसमान में छाए बादलों ने कुछ खुशियां दी थी, और कहां तो अब खुला आसमान और चटक धूप ने लोगों को बेहाल कर दिया है। और अब सवाल यह है कि मानसून के चले जाने की वजह क्या है। दरअसल मानसून कुछ दिनों की छुट्टी पर गया है, और इसे मानसून के जानकार मानसून ब्रेक कहते हैं, और ये मौसम में रुके हुए एक अस्थायी प्राकृतिक बदलाव इसे कहते हैं, जिससे कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। मानसून ने ब्रेक इसलिए लगाया है क्योंकि मानसून थ्रू यानी कि मानसून के कम दबाव का क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्व की ओर खिसक गया है। बारिश के मौसम में ये मानसून थ्रू पश्चिम से पूर्व की ओर बनता है, जैसे उत्तर भारत के राज्यों में बढ़िया बारिश होती है, यानी कि ये एक कम दबाव का क्षेत्र है जो फिलहाल दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से अड़कर पहाड़ों की ओर यानी कि उत्तराखंड, पूर्वी यूपी, बिहार और पूर्वोत्तर भारत की ओर चला गया है। इसीलिए फिलहाल बारिश भी इन्हीं इलाकों में हो रही है और काफी तेज बारिश भी हो रही है। और ये सामान्य बात है, जुलाई अगस्त में यानी कि मॉनसून के मौसम में इस तरह से बीच बीच में हफ्ता या 10 दिन के लिए इस तरह की स्थिति बन जाती है। फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक 19 जुलाई के बाद मॉनसून का ये ब्रेक टाइम खत्म हो जाएगा और बंगाल की खाड़ी की नम हवाओं की मदद से मॉनसून जो है वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा। कुछ अगली दूसरी खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली में नए बने द्वारका एक्सप्रेस वे की टनल में अचानक एक कार में आग लग गई। आमतौर पर टनल्स में जब इस तरह के हादसे होते हैं तो स्थिति काफी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अगर एयर सर्कुलेशन की व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो टनल में धुआं भरने से दम घुट सकता है। लेकिन इस टनल में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस टनल में इस तरह की दुर्घटनाओं के लिए एक अलग तरह का ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया गया है जो आग लगने के तुरंत बाद सक्रिय हो गया, एक्टिव हो गया, और इस स्प्रिंकलर सिस्टम ने घटनास्थल के पास में ही बड़ी मात्रा में पानी बरसाया। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो बारिश हो रही, कुछ ही मिनटों में कार में लगी आग बुझ भी गई और स्प्रिंकलर सिस्टम बंद हो गया। इस घटना का वीडियो सामने आया जिसका सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बज़ है। लोग इस तरह की आग बुझाने वाली व्यवस्था को देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं, साथ ही हैरान भी।

टनल में लगी आग की यह घटना भांपने और एक्शन लेने का एक खास सिस्टम लगाया हुआ है और सुबह लगभग 11 बजे जैसे ही कार के इंजन में आग लगी वैसे ही टनल में लगाया गया ये विट्स यानी कि वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम एक्टिव हो गया। ये सिस्टम एआई आधारित वीडियो एनालिटिक्स सिस्टम है जो कि सीसीटीवी के जरिए ट्रैफिक पर नजर रखता है और हर हलचल को नोट करता है। विट्स ने टनल कंट्रोल सेंटर को बताया कि टनल के खास हिस्से में आग लगने की घटना हुई है। इसके बाद टनल में लगे हुए एक अन्य सिस्टम LHDS यानी कि लीनियर हीट डिटेक्शन सिस्टम ने कंट्रोल सेंटर को बताया कि टनल के उस हिस्से का तापमान बढ़ता जा रहा है। इन दोनों ही सिस्टम से मिली जानकारी के बाद टनल का फायर सेफ्टी मोड ऑन हो गया और ऐसा होते ही टनल में लगा हाई प्रेशर वाटर मिस्ट सिस्टम शुरू हो गया। इसने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। इस बीच इसी सिस्टम ने इमरजेंसी अनाउंसमेंट भी करने शुरू कर दी और टनल में मौजूद वेरिएबल मैसेज साइन के जरिए लोगों को हादसे की जानकारी दी गई। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।

0: एक तरफ श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जांच चल रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब श्री राम मंदिर के मामले पर पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया। एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट आज सौंप सकती है।
1: ऐसे पोस्टर्स यूपी के अलग अलग शहरों में लगाए गए हैं। एक पोस्टर में अखिलेश और मुलायम सिंह यादव हैं, इसमें लिखा है मुलायम सरकार की असलियत। दूसरे पोस्टर में अखिलेश शिवपाल और राम गोपाल यादव की तस्वीरें हैं, इसमें लिखा गया है दिल में बाबर मुंह में राम। ऐसे पोस्टर्स लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर और अयोध्या में लगाए गए हैं।
2: जैसे चुनाव नजदीक आएगा सब पुराने बयान निकाले जाएंगे, पोस्टर निकाले जाएंगे, सबके निकलेंगे।
1: इस सियासत से इतर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेजी से बढ़ रही है। खबर है कि मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाने वाले कुछ विशेष दानदाताओं के दान को ट्रस्ट वापस कर सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद दर्जनों दानदाताओं ने ट्रस्ट के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और अपने दान की चोरी या घोटाले का शक जाहिर किया था। कई श्रद्धालुओं का दावा था कि उनकी ओर से भेंट की गई वस्तुओं की रसीद नहीं दी गई। आरोप ये भी है कि उनकी दी गई भेंट राम मंदिर में प्रदर्शित या सुरक्षित नहीं रखी गई। अब इन वस्तुओं को लौटाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उधर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटा दिया गया है। खबर ये भी है कि चढ़ावा चोरी की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम जल्द ही अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। आज तक ब्यूरो।
0: अयोध्या में चढ़ावे चोरी का मामला सामने आते ही वक्फ के घोटाले का राजनीतिक शोर सुनाई पड़ने लगा। पहले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष बासित अली ने बहराइच के सालार गाजी दरगाह में घोटाले के आरोप लगाए, फिर मुख्यमंत्री योगी ने कई मंचों से वक्फ के घोटालों का उल्लेख किया, अब खुद मुस्लिम जमात के मौलाना रजवी ने वक्फ के घोटालों के आरोप लगाए।
3: क्या वक्फ बोर्ड में भी चल रही है धांधली? क्या वक्फ बोर्ड में भी हुआ है घोटाला? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर वक्फ के घोटालों की जांच करने की मांग की है
4: कि राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड का निकल करके सामने आएगा। वो लाखों का नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों का जो घोटाला है वो अरबों का घोटाला सामने निकल करके आएगा।
3: मौलाना रिजवी सीएम योगी के नाम लिखी चिट्ठी में दावा करते हैं कि वक्फ बोर्ड में सबसे ज्यादा लूट समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई।
4: जो वक्फ के जिम्मेदारान थे उन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को जो करोड़ों में थी उनको रेवड़ियों के भाव बेचा गया, वक्फ की संपत्ति को बर्बाद किया गया और ये सारी बर्बादी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई।
3: शहाबुद्दीन रिजवी अकेले शख्स नहीं है जो वक्फ में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं।
5: पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो हर जगह के ऊपर घपलेबाजी हो रही है पूरी तरीके से।
3: समाजवादी पार्टी पर यह आरोप खुद सीएम योगी अपनी सार्वजनिक रैलियों और कार्यक्रमों में लगाते रहे हैं। जब राम मंदिर का मुद्दा सामने आया तो सीएम ने फिर से वक्फ घोटाले का जिक्र किया था।
6: अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई।
3: सियासी आरोप एक तरफ लेकिन आरोपों की जांच दूसरी तरफ। शिया वक्फ बोर्ड से जुड़े इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दिया जाए तो यूपी में किसी वक्फ घोटाले की सघन जांच अभी तक नहीं हो सकी है।
7: दूसरे स्थानों पे या दूसरे धर्म स्थल पे कहीं अगर कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से वहां सुधार होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन बयानबाजी नहीं। अगर कोई सबूत किसी के पास है, एविडेंस है तो वो सामने लाना चाहिए।
8: वक्फ के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पहले हुआ करता था। वक्फ की जमीनों को औने पौने दामों पर कब्ज हो जाते थे, किराए पे देते थे और उसके धन का दोहन होता था। वक्फ जिस भावना से किया जाता उस भावना का तिरस्कार होता था। लेकिन आज सरकार के प्रयासों के बाद हम वक्फ की संपत्तियों को रेगुलराइज करने का काम कर रहे हैं।
3: यूपी और देश में वक्फ की संपत्तियों के घोटालों के आरोप शुरू से लगते रहे हैं और उसे दूर करने के लिए ही सरकार ने वक्फ संशोधन कानून भी बनाया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि नए कानून के तहत बने वक्फ बोर्ड अब वक्फ संपत्तियों का उचित रखरखाव कर पाएंगे। बरेली से कृष्ण गोपाल राज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: दिल्ली दंगे में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से दिल्ली की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा।
3: 6 साल पहले दिल्ली में हुए दंगे को लेकर दिल्ली की अदालत ने जो फैसला सुनाया, अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन दोषी पाए गए हैं। वहीं ताहिर के अलावा 4 और आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
9: क्या अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी इस बात का जवाब देंगे कि दिल्ली में दंगे भड़काने जैसे कितने और कृत्य उन्होंने किए हैं?
3: आपको बता दें कि 26 फरवरी 2020 को खजूरी खास नाले से अंकित शर्मा का शव मिला था। उनके पिता ने ताहिर हुसैन समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। तमाम गवाहों की पेशी, सबूतों और सुनवाई के बाद अदालत का फैसला दिल्ली के सामने है। जहां तक ताहिर हुसैन का सवाल है, तो खबर है कि कोर्ट की सुनवाई के दौरान वो फूट फूट कर रोने लगा। ताहिर की माने तो वो बेकसूर है, उसे फंसाया गया है।
10: ताहिर जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए।
3: हिंसा में नाम आने के बाद ताहिर हुसैन से केजरीवाल ने किनारा कर लिया था। आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने गले लगा लिया।
11: 2020 में जो दंगे हुए, आज ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन और ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोगों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू जो वहाँ पे रहने वाला हिंदू समाज है उनको मारने की साजिश थी। और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए, नौजवान बेगुनाह अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर, जिनको कई बार चाकुओं से गोदा गया और बाद में उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया।
12: कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का सेशन से आया है, तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा, क्या नहीं रहा।
13: लेकिन उसका नाम ताहिर है, ये बड़ी चीज है। अगर उसका नाम कपिल होता वो भी परी हो जाता।
3: दिल्ली दंगे को लेकर एआईएम सवाल उठाती रही है कि जिस दंगे में 53 लोगों की हत्या हुई, उसमें 6 साल बाद भी सिर्फ एक हत्या के केस में दोषियों की पहचान क्यों हो पाई है? आखिर वो कैसी जांच थी जिसमें इसी दंगे में मारे गए हाशिम अली की हत्या के 12 और अनवर हत्याकांड के 5 आरोपी बरी हो जाते हैं? दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: महाराष्ट्र के नासिक में एक परिवार वाटरफॉल घूमने गया, लेकिन वहां 2 बदमाशों ने परिवार की महिला से छेड़खानी की। परिवार ने विरोध किया तो फिर 15 किलोमीटर तक पीछा करके 4 बार बदमाशों ने हमला किया। इस मामले में 9 लोग पकड़े गए, 3 लोग फरार हैं।
14: बारिश का मौसम, महाराष्ट्र के अलग अलग वाटरफॉल, जहां इस वक्त हर परिवार छुट्टी मनाने के लिए अपनों के संग कुछ खुशी के पल बिताने के लिए पहुंचता है। लेकिन 12 जुलाई रविवार को नासिक के भावली वाटरफॉल के पास भागवत परिवार के साथ जो कुछ हुआ है, वो हर आम आदमी को डरा देता है जो कहीं छुट्टी मनाने जाता है।
15: वहां के 2 लोकलाइट थे, उन्होंने कुछ गंदी कमेंट पास कर दी। वो व्हाइट कलर की बलून है, उसने आगे हमारे आके रास्ता ब्लॉक किया।
16: 6 जगह पर अटैक किया।
15: मेरा भाई बैठा था, उसकी कांच फोड़ दी।
16: कांच फूट रही थी तो बच्चा भी डर गया।
15: फाइटर से वगैरह कांच फोड़ी तो हमने गाड़ी थोड़ा रिवर्स लेके भागना चालू किया।
16: जहाँ भी रुके वहाँ पे हमारी गाड़ी फूटी।
14: सबसे पहले दहशत के इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक कार में भागता हुआ मेहर भागवत का परिवार, जिनके पीछे एक बाइक पर हाथ में लोहे की रॉड लेकर अटैक करने के लिए आते 2 गुंडे, और फिर
17: फोटो गाड़ी का फोटो
14: दो लोग बाइक से, बाकी लोग सफेद रंग की कार से इस परिवार का पीछा 15 किलोमीटर तक करके हमला करते हैं, जो रविवार को नासिक के भावली वाटरफॉल के पास पिकनिक मनाने पहुंचे। इसके बाद ये सवाल हर आम आदमी का परिवार पूछना चाहता है, क्या पिकनिक स्पॉट पर भी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल सकती है? अब आप जानना चाहेंगे कि यहाँ हुआ क्या। मीर भागवत और उनकी पत्नी की साफ बीती को आज हर परिवार इसीलिए जरूर सुने।
15: मैं और मेरे भाई

0: वहाँ पे गए तकरीबन 2-3 बजे, वहाँ पे खाना वगैरह खाया, पानी में खेले हम सब। 5:30 बजे के करीब निकलना है भाई, शाम हो रही है, तो बच्चे आके गाड़ी में बैठे, लेडीज़ वगैरह निकलने लगे, और हम जेंट्स थे तो सब जो खाने के बैग वगैरह थे हम पीछे से लेके आ रहे थे। तो मिसेज जा रही थी थोड़े अभी पानी में भीगने की वजह से ड्रेसेस वगैरह गीले थे, तो किसी वहाँ के दो लोकलाइट थे उन्होंने कुछ गंदी कमेंट पास कर दी। तो मिसेज ने उनसे आर्ग्यू किया कि आप ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने भी आर्ग्यू किया।
1: चेंज करने हम कार के पास जा रहे थे, तो वहाँ पे एक बाइक पे दो लड़के खड़े थे, तो मैं उनके यहाँ से वहाँ से तो जाना ही पड़ेगा, तो उनके बाजू से गई, तो उन्होंने मुझे सिट्टी बजाई और कुछ कमेंट पास की। तो मैंने उनको बोला तुम पागल हो गए कि पब्लिक प्लेस में लेडीज को छेड़ रहे हो, उनको समझता नहीं आजकल क्या चल रहा है इनका। नहीं बोले असत असत है, वो मराठी में मुझे बोलने लगे वगैरह, तो फिर मैं थोड़ा उनके ऊपर ये करने लगा।
0: तो उनका ये चालू था झगड़ा, तो मैंने दूर से देखा तो मैं भागते हुए गया कि क्या हुआ। तो इस मिसेस ने बोला कि ये मुझे छेड़ रहे, तो मैंने उनको डांटा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो।
1: मेरे हस्बैंड ने देखा कि इसका क्या चल रहा है उनके साथ, तो फिर ये भी पीछे से, अरे मेरे जा बहू नहीं बोलता, निकल जा बोले वो ऐसे मराठी बोले, निकल जाओ तुम, क्यों दिमाग लड़ा। वहाँ पे बाद में जो लड़के खड़े थे 7-8-10 लड़के थे जो कार है वहाँ पे, तो वो आए बोले हमारे गाँव के लड़के को तुम ऐसे कैसे बोल सकते, हाथ क्यों लगा सकते।
0: तो मैंने उनको थोड़ा सा ये किया कि भाई तुम निकल जाओ, तो वो निकल गए। लेकिन वहाँ के जो लोकलाइट थे, वहाँ पे एक 4-व्हीलर में कोई शॉप रन करते वहाँ के लोकल बिजनेस, तो वहाँ के जो 6-8 बच्चे थे लोकलाइट, वो आए, क्या हुआ क्या हुआ, तो वो लोग इशू करने लग गए।
1: थोड़ी सी हाथापाई हुई हमारी, वहाँ पे पब्लिक लोगों ने हमको बचा लिया, चलो निकलो यहाँ से, जाने दो छोड़ो। आगे जाके इन्होंने बोले नो पूरा आगे सामने से आपको उन्होंने आड़ी गाड़ी लगा दी और डायरेक्ट फाइटर से ना कांच फोड़ने चालू कर दी, तो हम डर गए। मैंने उनको बोला किरण भगाओ गाड़ी भगाओ, इन्होंने इतनी गाड़ी भगाई तो पीछे से फिर 2-व्हीलर रोड वगैरह लेके अपने वीडियो में देखा, वो सब घटना चालू हो गई। फिर आगे जाके उनका एक लड़का गाड़ी पे लटका भी, पूरा लटका।
2: सोचिए कितने बेखौफ रहे होंगे वो गुंडे जो 15 किलोमीटर तक पीछा करके हमला करते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि क्या रास्ते में कहीं पुलिस नहीं थी, कहीं पुलिस पोस्ट नहीं थी।
0: वहाँ से आगे आने पे भावली डैम है, वहाँ पे हमें पुलिस वैन मिली ब्लू कलर की, तो वहाँ पे हमने पूछा कि हमें पुलिस कंप्लेंट करनी है, तो बोले ठीक है आप इगतपुरी पुलिस स्टेशन जाइए। आगे निकले वहाँ से भावली डैम से 2 किलोमीटर आगे, तो एक वाइट कलर की बलेनो है, उसने आगे हमारे आके रास्ता ब्लॉक किया। जैसा रास्ता ब्लॉक किया तो वहाँ से उसमें से उतर के 2-4 बच्चे भागे, उन्होंने आगे की और मेरे बाजू में जो मेरा भाई बैठा था उसकी कांच फोड़ दी। तो हमने गाड़ी थोड़ा रिवर्स लेके भागना चालू किया, बोला इगतपुरी पुलिस स्टेशन जाते। लेकिन जैसे हम नासिक मुंबई हाईवे पे आए फ्लाईओवर के नीचे नियर बाय, वहाँ पे 2 बाइक जो वीडियो वायरल हो रहा है पीछे से आके रॉड से मार रहे हैं, उन्होंने पीछे से रॉड से मारा और आगे आके वापस उन्होंने 2-व्हीलर से हमें ब्लॉक किया। वहाँ पे उन्होंने आगे वापस 70 से हमारी गाड़ी फोड़ी। फिर हमने सोचा इगतपुरी में जाना गलत होगा, ये लोकल लाइट है, तो इससे अच्छा अपन नासिक की तरफ भागते।
2: सुनकर डर लगता है मानो फिल्म में जैसे किसी विलेन का जंगल राज दिखाते, वो हालत सच में हो, मतलब रोक रोक कर परिवार पर हमला होता रहा और भागवत परिवार जान बचाने को भागता रहा।
1: 6 जगह पर अटैक किया लगभग उनको। सबसे पहले उन्होंने भावली डैम के आगे जो टर्न आता है ना वहाँ पे पकड़ा, क्योंकि उनको पता है यहाँ से टर्न मारना थोड़ा बड़ी गाड़ी को मुश्किल होगा। बराबर वहाँ पे पकड़ा, वहाँ पे आए काज भी छोड़े, वहाँ पे बच्चे डर गए, तब हमने मोबाइल चालू नहीं किया। उसके बाद वहाँ से जब हम निकले तो पीछे दो बाइक पर जो लड़के आ रहे थे जो रोड था, तो मैंने बेटे को बोला, मैंने बेटा मोबाइल निकल के उनका वीडियो ले, वो बाकी जाने दो। फिर मेरे बेटे ने वो वीडियो लिया, तो वीडियो लेते ले तो उसने वीडियो देखा कि वो देख रहा है कि हम मोबाइल वीडियो ले रहे। फिर उसने रॉड फेंका, दो रॉड फेंके, वहाँ पे उनका निशाना चुप गया। फिर आगे जाके फिर उनका भी निशाना परफेक्ट लगा, वो वीडियो हम ले नहीं सके, कांच फूट रही थी तो बच्चा भी डर गया, वो वीडियो हमने लिया नहीं। फिर आगे जाके टोल नाका के वहाँ रुके, तो एक पिंक शर्ट वाला है उसने आके से बटन बंद कर दिया हमारी गाड़ी का, बंद कर दिया, कांच खुले थे पूरे बंद कर दिया। फिर बोले उतर जाओ, अपन ये करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, मिटा देंगे ऐसा वैसा। तो ये मेरे हस्बैंड बोले चलो देखते, फिर मेरे वाले पागल हो गए कि यहाँ पे उतरना रिस्की, निकलो। फिर से हम वहां से वापस निकले।
2: पीड़ित परिवार का नासिक में नेशनल हाईवे पर 15 किलोमीटर तक पीछा करते ये गुंडे, टोल प्लाजा, सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड, हाईवे पुलिस, जहां सब कुछ होता है, लेकिन किसी से ये नहीं डरते और कोई मदद के लिए भी आगे नहीं आते।
0: अटैक करने के लिए उन्होंने 70 फाइटर्स और ये बेसबॉल के ये थे, शायद बेसबॉल के आप उसको क्या बोलते, स्टिक्स बोल सकते हैं, कुछ लकड़ी के भी थे, और मेरे हिसाब से मुझे किसी के हाथ में एक सिल्वर कलर का वो शायद छोटी सी ऐसी तलवार, तो ऐसी थोड़ा कर्व शेप में होता, लेकिन वो सीधी थी, लेकिन सिल्वर तार चमक रहा था। अभी वो क्या हो रहा था, मेरा इंटेंशन था कि भागना है।

0: बचना है।
1: इस कार की हालत देखिए, चारों तरफ से हमला हुआ, पत्नी बच्चे चीख रहे होंगे, पति गाड़ी भगाते रहे कि किसी तरह इनसे बच जाए। आखिरकार ये पुलिस तक पहुंचे, उसके बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 3 लोग अभी फरार।
2: हमने 9 आरोपी अभी तक निष्पन्न किए हैं, जो कि एफआईआर में 6-7 आरोपी थे, बट इसमें जो शेल्टर देने वाले आरोपी है या फिर एसोसिएट्स है जिनको इन्होंने हेल्प किया था, वो भी हमने इसमें आरोपी किए हैं, और अभी तक हमने 9 आरोपी इसमें ताबे में लिया है। इसपे आगे की जो कार्रवाई है वो आगे की कार्रवाई चल रही है। पर्यटन को सुरक्षा ऑलरेडी दी हुई है, पर्यटन के वहां पे बंदोबस्त भी था, वो लोग भी वहां पे पुलिस को मिले। बस इस घटना में जो है, ये घटना कुछ 7-8 किलोमीटर दूर जाके, जहां पे कोई मोबाइल लोकेशन नहीं आ रहा था, उस पॉइंट पे हुई है।
1: ऐसे आरोपी हर पिकनिक स्पॉट के पास हर राज्य में मिलते हैं, जो कहीं तय दर से ज्यादा कीमत लेने को, कहीं भाषा को लेकर, कहीं संस्कृति को लेकर या तो विवाद करते हैं या छेड़खानी और मारपीट करते हैं। ये सोचते हैं कि ये लोकल है तो बाहर से छुट्टी मनाने आए लोगों पर हमला कर सकते हैं, उनको डरा सकते हैं। ये उन्हीं लोगों पर हमला करते हैं जिनके सैलानी बनकर आने से इनके और इनके इलाके के लोगों को रोजगार मिलता है। जरूरी है कि नासिक के दोषियों को ऐसी सजा मिले जिसे सुनकर देखकर बाकी जगहों पर ऐसी आपराधिक सोच वाले सिहर जाए, ताकि कोई परिवार, कोई आम आदमी किसी जगह छुट्टी मनाने जाने से पहले डरे नहीं।
3: पुलिस चाहे जहां की हो, आम आदमी पार्टी को केंद्र में रखने के दावे करती है। गाजियाबाद पुलिस का ध्येय भी सेवा, सुरक्षा और समर्पण है, जो नागरिकों के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेकिन अगर वाकई में ऐसा होता तो 22 वर्ष का एक नौजवान पिंक बूथ के बाहर तड़प कर नहीं मरता। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पिंक बूथ की महिला पुलिसकर्मियों ने राजकुमार की मदद करना तो छोड़िए, अपने बूथ का दरवाजा तक बंद कर लिया।
4: पुलिस के रहते हुए मेरा बेटा का जान चल गया, किस लिए चल गया, क्यों चला गया, इतनी क्यों मेरा बेटा के हाथ कट गया, क्यों मेरा बेटा के जान चल गया।
1: 22 साल के बेटे को गंवाने वाली एक माँ का ये सवाल गाजियाबाद पुलिस से है। मामला बहुत दुखद, क्योंकि पिंक बूथ के बाहर 40 मिनट तक एक नौजवान मदद के लिए तड़पता रहा। बार बार मदद की गुहार लगाने पर भी महिला पुलिस मदद को आगे नहीं आई, उल्टा पिंक बूथ का दरवाजा बंद कर लिया गया।
4: अंदर पुलिस लेडीज बैठ के देख रही है, मेरा लड़का ऐसे ऐसे तड़प रहा, लेकिन कोई नहीं उठाया। जब मेरा लड़का के दम टूट गया।
1: यकीन करना मुश्किल है कि गाजियाबाद में दिन दहाड़े एक नौजवान ज्यादा खून बहने से सबके सामने सड़क पर मर गया, वो भी पुलिस के पिंक बूथ के बाहर। राजकुमार को तड़पता देखकर भी महिला पुलिस कर्मियों का दिल नहीं पसीजा।
5: अच्छा, गिरा कहाँ था एग्जैक्टली? आप यहाँ पे गिरा पड़ा था,
6: ये है,
5: ये जो जगह है यहाँ पे ही गिरा पड़ा था।
6: हाँ जी, यहाँ से वो खून आया ना पूरा।
5: हाँ हाँ हाँ,
6: जैसे यही गिरा पड़ा।
5: ठीक।
1: थानों में फरियादियों के साथ पुलिस के संवेदनहीन बर्ताव की शिकायत तो आपने सुनी हो, लेकिन गाजियाबाद में जो कुछ हुआ वो इंसानियत के मरने का भी सबूत देता है।
7: 40 मिनट तक राजकुमार यूं ही सड़क पर तड़पता रहा और तड़प तड़प कर उसने दम तोड़ दिया। गाजियाबाद पुलिस का इस मामले में शर्मनाक बयान आया है कि ऑटो चालक और राजकुमार दोनों नशे में थे, लेकिन गाजियाबाद पुलिस को ये जवाब देना होगा कि जब दोनों मदद के लिए पुलिस के पास गए तो पुलिस आखिर क्या कर रही थी।
1: वीडियो में दिख रहा है ये 22 साल का राजकुमार, जिसके शरीर का कतरा कतरा खून जमीन पर फैलता गया। इस नौजवान को दम तोड़ते हुए दर्जनों लोग देखते रहे, तमाशबीनों में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल। तो पिंक बूथ के दरवाजे पर ये सब कुछ हुआ। जिन्हें लोगों की मदद करने के लिए ही तनख्वाह मिलती है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाना तो दूर, दरवाजा बंद कर बैठे रहे, ताकि मरने वाले की कराहने की आवाज उन तक ना पहुंचे।
8: वो जब नीचे, वहाँ तो हमें किसी ने ये बताया कि वो नीचे पड़ा था, वो इशारे कर रहा था कि मेरे को बचाओ। वहाँ लेडीज पुलिस खड़ी थी, हमारे पास वीडियो है, वो लेडीज पुलिस खड़ी थी। मान लो आप प्रशासन हो, किस लिए हो? हमारी सेवा के लिए ना। जब आप ही नहीं करोगे, जस्ट यहाँ कोई कुछ काम हो जाए।
9: आसपास जो दुकानें थी
8: जी,
9: वो लोग भी वीडियो बना रहे थे
8: जी,
9: किसी ने मदद नहीं की।
1: गाजियाबाद में रविवार की दोपहर ऑटो चलाने वाले राजकुमार का किराए को लेकर एक सवारी से झगड़ा होता है। उसने मदद के लिए पिंक बूथ का रुख किया, लेकिन वहाँ उसे मदद नहीं मिली।
4: मेरा लड़का चौकी में गया नाम दाखिल कराने, मेरा लड़का के चौकी में से बाहर धक्का मार के निकाल के दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद मेरा लड़का दीवार में हाथ मारा तभी न खोले। उसके बाद मेरा लड़का शीशा पर हाथ मार दिया, मेरा लड़का के हाथ कट गया, खून निकलते निकलते मेरा लड़का वहीं बेहोश हो गया।
3: गाजियाबाद पुलिस से जब इस बारे में पूछा गया तो अजीब व गरीब जवाब पुलिस की तरफ से आया कि मरने वाला नौजवान ऑटो ड्राइवर नशे में था, जिससे उसकी लड़ाई हुई थी वो भी नशे में था। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने क्या दोनों को हिरासत में लेकर मेडिकल के लिए भेजा, पिंक बूथ पर तैनात पुलिसकर्मी कहां थे, घंटों तड़प तड़प कर एक व्यक्ति एक नौजवान ने दम तोड़ दिया तो पुलिस ने उसकी मदद क्यों नहीं की।
1: आप सोच रहे होंगे कि मरने वाले राजकुमार के हाथ से खून कैसे निकला, तो इस सवाल का जवाब ये कांच का दरवाजा है जिसे जोर से खटखटाने की वजह से राजकुमार के हाथ पे चोट लग गई। वो बेसुध होकर बूथ के आगे गिर जाता है और ज्यादा खून निकलने से उसकी मौत हो जाती है।
5: पिंक बूथ है यानी अगर कोई महिला मुसीबत में पड़ती है वो अगर मदद के लिए आती है तो अंदर मौजूद पुलिसकर्मी उसकी मदद करेंगी, लेकिन अगर कोई और आता है तो उसे यहाँ पर जाहिर सी बात है तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। लेकिन रविवार को जो कुछ भी यहाँ पर हुआ उस पर यकीन करना एक बार की मुश्किल है। दोपहर तकरीबन 3:30 बजे के आसपास एक ऑटो आता है और सीधे अंदर घुस जाता है। आप देखिए यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर ऑटो आ जाता है। ऑटो में कुल 3 लोग थे, एक ऑटो चला भी रहा था, तो करीब 4 से 5 लोग अंदर मौजूद थे। उनकी आपस में किसी बात पे लड़ाई हो रही थी, उनको शायद पिंक बूथ समझ में नहीं आया होगा, वो यहाँ पर लड़ने लगते हैं। जब यहाँ पर समझाया गया तो वो ऑटो लेके वापस बाहर की तरफ आते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं कुछ दूर। आगे आप जो चौराहा देख रहे हैं इस चौराहे के पास पहुंचते हैं, ऑटो रुकता है, उनमें आपस में फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और उसके बाद जो ऑटो में ज्यादातर लोग थे वो चले जाते हैं, जबकि जो राजकुमार है 22 साल उम्र है, पास में ही रहता था सिवान, वो वहीं सड़क पर लेट गया।
1: राजकुमार ने जब मदद की गुहार इस पिंक बूथ में लगाई तब इसी तरह का माहौल हो गया, लेकिन जब राजकुमार की सुनवाई नहीं हुई तो उसने बूथ के कांच के गेट को खटखटाया और इसी दौरान उसकी नस कटने से खून बहने लगा। लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने मदद तो दूर पास के पुलिस स्टेशन से मदद कराने या एम्बुलेंस बुलाने तक की जहमत नहीं उठाई। दावा है कि जिससे राजकुमार की बाद में जान चली गई।
0: जो 100 नंबर कॉल थी परसों वो किसने की थी?
10: वो तो ऑनलाइन करी, बेटे ने करी थी कि जब वो शीशे में हाथ हाथ मारा।
0: अच्छा, हाथ हाथ मारा जब शीशे में। कितनी देर तक वो बाहर पड़ा रहा? आपने
10: बता, जो बताया मैं था नहीं।
0: अच्छा, कितनी देर बाहर पड़ा?
10: मैं रात को आया था, बहुत देर तक।
0: कितनी देर तक बाहर बॉडी पड़ी रही होगी?
10: पता नहीं,
0: बता नहीं।
1: अब आप सोचिए, पुलिस ने एम्बुलेंस तक बुलाने की कोशिश नहीं की, मतलब पिंक बूथ में मौजूद पुलिसकर्मियों ने अपने दरवाजे पर मदद की गुहार लगाते एक आम आदमी को न सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया बल्कि उसकी आवाज कानों तक ना आए इसके लिए दरवाजा बंद कर लिया।
5: बताया जा रहा है कि वो शराब के नशे में था और जो बाकी लोग थे वो भी शराब के नशे में थे। वो वहीं 3-4 मिनट पड़ा रहा जैसा कि आई विटनेस हमें बताया, उसके बाद फिर वो वापस आता है और वापस वो आया तो अंदर की तरफ जब वो आया पुलिस चौकी में तो हम आपको दिखाएं कि वो चौकी में दोबारा आता है और चौकी में जब वो दोबारा आता है तो सामने जो आप ये लोहे का गेट देख रहे हैं इसको बजाने लगा। ये जाहिर सी बात है ये तो बंद है, आप देखिए तब भी इस पे ताला लगा था। उसके बाद जब उसकी कंडीशन देखी तो जो अंदर महिला पुलिसकर्मी थी उन्होंने ये जो गेट है आप ये गेट देखिए ये बन चुका है, तब ये गेट ये टूट गया था शीशे का।
1: आज तक को पता चला है कि आसपास के लोगों की शिकायत के बाद एक बाइक सवार पुलिसकर्मी आया, उसने राजकुमार को ऑटो में बैठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की लेकिन एक भी ऑटो नहीं रुका। इसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई जिसे आने में हुई देरी ने दावा है कि राजकुमार की जान ले ली।
11: एक ऑटो चालक द्वारा एक ऑटो सवारी को बिठाया गया, दोनों ही नशे की हालत में थे। पैसे के लेन देन को लेके दोनों में आपस में वाद विवाद हुआ जिसके बाद दोनों ही पिंक बूथ पर पहुंचे और शराब के नशे की हालत में ऑटो सवारी ने तेज से पिंक बूथ के गेट पर हाथ मारा जिससे उसके हाथ में कांच गड़ गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।
1: यूपी पुलिस अक्सर एनकाउंटर वाले वीडियो दिखाकर अपराधियों को खबरदार करती है, लेकिन गाजियाबाद की यह घटना बताती है कि यूपी पुलिस को सख्त बनने के साथ संवेदनशील बनने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर वो संवेदनशीलता होती तो 22 साल का नौजवान पिंक बूथ के बाहर तड़प कर दम नहीं तोड़ता। हिमांशु मिश्रा, गाजियाबाद आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज।

0: आज लखनऊ में सजेगा पंचायत, आज तक उत्तर प्रदेश का महामंच। मुख्यमंत्री योगी समेत राजनीतिक दिग्गज करेंगे शिरकत। विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष की आवाज। संसद सत्र की तैयारी के बीच गृह मंत्री अमित शाह से हाई प्रोफाइल मुलाकातों का सिलसिला जारी। यूपी के सीएम योगी के बाद अमित शाह से मिले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन के दोषी होने पर आप बीजेपी में ठनी। सीएम रेखा ने आप पर संरक्षण का आरोप लगाया। कपिल मिश्रा ने किया कटाक्ष। ताहिर सिर्फ एक्टर, असली डायरेक्टर कोई और। बर्मिंघम वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से धोया। शुभमन गिल, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर की बदौलत मिली शानदार जीत। 3 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे। और 24 घंटों में ट्रंप का यूटर्न। हॉर्मुज में नहीं लगेगा 20% टैक्स, टैरिफ की जगह खाड़ी देश करेंगे अमेरिका में निवेश। ईरानी जहाजों की नाकेबंदी का ऐलान। एक तरफ श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जांच चल रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब श्रीराम मंदिर के मामले पर पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया। एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट आज सौंप सकती है।
1: ऐसे पोस्टर्स यूपी के अलग अलग शहरों में लगाए गए हैं। एक पोस्टर में अखिलेश और मुलायम सिंह यादव हैं। इसमें लिखा है मुलायम सरकार की असलियत। दूसरे पोस्टर में अखिलेश, शिवपाल और राम गोपाल यादव की तस्वीरें हैं। इसमें लिखा गया है दिल में बाबर, मुंह में राम। ऐसे पोस्टर्स लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर और अयोध्या में लगाए गए हैं।
2: जैसे चुनाव नजदीक आएगा, सब पुराने बयान निकाले जाएंगे, प्रहर पोस्टर निकाले जाएंगे, सबके निकलेंगे।
1: इस सियासत से इतर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेजी से बढ़ रही है। खबर है कि मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाने वाले कुछ विशेष दानदाताओं के दान को ट्रस्ट वापस कर सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद दर्जनों दानदाताओं ने ट्रस्ट के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और अपने दान की चोरी या घोटाले का शक जाहिर किया था। कई श्रद्धालुओं का दावा था कि उनकी ओर से भेंट की गई वस्तुओं की रसीद नहीं दी गई। आरोप ये भी है कि उनकी दी गई भेंट राम मंदिर में प्रदर्शित या सुरक्षित नहीं रखी गई। अब इन वस्तुओं को लौटाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उधर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटा दिया गया है। खबर ये भी है कि चढ़ावा चोरी की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम जल्द ही अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। आज तक ब्यूरो।
0: अयोध्या में चढ़ावे चोरी का मामला सामने आते ही वक्फ के घोटाले का राजनीतिक शोर सुनाई पड़ने लगा। पहले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष बासित अली ने बहराइच के सालार गाजी दरगाह में घोटाले के आरोप लगाए। फिर मुख्यमंत्री योगी ने कई मंचों से वक्फ के घोटालों का उल्लेख किया। अब खुद मुस्लिम जमात के मौलाना रजवी ने वक्फ के घोटालों के आरोप लगाए।
3: क्या वक्फ बोर्ड में भी चल रही है धांधली? क्या वक्फ बोर्ड में भी हुआ है घोटाला? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर वक्फ के घोटालों की जांच करने की मांग की है।
4: कि राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड का निकल करके सामने आएगा। वो लाखों का नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों का जो घोटाला है वो अरबों का घोटाला सामने निकल करके आएगा।
3: मौलाना रिजवी सीएम योगी के नाम लिखी चिट्ठी में दावा करते हैं कि वक्फ बोर्ड में सबसे ज्यादा लूट समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई।
4: जो वक्फ के जिम्मेदारान थे उन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को जो करोड़ों में थी उनको रेवड़ियों के भाव बेचा गया, वक्फ की संपत्ति को बर्बाद किया गया और ये सारी बर्बादी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई।
3: शहाबुद्दीन रिजवी अकेले शख्स नहीं है जो वक्फ में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं।
5: पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो हर जगह के ऊपर घपलेबाजी हो रही है पूरी तरीके से।
3: समाजवादी पार्टी पर यह आरोप खुद सीएम योगी अपनी सार्वजनिक रैलियों और कार्यक्रमों में लगाते रहे हैं। जब राम मंदिर का मुद्दा सामने आया तो सीएम ने फिर से वक्फ घोटाले का जिक्र किया था।
6: अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो एक भी बार बताओ वफ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई।
3: सियासी आरोप एक तरफ लेकिन आरोपों की जांच दूसरी तरफ। शिया वक्फ बोर्ड से जुड़े इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दिया जाए तो यूपी में किसी वक्फ घोटाले की सघन जांच अभी तक नहीं हो सकी है।
7: दूसरे स्थानों पे या दूसरे धर्म स्थल पे कहीं अगर कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से वहाँ सुधार होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन बयानबाजी नहीं। अगर कोई सबूत किसी के पास है, एविडेंस है, तो वो सामने लाना चाहिए।
8: वफ के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पहले हुआ करता था। वफ की जमीनों को औने पौने दामों पर कब्ज हो जाते थे, किराए पे देते थे और उसके धन का दोहन होता था। वफ जिस भावना से किया जाता उस भावना का तिरस्कार होता था। लेकिन आज सरकार के प्रयासों के बाद हम वफ की संपत्तियों को रेगुलराइज करने का काम कर रहे हैं।
3: यूपी और देश में वफ की संपत्तियों के घोटालों के आरोप शुरू से लगते रहे हैं और उसे दूर करने के लिए ही सरकार ने वफ संशोधन कानून भी बनाया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि नए कानून के तहत बने वफ बोर्ड अब वफ संपत्तियों का उचित रखरखाव कर पाएंगे। बरेली से कृष्ण गोपाल राज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: महाराष्ट्र के नासिक में एक परिवार वाटरफॉल घूमने गया लेकिन वहां दो बदमाशों ने परिवार की महिला से छेड़खानी की। परिवार ने विरोध किया तो फिर 15 किलोमीटर तक पीछा करके चार बार बदमाशों ने हमला किया। इस मामले में 9 लोग पकड़े गए, 3 लोग फरार हैं।
9: बारिश का मौसम, महाराष्ट्र के अलग अलग वाटरफॉल, जहां इस वक्त हर परिवार छुट्टी मनाने के लिए अपनों के संग कुछ खुशी के पल बिताने के लिए पहुंचता है। लेकिन 12 जुलाई रविवार को नासिक के भावली वाटरफॉल के पास भागवत परिवार के साथ जो कुछ हुआ है वो हर आम आदमी को डरा देता है जो कहीं छुट्टी मनाने जाता है।
10: वहां के दो लोकलाइट थे, उन्होंने कुछ गंदी कमेंट पास कर दी। वो व्हाइट कलर की बलून है, उसने आगे हमारे आके रास्ता ब्लॉक किया,
11: जगह पर।
10: मेरा भाई बैठा था, उसकी कांच फोड़ दी।
11: कांच फूट रही थी तो बच्चा भी डर गया।
10: फाइटर से वगैरह कांच फोड़ी तो हमने गाड़ी थोड़ा रिवर्स लेके भागना चालू किया।
11: जहाँ भी रुके वहाँ पे हमारी गाड़ी फूटी।
9: सबसे पहले दहशत के इस वीडियो को देखिए जिसमें एक कार में भागता हुआ मेहर भागवत का परिवार, जिनके पीछे एक बाइक पर हाथ में लोहे की रॉड लेकर अटैक करने के लिए आते दो गुंडे हैं। और फिर दो लोग बाइक से, बाकी लोग सफेद रंग की कार से इस परिवार का पीछा 15 किलोमीटर तक करके हमला करते हैं, जो रविवार को नासिक के भावली वाटरफॉल के पास पिकनिक मनाने पहुंचे। इसके बाद ये सवाल हर आम आदमी का परिवार पूछना चाहता है, क्या पिकनिक स्पॉट पर भी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल सकती है? अब आप जानना चाहेंगे कि यहाँ हुआ क्या। मीर भागवत और उनकी पत्नी की साफ बीती को आज हर परिवार इसीलिए जरूर सुने।
10: मैं और मेरे भाई की फैमिली है ना, हम टोटल 8 लोग, उसके 2 बच्चे, मेरे 2 बच्चे, मिसेस उसकी, मेरी मिसेस, हम भावली डैम पे घूमने गए थे फैमिली के साथ में, टाइम स्पेंड करेंगे अच्छे फैमिली के साथ में। हम वहाँ पे गए तकरीबन 2-3 बजे, वहाँ पे खाना वगैरह खाया, पानी में खेले हम सब। 5:30 बजे के करीब निकलना है भाई, शाम हो रही है, तो बच्चे आके गाड़ी में बैठे, लेडीज़ वगैरह निकलने लगे और हम जेंट्स थे तो सब जो खाने के बैग वगैरह थे हम पीछे से लेके आ रहे थे। तो मिसेज जा रही थी थोड़े अभी पानी में भीगने की वजह से ड्रेसेस वगैरह गीले थे, तो किसी वहाँ के दो लोकलाइट थे, उन्होंने कुछ गंदी कमेंट पास कर दी। तो मिसेज ने उनसे आर्ग्यू किया कि आप ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने भी आर्ग्यू किया।
11: चेंज करने हम कार के पास जा रहे थे तो आप एक बाइक पे दो लड़के खड़े थे, तो मैं उनके वहाँ से तो जाना ही पड़ेगा तो उनके बाजू से गई, तो उन्होंने मुझे शिट्टी बजाई और कुछ कमेंट पास की। तो मैंने उनको बोला तुम पागल हो गए कि पब्लिक प्लेस में लेडीज को छेड़ रहे हो, उनको समझता नहीं आजकल क्या चल रहा है इनका। नहीं बोले ऐसा दस्त है, वो मराठी में मुझे बोलने लगे वगैरह, तो फिर मैं थोड़ा उनके ऊपर ये करने लगा।
10: तो उनका ये चालू था झगड़ा, तो मैंने दूर से देखा तो मैं भागते हुए गया कि क्या हुआ। तो इस मिसेस ने बोला कि ये मुझे छेड़ रहे, तो मैंने उनको डांटा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो।
11: मेरे हस्बैंड ने देखा कि इसका क्या चल रहा है उनके साथ, तो फिर ये भी पीछे से, अरे मेरे जा बहू नहीं बोलता, निकल जा बोले बोले से मराठी बोले, निकल जाओ तुम, क्यों दिमाग लड़ा। वहाँ पे बाजू में जो लड़के खड़े थे, 7-8-10 लड़के थे जो कार है वहाँ पे, तो वो आए बोले हमारे गाँव के लड़के को तुम ऐसे कैसे बोल सकते, हाथ क्यों लगा सकते।
10: तो मैंने उनको थोड़ा सा ये किया कि भाई तुम निकल जाओ, तो वो निकल गए। लेकिन वहाँ के जो लोकल लाइट थे, वहाँ पे एक फोर व्हीलर में कोई शॉप रन करते वहाँ के लोकल बिजनेस, तो वहाँ के जो 6-8 बच्चे थे लोकल लाइट, वो आए क्या हुआ क्या हुआ, तो वो लोग इशू करने लग गए।
11: थोड़ी सी हाथापाई हुई हमारी, वहाँ पे पब्लिक लोगों ने हमको बचा लिया, चलो निकलो यहाँ से, जाने दो छोड़ दो। आगे जाके इन्होंने बोले नो पूरा आगे सामने से आपको उन्होंने आड़ी गाड़ी लगा दी और डायरेक्ट फाइटर से ना कांच फोड़ने चालू कर दी, तो हम डर गए। मैंने को बोला किरण भगाओ गाड़ी भगाओ, इन्होंने इतनी गाड़ी भगाई कि पीछे से फिर टू व्हीलर रोड वगैरह लेके अपने वीडियो में देखा, वो सब घटना चालू हो गई। फिर आगे जाके उनका एक लड़का गाड़ी पे लटका भी, पूरा लटका।
9: सोचिए कितने बेखौफ रहे होंगे वो गुंडे जो 15 किलोमीटर तक पीछा करके हमला करते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि क्या रास्ते में कहीं पुलिस नहीं थी, कहीं पुलिस पोस्ट नहीं थी।
10: वहाँ से आगे आने पे भावली डैम है, वहाँ पे हमें पुलिस वैन मिली ब्लू कलर की, तो वहाँ पे हमने पूछा कि हमें पुलिस कंप्लेंट करनी है, तो बोले ठीक है आप इगतपुरी पुलिस स्टेशन जाइए। आगे निकले वहाँ से भावली डैम से 2 किलोमीटर आगे, तो एक वाइट कलर की बलेनो है, उसने आगे हमारे आके रास्ता ब्लॉक किया। जैसा रास्ता ब्लॉक किया तो वहाँ से उसमें से उतर के 2-4 बच्चे भागे, उन्होंने आगे की और मेरे बाजू में जो मेरा भाई बैठा था उसकी कांच फोड़ दी। तो हमने गाड़ी थोड़ा रिवर्स लेके भागना चालू किया, हमने भागना चालू किया, बोला इगतपुरी पुलिस स्टेशन जाते हैं। लेकिन जैसे हम नासिक मुंबई हाईवे पे आए फ्लाईओवर के नीचे नियर बाय, वहाँ पे 2 बाइक जो वीडियो वायरल हो रहा है पीछे से आके रॉड से मार रहे हैं, उन्होंने पीछे से रॉड से मारा और आगे आके वापस उन्होंने 2-व्हीलर से हमें ब्लॉक किया। वहाँ पे उन्होंने आगे वापस 70 से हमारी गाड़ी फोड़ी। फिर हमने सोचा इगतपुरी में जाना गलत होगा, ये लोकल लाइट है, तो इससे अच्छा अपन नासिक की तरफ भागते।
9: सुनकर डर लगता है मानो फिल्म में जैसे किसी विलेन का जंगल राज दिखाते, वो हालत सच में हो, मतलब रोक रोक कर परिवार पर हमला होता रहा और भागवत परिवार जान बचाने को भागता रहा।
11: 6 जगह पर अटैक किया लगभग उनको। सबसे पहले उन्होंने भावली डैम के आगे जो टर्न आता है ना वहाँ पे पकड़ा, क्योंकि उनको पता है यहाँ से टर्न मारना थोड़ा बड़ी गाड़ी को मुश्किल होगा। बरोबर वहाँ पे पकड़ा, वहाँ पे आए काज भी छोड़े, वहाँ पे बच्चे डर गए, तब हमने मोबाइल चालू नहीं किया। उसके बाद वहाँ से जब हम निकले तो पीछे 2 बाइक पे जो लड़के आ रहे थे जो रोड था, तो मैंने बेटे को बोला मैंने बेटा मोबाइल निकल के उनका वीडियो ले और बाकी जाने दो। फिर मेरे बेटे ने वो वीडियो लिया, तो वीडियो लेते लेते उसने वीडियो देखा कि वो देख रहा है कि हम मोबाइल वीडियो ले रहे। फिर उसने रोड फेंका, 2-2 रोड फेंके, वहाँ पे उनका निशाना चुप गया। फिर आगे जाके फिर उनका निशाना परफेक्ट लगा, वो वीडियो हम ले नहीं सके, कांच फूट रही थी तो बच्चा भी डर गया, वो वीडियो हमने लिया। फिर आगे जाके टोल नाका के बाहर रुके, तो एक पिंक शर्ट वाला है उसने आके से एक बटन बंद कर दिया हमारी गाड़ी का, बंद कर दिया, कांच खुले थे पूरे बंद कर दिया। फिर बोले उतर जाओ अपन ये करेंगे सॉर्ट आउट करेंगे मिटा देंगे ऐसा वैसा। तो ये मेरे हस्बैंड बोले चलो देखते, फिर मेरे पागल हो गए कि यहाँ पे उतरना रिस्क है, निकलो। फिर हम वहां से वापस निकले।
9: पीड़ित परिवार का नासिक में नेशनल हाईवे पर 15 किलोमीटर तक पीछा करते ये गुंडे, टोल प्लाजा, सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड, हाईवे पुलिस, जहां सब कुछ होता है, लेकिन किसी से ये नहीं डरते और कोई मदद के लिए भी आगे नहीं आते।
10: अटैक करने के लिए उन्होंने 70 फाइटर्स और ये बेसबॉल के ये थे, शायद बेसबॉल के आप उसको क्या बोलते हैं, स्टिक्स बोल सकते हैं, कुछ लकड़ी के भी थे। और मेरे हिसाब से मुझे किसी के हाथ में एक सिल्वर कलर का, वो शायद छोटी सी ऐसी तलवार, तो ऐसी थोड़ा कर्व शेप में होता लेकिन वो सीधी थी, लेकिन सिल्वर तार चमक रहा था। अभी वो क्या हो रहा था, मेरा इंटेंशन था कि भागना है, बचना है।
9: इस कार की हालत देखी, चारों तरफ से हमला हुआ, पत्नी बच्चे चीख रहे होंगे, पति गाड़ी भगाते रहे कि किसी तरह इनसे बच जाए। आखिरकार ये पुलिस तक पहुंचे, उसके बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 3 लोग अभी फरार।
12: हमने 9 आरोपी अभी तक निष्पन्न किए हैं, जो कि एफआईआर में 6-7 आरोपी थे, बट इसमें जो शेल्टर देने वाले आरोपी है या फिर एसोसिएट्स है जिनको इन्होंने हेल्प किया था, वो भी हमने इसमें आरोपी किए हैं और अभी तक हमने 9 आरोपी इसमें ताबे में लिया है। इसपे आगे की जो कार्रवाई है वो आगे की कार्रवाई चल रही है। पर्यटन को सुरक्षा ऑलरेडी दी हुई है, पर्यटन के वहां पे बंदोबस्त भी था, वो लोग भी वहां पे पुलिस को मिले। बस इस घटना में जो है ये घटना कुछ 7-8 किलोमीटर दूर जाके जहां पे कोई मोबाइल लोकेशन नहीं आ रहा था उस पॉइंट पे हुई है।
9: ऐसे आरोपी हर पिकनिक स्पॉट के पास हर राज्य में मिलते हैं, जो कहीं तय दर से ज्यादा कीमत लेने को, कहीं भाषा को लेकर, कहीं संस्कृति को लेकर या तो विवाद करते हैं या छेड़खानी और मारपीट करते हैं। ये सोचते हैं कि ये लोकल है तो बाहर से छुट्टी मनाने आए लोगों पर हमला कर सकते हैं, उनको डरा सकते हैं, ये उन्हीं लोगों पर हमला करते हैं जिनके सैलानी बनकर आने से इनके और इनके इलाके के लोगों को रोजगार मिलता। जरूरी है कि नासिक के दोषियों को ऐसी सजा मिले जिसे सुनकर देखकर बाकी जगहों पर ऐसी आपराधिक सोच वाले सिहर जाएं, ताकि कोई परिवार कोई आम आदमी किसी जगह छुट्टी मनाने जाने से पहले डरे नहीं।
0: पुलिस चाहे जहां की हो आम आदमी पार्टी को केंद्र में रखने के दावे करती है। गाजियाबाद पुलिस का ध्येय भी सेवा सुरक्षा और समर्पण है जो नागरिकों के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेकिन अगर वाकई में ऐसा होता तो 22 वर्ष का एक नौजवान पिंक बूथ के बाहर तड़प कर नहीं मरता। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पिंक बूथ की महिला पुलिसकर्मियों ने राजकुमार की मदद करना तो छोड़िए अपने बूथ का दरवाजा तक बंद कर लिया।
13: पुलिस कराते हुए मेरा बेटा का जान चल गया, किस लिए चल गया, किस चला गया, इतनी सी मेरा बेटा के हाथ कट गया, क्यों मेरा बेटा के जान चल गया।
9: 22 साल के बेटे को गवाने वाली एक माँ का ये सवाल गाजियाबाद पुलिस से। मामला बहुत दुखद क्योंकि पिंक बूथ के बाहर 40 मिनट तक एक नौजवान मदद के लिए तड़पता रहा। बार बार मदद की गुहार लगाने पर महिला पुलिस मदद को आगे नहीं आई, उल्टा पिंक बूथ का दरवाजा बंद कर लिया गया।
13: अंदर पुलिस लेडीज बैठ के देख रही है मेरा लड़का ऐसे ऐसे तड़प रहा है, लेकिन कोई नहीं उठाया जब मेरा लड़का के दम टूट गया।
9: यकीन करना मुश्किल है कि गाजियाबाद में दिन दहाड़े एक नौजवान ज्यादा खून बहने से सबके सामने सड़क पर मर गया, वो भी पुलिस के पिंक बूथ के बाहर। राजकुमार को तड़पता देखकर भी महिला पुलिस कर्मियों का दिल नहीं पसीजा।
14: अच्छा गिरा कहाँ था एग्जैक्टली आप? यहाँ पे गिरा पड़ा था।
15: ये है
14: ये जो जगह है यहाँ पे ही गिरा पड़ा था।
15: हाँ जी, यहाँ से वो खून आया ना पूरा।
14: हाँ।
15: यही गिरा पड़ा।
14: ठीक।
9: थानों में फरियादियों के साथ पुलिस के संवेदनहीन बर्ताव की शिकायत तो आपने सुनी हो, लेकिन गाजियाबाद में जो कुछ हुआ वो इंसानियत के मरने का भी सबूत देता है।
16: 40 मिनट तक राजकुमार यूं ही सड़क पर तड़पता रहा और तड़प तड़प कर उसने दम तोड़ दिया। गाजियाबाद पुलिस का इस मामले में शर्मनाक बयान आया है कि ऑटो चालक और राजकुमार दोनों नशे में थे, लेकिन गाजियाबाद पुलिस को यह जवाब देना होगा कि जब दोनों मदद के लिए पुलिस के पास गए तो पुलिस आखिर क्या कर रही थी।
9: वीडियो में दिख रहा है ये 22 साल का राजकुमार जिसके शरीर का कतरा कतरा खून जमीन पर फैलता गया। इस नौजवान को दम तोड़ते हुए दर्जनों लोग देखते रहे, तमाशबीनों में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल। तो पिंक बूथ के दरवाजे पर ये सब कुछ हुआ। जिन्हें लोगों की मदद करने के लिए ही तनख्वाह मिलती है वो अपनी जिम्मेदारी निभाना तो दूर दरवाजा बंद कर बैठी रहे ताकि मरने वाले की कराहने की आवाज उन तक ना पहुंचे।
17: वो जब नीचे वहाँ तो हमें किसी ने ये बताया कि वो नीचे पड़ा था, वो इशारे कर रहा था कि मेरे को बचाओ। वहाँ लेडीज पुलिस खड़ी थी, हमारे पास वीडियो है, वो लेडीज पुलिस खड़ी थी। मान लो आप प्रशासन हो, किस लिए हो? हमारी सेवा के लिए ना। जब आप ही नहीं करोगे, जस्ट यहाँ कोई कुछ काम हो जाए।
18: आसपास जो दुकानें थी
17: जी,
18: वो लोग भी वीडियो बना रहे थे
17: जी,
18: मदद नहीं की,
17: किसी ने मदद नहीं करी।
9: गाजियाबाद में रविवार की दोपहर ऑटो चलाने वाले राजकुमार का किराए को लेकर एक सवारी से झगड़ा होता है। उसने मदद के लिए पिंक बूथ का रुख किया लेकिन वहां उसे मदद नहीं मिली।
13: मेरा लड़का चौकी में गया नाम दाखिल कराने, मेरा लड़का के चौकी में से बाहर धक्का मार के निकाल के दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद मेरा लड़का दीवार में हाथ मारा तभी ना खोले, उसके बाद मेरा लड़का शीशा पर हाथ मार दिया, मेरा लड़का के हाथ कट गया, खून निकलते निकलते मेरा लड़का वहीं बेहोश हो गया।
0: गाजियाबाद पुलिस से जब इस बारे में पूछा गया तो अजीब व गरीब जवाब पुलिस की तरफ से आया कि मरने वाला नौजवान ऑटो ड्राइवर नशे में था, जिससे उसकी लड़ाई हुई थी वो भी नशे में था। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने क्या दोनों को हिरासत में लेकर मेडिकल के लिए भेजा? पिंक बूथ पर तैनात पुलिसकर्मी कहाँ थे? घंटों तड़प तड़प कर एक व्यक्ति एक नौजवान ने दम तोड़ दिया तो पुलिस ने उसकी मदद क्यों नहीं की?
9: आप सोच रहे होंगे कि मरने वाले राजकुमार के हाथ से खून कैसे निकला, तो इस सवाल का जवाब ये कांच का दरवाजा है जिसे जोर से खटखटाने की वजह से राजकुमार के हाथ पे चोट लग गई। वो बेसुध होकर बूथ के आगे गिर जाता है और ज्यादा खून निकलने से उसकी मौत हो जाती है।
19: पिंक बूथ है, यानी अगर कोई महिला मुसीबत में पड़ती है, वो अगर मदद के लिए आती है तो अंदर मौजूद पुलिसकर्मी उसकी मदद करेंगी, लेकिन अगर कोई और आता है तो उसे यहाँ पर जाहिर सी बात है उसकी सुनवाई नहीं होगी। लेकिन रविवार को जो कुछ भी यहाँ पर हुआ उस पर यकीन करना एक बार की मुश्किल है। दोपहर तकरीबन 3:30 बजे के आसपास एक ऑटो आता है और सीधे अंदर घुस जाता है। आप देखिए यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर ऑटो आ जाता है। ऑटो में कुल 3 लोग थे, एक ऑटो चला भी रहा था, तो करीब 4 से 5 लोग अंदर मौजूद थे। उनकी आपस में किसी बात पे लड़ाई हो रही थी, उनको शायद पिंक बूथ समझ में नहीं आया होगा, वो यहाँ पर लड़ने लगते हैं। जब यहाँ पर समझाया गया तो वो ऑटो लेके वापस बाहर की तरफ आते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं कुछ दूर। आगे आप जो चौराहा देख रहे हैं, इस चौराहे के पास पहुंचते हैं, ऑटो रुकता है, उनमें आपस में फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और उसके बाद जो ऑटो में ज्यादातर लोग थे वो चले जाते हैं, जबकि जो राजकुमार है 22 साल उम्र है, पास में ही रहता था सिवान, वो वहीं सड़क पर लेट गया।
9: राजकुमार ने जब मदद की गुहार इस पिंक बूथ में लगाई तब इसी तरह का माहौल हुआ, लेकिन जब राजकुमार की सुनवाई नहीं हुई तो उसने बूथ के कांच के गेट को खटखटाया और इसी दौरान उसकी नस कटने से खून बहने लगा। लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने मदद तो दूर पास के पुलिस स्टेशन से मदद कराने या एम्बुलेंस बुलाने तक की जहमत नहीं उठाई। दावा है कि जिससे राजकुमार की बाद में जान चली गई।
20: जो 100 नंबर कॉल थी परसों, वो किसने की थी?
21: वो तो उन्होंने करी, बेटे ने करी थी कि जो वो अच्छी थे, हाथ हाथ मारा।
20: अच्छा, हाथ हाथ मारा जब शीशे में। कितनी देर तक वो बाहर पड़ा रहा? आपने
21: जो बताया मैं था नहीं।
20: अच्छा, कितनी देर बाहर पड़ा?
21: और मैं रात को आया था, बहुत देर तक।
20: कितनी देर तक बाहर बॉडी पड़ी रही होगी?
21: पता नहीं।
9: अब आप सोचिए, पुलिस ने एम्बुलेंस तक बुलाने की कोशिश नहीं की, मतलब पिंक बूथ में मौजूद पुलिसकर्मियों ने अपने दरवाजे पर मदद की गुहार लगाते एक आम आदमी को न सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया बल्कि उसकी आवाज कानों तक न आए इसके लिए दरवाजा बंद कर लिया।
19: बताया जा रहा है कि वो शराब के नशे में था और जो बाकी लोग थे वो भी शराब के नशे में थे। वो वहीं 3-4 मिनट पड़ा रहा जैसा कि आई विटनेस हमें बताया, उसके बाद फिर वो वापस आता है और वापस वो आया तो अंदर की तरफ जब वो आया पुलिस चौकी में, तो हम आपको दिखाएं कि वो चौकी में दोबारा आता है और चौकी में जब वो दोबारा आता है तो सामने जो आप ये लोहे का गेट देख रहे हैं इसको बजाने लगा। ये जाहिर सी बात है ये तो बंद है, आप देखिए तब भी इस पे ताला लगा था। उसके बाद जब उसकी कंडीशन देखी तो जो अंदर महिला पुलिसकर्मी थी उन्होंने ये जो गेट है, आप ये गेट देखिए ये बन चुका है, तब ये गेट ये टूट गया था शीशे का।
9: आज तक को पता चला है कि आसपास के लोगों की शिकायत के बाद एक बाइक सवार पुलिसकर्मी आया, उसने राजकुमार को ऑटो में बैठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की लेकिन एक भी ऑटो नहीं रुका। इसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई जिसे आने में हुई देरी ने दावा है कि राजकुमार की जान ले ली।
22: एक ऑटो चालक द्वारा एक ऑटो सवारी को बिठाया गया, दोनों ही नशे की हालत में थे। पैसे के लेन देन को लेकर दोनों में आपस में वाद विवाद हुआ जिसके बाद दोनों ही पिंक बूथ पर पहुंचे और शराब के नशे की हालत में ऑटो सवारी ने तेज से पिंक बूथ के गेट पर हाथ मारा जिससे उसके हाथ में कांच गड़ गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।
9: यूपी पुलिस अक्सर एनकाउंटर वाले वीडियो दिखाकर अपराधियों को खबरदार करती है, लेकिन गाजियाबाद की ये घटना बताती है कि यूपी पुलिस को सख्त बनने के साथ संवेदनशील बनने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर वो संवेदनशीलता होती तो 22 साल का नौजवान पिंक बूथ के बाहर तड़प कर दम नहीं तोड़ता। हिमांशु मिश्रा, गाजियाबाद, आज तक।
0: राजस्थान की सबसे बड़ी चपरासी भर्ती में पीएचडी से लेकर एमबीए एमसीए तक के बेरोजगार युवाओं ने परीक्षा तो पास कर ली मगर नौकरी मिलने की जगह अब वो दूसरी परीक्षाओं में लग गए, जिसके कारण चपरासी भर्ती के असली अधिकारी प्रदर्शन को लाचार हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, लेकिन उन्हें खाली पद के बदले नौकरी देने वाला नियम लागू नहीं हो रहा।
9: क्या राजस्थान में सरकारी नौकरी बिना रुलाए नहीं दी जा सकती? सवाल सीधा सा है, वजह मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के घर के बाहर बैठे ये बेरोजगार जो चपरासी भर्ती परीक्षा में पास हुए लेकिन फिलहाल वेटिंग लिस्ट में। आप सोचेंगे वेटिंग लिस्ट में हैं तो प्रदर्शन क्यों? इसलिए पहले मुख्यमंत्री का बयान सुनिएगा।
23: राज्य सेवा के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे अधिकारी कर्मयोगी की भावना से रूल बेस्ड से रोल बेस्ड कार्यशैली की ओर अग्रसर होंगे। एक वर्ष के भीतर कर्मचारियों द्वारा पद त्यागने की स्थिति में उस पद की प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। एकल महिला कर्मचारी के लिए चाइल्ड केयर लीव 3 के स्थान पर 6 चरणों में स्वीकृत किया जाएगा।
9: मतलब समझिए, मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर किसी भर्ती में चयनित शख्स 1 साल के भीतर पद छोड़ देगा तो उसी भर्ती की वेटिंग लिस्ट से किसी और को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी चपरासी भर्ती में ये नियम लागू करने से मना कर दिया गया। अब जो 1-2 नंबर से वेटिंग लिस्ट में चले गए उनको लगता है कि जो मौका मिल सकता था वो भी छिन रहा है, क्योंकि भर्ती नियम लागू होने से पहले की है।
1: जिस तरह से ये भर्ती में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा खाली पद बच जाएंगे इस नौकरी में। सरकार ने 1 साल का वेटिंग का नियम भी बना दिया है, मगर जिस नौकरी में जरूरत है इस नियम को लागू करने के लिए उसमें अधिकारी लागू नहीं कर पा रहे हैं।
9: डिप्रेशन की दवाइयां पॉलिथीन में लेकर बैठे रामपाल प्रजापति 40 साल के हो चुके, सितंबर में ओवर एज हो जाएंगे, चपरासी परीक्षा में आधे पॉइंट से फाइनल रिजल्ट में रह गए। ऐसे लोग डरे हुए, वेटिंग लिस्ट वालों को मौका नहीं देंगे तो रामपाल जैसे बेरोजगार टूट जाएंगे।
2: मेरी एज भी नहीं है सर, मैं कहाँ जाऊंगा, इसमें 1 ईयर वेटिंग रूल के लिए आए सर हम, ये हमें मिलना चाहिए, ये हमारा न्याय है और अपने न्याय के लिए हम हक मांग रहे हैं सर।
9: पॉलिटेक्निक की 2015 में पढ़ाई कर चुके भरतपुर के गौरव सिंह 30 साल के हो गए, हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, भर्ती की वेटिंग लिस्ट में। शिव प्रकाश शर्मा 1 नंबर से फाइनल मेरिट से बाहर है, वेटिंग का नियम इस भर्ती में लागू हो जाए तभी इनको नौकरी मिल पाएगी।
4: EWS से मेरे लगभग अभी मेरे से ऊपर लगभग 2000 बच्चे हैं EWS वाले।
5: क्या चाहते हो
4: सर? 1 ईयर वेटिंग नियम लागू हो जाए सर, प्रक्रिया दिन भर्तियों में सब में सर, पोर्तगढ़ के साथ में भी सर, ये चाहते हैं सर बस।
9: दरअसल चपरासी भर्ती में पास होने वाले लोग टीचर भर्ती, LDC, प्राध्यापक भर्ती से लेकर वाहन चालक भर्ती तक में परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 25,000 से 30,000 पद खाली रह जाएंगे। अगर इसी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में वेटिंग लिस्ट में आए लोगों से पद भर लेंगे तो ना तो दोबारा भर्ती परीक्षा कराने का खर्च जनता पर आएगा, ना ही भर्तियां लटकेंगी।
1: इसमें और भी नौकरियों को की तैयारी करने वाले लोग, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग, PhD, MBA, MCA ये सारे लोग आ गए और वो नौकरी पा लिए हैं, मगर कहा जा रहा है कि अभी भी ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, छुट्टियों पर जा रहे हैं बाकी भर्ती की तैयारियों के लिए। ऐसे में करीब 25,000 से 30,000 ये पद खाली रह सकते हैं और सरकार फिर से भर्ती निकालेगी और इन बच्चों के साथ जो पॉइंट से 1 नंबर से रह गए हैं बड़ा अन्याय हो जाएगा। कैमरा मैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: आज लखनऊ में सजेगा पंचायत, आज तक उत्तर प्रदेश का महामंच। मुख्यमंत्री योगी समेत राजनीतिक दिग्गज करेंगे शिरकत। विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष की आवाज। संसद सत्र की तैयारी के बीच गृह मंत्री अमित शाह से हाई प्रोफाइल मुलाकातों का सिलसिला जारी। यूपी के सीएम योगी के बाद अमित शाह से मिले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन के दोषी होने पर आप बीजेपी में ढली। सीएम रेखा ने आप पर संरक्षण का आरोप लगाया। कपिल मिश्रा ने किया कटाक्ष। ताहिर सिर्फ एक्टर, असली डायरेक्टर कोई और। बर्मिंघम वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से धोया। शुभमन गिल, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर की बदौलत मिली शानदार जीत। 3 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे। और 24 घंटों में ट्रंप का यूटर्न। हॉर्मुज में नहीं लगेगा 20% टैक्स, टैरिफ की जगह खाड़ी देश करेंगे अमेरिका में निवेश। ईरानी जहाजों की नाकेबंदी का ऐलान। एक तरफ श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जांच चल रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब श्री राम मंदिर के मामले पर पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया। एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट आज सौंप सकती है।
1: ऐसे पोस्टर्स यूपी के अलग अलग शहरों में लगाए गए हैं। एक पोस्टर में अखिलेश और मुलायम सिंह यादव हैं, इसमें लिखा है मुलायम सरकार की असलियत। दूसरे पोस्टर में अखिलेश, शिवपाल और राम गोपाल यादव की तस्वीरें हैं, इसमें लिखा गया है दिल में बाबर मुंह में राम। ऐसे पोस्टर्स लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर और अयोध्या में लगाए गए हैं।
2: जैसे चुनाव नजदीक आएगा सब पुराने बयान निकाले जाएंगे, प्रायर पोस्टर निकाले जाएंगे, सबके निकलेंगे।
1: इस सियासत से इतर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेजी से बढ़ रही है। खबर है कि मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाने वाले कुछ विशेष दानदाताओं के दान को ट्रस्ट वापस कर सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद दर्जनों दानदाताओं ने ट्रस्ट के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और अपने दान की चोरी या घोटाले का शक जाहिर किया था। कई श्रद्धालुओं का दावा था कि उनकी ओर से भेंट की गई वस्तुओं की रसीद नहीं दी गई। आरोप ये भी है कि उनकी दी गई भेंट राम मंदिर में प्रदर्शित या सुरक्षित नहीं रखी गई। अब इन वस्तुओं को लौटाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उधर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटा दिया गया है। खबर ये भी है कि चढ़ावा चोरी की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम जल्द ही अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। आज तक ब्यूरो।
0: अयोध्या में चढ़ावे चोरी का मामला सामने आते ही वक्फ के घोटाले का राजनीतिक शोर सुनाई पड़ने लगा। पहले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष बासित अली ने बहराइच के सालार गाजी दरगाह में घोटाले के आरोप लगाए। फिर मुख्यमंत्री योगी ने कई मंचों से वक्फ के घोटालों का उल्लेख किया। अब खुद मुस्लिम जमात के मौलाना रजवी ने वक्फ के घोटालों के आरोप लगाए।
3: क्या वक्फ बोर्ड में भी चल रही है धांधली? क्या वक्फ बोर्ड में भी हुआ है घोटाला? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर वक्फ के घोटालों की जांच करने की मांग की है
4: कि राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड का निकल करके सामने आएगा। वो लाखों का नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों का जो घोटाला है वो अरबों का घोटाला सामने निकल करके आएगा।
3: मौलाना रिजवी सीएम योगी के नाम लिखी चिट्ठी में दावा करते हैं कि वक्फ बोर्ड में सबसे ज्यादा लूट समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई।
4: जो वक्फ के जिम्मेदारान थे उन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को जो करोड़ों में थी उनको रेवड़ियों के भाव बेचा गया, वक्फ की संपत्ति को बर्बाद किया गया और ये सारी बर्बादी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई।
3: शहाबुद्दीन रिजवी अकेले शख्स नहीं है जो वक्फ में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं।
5: पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो हर जगह के ऊपर घपलेबाजी हो रही है पूरी तरीके से।
3: समाजवादी पार्टी पर यह आरोप खुद सीएम योगी अपनी सार्वजनिक रैलियों और कार्यक्रमों में लगाते रहे हैं। जब राम मंदिर का मुद्दा सामने आया तो सीएम ने फिर से वक्फ घोटाले का जिक्र किया था।
6: अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो एक भी बार बताओ वफ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई।
3: सियासी आरोप एक तरफ, लेकिन आरोपों की जांच दूसरी तरफ। शिया वक्फ बोर्ड से जुड़े इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दिया जाए तो यूपी में किसी वक्फ घोटाले की सघन जांच अभी तक नहीं हो सकी है।
7: दूसरे स्थानों पे या दूसरे धर्म स्थल पे कहीं अगर कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से वहाँ सुधार होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन बयानबाजी नहीं। अगर कोई सबूत किसी के पास है, एविडेंस है, तो वो सामने लाना चाहिए।
8: वफ के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पहले हुआ करता था। वफ की जमीनों को औने पौने दामों पर कब्ज हो जाते थे, किराए पे देते थे और उसके धन का दोहन होता था। वफ जिस भावना से किया जाता उस भावना का तिरस्कार होता था। लेकिन आज सरकार के प्रयासों के बाद हम वफ की संपत्तियों को रेगुलराइज करने का काम कर रहे हैं।
3: यूपी और देश में वफ की संपत्तियों के घोटालों के आरोप शुरू से लगते रहे हैं और उसे दूर करने के लिए ही सरकार ने वफ संशोधन कानून भी बनाया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि नए कानून के तहत बने वफ बोर्ड अब वफ संपत्तियों का उचित रखरखाव कर पाएंगे। बरेली से कृष्ण गोपाल राज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: दिल्ली दंगे में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से दिल्ली की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा।
3: 6 साल पहले दिल्ली में हुए दंगे को लेकर दिल्ली की अदालत ने जो फैसला सुनाया, अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन दोषी पाए गए हैं। वहीं ताहिर के अलावा 4 और आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
9: क्या अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी इस बात का जवाब देंगे कि दिल्ली में दंगे भड़काने जैसे कितने और कृत्य उन्होंने किए हैं?
3: आपको बता दें कि 26 फरवरी 2020 को खजूरी खास नाले से अंकित शर्मा का शव मिला था। उनके पिता ने ताहिर हुसैन समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। तमाम गवाहों की पेशी, सबूतों और सुनवाई के बाद अदालत का फैसला दिल्ली के सामने है। जहां तक ताहिर हुसैन का सवाल है तो खबर है कि कोर्ट की सुनवाई के दौरान वो फूट फूट कर रोने लगा। ताहिर की माने तो वो बेकसूर है, उसे फंसाया गया है।
10: ताहिर जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए।
3: हिंसा में नाम आने के बाद ताहिर हुसैन से केजरीवाल ने किनारा कर लिया था। आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने गले लगा लिया।
11: 2020 में जो दंगे हुए, आज ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन और ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोगों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू जो वहाँ पे रहने वाला हिंदू समाज है उनको मारने की साजिश थी। और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए, नौजवान बेगुनाह अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर, जिनको कई बार चाकुओं से गोदा गया और बाद में उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया।
12: कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का सेशन से आया है, तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा, क्या नहीं रहा।
13: लेकिन उसका नाम ताहिर है, ये बड़ी चीज है। अगर उसका नाम कपिल होता वो भी बरी हो जाता।
3: दिल्ली दंगे को लेकर एआईएम सवाल उठाती रही है कि जिस दंगे में 53 लोगों की हत्या हुई उसमें 6 साल बाद भी सिर्फ एक हत्या के केस में दोषियों की पहचान क्यों हो पाई है। आखिर वो कैसी जांच थी जिसमें इसी दंगे में मारे गए हाशिम अली की हत्या के 12 और अनवर हत्याकांड के 5 आरोपी बरी हो जाते हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: राजस्थान की सबसे बड़ी चपरासी भर्ती में पीएचडी से लेकर एमबीए एमसीए तक के बेरोजगार युवाओं ने परीक्षा तो पास कर ली, मगर नौकरी मिलने की जगह अब वो दूसरी परीक्षाओं में लग गए, जिसके कारण चपरासी भर्ती के असली अधिकारी प्रदर्शन को लाचार हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, लेकिन उन्हें खाली पद के बदले नौकरी देने वाला नियम लागू नहीं हो रहा।
14: क्या राजस्थान में सरकारी नौकरी बिना रुलाए नहीं दी जा सकती? सवाल सीधा सा है, वजह मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के घर के बाहर बैठे ये बेरोजगार जो चपरासी भर्ती परीक्षा में पास हुए लेकिन फिलहाल वेटिंग लिस्ट में। आप सोचेंगे वेटिंग लिस्ट में हैं तो प्रदर्शन क्यों? इसलिए पहले मुख्यमंत्री का बयान सुनिएगा।
15: राज्य सेवा के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे अधिकारी कर्मयोगी की भावना से रूल बेस्ड से रोल बेस्ड कार्यशैली की ओर अग्रसर होंगे। एक वर्ष के भीतर कर्मचारियों द्वारा पद त्यागने की स्थिति में उस पद की प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। एकल महिला कर्मचारी के लिए चाइल्ड केयर लीव 3 के स्थान पर 6 चरणों में स्वीकृत किया जाएगा।
14: मतलब समझिए, मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर किसी भर्ती में चयनित शख्स 1 साल के भीतर पद छोड़ देगा तो उसी भर्ती की वेटिंग लिस्ट से किसी और को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी चपरासी भर्ती में ये नियम लागू करने से मना कर दिया गया। अब जो 1-2 नंबर से वेटिंग लिस्ट में चले गए उनको लगता है कि जो मौका मिल सकता था वो भी छिन रहा है, क्योंकि भर्ती नियम लागू होने से पहले की है।
16: जिस तरह से ये भर्ती में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा खाली पद बच जाएंगे इस नौकरी में। सरकार ने 1 साल का वेटिंग का नियम भी बना दिया है, मगर जिस नौकरी में जरूरत है इस नियम को लागू करने के लिए उसमें अधिकारी लागू नहीं कर पा रहे हैं।
14: डिप्रेशन की दवाइयां पॉलिथीन में लेकर बैठे रामपाल प्रजापति 40 साल के हो चुके, सितंबर में ओवर एज हो जाएंगे, चपरासी परीक्षा में आधे पॉइंट से फाइनल रिजल्ट में रह गए। ऐसे लोग डरे हुए हैं, वेटिंग लिस्ट वालों को मौका नहीं देंगे तो रामपाल जैसे बेरोजगार टूट जाएंगे।
17: मेरी एज भी नहीं है सर, मैं कहाँ जाऊंगा, इसमें 1 ईयर वेटिंग रूल के लिए आए हैं सर हम, ये हमें मिलना चाहिए, ये हमारा न्याय है और अपने न्याय के लिए हम हक मांग रहे हैं सर।
14: पॉलिटेक्निक की 2015 में पढ़ाई कर चुके भरतपुर के गौरव सिंह 30 साल के होगा, हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, भर्ती की वेटिंग लिस्ट में। शिव प्रकाश शर्मा 1 नंबर से फाइनल मेरिट से बाहर है, वेटिंग का नियम इस भर्ती में लागू हो जाए तभी इनको नौकरी मिल पाएगी।
18: EWS से मेरे लगभग, अभी मेरे से ऊपर लगभग 2000 बच्चे हैं EWS वाले।
19: क्या चाहते हो
18: सर? 1 ईयर वेटिंग नियम लागू हो जाए सर, प्रक्रिया दिन भर्तियों में सब में सर, पोर्तगढ़ के साथ में भी सर, ये चाहते हैं सर बस।
14: दरअसल चपरासी भर्ती में पास होने वाले लोग टीचर भर्ती, LDC, प्राध्यापक भर्ती से लेकर वाहन चालक भर्ती तक में परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 25,000 से 30,000 पद खाली रह जाएंगे। अगर इसी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में वेटिंग लिस्ट में आए लोगों से पद भर लेंगे तो ना तो दोबारा भर्ती परीक्षा कराने का खर्च जनता पर आएगा, ना ही भर्तियां लटकेंगी।
16: इसमें और भी नौकरियों को की तैयारी करने वाले लोग, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग, PhD, MBA, MCA ये सारे लोग आ गए और वो नौकरी पा लिए हैं, मगर कहा जा रहा है कि अभी भी ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, छुट्टियों पर जा रहे हैं बाकी भर्ती की तैयारियों के लिए। ऐसे में करीब 25,000 से 30,000 ये पद खाली रह सकते हैं और सरकार फिर से भर्ती निकालेगी और इन बच्चों के साथ जो पॉइंट से 1 नंबर से रह गए हैं बड़ा अन्याय हो जाएगा। कैमरामैन की शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: हमारे देश में जून में तो बारिश हुई नहीं, जुलाई आया तो पहले सप्ताह जमकर बारिश हुई, लगा कि जून का डेफिसिट भी जुलाई की बारिश खत्म कर दी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे फिर से सूखा पड़ गया। 5 दिन से अधिक का वक्त हो चुका है भारत में, हमारे देश में एक बड़े हिस्से में पानी की एक बूंद नहीं गिरी। सवाल ये कि ऐसा क्यों हो रहा है और इससे आगे कितना नुकसान होगा, मौसम क्यों बदल रहा है।
20: अचानक से बरसता मॉनसून कहां चला गया? जुलाई में बारिश की रफ्तार पर क्यों ब्रेक लग गया? क्या ये अल नीनो का असर है या फिर से सूखा पड़ने वाला है? मॉनसून पर लगा ये ब्रेक फसलों के लिए कितना नुकसानदायक है? पिछले हफ्ते हुई ये शानदार बारिश बता रही थी कि देर से ही सही, लेकिन मॉनसून जब आया तो झूम कर बरसा। किसानों को लगा कि उनकी फसलों की बंपर पैदावार होगी, लेकिन 2 दिन में ही ये चिलचिलाती धूप निकल आई, भीषण गर्मी के साथ उमस। ऐसा लगता है कि जैसे मई जून फिर से लौट आया हो। सवाल है कि बारिश अचानक से कहां चली गई, मॉनसून पर यह ब्रेक क्यों लगा? मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून में बारिश अक्सर स्पेल में यानी कि अलग अलग अवधि में होती है। 2 जुलाई से 9 जुलाई तक अच्छी वर्षा हुई, फिर ब्रेक हो गया। वजह यह है कि जब मॉनसून साउथ में रहता है तो भारत के मैदानी क्षेत्रों में अच्छी बारिश होती है, फिर मॉनसून पहाड़ों की तरफ खिसकता है तो बारिश रुक जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी यही स्थिति है। अब सवाल है कि आगे बारिश कब होगी, तो मौसम विभाग बता रहा है कि अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 19 जुलाई से दोबारा उत्तर पश्चिम भारत यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश की पूरी संभावना है।
16: क्या ये सिस्टम मतलब साइक्लिक है या कोई असाधारण घटना है?
19: नहीं, कोई असाधारण घटना नहीं है कि जैसे जो जैसे कि मॉनसून जब ट्रफ हमारा नॉर्मल या उसके साउथ में रहता है तो भारत के मैदानी क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा देखने को मिलती रहती है, और जैसे जैसे ये नॉर्थ की तरफ जाता है यानी फुटहिल्स की तरफ जाता है, अभी आज की अगर स्थिति बात करूं मैं 14 जुलाई की, तो जो मॉनसून ट्रफ का जो पश्चिमी सिरा है वो अभी जम्मू से स्टार्ट होकर के जम्मू देन देहरादून बाराबंकी से होकर के और ईस्ट सेंट्रल व्यू बंगाल में जा रहा है, यानी कि मॉनसून ट्रफ का जो पश्चिमी सिरा है वो अपनी सामान्य स्थिति काफी ऊपर

0: बिहार हो गया, ये सब पॉकेट्स में वर्षा मिलती है।
1: लेकिन सवाल है कि इससे नुकसान कितना हुआ, अब इसे भी समझिए। जून में बारिश का 40% का डेफिसिट था, फिर जुलाई के पहले हफ्ते में अच्छी बारिश हुई तो ये डेफिसिट घटकर अब 19% रह गया, यानी 21% की रिकवरी हुई है। ये उम्मीद थी कि जुलाई में ठीक ठाक बारिश होगी तो ये पूरा डेफिसिट कवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सवाल है कि कहीं ये पूरा डेफिसिट बढ़ता ना चला जाए, क्योंकि बारिश कम होने का मतलब है कि सब कुछ कम होना। ये पूरा का पूरा दुष्चक्र है जो सबको प्रभावित करता है, और एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इसका लंबा असर देश की जीडीपी पर पड़ सकता है। ये समझने से पहले आप ये जानिए कि कैसे कम बारिश फसलों पर असर डाल रही है। आमतौर पर जुलाई से सितंबर के सीजन में खरीफ की फसल 1104 लाख हेक्टेयर में बोई जाती है। 2025 में 10 जुलाई तक 632 लाख हेक्टेयर पर फसल की बुआई हुई थी, जो 2026 में 16% घटकर सिर्फ 531 लाख हेक्टेयर रह गई। सबसे ज्यादा असर हुआ है दलहनों पर। 2025 की तुलना में किसानों ने दालों की 23% कम बुआई की है। इसी तरह से मोटे अनाज की 22% कम, तिलहन की 21% कम, कपास की 15% कम और धान की 9% कम बुआई हुई है। ये सारी वो फसलें हैं जिनमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और पानी बरस ही नहीं रहा तो किसान इन फसलों की बुआई ही नहीं कर पाए। सरकार खुद किसानों को सलाह दे रही है कि किसान अब कम अवधि वाली फसलों को प्राथमिकता दें।
2: अभी जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है, अब बोनी और तेजी से होगी। पिछले साल इस समय तक 442 लाख 80 हजार हेक्टेयर में बोनी हुई थी, सोइंग हुई थी, लेकिन कल तक 350 लाख 85 हजार हेक्टेयर में बोनी हुई है। इसका मतलब 91.95 लाख हेक्टेयर में बुआई अभी कम हुई है। लेकिन उम्मीद यह है कि इस अच्छी वर्षा के कारण अब बोनी का क्षेत्र तेजी से बढ़ेगा। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है।
1: सरकार के किसानों को दी गई ये राय बता रही है कि हालात ठीक नहीं है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इसका सीधा असर देश के जीडीपी पर पड़ सकता है। अगर मॉनसून में ठीक से बारिश नहीं हुई तो महंगाई भी बढ़ सकती है।
3: अगर आपके पास मॉनसून रेनफॉल कम होता है तो नेचुरली हमारी राइस फील्ड, देन मेज, मक्का और ये जो और 3-4 दलहन है, सब पे इनका प्रभाव पड़ेगा। और इनका प्रोडक्शन अगर कम होगा तो नेचुरली जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी पे आप लोगों को जैसे अंदाजा है कि करीब 17-18% जीडीपी हमारे एग्रीकल्चर से आता है, और 47% के करीब वर्क फोर्स इसके ऊपर डिपेंडेंस है। तो इन चीजों को ध्यान में रखे अगर हम देखें, और अगर जो महंगाई बढ़ेगी वो करीब 4-5% के करीब बढ़ सकती है, तो इससे लंबा एक चेन रिएक्शन शुरू होगी।
1: यानी मॉनसून में कम बारिश बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। बारिश कम होने का मतलब है फसल कम, मतलब तिलहन और दलहन आयात करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये कम वर्षा अल नीनो की वजह से हो रही है? अल नीनो के साथ आपको एक और टर्म समझना होगा, इंडियन ओशन डाइपोल यानी आईओडी। दरअसल दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर इस समय प्रशांत महासागर में बन रहे अल नीनो सिस्टम और इंडियन ओशन डाइपोल यानी आईओडी पर है। अल नीनो यानी पूर्व में प्रशांत महासागर की सतह से गर्म चलने वाली हवाओं के चक्र से दुनिया भर के मौसम पर होने वाले असर और इंडियन ओशन डाइपोल की स्थिति ये तय करेगी कि भारत में मॉनसून कैसा होगा। वैज्ञानिक कह चुके हैं कि प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसका असर एशिया प्रायद्वीप में सितंबर महीने के बाद दिखना शुरू हो सकता है। लेकिन हिंद महासागर में आईओडी की स्थिति क्या होगी, इस पर स्पष्टता आने में अभी महीने भर का समय और लग सकता है।
4: प्रशांत महासागर की सतह जब गर्म होगी तो हवाएं वो पश्चिम की ओर आएंगी, जो ट्रोपोस्फीयर में एक इक्वेशन बनेगा, लेकिन उसके साथ उसका असर पड़ेगा भारत के मानसून पर भी। लेकिन नजर इस बात की है कि क्या इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव होगा या नकारात्मक होगा। दरअसल सैटेलाइट की

0: अगर हम देखें और मौसम विभाग यह मान रहा है कि अभी तक जो इंडियन ओशन डाइपोल है वो न्यूट्रल है। अब अगर भारत से नीचे आते हैं और इसी से थोड़ा और जब नीचे आएंगे तो इथोपिया या अफ्रीका के पास, दरअसल हम देखते हैं अफ्रीका के पास नोटिस करते हैं यहीं से इंडियन ओशन डाइपोल को, तो ये दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका के पास और इसी के साथ साथ कि यहां की सतह क्या गर्म है और उसी के साथ दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया के पास क्या यहां जो समंदर है हिंद महासागर उसकी सतह ठंडी है। अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है और पॉजिटिव होता है तो वो प्रशांत की ओर आने वाली इन गर्म हवाओं को निष्क्रिय कर देगी और पॉजिटिव आईओडी की स्थिति में बारिश तेज होगी। लेकिन चिंता इस बात की है कि अभी तक इंडियन ओशन डायपोल बिल्कुल न्यूट्रल है और जब तक वो पॉजिटिव नहीं होता तो 1997 या 2023 की स्थिति नहीं बनती और ऐसे में एलनीनो का असर अगस्त के बाद से भारत के मौसम पर डालेगा। न सिर्फ बरसात कम होगी बल्कि उसका असर देश की खेती बाड़ी पर भी पड़ेगा।
1: एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि देश को एलनीनो के प्रभाव के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही उसका असर सितंबर के बाद महसूस किया जाएगा, लेकिन अगर एलनीनो आया तो फिर सूखा ही सूखा है। एक्सपर्ट पूरी तैयारी करने को कह रहे हैं।
2: IMD forecast will keep coming along the way for days to weeks, and government will use it and private sector will use it for making decisions, kind of crisis management as well as food, energy, water, etc. So we have to just deal with it as it comes, prepare for the worst, hope for the best, but rely on skillful early warnings to manage resources, disasters, and protect lives, livelihoods, properties, businesses, etc. That's the deal this year.
1: Ashutosh Mishra, Delhi, Aaj Tak.
3: जुलाई से सितंबर तक का सीजन किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह सीजन खरीफ का है, यानी कि दलहन और तिलहन इसी सीजन में बोई जाती है, धान बोई जाती है, लेकिन खराब मानसून, कम बारिश के कारण किसानों की परेशानी बहुत बढ़ गई। वो अपनी फसलों की बुआई तक नहीं कर पा रहे। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों की स्थिति सबसे अधिक खराब है क्योंकि इनकी 80-85% खेती मानसून पर निर्भर है।
1: विदर्भ का किसान इस समय तिहरी मार झेल रहा है। पहले मॉनसून देर से आया, फिर कई किसानों को सोयाबीन के बीजों का अंकुरण नहीं होने के कारण दोबारा बुआई करनी पड़ी और अब पिछले 6 दिनों से बारिश थमने के कारण खेतों में खड़ी फसल सूखने लगी है। विदर्भ की 80-85% खेती आज भी सिर्फ मॉनसून पर निर्भर है। ऐसे में किसान खेतों में गुड़ाई कर बची हुई नमी फसलों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं।
4: करीबन 1.5 लाख रुपए अब कैसा भरेंगे, अब जो भी होगा बैंक देखेंगे, हमारी हर रसी में लगाएंगे खेत, और इसके और कुछ कर सकते नहीं, हम क्या करेंगे। हमने कर्जा जो लिए काय के लिए, फसल के लिए, फसल ही नहीं रही तो पैसे भरेंगे काय कहाँ से। अभी समझ लो 8-10 दिन पानी नहीं आया तो ट्रैक्टर डालो, खेत काला करके मोकला करो, इसके अलावा कुछ कर सकते नहीं हम।
5: मजूर के भाव बढ़ गए, अब खाद के भाव बढ़ गए, बीज के भाव बढ़ गए तो कितना पैसा लगाना, जितना पैसा रहता सोना नाना सब बैंक पे रखना पड़ता, कर्जा लेना पड़ता, फसल आने के बाद में वापिस दे देते, अब ये आया ही नहीं तो कैसा करेंगे हम।
1: इस साल विदर्भ में मॉनसून की शुरुआत देर से हुई। शुरुआती बारिश के बाद किसानों ने बड़े पैमाने पर सोयाबीन, कपास, धान और तुअर की बुआई की, लेकिन सामान्य के मुकाबले अब तक अपेक्षित बारिश का केवल 70-75% हिस्सा ही दर्ज हो पाया है, जिससे बारिश का बैकलॉग बना हुआ है। पिछले 6 दिनों से बारिश लगभग थम सी गई है।
6: ज्यादा अगर फसल विदर्भ में होती है तो वो है कॉटन की, कपास की। अब वो भी फसल देखिए आप किस तरह से, यहाँ पर एक एक पत्ता जो है उसका पानी नहीं होने के चलते जो है पीला पड़ते जा रहा है, तो कहीं जलते नजर आ रहा है। ये पूरी हकीकत जो है ये विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों की है। लगभग विदर्भ में जिस तरीके से सरकारी आंकड़े के मुताबिक जो है वो यहाँ पर जिस तरीके से हर साल बारिश होनी थी उससे कम हुई है, तो लगभग विदर्भ के पूरे क्षेत्र में लगभग 75% ही बुआई हुई है, जो पिछले साल के मुताबिक, यानी पिछले साल लगभग 99% बुआई हुई थी, लेकिन इस वक्त बुआई इसलिए कम हुई है कि बारिश ही ठीक ठाक नहीं है। पश्चिम विदर्भ में कुछ इलाकों में मानो अकोला या उसके लगभग जो है वो अमरावती है, यवतमाल है, बुलढाणा है, वहां तो ठीक ठाक बारिश जरूर नजर आ रही है, लेकिन वो कुछ ही इलाकों में है, चंद इलाकों में है।
1: मराठवाड़ा में इस साल मॉनसून की बेरुखी के कारण किसानों पर दोबारा बुआई का भारी संकट मंडरा रहा है। इसी आर्थिक और मानसिक तनाव के चलते बीड जिले के एक किसान ने आत्महत्या कर ली। गेवराई तहसील के रानमला गांव के 25 साल के युवा किसान मुकुंद गंगाराम हिंगे ने रविवार को अपने घर में फांसी लगा दी। इस साल बारिश न होने से फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे कर्ज चुकाने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
7: पाऊस पानी नहीं, आज विहिरीत पानी नहीं, बोरला पानी नहीं, ऊस जळून गेलाय आणि त्याला त्याच्याकडे कर्जाचा डोंगर झाल्यामुळे त्यांना निराश झाला आणि निराश होऊन त्यांना आत्महत्या केली।
1: बीड जिले में इस साल बारिश की स्थिति बेहद चिंताजनक है। जुलाई का आधा महीना बीत जाने के बाद भी जिले में केवल 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जिले में कुल 8 लाख हेक्टेयर बुआई के लायक क्षेत्र है, लेकिन पानी की कमी के कारण अब तक केवल 4 लाख हेक्टेयर पर ही किसी तरह बुआई हो सकी है। जिन किसानों ने शुरुआती हल्की बारिश पर बुआई की थी, उनकी फसलें अब सूख चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में भी मॉनसून की रफ्तार थम सी गई है। जून लगभग सूखा गुजर गया और जुलाई में भी बारिश उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा असर अब किसानों पर दिख रहा है। बेमेतरा और राजनांदगांव जैसे कृषि प्रधान जिलों में खेत तैयार हैं, लेकिन पानी नहीं है। कहीं बुआई नहीं हो पा रही तो कहीं अंकुर निकलने के बाद फसल सूखने लगी है। किसान अब आसमान की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं।
8: इस बार मौसम की बेरुखी से सबसे ज्यादा परेशानी अगर हो रही है तो किसानों को हो रही है, हम लोगों को हो रही है। मैं जान सकता हूं कि क्या स्थिति है। अब आप देखिए कि मेरे पूरे खेत की जुताई हो चुकी है, पूरा खेत तैयार है। मैं सिर्फ पानी का इंतजार कर रहा था कि पानी गिरे तो अपनी फसलों को जो लगाऊं, रोपाई करूं। सबसे पहले चीज थी कि हमने ये उम्मीद थी कि इस बार बरसात अच्छी होगी। हालांकि सरकार जो वैज्ञानिक है वो कह रहे थे बरसात कम होगी, लेकिन उम्मीद थी कि बरसात अच्छी होगी, इसीलिए हम तैयारी की। लेकिन क्या करें, उम्मीद में हम अपने खेतों की जुताई कर चुके हैं तो हम सीधा सीधा श्री पद्धति से, जो वैज्ञानिक पद्धति होता है श्री पद्धति, उससे हम उनारी कर रहे हैं ताकि अगर पानी गिरे तो हमारी फसल कुछ तो हो जाए, इसी उम्मीद से हम लोग अभी फसल को लगा रहे हैं।
1: बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता सिर्फ फसल तक सीमित नहीं है। कई किसानों ने खाद और बीज खरीदने के लिए कर्ज लिया है। उन्हें दोबारा बुआई की आशंका और आर्थिक नुकसान दोनों का डर सता रहा है। इसीलिए किसान सरकार से फसल नुकसान का सर्वे, उचित मुआवजा और फसल बीमा के दावों का जल्द निपटारा करने की मांग कर रहे हैं।
9: मानसून देखा है तो पिछले एक हफ्ते सक्रिय रहा है, लेकिन पिछले 4-5 दिन से देखा है तो कोई खास सिस्टम नहीं है और मानसून ट्रफ भी है जो उत्तर को और पोजिशन है, जिसकी वजह से प्रदेश का पिछले 2 दिन से शुष्क रहा। लेकिन आज का स्थिति में देखा है तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो हेड बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ है, जिस प्रभाव से आज और कल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की चांस है। पूर्वी इलाकों में एक दो स्थानों पर मध्य से लेके भारी वर्षा भी होने की संभावना है।
1: आज तक ब्यूरो।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: आज लखनऊ में सजेगा पंचायत, आज तक उत्तर प्रदेश का महामंच। मुख्यमंत्री योगी समेत राजनीतिक दिग्गज करेंगे शिरकत। विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष की आवाज। संसद सत्र की तैयारी के बीच गृह मंत्री अमित शाह से हाई प्रोफाइल मुलाकातों का सिलसिला जारी। यूपी के सीएम योगी के बाद अमित शाह से मिले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन के दोषी होने पर आप बीजेपी में ढली। सीएम रेखा ने आप पर संरक्षण का आरोप लगाया। कपिल मिश्रा ने किया कटाक्ष। ताहिर सिर्फ एक्टर, असली डायरेक्टर कोई और। बर्मिंघम वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से धोया। शुभमन गिल, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर की बदौलत मिली शानदार जीत। 3 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे। और 24 घंटों में ट्रंप का यूटर्न। हॉर्मुज में नहीं लगेगा 20% टैक्स, टैरिफ की जगह खाड़ी देश करेंगे अमेरिका में निवेश। ईरानी जहाजों की नाकेबंदी का ऐलान। एक तरफ श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जांच चल रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब श्री राम मंदिर के मामले पर पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया। एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट आज सौंप सकती है।
1: ऐसे पोस्टर्स यूपी के अलग अलग शहरों में लगाए गए हैं। एक पोस्टर में अखिलेश और मुलायम सिंह यादव हैं। इसमें लिखा है मुलायम सरकार की असलियत। दूसरे पोस्टर में अखिलेश, शिवपाल और राम गोपाल यादव की तस्वीरें हैं। इसमें लिखा गया है दिल में बाबर, मुंह में राम। ऐसे पोस्टर्स लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर और अयोध्या में लगाए गए हैं।
2: जैसे चुनाव नजदीक आएगा, सब पुराने बयान निकाले जाएंगे, पुराने पोस्टर निकाले जाएंगे, सबके निकलेंगे।
1: इस सियासत से इतर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेजी से बढ़ रही है। खबर है कि मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाने वाले कुछ विशेष दानदाताओं के दान को ट्रस्ट वापस कर सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद दर्जनों दानदाताओं ने ट्रस्ट के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और अपने दान की चोरी या घोटाले का शक जाहिर किया था। कई श्रद्धालुओं का दावा था कि उनकी ओर से भेंट की गई वस्तुओं की रसीद नहीं दी गई। आरोप ये भी है कि उनकी दी गई भेंट राम मंदिर में प्रदर्शित या सुरक्षित नहीं रखी गई। अब इन वस्तुओं को लौटाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उधर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटा दिया गया है। खबर ये भी है कि चढ़ावा चोरी की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम जल्द ही अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। आज तक ब्यूरो।
0: अयोध्या में चढ़ावे चोरी का मामला सामने आते ही वक्फ के घोटाले का राजनीतिक शोर सुनाई पड़ने लगा। पहले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष बासित अली ने बहराइच के सालार खाजी दरगाह में घोटाले के आरोप लगाए। फिर मुख्यमंत्री योगी ने कई मंचों से वक्फ के घोटालों का उल्लेख किया। अब खुद मुस्लिम जमात के मौलाना रजवी ने वक्फ के घोटालों के आरोप लगाए।
3: क्या वक्फ बोर्ड में भी चल रही है धांधली? क्या वक्फ बोर्ड में भी हुआ है घोटाला? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर वक्फ के घोटालों की जांच करने की मांग की है।
4: कि राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड का निकल करके सामने आएगा। वो लाखों का नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों का जो घोटाला है वो अरबों का घोटाला सामने निकल करके आएगा।
3: मौलाना रिजवी सीएम योगी के नाम लिखी चिट्ठी में दावा करते हैं कि वक्फ बोर्ड में सबसे ज्यादा लूट समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई।
4: जो वक्फ के जिम्मेदारान थे उन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को जो करोड़ों में थी उनको रेवड़ियों के भाव बेचा गया, वक्फ की संपत्ति को बर्बाद किया गया और ये सारी बर्बादी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई।
3: शहाबुद्दीन रिजवी अकेले शख्स नहीं है जो वक्फ में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं।
5: पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो हर जगह के ऊपर घपलेबाजी हो रही है पूरी तरीके से।
3: समाजवादी पार्टी पर यह आरोप खुद सीएम योगी अपनी सार्वजनिक रैलियों और कार्यक्रमों में लगाते रहे हैं। जब राम मंदिर का मुद्दा सामने आया तो सीएम ने फिर से वक्फ घोटाले का जिक्र किया था।
6: अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई।
3: सियासी आरोप एक तरफ, लेकिन आरोपों की जांच दूसरी तरफ। शिया वक्फ बोर्ड से जुड़े इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दिया जाए तो यूपी में किसी वक्फ घोटाले की सघन जांच अभी तक नहीं हो सकी है।
7: दूसरे स्थानों पे या दूसरे धर्म स्थल पे कहीं अगर कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से वहां सुधार होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन बयानबाजी नहीं। अगर कोई सबूत किसी के पास है, एविडेंस है, तो वो सामने लाना चाहिए।
8: वक्फ के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पहले हुआ करता था। वक्फ की जमीनों को औने पौने दामों पर कब्ज हो जाते थे, किराए पे देते थे और उसके धन का दोहन होता था। वक्फ जिस भावना से किया जाता उस भावना का तिरस्कार होता था, लेकिन आज सरकार के प्रयासों के बाद हम वक्फ की संपत्तियों को रेगुलराइज करने का काम कर रहे हैं।
3: यूपी और देश में वक्फ की संपत्तियों के घोटालों के आरोप शुरू से लगते रहे हैं और उसे दूर करने के लिए ही सरकार ने वक्फ संशोधन कानून भी बनाया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि नए कानून के तहत बने वक्फ बोर्ड अब वक्फ संपत्तियों का उचित रखरखाव कर पाएंगे। बरेली से कृष्ण गोपाल राज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: दिल्ली दंगे में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से दिल्ली की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा।
3: छह साल पहले दिल्ली में हुए दंगे को लेकर दिल्ली की अदालत ने जो फैसला सुनाया, अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन दोषी पाए गए हैं। वहीं ताहिर के अलावा चार और आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
9: क्या अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी इस बात का जवाब देंगे कि दिल्ली में दंगे भड़काने जैसे कितने और कृत्य उन्होंने किए हैं?
3: आपको बता दें कि 26 फरवरी 2020 को खजूरी खास नाले से अंकित शर्मा का शव मिला था। उनके पिता ने ताहिर हुसैन समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। तमाम गवाहों की पेशी, सबूतों और सुनवाई के बाद अदालत का फैसला दिल्ली के सामने है। जहां तक ताहिर हुसैन का सवाल है तो खबर है कि कोर्ट की सुनवाई के दौरान वो फूट फूट कर रोने लगा। ताहिर की माने तो वो बेकसूर है, उसे फंसाया गया है।
10: ताहिर जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए।
3: हिंसा में नाम आने के बाद ताहिर हुसैन से केजरीवाल ने किनारा कर लिया था। आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने गले लगा लिया।
11: 2020 में जो दंगे हुए, आज ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन और ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोगों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू जो वहाँ पर रहने वाला हिंदू समाज है उनको मारने की साजिश थी। और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए, नौजवान बेगुनाह अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर, जिनको कई बार चाकुओं से गोदा गया और बाद में उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया।
12: कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का सेशन से आया है, तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा, क्या नहीं रहा।
13: लेकिन उसका नाम ताहिर है, ये बड़ी चीज है। अगर उसका नाम कपिल होता वो भी परी हो जाता।
3: दिल्ली दंगे को लेकर एआईएम सवाल उठाती रही है कि जिस दंगे में 53 लोगों की हत्या हुई उसमें 6 साल बाद भी सिर्फ एक हत्या के केस में दोषियों की पहचान क्यों हो पाई है। आखिर वो कैसी जांच थी जिसमें इसी दंगे में मारे गए हाशिम अली की हत्या के 12 और अनवर हत्याकांड के 5 आरोपी बरी हो जाते हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: महाराष्ट्र के नासिक में एक परिवार वाटरफॉल घूमने गया, लेकिन वहां दो बदमाशों ने परिवार की महिला से छेड़खानी की। परिवार ने विरोध किया तो फिर 15 किलोमीटर तक पीछा करके 4 बार बदमाशों ने हमला किया। इस मामले में 9 लोग पकड़े गए, 3 लोग फरार हैं।
14: बारिश का मौसम, महाराष्ट्र की अलग अलग वाटरफॉल, जहां इस वक्त हर परिवार छुट्टी मनाने के लिए अपनों के संग कुछ खुशी के पल बिताने के लिए पहुंचता है। लेकिन 12 जुलाई रविवार को नासिक के भावली वाटरफॉल के पास भागवत परिवार के साथ जो कुछ हुआ है वो हर आम आदमी को डरा देता है जो कहीं छुट्टी मनाने जाता है।
15: वहां के दो लोकलाइट थे, उन्होंने कुछ गंदी कमेंट पास कर दी। वो व्हाइट कलर की बलून है, उसने आगे हमारे आके रास्ता ब्लॉक किया।
16: छह जगह पर अटैक किया लोगों ने।
17: मेरा भाई बैठा था, उसकी कांच फोड़ दी।
16: कांच फूट रही थी तो बच्चा भी डर गया।
17: फाइटर से वगैरह कांच फूटी तो हमने गाड़ी थोड़ा रिवर्स लेके भागना चालू किया।
16: जहां भी रुके वहां पे हमारी गाड़ी फूटी।
14: सबसे पहले दहशत के इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक कार में भागता हुआ मेहर भागवत का परिवार, जिनके पीछे एक बाइक पर हाथ में लोहे की रॉड लेकर अटैक करने के लिए आते दो गुंडे हैं। और फिर
18: फोटो गाड़ी का फोटो
14: दो लोग बाइक से, बाकी लोग सफेद रंग की कार से इस परिवार का पीछा 15 किलोमीटर तक करके हमला करते हैं, जो रविवार को नासिक के भावली वाटरफॉल के पास पिकनिक मनाने पहुंचे। इसके बाद ये सवाल हर आम आदमी का परिवार पूछना चाहता है, क्या पिकनिक स्पॉट पर भी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल सकती है? अब आप जानना चाहेंगे कि यहाँ हुआ क्या। मीर भागवत और उनकी पत्नी की साफ बीती को आज हर परिवार इसीलिए जरूर सुने।
17: मैं और मेरे भाई की फैमिली है ना, हम टोटल 8 लोग, उसके 2 बच्चे, मेरे 2 बच्चे, मिसेस उसकी, मेरी मिसेस, हम भावली डैम पे घूमने गए थे फैमिली के साथ में, टाइम स्पेंड करेंगे अच्छे फैमिली के साथ में। हम वहाँ पे गए तकरीबन 2-3 बजे, वहाँ पे खाना वगैरह खाया, पानी में खेले हम सब। 5:30 बजे के करीब निकलना है भाई, शाम हो रही है, तो बच्चे आके गाड़ी में बैठे, लेडीज़ वगैरह निकलने लगे और हम जेंट्स थे तो सब जो खाने के बैग वगैरह थे हम पीछे से लेके आ रहे थे। तो मिसेज जा रही थी थोड़े अभी पानी में भीगने की वजह से ड्रेसेस वगैरह गीले थे, तो किसी वहाँ के 2 लोकलाइट थे उन्होंने कुछ गंदी कमेंट पास कर दी, तो मिसेज ने उनसे आर्ग्यू किया कि आप ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने भी आर्ग्यू किया।
16: चेंज करने हम कार के पास जा रहे थे तो आप एक बाइक पे 2 लड़के खड़े थे, तो मैं उनके वहाँ से तो जाना ही पड़ेगा, तो उनके बाजू से गई तो उन्होंने मुझे शिफ्टी बजाई और कुछ कमेंट पास की, तो मैंने उनको बोला तुम पागल हो गए कि पब्लिक प्लेस में लेडीज को छेड़ रहे हो, उनको समझता नहीं आजकल क्या चल रहा है इनका। नहीं बोला ऐसा दस्त है, वो मराठी में मुझे बोलने लगी वगैरह, तो फिर मैं थोड़ा उनके ऊपर ये करने लगा,
17: तो उनका ये चालू था झगड़ा, तो मैंने दूर से देखा तो मैं भागते हुए गया कि क्या हुआ, तो इस मिसेस ने बोला कि ये मुझे छेड़ रहे, तो मैंने उनको डांटा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो।
16: मेरे हस्बैंड ने देखा कि इसका क्या चल रहा है उनके साथ, तो फिर ये भी पीछे से, अरे मेरे जा बहू नहीं बोल रहे, निकल जा बोले ऐसे मराठी बोले, निकल जाओ तुम, क्यों दिमाग लड़ा ले। वहाँ पे बाद में जो लड़के खड़े थे 7-8-10 लड़के थे जो कार है वहाँ पे, तो आए बोले हमारे गाँव के लड़के को तुम ऐसे कैसे बोल सकते, हाथ भी लगा सकते हो,
17: तो मैंने उनको थोड़ा सा ये किया कि भाई तुम निकल जाओ, तो वो निकल गए। लेकिन वहाँ के जो लोकलाइट थे, वहाँ पे एक 4-व्हीलर में कोई शॉप रन करते वहाँ के लोकल बिजनेस, तो वहाँ के जो 6-8 बच्चे थे लोकलाइट, वो आए क्या हुआ क्या हुआ, तो वो लोग इशू करने लग गए।
16: थोड़ी सी हाथापाई हुई हमारी, वहाँ पे पब्लिक लोगों ने हमको बचा लिया कि चलो निकलो यहाँ से, जाने दो छोड़ो, आगे जाके इन्होंने बलेनो पूरा आगे सामने से आके उन्होंने आड़ी गाड़ी लगा दी और डायरेक्ट फाइटर से कांच फोड़ने चालू कर दी, तो हम डर गए। मैंने उनको बोला किरण भगाओ गाड़ी भगाओ, इन्होंने इतनी गाड़ी भगाई कि पीछे से फिर 2-व्हीलर रॉड वगैरह लेकर अपने वीडियो में देखा, वो सब घटना चालू हो गई। फिर आगे जाके उनका एक लड़का गाड़ी पे लटका भी, पूरा लटका।
14: सोचिए कितने बेखौफ रहे होंगे वो गुंडे जो 15 किलोमीटर तक पीछा करके हमला करते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि क्या रास्ते में कहीं पुलिस नहीं थी, कहीं पुलिस पोस्ट नहीं थी।
17: वहाँ से आगे आने पे भावली डैम है, वहाँ पे हमें पुलिस वैन मिली ब्लू कलर की, तो वहाँ पे हमने पूछा कि हमें पुलिस कंप्लेंट करनी है, तो बोले ठीक है आप इगतपुरी पुलिस स्टेशन जाइए। आगे निकले वहाँ से भावली डैम से 2 किलोमीटर आगे, तो एक वाइट कलर की बलेनो है, उसने आगे हमारा आके रास्ता ब्लॉक किया। जैसा रास्ता ब्लॉक किया तो वहाँ से उसमें से उतर के 2-4 बच्चे भागे, उन्होंने आगे की और मेरे बाजू में जो मेरा भाई बैठा था उसकी कांच फोड़ दी, तो हमने गाड़ी थोड़ा रिवर्स लेके भागना चालू किया। हमने भागना चालू किया, बोला इगतपुरी पुलिस स्टेशन जाते, लेकिन जैसे हम नासिक मुंबई हाईवे पे आए फ्लाईओवर के नीचे नियर बाय, वहाँ पे 2 बाइक जो वीडियो वायरल हो रहा है पीछे से आके रॉड से मार रहे, उन्होंने पीछे से रॉड से मारा और आगे आके वापस उन्होंने 2-व्हीलर से हमें ब्लॉक किया, वहाँ पे उन्होंने आगे वापस 70 से हमारी गाड़ी फोड़ी। फिर हमने सोचा इगतपुरी में जाना गलत होगा, ये लोकल लाइट है, तो इससे अच्छा अपन नासिक की तरफ भागते।
14: सुनकर डर लगता है, मानो फिल्म में जैसे किसी विलेन का जंगल राज दिखाते वो हालत सच में हो, मतलब रोक रोक कर परिवार पर हमला होता रहा और भागवत परिवार जान बचाने को भागता रहा।
16: छह जगह पर अटैक किया लगभग उनको। सबसे पहले उन्होंने भावली डैम के आगे जो टर्न आता है ना वहाँ पे पकड़ा, क्योंकि उनको पता है यहाँ से टर्न मारना थोड़ा बड़ी गाड़ी को मुश्किल होगा। बरोबर वहाँ पे पकड़ा, वहाँ पे आए काज बीच पड़े, वहाँ पे बच्चे डर गए, तब हमने मोबाइल चालू नहीं किया। उसके बाद वहाँ से जब हम निकले तो पीछे दो बाइक पर जो लड़के आ रहे थे जो रोड था, तो मैंने बेटे को बोला, मैंने बेटा मोबाइल निकाल, पहले उनका वीडियो ले और बाकी जाने दो। फिर मेरे बेटे ने वो वीडियो लिया, तो वीडियो लेते ले तो उसने वीडियो देखा कि वो देख रहा है कि हम मोबाइल वीडियो ले रहे। फिर उसने रॉड फेंका, दो दो रॉड फेंके, वहां पे उनका निशाना चुक गया। फिर आगे जाके फिर उनका भी निशाना परफेक्ट लगा, तो वो वीडियो हम ले नहीं सके, कार फूट रही थी तो बच्चा भी डर गया, वो वीडियो हमने लिया नहीं। फिर आगे जाके टोल नाका के वहां रुके, तो एक पिंक शर्ट वाला है उसने आके से एक बटन बंद कर दिया हमारी गाड़ी का, कि बंद कर दिया, कांच खुले थे पूरे बंद कर दिया। फिर बोले उतरा उतर जाओ, अपन ये करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, मिटा देंगे ऐसा वैसा। तो ये मेरे हस्बैंड बोले चलो देखते, फिर मेरे पागल हो गए कि यहाँ पे उतरना रिस्क है, निकलो। फिर हम वहां से वापिस निकले।
14: पीड़ित परिवार का नासिक में नेशनल हाईवे पर 15 किलोमीटर तक पीछा करते ये गुंडे, टोल प्लाजा, सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड, हाईवे पुलिस, जहां सब कुछ होता है, लेकिन किसी से ये नहीं डरते और कोई मदद के लिए भी आगे नहीं आते।
17: अटैक करने के लिए उन्होंने 70 फाइटर्स और ये बेसबॉल के ये थे, शायद बेसबॉल के आप उसको क्या बोलते हैं, स्टिक्स बोल सकते हैं, कुछ लकड़ी के भी थे। और मेरे हिसाब से मुझे किसी के हाथ में एक सिल्वर कलर का, वो शायद छोटी सी ऐसी तलवार, तो ऐसी थोड़ा कर्व शेप में होता, लेकिन वो सीधी थी, लेकिन सिल्वर तार चमक रहा था। अभी वो क्या हो रहा था, मेरा इंटेंशन था कि भागना है, बचना है।
14: इस कार की हालत देखी, चारों तरफ से हमला हुआ, पत्नी बच्चे चीख रहे होंगे, पति गाड़ी भगाते रहे कि किसी तरह इनसे बच जाए। आखिरकार ये पुलिस तक पहुंचे, उसके बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 3 लोग अभी फरार।
19: हमने 9 आरोपी अभी तक निष्पन्न किए हैं, जो कि एफआईआर में 6-7 आरोपी थे, बट इसमें जो शेल्टर देने वाले आरोपी है या फिर एसोसिएट्स है जिनको इन्होंने हेल्प किया था, वो भी हमने इसमें आरोपी किए हैं, और अभी तक हमने 9 आरोपी इसमें ताबे में लिया है। इस पे आगे की जो कार्रवाई है वो आगे की कार्रवाई चल रही है। पर्यटन को सुरक्षा ऑलरेडी दी हुई है, पर्यटन के वहां पे बंदोबस्त भी था, वो लोग भी वहां पे पुलिस को मिले। बस इस घटना में जो है, ये घटना कुछ 7-8 किलोमीटर दूर जाके जहां पे कोई मोबाइल लोकेशन नहीं आ रहा था उस पॉइंट पे हुई है।
14: ऐसे आरोपी हर पिकनिक स्पॉट के पास हर राज्य में मिलते हैं, जो कहीं तय दर से ज्यादा कीमत लेने को, कहीं भाषा को लेकर, कहीं संस्कृत को लेकर या तो विवाद करते हैं या छेड़खानी और मारपीट करते हैं। ये सोचते हैं कि ये लोकल है तो बाहर से छुट्टी मनाने आए लोगों पर हमला कर सकते हैं, उनको डरा सकते हैं। ये उन्ही लोगों पर हमला करते हैं जिनके सैलानी बनकर आने से इनके और इनके इलाके के लोगों को रोजगार मिलता है। जरूरी है कि नासिक के दोषियों को ऐसी सजा मिले जिसे सुनकर देखकर बाकी जगहों पर ऐसी आपराधिक सोच वाले सिहर जाए, ताकि कोई परिवार, कोई आम आदमी किसी जगह छुट्टी मनाने जाने से पहले डरे नहीं।
0: पुलिस चाहे जहां की हो, आम आदमी पार्टी को केंद्र में रखने के दावे करती है। गाजियाबाद पुलिस का ध्येय भी सेवा, सुरक्षा और समर्पण है, जो नागरिकों के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेकिन अगर वाकई में ऐसा होता तो 22 वर्ष का एक नौजवान पिंक बूथ के बाहर तड़प कर नहीं मरता। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पिंक बूथ की महिला पुलिसकर्मियों ने राजकुमार की मदद करना तो छोड़िए, अपने बूथ का दरवाजा तक बंद कर लिया।
20: पुलिस कराते हुए मेरा बेटा का जान चल गया, किस लिए चल गया, किस चला गया, इतनी सी मेरा बेटा के हाथ कट गया, क्यों मेरा बेटा के जान चल गया।
14: 22 साल के बेटे को गवाने वाली एक माँ का ये सवाल गाजियाबाद पुलिस से। मामला बहुत दुखद, क्योंकि पिंक बूथ के बाहर 40 मिनट तक एक नौजवान मदद के लिए तड़पता रहा। बार बार मदद की गुहार लगाने पर महिला पुलिस मदद को आगे नहीं आई, उल्टा पिंक बूथ का दरवाजा बंद कर लिया गया।
20: अंदर पुलिस लेडीज बैठ के देख रही है, मेरा लड़का ऐसे ऐसे तड़प रहा, लेकिन कोई नहीं उठाया। जब मेरा लड़का के दम टूट गया।
14: यकीन करना मुश्किल है कि गाजियाबाद में दिन दहाड़े एक नौजवान ज्यादा खून बहने से सबके सामने सड़क पर मर गया, वो भी पुलिस के पिंक बूथ के बाहर। राजकुमार को तड़पता देखकर भी महिला पुलिस कर्मियों का दिल नहीं पसीजा।
21: अच्छा, गिरा कहाँ था एग्जैक्टली आप? यहाँ पे गिरा पड़ा था।
22: ये है,
21: ये जो जगह है यहाँ पे ही गिरा पड़ा था।
22: हाँ जी, यहाँ से वो खून आया ना पूरा।
21: हाँ हाँ हाँ,
22: जैसे यही गिरा पड़ा।
21: ठीक।
14: थानों में फरियादियों के साथ पुलिस के संवेदनहीन बर्ताव की शिकायत तो आपने सुनी हो, लेकिन गाजियाबाद में जो कुछ हुआ वो इंसानियत के मरने का भी सबूत देता है।
1: 40 मिनट तक राजकुमार यूं ही सड़क पर तड़पता रहा और तड़प तड़प कर उसने दम तोड़ दिया। गाजियाबाद पुलिस का इस मामले में शर्मनाक बयान आया है कि ऑटो चालक और राजकुमार दोनों नशे में थे, लेकिन गाजियाबाद पुलिस को ये जवाब देना होगा कि जब दोनों मदद के लिए पुलिस के पास गए तो पुलिस आखिर क्या कर रही थी।
2: वीडियो में दिख रहा है ये 22 साल का राजकुमार, जिसके शरीर का कतरा कतरा खून जमीन पर फैलता गया। इस नौजवान को दम तोड़ते हुए दर्जनों लोग देखते रहे। तमाशबीनों में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल। तो पिंक बूथ के दरवाजे पर ये सब कुछ हुआ। जिन्हें लोगों की मदद करने के लिए ही तनख्वाह मिलती है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाना तो दूर दरवाजा बंद कर कर बैठी रहे, ताकि मरने वाले की कराहने की आवाज उन तक ना पहुंचे।
4: वो जब नीचे वहाँ, तो हमें किसी ने ये बताया कि वो नीचे पड़ा था, वो इशारे कर रहा था कि मेरे को बचाओ। वहाँ लेडीज पुलिस खड़ी थी, हमारे पास वीडियो है, वो लेडीज पुलिस खड़ी थी। मान लो आप प्रशासन हो, किस लिए हो? हमारी सेवा के लिए ना। जब आप ही नहीं करोगे, जस्ट यहाँ पर कुछ काम हो जाए।
23: आसपास जो दुकानें थी
4: जी,
23: वो लोग भी वीडियो बना रहे थे
4: जी,
23: मदद नहीं की,
4: किसी ने मदद नहीं करी।
2: गाजियाबाद में रविवार की दोपहर ऑटो चलाने वाले राजकुमार का किराए को लेकर एक सवारी से झगड़ा होता है। उसने मदद के लिए पिंक बूथ का रुख किया, लेकिन वहां उसे मदद नहीं मिली।
20: मेरा लड़का चौकी में गया नाम दाखिल कराने, मेरा लड़का का चौकी में से बाहर धक्का मार के निकाल के दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद मेरा लड़का दीवार में हाथ मारा, तभी न खोले। उसके बाद मेरा लड़का शीशा पर हाथ मार दिया, मेरा लड़का के हाथ कट गया, खून निकलते निकलते मेरा लड़का वहीं बेहोश हो गया।
0: गाजियाबाद पुलिस से जब इस बारे में पूछा गया तो अजीब व गरीब जवाब पुलिस की तरफ से आया कि मरने वाला नौजवान ऑटो ड्राइवर नशे में था, जिससे उसकी लड़ाई हुई थी वो भी नशे में था। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने क्या दोनों को हिरासत में लेकर मेडिकल के लिए भेजा? पिंक बूथ पर तैनात पुलिसकर्मी कहाँ थे? घंटों तड़प तड़प कर एक व्यक्ति, एक नौजवान ने दम तोड़ दिया, तो पुलिस ने उसकी मदद क्यों नहीं की?
2: आप सोच रहे होंगे कि मरने वाले राजकुमार के हाथ से खून कैसे निकला, तो इस सवाल का जवाब ये कांच का दरवाजा है, जिसे जोर से खटखटाने की वजह से राजकुमार के हाथ पे चोट लग गई। वो बेसुध होकर बूथ के आगे गिर जाता है और ज्यादा खून निकलने से उसकी मौत हो जाती है।
21: पिंक बूथ है, यानी अगर कोई महिला मुसीबत में पड़ती है, वो अगर मदद के लिए आती है तो अंदर मौजूद पुलिसकर्मी उसकी मदद करेंगी, लेकिन अगर कोई और आता है तो उसे यहाँ पर जाहिर सी बात है तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। लेकिन रविवार को जो कुछ भी यहाँ पर हुआ, उस पर यकीन करना एक बार की मुश्किल है। दोपहर तकरीबन 3:30 के आसपास एक ऑटो आता है और सीधे अंदर घुस जाता है। आप देखिए, यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर ऑटो आ जाता है। ऑटो में कुल 3 लोग थे, एक ऑटो चला भी रहा था, तो करीब 4-5 लोग अंदर मौजूद थे। उनकी आपस में किसी बात पे लड़ाई हो रही थी, उनको शायद पिंक बूथ समझ में नहीं आया होगा, वो यहाँ पर लड़ने लगते हैं। जब यहाँ पर समझाया गया तो वो ऑटो लेके वापस बाहर की तरफ आते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं कुछ दूर। आगे आप जो चौराहा देख रहे हैं, इस चौराहे के पास पहुंचते हैं, ऑटो रुकता है, उनमें आपस में फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो ऑटो में ज्यादातर लोग थे वो चले जाते हैं, जबकि जो राजकुमार है, 22 साल उम्र है, पास में ही रहता था सिवान, वो वहीं सड़क पर लेट गया।
2: राजकुमार ने जब मदद की गुहार इस पिंक बूथ में लगाई, तब इसी तरह का माहौल हो गया। लेकिन जब राजकुमार की सुनवाई नहीं हुई तो उसने बूथ के कांच के गेट को खटखटाया और इसी दौरान उसकी नस कटने से खून बहने लगा। लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने मदद तो दूर पास के पुलिस स्टेशन से मदद कराने या एम्बुलेंस बुलाने तक की जहमत नहीं उठाई। दावा है कि जिससे राजकुमार की बाद में जान चली गई।
24: जो 100 नंबर कॉल थी परसों, वो किसने की थी?
25: वो तो करी बेटे ने करी थी कि जब वो अच्छी तरह हाथ हाथ मारा।
24: अच्छा, हाथ हाथ मारा जब शीशे में। कितनी देर तक वो बाहर पड़ा रहा? आपने
25: जो बताया मैं था नहीं।
24: अच्छा, कितनी देर बाहर पड़ा?
25: और मैं रात को आया थे बहुत देर तक।
24: कितनी देर तक बाहर बॉडी पड़ी रही होगी?
25: पता नहीं।
2: अब आप सोचिए, पुलिस ने एम्बुलेंस तक बुलाने की कोशिश नहीं की, मतलब पिंक बूथ में मौजूद पुलिसकर्मियों ने अपने दरवाजे पर मदद की गुहार लगाते एक आम आदमी को न सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया, बल्कि उसकी आवाज कानों तक न आए इसके लिए दरवाजा बंद कर लिया।
21: बताया जा रहा है कि वो शराब के नशे में था और जो बाकी लोग थे वो भी शराब के नशे में थे। वो वहीं 3-4 मिनट पड़ा रहा जैसा कि आई विटनेस हमें बताया, उसके बाद फिर वो वापस आता है। और वापस वो आया तो अंदर की तरफ जब वो आया पुलिस चौकी में, तो हम आपको दिखाएं कि वो चौकी में दोबारा आता है, और चौकी में जब वो दोबारा आता है तो सामने जो आप ये लोहे का गेट देख रहे हैं इसको बजाने लगा। ये जाहिर सी बात है ये तो बंद है, आप देखिए तब भी इस पे ताला लगा था। उसके बाद जब उसकी कंडीशन देखी तो जो अंदर महिला पुलिसकर्मी थी उन्होंने ये जो गेट है, आप ये गेट देखिए ये बन चुका है, तब ये गेट ये टूट गया था शीशे का।
5: आज तक को पता चला है कि आसपास के लोगों की शिकायत के बाद एक बाइक सवार पुलिसकर्मी आया, उसने राजकुमार को ऑटो में बैठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन एक भी ऑटो नहीं रुका। इसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई, जिसे आने में हुई देरी ने दावा है कि राजकुमार की जान ले ली।
6: एक ऑटो चालक द्वारा एक ऑटो सवारी को बिठाया गया, दोनों ही नशे की हालत में थे। पैसे के लेन देन को लेकर दोनों में आपस में वाद विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों ही पिंक बूथ पर पहुंचे और शराब के नशे की हालत में ऑटो सवारी ने तेज से पिंक बूथ के गेट पर हाथ मारा, जिससे उसके हाथ में कांच गड़ गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।
5: यूपी पुलिस अक्सर एनकाउंटर वाले वीडियो दिखाकर अपराधियों को खबरदार करती है, लेकिन गाजियाबाद की ये घटना बताती है कि यूपी पुलिस को सख्त बनने के साथ संवेदनशील बनने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर वो संवेदनशीलता होती तो 22 साल का नौजवान पिंक बूथ के बाहर तड़प कर दम नहीं तोड़ता। हिमांशु मिश्रा, गाजियाबाद आज तक।
0: राजस्थान की सबसे बड़ी चपरासी भर्ती में पीएचडी से लेकर एमबीए एमसीए तक के बेरोजगार युवाओं ने परीक्षा तो पास कर ली, मगर नौकरी मिलने की जगह अब वो दूसरी परीक्षाओं में लग गए, जिसके कारण चपरासी भर्ती के असली अधिकारी प्रदर्शन को लाचार हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, लेकिन उन्हें खाली पद के बदले नौकरी देने वाला नियम लागू नहीं हो रहा।
5: क्या राजस्थान में सरकारी नौकरी बिना रुलाए नहीं दी जा सकती? सवाल सीधा सा है, वजह मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के घर के बाहर बैठे ये बेरोजगार जो चपरासी भर्ती परीक्षा में पास हुए लेकिन फिलहाल वेटिंग लिस्ट में। आप सोचेंगे वेटिंग लिस्ट में हैं तो प्रदर्शन क्यों? इसलिए पहले मुख्यमंत्री का बयान सुनिएगा।
7: राज्य सेवा के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे अधिकारी कर्मयोगी की भावना से रूल बेस्ड से रोल बेस्ड कार्यशैली की ओर अग्रसर होंगे। एक वर्ष के भीतर कर्मचारियों द्वारा पद त्यागने की स्थिति में उस पद की प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। एकल महिला कर्मचारी के लिए चाइल्ड केयर लीव 3 के स्थान पर 6 चरणों में स्वीकृत किया जाएगा।
5: मतलब समझिए, मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर किसी भर्ती में चयनित शख्स 1 साल के भीतर पद छोड़ देगा तो उसी भर्ती की वेटिंग लिस्ट से किसी और को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी चपरासी भर्ती में ये नियम लागू करने से मना कर दिया गया। अब जो 1-2 नंबर से वेटिंग लिस्ट में चले गए उनको लगता है कि जो मौका मिल सकता था वो भी छिन रहा है, क्योंकि भर्ती नियम लागू होने से पहले की है।
8: जिस तरह से ये भर्ती में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा खाली पद बच जाएंगे इस नौकरी में। सरकार ने 1 साल का वेटिंग का नियम भी बना दिया है, मगर जिस नौकरी में जरूरत है इस नियम को लागू करने के लिए, उसमें अधिकारी लागू नहीं कर पा रहे हैं।
5: डिप्रेशन की दवाइयां पॉलिथीन में लेकर बैठे रामपाल प्रजापति 40 साल के हो चुके, सितंबर में ओवर एज हो जाएंगे, चपरासी परीक्षा में आधे पॉइंट से फाइनल रिजल्ट में रह गए। ऐसे लोग डरे हुए, वेटिंग लिस्ट वालों को मौका नहीं देंगे तो रामपाल जैसे बेरोजगार टूट जाएंगे।
9: मेरी एज भी नहीं है सर, मैं कहाँ जाऊंगा, इसमें 1 ईयर वेटिंग रूल के लिए आए सर हम, ये हमें मिलना चाहिए, ये हमारा न्याय है, अपने न्याय के लिए हम हक मांग रहे हैं सर।
5: पॉलिटेक्निक की 2015 में पढ़ाई कर चुके भरतपुर के गौरव सिंह 30 साल के हो गए, हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, भर्ती की वेटिंग लिस्ट में। शिव प्रकाश शर्मा 1 नंबर से फाइनल मेरिट से बाहर है, वेटिंग का नियम इस भर्ती में लागू हो जाए तभी इनको नौकरी मिल पाएगी।
10: ईडब्ल्यूएस से मेरे लगभग अभी मेरे से ऊपर लगभग 2000 बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस वाले।
26: क्या चाहते हो
10: सर? 1 ईयर वेटिंग नियम लागू हो जाए सर, प्रक्रिया दिन भर्ती हूँ सब में सर, पोर्तगढ़ के साथ में भी सर, ये चाहते हैं सर बस।
5: दरअसल चपरासी भर्ती में पास होने वाले लोग टीचर भर्ती, LDC, प्राध्यापक भर्ती से लेकर वाहन चालक भर्ती तक में परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 25,000 से 30,000 पद खाली रह जाएंगे। अगर इसी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में वेटिंग लिस्ट में आए लोगों से पद भर लेंगे तो ना तो दोबारा भर्ती परीक्षा कराने का खर्च जनता पर आएगा, ना ही भर्तियां लटकेंगी।
8: इसमें और भी नौकरियों को की तैयारी करने वाले लोग, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, PhD, MBA, MCA ये सारे लोग आ गए और वो नौकरी पा लिए हैं, मगर कहा जा रहा है कि अभी भी ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, छुट्टियों पर जा रहे हैं बाकी भर्ती की तैयारियों के लिए। ऐसे में करीब 25,000 से 30,000 ये पद खाली रह सकते हैं और सरकार फिर से भर्ती निकालेगी और इन बच्चों के साथ जो पॉइंट से एक नंबर से रह गए हैं बड़ा अन्याय हो जाएगा। कैमरामैन की शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज

0: आज लखनऊ में सजेगा पंचायत, आज तक उत्तर प्रदेश का महामंच। मुख्यमंत्री योगी समेत राजनीतिक दिग्गज करेंगे शिरकत। विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष की आवाज। संसद सत्र की तैयारी के बीच गृह मंत्री अमित शाह से हाई प्रोफाइल मुलाकातों का सिलसिला जारी। यूपी के सीएम योगी के बाद अमित शाह से मिले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन के दोषी होने पर आप बीजेपी में ढली। सीएम रेखा ने आप पर संरक्षण का आरोप लगाया। कपिल मिश्रा ने किया कटाक्ष। ताहिर सिर्फ एक्टर, असली डायरेक्टर कोई और। बर्मिंघम वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से धोया। शुभमन गिल, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर की बदौलत मिली शानदार जीत। 3 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे। और 24 घंटों में ट्रंप का यूटर्न। हॉर्मुज में नहीं लगेगा 20% टैक्स, टैरिफ की जगह खाड़ी देश करेंगे अमेरिका में निवेश। ईरानी जहाजों की नाकेबंदी का ऐलान। एक तरफ श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जांच चल रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब श्री राम मंदिर के मामले पर पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया। एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट आज सौंप सकती है।
1: ऐसे पोस्टर्स यूपी के अलग अलग शहरों में लगाए गए हैं। एक पोस्टर में अखिलेश और मुलायम सिंह यादव हैं, इसमें लिखा है मुलायम सरकार की असलियत। दूसरे पोस्टर में अखिलेश, शिवपाल और राम गोपाल यादव की तस्वीरें हैं, इसमें लिखा गया है दिल में बाबर मुंह में राम। ऐसे पोस्टर्स लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर और अयोध्या में लगाए गए हैं।
2: ऐसे चुनाव नजदीक आएगा, सब पुराने बयान निकाले जाएंगे, प्रहर पोस्टर निकाले जाएंगे, सबके निकलेंगे।
1: इस सियासत से इतर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेजी से बढ़ रही है। खबर है कि मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाने वाले कुछ विशेष दानदाताओं के दान को ट्रस्ट वापस कर सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद दर्जनों दानदाताओं ने ट्रस्ट के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और अपने दान की चोरी या घोटाले का शक जाहिर किया था। कई श्रद्धालुओं का दावा था कि उनकी ओर से भेंट की गई वस्तुओं की रसीद नहीं दी गई। आरोप ये भी है कि उनकी दी गई भेंट राम मंदिर में प्रदर्शित या सुरक्षित नहीं रखी गई। अब इन वस्तुओं को लौटाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उधर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटा दिया गया है। खबर ये भी है कि चढ़ावा चोरी की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम जल्द ही अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। आज तक ब्यूरो।
0: अयोध्या में चढ़ावे चोरी का मामला सामने आते ही वक्फ के घोटाले का राजनीतिक शोर सुनाई पड़ने लगा। पहले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष बासित अली ने बहराइच के सालार गाजी दरगाह में घोटाले के आरोप लगाए। फिर मुख्यमंत्री योगी ने कई मंचों से वक्फ के घोटालों का उल्लेख किया। अब खुद मुस्लिम जमात के मौलाना रजवी ने वक्फ के घोटालों के आरोप लगाए।
3: क्या वक्फ बोर्ड में भी चल रही है धांधली? क्या वक्फ बोर्ड में भी हुआ है घोटाला? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर वक्फ के घोटालों की जांच करने की मांग की है।
4: कि राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड का निकल करके सामने आएगा। वो लाखों का नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों का जो घोटाला है वो अरबों का घोटाला सामने निकल करके आएगा।
3: मौलाना रिजवी सीएम योगी के नाम लिखी चिट्ठी में दावा करते हैं कि वक्फ बोर्ड में सबसे ज्यादा लूट समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई।
4: जो वक्फ के जिम्मेदारान थे उन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को जो करोड़ों में थी उनको रेवड़ियों के भाव बेचा गया, वक्फ की संपत्ति को बर्बाद किया गया और ये सारी बर्बादी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई।
3: शहाबुद्दीन रिजवी अकेले शख्स नहीं हैं जो वक्फ में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं।
5: पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो हर जगह के ऊपर घपलेबाजी हो रही है पूरी तरीके से।
3: समाजवादी पार्टी पर यह आरोप खुद सीएम योगी अपनी सार्वजनिक रैलियों और कार्यक्रमों में लगाते रहे हैं। जब राम मंदिर का मुद्दा सामने आया तो सीएम ने फिर से वक्फ घोटाले का जिक्र किया था।
6: अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो एक भी बार बताओ वफ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई।
3: सियासी आरोप एक तरफ, लेकिन आरोपों की जांच दूसरी तरफ। शिया वक्फ बोर्ड से जुड़े इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दिया जाए तो यूपी में किसी वक्फ घोटाले की सघन जांच अभी तक नहीं हो सकी है।
7: दूसरे स्थानों पे या दूसरे धर्म स्थल पे कहीं अगर कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से वहाँ सुधार होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन बयानबाजी नहीं। अगर कोई सबूत किसी के पास है, एविडेंस है, तो वो सामने लाना चाहिए।
8: वफ के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पहले हुआ करता था। वफ की जमीनों को औने पौने दामों पर कब्ज हो जाते थे, किराए पे देते थे और उसके धन का दोहन होता था। वफ जिस भावना से किया जाता उस भावना का तिरस्कार होता था, लेकिन आज सरकार के प्रयासों के बाद हम वफ की संपत्तियों को रेगुलराइज करने का काम कर रहे हैं।
3: यूपी और देश में वफ की संपत्तियों के घोटालों के आरोप शुरू से लगते रहे हैं और उसे दूर करने के लिए ही सरकार ने वफ संशोधन कानून भी बनाया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि नए कानून के तहत बने वफ बोर्ड अब वफ संपत्तियों का उचित रखरखाव कर पाएंगे। बरेली से कृष्ण गोपाल राज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: दिल्ली दंगे में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से दिल्ली की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा।
3: 6 साल पहले दिल्ली में हुए दंगे को लेकर दिल्ली की अदालत ने जो फैसला सुनाया, अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन दोषी पाए गए हैं। वहीं ताहिर के अलावा 4 और आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
9: क्या अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी इस बात का जवाब देंगे कि दिल्ली में दंगे भड़काने जैसे कितने और कृत्य उन्होंने किए हैं?
3: आपको बता दें कि 26 फरवरी 2020 को खजूरी खास नाले से अंकित शर्मा का शव मिला था। उनके पिता ने ताहिर हुसैन समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। तमाम गवाहों की पेशी, सबूतों और सुनवाई के बाद अदालत का फैसला दिल्ली के सामने है। जहां तक ताहिर हुसैन का सवाल है तो खबर है कि कोर्ट की सुनवाई के दौरान वो फूट फूट कर रोने लगा। ताहिर की माने तो वो बेकसूर है, उसे फंसाया गया है।
10: ताहिर जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए।
3: हिंसा में नाम आने के बाद ताहिर हुसैन से केजरीवाल ने किनारा कर लिया था। आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने गले लगा लिया।
11: 2020 में जो दंगे हुए, आज ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन और ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोगों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू जो वहाँ पर रहने वाला हिंदू समाज है उनको मारने की साजिश थी। और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए, नौजवान, बेगुनाह, अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर, जिनको कई बार चाकुओं से गोदा गया और बाद में उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया।
12: कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का सेशन से आया है, तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा, क्या नहीं रहा।
13: लेकिन उसका नाम ताहिर है, ये बड़ी चीज है। अगर उसका नाम कपिल होता वो भी परी हो जाता।
3: दिल्ली दंगे को लेकर एआईएम सवाल उठाती रही है कि जिस दंगे में 53 लोगों की हत्या हुई उसमें 6 साल बाद भी सिर्फ एक हत्या के केस में दोषियों की पहचान क्यों हो पाई है? आखिर वो कैसी जांच थी जिसमें इसी दंगे में मारे गए हाशिम अली की हत्या के 12 और अनवर हत्याकांड के 5 आरोपी बरी हो जाते हैं? दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: राजस्थान की सबसे बड़ी चपरासी भर्ती में पीएचडी से लेकर एमबीए एमसीए तक के बेरोजगार युवाओं ने परीक्षा तो पास कर ली, मगर नौकरी मिलने की जगह अब वो दूसरी परीक्षाओं में लग गए, जिसके कारण चपरासी भर्ती के असली अधिकारी प्रदर्शन को लाचार हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, लेकिन उन्हें खाली पद के बदले नौकरी देने वाला नियम लागू नहीं हो रहा।
14: क्या राजस्थान में सरकारी नौकरी बिना रुलाए नहीं दी जा सकती? सवाल सीधा सा है। वजह मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के घर के बाहर बैठे ये बेरोजगार जो चपरासी भर्ती परीक्षा में पास हुए लेकिन फिलहाल वेटिंग लिस्ट में। आप सोचेंगे वेटिंग लिस्ट में हैं तो प्रदर्शन क्यों? इसलिए पहले मुख्यमंत्री का बयान सुनिएगा।
15: राज्य सेवा के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे अधिकारी कर्मयोगी की भावना से रूल बेस्ड से रोल बेस्ड कार्यशैली की ओर अग्रसर होंगे। एक वर्ष के भीतर कर्मचारियों द्वारा पद त्यागने की स्थिति में उस पद की प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। एकल महिला कर्मचारी के लिए चाइल्ड केयर लीव 3 के स्थान पर 6 चरणों में स्वीकृत किया जाएगा।
14: मतलब समझिए, मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर किसी भर्ती में चयनित शख्स 1 साल के भीतर पद छोड़ देगा तो उसी भर्ती की वेटिंग लिस्ट से किसी और को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी चपरासी भर्ती में ये नियम लागू करने से मना कर दिया गया। अब जो 1-2 नंबर से वेटिंग लिस्ट में चले गए उनको लगता है कि जो मौका मिल सकता था वो भी छिन रहा है, क्योंकि भर्ती नियम लागू होने से पहले की है।
16: जिस तरह से ये भर्ती में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा खाली पद बच जाएंगे इस नौकरी में। सरकार ने 1 साल का वेटिंग का नियम भी बना दिया है, मगर जिस नौकरी में जरूरत है इस नियम को लागू करने के लिए उसमें अधिकारी लागू नहीं कर पा रहे हैं।
14: डिप्रेशन की दवाइयां पॉलिथीन में लेकर बैठे रामपाल प्रजापति 40 साल के हो चुके, सितंबर में ओवर एज हो जाएंगे, चपरासी परीक्षा में आधे पॉइंट से फाइनल रिजल्ट में रह गए। ऐसे लोग डरे हुए, वेटिंग लिस्ट वालों को मौका नहीं देंगे तो रामपाल जैसे बेरोजगार टूट जाएंगे।
17: मेरी एज भी नहीं है सर, मैं कहाँ जाऊंगा, इसमें 1 ईयर वेटिंग रूल के लिए आए सर हम, ये हमें मिलना चाहिए, ये हमारा न्याय है, अपने न्याय के लिए हम हक मांग रहे हैं सर।
14: पॉलिटेक्निक की 2015 में पढ़ाई कर चुके भरतपुर के गौरव सिंह 30 साल के हो गए, हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, भर्ती की वेटिंग लिस्ट में है। शिव प्रकाश शर्मा 1 नंबर से फाइनल मेरिट से बाहर है, वेटिंग का नियम इस भर्ती में लागू हो जाए तभी इनको नौकरी मिल पाएगी।
18: ईडब्ल्यूएस से मेरे लगभग अभी मेरे से ऊपर लगभग 2000 बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस वाले।
19: क्या चाहते
18: हो सर? 1 ईयर वेटिंग नियम लागू हो जाए सर, प्रक्रिया दिन भर्तियों में सब में सर, पोर्तगढ़ के साथ में भी ये चाहते हैं सर बस।
14: दरअसल चपरासी भर्ती में पास होने वाले लोग टीचर भर्ती, LDC, प्राध्यापक भर्ती से लेकर वाहन चालक भर्ती तक में परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 25,000 से 30,000 पद खाली रह जाएंगे। अगर इसी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में वेटिंग लिस्ट में आए लोगों से पद भर लेंगे तो ना तो दोबारा भर्ती परीक्षा कराने का खर्च जनता पर आएगा, ना ही भर्तियां लटकेंगी।
16: इसमें और भी नौकरियों को की तैयारी करने वाले लोग, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, PhD, MBA, MCA ये सारे लोग आ गए और वो नौकरी पा लिए हैं, मगर कहा जा रहा है कि अभी भी ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, छुट्टियों पर जा रहे हैं बाकी भर्ती की तैयारियों के लिए। ऐसे में करीब 25,000 से 30,000 ये पद खाली रह सकते हैं और सरकार फिर से भर्ती निकालेगी और इन बच्चों के साथ जो पॉइंट से 1 नंबर से रह गए हैं बड़ा अन्याय हो जाएगा। कैमरामैन की शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: हमारे देश में जून में तो बारिश हुई नहीं, जुलाई आया तो पहले सप्ताह जमकर बारिश हुई, लगा कि जून का डेफिसिट भी जुलाई की बारिश खत्म कर दी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे फिर से सूखा पड़ गया। 5 दिन से अधिक का वक्त हो चुका है भारत में, हमारे देश में एक बड़े हिस्से में पानी की एक बूंद नहीं गिरी। सवाल ये कि ऐसा क्यों हो रहा है और इससे आगे कितना नुकसान होगा, मौसम क्यों बदल रहा है।
20: अचानक से बरसता मॉनसून कहां चला गया? जुलाई में बारिश की रफ्तार पर क्यों ब्रेक लग गया? क्या ये अल नीनो का असर है या फिर से सूखा पड़ने वाला है? मॉनसून पर लगा ये ब्रेक फसलों के लिए कितना नुकसानदायक है? पिछले हफ्ते हुई ये शानदार बारिश बता रही थी कि देर से ही सही, लेकिन मॉनसून जब आया तो झूम कर बरसा। किसानों को लगा कि उनकी फसलों की बंपर पैदावार होगी, लेकिन 2 दिन में ही ये चिलचिलाती धूप निकल आई, भीषण गर्मी के साथ उमस। ऐसा लगता है कि जैसे मई जून फिर से लौट आया हो। सवाल है कि बारिश अचानक से कहां चली गई, मॉनसून पर ये ब्रेक क्यों लगा? मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून में बारिश अक्सर स्पेल में यानी कि अलग अलग अवधि में होती है। 2 जुलाई से 9 जुलाई तक अच्छी वर्षा हुई, फिर ब्रेक हो गया। वजह यह है कि जब मॉनसून साउथ में रहता है तो भारत के मैदानी क्षेत्रों में अच्छी बारिश होती है,

0: मौसम विभाग के मुताबिक अभी यही स्थिति है। अब सवाल है कि आगे बारिश कब होगी, तो मौसम विभाग बता रहा है कि अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 19 जुलाई से दोबारा उत्तर पश्चिम भारत यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश की पूरी संभावना है।
1: क्या ये सिस्टम मतलब साइक्लिक है या कोई असाधारण घटना है?
2: नहीं, कोई असाधारण घटना नहीं है कि जैसे जो जैसे कि मॉनसून जब ट्रफ हमारा नॉर्मल या उसके साउथ में रहता है तो भारत के मैदानी क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा देखने को मिलती रहती है, और जैसे जैसे ये नॉर्थ की तरफ जाता है यानी फुटहिल्स की तरफ जाता है, अभी आज की अगर स्थिति बात करूं मैं 14 जुलाई की, तो जो मॉनसून ट्रफ का जो पश्चिमी सिरा है वो अभी जम्मू से स्टार्ट होकर के जम्मू देन देहरादून बाराबंकी से होकर के और ईस्ट सेंट्रल व्यू ऑफ बंगाल में जा रहा है, यानी कि मॉनसून ट्रफ का जो पश्चिमी सिरा है वो अपनी सामान्य स्थिति काफ़ी ऊपर फुटहिल्स में है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जो तराई बेल्ट है जैसे नदन पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये सब पॉकेट्स में वर्षा मिल रही है।
0: लेकिन सवाल है कि इससे नुकसान कितना हुआ, अब इसे भी समझिए। जून में बारिश का 40% का डेफिसिट था, फिर जुलाई के पहले हफ्ते में अच्छी बारिश हुई तो ये डेफिसिट घटकर अब 19% रह गया, यानी 21% की रिकवरी हुई है। ये उम्मीद थी कि जुलाई में ठीक ठाक बारिश होगी तो ये पूरा डेफिसिट कवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सवाल है कि कहीं यह पूरा डेफिसिट बढ़ता ना चला जाए, क्योंकि बारिश कम होने का मतलब है कि सब कुछ कम होना। ये पूरा का पूरा दुष्चक्र है जो सबको प्रभावित करता है, और एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इसका लंबा असर देश की जीडीपी पर पड़ सकता है। ये समझने से पहले आप ये जानिए कि कैसे कम बारिश फसलों पर असर डाल रही है। आमतौर पर जुलाई से सितंबर के सीजन में खरीफ की फसल 1104 लाख हेक्टेयर में बोई जाती है। 2025 में 10 जुलाई तक 632 लाख हेक्टेयर पर फसल की बुआई हुई थी, जो 2026 में 16% घटकर सिर्फ 531 लाख हेक्टेयर रह गई। सबसे ज्यादा असर हुआ है दलहनों पर। 2025 की तुलना में किसानों ने दालों की 23% कम बुआई की है। इसी तरह से मोटे अनाज की 22% कम, तिलहन की 21% कम, कपास की 15% कम और धान की 9% कम बुआई हुई है। ये सारी वो फसलें हैं जिनमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और पानी बरस ही नहीं रहा तो किसान इन फसलों की बुआई ही नहीं कर पा रहे। सरकार खुद किसानों को सलाह दे रही है कि किसान अब कम अवधि वाली फसलों को प्राथमिकता दें।
3: अभी जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है, अब बोनी और तेजी से होगी। पिछले साल इस समय तक 442,80,000 हेक्टेयर में बोनी हुई थी, सोइंग हुई थी, लेकिन कल तक 350,85,000 हेक्टेयर में बोनी हुई है। इसका मतलब 91.95 लाख हेक्टेयर में बुआई अभी कम हुई है, लेकिन उम्मीद यह है कि इस अच्छी वर्षा के कारण अब बोनी का क्षेत्र तेजी से बढ़ेगा। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है।
0: सरकार के किसानों को दी गई ये राय बता रही है कि हालात ठीक नहीं है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इसका सीधा असर देश के जीडीपी पर पड़ सकता है। अगर मानसून में ठीक से बारिश नहीं हुई तो महंगाई भी बढ़ सकती है।
4: अगर आपके पास मॉनसून रेनफॉल कम होता है तो नेचुरली हमारी राइस फील्ड देन मेज, मक्का और ये जो और 3-4 दलहने सब पे इनका प्रभाव पड़ेगा, और इनका प्रोडक्शन अगर कम होगा तो नेचुरली जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी पे आप लोगों को जैसे अंदाजा है कि करीब 17-18% जीडीपी हमारे एग्रीकल्चर से आता है और 47% के करीब वर्क फोर्स इसके ऊपर डिपेंडेंस है। तो इन चीजों को ध्यान में रखे अगर हम देखें, और अगर जो महंगाई बढ़ेगी वो करीब 4-5% के करीब बढ़ सकती है, तो इससे लंबा एक चेन रिएक्शन शुरू होगी।
0: यानी मॉनसून में कम बारिश बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। बारिश कम होने का मतलब है फसल कम।

0: मतलब तिलहन और दलहन आयात करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये कम वर्षा अल नीनो की वजह से हो रही है? अल नीनो के साथ आपको एक और टर्म समझना होगा, इंडियन ओशन डाइपोल यानी आईओडी। दरअसल दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर इस समय प्रशांत महासागर में बन रहे अल नीनो सिस्टम और इंडियन ओशन डाइपोल यानी आईओडी पर है। अल नीनो यानी पूर्व में प्रशांत महासागर की सतह से गर्म चलने वाली हवाओं के चक्र से दुनिया भर के मौसम पर होने वाले असर और इंडियन ओशन डाइपोल की स्थिति ये तय करेगी कि भारत में मॉनसून कैसा होगा। वैज्ञानिक कह चुके हैं कि प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसका असर एशिया प्रायद्वीप में सितंबर महीने के बाद दिखना शुरू हो सकता है। लेकिन हिंद महासागर में आईओडी की स्थिति क्या होगी, इस पर स्पष्टता आने में अभी महीने भर का समय और लग सकता है।
1: प्रशांत महासागर की सतह जब गर्म होगी तो हवाएं वो पश्चिम की ओर आएंगी, जो ट्रोपोस्फीयर में एक इक्वेशन बनेगा, लेकिन उसके साथ उसका असर पड़ेगा भारत के मानसून पर भी। लेकिन नजर इस बात की है कि क्या इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव होगा या नकारात्मक होगा। दरअसल सैटेलाइट की तस्वीर अगर हम देखें, और मौसम विभाग ये मान रहा है कि अभी तक जो इंडियन ओशन डायपोल है वो न्यूट्रल है। अब अगर भारत से नीचे आते हैं और इसी से थोड़ा और जब नीचे आएंगे तो इथोपिया या अफ्रीका के पास, दरअसल हम देखते हैं अफ्रीका के पास नोटिस करते हैं यहीं से इंडियन ओशन डायपोल को, तो ये दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका के पास, और इसी के साथ साथ कि यहां की सतह क्या गर्म है, और उसी के साथ दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया के पास क्या यहां जो समंदर हिंद महासागर उसकी सतह ठंडी है। अगर ऐसी स्थिति पाई जाती और पॉजिटिव होता है तो वो प्रशांत की ओर से आने वाली इन गर्म हवाओं को निष्क्रिय कर देगी और पॉजिटिव आईओडी की स्थिति में बारिश तेज होगी। लेकिन चिंता इस बात की है कि अभी तक इंडियन ओशन डायपोल बिल्कुल न्यूट्रल है, और जब तक वो पॉजिटिव नहीं होता तो 1997 या 2023 की स्थिति नहीं बनती, और ऐसे में एल नीनो का असर अगस्त के बाद से भारत के मौसम पर डालेगा। न सिर्फ बरसात कम होगी बल्कि उसका असर देश की खेती पर भी पड़ेगा।
0: एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि देश को अल नीनो के प्रभाव के लिए तैयार रहना चाहिए। भले ही उसका असर सितंबर के बाद महसूस किया जाएगा, लेकिन अगर अल नीनो आया तो फिर सूखा ही सूखा है। एक्सपर्ट पूरी तैयारी करने को कह रहे हैं।
2: IMD forecasts will keep coming along the way for days to weeks, and government will use it and private sector will use it for making decisions, kind of crisis management, as well as food, energy, water, etc. So we have to just deal with it as it comes, prepare for the worst, hope for the best, but rely on skillful early warnings to manage resources, disasters, and protect lives, livelihoods, properties, businesses, etc. That's the deal this year.
0: Ashutosh Mishra, Delhi, Aaj Tak.
3: जुलाई से सितंबर तक का सीजन किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह सीजन खरीफ का है, यानी कि दलहन और तिलहन इसी सीजन में बोई जाती है, धान बोई जाती है। लेकिन खराब मानसून, कम बारिश के कारण किसानों की परेशानी बहुत बढ़ गई। वो अपनी फसलों की बुआई तक नहीं कर पा रहे। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों की स्थिति सबसे अधिक खराब है, क्योंकि इनकी 80-85% खेती मानसून पर निर्भर है।
0: विदर्भ का किसान इस समय तिहरी मार झेल रहा है। पहले मॉनसून देर से आया, फिर कई किसानों को सोयाबीन के बीजों का अंकुरण नहीं होने के कारण दोबारा बुआई करनी पड़ी, और अब पिछले 6 दिनों से बारिश थमने के कारण खेतों में खड़ी फसल सूखने लगी है। विदर्भ की 80-85% खेती आज भी सिर्फ मॉनसून पर निर्भर है। ऐसे में किसान खेतों में गुड़ाई कर बची हुई नमी फसलों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं।
4: करीबन 1.5 लाख रुपए अब कैसा भरेंगे, अब जो भी होंगे अब बैंक देखेंगे, हमारी हर राशि में लगाएंगे खेत, और इसके और कुछ कर सकते नहीं, हम क्या करेंगे। हमने कर्जा जो लिए काय के लिए, फसल के लिए, फसल ही नहीं रही तो पैसे भरेंगे क्या कहाँ से। अभी समझ लो 8-10 दिन पानी नहीं आया तो ट्रैक्टर डालो, खेत काला करके मोकला करो, इसके अलावा कुछ कर सकते नहीं हम।
5: मजूर के भाव बढ़ गए, अब खाद के भाव बढ़ गए, बीज के भाव बढ़ गए तो कितना पैसा लगाना, जितना पैसा रहता सोना नाना सब बैंक पे रखना पड़ता, कर्जा लेना पड़ता, फसल आने के बाद में वापस दे देते, अब ये आया ही नहीं तो कैसा करेंगे हम।
0: इस साल विदर्भ में मॉनसून की शुरुआत देर से हुई। शुरुआती बारिश के बाद किसानों ने बड़े पैमाने पर सोयाबीन, कपास, धान और तुअर की बुआई की, लेकिन सामान्य के मुकाबले अब तक अपेक्षित बारिश का केवल 70-75% हिस्सा ही दर्ज हो पाया है। जिससे बारिश का बैकलॉग बना हुआ है। पिछले छह दिनों से बारिश लगभग थम सी गई है।
6: ज्यादा अगर फसल विदर्भ में होती है तो वो है कॉटन की, कपास की। अब वो भी फसल देखिए आप किस तरह से यहाँ पर एक एक पत्ता जो है उसका पानी नहीं होने के चलते जो है पीला पड़ते जा रहा है, तो कहीं जलते नजर आ रहा है। ये पूरी हकीकत जो है ये विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों की है। लगभग विदर्भ में जिस तरीके से सरकारी आंकड़े के मुताबिक जो है वो यहाँ पर जिस तरीके से हर साल बारिश होनी थी उससे कम हुई है, तो लगभग विदर्भ के पूरे क्षेत्र में लगभग 75% ही बुआई हुई है, जो पिछले साल के मुताबिक यानी पिछले साल लगभग 99% बुआई हुई थी, लेकिन इस वक्त बुआई इसलिए कम हुई है कि बारिश ही ठीक ठाक नहीं है। पश्चिम विदर्भ में कुछ इलाकों में मानो अकोला या उसके लगभग जो है वो अमरावती है, यवतमाल है, बुलढाणा है, वहां तो ठीक ठाक बारिश जरूर नजर आ रही है, लेकिन वो कुछ ही इलाकों में है, चंद इलाकों में है।
0: मराठवाड़ा में इस साल मॉनसून की बेरुखी के कारण किसानों पर दोबारा बुआई का भारी संकट मंडरा रहा है। इसी आर्थिक और मानसिक तनाव के चलते बीड जिले के एक किसान ने आत्महत्या कर ली। गेवराई तहसील के रानमला गांव के 25 साल के युवा किसान मुकुंद गंगाराम हिंगे ने रविवार को अपने घर में फांसी लगा दी। इस साल बारिश न होने से फसलें बर्बाद हो गई, जिससे कर्ज चुकाने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
7: पाऊस पानी नहीं, आज विहिरीत पानी नहीं, बोरला पानी नहीं, ऊस जळून गेलाय आणि त्याला त्याच्याकडे बोरला पानी नहीं, ऊस जळून गेलाय आणि त्याला त्याच्याकडे कर्जाचा डोंगर झाल्यामुळे त्यांना निराश झाला आणि निराश होऊन त्यांना आत्महत्या केली।
0: बीड जिले में इस साल बारिश की स्थिति बेहद चिंताजनक है। के लायक क्षेत्र है, लेकिन पानी की कमी के कारण अब तक केवल 4 लाख हेक्टेयर पर ही किसी तरह बुआई हो सकी है। जिन किसानों ने शुरुआती हल्की बारिश पर बुआई की थी उनकी फसलें अब सूख चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में भी मॉनसून की रफ्तार थम सी गई है। जून लगभग सूखा गुजर गया और जुलाई में भी बारिश उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा असर अब किसानों पर दिख रहा है। बेमेतरा और राजनांदगांव जैसे कृषि प्रधान जिलों में खेत तैयार हैं, लेकिन पानी नहीं है। कहीं बुआई नहीं हो पा रही तो कहीं अंकुर निकलने के बाद फसल सूखने लगी है। किसान अब आसमान की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं।
8: इस बार मौसम की बेरुखी से सबसे ज्यादा परेशानी अगर हो रही है तो किसानों को हो रही है, हम लोगों को हो रही है। मैं जान सकता हूं कि क्या स्थिति है। अब आप देखिए कि मेरे पूरे खेत की जुताई हो चुकी है, पूरा खेत तैयार है, मैं सिर्फ पानी का इंतजार कर रहा था कि पानी गिरे तो अपनी फसलों को जो लगाऊं रोपाई करूं। सबसे पहले चीज थी कि हमने ये उम्मीद थी कि इस बार बरसात अच्छी होगी, हालांकि सरकार जो वैज्ञानिक है वो कह रहे थे बरसात कम होगी, लेकिन उम्मीद थी कि बरसात अच्छी होगी इसीलिए हम तैयारी की। लेकिन क्या करें, उम्मीद में हम अपने खेतों की जुताई कर चुके, तो हम सीधा सीधा श्री पद्धति से, जो वैज्ञानिक पद्धति होता है श्री पद्धति, उससे हम उनारी कर रहे हैं ताकि अगर पानी गिरे तो हमारी फसल कुछ तो हो जाए, इसी उम्मीद से हम लोग अभी फसल को लगा रहे हैं।
0: बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता सिर्फ फसल तक सीमित नहीं है। कई किसानों ने खाद और बीज खरीदने के लिए कर्ज लिया है। उन्हें दोबारा बुआई की आशंका और आर्थिक नुकसान दोनों का डर सता रहा है। इसीलिए किसान सरकार से फसल नुकसान का सर्वे, उचित मुआवजा और फसल बीमा के दावों का जल्द निपटारा करने की मांग कर रहे हैं।
9: मानसून देखा है तो पिछले एक हफ्ते सक्रिय रहा है, लेकिन पिछले 4-5 दिन से देखा है तो कोई खास सिस्टम नहीं है और मानसून ट्रफ भी है जो उत्तर को और पोजिशन है, जिसकी वजह से प्रदेश का पिछले 2 दिन से शुष्क रहा। लेकिन आज का स्थिति में देखा है तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो हेड बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ है, जिस प्रभाव से आज और कल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के चांस है, पूर्वी इलाकों में एक दो स्थानों पर मध्य से लेके भारी वर्षा भी होने की संभावना है।
0: आज तक ब्यूरो।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: आज लखनऊ में सजेगा पंचायत, आज तक उत्तर प्रदेश का महामंच। मुख्यमंत्री योगी समेत राजनीतिक दिग्गज करेंगे शिरकत। विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष की आवाज। संसद सत्र की तैयारी के बीच गृह मंत्री अमित शाह से हाई प्रोफाइल मुलाकातों का सिलसिला जारी। यूपी के सीएम योगी के बाद अमित शाह से मिले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन के दोषी होने पर आप बीजेपी में ठनी। सीएम रेखा ने आप पर संरक्षण का आरोप लगाया। कपिल मिश्रा ने किया कटाक्ष। ताहिर सिर्फ एक्टर, असली डायरेक्टर कोई और। बर्मिंघम वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से धोया। शुभमन गिल, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर की बदौलत मिली शानदार जीत। 3 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे। और 24 घंटों में ट्रंप का यूटर्न। हॉर्मुज में नहीं लगेगा 20% टैक्स, टैरिफ की जगह खाड़ी देश करेंगे अमेरिका में निवेश। ईरानी जहाजों की नाकेबंदी का ऐलान। एक तरफ श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जांच चल रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब श्रीराम मंदिर के मामले पर पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया। एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट आज सौंप सकती है।
1: ऐसे पोस्टर्स यूपी के अलग अलग शहरों में लगाए गए हैं। एक पोस्टर में अखिलेश और मुलायम सिंह यादव हैं। इसमें लिखा है मुलायम सरकार की असलियत। दूसरे पोस्टर में अखिलेश शिवपाल और राम गोपाल यादव की तस्वीरें हैं। इसमें लिखा गया है दिल में बाबर मुंह में राम। ऐसे पोस्टर्स लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर और अयोध्या में लगाए गए हैं।
2: जैसे चुनाव नजदीक आएगा सब पुराने बयान निकाले जाएंगे, पुराने पोस्टर निकाले जाएंगे, सबके निकलेंगे।
1: इस सियासत से इतर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेजी से बढ़ रही है। खबर है कि मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाने वाले कुछ विशेष दानदाताओं के दान को ट्रस्ट वापस कर सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद दर्जनों दानदाताओं ने ट्रस्ट के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और अपने दान की चोरी या घोटाले का शक जाहिर किया था। कई श्रद्धालुओं का दावा था कि उनकी ओर से भेंट की गई वस्तुओं की रसीद नहीं दी गई। आरोप ये भी है कि उनकी दी गई भेंट राम मंदिर में प्रदर्शित या सुरक्षित नहीं रखी गई। अब इन वस्तुओं को लौटाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उधर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटा दिया गया है। खबर ये भी है कि चढ़ावा चोरी की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम जल्द ही अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। आज तक ब्यूरो।
0: अयोध्या में चढ़ावे चोरी का मामला सामने आते ही वक्फ के घोटाले का राजनीतिक शोर सुनाई पड़ने लगा। पहले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष बासित अली ने बहराइच के सालार गाजी दरगाह में घोटाले के आरोप लगाए। फिर मुख्यमंत्री योगी ने कई मंचों से वक्फ के घोटालों का उल्लेख किया। अब खुद मुस्लिम जमात के मौलाना रजवी ने वक्फ के घोटालों के आरोप लगाए।
3: क्या वक्फ बोर्ड में भी चल रही है धांधली? क्या वक्फ बोर्ड में भी हुआ है घोटाला? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर वक्फ के घोटालों की जांच करने की मांग की है
4: कि राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड का निकल करके सामने आएगा। वो लाखों का नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों का जो घोटाला है वो अरबों का घोटाला सामने निकल करके आएगा।
3: मौलाना रिजवी सीएम योगी के नाम लिखी चिट्ठी में दावा करते हैं कि वक्फ बोर्ड में सबसे ज्यादा लूट समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई।
4: जो वक्फ के जिम्मेदारान थे उन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को जो करोड़ों में थी उनको रेवड़ियों के भाव बेचा गया, वक्फ की संपत्ति को बर्बाद किया गया और ये सारी बर्बादी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई।
3: शहाबुद्दीन रिजवी अकेले शख्स नहीं है जो वक्फ में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं।
5: पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो हर जगह के ऊपर घपलेबाजी हो रही है पूरी तरीके से।
3: समाजवादी पार्टी पर यह आरोप खुद सीएम योगी अपनी सार्वजनिक रैलियों और कार्यक्रमों में लगाते रहे हैं। जब राम मंदिर का मुद्दा सामने आया तो सीएम ने फिर से वक्फ घोटाले का जिक्र किया था।
6: अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई।
3: सियासी आरोप एक तरफ, लेकिन आरोपों की जांच दूसरी तरफ। शिया वक्फ बोर्ड से जुड़े इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दिया जाए तो यूपी में किसी वक्फ घोटाले की सघन जांच अभी तक नहीं हो सकी है।
7: दूसरे स्थानों पे या दूसरे धर्म स्थल पे कहीं अगर कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से वहां सुधार होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन बयानबाजी नहीं। अगर कोई सबूत किसी के पास है, एविडेंस है, तो सामने लाना चाहिए।
8: वक्फ के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पहले हुआ करता था। वक्फ की जमीनों को औने पौने दामों पर कब्ज हो जाते थे, किराए पे देते थे और उसके धन का दोहन होता था। वक्फ जिस भावना से किया जाता उस भावना का तिरस्कार होता था, लेकिन आज सरकार के प्रयासों के बाद हम वक्फ की संपत्तियों को रेगुलराइज करने का काम कर रहे हैं।
3: यूपी और देश में वक्फ की संपत्तियों के घोटालों के आरोप शुरू से लगते रहे हैं और उसे दूर करने के लिए ही सरकार ने वक्फ संशोधन कानून भी बनाया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि नए कानून के तहत बने वक्फ बोर्ड अब वक्फ संपत्तियों का उचित रखरखाव कर पाएंगे। बरेली से कृष्ण गोपाल राज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: दिल्ली दंगे में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से दिल्ली की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा।
3: छह साल पहले दिल्ली में हुए दंगे को लेकर दिल्ली की अदालत ने जो फैसला सुनाया, अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन दोषी पाए गए हैं। वहीं ताहिर के अलावा चार और आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
9: क्या अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी इस बात का जवाब देंगे कि दिल्ली में दंगे भड़काने जैसे कितने और कृत्य उन्होंने किए हैं?
3: आपको बता दें कि 26 फरवरी 2020 को खजूरी खास नाले से अंकित शर्मा का शव मिला था। उनके पिता ने ताहिर हुसैन समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। तमाम गवाहों की पेशी, सबूतों और सुनवाई के बाद अदालत का फैसला दिल्ली के सामने है। जहां तक ताहिर हुसैन का सवाल है तो खबर है कि कोर्ट की सुनवाई के दौरान वो फूट फूट कर रोने लगा। ताहिर की माने तो वो बेकसूर है, उसे फंसाया गया है।
10: ताहिर जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए।
3: हिंसा में नाम आने के बाद ताहिर हुसैन से केजरीवाल ने किनारा कर लिया था। आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने गले लगा लिया।
11: 2020 में जो दंगे हुए, आज ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन और ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोगों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू जो वहाँ पर रहने वाला हिंदू समाज है उनको मारने की साजिश थी। और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए, नौजवान बेगुनाह अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर जिनको कई बार चाकुओं से गोदा गया और बाद में उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया।
12: कोर्ट का फैसला है उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा, क्या नहीं रहा।
13: लेकिन उसका नाम ताहिर है, ये बड़ी चीज है। अगर उसका नाम कपिल होता वो भी परी हो जाता।
3: दिल्ली दंगे को लेकर एआईएम सवाल उठाती रही है कि जिस दंगे में 53 लोगों की हत्या हुई उसमें 6 साल बाद भी सिर्फ एक हत्या के केस में दोषियों की पहचान क्यों हो पाई है? आखिर वो कैसी जांच थी जिसमें इसी दंगे में मारे गए हाशिम अली की हत्या के 12 और अनवर हत्याकांड के 5 आरोपी बरी हो जाते हैं? दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: महाराष्ट्र के नासिक में एक परिवार वाटरफॉल घूमने गया, लेकिन वहां दो बदमाशों ने परिवार की महिला से छेड़खानी की। परिवार ने विरोध किया तो फिर 15 किलोमीटर तक पीछा करके 4 बार बदमाशों ने हमला किया। इस मामले में 9 लोग पकड़े गए, 3 लोग फरार हैं।
14: बारिश का मौसम, महाराष्ट्र के अलग अलग वाटरफॉल, जहां इस वक्त हर परिवार छुट्टी मनाने के लिए अपनों के संग कुछ खुशी के पल बिताने के लिए पहुंचता है। लेकिन 12 जुलाई रविवार को नासिक के भावली वाटरफॉल के पास भागवत परिवार के साथ जो कुछ हुआ है वो हर आम आदमी को डरा देता है जो कहीं छुट्टी मनाने जाता है।
15: वहां के दो लोकलाइट थे, उन्होंने कुछ गंदी कमेंट पास कर दी। वो व्हाइट कलर की बलून है, उसने आगे हमारे आके रास्ता ब्लॉक किया।
16: अच्छी जगह पर अटैक किया लोगों ने।
17: मेरा भाई बैठा था, उसकी कांच फोड़ दी।
16: कांच फूट रही थी तो बच्चा भी डर गया।
17: फाइटर से वगैरह कांच फूटी तो हमने गाड़ी थोड़ा रिवर्स लेके भागना चालू किया।
16: जहां भी रुके वहां पे हमारी गाड़ी फूटी।
14: सबसे पहले दहशत के इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक कार में भागता हुआ मेहर भागवत का परिवार, जिनके पीछे एक बाइक पर हाथ में लोहे की रॉड लेकर अटैक करने के लिए आते दो गुंडे हैं। और फिर दो लोग बाइक से, बाकी लोग सफेद रंग की कार से इस परिवार का पीछा 15 किलोमीटर तक करके हमला करते हैं, जो रविवार को नासिक के भावली वाटरफॉल के पास पिकनिक मनाने पहुंचे। इसके बाद ये सवाल हर आम आदमी का परिवार पूछना चाहता है, क्या पिकनिक स्पॉट पर भी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल सकती है? अब आप जानना चाहेंगे कि यहाँ हुआ क्या। मीर भागवत और उनकी पत्नी की साफ बीती को आज हर परिवार इसीलिए जरूर सुने।
17: मैं और मेरे भाई की फैमिली है ना, हम टोटल 8 लोग, उसके 2 बच्चे, मेरे 2 बच्चे, मिसेस उसकी, मेरी मिसेस, हम भावली डैम पे घूमने गए थे फैमिली के साथ में, टाइम स्पेंड करेंगे अच्छे फैमिली के साथ में। हम वहाँ पे गए तकरीबन 2-3 बजे, वहाँ पे खाना वगैरह खाया, पानी में खेले हम सब। 5:30 बजे के करीब निकलना है भाई, शाम हो रही है, तो बच्चे आके गाड़ी में बैठे, लेडीज़ वगैरह निकलने लगे और हम जेंट्स थे तो सब जो खाने के बैग वगैरह थे हम पीछे से लेके आ रहे थे। तो मिसेज जा रही थी थोड़े अभी पानी में भीगने की वजह से ड्रेसेस वगैरह गीले थे, तो किसी वहाँ के 2 लोकलाइट थे उन्होंने कुछ गंदी कमेंट पास कर दी। तो मिसेज ने उनसे आर्ग्यू किया कि आप ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने भी आर्ग्यू किया।
16: चेंज करने हम कार के पास जा रहे थे तो आप एक बाइक पे 2 लड़के खड़े थे, तो मैं उनके वहाँ से तो जाना ही पड़ेगा तो उनके बाजू से गई, तो उन्होंने मुझे सिट्टी बजाई और कुछ कमेंट पास की। तो मैंने उनको बोला तुम पागल हो गए कि पब्लिक प्लेस में लेडीज को छेड़ रहे हो, उनको समझता नहीं आजकल क्या चल रहा है इनका। नहीं बोले असद असद है, वो मराठी में मुझे बोलने लगी वगैरह, तो फिर मैं थोड़ा उनके ऊपर ये करने लगा।
17: तो उनका ये चालू था झगड़ा, तो मैंने दूर से देखा तो मैं भागते हुए गया कि क्या हुआ। तो इस मिसेस ने बोला कि ये मुझे छेड़ रहे, तो मैंने उनको डांटा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो।
16: मेरे हस्बैंड ने देखा कि इसका क्या चल रहा है उनके साथ, तो फिर ये भी पीछे से, अरे मेरे जा बहू नहीं बोलता, निकल जा बोले से मराठी बोले निकल जाओ तुम, क्यों दिमाग लड़ा ले। वहाँ पे बाद में जो लड़के खड़े थे 7-8-10 लड़के थे जो कार है वहाँ पे, तो वो आए बोले हमारे गाँव के लड़के को तुम ऐसे कैसे बोल सकते, हाथ भी लगा सकते।
17: तो मैंने उनको थोड़ा सा ये किया कि भाई तुम निकल जाओ, तो वो निकल गए। लेकिन वहाँ के जो लोकलाइट थे, वहाँ पे एक 4-व्हीलर में कोई शॉप रन करते वहाँ के लोकल बिजनेस, तो वहाँ के जो 6-8 बच्चे थे लोकलाइट, वो आए क्या हुआ क्या हुआ, तो वो लोग इशू करने लग गए।
16: थोड़ी सी हाथापाई हुई हमारी, वहाँ पे पब्लिक लोगों ने हमको बचा लिया कि चलो निकलो यहाँ से, जाने दो छोड़ो। आगे जाके इन्होंने बलेनो पूरा आगे सामने से आके उन्होंने आड़ी गाड़ी लगा दी और डायरेक्ट फाइटर से कांच फोड़ना चालू कर दी, तो हम डर गए। मैंने उनको बोला कि इन्होंने भगाओ गाड़ी भगाओ, इन्होंने इतनी गाड़ी भगाई तो पीछे से फिर 2-व्हीलर रॉड वगैरह लेकर अपने वीडियो में देखा, वो सब घटना चालू हो गई। फिर आगे जाके उनका एक लड़का गाड़ी पे लटका भी, पूरा लटका।
14: सोचिए कितने बेखौफ रहे होंगे वो गुंडे जो 15 किलोमीटर तक पीछा करके हमला करते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि क्या रास्ते में कहीं पुलिस नहीं थी, कहीं पुलिस पोस्ट नहीं थी।
17: वहाँ से आगे आने पे भावली डैम है, वहाँ पे हमें पुलिस वैन मिली ब्लू कलर की, तो वहाँ पे हमने पूछा कि हमें पुलिस कंप्लेंट करनी है, तो बोले ठीक है आप इगतपुरी पुलिस स्टेशन जाइए। आगे निकले वहाँ से भावली डैम से 2 किलोमीटर आगे, तो एक वाइट कलर की बलेनो है, उसने आगे हमारे आके रास्ता ब्लॉक किया। जैसा रास्ता ब्लॉक किया तो वहाँ से उसमें से उतर के 2-4 बच्चे भागे, उन्होंने आगे की और मेरे बाजू में जो मेरा भाई बैठा था उसकी कांच फोड़ दी। तो हमने गाड़ी थोड़ा रिवर्स लेके भागना चालू किया, बोला इगतपुरी पुलिस स्टेशन जाते। लेकिन जैसे हम नासिक मुंबई हाईवे पे आए फ्लाईओवर के नीचे नियर बाय, वहाँ पे 2 बाइक जो वीडियो वायरल हो रहा है पीछे से आके रॉड से मार रहे, उन्होंने पीछे से रॉड से मारा और आगे आके वापस उन्होंने 2-व्हीलर से हमें ब्लॉक किया। वहाँ पे उन्होंने आगे वापस 70 से हमारी गाड़ी फोड़ी। फिर हमने सोचा इगतपुरी में जाना गलत होगा, ये लोकल लाइट है, तो इससे अच्छा अपन नासिक की तरफ भागते।
14: सुनकर डर लगता है, मानो फिल्म में जैसे किसी विलेन का जंगल राज दिखाते वो हालत सच में हो, मतलब रोक रोक कर परिवार पर हमला होता रहा और भागवत परिवार जान बचाने को भागता रहा।
16: छह जगह पर अटैक किया लगभग उनको। सबसे पहले उन्होंने भावली डैम के आगे जो टर्न आता है ना वहाँ पे पकड़ा, क्योंकि उनको पता है यहाँ से टर्न मारना थोड़ा बड़ी गाड़ी को मुश्किल होगा। बरोबर वहाँ पे पकड़ा, वहाँ पे आए काज बीच पड़े, वहाँ पे बच्चे डर गए, तब हमने मोबाइल चालू नहीं किया। उसके बाद वहाँ से जब हम निकले तो पीछे दो बाइक पर जो लड़के आ रहे थे जो रोड था, तो मैंने बेटे को बोला, मैंने बेटा मोबाइल निकल के उनका वीडियो ले, वो बाकी जाने दो। फिर मेरे बेटे ने वो वीडियो लिया, तो वीडियो लेते ले तो उसने वीडियो देखा कि वो देख रहा है कि हम मोबाइल वीडियो ले रहे। फिर उसने रॉड फेंका, दो दो रॉड फेंके, वहाँ पे उनका निशाना चुप गया। फिर आगे जाके फिर उनका निशाना परफेक्ट लगा, वो वीडियो हम ले नहीं सके, कांच फूट रही थी तो बच्चा भी डर गया, वो वीडियो हमने लिया। फिर आगे जाके एक टोल नाका के वहाँ रुके, तो एक पिंक शर्ट वाला है उसने आके से एक बटन बंद कर दिया हमारी गाड़ी का, कि बंद कर दिया, कांच खुले थे पूरे बंद कर दिया। फिर बोले उतरा उतर जाओ, अपन ये करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, मिटा देंगे ऐसा जैसा। तो ये मेरे हस्बैंड बोले चलो देखते, फिर मेरे पागल हो गए कि यहाँ पे उतरना रिस्क है, निकलो। फिर हम वहाँ से वापस निकले।
14: पीड़ित परिवार का नासिक में नेशनल हाईवे पर 15 किलोमीटर तक पीछा करते ये गुंडे टोल प्लाजा, सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड, हाईवे पुलिस, जहां सब कुछ होता है, लेकिन किसी से ये नहीं डरते और कोई मदद के लिए भी आगे नहीं आते।
17: अटैक करने के लिए उन्होंने 70 फाइटर्स और ये बेसबॉल के ये थे, शायद बेसबॉल के आप उसको क्या बोलते हैं, स्टिक्स बोल सकते हैं, कुछ लकड़ी के भी थे। और मेरे हिसाब से मुझे किसी के हाथ में एक सिल्वर कलर का शायद छोटी सी ऐसी तलवार, तो ऐसी थोड़ा कर्व शेप में होता, लेकिन वो सीधी थी, लेकिन सिल्वर तार चमक रहा था। अभी वो क्या हो रहा था, मेरा इंटेंशन था कि भागना है, बचना है।
14: इस कार की हालत देखी, चारों तरफ से हमला हुआ, पत्नी बच्चे चीख रहे होंगे, पति गाड़ी भगाते रहे कि किसी तरह इनसे बच जाए। आखिरकार ये पुलिस तक पहुंचे, उसके बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 3 लोग अभी फरार।
18: हमने 9 आरोपी अभी तक निष्पन्न किए हैं, जो कि एफआईआर में 6-7 आरोपी थे, बट इसमें जो शेल्टर देने वाले आरोपी है या फिर एसोसिएट्स है जिनको इन्होंने हेल्प किया था, वो भी हमने इसमें आरोपी किए हैं, और अभी तक हमने 9 आरोपी इसमें ताबे में लिया है। इस पे आगे की जो कार्रवाई है वो आगे की कार्रवाई चल रही है। पर्यटन को सुरक्षा ऑलरेडी दी हुई है, पर्यटन के वहां पे बंदोबस्त भी था, वो लोग भी वहां पे पुलिस को मिले। बस इस घटना में जो है, ये घटना कुछ 7-8 किलोमीटर दूर जाके जहां पे कोई मोबाइल लोकेशन नहीं आ रहा था उस पॉइंट पे हुई है।
14: ऐसे आरोपी हर पिकनिक स्पॉट के पास हर राज्य में मिलते हैं, जो कहीं तय दर से ज्यादा कीमत लेने को, कहीं भाषा को लेकर, कहीं संस्कृत को लेकर या तो विवाद करते हैं या छेड़खानी और मारपीट करते हैं। ये सोचते हैं कि ये लोकल है तो बाहर से छुट्टी मनाने आए लोगों पर हमला कर सकते हैं, उनको डरा सकते हैं। ये उन्हीं लोगों पर हमला करते हैं जिनके सैलानी बनकर आने से इनके और इनके इलाके के लोगों को रोजगार मिलता है। जरूरी है कि नासिक के दोषियों को ऐसी सजा मिले जिसे सुनकर देखकर बाकी जगहों पर ऐसी आपराधिक सोच वाले सिहर जाए, ताकि कोई परिवार, कोई आम आदमी किसी जगह छुट्टी मनाने जाने से पहले डरे नहीं।
0: पुलिस चाहे जहां की हो, आम आदमी पार्टी को केंद्र में रखने के दावे करती है। गाजियाबाद पुलिस का ध्येय भी सेवा, सुरक्षा और समर्पण है, जो नागरिकों के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेकिन अगर वाकई में ऐसा होता तो 22 वर्ष का एक नौजवान पिंक बूथ के बाहर तड़प कर नहीं मरता। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पिंक बूथ की महिला पुलिसकर्मियों ने राजकुमार की मदद करना तो छोड़िए, अपने बूथ का दरवाजा तक बंद कर लिया।
19: पुलिस कराते हुए मेरा बेटा का जान चल गया, किस लिए चल गया, किस चला गया, इतनी सी मेरा बेटा के हाथ कट गया, क्यों मेरा बेटा के जान चल गया।
14: 22 साल के बेटे को गंवाने वाली एक माँ का ये सवाल गाजियाबाद पुलिस से। मामला बहुत दुखद, क्योंकि पिंक बूथ के बाहर 40 मिनट तक एक नौजवान मदद के लिए तड़पता रहा। बार बार मदद की गुहार लगाने पर महिला पुलिस मदद को आगे नहीं आई, उल्टा पिंक बूथ का दरवाजा बंद कर लिया गया।
19: अंदर पुलिस लेडीज बैठ के देख रही है, मेरा लड़का ऐसे ऐसे तड़प रहा, लेकिन कोई नहीं उठाया। जब मेरा लड़का के दम टूट गया,
14: यकीन करना मुश्किल है कि गाजियाबाद में दिन दहाड़े एक नौजवान ज्यादा खून बहने से सबके सामने सड़क पर मर गया, वो भी पुलिस के पिंक बूथ के बाहर। राजकुमार को तड़पता देखकर भी महिला पुलिस कर्मियों का दिल नहीं पसीजा।
20: अच्छा, गिरा कहाँ था एग्जैक्टली? आप यहाँ पे गिरा पड़ा था,
21: ये है,
20: ये जो जगह है यहाँ पे ही गिरा पड़ा था।
21: हाँ जी, यहाँ से वो खून आया ना पूरा।
20: हाँ
21: हाँ हाँ, यही गिरा पड़ा
20: जी।
14: थानों में फरियादियों के साथ पुलिस के संवेदनहीन बर्ताव की शिकायत तो आपने सुनी हो, लेकिन गाजियाबाद में जो कुछ हुआ वो इंसानियत के मरने का भी सबूत देता है।
1: 40 मिनट तक राजकुमार यूं ही सड़क पर तड़पता रहा और तड़प तड़प कर उसने दम तोड़ दिया। गाजियाबाद पुलिस का इस मामले में शर्मनाक बयान आया है कि ऑटो चालक और राजकुमार दोनों नशे में थे, लेकिन गाजियाबाद पुलिस को यह जवाब देना होगा कि जब दोनों मदद के लिए पुलिस के पास गए तो पुलिस आखिर क्या कर रही थी।
2: वीडियो में दिख रहा है ये 22 साल का राजकुमार, जिसके शरीर का कतरा कतरा खून जमीन पर फैलता गया। इस नौजवान को दम तोड़ते हुए दर्जनों लोग देखते रहे। तमाशबीनों में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। तो पिंक बूथ के दरवाजे पर ये सब कुछ हुआ। जिन्हें लोगों की मदद करने के लिए ही तनख्वाह मिलती है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाना तो दूर दरवाजा बंद कर बैठी रहे, ताकि मरने वाले की कराहने की आवाज उन तक ना पहुंचे।
22: वो जब नीचे वहाँ, तो हमें किसी ने ये बताया कि वो नीचे पड़ा था, वो इशारे कर रहा था कि मेरे को बचाओ। वहाँ लेडीज पुलिस खड़ी थी, हमारे पास वीडियो है, वो लेडीज पुलिस खड़ी थी। मान लो आप प्रशासन हो, किस लिए हो? हमारी सेवा के लिए ना। जब आप ही नहीं करोगे, जस्ट यहाँ पर कुछ काम हो जाए।
23: आसपास जो दुकानें थी
22: जी,
23: वो लोग भी वीडियो बना रहे थे
22: जी,
23: मदद नहीं की,
22: किसी ने मदद नहीं की।
2: गाजियाबाद में रविवार की दोपहर ऑटो चलाने वाले राजकुमार का किराए को लेकर एक सवारी से झगड़ा होता है। उसने मदद के लिए पिंक बूथ का रुख किया, लेकिन वहां उसे मदद नहीं मिली।
19: मेरा लड़का चौकी में गया नाम दाखिल कराने, मेरा लड़का का चौकी में से बाहर धक्का मार के निकाल के दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद मेरा लड़का दीवार में हाथ मारा, तभी न खोले। उसके बाद मेरा लड़का शीशा पर हाथ मार दिया, मेरा लड़का के हाथ कट गया, खून निकलते निकलते मेरा लड़का वहीं बेहोश हो गया।
0: गाजियाबाद पुलिस से जब इस बारे में पूछा गया तो अजीबोगरीब जवाब पुलिस की तरफ से आया कि मरने वाला नौजवान ऑटो ड्राइवर नशे में था, जिससे उसकी लड़ाई हुई थी वो भी नशे में था। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने क्या दोनों को हिरासत में लेकर मेडिकल के लिए भेजा? पिंक बूथ पर तैनात पुलिसकर्मी कहाँ थे? घंटों तड़प तड़प कर एक व्यक्ति, एक नौजवान ने दम तोड़ दिया, तो पुलिस ने उसकी मदद क्यों नहीं की?
2: आप सोच रहे होंगे कि मरने वाले राजकुमार के हाथ से खून कैसे निकला, तो इस सवाल का जवाब ये कांच का दरवाजा है, जिसे जोर से खटखटाने की वजह से राजकुमार के हाथ पे चोट लग गई। वो बेसुध होकर बूथ के आगे गिर जाता है और ज्यादा खून निकलने से उसकी मौत हो जाती है।
24: पिंक बूथ है, यानी अगर कोई महिला मुसीबत में पड़ती है, वो अगर मदद के लिए आती है तो अंदर मौजूद पुलिसकर्मी उसकी मदद करेंगी, लेकिन अगर कोई और आता है तो उसे यहाँ पर जाहिर सी बात है तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। लेकिन रविवार को जो कुछ भी यहाँ पर हुआ, उस पर यकीन करना एक बार की मुश्किल है। दोपहर तकरीबन 3:30 के आसपास एक ऑटो आता है और सीधे अंदर घुस जाता है। आप देखिए, यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर ऑटो आ जाता है। ऑटो में कुल 3 लोग थे, एक ऑटो चला भी रहा था, तो करीब 4-5 लोग अंदर मौजूद थे। उनकी आपस में किसी बात पे लड़ाई हो रही थी, उनको शायद पिंक बूथ समझ में नहीं आया होगा, वो यहाँ पर लड़ने लगते हैं। जब यहाँ पर समझाया गया तो वो ऑटो लेके वापस बाहर की तरफ आते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं कुछ दूर। आगे आप जो चौराहा देख रहे हैं, इस चौराहे के पास पहुंचते हैं, ऑटो रुकता है, उनमें आपस में फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो ऑटो में ज्यादातर लोग थे वो चले जाते हैं, जबकि जो राजकुमार है, 22 साल उम्र है, पास में ही रहता था सिवान, वो वहीं सड़क पर लेट गया।
2: राजकुमार ने जब मदद की गुहार इस पिंक बूथ में लगाई, तब इसी तरह का माहौल हो गया। लेकिन जब राजकुमार की सुनवाई नहीं हुई तो उसने बूथ के कांच के गेट को खटखटाया और इसी दौरान उसकी नस कटने से खून बहने लगा। लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने मदद तो दूर पास के पुलिस स्टेशन से मदद कराने या एम्बुलेंस बुलाने तक की जहमत नहीं उठाई। दावा है कि जिससे राजकुमार की बाद में जान चली गई।
25: जो 100 नंबर कॉल थी परसों, वो किसने की थी?
26: वो तो ऑनलाइन करी, बेटे ने करी थी कि जब वो शीशे में हाथ हाथ मारा।
25: अच्छा, हाथ हाथ मारा जब शीशे में। कितनी देर तक वो बाहर पड़ा रहा? आपने
26: जो बताया, मैं था नहीं।
25: अच्छा, कितनी देर बाहर पड़ा?
26: और मैं रात को आया था, बहुत देर तक।
25: कितनी देर तक बाहर बॉडी पड़ी रही होगी?
26: पता नहीं।
2: अब आप सोचिए, पुलिस ने एम्बुलेंस तक बुलाने की कोशिश नहीं की, मतलब पिंक बूथ में मौजूद पुलिसकर्मियों ने अपने दरवाजे पर मदद की गुहार लगाते एक आम आदमी को न सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया, बल्कि उसकी आवाज कानों तक ना आए इसके लिए दरवाजा बंद कर लिया।
24: बताया जा रहा है कि वो शराब के नशे में था और जो बाकी लोग थे वो भी शराब के नशे में थे, वो वहीं 3-4 मिनट पड़ा रहा जैसा कि आई विटनेस हमें बताया, उसके बाद फिर वो वापस आता है और वापस वो आया तो अंदर की तरफ जब वो आया पुलिस चौकी में, तो हम आपको दिखाएं कि वो चौकी में दोबारा आता है और चौकी में जब वो दोबारा आता है तो सामने जो आप ये लोहे का गेट देख रहे हैं इसको बजाने लगा। ये जाहिर सी बात है ये तो बंद है, आप देखिए तब भी इस पे ताला लगा था। उसके बाद जब उसकी कंडीशन देखी तो जो अंदर महिला पुलिसकर्मी थी उन्होंने ये जो गेट है, आप ये गेट देखिए ये बन चुका है, तब ये गेट ये टूट गया था शीशे का।
4: आज तक को पता चला है कि आसपास के लोगों की शिकायत के बाद एक बाइक सवार पुलिसकर्मी आया, उसने राजकुमार को ऑटो में बैठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की लेकिन एक भी ऑटो नहीं रुका। इसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई जिसे आने में हुई देरी ने दावा है कि राजकुमार की जान ले ली।
5: एक ऑटो चालक द्वारा एक ऑटो सवारी को बिठाया गया, दोनों ही नशे की हालत में थे। पैसे के लेन देन को लेकर दोनों में आपस में वाद विवाद हुआ जिसके बाद दोनों ही पिंक बूथ पर पहुंचे और शराब के नशे की हालत में ऑटो सवारी ने तेज से पिंक बूथ के गेट पर हाथ मारा जिससे उसके हाथ में कांच गड़ गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।
4: यूपी पुलिस अक्सर एनकाउंटर वाले वीडियो दिखाकर अपराधियों को खबरदार करती है लेकिन गाजियाबाद की ये घटना बताती है कि यूपी पुलिस को सख्त बनने के साथ संवेदनशील बनने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर वो संवेदनशीलता होती तो 22 साल का नौजवान पिंक बूथ के बाहर तड़प कर दम नहीं तोड़ता। हिमांशु मिश्रा, गाजियाबाद आज तक।
0: राजस्थान की सबसे बड़ी चपरासी भर्ती में पीएचडी से लेकर एमबीए एमसीए तक के बेरोजगार युवाओं ने परीक्षा तो पास कर ली मगर नौकरी मिलने की जगह अब वो दूसरी परीक्षाओं में लग गए, जिसके कारण चपरासी भर्ती के असली अधिकारी प्रदर्शन को लाचार हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं लेकिन उन्हें खाली पद के बदले नौकरी देने वाला नियम लागू नहीं हो रहा।
4: क्या राजस्थान में सरकारी नौकरी बिना रुलाए नहीं दी जा सकती? सवाल सीधा सा है, वजह मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के घर के बाहर बैठे ये बेरोजगार जो चपरासी भर्ती परीक्षा में पास हुए लेकिन फिलहाल वेटिंग लिस्ट में। आप सोचेंगे वेटिंग लिस्ट में हैं तो प्रदर्शन क्यों? इसलिए पहले मुख्यमंत्री का बयान सुनिएगा।
6: राज्य सेवा के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे अधिकारी कर्मयोगी की भावना से रूल बेस्ड से रोल बेस्ड कार्यशैली की ओर अग्रसर होंगे। एक वर्ष के भीतर कर्मचारियों द्वारा पद त्यागने की स्थिति में उस पद की प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। एकल महिला कर्मचारी के लिए चाइल्ड केयर लीव 3 के स्थान पर 6 चरणों में स्वीकृत किया जाएगा।
4: मतलब समझिए, मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर किसी भर्ती में चयनित शख्स 1 साल के भीतर पद छोड़ देगा तो उसी भर्ती की वेटिंग लिस्ट से किसी और को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी चपरासी भर्ती में ये नियम लागू करने से मना कर दिया गया। अब जो 1-2 नंबर से वेटिंग लिस्ट में चले गए उनको लगता है कि जो मौका मिल सकता था वो भी छिन रहा है क्योंकि भर्ती नियम लागू होने से पहले की है।
7: जिस तरह से ये भर्ती में लोग ज्वाइन कर रहे हैं ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा खाली पद बच जाएंगे इस नौकरी में। सरकार ने 1 साल का वेटिंग का नियम भी बना दिया है मगर जिस नौकरी में जरूरत है इस नियम को लागू करने के लिए उसमें अधिकारी लागू नहीं कर पा रहे हैं।
4: डिप्रेशन की दवाइयां पॉलिथीन में लेकर बैठे रामपाल प्रजापति 40 साल के हो चुके, सितंबर में ओवर एज हो जाएंगे, चपरासी परीक्षा में आधे पॉइंट से फाइनल रिजल्ट में रह गए। ऐसे लोग डरे हुए, वेटिंग लिस्ट वालों को मौका नहीं देंगे तो रामपाल जैसे बेरोजगार टूट जाएंगे।
8: मेरी एज भी नहीं है सर, मैं कहाँ जाऊँगा, इसमें 1 ईयर वेटिंग रूल के लिए आए सर हम, ये हमें मिलना चाहिए, ये हमारा न्याय है और अपने न्याय के लिए हम हक मांग रहे हैं सर।
4: पॉलिटेक्निक की 2015 में पढ़ाई कर चुके भरतपुर के गौरव सिंह 30 साल के हो गए, हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, भर्ती की वेटिंग लिस्ट में है। शिव प्रकाश शर्मा 1 नंबर से फाइनल मेरिट से बाहर है, वेटिंग का नियम इस भर्ती में लागू हो जाए तभी इनको नौकरी मिल पाएगी।
9: ईडब्ल्यूएस से मेरे लगभग अभी मेरे से ऊपर लगभग 2000 बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस वाले।
10: क्या चाहते हो
9: सर? 1 ईयर वेटिंग नियम लागू हो जाए सर, प्रक्रियाधीन भर्तियों में सब में सर, पोर्तुगढ़ के साथ में भी सर, ये चाहते हैं सर बस।
4: दरअसल चपरासी भर्ती में पास होने वाले लोग टीचर भर्ती, LDC, प्राध्यापक भर्ती से लेकर वाहन चालक भर्ती तक में परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 25,000 से 30,000 पद खाली रह जाएंगे। अगर इसी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में वेटिंग लिस्ट में आए लोगों से पद भर लेंगे तो ना तो दोबारा भर्ती परीक्षा कराने का खर्च जनता पर आएगा ना ही भर्तियां लटकेंगी।
7: इसमें और भी नौकरियों को की तैयारी करने वाले लोग, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, PhD, MBA, MCA, ये सारे लोग आ गए और वो नौकरी पा लिए हैं, मगर कहा जा रहा है कि अभी भी ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, छुट्टियों पर जा रहे हैं बाकी भर्ती की तैयारियों के लिए। ऐसे में करीब 25,000 से 30,000 ये पद खाली रह सकते हैं और सरकार फिर से भर्ती निकालेगी और इन बच्चों के साथ जो पॉइंट से एक नंबर से रह गए हैं, बड़ा अन्याय हो जाएगा। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज

0: आज लखनऊ में सजेगा पंचायत, आज तक उत्तर प्रदेश का महामंच। मुख्यमंत्री योगी समेत राजनीतिक दिग्गज करेंगे शिरकत। विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष की आवाज। संसद सत्र की तैयारी के बीच गृह मंत्री अमित शाह से हाई प्रोफाइल मुलाकातों का सिलसिला जारी। यूपी के सीएम योगी के बाद अमित शाह से मिले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन के दोषी होने पर आप बीजेपी में ढली। सीएम रेखा ने आप पर संरक्षण का आरोप लगाया। कपिल मिश्रा ने किया कटाक्ष। ताहिर सिर्फ एक्टर, असली डायरेक्टर कोई और। बर्मिंघम वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से धोया। शुभमन गिल, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर की बदौलत मिली शानदार जीत। 3 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे। और 24 घंटों में ट्रंप का यूटर्न। हॉर्मुज में नहीं लगेगा 20% टैक्स, टैरिफ की जगह खाड़ी देश करेंगे अमेरिका में निवेश। ईरानी जहाजों की नाकेबंदी का ऐलान। एक तरफ श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जांच चल रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब श्री राम मंदिर के मामले पर पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया। एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट आज सौंप सकती है।
1: ऐसे पोस्टर्स यूपी के अलग अलग शहरों में लगाए गए हैं। एक पोस्टर में अखिलेश और मुलायम सिंह यादव हैं। इसमें लिखा है मुलायम सरकार की असलियत। दूसरे पोस्टर में अखिलेश, शिवपाल और राम गोपाल यादव की तस्वीरें हैं। इसमें लिखा गया है दिल में बाबर, मुंह में राम। ऐसे पोस्टर्स लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर और अयोध्या में लगाए गए हैं।
2: जैसे चुनाव नजदीक आएगा, सब पुराने बयान निकाले जाएंगे, प्रायर पोस्टर निकाले जाएंगे, सबके निकलेंगे।
1: इस सियासत से इतर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेजी से बढ़ रही है। खबर है कि मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाने वाले कुछ विशेष दानदाताओं के दान को ट्रस्ट वापस कर सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद दर्जनों दानदाताओं ने ट्रस्ट के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और अपने दान की चोरी या घोटाले का शक जाहिर किया था। कई श्रद्धालुओं का दावा था कि उनकी ओर से भेंट की गई वस्तुओं की रसीद नहीं दी गई। आरोप ये भी है कि उनकी दी गई भेंट राम मंदिर में प्रदर्शित या सुरक्षित नहीं रखी गई। अब इन वस्तुओं को लौटाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उधर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटा दिया गया है। खबर ये भी है कि चढ़ावा चोरी की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम जल्द ही अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। आज तक ब्यूरो।
0: अयोध्या में चढ़ावे चोरी का मामला सामने आते ही वक्फ के घोटाले का राजनीतिक शोर सुनाई पड़ने लगा। पहले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष बासित अली ने बहराइच के सालार गाजी दरगाह में घोटाले के आरोप लगाए। फिर मुख्यमंत्री योगी ने कई मंचों से वक्फ के घोटालों का उल्लेख किया। अब खुद मुस्लिम जमात के मौलाना रजवी ने वक्फ के घोटालों के आरोप लगाए।
3: क्या वक्फ बोर्ड में भी चल रही है धांधली? क्या वक्फ बोर्ड में भी हुआ है घोटाला? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर वक्फ के घोटालों की जांच करने की मांग की है
4: कि राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड का निकल करके सामने आएगा। वो लाखों का नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों का जो घोटाला है वो अरबों का घोटाला सामने निकल करके आएगा।
3: मौलाना रिजवी सीएम योगी के नाम लिखी चिट्ठी में दावा करते हैं कि वक्फ बोर्ड में सबसे ज्यादा लूट समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई।
4: जो वक्फ के जिम्मेदारान थे उन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को जो करोड़ों में थी उनको रेवड़ियों के भाव बेचा गया, वक्फ की संपत्ति को बर्बाद किया गया और ये सारी बर्बादी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई।
3: शहाबुद्दीन रिजवी अकेले शख्स नहीं है जो वक्फ में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं।
5: पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो हर जगह के ऊपर घपलेबाजी हो रही है पूरी तरीके से।
3: समाजवादी पार्टी पर यह आरोप खुद सीएम योगी अपनी सार्वजनिक रैलियों और कार्यक्रमों में लगाते रहे हैं। जब राम मंदिर का मुद्दा सामने आया तो सीएम ने फिर से वक्फ घोटाले का जिक्र किया था।
6: अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वफ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई।
3: सियासी आरोप एक तरफ, लेकिन आरोपों की जांच दूसरी तरफ। शिया वक्फ बोर्ड से जुड़े इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दिया जाए तो यूपी में किसी वक्फ घोटाले की सघन जांच अभी तक नहीं हो सकी है।
7: दूसरे स्थानों पे या दूसरे धर्म स्थल पे कहीं अगर कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से वहाँ सुधार होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन बयानबाजी नहीं। अगर कोई सबूत किसी के पास है, एविडेंस है, तो वो सामने लाना चाहिए।
8: वफ के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पहले हुआ करता था। वफ की जमीनों को औने पौने दामों पर कब्ज हो जाते थे, किराए पे देते थे और उसके धन का दोहन होता था। वफ जिस भावना से किया जाता उस भावना का तिरस्कार होता था। लेकिन आज सरकार के प्रयासों के बाद हम वफ की संपत्तियों को रेगुलराइज करने का काम कर रहे हैं।
3: यूपी और देश में वफ की संपत्तियों के घोटालों के आरोप शुरू से लगते रहे हैं और उसे दूर करने के लिए ही सरकार ने वफ संशोधन कानून भी बनाया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि नए कानून के तहत बने वफ बोर्ड अब वफ संपत्तियों का उचित रखरखाव कर पाएंगे। बरेली से कृष्ण गोपाल राज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: दिल्ली दंगे में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से दिल्ली की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा।
3: 6 साल पहले दिल्ली में हुए दंगे को लेकर दिल्ली की अदालत ने जो फैसला सुनाया, अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन दोषी पाए गए हैं। वहीं ताहिर के अलावा 4 और आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
9: क्या अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी इस बात का जवाब देंगे कि दिल्ली में दंगे भड़काने जैसे कितने और कृत्य उन्होंने किए हैं?
3: आपको बता दें कि 26 फरवरी 2020 को खजूरी खास नाले से अंकित शर्मा का शव मिला था। उनके पिता ने ताहिर हुसैन समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। तमाम गवाहों की पेशी, सबूतों और सुनवाई के बाद अदालत का फैसला दिल्ली के सामने है। जहां तक ताहिर हुसैन का सवाल है तो खबर है कि कोर्ट की सुनवाई के दौरान वो फूट फूट कर रोने लगा। ताहिर की माने तो वो बेकसूर है, उसे फंसाया गया है।
10: ताहिर जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए।
3: हिंसा में नाम आने के बाद ताहिर हुसैन से केजरीवाल ने किनारा कर लिया था। आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने गले लगा लिया।
11: 2020 में जो दंगे हुए, आज ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन और ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोगों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू जो वहाँ पे रहने वाला हिंदू समाज है उनको मारने की साजिश थी। और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए, नौजवान बेगुनाह अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर, जिनको कई बार चाकुओं से गोदा गया और बाद में उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया।
12: कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का सेशन से आया है, तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा, क्या नहीं रहा।
13: लेकिन उसका नाम ताहिर है, ये बड़ी चीज है। अगर उसका नाम कपिल होता वो भी परी हो जाता।
3: दिल्ली दंगे को लेकर एआईएम सवाल उठाती रही है कि जिस दंगे में 53 लोगों की हत्या हुई उसमें 6 साल बाद भी सिर्फ एक हत्या के केस में दोषियों की पहचान क्यों हो पाई है। आखिर वो कैसी जांच थी जिसमें इसी दंगे में मारे गए हाशिम अली की हत्या के 12 और अनवर हत्याकांड के 5 आरोपी बरी हो जाते हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: राजस्थान की सबसे बड़ी चपरासी भर्ती में पीएचडी से लेकर एमबीए एमसीए तक के बेरोजगार युवाओं ने परीक्षा तो पास कर ली मगर नौकरी मिलने की जगह अब वो दूसरी परीक्षाओं में लग गए, जिसके कारण चपरासी भर्ती के असली अधिकारी प्रदर्शन को लाचार हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, लेकिन उन्हें खाली पद के बदले नौकरी देने वाला नियम लागू नहीं हो रहा।
14: क्या राजस्थान में सरकारी नौकरी बिना रुलाए नहीं दी जा सकती? सवाल सीधा सा है, वजह मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के घर के बाहर बैठे ये बेरोजगार जो चपरासी भर्ती परीक्षा में पास हुए लेकिन फिलहाल वेटिंग लिस्ट में। आप सोचेंगे वेटिंग लिस्ट में हैं तो प्रदर्शन क्यों? इसलिए पहले मुख्यमंत्री का बयान सुनिएगा।
15: राज्य सेवा के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे अधिकारी कर्मयोगी की भावना से रूल बेस्ड से रोल बेस्ड कार्यशैली की ओर अग्रसर होंगे। एक वर्ष के भीतर कर्मचारियों द्वारा पद त्यागने की स्थिति में उस पद की प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। एकल महिला कर्मचारी के लिए चाइल्ड केयर लीव 3 के स्थान पर 6 चरणों में स्वीकृत किया जाएगा।
14: मतलब समझिए, मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर किसी भर्ती में चयनित शख्स 1 साल के भीतर पद छोड़ देगा तो उसी भर्ती की वेटिंग लिस्ट से किसी और को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी चपरासी भर्ती में ये नियम लागू करने से मना कर दिया गया। अब जो 1-2 नंबर से वेटिंग लिस्ट में चले गए उनको लगता है कि जो मौका मिल सकता था वो भी छिन रहा है, क्योंकि भर्ती नियम लागू होने से पहले की है।
16: जिस तरह से ये भर्ती में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा खाली पद बच जाएंगे इस नौकरी में। सरकार ने 1 साल का वेटिंग का नियम भी बना दिया है, मगर जिस नौकरी में जरूरत है इस नियम को लागू करने के लिए उसमें अधिकारी लागू नहीं कर पा रहे हैं।
14: डिप्रेशन की दवाइयां पॉलिथीन में लेकर बैठे रामपाल प्रजापति 40 साल के हो चुके, सितंबर में ओवर एज हो जाएंगे, चपरासी परीक्षा में आधे पॉइंट से फाइनल रिजल्ट में रह गए। ऐसे लोग डरे हुए हैं, वेटिंग लिस्ट वालों को मौका नहीं देंगे तो रामपाल जैसे बेरोजगार टूट जाएंगे।
17: मेरी एज भी नहीं है सर, मैं कहाँ जाऊंगा, इसमें 1 ईयर वेटिंग रूल के लिए आए सर हम, ये हमें मिलना चाहिए, ये हमारा न्याय है, अपने न्याय के लिए हम हक मांग रहे हैं सर।
14: पॉलिटेक्निक की 2015 में पढ़ाई कर चुके भरतपुर के गौरव सिंह 30 साल के होगा, हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, भर्ती की वेटिंग लिस्ट में है। शिव प्रकाश शर्मा 1 नंबर से फाइनल मेरिट से बाहर है, वेटिंग का नियम इस भर्ती में लागू हो जाए तभी इनको नौकरी मिल पाएगी।
18: ईडब्ल्यूएस से मेरे लगभग अभी मेरे से ऊपर लगभग 2000 बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस वाले।
19: क्या चाहते हो
18: सर? 1 ईयर वेटिंग नियम लागू हो जाए सर, प्रक्रिया दिन भर्तियों में सब में सर, पोर्टिगेट के साथ में भी, ये चाहते हैं सर बस।
14: दरअसल चपरासी भर्ती में पास होने वाले लोग टीचर भर्ती, LDC, प्राध्यापक भर्ती से लेकर वाहन चालक भर्ती तक में परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 25,000 से 30,000 पद खाली रह जाएंगे। अगर इसी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में वेटिंग लिस्ट में आए लोगों से पद भर लेंगे तो ना तो दोबारा भर्ती परीक्षा कराने का खर्च जनता पर आएगा, ना ही भर्तियां लटकेंगी।
16: इसमें और भी नौकरियों को की तैयारी करने वाले लोग, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग, PhD, MBA, MCA, ये सारे लोग आ गए और वो नौकरी पा लिए हैं, मगर कहा जा रहा है कि अभी भी ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, छुट्टियों पर जा रहे हैं बाकी भर्ती की तैयारियों के लिए। ऐसे में करीब 25,000 से 30,000 ये पद खाली रह सकते हैं और सरकार फिर से भर्ती निकालेगी और इन बच्चों के साथ जो पॉइंट से 1 नंबर से रह गए हैं बड़ा अन्याय हो जाएगा। कैमरामैन की शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: हमारे देश में जून में तो बारिश हुई नहीं, जुलाई आया तो पहले सप्ताह जमकर बारिश हुई, लगा कि जून का डेफिसिट भी जुलाई की बारिश खत्म कर दी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे फिर से सूखा पड़ गया। 5 दिन से अधिक का वक्त हो चुका है भारत में, हमारे देश में एक बड़े हिस्से में पानी की एक बूंद नहीं गिरी। सवाल ये कि ऐसा क्यों हो रहा है और इससे आगे कितना नुकसान होगा, मौसम क्यों बदल रहा है।

0: पड़ने वाला है। मॉनसून पर लगा ये ब्रेक फसलों के लिए कितना नुकसानदायक है। पिछले हफ्ते हुई ये शानदार बारिश बता रही थी कि देर से ही सही, लेकिन मॉनसून जब आया तो झूम कर बरसा। किसानों को लगा कि उनकी फसलों की बंपर पैदावार होगी, लेकिन दो दिन में ही ये चिलचिलाती धूप निकल आई। भीषण गर्मी के साथ उमस, ऐसा लगता है कि जैसे मई जून फिर से लौट आया हो। सवाल है कि बारिश अचानक से कहां चली गई, मॉनसून पर ये ब्रेक क्यों लगा। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून में बारिश अक्सर स्पेल में यानी कि अलग अलग अवधि में होती है। 2 जुलाई से 9 जुलाई तक अच्छी वर्षा हुई, फिर ब्रेक हो गया। वजह यह है कि जब मॉनसून साउथ में रहता है तो भारत के मैदानी क्षेत्रों में अच्छी बारिश होती है, फिर मॉनसून पहाड़ों की तरफ खिसकता है तो बारिश रुक जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी यही स्थिति है। अब सवाल है कि आगे बारिश कब होगी, तो मौसम विभाग बता रहा है कि अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 19 जुलाई से दोबारा उत्तर पश्चिम भारत यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश की पूरी संभावना है।
1: क्या ये सिस्टम मतलब साइक्लिक है या कोई असाधारण घटना है?
2: नहीं, कोई असाधारण घटना नहीं है कि जैसे कि मॉनसून जब ट्रफ हमारा नॉर्मल या उसके साउथ में रहता है तो भारत के मैदानी क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा देखने को मिलती रहती है, और जैसे जैसे ये नॉर्थ की तरफ जाता है यानी फुटहिल्स की तरफ जाता है, अभी आज की अगर स्थिति बात करूं मैं 14 जुलाई की, तो जो मॉनसून ट्रफ का जो पश्चिमी सिरा है वो अभी जम्मू से स्टार्ट होकर के जम्मू देन देहरादून बाराबंकी से होकर के और ईस्ट सेंट्रल व्यू ऑफ बंगाल में जा रहा है, यानी कि मॉनसून ट्रफ का जो पश्चिमी सिरा है वो अपनी सामान्य स्थिति काफ़ी ऊपर फुटहिल्स में है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जो तराई बेल्ट है जैसे नदन पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये सब पॉकेट्स में वर्षा मिल रही है।
0: लेकिन सवाल है कि इससे नुकसान कितना हुआ, अब इसे भी समझिए। जून में बारिश का 40% का डेफिसिट था, फिर जुलाई के पहले हफ्ते में अच्छी बारिश हुई तो ये डेफिसिट घटकर अब 19% रह गया, यानी 21% की रिकवरी हुई है। ये उम्मीद थी कि जुलाई में ठीक ठाक बारिश होगी तो ये पूरा डेफिसिट कवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सवाल है कि कहीं ये पूरा डेफिसिट बढ़ता ना चला जाए, क्योंकि बारिश कम होने का मतलब है कि सब कुछ कम होना। ये पूरा का पूरा दुष्चक्र है जो सबको प्रभावित करता है, और एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इसका लंबा असर देश की जीडीपी पर पड़ सकता है। ये समझने से पहले आप ये जानिए कि कैसे कम बारिश फसलों पर असर डाल रही है। आमतौर पर जुलाई से सितंबर के सीजन में खरीफ की फसल 1104 लाख हेक्टेयर में बोई जाती है। 2025 में 10 जुलाई तक 632 लाख हेक्टेयर पर फसल की बुआई हुई थी, जो 2026 में 16% घटकर सिर्फ 531 लाख हेक्टेयर रह गई। सबसे ज्यादा असर हुआ है दलहनों पर। 2025 की तुलना में किसानों ने दालों की 23% कम बुआई की है। इसी तरह से मोटे अनाज की 22% कम, तिलहन की 21% कम, कपास की 15% कम और धान की 9% कम बुआई हुई है। ये सारी वो फसलें हैं जिनमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और पानी बरस ही नहीं रहा तो किसान इन फसलों की बुआई ही नहीं कर पाए। सरकार खुद किसानों को सलाह दे रही है कि किसान अब कम अवधि वाली फसलों को प्राथमिकता दें।
3: अभी जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है, अब बोनी और तेजी से होगी। पिछले साल इस समय तक 442,80,000 हेक्टेयर में बोनी हुई थी, सोइंग हुई थी, लेकिन कल तक 350,85,000 हेक्टेयर में बोनी हुई है। इसका मतलब 91.95 लाख हेक्टर में बुआई अभी कम हुई है, लेकिन उम्मीद यह है कि इस अच्छी वर्षा के कारण अब बोनी का क्षेत्र तेजी से बढ़ेगा। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है।
0: सरकार के किसानों को दी गई ये राय बता रही है कि हालात ठीक नहीं है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इसका सीधा असर

0: देश के जीडीपी पर पड़ सकता है। अगर मॉनसून में ठीक से बारिश नहीं हुई तो महंगाई भी बढ़ सकती है।
1: अगर आपके पास मॉनसून रेनफॉल कम होता है तो नेचुरली हमारी राइस फील्ड, देन मेज, मक्का और ये जो और तीन चार दलहन है, सब पे इनका प्रभाव पड़ेगा। और इनका प्रोडक्शन अगर कम होगा तो नेचुरली जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी पे आप लोगों को जैसे अंदाजा है कि करीब 17-18% जीडीपी हमारे एग्रीकल्चर से आता है और 47% के करीब वर्क फोर्स इसके ऊपर डिपेंडेंस है। तो इन चीजों को ध्यान में रखे अगर हम देखें, और अगर जो महंगाई बढ़ेगी वो करीब 4-5% के करीब बढ़ सकती है, तो इससे लंबा एक चेन रिएक्शन शुरू होगी।
0: यानी मॉनसून में कम बारिश बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। बारिश कम होने का मतलब है फसल कम, मतलब तिलहन और दलहन आयात करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये कम वर्षा अल नीनो की वजह से हो रही है? अल नीनो के साथ आपको एक और टर्म समझना होगा, इंडियन ओशन डाइपोल यानी आईओडी। दरअसल दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर इस समय प्रशांत महासागर में बन रहे अल नीनो सिस्टम और इंडियन ओशन डाइपोल यानी आईओडी पर है। अल नीनो यानी पूर्व में प्रशांत महासागर की सतह से गर्म चलने वाली हवाओं के चक्र से दुनिया भर के मौसम पर होने वाले असर और इंडियन ओशन डाइपोल की स्थिति ये तय करेगी कि भारत में मॉनसून कैसा होगा। वैज्ञानिक कह चुके हैं कि प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसका असर एशिया प्रायद्वीप में सितंबर महीने के बाद दिखना शुरू हो सकता है। लेकिन हिंद महासागर में आईओडी की स्थिति क्या होगी, इस पर स्पष्टता आने में अभी महीने भर का समय और लग सकता है।
2: प्रशांत महासागर की सतह जब गर्म होगी तो हवाएं वो पश्चिम की ओर आएंगी, जो ट्रोपोस्फीयर में एक इक्वेशन बनेगा, लेकिन उसके साथ उसका असर पड़ेगा भारत के मानसून पर भी। लेकिन नजर इस बात की है कि क्या इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव होगा या नकारात्मक होगा। दरअसल सैटेलाइट की तस्वीर अगर हम देखें, और मौसम विभाग ये मान रहा है कि अभी तक जो इंडियन ओशन डायपोल है वो न्यूट्रल है। अब अगर भारत से नीचे आते हैं और इसी से थोड़ा और जब नीचे आएंगे तो इथोपिया या अफ्रीका के पास, दरअसल हम देखते हैं अफ्रीका के पास नोटिस करते हैं यहीं से इंडियन ओशन डायपोल को, तो ये दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका के पास, और इसी के साथ साथ कि यहां की सतह क्या गर्म है, और उसी के साथ दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया के पास क्या यहां जो समंदर हिंद महासागर उसकी सतह ठंडी है। अगर ऐसी स्थिति पाई जाती और पॉजिटिव होता है तो वो प्रशांत की ओर से आने वाली इन गर्म हवाओं को निष्क्रिय कर देगी और पॉजिटिव आईओडी की स्थिति में बारिश तेज होगी। लेकिन चिंता इस बात की है कि अभी तक इंडियन ओशन डायपोल बिल्कुल न्यूट्रल है, और जब तक वो पॉजिटिव नहीं होता तो 1997 या 2023 की स्थिति नहीं बनती, और ऐसे में एल नीनो का असर अगस्त के बाद से भारत के मौसम पर डालेगा। न सिर्फ बरसात कम होगी बल्कि उसका असर देश की खेती पर भी पड़ेगा।
0: एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि देश को अल नीनो के प्रभाव के लिए तैयार रहना चाहिए। भले ही उसका असर सितंबर के बाद महसूस किया जाएगा, लेकिन अगर अल नीनो आया तो फिर सूखा ही सूखा है। एक्सपर्ट पूरी तैयारी करने को कह रहे हैं।
3: IMD forecasts will keep coming along the way for days to weeks, and government will use it and private sector will use it for making decisions, kind of crisis management, as well as food, energy, water, etc. So we have to just deal with it as it comes, prepare for the worst, hope for the best, but rely on skillful early warnings to manage resources, disasters, and protect lives, livelihoods, properties, businesses, etc. That's the deal this year.
0: Ashutosh Mishra, Delhi, Aaj Tak.
4: जुलाई से सितंबर तक का सीजन किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह सीजन खरीफ का है, यानी कि दलहन और तिलहन इसी सीजन में बोई जाती है, धान बोई जाती है। लेकिन खराब मॉनसून, कम बारिश के कारण किसानों की परेशानी बहुत बढ़ गई। वो अपनी फसलों की बुआई तक नहीं कर पा रहे। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों की स्थिति सबसे अधिक खराब है, क्योंकि इनकी 80-85% खेती मॉनसून पर निर्भर है।
0: विदर्भ का किसान इस समय तिहरी मार झेल रहा है। पहले मॉनसून देर से आया, फिर कई किसानों को सोयाबीन के बीजों का अंकुरण नहीं होने के कारण दोबारा बुआई करनी पड़ी, और अब पिछले 6 दिनों से बारिश थमने के कारण खेतों में खड़ी फसल सूखने लगी है। विदर्भ की 80-85% खेती आज भी सिर्फ मॉनसून पर निर्भर है। ऐसे में किसान खेतों में गुड़ाई कर बची हुई नमी फसलों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं।
5: करीबन 1.5 लाख रुपए अब कैसा भरेंगे, अब जो भी होगा बैंक देखेंगे। हर राशि में लगाएंगे खेत, और इसके और कुछ कर सकते नहीं हम, क्या करेंगे? हमने कर्जा जो लिए काय के लिए लिए, फसल के लिए, फसल ही नहीं रही तो पैसे भरेंगे क्या कहाँ से? अभी समझ लो 8-10 दिन पानी नहीं आया तो ट्रैक्टर डालो, खेत काला करके मोकला करो, इसके इसके अलावा कुछ कर सकते नहीं हम।
6: मजूर के भाव बढ़ गए, अब खाद के भाव बढ़ गए, बीज के भाव बढ़ गए, तो कितना पैसा लगाना, जितना पैसा रहता सोना नाना सब बैंक पे रखना पड़ता, कर्जा लेना पड़ता, फसल आने के बाद में वापिस दे देते, अब ये आया ही नहीं तो कैसा करेंगे हम।
0: इस साल विदर्भ में मॉनसून की शुरुआत देर से हुई। शुरुआती बारिश के बाद किसानों ने बड़े पैमाने पर सोयाबीन, कपास, धान और तुअर की बुआई की, लेकिन सामान्य के मुकाबले अब तक अपेक्षित बारिश का केवल 70-75% हिस्सा ही दर्ज हो पाया है, जिससे बारिश का बैकलॉग बना हुआ है। पिछले 6 दिनों से बारिश लगभग थम सी गई है।
7: ज्यादा अगर फसल विदर्भ में होती है तो वो है कॉटन की, कपास की। अब वो भी फसल देखिए आप किस तरह से, यहाँ पर एक एक पत्ता जो है उसका पानी नहीं होने के चलते जो है पीला पड़ते जा रहा है, तो कहीं जलते नजर आ रहा है। ये पूरी हकीकत जो है ये विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों की है। लगभग विदर्भ में जिस तरीके से सरकारी आंकड़े के मुताबिक जो है वो यहाँ पर जिस तरीके से हर साल बारिश होनी थी उससे कम हुई है, तो लगभग विदर्भ के पूरे क्षेत्र में लगभग 75% ही बुआई हुई है, जो पिछले साल के मुताबिक यानी पिछले साल लगभग 99% बुआई हुई थी, लेकिन इस वक्त बुआई इसलिए कम हुई है कि बारिश ही ठीक ठाक नहीं है। पश्चिम विदर्भ में कुछ इलाकों में मानो अकोला या उसके लगभग जो है वो अमरावती है, यवतमाल है, बुलढाणा है, वहां तो ठीक ठाक बारिश जरूर नजर आ रही है, लेकिन वो कुछ ही इलाकों में है, चंद इलाकों में है।
0: मराठवाड़ा में इस साल मॉनसून की बेरुखी के कारण किसानों पर दोबारा बुआई का भारी संकट मंडरा रहा है। इसी आर्थिक और मानसिक तनाव के चलते बीड जिले के एक किसान ने आत्महत्या कर ली। गेवराई तहसील के रानमला गांव के 25 साल के युवा किसान मुकुंद गंगाराम हिंगे ने रविवार को अपने घर में फांसी लगा दी। इस साल बारिश न होने से फसलें बर्बाद हो गई, जिससे कर्ज चुकाने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
8: पाऊस पानी नहीं, आज विहिरीत पानी नहीं, बोरला पानी नहीं, ऊस जळून गेलाय आणि त्याला त्याच्याकडे कर्जाचा डोंगर झाल्यामुळं त्यांना निराश झाला आणि निराश होऊन त्यांना आत्महत्या केली।
0: बीड जिले में इस साल बारिश की स्थिति बेहद चिंताजनक है। जुलाई का आधा महीना बीत जाने के बाद भी जिले में केवल 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जिले में कुल 8 लाख हेक्टेयर बुआई के लायक क्षेत्र है, लेकिन पानी की कमी के कारण अब तक केवल 4 लाख हेक्टेयर पर ही किसी तरह बुआई हो सकी है। जिन किसानों ने शुरुआती हल्की बारिश पर बुआई की थी उनकी फसलें अब सूख चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में भी मॉनसून की रफ्तार थम सी गई है। जून लगभग सूखा गुजर गया और जुलाई में भी बारिश उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा असर अब किसानों पर दिख रहा है। बेमेतरा और राजनांदगांव जैसे कृषि प्रधान जिलों में खेत तैयार हैं, लेकिन पानी नहीं है, कहीं बुआई नहीं हो पा रही तो कहीं अंकुर निकलने के बाद फसल सूखने लगी है। किसान अब आसमान की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं।
9: इस बार मौसम की बेरुखी से सबसे ज्यादा परेशानी अगर हो रही है तो किसानों को हो रही है, हम लोगों को हो रही है। मैं जान सकता हूं कि क्या स्थिति है। अब आप देखिए कि मेरे पूरे खेत की जुताई हो चुकी है, पूरा खेत तैयार है, मैं सिर्फ पानी का इंतजार कर रहा था कि पानी गिरे तो अपनी फसलों को जो लगाऊं रोपाई करूं। सबसे पहले चीज थी कि हमने ये उम्मीद थी कि इस बार बरसात अच्छी होगी, हालांकि सरकार जो वैज्ञानिक है वो कह रहे थे बरसात कम होगी, लेकिन उम्मीद थी कि बरसात अच्छी होगी इसीलिए हम तैयारी की। लेकिन क्या करें, उम्मीद में हम अपने खेतों की जुताई कर चुके हैं तो हम सीधा सीधा श्री पद्धति से, जो वैज्ञानिक पद्धति होता है श्री पद्धति, उससे हम उनारी कर रहे हैं ताकि अगर पानी गिरे तो हमारी फसल कुछ तो हो जाए, इसी उम्मीद से हम लोग अभी फसल को लगा रहे हैं।
0: बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता सिर्फ फसल तक सीमित नहीं है। कई किसानों ने खाद और बीज खरीदने के लिए कर्ज लिया है। उन्हें दोबारा बुआई की आशंका और आर्थिक नुकसान दोनों का डर सता रहा है। इसीलिए किसान सरकार से फसल नुकसान का सर्वे, उचित मुआवजा और फसल बीमा के दावों का जल्द निपटारा करने की मांग कर रहे हैं।
10: मानसून देखा है तो पिछले एक हफ्ते सक्रिय रहा है, लेकिन पिछले 4-5 दिन से देखा है तो कोई खास सिस्टम नहीं है और मानसून ट्रफ भी है जो उत्तर को और पोजिशन है, जिसकी वजह से प्रदेश पिछले 2 दिन से शुष्क रहा। लेकिन आज का स्थिति में देखा है तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो हेड बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ है, जिस प्रभाव से आज और कल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के चांस है। पूर्वी इलाकों में एक दो स्थानों पर मध्य से लेके भारी वर्षा भी होने की संभावना है।
0: आज तक ब्यूरो।
4: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज

आज लखनऊ में सजेगा पंचायत, आज तक उत्तर प्रदेश का महामंच। मुख्यमंत्री योगी समेत राजनीतिक दिग्गज करेंगे शिरकत। विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष की आवाज। संसद सत्र की तैयारी के बीच गृह मंत्री अमित शाह से हाई प्रोफाइल मुलाकातों का सिलसिला जारी। यूपी के सीएम योगी के बाद अमित शाह से मिले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन के दोषी होने पर आप बीजेपी में ढली। सीएम रेखा ने आप पर संरक्षण का आरोप लगाया। कपिल मिश्रा ने किया कटाक्ष। ताहिर सिर्फ एक्टर, असली डायरेक्टर कोई और। बर्मिंघम वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से धोया। शुभमन गिल, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर की बदौलत मिली शानदार जीत। 3 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे। और 24 घंटों में ट्रंप का यूटर्न। हॉर्मुज में नहीं लगेगा 20% टैक्स, टैरिफ की जगह खाड़ी देश करेंगे अमेरिका में निवेश। ईरानी जहाजों की नाकेबंदी का ऐलान।

0: एक तरफ श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जांच चल रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब श्री राम मंदिर के मामले पर पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया। एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट आज सौंप सकती है।
1: ऐसे पोस्टर्स यूपी के अलग अलग शहरों में लगाए गए हैं। एक पोस्टर में अखिलेश और मुलायम सिंह यादव हैं, इसमें लिखा है मुलायम सरकार की असलियत। दूसरे पोस्टर में अखिलेश शिवपाल और राम गोपाल यादव की तस्वीरें हैं, इसमें लिखा गया है दिल में बाबर मुंह में राम। ऐसे पोस्टर्स लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर और अयोध्या में लगाए गए हैं।
2: जैसे चुनाव नजदीक आएगा सब पुराने बयान निकाले जाएंगे, पुराने पोस्टर निकाले जाएंगे, सबके निकलेंगे।
1: इस सियासत से इतर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेजी से बढ़ रही है। खबर है कि मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाने वाले कुछ विशेष दानदाताओं के दान को ट्रस्ट वापस कर सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद दर्जनों दानदाताओं ने ट्रस्ट के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और अपने दान की चोरी या घोटाले का शक जाहिर किया था। कई श्रद्धालुओं का दावा था कि उनकी ओर से भेंट की गई वस्तुओं की रसीद नहीं दी गई। आरोप ये भी है कि उनकी दी गई भेंट राम मंदिर में प्रदर्शित या सुरक्षित नहीं रखी गई। अब इन वस्तुओं को लौटाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उधर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटा दिया गया है। खबर ये भी है कि चढ़ावा चोरी की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम जल्द ही अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। आज तक ब्यूरो।
0: अयोध्या में चढ़ावे चोरी का मामला सामने आते ही वक्फ के घोटाले का राजनीतिक शोर सुनाई पड़ने लगा। पहले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष बासित अली ने बहराइच के सालार गाजी दरगाह में घोटाले के आरोप लगाए, फिर मुख्यमंत्री योगी ने कई मंचों से वक्फ के घोटालों का उल्लेख किया, अब खुद मुस्लिम जमात के मौलाना रजवी ने वक्फ के घोटालों के आरोप लगाए।
3: क्या वक्फ बोर्ड में भी चल रही है धांधली? क्या वक्फ बोर्ड में भी हुआ है घोटाला? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर वक्फ के घोटालों की जांच करने की मांग की है
4: कि राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड का निकल करके सामने आएगा। वो लाखों का नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों का जो घोटाला है वो अरबों का घोटाला सामने निकल करके आएगा।
3: मौलाना रिजवी सीएम योगी के नाम लिखी चिट्ठी में दावा करते हैं कि वक्फ बोर्ड में सबसे ज्यादा लूट समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई।
4: जो वक्फ के जिम्मेदारान थे उन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को जो करोड़ों में थी उनको रेवड़ियों के भाव बेचा गया, वक्फ की संपत्ति को बर्बाद किया गया और ये सारी बर्बादी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई।
3: शहाबुद्दीन रिजवी अकेले शख्स नहीं है जो वक्फ में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं।
5: पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो हर जगह के ऊपर घपलेबाजी हो रही है पूरी तरीके से।
3: समाजवादी पार्टी पर यह आरोप खुद सीएम योगी अपनी सार्वजनिक रैलियों और कार्यक्रमों में लगाते रहे हैं। जब राम मंदिर का मुद्दा सामने आया तो सीएम ने फिर से वक्फ घोटाले का जिक्र किया था।
6: अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई।
3: सियासी आरोप एक तरफ लेकिन आरोपों की जांच दूसरी तरफ। शिया वक्फ बोर्ड से जुड़े इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दिया जाए तो यूपी में किसी वक्फ घोटाले की सघन जांच अभी तक नहीं हो सकी है।
7: दूसरे स्थानों पे या दूसरे धर्म स्थल पे कहीं अगर कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से वहां सुधार होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन बयानबाजी नहीं। अगर कोई सबूत किसी के पास है, एविडेंस है तो वो सामने लाना चाहिए।
8: वक्फ के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पहले हुआ करता था। वक्फ की जमीनों को औने पौने दामों पर कब्ज हो जाते थे, किराए पे देते थे और उसके धन का दोहन होता था। वक्फ जिस भावना से किया जाता उस भावना का तिरस्कार होता था। लेकिन आज सरकार के प्रयासों के बाद हम वक्फ की संपत्तियों को रेगुलराइज करने का काम कर रहे हैं।
3: यूपी और देश में वक्फ की संपत्तियों के घोटालों के आरोप शुरू से लगते रहे हैं और उसे दूर करने के लिए ही सरकार ने वक्फ संशोधन कानून भी बनाया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि नए कानून के तहत बने वक्फ बोर्ड अब वक्फ संपत्तियों का उचित रखरखाव कर पाएंगे। बरेली से कृष्ण गोपाल राज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: दिल्ली दंगे में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से दिल्ली की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा।
3: 6 साल पहले दिल्ली में हुए दंगे को लेकर दिल्ली की अदालत ने जो फैसला सुनाया, अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन दोषी पाए गए हैं। वहीं ताहिर के अलावा 4 और आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
9: क्या अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी इस बात का जवाब देंगे कि दिल्ली में दंगे भड़काने जैसे कितने और कृत्य उन्होंने किए हैं?
3: आपको बता दें कि 26 फरवरी 2020 को खजूरी खास नाले से अंकित शर्मा का शव मिला था। उनके पिता ने ताहिर हुसैन समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। तमाम गवाहों की पेशी, सबूतों और सुनवाई के बाद अदालत का फैसला दिल्ली के सामने है। जहां तक ताहिर हुसैन का सवाल है तो खबर है कि कोर्ट की सुनवाई के दौरान वो फूट फूट कर रोने लगा। ताहिर की माने तो वो बेकसूर है, उसे फंसाया गया है।
10: ताहिर जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए।
3: हिंसा में नाम आने के बाद ताहिर हुसैन से केजरीवाल ने किनारा कर लिया था। आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने गले लगा लिया।
11: 2020 में जो दंगे हुए, आज ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन और ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोगों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू जो वहाँ पर रहने वाला हिंदू समाज है उनको मारने की साजिश थी। और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए, नौजवान बेगुनाह अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर, जिनको कई बार चाकुओं से गोदा गया और बाद में उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया।
12: कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का सेशन से आया है, तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा, क्या नहीं रहा।
13: लेकिन उसका नाम ताहिर है, ये बड़ी चीज है। अगर उसका नाम कपिल होता वो भी परी हो जाता।
3: दिल्ली दंगे को लेकर एआईएम सवाल उठाती रही है कि जिस दंगे में 53 लोगों की हत्या हुई, उसमें 6 साल बाद भी सिर्फ एक हत्या के केस में दोषियों की पहचान क्यों हो पाई है? आखिर वो कैसी जांच थी जिसमें इसी दंगे में मारे गए हाशिम अली की हत्या के 12 और अनवर हत्याकांड के 5 आरोपी बरी हो जाते हैं? दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: राजस्थान की सबसे बड़ी चपरासी भर्ती में पीएचडी से लेकर एमबीए एमसीए तक के बेरोजगार युवाओं ने परीक्षा तो पास कर ली, मगर नौकरी मिलने की जगह अब वो दूसरी परीक्षाओं में लग गए, जिसके कारण चपरासी भर्ती के असली अधिकारी प्रदर्शन को लाचार हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, लेकिन उन्हें खाली पद के बदले नौकरी देने वाला नियम लागू नहीं हो रहा।
3: क्या राजस्थान में सरकारी नौकरी बिना रुलाए नहीं दी जा सकती? सवाल सीधा सा है। वजह, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के घर के बाहर बैठे ये बेरोजगार जो चपरासी भर्ती परीक्षा में पास हुए लेकिन फिलहाल वेटिंग लिस्ट में है। आप सोचेंगे वेटिंग लिस्ट में है तो प्रदर्शन क्यों? इसलिए पहले मुख्यमंत्री का बयान सुनिएगा।
14: राज्य सेवा के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे अधिकारी कर्मयोगी की भावना से रूल बेस्ड से रोल बेस्ड कार्यशैली की ओर अग्रसर होंगे। 1 वर्ष के भीतर कर्मचारियों द्वारा पद त्यागने की स्थिति में उस पद की प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। एकल महिला कर्मचारी के लिए चाइल्ड केयर लीव 3 के स्थान पर 6 चरणों में स्वीकृत किया जाएगा।
3: मतलब समझिए, मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर किसी भर्ती में चयनित शख्स 1 साल के भीतर पद छोड़ देगा तो उसी भर्ती की वेटिंग लिस्ट से किसी और को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी चपरासी भर्ती में ये नियम लागू करने से मना कर दिया गया। अब जो 1-2 नंबर से वेटिंग लिस्ट में चले गए उनको लगता है कि जो मौका मिल सकता था वो भी छिन रहा है, क्योंकि भर्ती नियम लागू होने से पहले की है।
15: जिस तरह से ये भर्ती में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा खाली पद बच जाएंगे इस नौकरी में। सरकार ने 1 साल का वेटिंग का नियम भी बना दिया है, मगर जिस नौकरी में जरूरत है इस नियम को लागू करने के लिए, उसमें अधिकारी लागू नहीं कर पा रहे हैं।
3: डिप्रेशन की दवाइयां पॉलिथीन में लेकर बैठे रामपाल प्रजापति 40 साल के हो चुके, सितंबर में ओवर एज हो जाएंगे, चपरासी परीक्षा में आधे पॉइंट से फाइनल रिजल्ट में रह गए। ऐसे लोग डरे हुए, वेटिंग लिस्ट वालों को मौका नहीं देंगे तो रामपाल जैसे बेरोजगार टूट जाएंगे।
16: मेरी एज भी नहीं है सर, मैं कहाँ जाऊंगा। इसमें वन ईयर वेटिंग रूल के लिए आए सर हम, ये हमें मिलना चाहिए, ये हमारा न्याय है और अपने न्याय के लिए हम हक मांग रहे हैं सर।
17: पॉलिटेक्निक की 2015 में पढ़ाई कर चुके भरतपुर के गौरव सिंह 30 साल के होगा, हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, भर्ती की वेटिंग लिस्ट में। शिव प्रकाश शर्मा एक नंबर से फाइनल मेरिट से बाहर है। वेटिंग का नियम इस भर्ती में लागू हो जाए तभी इनको नौकरी मिल पाएगी।
18: ईडब्ल्यूएस से मेरे लगभग अभी मेरे से ऊपर लगभग 2000 बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस वाले।
19: क्या चाहते हो
18: सर? वन ईयर वेटिंग नियम लागू हो जाए सर, प्रक्रियाधीन भर्ती हूँ सब में सर, पोर्तगढ़ के साथ में भी सर, ही चाहते हैं सर बस।
17: दरअसल चपरासी भर्ती में पास होने वाले लोग टीचर भर्ती, एलडीसी, प्राध्यापक भर्ती से लेकर वाहन चालक भर्ती तक में परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 25,000 से 30,000 पद खाली रह जाएंगे। अगर इसी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में वेटिंग लिस्ट में आए लोगों से पद भर लेंगे तो ना तो दोबारा भर्ती परीक्षा कराने का खर्च जनता पर आएगा, ना ही भर्तियां लटकेंगी।
15: इसमें और भी नौकरियों को की तैयारी करने वाले लोग, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग, पीएचडी, एमबीए, एमसीए, ये सारे लोग आ गए और वो नौकरी पा लिए हैं, मगर कहा जा रहा है कि अभी भी ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, छुट्टियों पर जा रहे हैं बाकी भर्ती की तैयारियों के लिए। ऐसे में करीब 25,000 से 30,000 ये पद खाली रह सकते हैं और सरकार फिर से भर्ती निकालेगी और इन बच्चों के साथ जो पॉइंट से एक नंबर से रह गए हैं बड़ा अन्याय हो जाएगा। कैमरामैन की शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: हमारे देश में जून में तो बारिश हुई नहीं, जुलाई आया तो पहले सप्ताह जमकर बारिश हुई, लगा कि जून का डेफिसिट भी जुलाई की बारिश खत्म कर दे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे फिर से सूखा पड़ गया। 5 दिन से अधिक का वक्त हो चुका है भारत में, हमारे देश में एक बड़े हिस्से में पानी की एक बूंद नहीं गिरी। सवाल ये कि ऐसा क्यों हो रहा है और इससे आगे कितना नुकसान होगा, मौसम क्यों बदल रहा है।
20: अचानक से बरसता मॉनसून कहां चला गया? जुलाई में बारिश की रफ्तार पर क्यों ब्रेक लग गया? क्या ये अल नीनो का असर है या फिर से सूखा पड़ने वाला है? मॉनसून पर लगा ये ब्रेक फसलों के लिए कितना नुकसानदायक है? पिछले हफ्ते हुई ये शानदार बारिश बता रही थी कि देर से ही सही, लेकिन मॉनसून जब आया तो झूम कर बरसा। किसानों को लगा कि उनकी फसलों की बंपर पैदावार होगी, लेकिन 2 दिन में ही ये चिलचिलाती धूप निकल आई, भीषण गर्मी के साथ उमस। ऐसा लगता है कि जैसे मई जून फिर से लौट आया हो। सवाल है कि बारिश अचानक से कहां चली गई, मॉनसून पर यह ब्रेक क्यों लगा? मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून में बारिश अक्सर स्पेल में यानी कि अलग अलग अवधि में होती है। 2 जुलाई से 9 जुलाई तक अच्छी वर्षा हुई, फिर ब्रेक हो गया। वजह यह है कि जब मॉनसून साउथ में रहता है तो भारत के मैदानी क्षेत्रों में अच्छी बारिश होती है, फिर मॉनसून पहाड़ों की तरफ खिसकता है तो बारिश रुक जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी यही स्थिति है। अब सवाल है कि आगे बारिश कब होगी, तो मौसम विभाग बता रहा है कि अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 19 जुलाई से दोबारा उत्तर पश्चिम भारत यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश की पूरी संभावना है।
15: क्या ये सिस्टम मतलब साइक्लिक है या कोई असाधारण घटना है?
21: नहीं, कोई असाधारण घटना नहीं है कि जैसे जो जैसे कि मॉनसून जब तक हमारा नॉर्मल या उसके साउथ में रहता है तो भारत के मैदानी क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा देखने को मिलती रहती है, और जैसे जैसे ये नॉर्थ की तरफ जाता है यानी फुटहिल्स की तरफ जाता है, अभी आज की अगर स्थिति बात करूँ मैं 14 जुलाई की, तो जो मॉनसून ट्रफ का जो पश्चिमी सिरा है वो अभी जम्मू से स्टार्ट होकर के जम्मू देन देहरादून बाराबंकी से होकर के और ईस्ट सेंट्रल वेस्ट बंगाल में जा रहा है, यानी कि मॉनसून ट्रफ का जो पश्चिमी सिरा है वो अपनी सामान्य स्थिति काफ़ी ऊपर फुटहिल्स में है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जो तराई बेल्ट है जैसे नदन पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये सब पॉकेट्स में वर्षा मिलती है।
20: लेकिन सवाल है कि इससे नुकसान कितना हुआ, अब इसे भी समझिए। जून में बारिश का 40% का डेफिसिट था, फिर जुलाई के पहले हफ्ते में अच्छी बारिश हुई तो यह डेफिसिट घटकर अब 19% रह गया, यानी 21% की रिकवरी हुई है। यह उम्मीद थी कि जुलाई में ठीक ठाक बारिश होगी तो यह पूरा डेफिसिट कवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सवाल है कि कहीं ये पूरा डेफिसिट बढ़ता ना चला जाए, क्योंकि बारिश कम होने का मतलब है कि सब कुछ कम होना। ये पूरा का पूरा दुष्चक्र है जो सबको प्रभावित करता है, और एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इसका लंबा असर देश की जीडीपी पर पड़ सकता है। ये समझने से पहले आप ये जानिए कि कैसे कम बारिश फसलों पर असर डाल रही है। आमतौर पर जुलाई से सितंबर के सीजन में खरीफ की फसल 1104 लाख हेक्टेयर में बोई जाती है। 2025 में 10 जुलाई तक 632 लाख हेक्टेयर पर फसल की बुआई हुई थी, जो 2026 में 16% घटकर सिर्फ 531 लाख हेक्टेयर रह गई। सबसे ज्यादा असर हुआ है दलहनों पर। 2025 की तुलना में किसानों ने दालों की 23% कम बुआई की है। इसी तरह से मोटे अनाज की 22% कम, तिलहन की 21% कम, कपास की 15% कम और धान की 9% कम बुआई हुई है। ये सारी वो फसलें हैं जिनमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और पानी बरस ही नहीं रहा तो किसान इन फसलों की बुआई ही नहीं कर पा रहे। सरकार खुद किसानों को सलाह दे रही है कि किसान अब कम अवधि वाली फसलों को प्राथमिकता दें।
2: अभी जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है, अब बोनी और तेजी से होगी। पिछले साल इस समय तक 442 लाख 80 हजार हेक्टेयर में बोनी हुई थी, सोइंग हुई थी, लेकिन कल तक 350 लाख 85 हजार हेक्टेयर में बोनी हुई है। इसका मतलब 91.95 लाख हेक्टेयर में बुआई अभी कम हुई है, लेकिन उम्मीद यह है कि इस अच्छी वर्षा के कारण अब बोनी का क्षेत्र तेजी से बढ़ेगा। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है।
20: सरकार के किसानों को दी गई ये राय बता रही है कि हालात ठीक नहीं है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इसका सीधा असर देश के जीडीपी पर पड़ सकता है। अगर मॉनसून में ठीक से बारिश नहीं हुई तो महंगाई भी बढ़ सकती है।
19: अगर आपके पास मॉनसून रेनफॉल कम होता है तो नेचुरली हमारी राइस फील्ड, देन मेज, मक्का और ये जो और तीन चार दलहन है, सब पे इनका प्रभाव पड़ेगा। और इनका प्रोडक्शन अगर कम होगा तो नेचुरली जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी पे आप लोगों को जैसे अंदाजा है कि करीब 17-18% जीडीपी हमारे एग्रीकल्चर से आता है, और 47% के करीब वर्क फोर्स इसके ऊपर डिपेंडेंस है। तो इन चीजों को ध्यान में रखे अगर हम देखें, और अगर जो महंगाई बढ़ेगी वो करीब 4-5% के करीब बढ़ सकती है, तो इससे लंबा एक चेन रिएक्शन शुरू होगी।
20: यानी मॉनसून में कम बारिश बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। बारिश कम होने का मतलब है फसल कम, मतलब तिलहन और दलहन आयात करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये कम वर्षा अल नीनो की वजह से हो रही है? अल नीनो के साथ आपको एक और टर्म समझना होगा, इंडियन ओशन डाइपोल यानी आईओडी। दरअसल दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर इस समय प्रशांत महासागर में बन रहे अल नीनो सिस्टम और इंडियन ओशन डाइपोल यानी आईओडी पर है। अल नीनो यानी पूर्व में प्रशांत महासागर की सतह से गर्म चलने वाली हवाओं के चक्र से दुनिया भर के मौसम पर होने वाले असर और इंडियन ओशन डाइपोल की स्थिति ये तय करेगी कि भारत में मॉनसून कैसा होगा। वैज्ञानिक कह चुके हैं कि प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसका असर एशिया प्रायद्वीप में सितंबर महीने के बाद दिखना शुरू हो सकता है। लेकिन हिंद महासागर में आईओडी की स्थिति क्या होगी, इस पर स्पष्टता आने में अभी महीने भर का समय और लग सकता है।
22: प्रशांत महासागर की सतह जब गर्म होगी तो हवाएं वो पश्चिम की ओर आएंगी, जो ट्रोपोस्फीयर में एक इक्वेशन बनेगा, लेकिन उसके साथ उसका असर पड़ेगा भारत के मानसून पर भी। लेकिन नजर इस बात की है कि क्या इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव होगा या नकारात्मक होगा। दरअसल सैटेलाइट की तस्वीर अगर हम देखें, और मौसम विभाग यह मान रहा है कि अभी तक जो इंडियन ओशन डायपोल है वो न्यूट्रल है। अब अगर भारत से नीचे आते हैं और इसी से थोड़ा और जब नीचे आएंगे तो इथोपिया या अफ्रीका के पास, दरअसल हम देखते हैं अफ्रीका के पास नोटिस करते हैं यहीं से इंडियन ओशन डायपोल को, तो ये दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका के पास, और इसी के साथ साथ कि यहां की सतह क्या गर्म है, और उसी के साथ दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया के पास क्या यहां जो समंदर है हिंद महासागर, उसकी सतह ठंडी है। अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है और पॉजिटिव होता है तो वो प्रशांत की ओर से आने वाली इन गर्म हवाओं को निष्क्रिय कर देगी और पॉजिटिव आईओडी की स्थिति में बारिश तेज होगी। लेकिन चिंता इस बात की है कि अभी तक इंडियन ओशन डायपोल बिल्कुल न्यूट्रल है और जब तक वो पॉजिटिव नहीं होता तो 1997 या 2023 की स्थिति नहीं बनती और ऐसे में एलनीनो का असर अगस्त के बाद से भारत के मौसम पर डालेगा। न सिर्फ बरसात कम होगी बल्कि उसका असर देश की खेतीबाड़ी पर भी पड़ेगा।
1: एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि देश को एलनीनो के प्रभाव के लिए तैयार रहना चाहिए। भले ही उसका असर सितंबर के बाद महसूस किया जाएगा, लेकिन अगर एलनीनो आया तो फिर सूखा ही सूखा है। एक्सपर्ट पूरी तैयारी करने को कह रहे हैं।
4: IMD forecast will keep coming along the way for days to weeks, and government will use it and private sector will use it for making decisions, kind of crisis management.
0: जुलाई से सितंबर तक का सीजन किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये सीजन खरीफ का है, यानी कि दलहन और तिलहन इसी सीजन में बोई जाती है, धान बोई जाती है। लेकिन खराब मानसून, कम बारिश के कारण किसानों की परेशानी बहुत बढ़ गई। वो अपनी फसलों की बुआई तक नहीं कर पा रहे। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों की स्थिति सबसे अधिक खराब है, क्योंकि इनकी 80-85% खेती मानसून पर निर्भर है।
1: विदर्भ का किसान इस समय तिहरी मार झेल रहा है। पहले मॉनसून देर से आया, फिर कई किसानों को सोयाबीन के बीजों का अंकुरण नहीं होने के कारण दोबारा बुआई करनी पड़ी और अब पिछले 6 दिनों से बारिश थमने के कारण खेतों में खड़ी फसल सूखने लगी है। विदर्भ की 80-85% खेती आज भी सिर्फ मॉनसून पर निर्भर है। ऐसे में किसान खेतों में गुड़ाई कर बची हुई नमी फसलों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं।
5: करीबन 1.5 लाख रुपए अब कैसा भरेंगे, अब जो भी होगा बैंक देखेंगे, हमारी हर राशि में लगाएंगे खेत, और इसके और कुछ कर सकते नहीं, हम क्या करेंगे। हमने कर्जा जो लिए काय के लिए लिए, फसल के लिए, फसल ही नहीं रही तो पैसे भरेंगे काय कहाँ से। अभी समझ लो 8-10 दिन पानी नहीं आया तो ट्रैक्टर डालो, खेत काला करके मोकला करो, इसके अलावा कुछ कर सकते नहीं हम।
23: मजूर के भाव बढ़ गए, अब खाद के भाव बढ़ गए, बीज के भाव बढ़ गए तो कितना पैसा लगाना, जितना पैसा रहता सोना नाना सब बैंक पे रखना पड़ता, कर्जा लेना पड़ता, फसल आने के बाद में वापिस दे देते, अब ये आया ही नहीं तो कैसा करेंगे हम।
1: इस साल विदर्भ में मॉनसून की शुरुआत देर से हुई। शुरुआती बारिश के बाद किसानों ने बड़े पैमाने पर सोयाबीन, कपास, धान और तुअर की बुआई की, लेकिन सामान्य के मुकाबले अब तक अपेक्षित बारिश का केवल 70-75% हिस्सा ही दर्ज हो पाया है, जिससे बारिश का बैकलॉग बना हुआ है। पिछले 6 दिनों से बारिश लगभग थम सी गई है।
24: ज्यादा अगर फसल विदर्भ में होती है तो वो है कॉटन की, कपास की। अब वो भी फसल देखिए आप किस तरह से, यहाँ पर एक एक पत्ता जो है उसका पानी नहीं होने के चलते जो है पीला पड़ते जा रहा है, तो कहीं जलते नजर आ रहा है। ये पूरी हकीकत जो है ये विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों की है। लगभग विदर्भ में जिस तरीके से सरकारी आंकड़े के मुताबिक जो है वो यहाँ पर जिस तरीके से हर साल बारिश होनी थी उससे कम हुई है, तो लगभग विदर्भ के पूरे क्षेत्र में लगभग 75% ही बुआई हुई है, जो पिछले साल के मुताबिक, यानी पिछले साल लगभग 99-100% बुआई हुई थी, लेकिन इस वक्त बुआई इसलिए कम हुई है कि बारिश ही ठीक ठाक नहीं है। पश्चिम विदर्भ में कुछ इलाकों में मानो अकोला या उसके लगभग जो है वो अमरावती है, यवतमाल है, बुलढाणा है, वहां तो ठीक ठाक बारिश जरूर नजर आ रही है, लेकिन वो कुछ ही इलाकों में है, चंद इलाकों में है।
1: मराठवाड़ा में इस साल मॉनसून की बेरुखी के कारण किसानों पर दोबारा बुआई का भारी संकट मंडरा रहा है। इसी आर्थिक और मानसिक तनाव के चलते बीड जिले के एक किसान ने आत्महत्या कर ली। गेवराई तहसील के रानमला गांव के 25 साल के युवा किसान मुकुंद गंगाराम हिंगे ने रविवार को अपने घर में फांसी लगा दी। इस साल बारिश न होने से फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे कर्ज चुकाने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
25: पाऊस पानी नहीं, आज विरित पानी नहीं, बोरला पानी नहीं, ऊस जळून गेलाय आणि त्याला त्याच्याकडे कर्जाचा डोंगर झाल्यामुळे त्यांना निराश झाला आणि निराश होऊन त्यांना आत्महत्या केली।
1: बीड जिले में इस साल बारिश की स्थिति बेहद चिंताजनक है। जुलाई का आधा महीना बीत जाने के बाद भी
20: जिले में केवल 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जिले में कुल 8 लाख हेक्टेयर बुआई के लायक क्षेत्र है, लेकिन पानी की कमी के कारण अब तक केवल 4 लाख हेक्टेयर पर ही किसी तरह बुआई हो सकी है। जिन किसानों ने शुरुआती हल्की बारिश पर बुआई की थी, उनकी फसलें अब सूख चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में भी मानसून की रफ्तार थम सी गई है। जून लगभग सूखा गुजर गया और जुलाई में भी बारिश उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा असर अब किसानों पर दिख रहा है। बेमेतरा और राजनांदगांव जैसे कृषि प्रधान जिलों में खेत तैयार हैं, लेकिन पानी नहीं है। कहीं बुआई नहीं हो पा रही तो कहीं अंकुर निकलने के बाद फसल सूखने लगी है। किसान अब आसमान की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं।
6: इस बार मौसम की बेरुखी से सबसे ज्यादा परेशानी अगर हो रही है तो किसानों को हो रही है, हम लोगों को हो रही है। मैं जान सकता हूं कि क्या स्थिति है। अब आप देखिए कि मेरे पूरे खेत की जुताई हो चुकी है, पूरा खेत तैयार है। मैं सिर्फ पानी का इंतजार कर रहा था कि पानी गिरे तो अपनी फसलों को जो लगाऊं, रोपाई करूं। सबसे पहले चीज थी कि हमने ये उम्मीद थी कि इस बार बरसात अच्छी होगी। हालांकि सरकार जो वैज्ञानिक है वो कह रहे थे बरसात कम होगी, लेकिन उम्मीद थी कि बरसात अच्छी होगी, इसीलिए हम तैयारी की। लेकिन क्या करें, उम्मीद में हम अपने खेतों की जुताई कर चुके हैं, तो हम सीधा सीधा श्री पद्धति से, जो वैज्ञानिक पद्धति होता है श्री पद्धति, उससे हम उनारी कर रहे हैं ताकि अगर पानी गिरे तो हमारी फसल कुछ तो हो जाए, इसी उम्मीद से हम लोग अभी फसल को लगा रहे हैं।
20: बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज

0: आज लखनऊ में सजेगा पंचायत, आज तक उत्तर प्रदेश का महामंच। मुख्यमंत्री योगी समेत राजनीतिक दिग्गज करेंगे शिरकत। विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष की आवाज। संसद सत्र की तैयारी के बीच गृह मंत्री अमित शाह से हाई प्रोफाइल मुलाकातों का सिलसिला जारी। यूपी के सीएम योगी के बाद अमित शाह से मिले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन के दोषी होने पर आप बीजेपी में ढली। सीएम रेखा ने आप पर संरक्षण का आरोप लगाया। कपिल मिश्रा ने किया कटाक्ष। ताहिर सिर्फ एक्टर, असली डायरेक्टर कोई और। बर्मिंघम वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से धोया। शुभमन गिल, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर की बदौलत मिली शानदार जीत। 3 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे। और 24 घंटों में ट्रंप का यूटर्न। हॉर्मुज में नहीं लगेगा 20% टैक्स, टैरिफ की जगह खाड़ी देश करेंगे अमेरिका में निवेश। ईरानी जहाजों की नाकेबंदी का ऐलान। एक तरफ श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जांच चल रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब श्री राम मंदिर के मामले पर पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया। एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट आज सौंप सकती है।
1: ऐसे पोस्टर्स यूपी के अलग अलग शहरों में लगाए गए हैं। एक पोस्टर में अखिलेश और मुलायम सिंह यादव हैं। इसमें लिखा है मुलायम सरकार की असलियत। दूसरे पोस्टर में अखिलेश, शिवपाल और राम गोपाल यादव की तस्वीरें हैं। इसमें लिखा गया है दिल में बाबर, मुंह में राम। ऐसे पोस्टर्स लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर और अयोध्या में लगाए गए हैं।
2: जैसे चुनाव नजदीक आएगा, सब पुराने बयान निकाले जाएंगे, पुराने पोस्टर निकाले जाएंगे, सबके निकलेंगे।
1: इस सियासत से इतर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेजी से बढ़ रही है। खबर है कि मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाने वाले कुछ विशेष दानदाताओं के दान को ट्रस्ट वापस कर सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद दर्जनों दानदाताओं ने ट्रस्ट के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और अपने दान की चोरी या घोटाले का शक जाहिर किया था। कई श्रद्धालुओं का दावा था कि उनकी ओर से भेंट की गई वस्तुओं की रसीद नहीं दी गई। आरोप ये भी है कि उनकी दी गई भेंट राम मंदिर में प्रदर्शित या सुरक्षित नहीं रखी गई। अब इन वस्तुओं को लौटाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उधर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटा दिया गया है। खबर ये भी है कि चढ़ावा चोरी की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम जल्द ही अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। आज तक ब्यूरो।
0: अयोध्या में चढ़ावे चोरी का मामला सामने आते ही वक्फ के घोटाले का राजनीतिक शोर सुनाई पड़ने लगा। पहले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष बासित अली ने बहराइच के सालार गाजी दरगाह में घोटाले के आरोप लगाए। फिर मुख्यमंत्री योगी ने कई मंचों से वक्फ के घोटालों का उल्लेख किया। अब खुद मुस्लिम जमात के मौलाना रजवी ने वक्फ के घोटालों के आरोप लगाए।
3: क्या वक्फ बोर्ड में भी चल रही है धांधली? क्या वक्फ बोर्ड में भी हुआ है घोटाला? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर वक्फ के घोटालों की जांच करने की मांग की है
4: कि राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड का निकल करके सामने आएगा। वो लाखों का नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों का जो घोटाला है वो अरबों का घोटाला सामने निकल करके आएगा।
3: मौलाना रिजवी सीएम योगी के नाम लिखी चिट्ठी में दावा करते हैं कि वक्फ बोर्ड में सबसे ज्यादा लूट समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई।
4: जो वक्फ के जिम्मेदारान थे उन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को जो करोड़ों में थी उनको रेवड़ियों के भाव बेचा गया, वक्फ की संपत्ति को बर्बाद किया गया और ये सारी बर्बादी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई।
3: शहाबुद्दीन रिजवी अकेले शख्स नहीं है जो वक्फ में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं।
5: पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो हर जगह के ऊपर घपलेबाजी हो रही है पूरी तरीके से।
3: समाजवादी पार्टी पर यह आरोप खुद सीएम योगी अपनी सार्वजनिक रैलियों और कार्यक्रमों में लगाते रहे हैं। जब राम मंदिर का मुद्दा सामने आया तो सीएम ने फिर से वक्फ घोटाले का जिक्र किया था।
6: अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो एक भी बार बताओ वफ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई।
3: सियासी आरोप एक तरफ, लेकिन आरोपों की जांच दूसरी तरफ। शिया वक्फ बोर्ड से जुड़े इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दिया जाए तो यूपी में किसी वक्फ घोटाले की सघन जांच अभी तक नहीं हो सकी है।
7: दूसरे स्थानों पे या दूसरे धर्म स्थल पे कहीं अगर कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से वहाँ सुधार होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन बयानबाजी नहीं। अगर कोई सबूत किसी के पास है, एविडेंस है, तो वो सामने लाना चाहिए।
8: वफ के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पहले हुआ करता था। वफ की जमीनों को औने पौने दामों पर कब्ज हो जाते थे, किराए पे देते थे और उसके धन का दोहन होता था। वफ जिस भावना से किया जाता उस भावना का तिरस्कार होता था। लेकिन आज सरकार के प्रयासों के बाद हम वफ की संपत्तियों को रेगुलराइज करने का काम कर रहे हैं।
3: यूपी और देश में वफ की संपत्तियों के घोटालों के आरोप शुरू से लगते रहे हैं और उसे दूर करने के लिए ही सरकार ने वफ संशोधन कानून भी बनाया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि नए कानून के तहत बने वफ बोर्ड अब वफ संपत्तियों का उचित रखरखाव कर पाएंगे। बरेली से कृष्ण गोपाल राज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: दिल्ली दंगे में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से दिल्ली की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा।
3: 6 साल पहले दिल्ली में हुए दंगे को लेकर दिल्ली की अदालत ने जो फैसला सुनाया, अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन दोषी पाए गए हैं। वहीं ताहिर के अलावा 4 और आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
9: क्या अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी इस बात का जवाब देंगे कि दिल्ली में दंगे भड़काने जैसे कितने और कृत्य उन्होंने किए हैं?
3: आपको बता दें कि 26 फरवरी 2020 को खजूरी खास नाले से अंकित शर्मा का शव मिला था। उनके पिता ने ताहिर हुसैन समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। तमाम गवाहों की पेशी, सबूतों और सुनवाई के बाद अदालत का फैसला दिल्ली के सामने है। जहां तक ताहिर हुसैन का सवाल है तो खबर है कि कोर्ट की सुनवाई के दौरान वो फूट फूट कर रोने लगा। ताहिर की माने तो वो बेकसूर है, उसे फंसाया गया है।
10: ताहिर जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए।
3: हिंसा में नाम आने के बाद ताहिर हुसैन से केजरीवाल ने किनारा कर लिया था। आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने गले लगा लिया।
11: 2020 में जो दंगे हुए, आज ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन और ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोगों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू, जो वहाँ पे रहने वाला हिंदू समाज है, उनको मारने की साजिश थी। और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए, नौजवान बेगुनाह, अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर, जिनको कई बार चाकुओं से गोदा गया और बाद में उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया।
12: कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का सेशन से आया है, तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा, क्या नहीं रहा।
13: लेकिन उसका नाम ताहिर है, ये बड़ी चीज है। अगर उसका नाम कपिल होता वो भी परी हो जाता।
3: दिल्ली दंगे को लेकर एआईएम सवाल उठाती रही है कि जिस दंगे में 53 लोगों की हत्या हुई, उसमें 6 साल बाद भी सिर्फ एक हत्या के केस में दोषियों की पहचान क्यों हो पाई है? आखिर वो कैसी जांच थी जिसमें इसी दंगे में मारे गए हाशिम अली की हत्या के 12 और अनवर हत्याकांड के 5 आरोपी बरी हो जाते हैं? दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: महाराष्ट्र के नासिक में एक परिवार वाटरफॉल घूमने गया, लेकिन वहां 2 बदमाशों ने परिवार की महिला से छेड़खानी की। परिवार ने विरोध किया तो फिर 15 किलोमीटर तक पीछा करके 4 बार बदमाशों ने हमला किया। इस मामले में 9 लोग पकड़े गए, 3 लोग फरार हैं।
14: बारिश का मौसम, महाराष्ट्र के अलग अलग वाटरफॉल, जहां इस वक्त हर परिवार छुट्टी मनाने के लिए अपनों के संग कुछ खुशी के पल बिताने के लिए पहुंचता है। लेकिन 12 जुलाई रविवार को नासिक के भावली वाटरफॉल के पास भागवत परिवार के साथ जो कुछ हुआ है वो हर आम आदमी को डरा देता है जो कहीं छुट्टी मनाने जाता है।
15: वहां के 2 लोकलाइट थे, उन्होंने कुछ गंदी कमेंट पास कर दी। वो व्हाइट कलर की बलून है, उसने आगे हमारे आके रास्ता ब्लॉक किया।
16: अच्छी जगह पर अटैक किया लोगों ने।
17: मेरा भाई बैठा था, उसकी कांच फोड़ दी।
16: कांच फूट रही थी तो बच्चा भी डर गया।
17: फाइटर से वगैरह कांच फूटी तो हमने गाड़ी थोड़ा रिवर्स लेके भागना चालू किया।
16: जहां भी रुके वहां पे हमारी गाड़ी फूटी।
14: सबसे पहले दहशत के इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक कार में भागता हुआ मेहर भागवत का परिवार, जिनके पीछे एक बाइक पर हाथ में लोहे की रॉड लेकर अटैक करने के लिए आते दो गुंडे हैं। और फिर
18: फोटो गाड़ी का फोटो
14: दो लोग बाइक से, बाकी लोग सफेद रंग की कार से इस परिवार का पीछा 15 किलोमीटर तक करके हमला करते हैं, जो रविवार को नासिक के भावली वाटरफॉल के पास पिकनिक मनाने पहुंचे। इसके बाद ये सवाल हर आम आदमी का परिवार पूछना चाहता है, क्या पिकनिक स्पॉट पर भी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल सकती है? अब आप जानना चाहेंगे कि यहाँ हुआ क्या। मीर भागवत और उनकी पत्नी की साफ बीती को आज हर परिवार इसीलिए जरूर सुने।
17: मैं और मेरे भाई की फैमिली है ना, हम टोटल 8 लोग, उसके 2 बच्चे, मेरे 2 बच्चे, मिसेस उसकी, मेरी मिसेस, हम भावली डैम पे घूमने गए थे फैमिली के साथ में, टाइम स्पेंड करेंगे अच्छे फैमिली के साथ में। हम वहाँ पे गए तकरीबन 2-3 बजे, वहाँ पे खाना वगैरह खाया, पानी में खेले हम सब। 5:30 बजे के करीब निकलना है भाई, शाम हो रही है, तो बच्चे आके गाड़ी में बैठे, लेडीज़ वगैरह निकलने लगे और हम जेंट्स थे तो सब जो खाने के बैग वगैरह थे हम पीछे से लेके आ रहे थे। तो मिसेज जा रही थी थोड़े अभी पानी में भीगने की वजह से ड्रेसेस वगैरह गीले थे, तो किसी वहाँ के 2 लोकलाइट थे, उन्होंने कुछ गंदी कमेंट पास कर दी। तो मिसेज ने उनसे आर्ग्यू किया कि आप ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने भी आर्ग्यू किया।
16: चेंज करने हम कार के पास जा रहे थे तो आप एक बाइक पे 2 लड़के खड़े थे, तो मैं उनके वहाँ से तो जाना ही पड़ेगा, तो उनके बाजू से गई, तो उन्होंने मुझे शिट्टी बजाई और कुछ कमेंट पास की। तो मैंने उनको बोला तुम पागल हो गए कि पब्लिक प्लेस में लेडीज को छेड़ रहे हो, उनको समझता नहीं आजकल क्या चल रहा है इनका। नहीं बोले हंसते वो मराठी में मुझे बोलने लगे ना, तो फिर मैं थोड़ा उनके ऊपर ये करने लगा।
17: तो उनका ये चालू था झगड़ा, तो मैंने दूर से देखा तो मैं भागते हुए गया कि क्या हुआ। तो इस मिसेज ने बोला कि ये मुझे छेड़ रहे, तो मैंने उनको डांटा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो।
16: मेरे हस्बैंड ने देखा कि इसका क्या चल रहा है उनके साथ, तो फिर ये भी पीछे से, अरे मेरे जा निकल जा, बोले से मराठी बोले निकल जाओ तुम, क्यों दिमाग लड़ा। वहाँ पे बाद में जो लड़के खड़े थे 7-8-10 लड़के थे जो कार है वहाँ पे, तो वो आए बोले हमारे गाँव के लड़के को तुम ऐसे कैसे बोल सकते, हाथ क्यों लगा सकते।
17: तो मैंने उनको थोड़ा सा ये किया कि भाई तुम निकल जाओ, तो वो निकल गए। लेकिन वहाँ के जो लोकलाइट थे, वहाँ पे एक 4-व्हीलर में कोई शॉप रन करते वहाँ के लोकल बिजनेस, तो वहाँ के जो 6-8 बच्चे थे लोकलाइट, वो आए क्या हुआ क्या हुआ, तो वो लोग इशू करने लग गए।
16: थोड़ी सी हाथापाई हुई हमारी, वहाँ पे पब्लिक लोगों ने हमको बचा लिया कि चलो निकलो यहाँ से, जाने दो छोड़ो। आगे जाके इन्होंने पहले नो पूरा आगे सामने से आके उन्होंने आड़ी गाड़ी लगा दी और डायरेक्ट फाइटर से कांच फोड़ने चालू कर दी, तो हम डर गए। मैंने उनको बोला किरण भगाओ गाड़ी भगाओ, इन्होंने इतनी गाड़ी भगाई तो पीछे से फिर 2-व्हीलर रोड वगैरह लेके अपने वीडियो में देखा, वो सब घटना चालू हो गई। फिर आगे जाके उनका एक लड़का गाड़ी पे लटका भी, पूरा लटका।
14: सोचिए कितने बेखौफ रहे होंगे वो गुंडे जो 15 किलोमीटर तक पीछा करके हमला करते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि क्या रास्ते में कहीं पुलिस नहीं थी, कहीं पुलिस पोस्ट नहीं थी।
17: वहाँ से आगे आने पे भावली डैम है, वहाँ पे हमें पुलिस वैन मिली ब्लू कलर की, तो वहाँ पे हमने पूछा कि हमें पुलिस कंप्लेंट करनी है, तो बोले ठीक है आप इगतपुरी पुलिस स्टेशन जाइए। आगे निकले वहाँ से भावली डैम से 2 किलोमीटर आगे, तो एक व्हाइट कलर की बलेनो है, उसने आगे हमारे आके रास्ता ब्लॉक किया। जैसा रास्ता ब्लॉक किया तो वहाँ से उसमें से उतर के 2-4 बच्चे भागे, उन्होंने आगे की और मेरे बाजू में जो मेरा भाई बैठा था उसकी कांच फोड़ दी। तो हमने गाड़ी थोड़ा रिवर्स लेके भागना चालू किया, हमने भागना चालू किया, बोला इगतपुरी पुलिस स्टेशन जाते हैं। लेकिन जैसे हम नासिक मुंबई हाईवे पे आए फ्लाई ओवर के नीचे नियर बाय, वहाँ पे 2 बाइक जो वीडियो वायरल हो रहा है पीछे से आके रॉड से मार रहे हैं, उन्होंने पीछे से रॉड से मारा और आगे आके वापस उन्होंने 2-व्हीलर से हमें ब्लॉक किया। वहाँ पे उन्होंने आगे वापस 70 से हमारी गाड़ी फोड़ी। फिर हमने सोचा इगतपुरी में जाना गलत होगा, ये लोकल लाइट है, तो इससे अच्छा अपन नासिक की तरफ भागते हैं।
14: सुनकर डर लगता है, मानो फिल्म में जैसे किसी विलेन का जंगल राज दिखाते वो हालत सच में हो। मतलब रोक रोक कर परिवार पर हमला होता रहा और भागवत परिवार जान बचाने को भागता रहा।
16: छह जगह पर अटैक किया लगभग उनको। सबसे पहले उन्होंने भावली डैम के आगे जो टर्न आता है ना वहाँ पे पकड़ा, क्योंकि उनको पता है यहाँ से टर्न मारना थोड़ा बड़ी गाड़ी को मुश्किल होगा। बरोबर वहाँ पे पकड़ा, वहाँ पे आए काज भी छोड़े, वहाँ पे बच्चे डर गए, तब हमने मोबाइल चालू नहीं किया। उसके बाद वहाँ से जब हम निकले तो पीछे दो बाइक पर जो लड़के आ रहे थे जो रोड था, तो मैंने बेटे को बोला, मैंने बेटा मोबाइल निकाल, पहले उनका वीडियो ले, वो बाकी जाने दो। फिर मेरे बेटे ने वो वीडियो लिया, तो वीडियो लेते ले तो उसने वीडियो देखा।

0: था स्कूटर थी तो बच्चा भी डर गया, वो वीडियो हमने नहीं आने। फिर आगे जाके 2 लाख का की वहां रुकी तो एक टी शर्ट वाला है उसने आके से बटन बंद कर दिया हमारी गाड़ी का, बंद कर दिया, कांच खुले थे पूरे बंद कर दिया। फिर बोले उतर जाओ अपन ये करेंगे सॉर्ट आउट करेंगे मिटा देंगे ऐसा वैसा। तो ये मेरे हस्बैंड बोले चलो देखते, फिर मेरे पागल हो गए कि यहाँ पे उतरना रिस्क है निकलो। फिर से हम वहां से वापिस निकल।
1: पीड़ित परिवार का नासिक में नेशनल हाईवे पर 15 किलोमीटर तक पीछा करते ये गुंडे टोल प्लाजा सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा गार्ड हाईवे पुलिस जहां सब कुछ होता है लेकिन किसी से ये नहीं डरते और कोई मदद के लिए भी आगे नहीं आते।
2: अटैक करने के लिए उन्होंने 70 फाइटर्स और ये बेसबॉल के ये थे, शायद बेसबॉल के आप उसको क्या बोलते हैं स्टिक्स बोल सकते हैं, कुछ लकड़ी के भी थे और मेरे हिसाब से मुझे किसी के हाथ में एक सिल्वर कलर का वो शायद छोटी सी ऐसी तलवार तो ऐसी थोड़ा कर्व शेप में होता लेकिन वो सीधी थी लेकिन सिल्वर था और चमक रहा था। अभी वो क्या हो रहा था, मेरा इंटेंशन था कि भागना है बचना है।
1: इस कार की हालत देखी, चारों तरफ से हमला हुआ, पत्नी बच्चे चीख रहे होंगे, पति गाड़ी भगाते रहे कि किसी तरह इनसे बच जाए। आखिरकार ये पुलिस तक पहुंचे, उसके बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 3 लोग अभी फरार।
3: हमने 9 आरोपी अभी तक निष्पन्न की है जो कि एफआईआर में 6-7 आरोपी थे, बट इसमें जो शेल्टर देने वाले आरोपी है या फिर एसोसिएट्स है जिनको इन्होंने हेल्प किया था वो भी हमने इसमें आरोपी की है और अभी तक हमने 9 आरोपी इसमें ताबे में लिया है। इसपे आगे की जो कार्रवाई है वो आगे की कार्रवाई चल रही है। पर्यटन को सुरक्षा ऑलरेडी दी हुई है, पर्यटन के वहां पे बंदोबस्त भी था, वो लोग भी वहां पे पुलिस को मिले। पर इस घटना में जो है ये घटना कुछ 7-8 किलोमीटर दूर जाके जहां पे कोई मोबाइल लोकेशन नहीं आ रहा था उस पॉइंट पे हुई है।
1: ऐसे आरोपी हर पिकनिक स्पॉट के पास हर राज्य में मिलते हैं जो कहीं तय दर से ज्यादा कीमत लेने को, कहीं भाषा को लेकर, कहीं संस्कृति को लेकर या तो विवाद करते हैं या छेड़खानी और मारपीट करते हैं। ये सोचते हैं कि ये लोकल है तो बाहर से छुट्टी मनाने आए लोगों पर हमला कर सकते हैं, उनको डरा सकते हैं। ये उन्हीं लोगों पर हमला करते हैं जिनके सैलानी बनकर आने से इनके और इनके इलाके के लोगों को रोजगार मिलता। जरूरी है कि नासिक के दोषियों को ऐसी सजा मिले जिसे सुनकर देखकर बाकी जगहों पर ऐसी आपराधिक सोच वाले सिहर जाए ताकि कोई परिवार कोई आम आदमी किसी जगह छुट्टी मनाने जाने से पहले डरे नहीं।
4: पुलिस चाहे जहां की हो आम आदमी पार्टी को केंद्र में रखने के दावे करती है। गाजियाबाद पुलिस का ध्येय भी सेवा सुरक्षा और समर्पण है जो नागरिकों के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेकिन अगर वाकई में ऐसा होता तो 22 वर्ष का एक नौजवान पिंक बूथ के बाहर तड़प कर नहीं मरता। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पिंक बूथ की महिला पुलिसकर्मियों ने राजकुमार की मदद करना तो छोड़िए अपने बूथ का दरवाजा तक बंद कर लिया।
5: पुलिस कराते हुए मेरा बेटा का जान चल गया, किस लिए चल गया, किस चला गया, इतनी क्यों मेरा बेटा के हाथ कट गया, क्यों मेरा बेटा के जान चल गया।
1: 22 साल के बेटे को गंवाने वाली एक माँ का ये सवाल गाजियाबाद पुलिस से है। मामला बहुत दुखद क्योंकि पिंक बूथ के बाहर 40 मिनट तक एक नौजवान मदद के लिए तड़पता रहा। बार बार मदद की गुहार लगाने पर महिला पुलिस मदद को आगे नहीं आई, उल्टा पिंक बूथ का दरवाजा बंद कर लिया गया।
5: अंदर पुलिस लेडीज बैठ के देख रही है मेरा लड़का ऐसे ऐसे तड़पा रहा लेकिन कोई नहीं उठाया, जब मेरा लड़का के दम टूट गया।
1: यकीन करना मुश्किल है कि गाजियाबाद में दिन दहाड़े एक नौजवान ज्यादा खून बहने से सबके सामने सड़क पर मर गया, वो भी पुलिस के पिंक बूथ के बाहर। राजकुमार को तड़पता देखकर भी महिला पुलिस कर्मियों का दिल नहीं पसीजा।
6: अच्छा गिरा कहाँ था एग्जैक्टली आप? यहाँ पे गिरा पड़ा था,
7: ये है
6: ये जो जगह है यहाँ पे ही गिरा पड़ा था।
7: हाँ जी, यहाँ से वो खून आया ना पूरा।
6: हाँ हाँ हाँ,
7: जैसे यही गिरा पड़ा।
6: ठीक,
1: थानों में फरियादियों के साथ पुलिस के संवेदनहीन बर्ताव की शिकायत तो आपने सुनी हो, लेकिन गाजियाबाद में जो कुछ हुआ वो इंसानियत के मरने का भी सबूत देता है।
8: 40 मिनट तक राजकुमार यूं ही सड़क पर तड़पता रहा और तड़प तड़प कर उसने दम तोड़ दिया। गाजियाबाद पुलिस का इस मामले में शर्मनाक बयान आया है कि ऑटो चालक और राजकुमार दोनों नशे में थे, लेकिन गाजियाबाद पुलिस को ये जवाब देना होगा कि जब दोनों मदद के लिए पुलिस के पास गए तो पुलिस आखिर क्या कर रही थी।
1: वीडियो में दिख रहा है ये 22 साल का राजकुमार जिसके शरीर का कतरा कतरा खून जमीन पर फैलता गया। इस नौजवान को दम तोड़ते हुए

0: दर्जनों लोग देखते रहे। तमाशबीनों में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। तो पिंक बूथ के दरवाजे पर ये सब कुछ हुआ। जिन्हें लोगों की मदद करने के लिए ही तनख्वाह मिलती है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाना तो दूर दरवाजा बंद कर बैठी रहे, ताकि मरने वाले की कराहने की आवाज उन तक ना पहुंचे।
1: वो जब नीचे वहाँ, तो हमें किसी ने ये बताया कि वो नीचे पड़ा था, वो इशारे कर रहा था कि मेरे को बचाओ। वहाँ लेडीज पुलिस खड़ी थी, हमारे पास वीडियो है। वो लेडीज पुलिस खड़ी थी, मान लो आप प्रशासन हो, किस लिए हो? हमारी सेवा के लिए ना। जब आप ही नहीं करोगे, जस्ट यहाँ कोई कुछ काम हो जाए।
2: आसपास जो दुकानें थी
1: जी,
2: वो लोग भी वीडियो बना रहे थे
1: जी,
2: मदद नहीं की,
1: किसी ने मदद नहीं करी।
0: गाजियाबाद में रविवार की दोपहर ऑटो चलाने वाले राजकुमार का किराए को लेकर एक सवारी से झगड़ा होता है। उसने मदद के लिए पिंक बूथ का रुख किया, लेकिन वहां उसे मदद नहीं मिली।
3: मेरा लड़का चौकी में गया नाम दाखिल कराने, मेरा लड़का के चौकी में से बाहर धक्का मार के निकाल के दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद मेरा लड़का दीवार में हाथ मारा तो अभी न खोले। उसके बाद मेरा लड़का शीशा पर हाथ मार दिया, मेरा लड़का के हाथ कट गया, खून निकलते निकलते मेरा लड़का वहीं बेहोश हो गया।
4: गाजियाबाद पुलिस से जब इस बारे में पूछा गया तो अजीब व गरीब जवाब पुलिस की तरफ से आया कि मरने वाला नौजवान ऑटो ड्राइवर नशे में था, जिससे उसकी लड़ाई हुई थी वो भी नशे में था। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने क्या दोनों को हिरासत में लेकर मेडिकल के लिए भेजा? पिंक बूथ पर तैनात पुलिसकर्मी कहाँ थे? घंटों तड़प तड़प कर एक व्यक्ति, एक नौजवान ने दम तोड़ दिया, तो पुलिस ने उसकी मदद क्यों नहीं की?
0: आप सोच रहे होंगे कि मरने वाले राजकुमार के हाथ से खून कैसे निकला, तो इस सवाल का जवाब ये कांच का दरवाजा है, जिसे जोर से खटखटाने की वजह से राजकुमार के हाथ पे चोट लग गई। वो बेसुध होकर बूथ के आगे गिर जाता है और ज्यादा खून निकलने से उसकी मौत हो जाती है।
5: पिंक बूथ है, यानी अगर कोई महिला मुसीबत में पड़ती है, वो अगर मदद के लिए आती है तो अंदर मौजूद पुलिसकर्मी उसकी मदद करेंगी। लेकिन अगर कोई और आता है तो उसे यहाँ पर जाहिर सी बात है तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। लेकिन रविवार को जो कुछ भी यहाँ पर हुआ उस पर यकीन करना एक बार की मुश्किल है। दोपहर तकरीबन 3:30 बजे के आसपास एक ऑटो आता है और सीधे अंदर घुस जाता है। आप देखिए यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर ऑटो आ जाता है। ऑटो में कुल 3 लोग थे, एक ऑटो चला भी रहा था, तो करीब 4 से 5 लोग अंदर मौजूद थे। उनकी आपस में किसी बात पे लड़ाई हो रही थी, उनको शायद पिंक बूथ समझ में नहीं आया होगा, वो यहाँ पर लड़ने लगते हैं। जब यहाँ पर समझाया गया तो वो ऑटो लेके वापस बाहर की तरफ आते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं कुछ दूर। आगे आप जो चौराहा देख रहे हैं, इस चौराहे के पास पहुंचते हैं, ऑटो रुकता है, उनमें आपस में फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो ऑटो में ज्यादातर लोग थे वो चले जाते हैं, जबकि जो राजकुमार है, 22 साल उम्र है, पास में ही रहता था सिवान, वो वहीं सड़क पर लेट गया।
0: राजकुमार ने जब मदद की गुहार इस पिंक बूथ में लगाई तब इसी तरह का माहौल हुआ। लेकिन जब राजकुमार की सुनवाई नहीं हुई तो उसने बूथ के कांच के गेट को खटखटाया और इसी दौरान उसकी नस कटने से खून बहने लगा। लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने मदद तो दूर पास के पुलिस स्टेशन से मदद कराने या एम्बुलेंस बुलाने तक की जहमत नहीं उठाई। दावा है कि जिससे राजकुमार की बाद में जान चली गई।
6: जो 100 नंबर कॉल थी परसों, वो किसने की थी?
7: वो तो ऑर्डर में करी, बेटे में करी थी कि जब वो शीशे में हाथ हाथ मारा।
6: अच्छा, हाथ हाथ मारा जब शीशे में। कितनी देर तक वो बाहर पड़ा रहा? आपने
7: जो बताया मैं था नहीं।
6: अच्छा, कितनी देर बाहर पड़ा?
7: और मैं रात को आया था, बहुत देर तक।
6: कितनी देर तक बाहर बॉडी पड़ी रही होगी?
7: पता नहीं।
0: अब आप सोचिए, पुलिस ने एम्बुलेंस तक बुलाने की कोशिश नहीं की, मतलब पिंक बूथ में मौजूद पुलिसकर्मियों ने अपने दरवाजे पर मदद की गुहार लगाते एक आम आदमी को न सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया, बल्कि उसकी आवाज कानों तक ना आए इसके लिए दरवाजा बंद कर लिया।
5: बताया जा रहा है कि वो शराब के नशे में था और जो बाकी लोग थे वो भी शराब के नशे में थे। वो वहीं 3-4 मिनट पड़ा रहा, जैसा कि आई विटनेस हमें बताया। उसके बाद फिर वो वापस आता है, और वापस वो आया तो अंदर की तरफ जब वो आया पुलिस चौकी में, तो हम आपको दिखाएं कि वो चौकी में दोबारा आता है। और चौकी में जब वो दोबारा आता है तो सामने जो आप ये लोहे का गेट देख रहे हैं इसको बजाने लगा। ये जाहिर सी बात है, ये तो बंद है, आप देखिए तब भी इस पे ताला लगा था। उसके बाद जब उसकी कंडीशन देखी तो जो अंदर महिला पुलिसकर्मी थी उन्होंने, ये जो गेट है आप ये गेट देखिए, ये बन चुका है, तब ये गेट ये टूट गया था शीशे का।
0: आज तक को पता चला है कि आसपास के लोगों की शिकायत के बाद एक बाइक सवार पुलिसकर्मी आया। उसने राजकुमार को ऑटो में बैठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन एक भी ऑटो नहीं रुका। इसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई, जिसे आने में हुई देरी ने दावा है कि राजकुमार की जान ले ली।
8: एक ऑटो चालक द्वारा एक ऑटो सवारी को बिठाया गया। दोनों ही नशे की हालत में थे। पैसे के लेन देन को लेके दोनों में आपस में वाद विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों ही पिंक बूथ पर पहुंचे और शराब के नशे की हालत में ऑटो सवारी ने तेज से पिंक बूथ के गेट पर हाथ मारा, जिससे उसके हाथ में कांच गड़ गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।
0: यूपी पुलिस अक्सर एनकाउंटर वाले वीडियो दिखाकर अपराधियों को खबरदार करती है, लेकिन गाजियाबाद की यह घटना बताती है कि यूपी पुलिस को सख्त बनने के साथ संवेदनशील बनने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर वो संवेदनशीलता होती तो 22 साल का नौजवान पिंक बूथ के बाहर तड़प कर दम नहीं तोड़ता। हिमांशु मिश्रा, गाजियाबाद आज तक।
4: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
9: क्या गुप्त नवरात्रि अपने आप में विशेष है? क्या गुप्त नवरात्रि का पूजा विधान अलग है? क्या गुप्त नवरात्रि की साधना के प्रभाव ज्यादा होते हैं? क्या है गुप्त नवरात्रि की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: आज लखनऊ में सजेगा पंचायत, आज तक उत्तर प्रदेश का महामंच, मुख्यमंत्री योगी समेत राजनीतिक दिग्गज करेंगे शिरकत, विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष की आवाज। संसद सत्र की तैयारी के बीच गृह मंत्री अमित शाह से हाई प्रोफाइल मुलाकातों का सिलसिला जारी, यूपी के सीएम योगी के बाद अमित शाह से मिले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन के दोषी होने पर आप बीजेपी में ढली, सीएम रेखा ने आप पर संरक्षण का आरोप लगाया, कपिल मिश्रा ने किया कटाक्ष, ताहिर सिर्फ एक्टर, असली डायरेक्टर कोई और। बर्मिंघम वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से धोया, शुभमन गिल, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर की बदौलत मिली शानदार जीत, 3 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे। और 24 घंटों में ट्रंप का यूटर्न, हॉर्मुज में नहीं लगेगा 20% टैक्स, टैरिफ की जगह खाड़ी देश करेंगे अमेरिका में निवेश, ईरानी जहाजों की नाकेबंदी का ऐलान। एक तरफ श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जांच चल रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब श्री राम मंदिर के मामले पर पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया, एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट आज सौंप सकती है।
1: ऐसे पोस्टर्स यूपी के अलग अलग शहरों में लगाए गए हैं, एक पोस्टर में अखिलेश और मुलायम सिंह यादव हैं, इसमें लिखा है मुलायम सरकार की असलियत। दूसरे पोस्टर में अखिलेश शिवपाल और राम गोपाल यादव की तस्वीरें हैं, इसमें लिखा गया है दिल में बाबर मुंह में राम। ऐसे पोस्टर्स लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर और अयोध्या में लगाए गए हैं।
2: जैसे चुनाव नजदीक आएगा सब पुराने बयान निकाले जाएंगे, प्रहर पोस्टर निकाले जाएंगे, सबके निकलेंगे।
1: इस सियासत से इतर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेजी से बढ़ रही है। खबर है कि मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाने वाले कुछ विशेष दानदाताओं के दान को ट्रस्ट वापस कर सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद दर्जनों दानदाताओं ने ट्रस्ट के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और अपने दान की चोरी या घोटाले का शक जाहिर किया था। कई श्रद्धालुओं का दावा था कि उनकी ओर से भेंट की गई वस्तुओं की रसीद नहीं दी गई। आरोप ये भी है कि उनकी दी गई भेंट राम मंदिर में प्रदर्शित